कि फुल सीजन में डबल फॉरेनर्स ने हाजिरी भरी है, फुल सीजन में डबल फॉरेनर्स ने हाजिरी भरी है, मधुबन में हर टाइम हाजिर रहे हैं, अभी भी 350 है, अपने टर्न में भी आते हैं, लेकिन हर टर्न में भी थोड़े थोड़े कहां न कहां से आते हैं। तो अभी ये रिजल्ट बाप दादा भी देखते रहेंगे और आप सब भी साक्षी होकर अपने आप के रिजल्ट देखते रहना। यही याद रखना कि बाप दादा को मालिक बनने का वायदा किया है, बाप दादा को हमने मन के मालिक बनने का वायदा किया है। बाप दादा भी बच्चों को कम से कम एक एक जोन को तो ये कार्य दे सकते हैं कि ये जोन इस सप्ताह या 15 दिन रिजल्ट दे कि व्यर्थ संकल्प नहीं, लेकिन जो विषय मन को दिया वह किया या नहीं किया, ये मंजूर है टीचर्स, मंजूर है। तो बाबा कहते ये मंजूर है टीचर्स, मंजूर है, जोन को कार्य देवे। हाथ उठाओ टीचर्स, महाराष्ट्र है ना, तो महाराष्ट्र को तो महान काम देंगे ना। बाबा के सन्मुख उस समय महाराष्ट्र वालों का टर्न था, तो बाबा कहते महाराष्ट्र को तो महान काम देंगे ना। बाप दादा को हर एक जोन के लिए प्यार है और सदा ये निश्चय रखते हैं कि ये बच्चे बाप ने कहा और बच्चों ने किया। ऐसा है महाराष्ट्र जो बाप ने कहा वह किया, ऐसा है महाराष्ट्र वाले? हाथ उठाओ, बहुत है, पौना क्लास है। तो हर एक जोन बाप के आज्ञाकारी है, कांध हिला रहे हैं सभी। बाप को भी निश्चय है कि ये मेरे बच्चे है, ये निश्चय बुद्धि। बाप दादा यही चाहते हैं कि जो रोज के महावाक्य सुनते हो वह होमवर्क है। प्रतिदिन साकार मुरली जो सुनते हैं उसमें जो विशेष बात बाबा ने कही तो बाबा कहते हैं वो होमवर्क है। अगर रोज की मुरली जो बाप ने कहा और बच्चों ने किया तो उसको कहा जाता है बाप के सिकिलदे बच्चे, उसको कहा जाता है बाप के सिकिलदे बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे। क्या करना है, वह रोज की मुरली पढ़ लो, क्योंकि बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चे मुरली से प्यार रखते हैं। अगर कोई नहीं भी रखता है तो बाप दादा को कोई बच्चा कहे बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, लेकिन बाप का प्यार किससे है, मुरली से। मुरली के लिए कितना दूर से आते हैं, परमधाम छोड़ करके आते हैं। कोई टीचर ऐसा होगा जो इतना दूर से पढ़ाई पढ़ाने आए? तो जब बाप का प्यार मुरली से है तो जो मेरा बाबा कहता है उसका पहला प्यार बाप के साथ बाप की मुरली से होना चाहिए। देखो ब्रह्मा बाप ने एक दिन भी मुरली मिस नहीं की, चाहे बॉम्बे भी जाते रहे कारणे अकारणे, तो मुरली लिखते थे और मातेश्वरी वो मुरली पढ़ती थी, मातेश्वरी वो मुरली सुनाती थी। लास्ट डे तबियत थोड़ी ढीली थी, सवेरे का क्लास नहीं कराया, लेकिन शाम को क्लास कराने के बाद अव्यक्त हुए। तो ब्रह्मा बाप का प्यार किससे हुआ, मुरली से। तो जो समझते हैं कि मेरा बाबा से प्यार है तो बाप का जिससे प्यार रहा बच्चे का रहना चाहिए ना। तो मुरली रोज क्लास में पढ़ना व सुनना अगर मजबूरी है, बहाना नहीं है, सही कारण है तो किसी से सुनो। जो समझते हैं कि मुरली का इतना महत्व रखूंगा वह हाथ उठाओ। अच्छा यहां तो सब दिखाई दे रहा है, बाप आप पीछे वालों को भी देख रहा है। अच्छा बहुत अच्छा, बाप बीच बीच में पेपर लेगा कि आज किसने मुरली नहीं सुनी,
व टीचर लिख के भेजे, पसंद तो है ना। अच्छा, आज ब्रह्मा बाप हर बच्चे से मिलकर बहुत बहुत स्नेह से हर बच्चे को नैनो द्वारा स्नेह दे रहे हैं। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से बाबा की मुलाकात, तो बाबा कहते विदेश वालों को सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। बाप दादा सभी बच्चों को यही कहता है कि सेवा खूब करो, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है। जो सेवा करना चाहोगे लेकिन कर नहीं पाओगे, ऐसा समय भी आने वाला है। इसलिए जो करना है वो अब करो, कब नहीं, अब। बाप दादा हमेशा कहते हैं कि कल पर नहीं छोड़ो, आज पर भी नहीं, अब। कल पर नहीं छोड़ो, आज पर भी नहीं, अब, क्योंकि समय पांचों तत्व बाप के पास आते हैं। समय और पांचों तत्व बाप के पास आते हैं। क्या कहते बाबा को, हमको बताओ कब तक दुख चलेगा, खुद दुखी हो रहे हैं तो क्या करेंगे। समय और पांच तत्व खुद दुखी हो रहे तो क्या करेंगे, मनुष्य आत्माओं को भी दुखी करेंगे ना। इसलिए जो भी आए उसको संकल्प करना है कि जैसे ब्राह्मण जीवन आवश्यक है, वैसे अभी के समय अनुसार हर एक को सेवा भी जरूरी है, करो या कराओ। बाकी जो बाप दादा ने होमवर्क दिया, मन जीत जगत जीत बनना ही है, आपका ही गायन है, उसको रिपीट करना है। अच्छा, चारों ओर से बच्चों द्वारा संदेश आए हैं, चारों ओर के आए हुए प्यार के मीठे मीठे भाव या मीठी मीठी शब्दों की याद। चारों ओर से भिन्न भिन्न पत्र आए हैं, सभी को बाप दादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हर बच्चा स्नेह में बाप के दिल में समाया हुआ है और यह अविनाशी स्नेह सदा बाप का और बच्चों का अनादि अविनाशी है। और सारा संगम युग बाप बच्चों का मिलन निश्चित ही है। अच्छा, अभी जो बच्चे सन्मुख है या दूर बैठे भी देख रहे हैं, बाप दादा ने सुना कि अभी तो चारों ओर ये कोशिश की है कि हर एक देश में सेंटर पर भी जाके देखते हैं, सुनते हैं, चाहे रात का कितना भी बजता है तो भी देखते हैं, हम बाबा को टीवी पर देखते हैं। यह भी साइंस के साधन आपके लिए ही निकले हैं और आपको ही लाभ हो रहा है। अगर साइंस द्वारा विनाश होगा तो भी आपके राज्य के लिए कर रहे हैं। तो चारों ओर के स्नेही बच्चों को विशेष ब्रह्मा बाप का याद प्यार, दिल का दुलार, दिल का प्यार स्वीकार हो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले संपूर्ण मूरत भव। सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले संपूर्ण मूरत भव। सभी धारणाओं में मुख्य धारणा है सच्चाई और सफाई। एक दो के प्रति दिल में बिल्कुल सफाई हो, जैसे साफ चीज में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे एक दो की भावना भाव स्वभाव स्पष्ट दिखाई दे। जहां सच्चाई सफाई है वहां समीपता है। जैसे बाप दादा के समीप हो, ऐसे आपस में भी दिल की समीपता हो, स्वभाव की भिन्नता समाप्त हो जाए। इसके लिए मन के भाव और स्वभाव को मिलाना है। जब स्वभाव में फर्क दिखाई न दे तब कहेंगे संपूर्ण मूरत।
आज का स्लोगन है, बिगड़े हुए को सुधारना ये सबसे बड़ी सेवा है। बिगड़े हुए को सुधारना ये सबसे बड़ी सेवा है। आज का व्यक्ति इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। योग को ज्वाला रूप बनाने के लिए सेकंड में बिंदी स्वरूप बन मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। स्टॉप कहा और सेकंड में व्यर्थ देहभान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए ना, व्यर्थ से दूर मन बुद्धि को एकाग्र करके ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करो। पावरफुल ब्रेक द्वारा मन बुद्धि को कंट्रोल करो। जहां मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां सेकंड में लग जाए। अच्छा, ओम शांति। आज मास का तीसरा रविवार का योग अभ्यास संकल्प जो दिया है, या तीसरा रविवार है तो सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित होकर के 6:30 से 7:30 बजे तक कौन से स्वरूप में स्थित होना है? अपने फरिश्ता स्वरूप द्वारा भटकती हुई दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति के पवित्र किरणें देकर उन्हें सहारे दाता परमात्मा बाप की स्मृति दिलाने की सेवा करो। फरिश्ता स्वरूप द्वारा भटकती हुई दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति की पवित्र किरणें दे उन्हें सहारे दाता परमात्मा बाप की स्मृति दिलाने की सेवा करो। अच्छा, ओम।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अमृतधारा प्रोग्राम में मैं भक्ति आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। स्वागत है, सुस्वागतम। हमेशा की तरह हम आज एक सुविचार से शुरुआत कर रहे हैं जो हमें बहुत सुंदर प्रेरणा देता है। बहुत सुंदर किसी ने कहा है कि मुस्कान वह चाबी है जो सबके दिल का ताला खोल सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज से हम भी उस चाबी का इस्तेमाल करेंगे। हम अपनी मुस्कान से सबके दिल को जीतेंगे। दोस्तों, आपको बस ये चाबी का इस्तेमाल करना है और जो भी कोई मिले उनके दिल को जीतना है। चलिए दोस्तों, अमृतधारा प्रोग्राम में हम बहुत सुंदर शास्त्रों की चर्चा करते हैं। नए नए अलग अलग अंदाज, अलग अलग चिंतन के द्वारा हम अपने जीवन में उसको किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं इस पर भी चिंतन करते हैं। तो इसी सिलसिले में हमारे स्टूडियो में उपस्थित है ज्ञानेश्वर जी। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद भक्ति जी, और आपको और हमारे रेडियो मधुबन के सभी श्रोतागण को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्ति जी, आपने जो सुविचार सुनाया मुस्कान, ये सुविचार सुनने के बाद हमारे श्रोताओं के चेहरे पे भी एक बहुत अच्छी मुस्कान आई होगी। और जब मैं मुस्कान के ऊपर सोच रहा था, गौर कर रहा था, तो मेरे मन में एक विचार आया कि देखिए हमारी भाषा कितनी सुंदर है। हंसना, हंसी और मुस्कान, उसमें कितना अंतर है। हंसना कभी अच्छा भी रहता है, कभी खराब भी रहता है, बुरा भी होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब हंसते हैं तो कहते हैं कि हमारे नसें जो है वो सब खुल जाती है, चेहरा खिल जाता है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होगा, इसके ऊपर हमें सोचना है। क्योंकि लोग लाफ्टर क्लब में भी जाते हैं, लाफ्टर क्लब में जाने के बाद उनको फायदा भी होता है। लेकिन अगर हम दूसरे अंदाज में उसे देखें तो कभी कभी हंसना जो है दूसरों के लिए खराब भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हंसना किसी को दुख भी दे सकता है। इसलिए हम कहते हैं लोग हंसेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी गीत गाते हैं, तेरी एक हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू। तो हंसना, अगर भाव अच्छा है और हम हंसते हैं तो हंसना अच्छा है, और वही हंसना जो है मुस्कान में बदल जाता है। और इसलिए मुस्कान आपके चेहरे पे आती है तो दूसरों के चेहरे पे भी वो मुस्कान आ जाती है, जिसे हम कहते हैं एक स्माइल आप दे दो, आपके पास रिटर्न में वही स्माइल आ जाएगा।
0: दोस्तों, कितना सुंदर शब्द है मुस्कान। और सचमुच उसमें जो नजाकत है वो हम सब जानते भी हैं, और इसीलिए फिर से एक बार मुस्कुराकर हम तैयार होते हैं कहानी सुनने के लिए। बहुत सुंदर कहानी है जिसका नाम है भाग्य और कर्म का फल। कहते हैं कि एक बहुत ही बेहद ही गरीब व्यक्ति था जिसका नाम था रामदीन। बचपन से आज तक उसका जीवन अभावों में ही बीता था। समय के साथ माता पिता भी उसको छोड़कर गए, किंतु गरीबी ने उसे कभी नहीं छोड़ा। उसकी शादी हो गई, उसको बच्चे हो गए, सब आ गए, लेकिन भाग्य लक्ष्मी न आई। तो बेचारा रामदीन बहुत दुखी रहता। कई बार वो सोचता कि मुझे आत्मघात करना चाहिए, लेकिन फिर देखता कि पत्नी और बच्चों का क्या होगा, मेरी ये भी तो जिम्मेदारी है। और इस प्रकार के ख्याल करके आत्महत्या कर नहीं पाता। ऐसा भी नहीं था कि वो बिल्कुल ही निकम्मा था, काम चोर था, खूब मेहनत करता था, परंतु मेहनत का फल नहीं पाता था। एक दिन क्या हो गया, उसका एक पुराना दोस्त जिसका नाम था शंकर, वो शहर से आया तो उसके शाही ठाट बाट देखकर रामदीन को बड़ा आश्चर्य हुआ। शंकर कुछ साल पहले तक गांव में फटे पुराने कपड़े पहने फिरा करता था। इतना ही क्या, उसके घर में खाने के लिए रोटी भी नहीं होती थी। और वही शंकर, मेरा दोस्त, आज इतना धनवान कैसे बन गया? रामदीन सोच में पड़ गया। शंकर उसके घर आया तो बच्चों को रोते देखकर शंकर ने उसको कहा, अरे रामदीन, सचमुच तेरी जिंदगी नहीं बदली, देख तूने घर की क्या हालत बना के रखी है, तेरी बीवी कैसी है, बच्चे कैसे भूख से तड़प रहे हैं, क्या कमाया तूने? तो रामदीन अपने दोस्त से बोलता है, क्या करूं शंकर, अरे दोस्त, मैं खुद ही इस जीवन से बहुत तंग आ गया हूं, देखो ना ये गरीबी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। तो शंकर उसको कहता है, रामदीन मैं तुम्हें एक उपाय सुझाऊंगा, अब तुम मेरे साथ शहर चलोगे? तो ये बड़ा खुश होता है, कहता है, मैं तो तुम्हारे साथ शहर चलूंगा भाई, कोई बात नहीं। तो शंकर कहता है, बहुत अच्छा, तो कल ही मेरे साथ शहर में चल, वहां जाते ही देख तेरी किस्मत बदल जाएगी। तो दोस्तों, क्या सचमुच शहर में जाने के बाद रामदीन की किस्मत बदल गई? किस प्रकार से ये कहानी हमें एक बहुत सुंदर कर्मों की फिलॉसफी बताती है, जरूर देखेंगे एक ब्रेक के बाद। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: ओए रुक रुक।
1: हाँ कहिए।
0: और जी कहना सुनना आपकी शादी में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है?
1: है तो ये देखिए।
0: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, हैं? ओए छोटू फाइन काटो इनका, 1200 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का और 2400 रुपए हवलदार कड़क से मजाक करने का। और ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। दोस्तों आगे कहानी बहुत सुंदर मोड़ लेती है। शंकर की बात मानकर उसका दोस्त रामदीन उसके साथ शहर चला गया। शंकर ने उसे एक दुकानदार के पास काम भी दिला दिया। एक वर्ष तक रामदीन खूब मन लगाकर काम करता रहा और उसी का यह फल था कि उसने काफी धन जमा कर लिया। एक साल बीत गया। एक साल के पश्चात रामदीन ने घर वापस आने की तैयारी कर ली। उसने अपने सारे रुपयों की एक पोटली बांधी और गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक बहुत घना जंगल पड़ता था। चलते चलते उसको रात हो गई। तब रामदीन ने सोचा कि रात के समय जंगल में सफर करना तो ठीक नहीं है, इसलिए उसने रात काटने के लिए एक घने वृक्ष का सहारा लिया। थके हुए इंसान को वैसे भी नींद जल्दी आ जाती है। रामदीन काफी थका हुआ था, इसलिए जैसे ही वो लेट गया उसको नींद आ गई। नींद में ही उसने दो प्राणियों को अपने ऊपर झुके हुए देखा। उनमें से एक बोला, अरे इस आदमी के भाग्य में भोजन और कपड़े के सिवा कुछ नहीं लिखा है, फिर इसके पास इतना धन आया कहाँ से और क्यों? तो दूसरा बोला, मैंने दिया है। ये आदमी बहुत ईमानदार है, परिश्रमी है, इसने कितने परिश्रम किए एक साल तक, तब मैंने उसको धन दिया, लेकिन इसके भाग्य में यह धन लिखा कहाँ है? कहकर वह हंसा और फिर दोनों चले गए। दोस्तों जैसे ही सुबह हुई, रामदीन ने अपने धन की थैली टटोली जो गायब थी। वह बिचारा अपना सिर पीट कर रह गया। साल भर की मेहनत कमाया हुआ धन आज उसके पास कुछ नहीं था। कैसे वो घर जा सकता था? अपने बीवी और बच्चों को कैसे मुंह दिखा सकता था? बहुत देर तक बेचारा अकेला बैठा रोता रहा, किंतु जंगल में उसका दुख झेलने वाला, उसका दुख देखने वाला भी कोई नहीं था। आखिरकार उसने कुछ सोचा कि फिर से शहर में जाता हूँ, और उसने फैसला कर लिया, शहर की ओर चल पड़ा और फिर से उसने मेहनत मजदूरी की। अब दूसरा साल बीता, फिर से उसने अपनी कमाई देखी, अच्छी खासी कमाई जमा हो गई थी। उसने फिर से एक थैली ले ली और उसमें पूरा धन इकट्ठा कर लिया और गांव की तरफ चल पड़ा। पहले की बात ही उसने उस जंगल के घने पेड़ के नीचे रात काटने का निर्णय ले लिया और हरी भरी घास पर बड़े आनंद से सो गया। इस बार क्या हुआ? नींद में पहले की भांति दो प्राणी उसको नजर आए। दोनों उसके ऊपर झुके हुए थे। एक ने कहा, भैया कर्म एक बार फिर यह ढेर सा धन जमा कर लाया है, कुछ समझ में नहीं आता, जो चीज इसके नसीब में है ही नहीं वह तुम इसको क्यों देते हो? दूसरा बोला, अरे भाई जो परिश्रम करेगा वो धन तो कमाएगा ना, ये बेचारा गरीब है, रात दिन मेहनत करता है, क्यों ना उसको धन मिले। तुम जानते हो मैं हर परिश्रमी आदमी को उसका फल जरूर देता हूँ, और तुम? मैं तो भाग्य हूँ। जब तुम अपना काम पूरा कर लेते हो तो मेरा काम शुरू हो जाता है। तुमने इसकी मेहनत का फल तो दे दिया, मगर जब मैंने इसके भाग्य में ये लिखा ही नहीं है तो? कहते हुए उस आदमी ने उसके सिर के नीचे रखी रुपयों की भरी हुई थैली निकाली और दोनों चलते बने। रामदीन एकदम घबरा कर उठा। उसने उठकर जैसे ही देखा रुपयों वाली थैली फिर से गायब है, दिल उसका डूबने लगा। अरे भगवान, ये क्या मेरे साथ आप अन्याय कर रहे हो? ये दोबारा आपने कर लिया, मेरी साल भर की कमाई एक रात में हवा बनकर उड़ जाती है। अब मैं कमा कमा कर बहुत थक गया हूँ, मेरे शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं है कि मैं इतने कड़े परिश्रम फिर से कर सकूं। अब तो इस जीवन से मरना अच्छा है। और मौत मौत ऐसे कहते हुए धोती को कसकर उसने गले में बांधा और उसी वृक्ष से बांधकर आत्महत्या करने की चेष्टा करने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई दोस्तों, आकाशवाणी हुई और कहा गया, हे भले मानो, यह मत भूल कि मैंने धरती पर तुझे जीने के लिए भेजा है, और तुझे यह भी बता दूं कि जन्म से पूर्व ही मैंने तेरे भाग्य लिख दिए हैं, मगर तुम्हें

0: देखो, धन पाते ही मुझे भूल जाते हो? यह भी भूल गए कि तुम्हें कोई जन्म देने वाला भी है? धन कमाते ही तुम ईश्वर को भूल गए? मूर्ख प्राणी, केवल धन ही तो जीवन नहीं है ना, फिर तुझे आत्महत्या करने का अधिकार क्या है? ये जीवन तुम्हारा अपना नहीं, मेरा है। मैं ही जीवन देता हूँ, मैं ही जीवन लेता हूँ। अब तो सीधी तरह अपने घर जा, चिंता छोड़ दे। धन जोड़ने से इंसान को शांति कभी नहीं मिलती। अब तू घर जा, मैंने तेरे खाने पीने की जिम्मेदारी ली है, फिर तू क्यों चिंता में मरा जा रहा है? जा घर जा, चिंता छोड़ दे। कुछ नहीं होता चिंता करने से। अब जैसे ही आकाशवाणी हुई, रामदीन अपनी घर की ओर चल पड़ा। दोस्तों, वो घर जाकर देखता है तो उसके बच्चे और उसकी पत्नी बड़ी मौज में है। घर में खूब रौनक है, सबने नए वस्त्र पहने हैं। रामदीन को देखते ही सब खुशी में झूम उठते। पत्नी से वो पूछता है, भाग्यवान ये है क्या? यदि तुम मेरे आने पर इसलिए खुश रहे हो कि मैं शहर से तुम्हारे लिए बहुत सा धन कमा के लाया हूँ, तो तुम भूल जाओ, क्योंकि मेरा धन तो सारे चोर ले गए। तो उसकी पत्नी और बच्चे मुस्कुराने लगे। तो वो पूछने लगा, अगर तुम्हारे पास इतना धन आया कहाँ से? तो वो कहती है, एक साधु बाबा आए थे, दो थैलियाँ दे गए, रुपयों से भरी थैलियाँ, और उन्होंने कहा, यह तुम्हारे बच्चों के भाग्य का है। वारे भाग्य, मैं कितना अभागा था, और ये मेरे बच्चे देखो कितने धनवान हो गए। रामदीन सोचता रहा। दोस्तों, सचमुच कर्म भाग्य, कितनी सुंदर बात है इसमें सब लिखी हुई। कभी कभी हम हमारे भाग्य में जो नहीं है वो चाहते हैं, और उस समय ये भूल जाते हैं कि हमने ही शायद ऐसे कर्म किए हैं जिसका फल हम पा रहे हैं।
1: भाग्य और कर्म, बहुत ही सुंदर कथा है, लेकिन सोचने के लिए मजबूर करती है। कथा हमेशा कोई ना कोई हमें संदेश देती है, और वह सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। एक बार प्रयास करने के बाद वो रामदीन के भाग्य में अगर धन नहीं है तो वो धन चोरी हो गया, लेकिन दोबारा प्रयास करने के बाद भी चोरी हो गया तो स्वाभाविक रीति से कोई भी जो है हताश निराश हो सकता है। जैसे हम आजकल देखते हैं कि किसान जो होते हैं, आजकल हम किसान जो आत्मघात करते हैं उसके बारे में काफ़ी चर्चा करते हैं। तो किसान एक बार फसल बोता है, बीज बोता है, और फिर फसल आती है, लेकिन कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदा की वजह से फसल का नुकसान हो जाता है, और फिर किसान के हाथ में कुछ नहीं बचता। कर्जा लेके दोबारा वो प्रयास करता है, और फिर भी अगर उसके हाथ में नहीं बचता तो फिर क्या होता है, वो आत्मघात करने के लिए प्रवृत्त होता है, मजबूर होता है। उन्हें हौसला देने के लिए ये कथा का उपयोग अगर हम कर सकते हैं तो हम बहुत सारे लोगों की, किसानों की जान बचा सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमारा परिवार है, कुटुंब है, फैमिली है, उसमें हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो हमारे भाग्य में नहीं है वो हमारे परिवार में कोई भी सदस्य हो, चाहे पत्नी हो या बच्चे हो, उनके भाग्य में है तो क्या होगा, एक ही परिवार के सदस्य होने की वजह से हमारा भाग्य भी बन जाता है। जैसे अगर बैंक में एक परिवार के चार सदस्य हैं और चारों के अलग अलग अकाउंट है, उस अकाउंट में एक अकाउंट में जो कुटुंब प्रमुख है, परिवार का प्रमुख है, मुखिया है, उसके अकाउंट में भले पैसा ना मिला हो, लेकिन अगर पत्नी या बच्चों के अकाउंट में पैसा जमा होता है तो भी क्या होता है, वो परिवार में ही आता है। तो हमारे परिवार के सदस्य भी उतने ही भाग्यवान होते हैं जितने हम होते हैं। तो ये बैलेंस है, मेल जोल है। और इस रीति से अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि हम परिवार को छोड़ के कहीं ना जाए। अगर कभी हताशा आती है तो आपका भाग्य में शायद नहीं लिखा होगा, लेकिन हमारे परिवार के दूसरे सदस्य है उनके भाग्य में तो जरूर होता होगा। ऐसे विचार करके अगर हम ये आत्मघात रोक सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा मुझे लगता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, कितनी सही बात है। कभी कभी हम बहुत ही जिद करते हैं, कई बार उसका अनुभव भी करते हैं जैसे रामदीन ने किया, और फिर हताश होते हैं, निराश होते हैं। लेकिन सचमुच ये तो संदेश इससे जरूर मिलता है कि कर्म हमारे अच्छे होने चाहिए ताकि हमें फिर से पछताना न पड़े। चलिए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ हम लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: this is triple Guinness World Record holder, Dr. Ghazal Srinivas. And you are listening to Brahma Kumari's community radio station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling. Thank you, Radio Madhuban.
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, बहुत ही सुंदर दशम स्कंध, जिसमें अलग अलग अध्याय में श्रीमद् भागवतकारों ने बहुत ही सुंदर हमें संदेश दिया है, कुछ राज भी खोले हैं। तो यहाँ हम देखते हैं द्वादश अध्याय जो है, उसमें भागवतकारों ने वर्णन किया है चीरहरण। और हम सब जानते हैं श्री कृष्ण के बहुत सारी कहानियों के साथ ये कहानी हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि किस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने गोपिकाओं के वस्त्र चुराए। बहुत सुंदर वर्णन किया है भागवतकारों ने। शुकदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि जैसे ही मार्गशीर्ष मास आ गया तो नंद बाबा के व्रज की कुमारियाँ कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने, वे केवल हविशान्न खाती थी। तो कुमारियां जो ये थी वो क्या करती थी, उनका व्रत किस प्रकार से था? तो भले सुबह में वो यमुना जल में जाती थी, स्नान कर लेती थी, फिर तट पर देवी की जो मूर्ति बनाई थी उन्होंने, उसको बहुत प्यार से, श्रद्धा भाव से फूल फल, बहुत सारे फूलों के हार, धूप दीप चंदन सब कुछ समर्पण करके उनकी पूजा करती थी। साथ ही कहती थी, हे कात्यायनी, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करती हूँ। इस मंत्र का जप करती हुई वे कुमारियाँ देवी की नित्य आराधना करती थी। और उन कुमारियों ने, जैसे जिनका मन श्री कृष्ण पर निछावर हो चुका था, इस संकल्प के साथ एक महीने तक देवी की भली भांति पूजा की कि नंद नंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हो। और फिर एक दिन क्या हुआ, बहुत ही सुंदर बात भागवतकारों ने बताई है कि सब कुमारियां जो है वो प्रतिदिन की भांति यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार कर भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े ही आनंद से, मौज से जल क्रीड़ा करने लगी। शुकदेव कहते हैं परीक्षित को, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शंकर आदि योगेश्वरों के भी ईश्वर है, उनसे गोपियों की अभिलाषा छिपी न रही। वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल बालों के साथ उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर पहुंच गए। उन्होंने अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी फूर्ती से वे एक कदंब के वृक्ष पर चढ़ गए। इतनी सुंदर बात है, लेकिन इस बात को अगर हम अलग रीति से देखें तो मैं समझती हूँ ये इस पर चिंतन करना बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल भक्ति जी, मुझे लगता है कि शास्त्रों में जो कथाएं हैं, कभी कभी ऊपर से हम देखें तो बड़ी विचित्र लगती है। और अगर हम उसके जड़ तक ना जाएं, उसकी गुह्यता समझने की कोशिश ना करें, तो उससे बहुत गलत संदेश चला जाता है। आजकल हम सुनते हैं कि कृष्ण कन्हैया ने गोपियों के वस्त्र चुराए, इसके ऊपर काफी फिल्में भी आती है, उसके ऊपर कथाएं भी होती है, बड़ी सुंदरता से उसका वर्णन होता है। ये कथा करने वाले जो हमारे विद्वान हैं, वो भी बड़ी सुंदरता से उसका वर्णन करते हैं। लेकिन अगर हम उसकी गुह्यता नहीं जानेंगे तो क्या होगा, संदेश गलत जाएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ऐसे अगर हम भगवान जैसे कार्य करें और हम भी किसी के वस्त्र चुराए तो वो शोभा नहीं देगा। और फिर गलत संदेश जाने के बाद बहुत सारे हमारे युवा जो है जिन्होंने शास्त्रों का इतना अभ्यास नहीं किया है, सिर्फ कथा सुनते हैं, तो उनके मन में भी ये आशंका आ सकती है कि भगवान होते हुए गोपियों के वस्त्र उन्होंने चुराए तो हमने किया तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये आशंका मिटाने के लिए हमें इसके ऊपर बहुत गहराई से सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण हमारा पति हो, इस आकांक्षा से, इस आश से इन गोपियों ने व्रत किया था। अभी भगवान श्री कृष्ण को पति मानना, इसमें गुह्यता क्या है, राज क्या है, ये भी हम फुर्सत से थोड़े समय के बाद देखेंगे, ऐसा मुझे लगता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, देखिए अभिलाषा किसी भी भक्त की हो, वो पूर्ण करना भगवान का काम है। अब इन गोपियों ने तो अभिलाषा की थी, केवल अभिलाषा ही नहीं, एक महीने तक उन्होंने देवी की प्रार्थना की, पूजा की, व्रत रखा, ताकि श्री कृष्ण ही हमारे पति हो। अब इस प्रकार से अभिलाषा पूर्ण करना, ये तो भगवान का ही काम है। इनमें भागवतकार हमें क्या बताना चाहते हैं, जरूर उस पर चिंतन होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक ब्रेक के बाद रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन। आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे। सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: भक्ति जी, हम चर्चा कर रहे थे कि श्री कृष्ण जी, उनके ग्वाल बाल, गोपिया और कात्यायनी का व्रत, और श्री कृष्ण जैसा पति, या श्री कृष्ण ही हमारा पति हो, जैसा नहीं श्री कृष्ण ही हमारा पति हो, इसके ऊपर हम जब सोचेंगे तब मुझे लगता है कि शास्त्रों में और आजकल हम ये कहते हैं, अगर कोई स्त्री का पति जिंदा है तो उसे हम सौभाग्यवती कहते हैं, और अगर पति जिंदा नहीं है तो सौभाग्यवती नहीं कहते। अगर हम खुले दिल से सोच समझ के उसके ऊपर चिंतन करें, तो क्या ये हमेशा संभव है कि अगर पति जिंदा है, कोई भी पति, तो यह स्त्री का भाग्य जो है 100 गुना बढ़ जाता है? अगर हम खुले दिल से उसको मान ले तो हमें पता चलेगा कि ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कोई भी पति नहीं होता कि जो जिंदा है, और इसलिए स्त्री का भाग्य जो है 100 गुना बढ़ता है। तो फिर ऐसे क्यों कहते हैं? इसके ऊपर जब हम चिंतन करेंगे तो मुझे लगता है कि प्रकृति जो है वो स्त्री है, आत्मा जो है वो पुरुष है। और यहां ये भी कहा गया है कि आत्मा जब देह में रहती है तो वो स्त्री के रूप में रहती है, या आत्मा जब परमात्मा को याद करती है तो परमात्मा पति हो जाता है और आत्मा पत्नी हो जाती है, चाहे वो स्त्री के देह में हो या पुरुष के देह में हो। तो फिर क्या होगा? जब आत्मा परमात्मा को पति के रूप में चुनती है तो फिर उसका भाग्य जो है 100 गुना बढ़ता है, क्योंकि परमात्मा उनका पति हो जाता है। पति का काम क्या है? पालना करना और रक्षा करना। और दोनों ही काम, दोनों ही कर्तव्य जब हम परमात्मा को पति के रूप में स्वीकारते हैं तब वो दोनों कर्म, दोनों काम हो जाते हैं। अभी इस आधार से अगर हम इस कथा के तरफ देखेंगे तो फिर क्या होगा? जैसे गोपियों ने व्रत किया कि श्री कृष्ण भगवान हमारे पति हो, अभी श्री कृष्ण भगवान पति तो हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए होना क्या चाहिए? कि जैसे शास्त्रों में कहते हैं कि देहभान आपका जो है, देह भाव जो है वो छूटना चाहिए, देह अहंकार नहीं आना चाहिए। बहुत बार हमें अहंकार आता है क्योंकि हम देह को भूल नहीं सकते, देह भान में आ जाते हैं और फिर अहंकार आता है, और जब वो अहंकार आता है तो परमात्मा प्राप्ति में वो अड़चन बन जाता है, विघ्न बन जाता है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि यह देह का वस्त्र जो है, वो वस्त्र जो है आप उतारो, उसे भूल जाओ। अभी उसे काव्यात्मक रीति से जब पेश करेंगे तो ऐसे जो उपदेश जो है वो काव्यात्मक ढंग से नहीं पेश करेंगे तो लोगों के समझ में नहीं आएगा, इसलिए बड़ी खूबी से व्यास जी ने, भागवतकारों ने इसका वर्णन किया। लेकिन अगर इसका रहस्य हम नहीं समझेंगे तो गलत तरीके से उसे हम उठाते हैं, बहुत बार उठाते भी हैं, और जाने अनजाने में हम भगवान श्री कृष्ण की निंदा करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है इसके ऊपर ये चिंतन जरूरी है कि परमात्मा जो है वो हमारा पति है, लेकिन कब? जब हम आत्मा के रूप में परमात्मा को स्वीकार करते हैं। आत्मा के रूप में कब स्वीकार करेंगे? जब देह को भूल जाएंगे। और ये कहते हैं कि वो देह जो है वो आत्मा का वस्त्र है, और जैसे हम देह छोड़ते हैं और दूसरा शरीर धारण करते हैं, तो जैसे हम एक वस्त्र उतार के दूसरा वस्त्र लेते हैं। इस रीति से अगर हम इस कथा के तरफ देखेंगे तो फिर हमें उसका भाव समझ में आएगा। और मजे की बात यह है कि व्यक्ति वही है, श्री कृष्ण जी तो व्यक्ति वही है, लेकिन एक कथा में उन्होंने गोपियों के वस्त्र चुराए, लेकिन महाभारत की कथा में उन्होंने द्रौपदी के वस्त्र दिए। जब उनका चीरहरण होता था तब उन्होंने वस्त्र दिए, उनका संरक्षण किया, रक्षा की। अभी इस कथा की तरफ भी हम देखेंगे तो देखिए, ये तो हो गया आध्यात्मिक, गोपियों का वस्त्र चुराना ये आध्यात्मिक बात है, लेकिन अगर लौकिक बात करें, सांसारिक बात करें, पारिवारिक बात करें, तो फिर ऐसे कभी संकट आते हैं महिलाओं के ऊपर, हमारे माता बहनों के ऊपर, तब क्या होगा? जब हम परमात्मा को याद करेंगे तब परमात्मा स्वयं रक्षा करेगा, लेकिन उसके ऊपर हमारी दृढ़ता चाहिए, विश्वास चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।
2: बिल्कुल, देखिए ना दोस्तों, दो कहानियों में कितना विरोधाभास है, और सचमुच हम दोनों कहानियों को कई सालों तक सुनते भी आए हैं, लेकिन क्या हमने उस पर इस प्रकार से चिंतन किया है? जिसको हम भगवान मानते हैं, जो सर्वस्व है हमारा, हमारी संस्कृति की धरोहर है, उनको ही हम वस्त्र चुराए इस प्रकार की बात करते हुए ये तो नहीं करते कि हमने जिसको भगवान के रूप में माना उसकी हम निंदा तो नहीं करते? कभी शायद हमारे मन में ये विचार आया नहीं होगा, लेकिन दोस्तों, भागवतकारों की जो भाषा है, जो भाषा शैली है, वो भी बहुत ही सुंदर कलात्मक है, और उसके पीछे कई सारे राज छिपे हुए हैं। चलिए दोस्तों, इन राजों को समझना, यही तो अमृत धारा का मकसद है, और इसीलिए मुझे लगता है आपको भी ये चिंतन, ये मंथन सुनकर बहुत आनंद आता होगा। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ समय को देखते हुए मैं भक्ति आप सभी से इजाजत लेती हूँ, अपने वाणी को विराम देती हूँ। फिर से मिलेंगे अमृत धारा में। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण मंगल, शूद्र का चरना, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, जीवन में कभी कभी कुछ पंक्तियां बहुत ज्यादा संबल प्रदान करती हैं हमें। जब हम निराशा के अंधकार में डूब रहे होते हैं, तब वो पंक्तियां या संकल्प सचमुच हमें उबार लेती हैं या जीवन में प्रकाश प्रदान करती हैं। ऐसी ही कुछ पंक्तियां आज हमें मुंबई से हमारे एक व्यूवर ने भेजा है। आप सपना जी हैं और आपने बहुत सुंदर पंक्तियां हमें भेजी हैं, और ये कहती हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बहुत सुंदर पंक्तियां कविवर हरिवंश राय बच्चन जी के हैं, जिसे भेजा है हमें सपना जी ने मुंबई से। सपना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सुंदर पंक्तियां हमें भेजी हैं। वास्तव में यदि कोशिश लगातार की जाती रहे तो असफलता हाथ नहीं लगती, सफलता अवश्य ही हाथ लगती है। तो हम भी लगातार प्रयत्न करते रहें, घबराएं नहीं, भले ही कितनी भी परेशानी जीवन में हो। आइए इन्हीं सुंदर पंक्तियों के साथ आज के समाधान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी का। प्रता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।
1: शुक्रिया
0: प्रता जी। ये जो बच्चन जी की जो पंक्तियां हैं, सचमुच एक उत्साह पैदा करती हैं, एक शक्ति पैदा करती हैं, एक रोशनी दिखाती हैं कि हारो मत, खड़े रहो और डट के सामना करो तो डेफिनेटली आपकी विजय होगी। क्या
1: बिल्कुल इन्हें रोज पढ़ लेना चाहिए और हो सके तो रिकॉर्ड करके इन्हें रोज सुन लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी तूफान इतने ज्यादा आते हैं, लहरें इतनी बड़ी होती हैं कि नाव और नाविक दोनों ही घबरा जाते हैं
0: जी।
1: बिल्कुल ये अस्वाभाविक नहीं है, ये होता है और संभव है। लेकिन यदि कोई हमें हमारी शक्तियों की बार बार याद दिलाए तो हमारी विजय निश्चित होती है। हनुमान जी के लिए यही तो है ना, उन्हें श्राप दे दिया था साधु ने, जाओ तुम्हें अपनी शक्तियों का बड़ा घमंड है, भूल जाओ। बड़ा परेशान हुआ, भूल गया तुरंत, तो फिर हाथ पैर जोड़े तो महाराज ने कहा अच्छा कोई तुम्हें याद दिलाएगा तो याद आ जाएंगी। तो हर जगह उन्हें कहीं जामवंत जी ने याद दिलाया है, तुम बहुत बड़े बहादुर हो, तुम तो पवन पुत्र हो, अरे सोयोजन क्या, तुम तो कितना भी पार कर सकते हो। फिर देखो उड़ के हिमालय तक चला गया, सोयोजन तो बहुत थोड़ा, हिमालय तक चला गया। तो यही है कि कुछ चीजें मनुष्य को याद दिलाने के लिए चाहिए, जो उसे अपनी शक्ति की, अपनी योग्यताओं की याद दिलाए ताकि वो एक्टिवेट हो सके, और तब मनुष्य को आभास रहेगा कि सचमुच ये तो कुछ भी नहीं है, इसी को पार करना, लहरों को पार करना ही तो एक आनंद है और इसी में तो हम कुछ सीखेंगे। अगर लहरें ना हो, तूफान ना हो तो मनुष्य कुछ सीखता नहीं है। तो वास्तव में ये बहुत अच्छी बातें हैं, और तूफानों में, समस्याओं में मनुष्य को साहस और हिम्मत के साथ अचल अडोल हिमालय की तरह अड़िग होकर खड़े रहना चाहिए। तो जब एक अड़िग है तो दूसरा क्या करेगा, निकल जाएगा।
0: जी, बात तो ये सही है कि आज समस्याएं, परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, या हम अपनी नाव को लेकर के सागर में निकल पड़े हैं तो लहरें बहुत आती हैं। लेकिन बात है, जैसे आपने ये बात कही कि ये बात कोई हमें याद दिलाए, कोई प्रोत्साहित करे, हनुमान जी को तो चलिए याद दिलाने वाले थे जामवन जी, लेकिन आजकल लोग हमें प्रोत्साहित करने की बजाय हतोत्साहित ज्यादा करते हैं।
1: हाँ, ये बहुत हो रहा है परिवार में, संगठनों में या समाज में। दिल्ली में एक 30 इयर्स ओल्ड लेडी को कैंसर हुआ
0: जी।
1: जो भी आए वो ये कहे हाय इतनी छोटी आयु में क्या हो गया, अब कैसे जीवन चलेगा, कहीं कुछ हो ना जाए मेरी बेटी को, एक और ये कहे मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए, ऐसी ऐसी बात कहें, मुझे फोन किया। मैंने कहा अब तुम इन सब से मिलना जुलना छोड़ दो, और अपने एक व्यक्ति को हमने नियुक्त किया जो रोज जाकर उसे अच्छी अच्छी बातें सुनाकर उसके मन को खुश रखता था, और उसने भी ये बात अनुभवों से स्वीकार कर ली कि सचमुच ये जो लोग आके उल्टी सुलटी बात करते हैं इससे मन में निराशा होती है, और हमें था कि इसको खुशी रहे तो इसका कैंसर ठीक हो जाए, और वही रिजल्ट हुआ। इसलिए ये जो समाज की थोड़ी सी एटीट्यूड है ना लोगों का, किसी के मन में ईर्ष्या भी है तो कोई अपनी सहानुभूति को इसी तरह प्रदर्शित करते हैं,
0: कोई से अच्छा मानते हैं, अच्छा मानते हैं, चलो हम जाके यही तो बोले थे, समझेंगे कि चलो हमसे सहानुभूति जता रहे हैं।
1: लेकिन ये नहीं, अगर हम अच्छे बोल बोले पॉजिटिव, कोई बीमार के पास भी हम जाए मिले यार ठीक हो जाओ, ये तो कुछ भी नहीं है, तो बहुत अच्छा, उसका मनोबल बढ़ेगा और सारी चीजें, चाहे बीमारी हो, चाहे समस्याएं हो, चाहे असफलता हो, सबका आधार संकल्प ही तो है ना। अगर मनुष्य कॉन्फिडेंट हो जाए और अपने संकल्पों को बहुत पावरफुल रखे तो बड़ी बड़ी बात भी सब सरल हो जाती है।
0: बिल्कुल, ये बहुत अच्छा होता है ब्रता जी कि चलो हमारे नजदीक कोई ऐसा हो जो हमें लगातार प्रोत्साहित कर रहा हो, हमारे मन में शुभ संकल्प दे रहा हो। कर्ण के लिए भी कहा जाता है कि कर्ण के जो सारथी थे लगातार उनके कान में कहा करते थे कि तुम पराजित हो जाओगे, पराजित हो जाओगे, शायद इसलिए वो इतने महान योद्धा होते हुए भी पराजित हो गए। तो ब्रता जी मान लीजिए हमारे चारों तरफ ऐसा एक एटमॉस्फियर है कि लोग नेगेटिव ही नेगेटिव दिए जा रहे हैं, तो मैं कैसे अपने आप में ऐसी पॉजिटिविटी पैदा करूं कि ये सारी नेगेटिविटी मुझसे दूर हो जाए या इनका प्रभाव ना पड़े?
1: देखिए दो चीजें हमें करनी है जी। हम जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रोज सवेरे ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं वो हमें जगाने के लिए होता है, क्योंकि हमारी चेतना सो जाती है सारा दिन न जाने क्या सुन के, किन चीजों का इफेक्ट, क्या क्या घटनाएं हुई, किसने हमसे क्या व्यवहार किया, तो सारा दिन हम बहुत सारी बातों के कारण विस्मृत हो जाते हैं। सवेरे जब हम ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं तो फिर से हमें जागृति आती है। एक तो हमें ये करना चाहिए, जिनको अपने अंदर सदा जागृति रखनी है, जागरूक रखना है, अपनी शक्तियों का नशा रहे और भगवान मेरे साथ है ये बहुत अच्छी फीलिंग रहे, तो इसके लिए रोज ईश्वरीय महावाक्य सुनना। मान लो ऐसा नहीं हो पाता तो यही चीजें अपने पास लिख के रखनी चाहिए, कम से कम हर एक के पास 20-25 ऐसे ब्यूटीफुल थॉट्स, एक्सेलेंट थॉट्स या थॉट्स ऑफ पावर होने चाहिए, जिन्हें वो रोज एक बार पढ़ ले 3 मिनट में, उससे उनमें जागृति रहेगी। ये तो हुई महावाक्यों का प्रभाव। लेकिन दूसरी बात मैं जो देखता हूँ और बहुतों को सिखाता हूँ, स्वमान के अभ्यास से जागृति रहती है। स्वमान एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है हमारा, सेल्फ एस्टीम, जिसमें हमारे अंदर क्या खूबियां हैं, हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमें क्या वरदान प्राप्त हुए हैं, हमें क्या योग्यताएं मिली हैं, कुछ गॉडली गिफ्ट हमें प्राप्त हुई हैं, कुछ हमारे पास अपने हैं जिनका हमें आभास नहीं है, वो कई चीज़ें देखकर हमें पता चलता कि अरे तुम्हारे पास तो ये है, ये सब संभव है। तो वो स्वमान को याद करने से, इसको हम स्मृति स्वरूप स्थिति कहते हैं, ये स्थिति आ जाएगी। इसलिए स्वमान की बहुत सुंदर प्रैक्टिस हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए, जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया वो भी इस बात के बारे में थोड़ा थोड़ा जस्ट जान लें और रियलाइज करें, कम से कम यहाँ से शुरू करें, हम भगवान के बच्चे हैं। तो उसके बहुत सारी क्वालिटीज हमारे अंदर हैं, चाहे 10 डिग्री हों, 20 डिग्री हों, 50 डिग्री हों, उसकी क्वालिटी हमारे अंदर हैं, उनका हमें एहसास रहेगा। तो कहीं कहीं जो मनुष्य सोचता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अरे कोई तो मदद कर नहीं रहा, अब क्या होगा, इस निगेटिविटी से, इस निराशात्मक पहलू से वो मनुष्य ऊपर उठ जाएगा।
0: बिल्कुल, मतलब एक प्रकार से हम किसी पे डिपेंडेंट भी ना रहें इसके लिए, बल्कि हम अपने स्वमानों की अच्छी प्रैक्टिस करें तो निश्चित रूप से हमारा ये जो उत्साह है, जो हिम्मत है, ये कायम रहेगा और हम निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। ये जो हमारे पास प्रथम मेल आया है भ्राता जी, ये है, ये कहते हैं कि मैं विजन शिक्षा पे आपका 9:30 बजे का समाधान प्रोग्राम आता है वो मैं देखती हूँ, मैं समस्या आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी माँ को 10-11 mm का स्टोन है गॉल ब्लेडर में, डॉक्टर्स ने ऑपरेशन बताया है। आप क्या कोई ऐसा समाधान बता सकते हैं जिससे ऑपरेशन ना करना पड़े और ये जो उनके गॉल ब्लेडर में जो ये स्टोन है वो दूर हो जाए? इन्होंने कहा है कि आप कृपया मेरा नाम ना लें, तो मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो कहते हैं कि उनका नाम टेलीविज़न पर ना लिया जाए, तो हम कई बार उनके नाम परिवर्तित करके उनकी समस्याओं को लेते हैं। तो आप समझ ही जाते होंगे कि आपकी समस्या पे हम विचार कर रहे हैं, तो कई बार हम आपका नाम नहीं लेते हैं यदि ऐसा होता है तो। और जब भी आप अपनी बातें हम तक पहुंचाते हैं तो आप निश्चिंत रहें, ये बातें हम तक ही रहती हैं और कहीं नहीं जाती, तो आप अपनी बातें खुल के हम तक पहुँचा सकते हैं।
1: देखिए, जो गॉल ब्लैडर के स्टोन की बात है, बहुत केसेज में ऐसा देखा गया कि डॉक्टर्स के पास इसका कोई होता नहीं और सिवाय गॉल ब्लैडर को निकाल दें। लेकिन अभी मैं हरियाणा के बल्लभगढ़ में और फरीदाबाद में गया, वहाँ हमें एक ऐसी लेडी मिली जो हमारे इस ईश्वरीय ज्ञान में 4-5 साल से आती है और समाधान प्रोग्राम रोज देखती है। एक्चुअली ये बहुत बड़ा मैजिक था। दूसरी एक गॉल ब्लैडर वाली बहन हमारे पास बैठी थी जिसको डॉक्टर ने कह दिया था कि इसको निकालना ही पड़ेगा, और निकालने के बाद डॉक्टर्स तो नहीं बताते लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफें होती हैं, कॉम्प्लिकेशन होते हैं, भोजन हजम नहीं होता, गैस एसिडिटी बहुत रहती है, तो जीवन एक तरह से दुभर हो जाता है। तो ये अपना अनुभव सुना रही थी कि मेरे को भी गॉल ब्लैडर में कई स्टोन हो गए थे और समाधान कार्यक्रम में जो ये प्रयोग सिखाए जाते हैं, मुझे पूरा विश्वास हो गया। मैंने डॉक्टर को कहा नहीं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं, ऐसे ही ठीक करेंगे हम। तो डॉक्टर भी हैरान कि ऐसे कैसे ठीक कर लोगी तुम, इसका तो कोई तरीका ही नहीं है। और सचमुच उसने बहुत आत्मविश्वास के साथ ये जो प्रयोग किए 1.5 मास और उसके स्टोन समाप्त हो गए। मुझे ये अनुभव अपने दर्शकों को सुनाना था, 6 दिन पहले।
0: ये तो बहुत बड़ी एक
1: बहुत बड़ी। और वो उस दूसरी बहन को कह रही थी तुम क्यों ऑपरेशन कराती हो, मेरा ठीक हो सकता है तो तुम्हारा भी हो जाएगा, छोड़ो इसको ऑपरेशन को, बिल्कुल ये करो। तो वही 4 विधि मैं सबको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ। देखिए, बहुत सुंदर स्पिरिचुअल थेरेपी है और हमारे सभी भाई बहने, हमारा जो ये संपूर्ण ग्रुप है जो इन बीमारियों पर भी काम कर रहा है और बहुत सुंदर सुंदर जो अनुभव सबको हो रहे हैं, मैं कहूँगा कि वो सबको सुनाएं, सिखाएं सबको। तो पहला है कि रात को सोने के समय जब बिल्कुल नींद आने लगे, क्योंकि तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जग जाता है, अंतर्मन जग जाता है, तब वो बहुत आत्मविश्वास के साथ अपने अंदर संकल्प करें, मेरे गॉल ब्लैडर के स्टोन बाहर निकल गए हैं, समाप्त हो गए हैं, मेरा गॉल ब्लैडर परफेक्टली काम कर रहा है, अब कोई स्टोन बचा नहीं, अब परफेक्ट है, मेरा गॉल ब्लैडर परफेक्ट है, मैं संपूर्ण हेल्दी हूँ, ये विचार करके सोएं। इससे सबकॉन्शियस माइंड इन संकल्पों को रिसीव कर लेगा और वो सारी रात स्टोन्स को निकालने में लग जाएगा, तो स्टोन का चूरा होगा वो निकल जाएंगे, तो बहुत सहज एक तो काम ये हो जाएगा। दूसरा, चार्ज्ड वाटर पीना है, पानी को चार्ज करके पीना है। हमने कई बार ये बात अपने सभी साथियों को, दर्शकों को बताई है, पानी लो गिलास में, उस पर नज़र डालो, दृष्टि डालो, 7 बार संकल्प करो। 2 संकल्प हैं, चाहे तो मैं परम पवित्र आत्मा हूँ या मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। पानी चार्ज हो गया यानी दवाई बन गया
0: जी,
1: इसमें बहुत बड़ी ताकत भर गई, इसको पिएंगे संकल्प से, इससे ये स्टोन डिजॉल्व हो जाएं, गल जाएं और बाहर निकल जाएं। ऐसा 4-5-7 बार थोड़ा थोड़ा पानी पी लें, आधा आधा गिलास, बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। और तीसरा होता है गॉल ब्लैडर को एनर्जी देना
0: जी।
1: अब एनर्जी देने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है, कई लोग इस पे विश्वास नहीं करते, पर हर व्यक्ति देख सकता है। देखिए, अपने हाथ ऐसे मलें और आप करके देखिए, आपको अनुभव होगा। और मन में संकल्प करें 3 बार, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अब देखिए, दोनों हाथ छोड़ के देखिए, हाथों में कितनी एनर्जी आ गई है
0: जी, महसूस होती है, ये नजदीक आते
1: हैं। अब ये एनर्जी आ गई तो राइट हैंड अपना रख दें गॉल ब्लैडर पर और संकल्प करें एनर्जी जा रही है, जो भी स्टोन्स हैं उनको पिघला रही है, डिजोल्व कर रही है, वो समाप्त हो रहे हैं। 1 मिनट रखें ऐसा 5 बार एक टाइम कर लें, 5 बार दोपहर को कर लें, 5 बार रात को कर लें, 15 मिनट इसके लिए दें। बहुत सुंदर थेरेपी, जैसे लोग रेकी देते हैं ना, समझ लो रेकी से 100 गुनी पावरफुल ये एनर्जी गॉल ब्लैडर को जाएगी।
0: जी।
1: और चौथी चीज होती है कि हम योग अभ्यास करेंगे 1 घंटा रोज। बस सिंपल योग अभ्यास, एक पावरफुल योग अभ्यास जिसमें हम शिव बाबा से किरणें ले रहे हैं, ऐसे अनुभव में आएंगे।
0: जी।
1: शक्तियों की किरणें आ रही हैं, कभी प्योरिटी किरणें आ रही हैं और इस बीमारी को नष्ट कर रही हैं। ये 4 चीजें किसी भी बीमारी पर प्रयोग की जाएं तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। लास्टली मैं जोड़ दूं इसमें, अभी अभी हमने कभी चर्चा की थी अपने दर्शकों के सामने, 3 मास पहले का केस था, बोन कैंसर एक व्यक्ति को, और इतना तड़फता था कि परिवार वाले भी कहते थे ये मर जाए तो सुखी हो जाए। 7 दिन में उसका दर्द गया, वो उसका बोन कैंसर ठीक हुआ, और आज उसकी बहन यहाँ आई, उसने मुझे गुड न्यूज दिया कि उसने ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लिया है।
0: क्या बात है।
1: और हम भी बहुत खुश हुए।
0: ये तो बहुत
1: जो मृत्यु सैया पर था वो फिर से अपनी ड्यूटी पे चला गया एनर्जेटिक होने के लिए। यही 4 प्रयोग थे।
0: जी, जी।
1: तो इन प्रयोगों के द्वारा बड़े से बड़े रोग को भी ठीक किया जा सकता है।
0: तो ये भी इस प्रयोग को जरूर करें प्रता जी, और उसके पश्चात फिर हमें भी, जैसे ये खुशखबरी आपने सुनाई है अभी लेटेस्ट, जैसे आपने कहा बहादुरगढ़ का कितना सुंदर समाचार, और इसी विषय से ही जुड़ा हुआ उनका भी केस था, और ये बोन कैंसर की तो बहुत बड़ी
1: आजकल बहुत हो रहा है। मैं एक चीज और सुना दूं, अनुभव सुनकर हमारे सभी दर्शक बड़े प्रसन्न होंगे। फरीदाबाद का ही केस है। तो कोई एक ऐसी बहन जिसका पति लंबे समय से 20 साल से ज्ञान ले रहा था, लेकिन इसको ज्ञान पसंद नहीं था, ये विरोध करती थी, बहनों को भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। अब ये हम आ गए थे प्रोग्राम के लिए, योग भट्टी के लिए, तो ये आई बहन से मिलने। अब बहन मिलना नहीं चाहती थी कि ये फिर कुछ बुरा भला बोलेगी, तो उसने कहा नहीं मैं मिलूंगी। तो कहा क्यों, सूरज भाई आ रहे हैं ना, मैं उनकी फैन हूँ, क्या हुआ भाई तुम्हें। अब ये तो आश्चर्यचकित कि जो जो प्रयोग वो सिखाते हैं वो मैं सब करती हूँ, मेरे लड़कों की, मेरी लड़की की, हमारे परिवार की जो समस्याएं थी सभी ठीक हो गई हैं। अब मैं वो नहीं रही हूँ पहली वाली अभी, जिसको अभी ज्ञान योग नहीं है। हम बड़े आनंदित हुए कि देखो विश्वास के साथ यदि कोई व्यक्ति प्रयोग करता है तो उसका जीवन बहुत सफल, निर्विघ्न, और जो भी समस्याएं जीवन में आती हैं वो समाप्त हो जाती हैं, और मनुष्य को लगता है कि ईश्वरीय शक्तियां किस तरह काम करती हैं।
0: सच में ये तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी एक खुशखबरी वाली बात है व्रता जी, कि कैसे लोगों के जीवन से इस प्रकार की जो भी तकलीफें थी, समस्याएं से थी, दूर हो गई। और हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है जब ऐसे अनुभव सुनने को मिलते हैं कि सच्ची, जब ऐसे प्रयोग किए गए और लोग अपनी तकलीफों से मुक्त हो गए। हम कामना करेंगे कि इनकी भी जो माताश्री हैं उनके भी गॉल ब्लैडर से ये स्टोन ऐसे ही मूव हो जाए। प्रता जी अगले मेल की ओर मैं लिए चलता हूं आपको। ये हमारे पास इलाहाबाद से आया है और लिख रहे हैं सुनील जी, ये कहते हैं आई एम इन टच विद ब्रह्म कुमारीज एंड केम थ्रू माय लौकिक सन व्हाइल सीइंग अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज ऑन टीवी इन अगस्त 2009। नाउ लौकिक सन इज स्टडिंग इन कोटा राजस्थान एंड प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एंड लिविंग इन हॉस्टल। ही सेज दैट ही इज स्टडिंग बट ही इज नॉट सिटिंग इन प्रिपरेटरी एग्जाम एंड नॉट ओबेइंग मी। लेट मी नो हाउ टू चेंज हिम।
1: ये
0: बच्चों की भी कई समस्या, पेरेंट्स
1: के लिए बच्चों की बहुत समस्या होती है, विशेषकर कोटा में जब वो जाते हैं। कोटा एक ऐसा कोचिंग सेंटर है भारत का जहाँ लाखों स्टूडेंट्स हैं, हम भी वहाँ गए, तो बताइए सारा एरिया अब स्टूडेंट्स का है। अब स्टूडेंट्स हैं, सभी युवक होते हैं, लड़के लड़कियाँ सब, तो कुछ भी करते हैं, किसी के भी संग में आते हैं, कोई गरीब घर से, कोई अच्छे घर से, किसी की बैकग्राउंड कैसी, किसी कैसी, तो वहाँ ये समस्या लोगों के सामने आ रही है। बुरी आदतें, एडिक्शंस, कुछ व्यसन जो वहाँ कोटा में खास प्रचलित हैं वो उनको लग जाते हैं। अब देखिए माँ बाप का तो चिंतित होना बड़ा स्वाभाविक है, वो पैसा देकर उसे पढ़ा रहे और वो उसकी आशाओं के दीपक हैं, उम्मीदों के सितारे हैं, तो वो भी चाहेंगे कि ये अपने इस कोचिंग में
0: लक्ष्य से भेजा गया है
1: और क्लियर करें
0: जी।
1: तो इसमें कुछ चीजें यूज की जा सकती हैं। पहली चीज तो वही, ये बहुत शुभ भावनाएं उस आत्मा के लिए रखें, बिल्कुल पॉजिटिव थॉट्स और शुभ भावनाएं। ऐसे में क्या होता है कि माता पिता के मन में थोड़ी निगेटिविटी थोड़ा गुस्सा अपने बच्चे के लिए, थोड़ी नफरत सी भी कि इसकी पिटाई करें जाके, इसको वापस ले आए, आगे नहीं पढ़ाएंगे, क्रोध आदि रहता है। ये बैड एनर्जी उसको जाती है और उसकी निगेटिव एनर्जी और जागृत हो जाती है, वो उन कामों में और ज्यादा उमंग उत्साह से लगने लगते हैं। तो एक तो इनको अपने मन में उसके लिए प्रेम, आत्मिक दृष्टि, वो आत्मा है, देवकुल की बहुत अच्छी आत्मा है, वो भी भगवान का बच्चा है, केवल मेरा बच्चा नहीं भगवान का बच्चा है, इसको सद्बुद्धि प्राप्त हो, इसका कल्याण हो, इसके विचार सुंदर हो, ऐसे संकल्प और ऐसी प्रैक्टिस सवेरे उठते ही करना है। होता क्या है कि बच्चों का इफेक्ट माँ बाप पे होता है, और जब वो उठेंगे वही इफेक्ट के साथ उठेंगे, और वो निगेटिव एनर्जी सवेरे के समय जब बच्चों को जाएगी तो उसका बहुत बैड इफेक्ट होगा। तो उठते ही विशेष रूप से उसे आत्मा देखें और एक संकल्प दें, बहुत अच्छी आत्मा है मेरा बेटा, भगवान का बच्चा, पवित्र है, ये तो देवकुल का है, तो गुड फीलिंग जाएगी, शुभ भावनाएं, इसको सद्बुद्धि प्राप्त हो, एक काम तो ये करना है। उसी के बाद फिर चाहे 5 बजे कर लें तो उसे आत्मा देखकर रोज 10 मिनट गुड वाइब्रेशंस देने हैं, यानी योग करना बहुत अच्छा। शिव बाबा की सर्वशक्तिवान की किरणें मुझ पर आ रही हैं, ये अभ्यास करके फिर मुझ आत्मा से शक्तियों की किरणें उस आत्मा को जा रही हैं, इसे उसे वाइब्रेशंस जाएंगे, फिर माइंड टू माइंड उससे बात करेंगे, आत्मा देखकर तुम बहुत अच्छे हो, अरे तुम्हारा भविष्य तो बहुत उज्ज्वल है, तुम तो अपने कुल का नाम रोशन करोगे, अब पढ़ाई पे जरा ध्यान दो, अब ये सब बाकी जो संग हैं बुरी चीज़ें इनको छोड़ दो, एग्जाम में बैठो, तुम्हारा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो गुड थॉट्स उसको रोज देने हैं, 21 दिन तक अवश्य देने हैं, या जितना भी कम टाइम बचा हो उतने टाइम में रोज देने हैं। बस इतना करेंगे तो उसके विचारों में अवश्य परिवर्तन आएगा, और बिल्कुल आशा रखें कि वो बदल जाएगा।
0: जी जी जी, चलिए हमारी भी आशा और शुभकामनाएं रहेंगी ग्रेता जी की, इनको इनका जो सुपुत्र है वो अच्छी दिशा में लगा रहे और इनकी बात माने, क्योंकि हर एक माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी बात माने।
1: बिल्कुल अच्छी भावना है, लेकिन ये अपने से पूछें, हम अपने माँ बाप की कितनी मानते थे, तो इन्हें भी शायद पता चलेगा जब हम युवक थे तो हम क्या क्या करते थे। तो ये एक बड़ी सूक्ष्म गति काम करती रहती, हम अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहे थे तो हमारे बच्चे भी हमारे आज्ञाकारी रहेंगे, जो व्यवहार हम करते हैं वही हमको प्राप्त होता है। फिर हमें तो भगवान बहुत सारी आज्ञाएं कर रहा है, उसकी कितनी शुभ भावनाएं हैं हमारे लिए, हम उसकी कितनी बात मानते हैं। मैं तो हंसी में कह दिया करता हूँ, तुम भगवान की नहीं मानते, जिससे तुम बहुत प्यार करते हो, जिसके बारे में तुम सोचते हो कि वो तो परम कल्याणकारी है, वो जो कुछ हमें कह रहा उसमें जन्म जन्म के लिए हमारा कल्याण है, तुम उसकी नहीं सुनते तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कहाँ से सुनेंगे भला, तो तुम उसकी सुनो, वो तुम्हारी सुनेंगे, तो बिल्कुल कल्याण हो जाएगा।
0: ने कहा है ना व्रता जी कि आप भगवान को तो मानते हैं लेकिन क्या भगवान की भी मानते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है। जी व्रता जी, मैं आपको अगली मेल की ओर लिए चल रहा हूँ। ये हमें श्रुति जी ने भेजा है, ये कहती है, ओम शांति, माय नेम इज श्रुति, आई एम फ्रॉम कोलकाता, आई एम इन ज्ञान सिंस 1.5 ईयर। भाई जी, आई हैव हर्ड दैट इफ वी गिव कमांड टू अवर मन बुद्धि बाय सिटिंग ऑन द सीट ऑफ स्वराज्य अधिकारी देन इट विल फॉलो अवर कमांड्स। आई गिव द कमांड बट इट डजंट सीम टू फॉलो मी, इज आई एम अ स्टूडेंट एंड हैव माई एग्जाम्स नियर बाय, आई हैव टू स्टडी विद लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बट इट डजंट हैपन, प्लीज हेल्प।
1: देखिए ये बात बहुत बड़ी है। इनका कहना है कि मैं स्टूडेंट हूँ और मैं स्वराज अधिकारी का बहुत अच्छा अभ्यास करती हूँ, लेकिन हाँ मन बुद्धि मेरी बात तो सुनते नहीं है, तो मेरी एग्जाम नजदीक है तो मैं क्या करूँ। मन बुद्धि के हम मालिक बन जाएं, इसके लिए हमें एक थोड़ी सी लंबी साधना की जरूरत पड़ती है। मैं इसको बहुत एसेंसफुल बना देना चाहता हूँ, जिसमें लोग ये सुन के परेशान ना हो कि लंबे काल के अभ्यास की हमें जरूरत पड़ती है। अब इनका एग्जाम 15 दिन के बाद ही है तो लंबा काल तो इन्हें मिला नहीं है। एक तो ये सवेरे रोज उठकर 7 बार संकल्प करेंगी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम भगवान के बच्चे हैं, वो सर्वशक्तिवान है, हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान है, क्योंकि उसने हमें अपनी शक्तियां प्रदान की हुई हैं। इससे सफलता के उसके द्वार खुलेंगे, अब रही बात ये स्टडी की और मन बुद्धि को आदेश देने की, इन्हें ये फीलिंग सारा दिन चलते फिरते भी करनी होगी, मैं आत्मा हूँ और मन बुद्धि की मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ, साथ में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, क्योंकि मालिक अगर शक्तिशाली है तो सब उसकी आज्ञा को मानेंगे। तो ये दो स्वमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, स्वराज अधिकारी हूँ, चलते फिरते याद करें और अपने को फीलिंग देती रहे, मैं मन बुद्धि की मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं तुम्हारी मालिक हूँ। फिर जब स्टडी करें तो बस एक मिनट अभ्यास कर ले, मैं आत्मा यहाँ हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ, मन को आदेश दें तुम शांत रहना, बुद्धि को आदेश दें जो मैं पढ़ूँ जो मैं सुनूँ उसको तुम ग्रहण कर लेना, तो इसको अनुभव होगा कि मन बुद्धि इनकी बात मानने लगे। तो मालिक बनना पड़ेगा और शक्तिशाली मालिक, और बार बार इनको कमांड देने पड़ेंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि हम सारा दिन उनको फ्री तो नहीं छोड़ते
0: जी।
1: नौकरों को सारा दिन फ्री छोड़ दिया जाए, कोई काम नहीं, कहीं भी घूमो फिरो, फिर अचानक बुलाओ आओ काम करो, वो आनाकानी करेंगे ना,
0: उनकी आदत।
1: तो हमने कहीं अपने मन को भटका तो नहीं दिया है, हम कहीं पिक्चर्स तो नहीं देख रहे हैं, गंदी पुस्तकें तो नहीं पढ़ रहे, गंदे चित्र तो नहीं देख रहे, नेट पर गंदी साइट में तो नहीं जा रहे हैं। तो अगर हम इस तरह जा रहे हैं तो हम मन बुद्धि के मालिक कहाँ हुए। तो कई लोग ये गलती करते हैं कि अभ्यास भी करते रहते हैं और मन को भटकाते भी रहते हैं। तो मन को, विशेषकर विद्यार्थियों को जिनको अपने कैरियर को मतलब बहुत सुंदर बनाना है, उनको तो कुछ समय के लिए, बात एक दो साल की होती है, फिर जीवन आगे चलता है, तो सब चीज़ों से बिल्कुल बंद कर दें अपने को, ये इनसे हमारा कोई नाता नहीं, ये हमारे सब्जेक्ट नहीं। मैं हमेशा कहा करता हूँ, जैसे फिजिक्स का स्टूडेंट कॉमर्स की क्लास में थोड़ा ही जाएगा, किताबें थोड़ा ही खरीदेगा, कॉमर्स की किताबों में क्या क्या लिखा है, तो हमारा ये सब्जेक्ट ही नहीं है। अभी हमें दो साल बहुत अच्छा करना है, दो साल हमारा इनसे कोई नाता नहीं, ऐसा अपने को ट्रेंड करें, तब मन बुद्धि हमारे आदेश का पालन करेंगे।
0: बिल्कुल, मतलब लगातार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। ऐसी बात नहीं है कि एक ही बार हमने एक दिन किया या एक हफ्ते किया तो ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगे, हमारी बात मानेंगे। लगातार परिश्रम की आवश्यकता है, अभ्यास की आवश्यकता है। लता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की बहुत सुंदर प्रकाश और ज्ञान चर्चा के लिए। हमारे सभी दर्शकों को आपने बहुत सुंदर अनुभव युक्त बातें सुनाई हैं, और आज के अनुभव जो आपने सुनाए हैं सच मुझे बहुत प्रेरित और उत्साहित करने वाले हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, वास्तव में जीवन सुख और दुख का खेल है कहते हैं, लेकिन यदि हम आशा और उत्साह बनाए रखते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में जीत ही जीत प्राप्त होती है, सफलता ही सफलता प्राप्त होती है। और यदि असफलता प्राप्त भी होती है तो हम उसे निराश नहीं होते, हताश नहीं होते। इसीलिए यदि चारों तरफ का वातावरण नकारात्मक है भी, तो भी हम अपने उत्साह को बनाए रखें और एक शाबाश क्रिया जो हम लोगों ने पहले भी की थी वो जरूर करते रहें, अपना हाथ उठा के अपने पीठ की ओर ले जाएं और अपने पीठ को ही थपथपाएं कि शाबाश, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, और तुम जो चाहो अपने जीवन में कर सकते हो, क्योंकि परमात्मा तुम्हारे साथ है, सर्वशक्तिवान तुम्हारे साथ है। इन संकल्पों से अपने विश्वास को, अपनी हिम्मत को बनाए रखें और सफलता की ओर बढ़ते रहें। हमारी ढेर सारी शुभकामना है कि आपने अपने जीवन का जो भी लक्ष्य और ध्येय बनाया है उसे आप प्राप्त करें। नमस्कार।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीज़ें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूँ, सपोज़ पाँव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, ज़ोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पाँव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और ज़ोर से लगेगी, जितनी और ज़ोर से लगेगी दर्द और ज़ोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और ज़ोर से लगेगी। तो घाव को रहने दें या भरते जाएं? घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज़ फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज़ इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज़ को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, हाँ, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहाँ कुछ गिरा, यहाँ कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीज़ें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करें, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो इंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई। अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा। अब ईंट का जवाब किससे भेंगे?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: अब समझ में आया होगा कि ईंट का जवाब कैसे देनी है ना, कि जो हम फेंकते हैं वो वापस आता है। तो जब भी हम किसी के साथ डील करते हैं या बदला लेने के लिए सोचते भी हैं तो थोड़ा सिस्टर शिवानी जी की ये बातें याद कर लिया जाए। हालांकि दीदी ने ये भी बोला कि जैसे नेगेटिव सोचने का कोई लिमिट नहीं है, पॉजिटिव सोचने का भी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब मन नेगेटिव होता है तो सोचने का मन नहीं करता पॉजिटिव। तो क्या उपाय है? उपाय ये है कि आप अगर लिखना जानते हैं तो बिल्कुल आप एक नोटपैड ले लीजिए, एक डायरी का पेज ले लीजिए और उसमें लिखना शुरू करिए पॉजिटिव बातें। अगर उस व्यक्ति के बारे में पॉजिटिव नहीं सोचा जा रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या पॉजिटिव बातें हैं वो लिखना शुरू कर दीजिए। फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे वाइफ अच्छी है, मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरे भाई बहन अच्छे हैं और भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, घर दिया है ना, खाने के लिए दिया है, दो वक्त का रोटी दिया है, तो इसके लिए भी आप आभार व्यक्त कर सकते हैं। धीरे धीरे जिस व्यक्ति के प्रति आप नेगेटिव हो, उस व्यक्ति की कुछ अच्छाइयाँ तो ज़रूर होंगा, उस अच्छाइयों को देखने की कोशिश हम फिर बाद में कर सकते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल उपाय है, जब मन स्थिर नहीं है, नेगेटिव सोच रहा है बार बार, तो लिखने

प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। सो सुबह सुबह आपने बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें सुन लिया है और दुखों का कारण भी जान लिया है। आइए चलते हैं आज के दिन विशेष के बारे में जानते हैं। पंचांग के अनुसार आज 19 जुलाई में क्या कुछ है वो भी जान लेते हैं। सक्षम 1948 है, आचार्य शुक्ल षष्ठी रविवार, विक्रम संवत 2083 है, अंग्रेजी तारीख है 19 जुलाई सन 2026, सूर्य दक्षिणायन उत्तर गोल वर्षा ऋतु है, राहुकाल शाम को 5:30 से शाम को 7 तक है, षष्ठी तिथि अगले दिन तड़के 3:29 तक, उपरांत सप्तमी तिथि का आरंभ है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शाम को 6:12 तक, उपरांत हस्त नक्षत्र का आरंभ है, परिधि योग है शाम को 7:23 तक, उपरांत शिव योग का आरंभ है, कोलव करण है दोपहर 3:30 तक, उपरांत तोतिल करण का आरंभ है, चंद्रमा दिन रात कन्या राशि पर संचार करेगा। सूर्योदय का समय 5:35 पर हुआ है, सूर्यास्त का समय है 7:19 पर शाम को, चंद्रोदय का समय प्रातः 10:39 पर, चंद्र अस्त का समय रात्रि 10:34 पर। सूर्य और चंद्रमा की राशियां सूर्यदेव कर्क राशि में स्थित हैं और चंद्रदेव कन्या राशि में स्थित हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:55 से 4:41 तक था, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:55 तक रहेगा, अमृतकाल समय 10:56 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे पंचांग के साथ और इस्लामी हिजरी 1448 सफर और इतवार सरफा है आज के दिन और आज स्कंद षष्ठी भी है। चलते हैं वेदर रिपोर्ट्स की ओर। जयपुर में 36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक जा सकता है। बादल छाए रहेंगे आसमान पर, बारिश होने की संभावना है रात्रि के समय राजधानी जयपुर में। उदयपुर में 34 डिग्री अधिकतम, न्यूनतम 26 डिग्री, बारिश होने की संभावना नहीं है फिल वक्त। आबूरोड़ में 35 डिग्री अधिकतम, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और बारिश होने की थोड़ा बहुत संभावना है 50% तक। माउंट आबू में 24 डिग्री अधिकतम, न्यूनतम 20 डिग्री तक जा सकता है। बादल छाए रहेंगे, 80% से ज़्यादा बारिश होने की संभावना 50-50 है। पाली जिले में 28 डिग्री तक न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक जा सकता है, बारिश होने की संभावना नहीं है फिल वक्त। जोधपुर में 28 डिग्री तक न्यूनतम तापमान, अधिकतम 37 डिग्री तक जा सकता है, यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना नहीं है। बात करें सूरत में 35 डिग्री तक अधिकतम, न्यूनतम 27 डिग्री तक और यहाँ पर बारिश होने की संभावना है 80% से भी ऊपर, सुबह के समय भी और शाम के समय भी। मेहसाना में 28 डिग्री न्यूनतम, अधिकतम 36 डिग्री और यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, बारिश होने की संभावना नहीं है। राजकोट में 26 डिग्री न्यूनतम तापमान, अधिकतम 34 डिग्री तक जा सकता है, सुबह के समय थोड़ा बहुत बारिश होने की संभावना है राजकोट में और रात्रि के समय बादल छाए रहेंगे। गांधीनगर और अहमदाबाद के अंचल में 37 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम, अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक जा सकता है, थोड़ा बहुत बारिश होने की संभावना है। अगर बारिश होगी यहाँ पे तो थोड़ा जोरदार बारिश होगी एक बार में। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे अहमदाबाद और गांधीनगर को लेकर के। राजधानी दिल्ली के बारे में बात करें, 37 डिग्री सेल्सियस अधिकतम न्यूनतम 27 डिग्री तक जा सकता है, यहाँ पर बारिश होने की बहुत ही कम संभावना है 25% तक। कोलकाता में 32 डिग्री तक अधिकतम, न्यूनतम 37 डिग्री तक जा सकता है, 75% तक संभावना है बारिश होने की। बेंगलुरु में 55% तक संभावना है बारिश होने की, 29 डिग्री अधिकतम, न्यूनतम 21 डिग्री तक जा सकता है। मुंबई में 30 डिग्री तक अधिकतम, न्यूनतम 27 डिग्री तक जा सकता है और 98% तक चांसेस है भारी बारिश होने की। बात करें चेन्नई की, तो चेन्नई में 34 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक जा सकता है, 25% तक बारिश होने की संभावना है चेन्नई में। जिला सिरोही के बारे में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम 30 डिग्री तक जा सकता है, बादल छाए रहेंगे आसमान पर और 23% तक सिर्फ संभावना है बारिश होने की। और जिला सिरोही में हवा की शुद्धता के बारे में बात करें तो 78 है एक ही UI। आइए यहाँ पर लेते हैं एक अल्फिराम, मिलते हैं अल्फिराम के उस पार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM। गुड मॉर्निंग आबू।

पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। चलते हैं हम आबू रोड रेलवे स्टेशन पर। गोरखपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस 1940 एक घंटा 20 मिनट देरी से चलती हुई अभी 7:55 पर आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है और डिपार्चर का टाइम है 8:00। संभावित प्लेटफॉर्म क्रमांक है 2। वहीं पर आरावली एक्सप्रेस 1470 8:30 पर पहुंचेगी। संभावित प्लेटफॉर्म 1 है। ग्वालियर साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2257 संख्या वाली गाड़ी 15 मिनट देरी से चलती हुई 8:40 पर आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। संभावित प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 है। वंदे भारत एक्सप्रेस 1261 9:05 पर पहुंचेगी। गरीब नवाज एक्सप्रेस 16532 9:34 पर लगभग 24 मिनट देरी से चलती हुई पहुंचने वाली है। संभावित प्लेटफॉर्म 1 है। जम्मू तवी साबरमती एक्सप्रेस 19224 9:45 पर आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचने की संभावना है। और वहीं पर गाड़ी संख्या है अजमेर मैसूर एक्सप्रेस 16209 10:10 पर पहुंचेगी। जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 20496 संख्या वाली गाड़ी कैंसिल्ड है। योगा एक्सप्रेस 19032 10:50 पर पहुंचने वाली है। जी हां, जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस रद्द की गई है। गाड़ी 20496 वाली गाड़ी और 19032 वाली गाड़ी 10:50 पर पहुंचेगी। संभावित प्लेटफॉर्म 2 है। और वहीं पर प्रयागराज से 04111 संख्या वाली गाड़ी और ये गाड़ी जाएगी गांधी ग्राम तक और ये गाड़ी 11:00 पहुंचने वाली है आबू रोड रेलवे स्टेशन पर। जी हां, गांधी ग्राम तक जाएगी मेहसाना होकर के चांदखेड़ा होकर के, तो ये गाड़ी 11:00 पहुंचेगी आबू रोड रेलवे स्टेशन पर। दौलतपुर गांधीनगर एक्सप्रेस 19412 11:30 पर पहुंचेगी। साबरमती जोधपुर एक्सप्रेस 14822 11:40 पर पहुंचेगी। तो ये कुछ गाड़ियों के बारे में जानकारियाँ अब से 12:00 तक आने वाली आबू रोड पर।

8:02 रेडियो मधुबन की घड़ी पर आइए जानते हैं कुछ बातें जो गोल्ड रेट्स और सिल्वर प्राइसेस के साथ पेट्रोल और डीजल के साथ जुड़ी हुई हैं। 24 कैरेट प्योर गोल्ड है 1,65,472 रुपये विथ मेकिंग चार्जेस एंड ऑल जीएसटी इंडिया में, और 22 कैरेट गोल्ड की बात करें तो बेस वैल्यू 1,31,450 है, बट टोटल अमाउंट 1,51,641 है। 18 कैरेट बेस वैल्यू 1,07,620 रुपये है, अगर मेकिंग चार्जेस जीएसटी मिलाएं तो 1,24,150 रुपये है। भारत में चांदी के दाम पर किलोग्राम है 2,30,000 रुपये पर ग्राम, 230 रुपये। पेट्रोल और डीजल की बात करें तो राजस्थान में 112.69 रुपये पेट्रोल प्रति लीटर, और इसमें 50 पैसे की कम हुई है पेट्रोल। और बात करें राजधानी दिल्ली की तो यहाँ पर 102.12 रुपये है पेट्रोल प्रति लीटर। डीजल की बात करें राजस्थान में है 97.78 रुपये, राजधानी दिल्ली की बात करें तो 95.20 रुपये है। तो ये कुछ पेट्रोल और डीजल के बारे में हम बात कर रहे थे। अब हम चलते हैं एलपीजी की ओर। एलपीजी है डोमेस्टिक 941.50 रुपये। मुद्रा जगत की ओर चलते हैं, एक यूएसडी के मुकाबले इंडियन करेंसी है 96.51 रुपये, यूरो के मुकाबले है 110.39 रुपये, एक जीबीपी के हिसाब से 129.82 रुपये हैं। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे अर्थव्यवस्था के साथ भी। लेते हैं यहाँ पर एक अल्पविराम। अल्पविराम से पहले सेंसेक्स है 78,151.5 पर, जब बाजार बंद हुआ है शुक्रवार को लगभग 1.25% बढ़ोतरी दर के साथ। निफ्टी वहीं पर 24,334.30 पर है 1.09% बढ़ोतरी दर के साथ।

0: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, समय से पहुँचा दूंगा।
1: इधरा इधरा इधरा, क्या पहुँचा दोगे हैं? कहाँ पहुँचा दोगे? मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुँच जाओगे। सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे हैं? कोई ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? कोई जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना, क्या समझे? हाँ, मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेबरा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: ये तंबाकू क्या होता है?
4: अरे तिकुनी पता क्या, इसमें पता है लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
5: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
3: अच्छा तो फिर मेरे नंबर कम आए तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
4: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
6: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है? बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।

वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आबू। आइए जानते हैं कुछ बातें जो जुड़ी हुई है हमारे आसपास के घटनाक्रमों के साथ, कुछ सूचनाएं भी जानते हैं दैनिक भास्कर के जरिए। श्री सिरोही जैन संघ के तत्वावधान में रविवार को आचार्य जग प्रज्ञा सुरवीर आदि थाना का चतुर्मास प्रवेश समारोह होगा। मंगल प्रवेश सुबह 8:45 पर कांच मंदिर सर के एम स्कूल सिरोही से शुरू होगा। आचार्य के सिरोही आगमन को लेकर सकल जैन समाज में उत्साह है, श्रद्धा का माहौल है। चतुर्मास में धर्म आराधना होगी, प्रवचन होंगे और सो अध्याय भी होगा। 19 स्कूलों के नए भवन अटके, अस्थाई भवनों में पढ़ाई। और इसके साथ साथ सिरोही में आज ठाणा का चतुर्मास मंगल प्रवेश का प्रोग्राम है और वहीं पर बांगचूक अस्पताल में भी अनशन पर ड्रिप उन्होंने नहीं ली है। भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों की हुई महापंचायत। नेशनल हाईवे निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के विरोध में गोयली स्थित खेतलाजी मंदिर परिसर में गोयली रामपुरा सहित आसपास के गांव के ग्रामीणों की महापंचायत हुई। इसमें बड़ी संख्या में किसानों और ग्रामीणों ने भाग लेकर उपजाऊ कृषि भूमि और पुस्तैनी कुओं के अधिग्रहण का विरोध किया है। सिरोही जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में शनिवार को मौसम के बदले मिजाज ने लोगों को पसीना छुड़वा दिया। दिन भर आसमान में धूप और बादलों की आंख मिचोली चलती रही, वातावरण में उमस बढ़ गई। सुबह से ही बादलों की आवाजाही शुरू हो गई थी। दोपहर में तेज धूप निकली, हवाओं की रफ्तार थमी, उमस और बढ़ गई। तापमान एक बार फिर 32 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं से आर्द्रता का स्तर ऊंचा बना हुआ है। आने वाले दिनों में जिले में अच्छी बारिश नहीं हुई तो उमस का ये दौर आगे भी परेशान कर सकता है। बादलों की लगातार आवाजाही देखकर किसानों को जल्द बारिश की उम्मीद है, इससे चिपचिपी गर्मी से राहत मिलेगी।

अबुरुड में ब्रह्मा कुमारी में त्रिपुरा के अनुसूचित जाति कल्याण पशु संसाधन विकास और मत्स्य पालन मंत्री सुधांशु दास 3 दिवसीय प्रवास पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू रोड और माउंट आबू पहुंचे। शांतिवन पहुंचने पर ब्रह्मा कुमारी के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके मृत्युंजय जी ने मेडिकल प्रभाग के सचिव डॉक्टर बनारसी लाल शाह जी, सीए जगदीश जी एवं ललित जी, बीके शिविका सहित पद अधिकारियों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। संस्थान की गतिविधियों पर चर्चा के दौरान मंत्री दास जी ने कहा कि मौजूदा समय में लोगों के जीवन में अध्यात्म और राजयोग जरूरी है, इससे कार्य व्यवहार में सकारात्मकता विकसित होती है। वहीं भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान सिरोही में सॉफ्ट टॉयज मेकिंग एंड सेलिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। समापन समारोह में आरसीसी निदेशक सवाराम मीणा और ईडीपी सूरजमल पवार जी और डोमेन ट्रेनर जेना तंवर जी ने प्रशिक्षण करने वाली ट्रेनीज को प्रमाण पत्र बांटे। सिरोही में नगर परिषद सिरोही ने हरियालों राजस्थान और एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत शनिवार को गोयली चौरा के पास अरविंद पवेलियन के दीवार के नजदीक पौधारोपण किया। आबुरोड में राजकीय प्राथमिक विद्यालय कटेरिया फली में चरण पादुका अभियान के तहत स्कूल के 50 जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क जूते वितरित किया गया। अभियान डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी के प्रेरणा से चल रही है।

एनआई एक्ट के 116 मामलों का निपटारा कर 2 करोड़ से ज्यादा रुपए का अवार्ड पारित किया गया और लोक अदालत में समझौते से खत्म होगा विवाद। विशेष लोक अदालत में 31 केस निपटे और लगभग 31 लाख के अवार्ड हैं।

वहीं पर बात करें, गोली चौराह पर नाला टूटा और हादसे का खतरा है, और ये सूचनाएं हम आपको दैनिक भास्कर के जरिए पहुंचा रहे हैं। शहर के गोली चौराह से पीडब्ल्यूडी कॉलोनी एवं हाउसिंग बोर्ड जाने के लिए रास्ते पर 15 दिन पहले भारी वाहन से नाला क्षतिग्रस्त हो गया है। नगर परिषद की ओर से नाले को ना तो सही कराया गया, ना ही स्थायी समाधान किया गया। और वहीं पर सीओई में आंबेडकर चौराहा से बस स्टैंड वाली शहर की व्यस्ततम सड़क से डामर उखड़कर कंक्रीट बिखर गई है और इसमें हादसे होने की पूरी संभावना है। बारिश के दिनों में यहां पर पानी भरने से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे आसपास के घटनाक्रमों के साथ, कुछ सूचनाओं के साथ। लेते हैं यहाँ पर आप सभी से अलविदा, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM और 8:45 पर आप सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सौजन्य से समाचार प्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 9 बजे आप सुनेंगे आपका स्वस्थ आपके हाथ। और आज के विशेष कार्यक्रमों के लिए आप जुड़े रहिए रेडियो मधुबन के साथ। घर ऑन एयर आप सुन पाएंगे 12:30 रेडियो मधुबन पर, बहुत ही खास एपिसोड सुनेंगे। और इसके साथ साथ 2 बजे आप सुनेंगे जुनून कार्यक्रम, 6 बजे और 6:30 आप लव यू जिंदगी और एक गीत एक नारा सुन सकते हैं। रात्रि को 9 बजे आप यशस्वी भारत सुनेंगे, रात्रि को 8 बजे आप मधुबन अनप्लग सुनेंगे और शाम को 7 बजे आप मेरा गांव मेरा आंचल सुनेंगे। शाम को 4 बजे विशेष कार्यक्रमों में से जीवन रोशनी और 5 बजे हम राही कार्यक्रम आप सुनेंगे। वंदे मातरम कार्यक्रम सुबह 10 बजे सुन सकते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। बेहतरीन कार्यक्रम आप आज संडे के दिन सुन सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, नमस्ते।

0: मैं ढूंढई गांव से हूँ। आप सब सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज़, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: क्वालिटी ऑफ हेल्थ। जब हम हेल्थ के बारे में कहते हैं तो देयर आर टू एस्पेक्ट्स जिस पर हमको ध्यान देना होगा। नंबर वन इज एक्सरसाइज, और ये बहुत बहुत जरूरी है कि हर दिन हम सुबह उठकर थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। आप कहेंगे सर वेयर इज द टाइम टू डू एक्सरसाइज। इसे एक बार भगवान से इंटरव्यू लिया गया और भगवान से एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा गया, आपको मनुष्यों को देखकर सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात क्या लगता है? और मालूम है भगवान का जवाब क्या था? God's beautiful answer was, the thing that surprises me the most about these human beings, they invest their complete health to gain wealth. And after many, many years, they have to reinvest their complete wealth to regain health. कहा जाता है जान है तो जहान है। और बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा समय अपने लिए निकालें टू डू सम एक्सरसाइज। अच्छा, अब एक्सरसाइज तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन हमारा रिसर्च कहता है कि एक्सरसाइज करते समय आप किस मानसिक अवस्था से आप एक्सरसाइज कर रहे हो। अब लोग सुबह उठकर जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, लेकिन अगर कोई गुस्से से वॉकिंग कर रहा है तो इतना इफेक्ट नहीं होगा जितना होना चाहिए। इसलिए हमारा रिसर्च कहता है कि जो भी आप कार्य कर रहे हो अगर आप बहुत खुशी से करते हो तो उसका जो इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत रिमार्केबल होता है। इसे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में कुछ एक एक्सरसाइज को डिवाइस किए गए विच आर कॉल्ड एज साइको फिजिकल डायनेमिक एक्सरसाइजेस। साइकी मीन्स माइंड और फिजिकल मीन्स शरीर, और इन दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन होना बहुत बहुत जरूरी है। तो कुछ एक एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊंगा विच इज बीन डिवाइस्ड बाय डॉक्टर गिरीश पटेल, अ वेरी फेमस साइकियाट्रिस्ट फ्रॉम बोरीवली बॉम्बे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये एक्सरसाइजेस आपको बहुत बहुत पसंद आएंगे। तो सभी स्ट्रेट होकर, अलर्ट होकर बैठे, रेडी ऑल ऑफ यू। अच्छा अच्छा, सबसे पहले आपको ये बहुत खुशी से, बहुत आनंद के साथ करना है। अच्छा, कैसे करना है? जब मैं कहूंगा वन, तो आप जोरदार ताली बजाना और महसूस करना कि आप उस सुप्रीम सर्जन जो ईश्वर है उनको टच कर रहे हो। और जब मैं कहूंगा टू, तो महसूस करना है कि उनसे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस उतर उतर कर आप तक पहुंच रहे हैं। करेंगे सभी? हाँ, चलिए। ओके, हियर वी गो। वन टू, खुशी से करना, आपके चेहरे में मुस्कुराहट भी होनी चाहिए, ठीक है? ओके, एक और बार करेंगे। वन टू कर। अच्छा, जैसे आप उस सुप्रीम सर्जन को टच करते हो तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारे जो शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं, अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं डिजीजेस होने का कारण क्या है, इट इज बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स, राइट? और जैसे ये टॉक्सिन्स शरीर से फ्लश आउट हो जाती है, वी बिकम डिजीज फ्री। लेकिन आजकल देखा गया है शरीर से ज्यादा टॉक्सिन्स हमारे मन में होते हैं, स्ट्रेस, फियर, टेंशन, डिप्रेशन, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। ऐसे एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज मुझे अच्छा लगता है, और वो है जब मैं कहूंगा वन, तो आप महसूस करना कि अगर आपके शरीर में और मन में अगर टॉक्सिन्स है तो जब मैं कहूंगा वन, तो आप इस तरीके से उसको झटक दो, और जब मैं कहूंगा टू, तो उसको थोड़ा धक्का मार के बाहर फेंक, ठीक है? बहुत खुशी से, बहुत आनंद से करना। चलो वन टू, थोड़ा धक्का मार दो, वेरी गुड वेरी गुड। एक और बार वन, हाँ टू, करो करो करो, या या या। फ्रेंड्स, ये जो रोड में जो गाड़ियां चलती है उसमें हम पेट्रोल यूज करते हैं, और जो एरोप्लेन जो हवा में चलती है उसमें भी हम फ्यूल यूज करते हैं। अच्छा बताइए फ्रेंड्स, ये दोनों क्वालिटी ऑफ फ्यूल कौन सा अच्छा होगा इफ यू कंपेयर बोथ? राइट आंसर, वेरी इंटेलिजेंट ऑडियंस, यस, द क्वालिटी ऑफ फ्यूल। उसी तरह द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स डाउन टू हेल्थ इज हम अपने शरीर में किस प्रकार का फ्यूल डाल रहे हैं, एंड दैट इज द क्वालिटी ऑफ आवर डाइट। अब प्रश्न उठता है कि हम किस प्रकार का भोजन स्वीकार करें। इसलिए हमारा रिसर्च कहता है दिस ह्यूमन सिस्टम इज मेंट फॉर प्योर वेजिटेरियन फूड, दिस ह्यूमन सिस्टम इज नॉट मेंट फॉर नॉन वेजिटेरियन फूड। अब नॉन वेजिटेरियन फूड से क्या प्रॉब्लम्स है उसके तो हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो हमारा क्वालिटी ऑफ डाइट क्या होना चाहिए? प्योर वेजिटेरियन फूड के साथ साथ जरूर भोजन के पहले जरूर सलाड को लीजिए। ओके, ईट लॉट ऑफ स्प्राउट्स, फ्रूट्स, जूसेस। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है बहुत शक्तिशाली बन जाती है। साथ साथ में एक और बात पे ध्यान खिंचवाना चाहता हूँ। कहा जाता है जैसा अन्न होगा वैसा मन बन जाता है। इसे मैं आप सभी बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप भोजन बना रहे हैं तो बहुत खुशी और आनंद से भोजन बनाइए। अगर आपने बहुत गुस्से से भोजन बनाया, यही हमारा जीवन है क्या, जिंदगी भर हम भोजन बनाते रहें? अगर इस एटीट्यूड से भोजन बनाया तो जो भी आपका हाथ का बनाया भोजन खाएंगे तो उनके भी विचार जो होंगे वो डामाडोल हो जाएंगे। राइट। भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा कोई शास्त्र में नहीं लिखा है कि बहनें ही भोजन बना सकते हैं, आप भी तो थोड़ा हेल्प कर सकते हो ना, तो एक बार ट्राई करके देखना, है ना। जब बहन भोजन बना रहे हैं तो बहुत किचन में जाना, बहुत प्रेम से एक दो टमाटो कट करके देखना और बहन के चेहरे को देखना, उनका चेहरा एकदम गुलाब की तरह खिल जाएगा। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इमोशंस, ओके। यू नीड टू हेल्प एवरीवन। इसलिए मैंने अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाया है कि जब भी मेरे फैमिली मेंबर्स इफ दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू कुक फूड, मैं कहता हूं मैं आज के दिन भोजन बनाता हूं। एंड टेक कुकिंग एज योर हॉबी। जैसे आज भी आप देखो मंदिर में जाते हो, आपको प्रसाद मिलता है ना, भले थोड़ा सा प्रसाद क्यों ना हो, लेकिन उसका महत्व बहुत होता है क्योंकि वो ईश्वर की याद में वो भोजन बनाया गया है। इसे जब आप भोजन बनाते हो तो ईश्वर के अच्छे अच्छे गीत लगाइए, और उनके याद में अगर आप भोजन बनाते हो तो बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल बन

रात तारो भरी ना मैंने तो दिन का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए चर्चा करेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थी, इसलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
1: भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1%
0: है। श्री गोयल ने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्यमियों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। जंजीबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मिम्बई भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वे नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। डॉक्टर हुसैन अली मिम्बई आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक दक्षिण के साझेदार के रूप में भारत और तंजानिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से घनिष्ठ मित्रता और सहयोग के संबंध हैं। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडवर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। वे कल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। श्री वास्केज का बुधवार को नई दिल्ली में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और पनामा साझा मूल्यों, आपसी हितों और सद्भावना पर आधारित संबंध साझा करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना का आकलन राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि उसके परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है।
2: मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने, जिला आपदा परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रहने तथा राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भूस्खलन संभावित मार्गों पर आवश्यक मशीनरी और संसाधन उपलब्ध रखने को कहा गया है। इस बीच सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने प्रदेशवासियों, चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से मौसम की चेतावनियों का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
3: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन, बसरमौर में येलो अलर्ट जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: आकाशवाणी से पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला की अगली कड़ी में हम सुविख्यात निर्देशक और अभिनेता आर माधवन से बातचीत करेंगे। आर माधवन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
4: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल एंड मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए।
0: ये बातचीत आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल से आज सवेरे 9:10 पर प्रसारित की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। फीफा विश्व कप को लेकर भारत में खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
1: फुटबॉल का इतिहास आज रात चाहे भारत से हजारों किलोमीटर दूर न्यू जर्सी में क्यों ना लिखा जा रहा हो, लेकिन कोलकाता में भी इस खेल का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। भले ही भारत विश्व कप का हिस्सा नहीं है, फिर भी पूरे बंगाल में फुटबॉल प्रेमी इसके जश्न में डूबे हुए हैं। शहर को नीले और सफेद रंगों से रंगा गया है और हर जगह लियोनेल मेसी की जर्सी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल खेल विभाग ने कोलकाता में नंदन और एकतारा ओपन एयर स्टेज के अलावा कई जिलों में फाइनल की पब्लिक स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। शहर के क्लबों, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स में बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और फैंस अपने पसंदीदा टीम की जीत के लिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज होने वाले फाइनल में स्पेन या अर्जेंटीना कौन बाजी मारता है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का निर्णायक और तीसरा मुकाबला आज लंदन की लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद मुकेश। निजी रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है स्पेस में धाक, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में। हिंदुस्तान की सुर्खी है वह विक्रम,

0: संख्या बढ़कर 298 हुई। बागी तृणमूल सांसद अलग बैठेंगे। दैनिक भास्कर के अनुसार सीबीएसई की 10वीं की दूसरी परीक्षा ने बदली तस्वीर। रिजल्ट 96.78% हुआ। पास होने वाले 23.92 लाख से अधिक 3 लाख छात्रों के अंक सुधरे। 76,000 फेल थे, अब पास। हिंदुस्तान की सुर्खी है, ईरान ने अमरीका के साथ समझौता निलंबित किया। खामनेई ने कहा, अमरीका को कड़ा सबक खिलाएंगे। नवभारत टाइम्स के अनुसार आर्टिकल 370 के बेस्ट फीचर फिल्म यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड। श्रीकांत बेस्ट हिंदी फिल्म, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन और भ्रम युगम के लिए मम्मूटी बेस्ट एक्ट्रेस। दैनिक जागरण के मुताबिक सड़क हादसे को रोकने के लिए बेहतर रोड डिजाइन पर जोर। गुणवत्ता रोड डिजाइन ऑडिटिंग प्रशिक्षण के लिए भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी को मिली जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने नया ट्रेंड शीर्षक से दिया है, नई पीढ़ी में गोल्ड के इमोशन कम, परिवार की परंपरा छोड़ निवेश पर ध्यान।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू। दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश। फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने। इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ा देते हैं। और आज हमारे साथ विशेष मानदीप जी है, डॉक्टर मानदीप, जिनसे बातें करने वाले हैं। मानदीप जी हमारे साथ है और आप एक डेंटिस्ट है, नेचुरोपैथ है और विशेष अभी जो है ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, तो एक अच्छा राजयोगा प्रैक्टिशनर के साथ साथ काउंसलर भी हैं। तो निश्चित तौर पे हमें जो है बहुत सारी चीज़ें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो आज के समय में प्रॉब्लम है वो है गैस्ट्रिक के बारे में। पेट में गैसेस बहुत होते हैं, या थोड़ा भी खा लेते हैं तो पेट जो है गुड़गुड़ करने लगता है, या कॉन्स्टिपेशन, या फिर हमें बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पूरे टाइम जो है दिन में दो बार जेलोसिल टैबलेट या डाइजिन वगैरह यूज़ करते हैं। कई लोग एंटासिड सिरप भी लेते हैं, किसको ज़्यादा तकलीफ होते हैं, या फिर कई एजड वाले होते हैं, उनको तो लेना ही पड़ता है ऐसा भी लगता है। तो उनके लिए एक बड़ा सा बॉटल, पहले 100 ml का आता था, आजकल 400 ml का भी बॉटल मिल जाता है, तो वो बॉटल घर पे रखी रहती है तो वो पीते रहते हैं। तो क्या इन सभी चीज़ों को यूज़ करने से या नेचुरल तरीके से गैस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, या कौन सी दवाइयाँ अच्छी हैं जो बाद में प्रॉब्लम नहीं करे? कई बार ओलोपैथिक मेडिसिन लंबा लेते हैं तो आदत हो जाता है, फिर अगर हम नहीं खाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि अरे आज दवाई नहीं खाया तो नहीं गैस बनेगा, ये ऐसा लगता है। तो ये जो सिम्टम्स या जो दिमाग में असर भी करता है, तो इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और नेचुरली हमें गैस रिलेटेड जो बातें हैं वो कैसे बनता है, क्यों बनता है, अगर हम उन चीज़ों को नहीं खाएंगे तो नहीं बनेगा, ऐसा कुछ है? या अगर हम कुछ ऐसे ज़्यादा मसाले वाला चीज़ खा लेते हैं तो फिर उसको कैसे हम लोग मैनेज करें? तो ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर मानदीप जी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया
0: जी। जी जी जी। और हमारे सभी श्रोताएं आपको पहली बार सुन रहे हैं रेडियो के माध्यम से, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, आप क्या करते हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं। जी,
1: अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई एम डॉक्टर मनदीप, BDS, अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन, एंड आई डिड माई BDS फ्रॉम सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। In 2008, I passed my BDS, and ever since I have been in private practice. And last year I shifted to Abu Road, Shantivan, and यहाँ पर मैं मानसरोवर एक complex है, वहाँ पर first aid में अपनी सेवाएँ दे रही हूँ as a general physician. So वो मेरी सेवाएँ basically एक holistic approach से ही रहती हैं, just helping people to know their body well and उसको सही तरीके से कैसे चलाना है without medication, that is my approach in the current time.
0: जी जी। डॉक्टर मानदीप जी बता रही हैं कि वो पिछले एक साल से जो हैं यहाँ शांतिवन शिफ्ट हो गया पंजाब से, और वहाँ पर जो प्रैक्टिस वगैरह करती थी वो चीज़ें अब यहाँ पर भी उन्होंने शुरू की हैं, और यहाँ शांतिवन में रह के अपना मेडिटेशन और राजयोगा प्रैक्टिस करते हुए मानसरोवर एक कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर आप अपने जो है एज ए जनरल फिजिशियन आप वहाँ पर अपनी सेवा देते हैं, क्योंकि वहाँ पर टूरिस्ट लोग आते हैं तो उनको छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए वो वहाँ पर सर्विस देती हैं। तो आइए आज हम लोग जो गैस्ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं, तो ये क्या बला है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे ये क्रिएट होता है और कैसे इसको समझे हम लोग। जी,
1: गैस्ट्रिक इशू विच जो आज एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम सबकी बन चुकी है, और लेमैन टर्म में इंसान उसको गैस कह देता है और गैस कहकर उसको बहुत ही हल्का समझ लेता है। बट हमें एक चीज़ बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करनी है कि हमारी बॉडी इंटरनली अल्कलाइन नेचर की है, माना कि उसका पीएच 7 से ज़्यादा होना चाहिए। एंड हम सबको पता है कि हमारी बॉडी 80% वाटर है, ठीक है, वाटर का पीएच तो अल्कलाइन ही होता है। अगर एक अल्कलाइन बॉडी को अल्कलाइन एनवायरनमेंट में कंटिन्यूसली एसिड बनता जाए तो वी कैन अंडरस्टैंड कि वो कितना हार्मफुल होगा हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, उसके लिए अल्कलाइन नेचर ही सूटेबल है। और वहाँ पर जब कंटिन्यूसली एसिड क्रिएट हो रहा है तो वो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को हार्म तो डेफिनेटली पहुँचा रहा है। अब हमें जो चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, हम क्या करते हैं जब भी हम कोई भी मेडिकेशन लेते हैं, हम कहते हैं गैस हो गई दवाई दे दो. दिस इज व्हाट कॉमनली आई एम हैंडलिंग ओवर देयर. एवरी सेकंड पर्सन कम्स एंड सेज थोड़ी सी गैस है, कोई दवाई दे दो. अब हमें लगता है कि दवाई खाने से मेरी गैस ठीक हो जाती है, और ठीक क्या होता है वो भी हम अंडरस्टैंड करते हैं. जब एसिडिटी हुई, माना एसिड स्टमक में फॉर्म हुआ, तो बॉडी में उसके सिम्टम्स आए. किसी को जलन के रूप में, किसी को हेड हैवी हो गया, किसी को पेट में दर्द हुआ, ये सिम्टम्स मेरे सामने आए, और इन सिम्टम्स को हमने रिलेट किया है कि गैस बन गई अंदर. तो हम मेडिसिन जब खा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, ये सिम्टम्स सप्रेस हो गए. जो आपको जलन हो रही थी वो न्यूट्रल हो गई, पेन सबसाइड हो गई, और मैंने सोचा कि एसिड बनना बंद हो गया. बट आप खुद सोच कर देखिए कि एसिड जिस वजह से बन रहा है, वो वजह अगर कंटिन्यूसली हम कर रहे हैं तो एसिड बनना बंद कैसे होगा. अगर मेडिसिन ने आपको ट्रीट किया होता तो उसके बाद एसिड बनना नहीं चाहिए. सो ट्रीटमेंट इज फाइनली गेट रिड ऑफ दैट थिंग. बट जब कंटिन्यूसली एवरी डे आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ रहा है, तो इससे सिद्ध होता है कि कॉज खत्म ही नहीं हुआ. सो इफ यू एक्चुअली वॉन्ट टू ट्रीट योर एसिडिटी, यू हैव टू गेट रिड ऑफ द कॉज. एंड एक चीज और क्लियर होनी चाहिए कि एसिडिटी इज द रूट कॉज फॉर ऑल आर डिजीजेस. एसिड क्या चीज है, जो भी फूड हम खा रहे हैं और हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, तो वो उसको फर्मेंट कर देती है और उससे एसिड फॉर्म हो जाता है. अब इसके लिए कोई जनरलाइज्ड हम एक लिस्ट नहीं बना सकते कि ये चीज़ें एसिड क्रिएट करती हैं, क्योंकि हर बॉडी डिफरेंट है.
0: बिल्कुल,
1: जो चीज़ मुझे डाइजेस्ट हो रही है वो किसी दूसरे को नहीं डाइजेस्ट हो सकती. बट अगर हमने कहीं पर पढ़ लिया या सुन लिया कि दिस फूड आइटम इज़ वेरी गुड, इट हैज सो मच प्रोटीन्स, इसको जरूर खाना चाहिए, बट लिसन टू योर बॉडी ऑल्सो ना. ठीक है, आपने कुछ अच्छा पढ़ा, आप ट्राई करो, बट आपका बॉडी इमिजिएटली आपको इन्फॉर्म करेगा वेदर इट इज सूटिंग यू और नॉट. वो एसिडिटी के फॉर्म में, अगर आपको उसको खाकर प्लेजेंट फीलिंग नहीं आई, मतलब पेट में जलन हुई, अनइजीनेस हुआ, बर्ब्स आने शुरू हो गए, मतलब वो आपके लिए अच्छा नहीं है. एंड टू बी frankly, अगर मैं शार्प वर्ड भी यूज करूँ, वो फूड आपके लिए पॉइजन है जो आपके बॉडी में एसिड क्रिएट कर रहा है. आपको उसको अवॉइड नहीं, उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी वो एसिड बनना बंद होगा. एंड दिस इज द ओनली एंड ओनली ट्रीटमेंट फॉर एसिडिटी. मेडिसिन आपको सिर्फ उस टाइम का जो एसिड फॉर्म हुआ, उससे जो सिम्टम्स क्रिएट हुए, उसको सप्रेस कर देगा, बट आपको ट्रीट नहीं कर सकता. एंड धीरे धीरे यही एसिड जो हमारी बॉडी में फॉर्म होता है, ये हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट करने लग जाता है. ये जो सब कहते हैं जोड़ों में दर्द है, नी पेन है, कभी कोई कह रहा है कि मेरे शोल्डर्स में पेन रहता है, हेड हैवी रहता है, ये सारी प्रॉब्लम्स का रीज़न ही एसिडिटी है. वो एसिड जिस बॉडी के ऑर्गन्स पे अक्यूमुलेट होने शुरू हो जाता है, उसको हार्म करना, उसको खराब करना शुरू करता है, और वहाँ की डिजीज हमारे सामने आ जाती है. तो हम क्या कर रहे हैं, वो घुटने में दर्द है, उसके लिए कितने ऑइंटमेंट्स, कितनी मेडिकेशन लेते जा रहे हैं, एंड रूट कॉज को पकड़ ही नहीं पा रहे. द रूट कॉज इज द फूड विच इज नॉट एबल टू बी डाइजेस्टेड इन योर बॉडी, एंड वो कंटिन्यूसली एसिड फॉर्म करता जा रहा है. आप मेडिसिन खाकर सिम्टम्स को सप्रेस करते जा रहे हैं, एंड दोज मेडिसिन इन एडिशन विद सम मोर साइड इफेक्ट्स इज गोइंग टू हार्म अनदर बॉडी ऑर्गन. सो आउट ऑफ लैक ऑफ नॉलेज वी आर नॉट एबल टू यू नो गाइड आर सेल्स प्रॉपरली, और अपनी बॉडी का हम प्रॉपर केयर नहीं ले पा रहे. सो वी शुड नॉट इग्नोर एसिडिटी बाय गिविंग इट अ सिंपल वर्ड कि गैस हो गई, हमें कुछ खा रही. नो, वी हैव टू टेक इट सीरियसली.
0: बिल्कुल बिल्कुल. डॉक्टर मंडू जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि गैस होना ये अपने आप में, जो हम लोग खाना खाते हैं अगर उसके सिम्टम्स ही हमें गैस होता है तो हम दवाई ले लेते हैं. दवाई लेने के बाद जो है हमें थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि अब वो जो चीज़ें हो रही थी, जलन हो रही थी या फिर डकारी आ रही थी या फिर कुछ हो रहा था, वो सारे सिम्टम्स बंद हो जाते हैं। तो बंद होने के बाद हम सोचते हैं कि ठीक हो गया। अब अगर ठीक हो गया तो फिर आपने कहा कि अगर ठीक हो गया तो फिर वापस दवाई लेने की ज़रूरत नहीं, वापस गैस बनने की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब फिर से दूसरे दिन वापस जो चीज़ें आप खा लेते हो वापस शुरू हो जाता है। इसका मतलब दवाइयाँ थोड़ी देर के लिए आपको टेम्प्रेरी रिलीफ दिया है, परमानेंटली इलाज नहीं हुआ। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, इसमें हमें सोचना चाहिए। अगर हम ऐसे करते रहेंगे तो गैस बनना तो शुरू ही है, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बॉडी पार्ट में जाकर वो बॉडी पार्ट को इफ़ेक्ट करेगा, जिसके वजह से हमें फिर बहुत सारे अलग अलग नए डिजीज़ भी आ जाते हैं। तो आइए इसको और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, कैसे हम इस चीज़ों को समझें और इसके ऊपर काम कैसे करें और किस तरह का हमें परिवर्तन लाना है, इस पर बात करेंगे कुछ ही देर में। लेकिन अभी आपको मैं ले चलता हूँ एक बहुत ही प्यारा सा गीत की तरफ। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस कार्यक्रम में। अगर आप भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो फ़ोन कर सकते हैं 94-14-15-14-15 इस नंबर पर, और गैसेस से रिलेटेड जो भी सवाल होगा वो ज़रूर आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। डॉक्टर मनदीप जी हमारे साथ हैं, आप डायरेक्टली उनसे किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो हेल्थ रिलेटेड ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आइए एक और सुंदर गीत आपको लेके चलते हैं उस तरफ और उसके बाद फिर बातें करेंगे। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: भेचना चल
1: भेज
0: भेज
1: भेज
0: भेज
1: अरे भेज ऊपर वाले।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ, इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और एस बलबीर का गाया हुआ ये खूबसूरत गीत, विशेष अब दिल्ली दूर नहीं, इस एल्बम से आप सुन रहे हैं। निश्चित तौर पे आपको पुराने गाने पसंद आते होंगे तो ये गाना भी पसंद आया होगा। दत्ताराम वालकर जी ने इसे संगीत से सजाया था और इसे लिखा था हसरत जयपुरी ने। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस कार्यक्रम को रविवार को सुनते हैं 9 से 10 बजे के बीच में, और अभी हम लोग डॉक्टर मनदीप जी से बातें हो रही हैं, गैस्ट्रिक को लेकर हम लोग बातें कर रहे हैं। तो आप भी अपने सवाल या आपके मन में कोई हेल्थ से रिलेटेड कुछ बातें होगी तो आप 94 1415 1415 इस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं, तो या फिर आप व्हाट्सएप से मैसेज भी कर सकते हैं। तो आइए, बात कर रहे थे हम लोग गैसेस के बारे में, तो गैस फॉर्म किस तरह से होता है और इसका कारण क्या है वो बताइए जी। जी डॉक्टर मनदीप जी,
3: गैस क्या चीज है बेसिकली? जैसे हमने पहले भी बात की, पीएच होता है, राइट? एक अल्कलाइन होता है, एक एसिडिक होता है और एक न्यूट्रल होता है। तो जब पीएच हमारा 1.7 से नीचे चले जाता है, मतलब 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, दैट इज एसिडिक इन नेचर। 7 पर है तो वो न्यूट्रल है, और 7 से जब ऊपर है तो वो अल्कलाइन है। एंड हम जैसे पहले भी बात कर रहे थे, हमारी बॉडी अल्कलाइन इन नेचर है। तो अल्कलाइन नेचर, जब वो एनवायरनमेंट हमारी बॉडी का रहता है तो हमारे सारे ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं। एंड जब हमारे बॉडी का पीएच एसिडिक हो जाता है तो एसिड क्रिएट होने की वजह से हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया होता है, देखो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हम सबकी बॉडी में हमेशा रहता है,
2: बिल्कुल,
3: पर जितनी देर तक पीएच अल्कलाइन नेचर का है तो उस बैक्टीरिया को ग्रो करने का एनवायरनमेंट अवेलेबल नहीं होता तो वो नहीं ग्रो करते, वो एज इट इज थोड़े से अमाउंट में पड़े रहते हैं, विच इज ऑफ नो हार्म टू अस। बट द मोमेंट वी आर क्रिएटिंग एसिडिक एनवायरनमेंट इन आवर बॉडी, दैट बैक्टीरिया गेट्स अ सूटेबल एनवायरनमेंट टू ग्रो। तो इस तरीके से वो बैक्टीरिया की ग्रोथ होने की वजह से हमारे बॉडी के ऑर्गन्स अफेक्ट होना शुरू करते हैं, और हम सबकी बॉडी में कोई ना कोई ऐसा हमारा वीक ऑर्गन होता है जो विक्टिम बन जाता है, तो उसकी डिजीज हमारे सामने आ जाती है। एंड देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर क्रिएटिंग दिस एसिड इन आवर बॉडी। एक तो जैसे हमने बात की कि वो फूड आइटम्स जो हमारी बॉडी को सूट नहीं कर रहे, बट इन स्पाइट ऑफ दैट हम उसको खा रहे हैं। एंड इसके लिए देखो, हम सबको खुद का फिजिशियन बनना पड़ेगा। कोई भी डॉक्टर आपको नहीं बता सकता कि आपको ये चीज सूट नहीं करती। आई हैव टू नोटिस कि जब भी मेरे को एसिडिक फीलिंग आई तो मैंने क्या क्या खाया,
2: अच्छा मुझे पीछे देखना पड़ेगा कि मैंने क्या क्या किया।
3: एग्जैक्टली, आपको उसका एक दिन प्रायर भी चेक करना पड़ेगा, रात को मैंने क्या क्या खाया था, आज सुबह मैंने क्या क्या लिया जिससे मुझे ये गैस्ट्रिक इशू आ रहा है। एंड जब मल्टीपल टाइम्स आप रियलाइज करेंगे तो उससे आपको खुद फील होगा कि यस, एवरी टाइम आई एम फेसिंग दिस गैस्ट्रिक इशू, ये फूड आइटम मेरे उसमें मील में था। तो इस तरीके से जब आप खुद की स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिस पर्टिकुलर फूड आइटम, और जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है ना तो हम उनको ये बताते हैं, ऐसे वो कहते हैं हाँ मुझे लगता है जब मैं दही खाता हूँ या दूध पीता हूँ तभी मुझे प्रॉब्लम होती है। मतलब हम सबको अवेयरनेस है, बट आउट ऑफ टेस्ट या वॉट एवर रीजन वी आर स्टिल कंज्यूमिंग दैट, कंसिडरिंग दिस थिंग टू बी वेरी लाइट, कि ठीक है बन जाएगा, हम दवाई खा लेंगे ठीक हो जाएगा। ये हमारा मिसकंसेप्शन है। बस मैं यही क्लियर करना चाहती हूँ कि दवाई से वो चीज़ ठीक नहीं हो रही। आप कंटेंट, चलो एक बार ठीक कर दिया, फिर से एसिड फॉर्म हुआ तो आप उसके अंदर का प्रोसेस तो देखो क्या कैरी ऑन हो रहा है। जितनी देर तक वो एसिडिक एनवायरनमेंट है, बैक्टीरिया को तो एक मील मिल गई अच्छी सी, उसके लिए तो एक अच्छा भोजन फीस्ट है, वो जल्दी जल्दी से ग्रो करेंगे और आपके उस ऑर्गन को धीरे धीरे वो अफेक्ट करते जा रहे हैं, आप अनअवेयर हो। बिकॉज हमारी बॉडी स्किन से कवर्ड है, हमें पता ही नहीं चल रहा कि अंदर क्या हो रहा है. और वो जिस दिन एक बड़ी सी बीमारी हमारे सामने आती है, हमें लगता है कि अचानक ये क्या हुआ, अचानक नहीं हुआ. ये हमारी मिस्टेक्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसका रिजल्ट है कि वो डिजीज हमारे सामने आई है. सो इसलिए वी नीड टू हैव गुड नॉलेज ऑफ वॉट वी आर ईटिंग. हम अपनी बॉडी को सुनो. योर बॉडी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मशीन विच गिव्स यू सिग्नल्स. वो सिग्नल्स कोई दुख की बात या उसको ऐसे मत समझो कि ये क्या हो गया, ये मुझे अनईज हो रहा है. अरे उस सिग्नल को अंडरस्टैंड करो. द बॉडी इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग दैट यू डूइंग समथिंग रॉन्ग. एंड हमारा अटेम्प्ट क्या रहता है करंट टाइम में, सप्रेस द सिग्नल बिकॉज वो थोड़ा अनईजीनेस कॉज कर रहा है. तो हमारी सोच उस तरफ जा ही नहीं रही कि सिग्नल मुझे क्या इशारा दे रहा है कि मैंने ऐसा क्या गलत किया अपनी बॉडी के साथ. तो अगर उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे, अपनी मिस्टेक को रियलाइज कर लेंगे, तो उसी को जब इम्प्रूव करेंगे, वील नेवर बिकम अ विक्टिम ऑफ एनी डिजीज एंड वी कैन ऑलवेज हैंडल अ बॉडी वेरी नाइसली. एंड जब एसिड फॉर्म हो ही गया तो रादर दैन मेडिकेशन, उससे तो सिग्नल बंद हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा. उससे अच्छा ये है कि नेचुरल वे से उसको हम न्यूट्रलाइज करें, कंज्यूम मोर वाटर दैट डे. एंड अनलेस एंड अंटिल आपका वो गैस्ट्रिक इशू सेटल नहीं हो रहा, डोंट टेक अनदर मील. इफ़ यू फील हंग्री इन बिटवीन, टेक एनी फ्रूट. Why do I say take fruit? Because it will never cause acid. See, fruits will never create acid. हमारा ये वहम है, हम कहते हैं जब मैंने ये फ्रूट खाया, फ्रूट से नहीं हुआ, उसके पहले जो भोजन गया था, जो खाना खाया था, उसमें से कोई आइटम था जो आपको डाइजेस्ट नहीं हुआ, फ्रूट का कॉम्बिनेशन उसके साथ ठीक नहीं बैठा. ठीक है, तो एक तो फूड आइटम होता है, एक होता है कि जब हम मल्टीपल थिंग्स एक टाइम पर खाते हैं, हमारे बॉडी में कुछ गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं डाइजेस्ट करने के लिए खाने को. बट बॉडी, स्टमक एक ही टाइम पर बहुत सारे जूसेस सिक्रीट नहीं कर सकता. तो अगर हम मल्टीपल चीज़ें अपनी मील में इंक्लूड कर रहे हैं तो उसमें से कुछ तो स्टमक जूसेस रिलीज कर कर डाइजेस्ट कर देगा, पर जो रिमेनिंग रह गया तो वो क्या होता है, लेमैन टर्म में कहें वो सड़ता जाएगा. सड़ने का मतलब फर्मेंट होगा, फर्मेंटेशन मतलब एसिड फॉर्म हो जाएगा, तो वो हमारा वेस्ट है. हमने सब कुछ सोच कर, चलो इसमें प्रोटीन है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसमें ये फलाना विटामिन है. नो, वी डोंट हैव टू टेक मल्टीपल ग्रेन्स और मल्टीपल आइटम्स एट वन टाइम. देयर आर सर्टन कॉम्बिनेशंस जिसका हमें नॉलेज होना चाहिए, व्हाट टू थिंग्स कैन बी टेकन टुगेदर. एंड उस तरीके से अगर हम अपनी मील को डिसाइड करेंगे एंड लेंगे, वी कैन ऑलवेज लीड अ वेरी हेल्दी लाइफ. एंड जब कभी हम ओकेजनली बाहर जाते हैं, सो वी आर सर्व्ड विद मल्टीपल डिशेज. So I have to be very wise there, respecting my body, that I don't have to fill my plate with all the items that are served. Chahe hum kehte hain thoda thoda taste kar lo, nahi. Life mein multiple opportunities milengi in sab cheezon ko taste karne ke liye, but ek time par do ya teen cheeze hi apni plate mein serve kare aur usi ko le ek meal mein, multiple dishes ko avoid kare. ठीक है. एंड ये भी होता है कि जब आपने एक मील ले ली एंड फ्रूट्स एंड आपके खाने का कॉम्बिनेशन, उसको भी ध्यान में रखना है. फ्रूट्स आर वेरी क्विक टू डाइजेस्ट, सो इसलिए इमिजिएटली फ्रूट खाकर हमें मील नहीं लेनी. या कई बार हम सोचते हैं हमने खाना खा लिया, चलो बाद में एक फ्रूट खा लेते हैं. नो, दैट इज़ ऑल्सो नॉट द राइट कॉम्बिनेशन, बिकॉज फ्रूट्स बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, खाने को बहुत टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में. सो अगर पहले मील के पहले आपने फ्रूट लिया है, तो एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स का गैप ज़रूर दीजिए बिफोर यू टेक योर मील. एंड मील के बाद फ्रूट नहीं लेना, बिकॉज मील को तो 8 आवर्स लगेंगे अभी डाइजेस्ट होने में. तो वो जो फ्रूट आपने उसके बाद लिया, वो तो पड़ा हुआ सड़ जाएगा, उसका भी एसिड बन जाएगा. सो वो आपको कोई हेल्थ उसने बेनिफिट नहीं दिया, बिकॉज टाइम को मेंटेन ध्यान में नहीं रखकर उसको खाया. सो हर खाने का हमें अगर बेनिफिट लेना है, तो उसको प्रॉपर टाइम पर प्रॉपर कॉम्बिनेशन में खाएंगे, तो वी कैन टेक द फुल बेनिफिट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आर इन दैट फूड आइटम. सो फर्दर एनी क्वेश्चंस यू ऑल कैन डेफिनेटली आस्क.
2: चलिए डॉक्टर मानदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया। और मुझे लगता है कि गैस फॉर्म होने का कारण है कि हमारा खाना, किस तरह का हमने खाना खाया है, और खाने के तुरंत बाद ही हमें पता चल जाता है कि हमें गैसेस हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है, जलन हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है, तो ऐसे में आप समझ जाना जो खाना आपने खाया था उसको एक बार याद कीजिए और फिर से वो खाना ना खाकर आप अगर शाम को फिर से खाना है तो वही खाना खाएंगे तो वो बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप शाम को फिर फ्रूट्स खाएं, जिससे आपको जो है रिलीफ मिलेगा और चीज़ें थोड़ी सी मेंटेन हो जाएगी। तो हमें जो है हर दिन का, अगर आपको गैसेस का प्रॉब्लम रहता है, रेगुलर रहता है, तो खाने को एक बार आप देख लीजिए किस तरह के खाना आप खाते हैं, और कोई डॉक्टर के पास या कंसल्टेंसी या जो नेचुरोपैथी के जो डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ एक बार आपको कंसल्ट करना होगा। जब आप कंसल्ट करते हैं तो वो प्रॉपरली आपका डाइट लिख लेते हैं, फिर आपको जो है उसमें चेंजेस करने की सलाह देंगे। और जैसे जैसे आप थोड़ा सा अपने आप भी उस पर सोचिएगा, जैसे आपको खुद को मालूम पड़ेगा कि मैं कौन सा खाना मुझे सूट नहीं करता, क्योंकि डॉक्टर तो आपको जनरल आइडिया दे सकता है, लेकिन आपके पर्सनल बॉडी जो आपकी मशीन है वो आपको पता है कैसे काम करता है और कैसे वो रिजल्ट देता है। तो आप खुद थोड़ा सा ध्यान दें कि कौन कौन सी चीज़ें आप खा रहे हों जिसके कारण आपको एसिडिटी बढ़ रहा है, और उन चीज़ों को अगर आप कम कर देते हो तो निश्चित तौर पे आपको एसिडिटी आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा और आप परमानेंटली उससे मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अटेंशन देना होगा और खाने का जो सिस्टम है उसको समझना होगा, कौन सी चीज़ें कितने टाइम में पच जाती हैं, तो उसको उसने अंतराल में आपको लेने की ज़रूरत है। अगर आप खाना और फ्रूट्स खाना खाने के बाद फ्रूट खाते हैं तो वो आपके लिए मुश्किल या किसके लिए भी वो पचने में नहीं जाएगा, वो खाना सड़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप फ्रूट पहले खा लो, उसके बाद आपकी ज़रूरत हो तो फिर एक घंटे के बाद, आधा घंटे के बाद आप खाना ले लें, और हो सके उतना जो है आपके बॉडी वेट के अनुसार जो है आपको खाना लेना है। तो खाना टेस्टी बना तो ज़्यादा खा लेते हैं तो वो भी दिक्कतें करती हैं। तो ऐसे समय में आपको जो है प्रॉपर डाइट लेने की अपने आप को जो है ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। हाँ, ये एक दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो जी, नमस्कार।
4: हेलो जी, नमस्कार रमेश भाई। मैं सुरेश भाई दानेरा से आपको और डॉक्टर दीदी को मैं
2: जी नमस्कार। नमस्कार
4: जी। तो मैं बात सुन रहा था आपकी, तो रमेश भाई उसमें ऐसा है कि हम बाजार से जो अभी फ्रूट लाते हैं तो पता नहीं कैसे कैसे केमिकल डाल के वो देते हैं, ये है तो पता कैसे करना चाहिए कि ये सही है या ये वो है, और चलो हमने ला भी लिए तो घर पे लाकर कैसे प्रोसेस के साथ हम जैसे कि किस तरह से सफाई या करके खाए वो भी बता दीजिए, क्या कि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम तो खा लेते हैं ऐसे ही लेकिन जो होता है ना तो फिर पेट में गड़बड़ हो ही जाती है, तो ये बताइए।
2: चलिए सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छी तरह से आपने कार्यक्रम सुन रहे हैं और आपने सवाल भी पूछा, थैंक यू सो मच। चलिए, यहाँ सुरेश जी धानेरा वाले पूछ रहे हैं कि भाई आपने कहा फ्रूट लेने का, तो फ्रूट भी हम किस तरह का ले, अगर लाने के बाद आजकल तो केमिकल या पता नहीं क्या क्या इंजेक्शन वगैरह डाल के उनको मीठा करते हैं, ऐसा भी सुना है, तो हमें कैसे समझे कि ये फ्रूट सही है और इसको लाने के बाद क्या प्रोसेस करके खाना है?
3: ये बहुत ही कॉमनली आस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी हम फ्रूट्स पर बात करते हैं तो देखिए इट इज़ नॉट ओनली विद द फ्रूट्स कि उसमें केमिकल पड़े हैं। आज हम जो भी खाना ले रहे हैं, जो कुछ भी मार्केट में अवेलेबल है, सब में अडल्ट्रेशन तो है ही है, मिलावट है, केमिकल्स हैं, राइट? तो हमें अब हमारे पास चॉइस नहीं है, हमें इसी में से ही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब इसी में से ही लेना पड़ेगा। बट डेफिनेटली जब आप हेल्दी खाते हैं ना तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहती है, तो ये जो केमिकल्स चले भी जाते हैं बॉडी हैज द स्ट्रेंथ टू फाइट विद देम, बॉडी उनसे फाइट कर लेती है। बट डेफिनेटली जैसे कोई भी चीज़ हम घर पर ला रहे हैं, फ्रूट्स भी ला रहे हैं, अब उसको हमें क्लीन तो करना पड़ेगा। कुछ फ्रूट्स हैं जिसको आप वाटर में डिप कर सकते हो थोड़ी देर तक तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। कुछ फ्री फ्रूट्स हैं जैसे एप्पल्स वगैरह हैं, अगर हमें है कि उसमें केमिकल है, आपके लोकल एरिया का वो एप्पल नहीं है, इम्पोर्ट हुआ है, तो आप उसका पील उतार कर खाइए, राइट, अगर लोकल है तो फिर वो पता है कि उसमें इतनी अडल्ट्रेशन नहीं, वो आप ऐसे ही खा सकते हैं. तो हर फ्रूट के लिए जो पानी में डिप कर हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स डिप कर सकते हैं, उससे हम केमिकल्स को थोड़ा न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, बट कम्प्लीटली किसी भी चीज़ से हम लोग रिड नहीं कर, मतलब फ्री नहीं कर सकते उनको. तो बट अगर आप कंटिन्यूसली अच्छा हेल्दी भोजन लेते हैं तो आपकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ रहती है कि वो उन केमिकल्स को फाइट कर सकेगी. बट अगर हमारा हेल्दी ईटिंग नहीं है, एसिड क्रिएट हो रहा है बॉडी में, तो इम्यूनिटी डेफिनेटली लो जाती है, फिर इन केमिकल्स का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है.
2: जी जी, हेलो जी. तो हमें फ्रूट्स जो है देख कर ले लेना है आपको, और जितना हो सके आप सीजनेबल फ्रूट्स अगर लेते हैं.
3: तो हाँ कर देते हैं. जी हाँ, डेफिनेटली जैसे रमेश भाई जी ने भी बहुत क्लियरली बताया कि सीजनल फ्रूट्स आर द बेस्ट फ्रूट्स, उसमें हमें ये केमिकल्स का रिस्क कम रहता है. जो आपके लोकल फ्रूट्स हैं आपकी पर्टिकुलर स्टेट के या सिटी के, उसमें भी केमिकल्स का रिस्क कम रहता है. सो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए आप फ्रूट्स परचेज कीजिए, और फिर भी उनको अच्छी तरह घर पर जिस तरीके से जो फ्रूट वॉश किया जा सकता है उसको कर सकते हैं.
2: बिल्कुल बिल्कुल. तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आपके यहाँ जो चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं, जो आपके गांव की पैदावार है या आपके आसपास के पैदावार हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा और सीजनेबल फ्रूट्स ही यूज़ करें, क्योंकि आपको और हमको जो है कई नॉन सीजनेबल फ्रूट्स होता है तो निश्चित तौर पर उसको प्रिजर्व करते हैं, तो प्रिजर्व करते हैं तो केमिकल डालेंगे ही, है ना. तो अब इन चीज़ों को बना तो नहीं कर सकते हैं. अगर आप बीमार हो रहे हैं तो आप फ्रूट को आपको तो खाना ही है, तो वो देखें कि सीजनल फ्रूट्स आप कितना खा सकते हैं, है ना. अच्छा, इसके बावजूद भी हम जो खाना खा रहे हैं उसमें भी तो सारी चीज़ें आती है. तो खाने को हमें जो है जिस तरह से हम खाना खाते हैं उसके ऊपर हमारा बॉडी का रिएक्शन क्या है, इसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. आप कौन सी चीज़ें खाते हो वो आपको कितना सुख देता है, उसके अनुसार आप उन चीज़ों को नोट करके रखिए. और जिनसे आपको एसिडिटी बन रहा है या कोई कुछ बन रहा है, एक हफ्ते का टाइम लगेगा आपको. एक हफ्ते में आप वो सारी चीज़ें लिखिए जो आप खाते हो, है ना, डेट वाइज लिख के रखिए, तो आपको सिंपल आइडिया आ जाएगा. और जब आपको समझो कल आपने कुछ खाया और आज उसका जो है असर होगा, एसिडिटी होगा, गैसेस होगा या जो भी होगा, तो आप लिख लीजिए कि पहले वाला देख लीजिए, लिखा होगा तो, है ना, लिखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कल हमने ये चीज़ें खाई. तो दूसरे दिन आपको जो है चेंज अगर आप डाइट करते हैं, फिर चौथे दिन आपको पता चलेगा कि उसका असर कैसे हो रहा है. तो ऐसे करके आपको सेल्फ स्टडी करने की ज़रूरत है थोड़ा एक हफ्ते के लिए. उसके बाद आप उन चीज़ों को जो आपका बॉडी को सूटेबल है और जो आपको हेल्थ और सुकून दे रहा है, उन चीज़ों को आप फिर यूज़ करना, कंटिन्यू करना शुरू कर सकते हैं. तो फ्रूट्स भी सीजनल खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा. आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक. और किन्हें भी कुछ पूछना है या आपको समझना है कि मुझे कुछ पूछना है या कुछ बात करनी है हेल्थ रिलेटेड, किसी भी तरह का सेहत से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम. आप अपना जो है बात रख सकते हैं 94-14-15-14-15 इस नंबर पर. तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आपको ले चलता हूँ एक और सुंदर गीत की तरफ. सुनते रहो, मुस्कुराते रहो.

0: इधर सुनो दुनिया की खबर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सन ऑफ इंडिया 1962 का इस एल्बम से ये गीत सुन रहे थे। शांति माथुर की आवाज़ में ये गाना था, जो एक छोटे बच्चे पर पिक्चराइज किया गया ये फिल्म सन ऑफ इंडिया। और आज की ताज़ा खबर, ये गाना आप सुन रहे थे, नौशाद साहब ने इसे संगीत से सजाया था और इसे विशेष रूप से शकील बदाई जी ने लिखा था। हेलो जी, नमस्कार।
2: हेलो, नमस्कार सर, कंचन भाई बोलता हूँ गुजरात से।
1: जी कंचन भाई, बोलिए, कैसे हैं आप?
2: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
3: नमस्कार,
2: गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग।
1: जी जी जी,
2: मैं सुन रहा हूँ।
1: अरे वाह,
2: प्रोग्राम सुबह से ही सुन रहा हूँ।
1: अच्छा,
2: अच्छी बातें चल रही है हमारे बारे में। और
1: जी जी जी,
2: अभी अभी जो सुनील भाई ने कॉल किया था मेरे, उन्होंने फ्रूट के बारे में बताया। तो ये तो है सर, लेकिन जो अनाज है ना, हम खेती ही करते हैं, हमारी खेती ही करते हैं। और सिलाई का काम करता हूँ, 68 मेरी उम्र से चल रही।
1: जी
2: डॉक्टर साहब का ये बताना है मेरे को कि भाई हम खेती करते हैं तो गेहूं है, मक्का है, कोई भी हम बीज बोते हैं तो भागीदार रखते हैं, भागीदार से वो ज्यादा। तो ऐसे ही जो खाद वगैरह हम डालते हैं, बोलता है कि ऐसी दवाइयाँ लाओ, ये जंतुनाशक दवाइयाँ का काम करना है, वरना उपज नहीं आएगी। ये करते हैं, हम जानते हैं कि ये हमारे लिए नुकसान कारक है, फिर भी हम अकेले तो कर नहीं सकते सर,
1: भागीदार
2: को रखना पड़ता है। ये तो सीधी लाइन में उत्पादन का ही सोचता है। तो ये हम खाते हैं, लेकिन हमारे भी नुकसान होता है, हम भी ऐसे अनाज ये करते हैं, सभी बिकते भी है, ये करते हैं, लेकिन ये दवाई का जो ये उपज होती है नहीं, तो ज्यादा नुकसान पाचन क्रिया को होता है। हम तो क्या करते हैं कि भाई ये गेहूं का आटा, मक्का का थोड़ा आटा आटा, और ये बाजरा ज्वार ये सब का मिक्स आटा करके रोटी बनाकर बनाए बोलते करते, और कम खाना कम कर दिया है सब। एक बार से खाने से क्या होता है कि ये सब हमारे और हमारा धंधा भी ऐसा है कि सिलाई का काम है, ठीक है, जैसे भी ना तो ये काम चलता नहीं। हमारा रूटीन है हमारा जीवन का, क्या बताएं, बहुत अच्छी बातें हो रही है
1: जी।
2: लेकिन जो हम जो खेती करते हैं तो ये पूरा हमको पता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
2: थैंक यू सर।
1: चलिए कंचन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अपनी बातें बताने के लिए। आप खेती करते हैं, ये जो गया आपका, और क्योंकि कभी कभी केमिकल्स भी यूज़ करते हैं खेती में, तभी हम लोग को लगता है कि इससे ये चीज़ें आएगी, तो इससे भी अनाज में भी जो है हमें प्रॉपर अनाज मिलना आज के समय में मुश्किल है। तो ऐसे में हमें जो है अपना ध्यान रखना है चीज़ों को, जो है जो हमारा बॉडी को सूट होता है उन्हीं चीज़ों को हमें खाना है। तो हो सके इतना जिसमें केमिकल कम यूज़ हो रहा है, ऐसी चीज़ों को अगर आप चयन कर लेते हैं तो भी अच्छा है, और जो कुछ अवेलेबल है उसे, ऐसे हमारे ब्रह्मा कुमारी इसमें एक कहावत है कि भाई आज कलयुग है, तो कलयुग में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि चीज़ें सही है या गलत है, जो भी मिला है प्रभु प्रसाद समझ के, ईश्वर को याद करके आप खाइए, क्योंकि उनके भरोसे आप संसार चल रहा है ना। तो आप जो भी देखिए, जितना हो सके आप उन्हें अच्छी चीज़ खरीदें, बिना केमिकल के आपको अगर मिल जाता है तो उनका यूज़ करें, नहीं मिलता है तो प्रभु को याद करके आप प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कीजिए, जिससे आपका बॉडी जो है उसको ज़्यादा वो नहीं करेगी, और जितना हो सके आपके बॉडी वेट के हिसाब से एक डॉक्टर के साथ आप जो है कंसल्ट जरूर करें, जैसे डॉक्टर मानदीप जी हैं और भी बहुत सारे लोग आपके आसपास में होंगे, तो अच्छे डॉक्टर के पास कंसल्ट करके आपके बॉडी वेट के हिसाब से आप खाना खाइए, क्योंकि हम लोग कभी खाना ज़्यादा खाते हैं, कभी कम खाते हैं, कभी टेस्ट के अनुसार फिर वही चीज़ें तीन चार बार खा लेते हैं, तो वो चीज़ जो है आप अपने मन के हिसाब से चीज़ों को खाना शुरू कर देते हैं तो वहाँ गलत हो जाता है। लेकिन आप अगर एक थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, बॉडी आपका कितना वजन है, आपको खाना दिन में कितना चाहिए, ये अगर आप पता कर लेंगे तो उतना ही खाना खाइए जितना आपके बॉडी को ज़रूरत है, ज़्यादा भी ना खाएं कम भी ना खाएं, तो आपका बॉडी जो है उससे अच्छी रिजल्ट्स देगी आपको, केमिकल हो या ना हो लेकिन आपका बॉडी जो है उसको डाइजेस्ट करने में सक्षम होगा, है ना। जैसे आप मिक्सी का ही शायद उदाहरण दे सकते हैं, नहीं क्योंकि मिक्सी अगर आपने पावर हाई पावर का ले लिया तो वो ज़्यादा सब चीज़ें जो है पत्थर भी उसमें ग्राइंड हो जाएगा, लेकिन कम पावर का ले लिया तो वो थोड़ा स्लो चलेगा, काम कम करेगा, है ना। तो वैसे हमारे बॉडी को कितना उसका जो कैपेसिटी है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, और हम बिना समझे ही हम क्या करते हैं, जीवन के टेस्ट के अनुसार अच्छी चीज़ें बनाई हैं और एक्स्ट्रा बच गया तब भी हमको ही खाना है कई बार ऐसा हो जाता है, आप ठीक है सब बैलेंस है लेकिन कई बार ज़्यादा बन गया, हाँ ज़्यादा बन गया और मेहमान आने वाले थे वो भी नहीं आए, तो फिर वो भी खाना आपको खाना पड़ता है, तो वो भी गड़बड़ है। हेलो जी नमस्कार।
2: ओम शांति, गुड मॉर्निंग डॉक्टर दीदी,
3: गुड मॉर्निंग
2: और सभी श्रोता भाई बहनों, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है, चार से सुन रहा हूँ,
1: अच्छा अच्छा,
2: हमारे श्रोता भाइयों के भी सवाल सुने
1: जी, जी जी जी,
2: आपने दीदी ने बहुत अच्छा जवाब मिला, मेरा भी एक छोटा सवाल है वो गलत भी हो सकता है
1: जी जी,
2: कि कई लोग बोलते हैं ये गैस प्रॉब्लम वरीलो पाजित होता है, और दूसरा सवाल हम कायम चूर्ण लेते हैं, मेरा उम्र 75 है और रमेश जी अच्छी तरह से मुझे जानते हैं, तो कायम चूर्ण और ये गैस प्रॉब्लम वरीलो पाजित है क्या? थैंक यू, शुक्रिया, ओम शांति,
1: ओम शांति, ओम शांति। चलिए, थे 75 ईयर्स ओल्ड सुभाष जी जो रेडियो मधुबन को सुनते हैं, और बीच में अभी काफ़ी बीमार थे लेकिन अभी धीरे धीरे अच्छे हो गए, लकवा हो गया था इन्हें, तो अब इनको जो है पेट का तकलीफ है हमेशा का, तो कायम चूर्ण लेते हैं, तो क्या इनको कंटिन्यू करना चाहिए या कुछ चेंजेस कर सकते हैं?
3: हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जो भी चीज़ें हम कर रहे थे अपनी एसिडिटी को ठीक करने के लिए, बट हमने जैसे पूरे प्रोग्राम में भी यही डिस्कस किया कि हम उसका जो कारण था उसको कभी ख़त्म नहीं कर पाए, क्योंकि हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि कारण क्या बन रहा है तो भले आप जो चीज़ें ले रहे हैं उसको लीजिए, बट आपकी एसिडिटी का कारण आपके भोजन में वो चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी में पच नहीं रही, तो जब तक आप उनको खाना बंद नहीं करेंगे एसिडिटी बनती रहेगी और आप कायम चूर्ण खाते रहेंगे, तो मतलब प्रॉब्लम से तो हम कभी मुक्ति नहीं हो पाए। तो यहाँ पर ज़रूरी है उस प्रॉब्लम से मुक्त होना। आज आपने जो भी आपको फिजिकल एलिमेंट हुई है ना कहीं वो रिलेटेड हमारे भोजन से ही रहती है। देखो, हमारा शरीर हमारे भोजन का ही आउटपुट है, जो इनपुट हम दे रहे हैं उसका आउटपुट हमें मिलता है। हम किसी भी चीज़ को कारण बना दें कि इसकी वजह से हुआ, हम बाहर के एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्सिबल रखें, अपने मेंटल स्ट्रेस को रिस्पॉन्सिबल रखें, पर जो मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो हमारा भोजन है, वो जो मेन हमारी बॉडी को बना रहा है। तो कोई भी चीज से आपने मुक्त होना है, कोई भी फिजिकल एलिमेंट से, तो मेन फोकस आपका भोजन के परिवर्तन पर ही होना चाहिए।
1: हेलो, हेलो, ओम शांति, हाँ इधर इधर ही प्रोग्राम में आ जाओ। तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, आप अपने एज के अनुसार चीज़ें कर रहे हैं, तो अभी दूर भी है तो आपको डायरेक्टली मेडिसिन भी नहीं बता सकते, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, आपको जो हल्का भोजन हो, क्योंकि 75 में जो हार्ड कोई भी चीज़ खाने से आपको पचेगा नहीं, वो गैसेस करेगा, तो आप जितना हो सके एक बार जो है प्रयोग कर सकते हैं, लाइट चीज़ें खाइए या किसी फ्रूट्स पे
3: और मतलब जब आपको एसिडिटी हो ही गई है उस टाइम बेस्ट रहता है कि आप पानी पूरा दिन ज़्यादा कंज्यूम कीजिए, और पानी पीने का सही तरीका होता है घूट घूट कर कर पानी पीते रहना। एंड दूसरी चीज़ है, तब तक कोई भी हैवी भोजन मत लीजिए जब तक आपका पेट बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता, मतलब आपको वो एसिडिटी वाली फीलिंग बंद नहीं हो गई। हम जो भी मेडिसिन लेकर पता क्या गलती हो रही है, हम सोच रहे हम ठीक हो गए और नेक्स्ट हम अपना भोजन जल्दी से खा लेते, बल्कि अगर नहीं लेंगे तो बॉडी सिग्नल देगी, और जब बॉडी प्रिपेयर्ड हो जाएगी मील के लिए तो आपको अपने आप भूख लगेगी।
1: सही बात,
3: मेडिसिन आपको भूख आर्टिफिशियली लगवाएगी पर जो नेचुरल भूख है जब बॉडी रेडी हो गई, मतलब उसने उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया, तब आप इजी भी हो जाएंगे और वो जो भूख होगी फिर उसके अनुसार आप अपना नेक्स्ट मील ले सकते हैं। बट नेक्स्ट मील को लाइट रखिएगा, हैवी मत लीजिएगा। चलो कभी कभार हो जाता है हमसे लिया गया, दैट इज ओके, बट हमें उसको मैनेज करना आना चाहिए।
1: सही।
3: तो मैनेज कर कर चलते चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
1: जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। और जो लोग इस तरह के एज के हिसाब से और खाने को लेकर और गैसेस या एसिडिटी के इश्यूज हैं, कॉन्स्टिपेशन है, तो उन सभी लोगों को खुद ही काम करना होगा। आप एक बार जो है किसी अच्छे नेत्रपैथी सेंटर्स में जाइए, वहाँ पर एक हफ्ते या 15 दिन का उनका ट्रीटमेंट होता है, वो आप ले लीजिए। उसके बाद आप जो है वहाँ से डाइट चार्ट बना के ले लीजिए, आपके बॉडी को 15 दिन में आप खुद समझ जाएंगे और ट्रीटमेंट लेके आपका बॉडी भी डिजॉल्व हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, एक नया जो है रिजनरेट हो जाएगा 15 दिन के बाद। तो उसके बाद फिर आप जो है तय करके आप अपना जो है एक सिस्टम बनाइए, आपको जो चीज़ें आपके बॉडी को सूटेबल होता है उन चीज़ों को आप लिख लें। आप ऐसे नहीं कि किसी ने बोल दिया या उन्होंने कहा, ऐसा मत करिए कभी भी, क्योंकि आपका एज हो गया तो आपको एक खुद की स्टडी बना के रखिए, आप खुद के ऊपर ध्यान रखें, और उसके बाद 15 दिन के बाद आप जो है क्या सुबह खाना है, क्या दोपहर में खाना है, और रात को स्किप करना है या खाना ज़रूरी है। अगर एक बार आप स्किप करते हो तो बॉडी को एक टाइम मिल जाता है रिपेयरिंग का, बॉडी खुद अपने बॉर्डर सेट कर लेगी, तो वो भी एक अपने को देखना है। तो रात का किस टाइप से आप उसको स्किप करेंगे या रिप्लेस करेंगे वो आपको देखना है, या आप एक कप सूप पी के रात को अगर आप एडजस्ट कर लेते तो वो भी बॉडी के लिए अच्छा हो जाता है, तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो आपको खुद देखना है, किसी के आइडियाज़ पे नहीं जाना है, किसी ने बताया इसलिए नहीं करना है, आपको अपने बॉडी पे सेल्फ स्टडी करके काम करना है। लेकिन किसी अच्छे नेचुरोपैथी सेंटर या नेचुरोपैथ से या कोई अच्छे डॉक्टर या डाइटिशियन से मिलके आपको अपना स्टडी जारी रखना है, ठीक है। तो चलिए, मुझे लगता है कि हमने काफ़ी कुछ बता दिया आपको, और गैसेस होने वाली जो चीज़ें हैं सिर्फ खाना ही है या और भी कुछ हम लोग चटर पटर खाते हैं उससे भी हो जाता है?
3: नहीं, खाने में सब कुछ ही आ गया।
1: अच्छा अच्छा।
3: मेन हमने जो बात आज की है वो ये की है कि जब हम गलत कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं, अनटाइमली अपना भोजन कर रहे हैं, देखो एक होती है ट्रू हंगर, एक फॉल्स हंगर, एक होती है मन की भूख, एक है पेट की भूख।
1: अच्छा, दो भूख है।
3: हाँ, तो अगर पेट की भूख हमारी ट्रू भूख है, अगर उसके अनुसार चलेंगे तो बॉडी आपको इसको ही रिसीव करना है ना, तो उसको कितना चाहिए कब चाहिए वो ट्रू सिग्नल्स होते हैं। वो जो भूख होती है वो ऐसी होती है कि तब लगता है मैं और कुछ नहीं कर सकता, पहले मुझे खाना
1: चाहिए, सूखी रोटी भी अच्छा लगने लगी उस टाइम पे,
3: और मन की भूख होती है
1: तो जब मैंने अभी कुछ प्रकार का भोजन भी होगा तो बोलेगा आज वो नहीं है क्या?
3: अभी मैंने खाया, कहीं कुछ बन रहा था,
1: स्मेल आ गया तो वो भी चाहिए,
3: मेरे सामने कुछ रख दिया तो भी खा लिया। सो वो ट्रू हंगर नहीं है, वो मन की भूख है, और मन की भूख के अनुसार अगर मेजोरिटी टाइम चलेंगे तो फिर वो हमारे लिए सेफ नहीं है,
1: बीमार करेगा।
3: मतलब मेजर टाइम ऑफ योर लाइफ शुड बी ऑन ट्रू हंगर, ऑन हेल्दी ईटिंग। कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है तो पोस्ट उसको मैनेज कर लीजिए, थोड़ा फास्टिंग इन द सेंस कि बॉडी को सुन लीजिए, जब तक वो रेडी नहीं है फॉर द नेक्स्ट मील डोंट ईट।
1: चलिए डॉक्टर मानदीप जी, बहुत ही सुंदर बातें आपने बताया और इस प्रोग्राम को समअप करते हैं। पेट की भूख और मन की भूख दोनों को समझ ले आप। अगर आप समझ लेंगे तो मन की भूख को अवॉइड करें और पेट की भूख जब लगेगी तो आपको कच्ची रोटी या सूखी रोटी भी बहुत बहुत अच्छा लगेगा। तो समझ जाना कि आपका बॉडी ठीक है और आप भी ठीक हैं और आप अपने मन को कंट्रोल कर रहे हैं।
3: एक छोटी सी टिप मैं ऐड करना चाहूंगी, इन सब के ऊपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जब आप भोजन कर रहे हैं तो आप किस मनोस्थिति से कर रहे हैं। खुश होकर खाएंगे तो सूखी रोटी भी खाएंगे, वो आपको बहुत हेल्दी फील कराएगी। बट अगर अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशियस फुल ऑफ प्लेट भी खा रहे हैं पर दुखी होकर खा रहे हैं,
1: तो वो भी काम
3: नहीं करेगा। स्टेट ऑफ माइंड से खा रहे हैं तो डेफिनेटली, बिकॉज मन का बहुत इम्पैक्ट है ऑन द बॉडी। जैसे हम करंट टाइम में भी सुनते हैं कि 80%

आबू की वादियों से आप सुनने जा रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम। आपकी अपनी उषा के साथ वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। देखिए, वंदे मातरम नाम से ही मन पुलकित हो जाता है कि वंदे मातरम, मात्र शक्तियाँ किसी से कम नहीं है। किसी के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आता है, किसी के जीवन में क्या प्रेरणाएं हम ले सकते हैं, उनके जीवन से बहुत सारी बातें होती है जो घर की चार दीवारी में दबी रहती है।

0: खुल करके बाहर नहीं आ पाती है, लेकिन रेडियो मधुबन में वंदे मातरम जो कार्यक्रम चलता है इसके जरिए आप नारी शक्ति की विशेषताओं को आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और क्या आपने जीवन में किया है, बहुत सारी बातें ऐसी होती है छोटी छोटी बातों में ही हम प्रेरणा लायक बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि हमने क्या किया और हमारे से कैसे लोग प्रेरणा ले रहे हैं। तो बहुत ही ये खूबसूरत कार्यक्रम वंदे मातरम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको मिलवाने वाली हूँ, देखिए इसमें दो जनरेशन है, एक 85 साल के है रतन माता जी जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान कपासन से पधारे हैं, और एक आज की युवा जनरेशन मयूरी शाह जो अहमदाबाद से आई है, 32 साल की उम्र है। तो जनरेशन गैप के अनुसार काफ़ी विचारों का मतभेद भी होता है, लेकिन दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा है। एक तो इतरा बहू है, एक नानी सास है। तो आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि ये क्या कहाँ तालमेल बिठाया है दीदी ने, लेकिन इसी को कहते हैं जीवन। क्योंकि देखिए उम्र के डिफरेंस के बावजूद भी कैसे रिश्तों में मधुरता आती है, कैसे प्यार से रहा जा सकता है घर परिवार में। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम वंदे मातरम आज आप सुनने वाले हैं, जिसमें अभी हम आपको मिलवाएंगे रतन माता जी से। रतन माता जी राम राम।
1: राम राम।
0: और तबीयत अच्छी है?
1: अच्छी है।
0: अच्छा आप भजन सुनाओगे?
1: ना।
0: हाँ तो सुनाइए।
1: छोटे से है नाव अपने जादू भर पाम, मुझे डर लगे राम कैसे बैठा हूँ तुझे नाव में, नाव में मेरे

0: में एक पत्थर की बन गई नारी, एक
1: पत्थर की बन गई नारी।
0: मेरे लकड़े की नाव पुरानी, मेरे लकड़े की नाव पुरानी। मैं तो पालो परिवार, मैं तो पालो परिवार, मेरो यो रुजेगा, मेरो यो रुजेगा। सुनो सुनो जे सरका रे, कैसे बेटा तुझे नाव में, नाव में मेरे छोटी सी है नाव। अपरे जादू भरे पाम मुझे डर लगे रहा, मैं कैसे बेटा तुझे नाव में, नाव में। एक बात मानो तो बैठाऊँ एक बात मानो तो बैठाऊँ, आपके चरणों की धूल हटाऊँ, आपके चरणों की धूल हटाऊँ। तब करा मंजूर, तब करा मंजूर, मेरा संदेह होगा दो, मेरा संदेह होगा दो। रे सुनो सुनो जी अजो, रे आओ जी बैठाऊँ तुझे नाव में, नाव में मेरे छोटे सी है नाव। अपने जादू भर पा मुझे डर लगे रहा, मैं कैसे बेटा हूँ तुझे नाव में, नाव में। एक प्रेम सहित पग धोया, एक प्रेम सहित पग धोया, पाप जनन जनन का खोया, पाप जनन जनन का खोया। तब हुआ परसन, तब हुआ परसन, कर राम दर्शन, कर राम दर्शन। संग में सीता लक्ष्मण, संग में सीता लक्ष्मण, ओहो आओ जी बेटा हूँ तुझे नाव में, नाव में मेरे छोटी सी है नाव। परे जादू भरे पाँव मुझे डर लगे रहा, मैं कैसे बेटा तुझे नाव में, नाव में। धीरे धीरे तो नाव चलावे, धीरे धीरे तो नाव चलावे, एक गीत खुशी का गावे, एक गीत खुशी का गावे। यूं ही कहता मन ने, सूरज डूबे छन ने, सूरज डूबे छन ने, नहीं जावे वन ने, नहीं जावे वन ने। ओहो बेटा रवे जी मेरे नाव में, नाव में मेरे छोटे सी है नाव। अपने जादू भरे पा मुझे डर लगे राम, कैसे बेटा तुझे नाव में, नाव में। तू ले ले रे मल्ला उतराई, तू ले ले रे मल्ला उतराई, मारे पास है कछु नहीं भाई, मेरे पास है कछु नहीं भाई। एक ने के वट आप घुराई, एक ने के वट आप घुराई, भाई भाई से लेना शरम है, भाई भाई से लेना शरम है। मैंने किया गंगा पार, मैंने किया गंगा पार, आप करना भव सागर पार, आप करना भव सागर पार, यही केवट के पुकार। ओहो बेटे आया जी तेरी नाव में, नाव में मेरे छोटे सी है नाव। अपने जादू भर पाम मुझे डर लग रहा, मैं कैसे बेटा तुझे नाव में, नाव में।
1: बहुत खूबसूरत गीत आप सभी ने सुना है। कितना सुंदर श्री राम जी और केवट के बीच संवाद चल रहा था। केवट कह रहा था कि मैं कैसे बिठाऊं आपको, आपने तो एक पत्थर की नारी को सजीव कर दिया और एक वास्तविक रूप में उसको नारी के रूप में बना दिया, कहीं मेरी एक जो नाव है, जो लकड़े की नाव है, उसको आपने कुछ कर दिया तो मेरे तो आजीविका ही चली जाएगी। तब श्री राम जी के चरण धो करके फिर इस तरह केवट ने उनको नाव में बिठाया। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर श्रेष्ठ भावना झलकती है इस भजन में। तो रतन माता जी, बहुत ही सुंदर आपने गीत सुनाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप रेडियो के श्रोताओं को कुछ कहना चाहेंगे? आप 85 साल के हैं, आप अभी भी काम कर लेते हैं, क्या क्या काम करते हैं
0: घर पे? तब सभी काम करते हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन बासन, चौकारा, सब काम करते हैं। बाबा की प्रतिज्ञा बोलो।
1: बोलो, सुनो, भगवान की प्रतिज्ञा भी सुनाने के इच्छुक है तो सुन लेते हैं हम। सुनाओ
0: बाबा, कह रहे देखो, अस्त्री मारिए मृत्यु पे चाल होगा तो अच्छा सुधार होगा। कम से कम मेरे याद मेरे ज्ञान का मनन चिंतन करके तो देख, तुझ में ज्ञान के मोती न भर दूँ तो चलना, तो मेरे राजयोग के राहों पर चल कर तो देख, तुझे राजा का महाराजा न बना दूँ तो चलना, तो मेरे ज्ञान के मनन चिंतन के जन तो वरदाता विदाता को अपना बना के देख, तेरे भाग्य द्वार न खोल दूँ तो चलना, तो मेरे लिए लोगों से कड़वे वचन सुन के देख, उसे अमृत वचन न बना दूँ तो चलना, तुम गले देने वाले को गले लगा के देख, उसे विश्व शांति का दूत न बना दूँ तो चलना, तो मेरे लिए तन मन धन खर्च करके देख, तेरे कुबेर के भंडार न खोल दूँ तो चलना, तो कम से कम निर्बल को हिम्मत का सहारा दे के देख, तेरी डूबी नैया पार न लगा दूँ तो चलना, तुम प्राणी मात्र पे दया करके देख, तुझे कोड़ी से अमूल्य हीरा न बना दूँ तो चलना, तो वरदाता विदाता को अपना बना के देख, तेरे भाग का द्वार न खोल दूँ तो चलना, तो दे दुनिया से नष्टों मोह बनकर देख, तुझे विदय फरिश्ता न बना दूँ तो चलना, तो मुझे खुदा दोस्त से दिल लगा के देख, तेरे दिल के दर्द न मिटा दूँ तो चलना, ओम शांति, योगी बनो, पवित्र बनो।
1: क्या बात है रतन माता जी, बहुत बहुत आभार आपका। रेडियो मधुबन के स्टूडियो में आप पधारे और आपने अपने जीवन के अनुभव सुनाए इसके लिए कार्यक्रम के। आपको अभी कार्यक्रम तो चल रहा है, लेकिन रतन माता जी बस इतना ही बोलेंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं 85 साल की उम्र है, इतना बोल लिया वो भी बहुत कुछ है। तो इस उम्र के तकाजे से आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोता बंधु को? चलिए पहले हम अपने श्रोता बंधु से बात करेंगे। हेलो,
2: नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ। ओम शांति।
1: हाँ जी, ओम शांति, नमस्ते फिरोज भाई, कैसे हो आप?
2: बस एकदम अच्छे। और वो जो नाव वाला गीत भी अच्छा सुनाया दीदी ने।
1: जी, रतन माता जी ने। जी
2: जी जी जी। और जो अभी भी जो बात सुनाया कि जो प्राणी मात्र पे जो भी इसके ये करेगा तो उसको भी मैं धनवान बनाऊंगी।
1: जी जी जी
2: जी
1: जी,
2: बहुत अच्छा सुना। इतनी उम्र है 85 की, तो बहुत बोले तो बहुत अच्छा कहवाए।
1: जी, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया फिरोज भाई। जी, बाकी बढ़िया?
2: जी जी जी, एकदम बढ़िया।
1: हाँ जी, थैंक यू। तो चलिए, रतन माता जी का आभार व्यक्त करते हुए एक गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः लौटेंगे। तो बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
3: बहू बहू, जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
4: जी आई माँ जी।
3: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
4: जी माँ जी, आ गई, चलिए।
3: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
5: नमस्ते नमस्ते, बैठिए, जच्चा बच्चा दोनों ठीक है।
3: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है,
5: सोनोग्राफी। मगर क्यों?
3: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
5: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू, क्या तुम भी यही चाहती हो?
4: जी वो न, न, अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
5: देखिए, भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
6: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।

0: नाजुक सी दिखती है वो हिम्मत में सबसे आगे है। नाजुक सी दिखती है जो वो हिम्मत में सबसे आगे है। बेटी जब ठान ले कुछ कर गुजरना तो दुनिया उसके पीछे पीछे है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में जैसा कि आप सभी ने रतन माता जी का सुना, 85 साल की उम्र, और इस उम्र में भी बहुत ही सुंदर आपने भजन भी सुनाया और भगवान की प्रतिज्ञा भी सुनाई। हमारे श्रोता बंधु जुड़े हुए हैं कंचन भाई मंडाली से। नमस्ते कंचन भाई।
1: नमस्कार बहन जी, सुप्रभात।
0: हाँ जी सुप्रभात, कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है, अच्छे है, दुकान पे बैठे हैं और माता जी के जो बात सुनी अभी राम की, जो पूरी सुनाया अभी, जो आदर्श जो बातें बताई तो सुन रहे थे तो बहुत अच्छा लगा थे
0: जी।
1: क्योंकि अनुभव से ये बात कर रहे हैं माता जी,
0: जी।
1: जो कहते ना कि भाई कुआ माँ हो तो हवाड़ा माँ आवे।
0: हाँ ये सच्ची बात है, बिल्कुल।
1: इसी तरह माता जी का काफी अनुभव है और आध्यात्मिकता में पूरे डूबे हुए हैं।
0: जी जी,
1: ये बातें आई है जैसे हमने भी, हमको भी बहुत आनंद हुआ, खुशी हुई
0: जी।
1: और क्या बात करूं, उम्र के हिसाब से ये सहारा की कोई जरूरत है
0: जी,
1: तो ये साथ में रखना रहना पड़ता है
0: जी जी जी जी,
1: बिल्कुल पालना पड़ता है
0: जी जी। चलिए बहुत
1: तो
0: बहुत आभार
1: जी। काफी समय के बाद आप भी आए हैं, अब क्या की सभी संभालना पड़ता है
0: जी जी जी। अभी जैसा कि रतन माता जी का आपने सुना है, वो हमारी मम्मी है, लौकिक में माता जी है, तो उनके संभाल करना भी जरूरी है।
1: ना भी जरूरी, अब उम्र हुई तो सहारा की जरूरत है। जब हम छोटे थे तो हमको संभाला था माता जी,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो अब हमारी बारी आई,
0: बिल्कुल। वो तो क्रिया की प्रतिक्रिया
1: करना पड़ेगा
0: जी। चलिए बहुत बहुत आभार कंचन भाई।
1: माता पिता ने जो संकेत दिए हैं
0: जी,
1: कई तो क्या करते हैं कि भाई कोई नहीं ऐसा

0: 30, los
1: sí.
0: que nombró más aplicativo. Es Anahí y Café.
1: Sí,
0: le
1: sí,
0: quieren
1: sí.
0: San caro que yo, pero por San Sandía y Matalé, y Pitatino. Entonces, aquí, Jalur Ayengue, por ahí, y también. Y, ऐसी स्थिति में हमें भी ये करना पड़ेगा
1: जी जी जी बिल्कुल
0: बस और
1: जी बहुत बहुत आभार कंचन भाई
0: हाँ जी
1: जी तो ये थे कंचन भाई मंडाली से बहुत ही सुंदर बात आपने कही है माता पिता का तो सेवा करना अपना फर्ज नहीं बोल सकते उसको अधिकार है जैसे माता पिता बच्चों को बड़ा करते हैं तो वो फर्ज नहीं समझते वो अधिकार से करते हैं ऐसे ही जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनके ध्यान रखना ये बच्चों का अधिकार है और इन अधिकारों को सभी ध्यान में रखे तो और भी अच्छा रहेगा और चलिए वंदे मातरम कार्यक्रम की तरफ आइए अभी रतन माता जी को सुन रहे थे आइए मैंने पहले ही आपको बताया था कि देखिए आज बहुत ही जनरेशन गैप है कहाँ 32-33 साल की उम्र और कहाँ अपने 85 साल की उम्र के अनुभव सुने तो अब मयूरी शाह हमारे सामने आ चुके हैं आपके बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी आपका आपने MBA किया हुआ है और आपको गरबा बहुत अच्छा आता है हर स्टेप आपको आते हैं बहुत ही सुंदर आप गरबा करते हैं भजन कीर्तन में आपको शौक है अध्यात्म में गहरी रुचि है और मिलनसार आपका व्यवहार है तो चलिए और भी आपकी विशेषताएं आपके द्वारा ही सुनेंगे मयूरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है वंदे मातरम कार्यक्रम में
2: थैंक यू सो मच
1: तो थोड़ा आपके बचपन की तरफ बढ़ते हैं
2: नमस्ते सबको
1: जी तो आपका बचपन के बारे में थोड़ा बताएंगे कैसे आपका बचपन बीता कैसे आपने पढ़ाई की
2: मेरा बचपन उस टाइम पे थोड़ा अपने पैसे मतलब सब अपने ये क्या
1: थोड़ा टिपिकल बीता था ऐसा
2: हाँ मतलब उस टाइम पे हमारे मतलब हम क्या मिट्टी से जुड़े हुए रहते थे बाहर खेलना कूदना फ्रेंड्स बनाना अभी आजकल तो बच्चों को फोन दे दो टीवी दिखा दो तो अच्छा है मजा आता है उनको
1: मतलब आपके कहने का मतलब है कि स्वच्छ वातावरण में आपका बचपन बीता क्योंकि जहाँ टीवी मोबाइल इन सभी से जब दूर है तो एक वातावरण स्वच्छ कह सकते
2: हैं
1: उसको
2: सही बात है तो हम घूमने भी जाते थे मजे भी करते थे हमारा बचपन बहुत अच्छे से बीता है फिर पढ़ाई करी
1: पढ़ाई में कैसे थे आप
2: पढ़ाई में पहले तो मैं थोड़ी वीक थी उसके बाद धीरे धीरे अच्छी हो गई और फिर नंबर भी आने लग गए पेपर में फोटो भी आया
1: और क्या बात है
2: कॉलेज में भी मैं टॉपर रही थी तो
1: बहुत बढ़िया
2: और उसके बाद मुझे बस एक है कि मुझे मेरे माता पिता ने कभी बाहर नहीं भेजा पढ़ने के लिए कि ये ऐसे ही शादी करके
1: तो आपको शिकायत है आज भी कि मुझे बाहर भेजते तो शायद मैं और भी आगे
2: और
1: जा
2: भी
1: सकते।
2: आगे जा सकती थी
1: जी तो हमारे श्रोता बंधु पहले बात करना चाहेंगे उनसे बात करेंगे हेलो
3: जय माता दी जय श्री हरि
1: जय श्री हरि नमस्कार कैसे है सुरेश भाई आप
3: हम अच्छे है
1: जी
3: नाम नहीं बताना था
1: अच्छा आपकी आवाज सभी जानते हैं कि आप ही है पहचानते हैं आपकी आवाज को
3: सभी जानते हैं मगर हमारे गेस्ट हैं ना उनको प्रश्न रखना चाहता
1: अच्छा बराबर
3: नमस्कार
2: नमस्कार नमस्कार
3: पहचाना
2: हाँ पहचान लिया ना आपको
1: हाँ पहचान लिया ऐसे बोल रहे पहचान लिया आपको
3: पहचान लिया
2: हाँ पहचान लिया आपको
3: नहीं पहचाना
2: सुरेश भाई जी
3: ओ दीदी ओम शांति कैसे हो
2: ओम शांति
3: कैसे हो
2: अच्छे हैं आप कैसे हो
3: बस हम अच्छे और सब बच्चे वगैरह सब अच्छे
2: हाँ सब अच्छे हैं सब बढ़िया है
3: और आप रेडियो मधुबन में आए तो बाहर आ गए
2: थैंक यू
3: चार चांद लग गए ना दो चार
2: ये सब उषा माता जी की मेहरबानी है
1: ऊपर वाले
3: जो
1: गीत।
3: आपको लेके आए है ना,
2: हाँ ये हमको लेके आए, हमको
3: हाँ
2: मौका
3: तो इसीलिए
2: दिया।
3: मैं बोल रहा हूँ, दो भी दो और दो चार चांद लग गए ना, नहीं तो दो ही लगते थे।
2: हाँ, सही बात है।
3: और बस बहुत अच्छी बातें भी हो रही है, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा सुन के। और
2: अच्छा,
3: बस आप यूँ ही कभी कभी आते रहिए, चार
2: पक्का पक्का आएंगे,
3: चांद
2: हम आते ही
3: लगाते रहिए।
2: रहते हैं इधर, और माता जी मौका भी देते रहते हैं हमको।
3: हाँ, माता जी तो माता जी है,
2: सही बात है।
3: ये इनसे माता जी को मौका देती है,
2: हाँ
3: आपको भी तो आपके माता जी
2: सही बात
3: सही
2: है।
3: है ना,
2: हाँ सही बात है, सही है।
3: और माता पिता का तो बच्चों के हाथ हो तो बच्चों को और कोई जरूरत नहीं ना,
2: सही है सही है, ये तो सही बात है।
3: वो ना समझ
2: उनके
3: होते हैं
2: आशीर्वाद से ही
3: जो
2: सब है,
3: जी।
2: उनके आशीर्वाद से ही, माता पिता के आशीर्वाद से
3: हाँ
2: ही हम
3: हाँ
2: इतना
3: हाँ
2: कर पा रहे हैं
3: जो
2: सब।
3: वो लोग जो मूर्ख होते हैं, जो अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम छोड़ के आते हैं या तकलीफ देते हैं,
2: सही बात है, सही बात है।
3: क्योंकि वही दिन कल अपने भी आने वाला है। हाँ,
2: हाँ वो तो है ही है। हाँ
3: क्योंकि सुई के पीछे ही धागा तो निकलने वाला है ना,
2: सही बात है, वो तो है ही है।
3: इतना सोच के चले तो जिंदगी है, यही
2: अच्छा हाँ वही, आज अब
3: तो
2: जब
3: फिर जिंदगी।
2: अपन को जरूरत थी तब वो खड़े थे, तो जब उनको जरूरत होती है तो अपन को भी खड़ा रहना
3: हाँ
2: है
3: बस
2: ना।
3: वही तो बोलो, इतना सोचे तो जिंदगी है, वरना तो गंदगी तो है ही है। चलो
2: हाँ सही है, सही बात,
3: दीदी आप आए, बहुत खुशी हुई।
2: धन्यवाद
3: और उसका जी
2: धन्यवाद।
3: बाकी सब ठीक है?
1: हाँ जी बिल्कुल, आप सभी की दुआएं। बिल्कुल,
3: हुआ है ऊपर वाला जी, बाबा जी।
1: कहते हैं ना कि ऊपर वाले की मेहरबानी और परिवार की दुआएं मिल जाए, बस इससे बढ़कर और कुछ चाहिए ही नहीं।
3: नहीं बाबा, बाबा का सर से हाथ हो ना, तो बस बाकी तो सब अपने पीछे पीछे आएंगे।
1: जी
3: बस उनका साथ चाहिए, बाकी उनके लिए तो पूरी जिंदगी से लड़ सकते हैं, कभी परिवार से लड़ सकते हैं, बाकी उनका उनका अगर साथ नहीं मिलेगा ना तो काम का नहीं है। चलो
1: जी जी जी जी बिल्कुल,
3: ठीक है,
1: हाँ
3: ओके,
1: जी,
3: ओम
1: चलिए
3: शांति।
1: बहुत बहुत आभार।
3: हाँ
1: तो मयूरी जी, आप अपने बचपन की बातें बता रहे थे कि पढ़ाई में आपको थोड़ा सा अपने पेरेंट्स से शिकायत है कि उन्होंने आपको बाहर नहीं भेजा,
2: बाहर नहीं
1: अगर
2: भेज,
1: बाहर भेजते तो आप क्या करते?
2: मेरे को इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स करना था
1: अच्छा
2: तो वो मैं नहीं कर पाई, क्योंकि उसमें क्या है कि उस टाइम उन्होंने, उनका भी रीज़न सही लगा मुझे कि थोड़ा इमोशनल भी हो गए थे कि फिर तो वैसे भी शादी करके तू चली जाएगी, तो फिर अभी हमारे साथ रह ले, तुझे यहाँ से जो करना है तू कर ले। उसके बाद मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया।
1: अच्छा
2: हाँ, और शादी के बाद तो मैंने थोड़ा बहुत मेरे चेंजेस आए, जैसे मुझे ये
1: शादी की बात तो हम जरूर करेंगे, लेकिन अभी आपके बचपन की बातें चल रही हैं, तो कभी ऐसी कोई बात आज भी आपको याद आती हो कि बेटे बेटे हंसी आ जाती, क्योंकि बचपन हमारा इतना इनोसेंट होता है कि कभी हम कुछ ऐसी बात कर बैठते हैं उसका मीनिंग बाद में पता चलता है जब हम मेच्योर होते हैं,
2: हाँ
1: तो अपने आप हंसी आती है कि ये क्या हो गया।
2: ये ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं, पर एक जो है वो मेरा फेवरेट है, वो ये है कि जब मेरे और मेरे भाई के बीच में 5 साल का गैप है, तो
1: जी
2: जब मेरा भाई हुआ तब तो मुझे खुशी हुई कि चलो मेरा भाई हुआ, मेरे घर में एक मतलब बच्चे आए हैं, छोटा सा ही है वो। फिर 2 दिन मैंने देखा उसके होने के बाद, 2 दिन मैंने देखा सब उसको ही ले रहे, पैम्पर कर रहे, ये कर, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो मैंने फिर मेरी बुआ को बोला तू इसको ले जा, हमको नहीं चाहिए ये, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता है, सब उससे ही प्यार करते हैं, सब उसी को पूछ रहे। मैं बहुत रोई उस टाइम पे,
1: अच्छा
2: तो वो आज भी हमको हंसी आती है कि उस टाइम मैंने ऐसा रिएक्शन दिया था। तो वो एक बहुत,
1: जी
2: और
1: जी
2: होना भी जरूरी है, आज भाई बहन एक, आज पहले तो चलो इतने सारे होते थे, अभी एक ही भाई एक ही बहन है, तो आज सपोर्ट भी रहता है, तो वो थोड़ा फनी है पर जरूरी भी है।
1: जी जी
2: भाई
1: जी
2: बहन तो।
1: तो इस तरह की नादानियां हो जाया करती है, क्योंकि छोटा बच्चा है तो स्वाभाविक है केयर उसके ज्यादा करेंगे, और हर कोई गोदी में लेंगे। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो गोदी में तो नहीं लेंगे, बोल सकते
2: हाँ
1: हैं, उसके साथ
2: वही
1: बात कर सकते हैं। तो ऐसा एक के साथ नहीं, बहुतों के साथ होता है, और अलग अलग विषय होते हैं, अलग अलग बातें होती
2: सही
1: है
2: है।
1: ना। लेकिन आज भी जब सोचते हैं तो अपने आप ही हंसी आती है कि कैसे हम मूर्ख थे।
2: सही है।
1: और
2: और मैं एक और किस्सा सुनाना चाहती हूँ
1: जी
2: कि मैं 10 महीने की थी तो मेरी मम्मी मुझे खिड़की पे लेकर खड़ी थी, मतलब खिड़की के
1: बालकनी में
2: पास। हाँ वो क्या है कि उसकी तबीयत भी थोड़ी नरम थी, बहुत फीवर था उसको भी और वीकनेस भी थी। तो हम 3rd फ्लोर पे रहते थे तो मैं क्या एकदम उनसे, मतलब मैं क्या कूद रही थी उनकी गोद में ही, तो उनसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैं 3rd फ्लोर से नीचे गिर गई।
1: ओहो,
2: तो और तब मैं 10 महीने की
1: दस
2: थी।
1: महीने के बच्चे जब 3rd फ्लोर से नीचे गिरते हैं तो क्या हालत हो जाती है, बचना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी ईश्वर ने आपको मतलब बचाया है, तो उस
2: हाँ
1: समय फिर क्या कंडीशन रही, आप
2: उस
1: बेहोश
2: समय
1: हुए?
2: जैसे ही मैं गिरी तो मेरे मुंह से फीन निकल गए
1: जी,
2: और
1: झाग निकल गए।
2: बाकी बाकी कहीं कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद पूरे मतलब 2-3 दिन सुबह, मतलब मैं अगर दिन में गिरी थी तो मुझे रात को 12 बजे होश आया। उसके बाद मेरी 2-3 बार MRI करी, सब करा, पर सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आई।
1: क्या
2: तो
1: बात
2: ये
1: है,
2: बस भगवान की और बाबा की मेहरबानी है।
1: वो गुजराती में कहावत है,
2: हाँ
1: राम राखे एने कोण चाखे,
2: हाँ
1: तो वो ईश्वर को बचाना था,
2: हाँ
1: इसलिए आप
2: और
1: सुरक्षित रहे। नहीं तो 10 महीने के बच्चा जब 3rd फ्लोर से नीचे गिरता है तो आप सोचिए कि क्या हालत होती होगी, 1st फ्लोर से गिरने पर ही हड्डियां टूट जाती है।
2: उस टाइम पे मेरी मम्मी की कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि बोलने वाले ये भी बोल रहे थे कि लड़की है तो उसको ऊपर से उन्होंने फेंक दिया। एक दो जने ने मम्मी को ये भी बोल दिया, तो बहुत वो मैं बच गई तो उनका नसीब अच्छा है और मेरा भी अच्छा है कि मुझे इतना अच्छा जीने का मौका मिला, इतना अच्छा सब देखने
1: बिल्कुल,
2: का मौका मिला।
1: वो कहते कि आप लिखा हुआ था, और चलिए अच्छा रहा कि आप बचे हैं तो आज रेडियो में भी बोल पा रहे हैं। बिल्कुल, तो कभी कभी इस तरह के हादसे हो जाते हैं, बड़े हादसे भी, वो कहते हैं ना कि पहाड़ सुई की तरह हो जाता है वो हिसाब किताब, और कभी कभी छोटी परिस्थितियों में भी बहुत बड़ी समस्याएं आ जाती
2: समस्याएं आ
1: है
2: जाती
1: जी। तो चलिए मयूरी जी, आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर समय हो चला एक ब्रेक लेने का, तो एक ब्रेक लेकर के पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं। मयूरी जी के अनुभव बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छे हैं, और बहुत सुनने बाकी है, तो बने रहिएगा इस कार्यक्रम में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन 107.8 FM।
4: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
5: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
4: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: बेटी की हंसी में ईश्वर बसता है, बेटी की हंसी में ईश्वर बसता है, उसकी बातों में सच्चाई रहती है। जो बेटी का मान रखे, जो बेटी का मान रखे, उसकी हर राह उजली रहती है, उसकी हर राह उजली रहती है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में ऐसी ही बेटी, भाई कहते हैं ना कि किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की बहन है, तो किसी की बीवी है, तो किसी की माँ है, लेकिन नारी आखिर नारी ही है। और ऐसी नारी शक्ति हमारे साथ बनी हुई है मयूरी शाह, जो आप अहमदाबाद गुजरात से पधारे हैं और आपके अनुभव हमने सुने हैं बचपन के। पुनः स्वागत करते हैं मयूरी जी आपका वंदे मातरम कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद आपका
0: जी। तो आज आप मतलब हमेशा मुस्कुराहट के साथ ही रहते हैं या आज विशेष खुश है आप?
1: नहीं, ऐसे ही रहते हैं हम ज़्यादातर।
0: जी जी जी। और यहाँ पर देखिए मयूरी जी का बेटा जो 6 साल का है, नन्ना मुन्ना बच्चा, तो वो भी उतावला हो रहा है बोलने के लिए। तो ये आप कहते हैं ना कि ये सब गॉडली गिफ्ट है, बोलने का भी हर किसी के अंदर नहीं होता है, लेकिन ये बच्चा कभी का कह रहा है हमें तो अवसर दीजिए, हमें तो अवसर दीजिए। तो चलिए पहले कहते हैं ना बच्चे फर्स्ट, आ जाइए। नमस्ते।
2: नमस्ते।
0: आपका शुभ नाम बताएंगे?
2: हाँ।
0: बोलिए।
2: टेंगरी।
0: अभी पोयम नहीं, आपका नाम बताइए।
2: मेरा नाम है ध्रुवंश।
0: आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं?
2: सीनियर केजी ओल्ड।
0: ओके। और आपको रेडियो मधुबन में आकर के कैसा लग रहा है? आप पहले भी बोल चुके हैं यहाँ पर पोयम, कैसा लग रहा है आपको?
2: बहुत बढ़िया।
0: बहुत बढ़िया लग रहा है। और आप अपने मम्मी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके मम्मी आपसे प्यार करते हैं?
2: बहुत।
0: और क्या करते हैं, क्या सिखाते हैं आपको? होमवर्क कराते हैं?
2: हाँ।
0: और आप क्या करते हैं?
2: और ड्राइंग सिखाती है, ABCD भी सिखाए, सब मम्मी सिखाती है मुझे।
0: अच्छा, फिर आपके टीचर क्या करते हैं?
2: मुझे पढ़ाई करवाते हैं।
0: अच्छा, पढ़ाई करवाते हैं। और आपने पोयम कहाँ से सीखी?
2: मेरी मम्मा ने सिखाई, मेरे स्कूल में से नई राइम्स बुक आई थी ना, इसलिए मेरी मम्मी ने सिखाई राइम।
0: अच्छा, तो आप सुनाइए, कौन सी पोयम सुनाएंगे?
2: टेन ग्रीन वाटर्स।
0: सुना दीजिए।
2: टेन ग्रीन वाटर्स हैंगिंग ऑन द वॉल, वन ग्रीन वाटर टू एक्सीडेंटली फॉल, नाइन ग्रीन वाटर हैंगिंग ऑन द वॉल, वन ग्रीन वाटर टू एक्सीडेंटली फॉल, एट ग्रीन वाटर हैंगिंग ऑन द वॉल, वन ग्रीन वाटर टू एक्सीडेंटली फॉल, सेवन ग्रीन वाटर टू हैंगिंग ऑन द वॉल, वन ग्रीन वाटर टू एक्सीडेंटली फॉल, सिक्स ग्रीन वाटर हैंगिंग ऑन द वॉल, वन ग्रीन वाटर टू एक्सीडेंटली फॉल,
0: नाइन
2: फाइव ग्रीन वाटर टू हैंगिंग ऑन द वॉल, वन ग्रीन वाटर टू एक्सीडेंटली फॉल, फोर ग्रीन वाटर टू हैंगिंग ऑन द वॉल, वन ग्रीन वाटर टू एक्सीडेंटली फॉल, थ्री ग्रीन वाटर टू हैंगिंग ऑन द वॉल, वन ग्रीन वाटर टू एक्सीडेंटली फॉल, टू ग्रीन वाटर टू हैंगिंग ऑन द वॉल, वन ग्रीन वाटर टू एक्सीडेंटली फॉल।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, ताली बजानी चाहिए आपके तो, बहुत सुंदर। इसका अर्थ बताएंगे, क्या अर्थ है? चलिए हमारे श्रोता बंधु पहले जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो
3: हाँ नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ। ओम शांति।
0: हाँ जी नमस्ते फिरोज भाई, ओम शांति।
3: बच्चे ने बहुत अच्छा सुनाया ये
0: पोयम। थैंक यू बोलिए।
3: ग्रीन बोल चार बहुत सुनाया
0: जी।
3: और आवाज भी अच्छी थी बच्चे की
0: जी।
3: और माँ के लिए मेरे को एक गीत बोलने का है
0: जी। बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा सुनाइए।
3: नहीं छोटा सा, बस एक बोल थी।
0: हाँ जी सुनाइए।
3: माँ मुझे अपने आंचल में छुपा लो, गले से लगा लो के आज मेरा कोई नहीं।
0: बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई, बहुत सुंदर आपने गीत सुनाया है। तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से, और ध्रुवांश हमारे समक्ष बैठा है। अच्छा ध्रुवांश, आप हमारे सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने अच्छी सी पोएम बोल के सुनाई है, आपके जैसे बच्चे बहुत सारे जुड़ते हैं, सुनते भी है कार्यक्रम, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनसे फ्रेंडशिप करोगे?
2: हाँ।
0: और उनको क्या कहना चाहोगे? जैसे बहुत सारे बच्चे बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, और आपने अच्छे से बोल के सुनाई, अभी फिरोज भाई भी बता रहे थे, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? वो उनको भी सीखना चाहिए ना। हेलो। हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हैं आप? ओम शांति। अच्छा जी जी, आप सफर में है ना?
4: हाँ नहीं सफर में नहीं, हम देख रहे हैं सभी, अभी हम पूरा किला देख के आए हैं और अभी अच्छा
0: जी चलिए है, बहुत अच्छी बात
4: तो
0: है।
4: हाँ ये दुकान में हम खड़े हैं अभी, और साल यह है साल का है यहाँ पे, वो देखे घर की चद्दर आती है
0: जी,
4: तो वहाँ है और वहाँ सभी जो चद्दर लेती आती है ये सबको समझा रहे हैं, तो इस दुकान में हम खड़े अभी
0: जी
4: तो पूरा देख के आए, हल्दी घाटी भी देख के आए, वहाँ के लोग भी देख के आए।
0: अरे वाह क्या बात है, वहाँ की मिट्टी आपने ली हल्दी जैसा कलर की है?
4: हाँ हल्दी जैसा कलर की है दीदी
0: जी।
4: तो ये सब देख लिया, हमारे पास गाइड था तो गाइड ने पूरा समझा दिया है तो।
0: अच्छा
4: तो अभी चित्तौड़गढ़ में ही है अभी, हम अभी खड़े रहे हैं दुकान पे।
0: अरे वाह क्या बात है, आप हमारे एरिया में पहुँच गए।
4: चित्तौड़गढ़ में तो बहुत सारे मशहूर देखने के लिए लायक है
0: जी,
4: महाराणा प्रताप का जो जगह थी वो भी देख ली
0: जी जी जी जी,
4: वहाँ भी देख लिया
0: जी जी जी,
4: तो सभी हम चित्तौड़गढ़ में
0: जी,
4: और बीच में नहीं सुना दे रहे
0: जी। चलिए बहुत बहुत आभार सुरेश भाई आपका। तो ये थे सुरेश भाई झोटाना से। हाँ आप क्या कहना चाहेंगे, जो नहीं बोल पाते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, उन बच्चों को? आपने कैसे सीखी कविताएं?
2: मेरी मम्मी ने सिखाई।
0: ऐसे हर एक की मम्मी को सिखाना चाहिए है ना।
2: हाँ।
0: और कहीं नहीं बोले तो रेडियो मधुबन में आना चाहिए।
2: हाँ।
0: एक रेडियो मधुबन के मंच से शुरुआत करनी चाहिए, तो फिर वो बड़े मंच पर पहुंच सकते हैं, है ना?
2: हाँ।
0: आप भी बड़े मंच पर रेडियो मधुबन के जरिए पहुंचे हैं ना, स्कूल में बोलते हैं?
2: हाँ।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में आए और आपने बहुत ही सुंदर पोएम सबको सुनाई इसके लिए।
2: थैंक यू सो मच, मुझे मिलने का मौका मिला।
0: क्या बात है, बोलने का मौका मिला तो बहुत खुशी हो रही है आपको?
2: हाँ।
0: तो ऐसे मौके मिलेंगे तो आप आएंगे बोलेंगे?
2: हाँ।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। और अब देखिए कार्यक्रम भी समाप्ति की तरफ है, मयूरी जी से हम जरूर बात करना चाहेंगे। मयूरी जी बता रहे थे कि शादी के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आए हैं, तो अब आप बता सकते हैं आपके जीवन में किस तरह के बदलाव आए?
1: पहले तो क्या है, शादी के बाद अपने जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। पहले तो क्या है, निकल जाओ ऐसे ही, कोई टेंशन ही नहीं है पीछे का, अभी तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती है
0: जी।
1: तो फिर भी मैंने पहले तो एक साल जॉब करी
0: जी,
1: क्योंकि मैं अकेले जॉइंट फैमिली से आई थी, इधर अकेली हो गई थी, तो आते ही तो मैंने जॉब करी। उसके बाद लगा कि जॉब में इतना मज़ा है नहीं, इसीलिए फिर मैंने मेरा छोटा मोटा घर पे ही सब स्टार्ट कर दिया
0: जी।
1: जैसे मैं सेंटर कैंडल्स बनाने लग गई, छोटे छोटे हैम्पर्स बनाने लग गई
0: जी।
1: तो अब जैसे ऑर्डर्स आते हैं वैसे सब चीज़ें बना के
0: जी जी सेल करते,
1: छोटा मोटा बिजनेस कर लेते हैं
0: जी।
1: पेंटिंग का भी बहुत शौक है, पेंटिंग्स भी करते हैं
0: जी जी। चलिए बहुत अच्छी बात है कि अपने आप को व्यस्त कर दिया थोड़ा।
1: हाँ,
0: इधर सिंगल फैमिली है तो हाँ। जॉइंट फैमिली और सिंगल में तो बहुत फर्क पड़ता है। जॉइंट में तो चलिए बातचीत और काम में समय बीत जाता है, लेकिन सिंगल फैमिली में करे क्या, बातचीत किससे करे, और काम भी इतना नहीं रहता है। तो अपने आप को व्यस्त करने के लिए जो आपके अंदर हॉबीज थी, जो आप बनाते हैं, उस पर फोकस डालना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा। और आपको गरबा बहुत अच्छा आता है, तो थोड़ा सा आप गरबा खैर सिखा तो नहीं सकते क्योंकि तो रेडियो मधुबन है, यहाँ से ऑडियो ही जाता है, लेकिन आप अपने पसंद के चंद लाइनें सुना सकते हैं कि कौन सा गरबा आपको सबसे ज़्यादा पसंद है।
1: वैसे तो बहुत सारे पसंद है, पर ये मेरा फेवरेट वाला है। इसके इस पे गरबा करने का बहुत मज़ा आता है।

0: रे बहुत सुंदर ये गीत है। तो आजकल ये भजन भी गरबा के रूप में चलने लग गया।
1: हाँ,
0: तो इसमें दो ताल होती है या फिर एक ताल, क्या होता है इसमें?
1: इसमें तीन ताली खेलते हैं लोग।
0: तीन ताल होते हैं।
1: हाँ
0: अच्छा, और
1: हाँ
0: आप गरबा सिखाते भी है,
1: हाँ
0: तो थोड़ा सा इसकी प्रोसेस बताएंगे कि हमारे कोई श्रोता बंधु अगर गरबा सीखना चाहे तो क्या प्रोसेस है इसमें?
1: पहले तो अपन पैर के स्टेप्स सीखते हैं,
0: जी
1: उसके बाद थोड़े हाथ के पैर के साथ हाथ के तालमेल बिठाने का होता है। तो वही पहले दो ताली, फिर तीन ताली, फिर डांडिया। तो और गरबा तो मेरा स्ट्रेस बस्टर है। अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे स्ट्रेस है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, तो मैं गरबा सुन लेती हूँ या एक राउंड खेल भी लेती हूँ।
0: हाँ जी, तो वो इससे स्ट्रेस दूर हो जाता है।
1: मैं मतलब स्कूल टाइम से ही मेरे हर बार मुझे गरबा में प्राइज मिलता है, अभी तक मिलता आया है, लास्ट ईयर तक।
0: जी
1: अब थोड़ा कम हो गया है क्योंकि दो बच्चे हो गए हैं तो
0: जी जी
1: शरीर में
0: तो
1: इतनी ताकत नहीं, पर फिर भी खेल लेते हैं।
0: जी,
1: फेवरेट है गरबा
0: अरे
1: तो
0: खुद
1: मेरा।
0: के एंजॉय के लिए भी
1: हाँ
0: जरूरी है,
1: हाँ
0: चाहे हमें प्राइज मिले या ना मिले, खुद की खुशी के लिए भी करना
1: हाँ
0: बहुत जरूरी है। तो बहुत सुंदर। और कार्यक्रम के अंत में हमारी जो बहनें सुन रही हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारी बहनें, जैसे जैसे आप बता रहे कि दो बच्चे हो गए हैं, अब शरीर की ताकत भी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन फिर भी उमंग उत्साह वही है। और हमारी बहुत सारी बहनें क्या है कि बच्चे होने के बाद जिम्मेदारियों में इतनी उलझ जाती है कि फिर वो अपनी एंजॉय, जो अपने आनंद के लिए क्या करना है वो छोड़ देते हैं। परिवार के लिए भले वो दिन रात लगी रहेगी, लेकिन खुद के लिए नहीं। तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप?
1: चाहती हूँ कि खुद के लिए भी थोड़ा समय निकाल लेना चाहिए, क्योंकि अगर अपन अपन अपन खुद को इम्पोर्टेंस देंगे तो बच्चे भी देखेंगे और अपन से सीखेंगे कि अपन को भी खुद मतलब मम्मी की भी वैल्यू करनी चाहिए। नहीं तो आज जो होम मेकर है, जो घर पे बैठी रहती है, हाउस वाइफ है, बच्चों को लगता है मेरी मम्मी करती क्या है। तो आज आप घर बैठे भी खुद के लिए अगर कुछ टाइम निकाल लें तो बच्चों को भी लगेगा कि हाँ मेरी मम्मी कुछ कर रही है। उनके लिए भी आप एक मोटिवेशन बन सकते हो कि इतनी जिम्मेदारियां है फिर भी मेरी मम्मी मेरे उसके लिए टाइम निकाल लेती है, कुछ क्रिएटिव कर रही है। जो आपको पसंद हो, जो आपकी हॉबी हो, वो आपको करना ही चाहिए, मेरा तो यही मानना है। तो मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि आप एक बार आप खुद के भी फोकस करो और जिम्मेदारियां भी निभाओ, उससे तो अपन
0: छूट नहीं सकता
1: छूट
0: है
1: भी नहीं सकते और पीछे भी नहीं हट सकते, वो अपनी
0: जी
1: रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो
0: जी
1: उनको भी मत छोड़ो और खुद को भी पकड़ के रखो, खुद की भी इतनी रिस्पेक्ट करो।
0: जी चलिए मयूरी जी, बहुत बहुत आभार। आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में पधारे और आपने अपने शॉर्ट रूप में अनुभव सुनाए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सभी का लिया, इसलिए समय
1: हाँ
0: तो कैसे बीत जाता है पता ही
1: पता
0: नहीं
1: ही नहीं
0: चलता है।
1: चलता है, सही है।
0: तो

0: ही अलग है। खैर,
1: सही।
0: बहुत अच्छा लगा, हमारे श्रोता बंधु भी जुड़े, उन्होंने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और आपने भी अनुभव अच्छे सुनाए हैं। बच्चे ने भी बहुत ही सुंदर पोएम सुनाई है, आपने बहुत ही अच्छा सिखाया। तो इसी तरह हर माताएं अपने बच्चों को इस तरह एक्टिव रखे और आगे बढ़ाते रहे। और आइए, अब मैं भी उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। और आज की नारी शक्ति मयूरी बहन आपको और रतन माता जी को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है।

नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम साहब, कैसे हैं? सब ठीक ठाक तो हैं? घर में बाल बच्चे? बहुत अच्छी बात है, बस कुशल मंगल रहे। चलिए, आपकी प्रभा पंडिताइन आपका प्रोग्राम पंडिताइन में पेश कर रहे हैं आज का प्रोग्राम, और शुरू करते हैं सकारात्मकता से। सकारात्मक सोच न केवल सबसे अच्छा होने की उम्मीद रखता है, लेकिन ये स्वीकार करने के बारे में भी है कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। विश्व नाटक कल्याणकारी है, तो हमेशा का सोचिएगा, गुजर जाएगा ये दौर भी दोस्त, गुजर जाएगा ये दौर भी दोस्त, जरा इत्मीनान तो रख, जब खुशी ही न ठहरी तो गम की क्या औकात है। चिड़िया जब जीवित रहती है तब वो कीड़े मकोड़े को खाती है, लेकिन वही चिड़िया जब मर जाती है तब कीड़े मकोड़े उसको खा जाते हैं। इसलिए ये बात का ध्यान रखें कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं। कभी किसी का अपमान मत करो, कभी किसी को कम मत आंको। तुम शक्तिशाली हो सकते हो, लेकिन समय तुमसे भी शक्तिशाली है। एक पेड़ से लाखों

माचिस की तीलियां बनाई जा सकती है, पर माचिस की एक तीली लाखों पेड़ जला सकती है। कोई चाहे कितना भी महान काहे ना हो जाए, पर कुदरत कभी भी किसी को महान बनने का मौका नहीं देती। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, दी इच्छा इंसान को तो संतोष छीन लिया, दिया संतोष संत को तो संसार छीन लिया। वर्तमान का कटु सत्य आपके समय का जरा इस पर आप गौर जरूर करना और ऐसी स्थिति से जरूर बचना जिस घर में बड़ों को छोटों से डर लगने लग जाए, उस घर में समझ लेना कि कलयुग प्रवेश कर चुका है। आपसे करबद्ध प्रभा पंडिताएं निवेदन करती है कि कभी भी अपने घर में ऐसी छवि मत बनाना जिससे कि तुम्हारे ही घर का पूज्य पुरुष तुमसे ही डरने लगे और वो तुमसे अपने मन की बात न कह सके। यदि ऐसी छवि तुमने बना ली है तो खुद का ही विश्लेषण कर समझ लेना कि तुम कितना ही धर्म करना, एक दिन तुम्हारा पता निश्चित है। ईश्वर न्यायाधीश है। खुद का विश्लेषण करने का तरीका, अगर आपकी ओर एक उंगली उठे तो समझना कि आपका अपमान, अगर अंगूठा का इजहार हो तो समझना आप कामयाबी की ओर है, अंगूठे से उंगली मिले तो समझना आपके कार्य लाजवाब है। यही तो हमारी जिंदगी का हिसाब है कि नहीं। अगर वाकई में आप अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हैं तो याद रखिएगा, बेशक पांव फिसल जाए पर जुबान को कभी मत फिसलने देना। कहा है कि ठोकर खाकर जो इंसान गिर जाए वो उठ जाता है, लेकिन नजरों से गिरा हुआ इंसान कभी नहीं उठ पाता। चिंता कहीं ना करो, चिंता कभी ना करो, चाहे सारा जमाना आपके खिलाफ हो, लेकिन चलो उही मार्ग पर जो सत्य और मानवता का मार्ग हो। पाप हमारी सोच से होता है, शरीर से नहीं, और तीर्थों का जल हमारे शरीर को साफ करता है, हमारी सोच को नहीं। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं खुद है। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा, है कि नहीं। और एक बात जरूर याद रखें, माफ करें, दिल साफ करें। हम सभी से जाने अनजाने में न जाना कितना गलतियां होती है, किंतु गलती का एहसास होना अर्थात अपने गलत कर्म का भान होना और गलती के लिए माफ़ी मांग लेना उस गलती के बोझ को समाप्त कर देता है। गलती होना वास्तव में गलती तो है पर इतनी बड़ी नहीं, परंतु अपनी गलती को महसूस न करना ये उससे भी भारी गलती है। महसूस नहीं किया तो स्वयं के बदलने के द्वार बंद हो जाते हैं और वही गलती बार बार दोहराई जाती है, तो क्या करिएगा, समझ गए। तो सच्चे दिल से माफी मांगने का अर्थ है कि हम उस गलती को इतनी गहराई से महसूस करें कि दोबारा कभी भी किसी के भी साथ वो गलती ना दोहराए। अगर एक व्यक्ति बदला लेकर दूसरे को नीचे दिखाना चाहता है तो ये प्रयास में वो खुद भी नीचे उतर जाता है और दूसरी ओर क्षमा करके व्यक्ति स्वयं भी ऊंचा उठता है और सामने वाले को भी ऊंचा उठने की प्रेरणा देता है। यदि चित्त में ईर्ष्या घृणा द्वेष की अग्नि धधक रही है तो वो चित्त को भारी कर देती है। तो सदा याद रखिएगा, ऐसा बोझिल मन भगवान के किस काम का जो पहले से ही भरा है, भगवान उसमें और क्या भरेंगे। इसलिए प्रतिदिन अपनी गलती के लिए क्षमा मांगकर और दूसरों की गलती के लिए क्षमा देकर मन को खाली अबस कर लीजिए, तभी शांति के सागर परमात्मा की शांति की किरणें अंदर प्रवेश करेगी। अपने शरणागत जीव को प्रभु हर प्रकार के अनिष्ट से बचा लेते हैं। ऐसी बात भी नहीं है कि प्रभु आश्रित जीव के जीवन में कभी कौरव कष्ट ही नहीं आता हो। सच बात तो ये है कि प्रभु आश्रित जीव धर्म पथ का अनुगमन करता है और जो धर्म पथ का अनुगमन करता है उसकी राह कभी भी आसान नहीं होती। ये प्रभु शरणागति की महिमा ही तो है कि दुर्गम परिस्थितियों में भी शरणागत के मन में एक विश्वास और एक सकारात्मकता सदैव बनी रहती है और वो ये कि मेरे प्रभु मेरे साथ ही हैं, फिर मैं चिंता काहे करूं। और उनका ये विश्वास ही उन्हें पांडवों की तरफ बड़े से बड़े विघ्न से भी लड़ने का
आत्मबल प्रदान कर देता है। जौन प्रकार एक अबोध बालक निर्भय होकर सर्प के संग खेलने लग जाता, सांप के संग, और अग्नि में भी हाथ डालने लग जाता है। वो नहीं जानता कि इसमें मेरा तनिक भी अहित होने वाला है, मगर उसके माता पिता अच्छे से जानते हैं कि किसमें उनके बालक का हित है और किसमें अहित। इसी प्रकार हम जीव को भले ही नहीं पता हो कि किसमें उसका हित है और किसमें अहित, फिर भी वो प्रभु को सब कुछ पता है। और माता पिता की भांति ही माँ जानकी और प्रभु राम अपने शरणागत की रक्षा करते हैं और उनको हर प्रकार के अनिष्ट से भी बचा लेते हैं। प्रभु शरणागति अथवा धर्म के मार्ग पर आपको कष्ट जरूर हो सकता है, मगर आपका अहित कभी नहीं हो सकता। ये बात गांठ में बांध लीजिए। आस्था और प्रार्थना दोनों अदृश्य है, लेकिन ये असंभव को भी संभव कर देते हैं। एक तस्वीर देखी हम, बहुत बूढ़ा व्यक्ति है और एक छोटा सा बच्चा उसको माथे पे चूम रहा है। एक अपने आने वाले कल को और एक अपने गुजरे हुए कल को, यही जीवन का चक्र है। तो क्या समझे, ये आसमान में उड़ने वाले परिंदों, ऐ आसमान में उड़ने वाली परिंदो, कुछ तो दुआ करो खुले आसमान की, कुछ तो दुआ करो खुले आसमान की। इस पिंजरे का दर्द क्या होता है अब समझ चुका है आज का इंसान भी। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। बुरे में अच्छा ढूंढो तो कोई बात बने, अच्छे में बुराई ढूंढना तो ये दुनिया का रिवाज है। कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरे की गलतियों का जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासले हो जाते हैं, दूरी हो जाती है। ध्यान रहे कि चुभ जाती हैं बातें कभी कभी, चुभ जाती हैं बातें कभी कभी और लहजे मार जाते हैं। ये जिंदगी है जनाब, यहाँ गैरों से ज़्यादा हम अपनों से ही हार जाते हैं। आप सब तो दुनिया में रहते हैं, बहुत कटु अनुभव से जिंदगी के इस पड़ाव तक पहुँचे होंगे, फिर भी कई बार मन में आता है कि बात भी कह दें तो कहीं लगी हो चोट तो उसमें थोड़ा सा मरहम का काम हो जाएगा। कई बार आप अपने जीवन से असंतुष्ट होते हैं, पर दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो आपके जैसा जीवन जीने की चाह रखते हैं। तो आज से क्या करिएगा, अपने जीवन से संतुष्ट रहें। हमारे पास परमात्मा जी ने जो दिया है लाखों करोड़ों लोगों से बहुत अच्छा दिया है। ये दुनिया नहीं चलती अगर 5 स्त्रियां हर पुरुष के जीवन में नहीं होती। कौन कौन सी? माँ, बहन, बहू, बेटी या पत्नी। चालाक बनकर तो किसी को केवल कुछ देर तक ही मोहित किया जा सकता है, परंतु जहाँ दिल जीतने की बात आती है वहाँ तो केवल सरल और सहज होना ही जरूरी होता है। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। कई बार एक चुप्पी कई भ्रमित दूषित वातावरण को सुगम कर सही दिशा प्रदान कर देती है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास किसी दूसरे की चुगली करता है तो वो कहीं ना कहीं आपकी भी किसी और के सामने चुगली करता होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान अपनी भूल में से भी बहुत कुछ सीख सकता है। सबको शुभ भावना शुभकामना के गिफ्ट देने वाली अपने आप को भाग्य विधाता मास्टर भाग्य विधाता समझे, देखिए आपका जीवन कितना खुश मिजाज होगा। माटी का संसार है खेल सके तो खेल, माटी का संसार है खेल सके तो खेल, बाजी रब के हाथ में है पूरा विज्ञान उसके आगे है फेल। भगवान दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और उसका सिमरन दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है। तो आज से क्या करिएगा, समझ गए होंगे ना? अरे कहाँ नहीं समझेंगे, परमा पंडित आइन के साथ 12 साल सुन सुन सुन के तो अब हमसे भी ज़्यादा समझदार हो गए हैं। चलिए यही बात पर एक गीत सुन लेते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए, सुनिएगा मीठा सा गीत, उसके बाद फिर आपसे बतियाते हैं।

भाई एक पते की बात बताए रहे हैं। हमेशा दूसरे से ज्यादा स्वयं से उम्मीद रखें, काहे कि दूसरों से उम्मीदें बहुत दुख देती है, जबकि स्वयं से उम्मीद बहुत कुछ प्रेरणा देती है, प्रेरित करती है। आत्मनिर्भर रहें और स्वयं पर विश्वास रखें तो आप खुद पर गर्व महसूस करेंगे। जीवन का सती ही है, मनुष्य जैसे सोचता है वैसे ही गुण कर्म स्वभाव वाला बनता जाता है। यदि मनुष्य श्वास श्वास परमात्मा का गुण, उनका दिव्य कर्म तथा उनकी संपत्ति की याद में रहे तो वो भी दिव्य मन दिव्य बुद्धि वाला बन जाता है। एक राजपूत कोई निश्चय और याद होने के कारण कि वो राजकुमार है, स्वभावतः खुशी साहस धन खुमारी रहती ही है। इसी प्रकार यदि कोई मनुष्यात्मा निश्चय पूर्वक मनन करती है, मैं तो सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, मैं तो त्रिलोकीनाथ परमात्मा का बच्चा हूँ, सारा ब्रह्मांड का स्वामी का बालक हूँ, तो ऊ की मस्ती आनंद अतीन्द्रिय सुख और शक्ति के अनुभव का पारावार नहीं रहता। परमात्मा हर वक्त आपके साथ है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो आपको कब कहाँ और कैसे कैसे बचाता है, लेकिन आप फिर भी उसको कोई मौका मिलता है तो गिला शिकवा करने से नहीं चूकते। एक बात मन में बैठा लीजिए कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है और जिसमें निश्चित आपकी ही कोई भलाई छिपी हुई है। इसलिए हर तरह का अभिमान और जिद छोड़कर जो भी कुछ हो रहा है उसे खुशी खुशी से स्वीकार करें। दया और कृपा इका सागर होने के नाते वो कभी भी आपको दुख नहीं देता। कौन? परमात्मा जी, गॉड जी। अभी तो दुखों से छुटकारा पाने का राह जरूर दिखाता है। प्रभु ही हमारे सच्चे हितैषी हैं। प्रभु को पाने का एक ही लक्ष्य बनाएं, जीवन की सार्थकता यही में है। आप बरसों से अपने आप को कोसते आ रहे हैं पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब आप खुद का समर्थन करने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए क्या होता है। अब केवल समाधान होंगे, समस्या नहीं। सदा स्मृति रहे कि आप कौन हैं, एक शांत स्वरूप और वरदानी आत्मा है। जीवन का सत्य ये भी है कि मिनट घंटे दिन माह वर्ष बदल सकते हैं, लेकिन हमारे किए अच्छे बुरे नहीं बदलते। का कर्म बुरे काम पीछा करते ही रहते हैं, अच्छे काम बचाते ही रहते हैं। आज मनुष्य जीवन के बुनियादी व नैतिक सत्यों से अवगत है परंतु इन पर अमल नहीं ना करता। इनमें जीवन में सरलता नहीं आ पाती और जो सरल नहीं होगा उसमें परमात्मा की साधना नहीं कर सकता। राजयोग सहज राजयोग की साधना के लिए मन बुद्धि का सरल और सहज होना जरूरी है, जो कि सत्य आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति व इसका मनन करने से ही संभव है। तो क्या करिएगा, संतुष्टता दिलाता है योग, जो कि कई जन्मों तक संस्कारों में समाई रहती है। मानव जीवन पुण्य और पाप का मिश्रण है। अज्ञान और दुर्ज्ञान से पाप उत्पन्न होता है और सद्ज्ञान से पुण्य उत्पन्न होता है। कर्मों से संस्कार बनते हैं, संस्कार ही से ही गुण बनते हैं, गुण से प्रकृति बनती है, प्रकृति से सृष्टि बनती है और सृष्टि ही शरीर है। भला या बुरा, रुग्ण या स्वस्थ, सुंदर या कुरूप, स्पष्ट है कि मनुष्य का जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका शरीर बनता है। जन्मों जन्मों से संचित कर्मों का प्रतिफल ही शरीर है। शरीर ही वो फल है जो प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। सत्कर्म से सुफल और दुष्कर्म से कुफल प्राप्त होता है। वर्तमान शरीर पुराने सांस्कृतिक परिवेश का फल है। कर्मों के फल भोग सुनिश्चित होते हैं, उनसे कोई बच नहीं ना सकता। कर्मों का भुगतान करना ही पड़ता है, देव मानव दैत्य सभी को। जीवन में सब कुछ एक निवेश की तरह ही होता है। प्रेम, समय, साथ, खुशी, सम्मान और अपमान, जितना जितना हम दूसरों को देते जाएंगे, समय आने पर एक दिन वो ब्याज सहित हमें अवश्य वापस मिलने वाला है। कभी दुख के क्षणों में अपने को अलग थलग पाओ तो एक बार आत्मनिरीक्षण अवश्य कर लीजिएगा कि कल जब अब
जब मेरे अपनों को अथवा समाज को मेरी जरूरत थी तो मैं उन्हें अपना समय दे पाया था। कहा है कि हम दूसरे से तो बहुत अपेक्षा रखते हैं, लेकिन कहा हम दूसरों को कुछ दे पाए थे? कहा किसी के दुख में मैं कभी सहभागी बन पाया था? आपको अपने प्रति दूसरों के उदासीन व्यवहार का कारण स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। कभी जीवन में अकेलापन महसूस होए लगे और आपको अपने आसपास कोई दिखाई न दे जिससे मन की दो चार बात करके मन को हल्का किया जा सके, तो आपको एक बार पुनः आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। क्या आपकी उपस्थिति कभी किसी के अकेलेपन को दूर करने का कारण बन पाई थी अथवा नहीं? अपने आप चिंतन कीजिएगा, आपको अपने एकाकी जीवन का कारण स्वयं समझ आ जाएगा। श्रीमद् भागवत जी की कथा में हम लोग गाते हैं कि देवी द्रौपदी ने वासुदेव श्री कृष्ण को एक बार एक छोटे से चीड़ का दान किया था और समय आए पर आवश्यकता पड़ने पर विधि द्वारा वही चीड़ देवी द्रौपदी को साड़ियों के भंडार के रूप में लौटाया गया। सुना है ना आप सबने? तो अच्छा बुरा, मान अपमान, समय साथ, दुख सुख के जो कुछ भी आपके द्वारा बांटा जाएगा, देर से सही मगर एक दिन आपको दोगुना होकर मिलेगा जरूर, ये तय है। तो आपको डिसाइड करे का है, का दे का है, वही लौट के आने वाला है। सूर्योदय के लिए सूर्य को अंधेरे से, हरियाली के लिए वसंत को पतझड़ से और गंगा स्वरूप होने के लिए एक नाले को कंकर पत्थरों से टकराना अथवा लड़ना ही होता है। ठीक इसी प्रकार बेहतरीन व अच्छे दिनों के लिए मनुष्य को बुरे दिनों से अवश्य लड़ना पड़ता है अथवा तो बुरे दिनों का सामना करना ही पड़ता है। प्रभु श्री राम ने लंका को जीता, मगर जीतने से पहले कितनी कितनी विषमताओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, आप सब तो जानते हैं ना। पांडवों ने महाभारत युद्ध जीता अवश्य, मगर उसके मूल में भी अनगिनत कठिनाइयां और विपत्तियां ही छुपी हुई हैं। निसंदेह जीवन यात्रा ऐसी ही है। यहाँ पर किसी चीज को वृक्ष बनने के लिए एक लंबी अवधि तक सर्वप्रथम जमीन में मिट्टी के नीचे दबना होता है। समय आने पर वो बीज अंकुरित तो हो जाता है, मगर उसके बाद भी कभी तीखी धूप तो कभी कड़ाके की सर्दी का सामना करते हुए न जाने का विषमताएं अपने ऊपर झेलनी पड़ती है। यही तो जीवन है, यही तो प्रकृति है। धीरे धीरे वो बढ़ने जरूर लगता है, मगर यहाँ भी पग पग पर उसकी डगर आसान नहीं होती है। कभी आंधे, कभी तूफान, कभी ओलावृष्टि, तो कभी अतिवृष्टि का सामना करते हुए वही बीज एक दिन विशाल वृक्ष का रूप ले चुका होता है। अब कभी अपने पत्तों द्वारा, कभी अपनी टहनियों द्वारा, कभी अपनी लकड़ियों द्वारा, कभी अपनी शीतल छांव द्वारा, तो कभी अपने मधुर फलों द्वारा परोपकार और परमार्थ करके एक वंदनीय और सम्मानित जीवन जी पाता है। याद रखिएगा, दिन बुरे हो सकते हैं मगर जीवन नहीं। धैर्य, साहस, सावधानी और प्रसन्नता का कवच परिस्थितियों को भी आपका दास बना सकता है। जो डटेगा वही टिकेगा और वही बढ़ेगा। समझ गए? तो तुम सिर्फ अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। हमारा पहला मंदिर ये कोई और नहीं बल्कि हमारा शरीर है। हम इंसानों को भगवान की अवधारणा सिखाई जाती है, सही या गलत। हम गायों के घर आने तक बहस कर सकते हैं, ये हमारी दुनिया का एक सच है। कुछ लोग भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, दूसरों को विश्वास करना सिखाया गया है और वे इसका धार्मिक रूप से पालन करते हैं। इस मुद्दे पर हमारा मत अलग है। हमारा पहला मंदिर हमारा शरीर है, हमारी आत्मा हमारा देवता है, ईश्वर का अंश है। हम प्रार्थना करने के लिए अपनी आत्मा के साथ संरेखित करते हैं। जो लोग इस प्रक्रिया से, कर्मकांड से गुजरते हैं, वो मुझसे सहमत नहीं हो सकते। हमें पृथ्वी पर अपनी यात्रा के दौरान अपनी आत्मा को अपने शरीर में रखना है। इस मंदिर के रख रखाव के लिए केवल श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे महान आकार में बनाए रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता है। रोजाना व्यायाम से हमारा शरीर चमकता है और आलस्य से सुस्त हो जाता है। हमें ईंट और पत्थर के मंदिर को भी बनाए रखना चाहिए, लेकिन हमें पहले अपना
पहला मंदिर बनाए रखना चाहिए। काहे कि मंदिर के माध्यम से हम सर्वशक्तिवान की प्रार्थना करते हैं। तो का समझे आज से का करिएगा, समझ गए ना। खुद को बदलने का आसान तरीका है स्वीकारना। जौन समय हम गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं उही समय परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। माना कि फूल की सुंदरता पंखुड़ियों से होती है, परंतु यदि फूल की धुरी ही खराब हो जाए तो पंखुड़ियां टिक नहीं पाएगी। इसी प्रकार हमारा जीवन का विभिन्न संबंध संपर्क जीवन रूपी पुष्प की सुंदर पंखुड़ियां हैं, परंतु ये सब आपके जुड़ी है। यदि आप संपूर्ण संतुष्ट व स्वस्थ नहीं तो ये सब भी मुरझा जाएगी। अतः जीवन से सब अंगों को संवारने से पहले स्वयं का वास्तविक रूप संवारना बहुत आवश्यक है। ये सही है कि जरूरतें इंसान को एक दूसरे से जोड़ के रखती है, लेकिन जब तक आपस में व्यवहारिक सरलता सहजता नहीं होती, जरूरतें भी संबंध की पकड़ को ढीली कर देती है। लाइफ में हर समस्या के अंदर उपहार अवश्य होता है, इसलिए कभी समस्या का सामना भी करना पड़े तो निराश नहीं होना चाहिए। का पता जो अंत हम अपेक्षित कर रहे हों अंत उससे भी अधिक सुंदर हो। हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने के गुण का अनुभव करें और सदैव आशावादी रहें। हमें नेकी करने के बदले में कुछ पाने की आस नहीं रखना चाहिए, इससे आपका किया पुण्य घट जाता है। नेकी कर दरिया में डाल, अर्थात नेक कर्म करके दरिया में बहा देना, उसे किसी को पता ना चले। एक हाथ से दे तो दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। कहे कि जितना चुपचाप दिया जाए उतना ही अच्छा है, जिसे पता चलना होगा उसे खुद ही पता चल जाएगा। ऐसा दान ही वास्तव में शुद्ध होता है, इससे ही दानी व्यक्ति प्रसन्नचित होता है। उसके अंदर एक फैलाव आता है, प्रेम से भरपूर हो जाता है, वास्तविक आनंद की महसूसता होती है। जबकि अधिकांशतः लोग कुछ देते हैं तो उसके पीछे सोचते हैं कि हमें प्रशंसा मिलेगी, नाम मनसान बढ़ेगा, प्रसिद्ध होंगे, लेकिन ये दान नहीं ना है। ये भाव हमें बोझ उत्पन्न करता है, अहंकार बढ़ाता है। परमात्मा पर पूर्ण भरोसा, अपने कर्मों पर विश्वास, सकारात्मक सोच के साथ सदैव खुश रहना, ये सारी बातें आपकी आंतरिक ऊर्जा को निरंतर गतिशील और बढ़ावा देती है। तो क्या करिएगा, जान गए ना। चलिए ही बात पर एक गीत और सुन लेते हैं, के बाद फिर आपसे बताती है। सुनिएगा गीत, छोटा सा विराम ले रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं।

0: जल शक्ति है, जल जीवन है, जल है तो कल है। आइए सुनते हैं रेडियो मधुबन पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी क्या कहते हैं।
1: सामान्यतः हमारे परिवारों में क्या होता है, कोई बच्चा अगर एक्सट्रावेगेंट हो जाता है तो बहुत सारा खर्चा करने लगता है, तो क्या कहते हैं कि जो है पैसे को पानी की तरह बाहर है, मतलब पानी को हमने ऐसा मान लिया है कि इसका कोई मोल नहीं है। अब हमको इस मिथक को तोड़ करके समाज के मन में इस बात को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि पानी को पैसे की तरह बचा करके काम में लेना है, और अगर हम इसके लिए कामयाब हो जाएंगे तो हमारे देश में जितने प्रकृति ने संसाधन दिए हैं आने वाले कई शताब्दियों तक हम देश को जल समृद्ध बनाए रख सके।
0: रेडियो मधुबन पर आप सुन रहे थे जल है तो जीवन है, जल बचाएं जीवन बचाएं।
2: देखिए भाई, जिंदगी के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता रहे हैं। जिंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश ना करो, चलते वक्त के साथ चलो, वक्त को बदलने की कोशिश ना करो, दिल खोल कर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना करो, कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना करो, और जब ऐसा आप करिएगा तो देखिएगा अपने आप रास्ते खुलते हैं कि नहीं। ये एक ऐसा युग चल रहा है जिसमें धर्म के नाम पर लड़ने को सभी तैयार हैं, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने को कोनो तैयार नहीं है। हमें ये बात पर ध्यान देकर पड़ेगा। हसरत पूरी ना हो तो ना सही, ख्वाहिश करना कोई गुनाह तो नहीं है। चिंता ने चिता से मुस्कराते हुए ये कहा, तू मुर्दों को जलाती है, मैं जिंदों को। कितनी अच्छी बात है ना, चिंता इंसान को जीते जी जलाती है, और चिता तो कहती है कि मैं मुर्दों को जलाती हूँ और तू जिंदों को। किरदार शिद्दत से निभाइए जिंदगी में। कहानी तो एक दिन सभी को बनना ही है, जब चले जाएंगे तो कहानी ही ना बन जाएगी, और कहाँ याद करेंगे लोग। जैसे कहानी में कोई पात्र को याद करते हैं, ऐसे कभी कभार आपको याद करेंगे। आपका कद नहीं, आपकी विनम्रता आपको बड़ा बनाती है। बड़ा हुआ तो का हुआ, जैसे पेन खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बड़ा पर काहे में है, आपकी वो लंबाई चौड़ाई में नहीं, विनम्रता में। समय बहरा है कभी किसी की नहीं सुनता, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है। ये बात को भी ध्यान रखिएगा। दिल से साफ रहोगे तो बहुत लोगों के खास रहोगे, ये बात भी बहुत पते की है। मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं और ख्वाहिशें अधूरी हैं, पर जिंदा रहने के लिए कुछ गलत फहमियाँ भी जरूरी है। कई बार बहुत सच्चाई से भी का हो जाता है, मन उदास हो जाता है। कभी कभी गलत फहमी भी जी लिया करिएगा भाई, वो भी बहुत सुख देती है। सूर्योदय की हर्षित बेला पर आपको सभी को हम बहुत याद करते हैं और कहते हैं, गन्ने में जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता, और जहाँ रस होता है वहाँ गांठ नहीं होती। बस जीवन में कुछ ऐसा ही है, समझ गए ना। एक उम्र होती है जब सिर्फ रूप रंग महत्वपूर्ण होता है, एक उम्र होती है जब विचार महत्वपूर्ण होते हैं, और एक उम्र के बाद सिर्फ साथ महत्वपूर्ण है और कुछ नहीं। अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति मौन है, ये बात को भी याद रख लीजिएगा, नहीं तो छोटी छोटी बात में उबलते पानी की तरह भाप बन के उड़ गए। बस जिंदगी तो और चाहेंगे ही, लोग भी चाहेंगे कि ऐसी आप बलबला जाएं और हवा बन के भाप बन के उड़ जाएं। धैर्यता, शांति, विश्वास जीवन का सबसे बड़ा खजाना है, काहे कि उसके बगैर ना तो प्रेम संभव है ना तो प्रार्थना। हमेशा खुश रहा करिए, काहे कि खुशियों का संबंध दौलत से नहीं दिल से होता है। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते, बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते, कहीं बुरे बना दिए जाते हैं, कहीं बुरे साबित कर दिए जाते हैं। ये भी कहीं ना कहीं जीवन का दस्तूर है और हर कोई इसका मुक्त भोगी है। बात करूं तो बहस, चुप रहूं तो घमंड, बात करूं तो बहस, चुप रहूं तो घमंड। आजकल हमारी जिंदगी कुछ ऐसी ही चल रही है। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग आपके हर तकलीफों का ब्रह्मास्त्र है। जीवन एक विद्यालय है, इसमें कठिनाइयाँ, परीक्षा और समय शिक्षक का काम करते हैं। तो भैया परीक्षा में पास होए का है तो वो तो समझ के जीना होगा। अच्छे जरूर बनिए लेकिन साबित करने में अपना समय मत गवाइए। कोई हमारी गलतियां निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए कि नहीं? कहे कि कोई तो है जो हमें पूर्ण दोष रहित बनाए के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है। अपने तो वो होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रास्ते में आते जाते लोग पूछ ही लेते हैं, है कि नहीं? दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ हो। कहा है कि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। अभी उत्तम लोग संकट आए तो भी शुरू किया हुआ काम नहीं छोड़ते। आपका जीवन में भी आगे बढ़ने के लिए परीक्षाएं आएगी, लेकिन आप उन परीक्षाओं को देखकर अपना काम, अपना लक्ष्य मत छोड़िए। और हमेशा याद रखिए, क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होकर पश्चाताप पर समाप्त होता है। इससे बचिएगा और जितना बचिएगा उतना अच्छा रहेगा। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है, जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वो कारोबार हो या फिर रिश्ता। ये कौन कह रहा है पता है? अब्दुल कलाम जी कह रहे। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। आपको तय करना है क्या करे का है। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए और करुणा सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। तुम्हारे दिमाग ही तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। ये उन वजहों को पकड़ पकड़ के लाता है जो बेवजह है। खुपरिया में कोनो बात हो गई होगी छोटी मोटी, लेकिन बार बार वही याद कर करके आपका सामने समस्या बना लेता है। वजन तो सिर्फ हमारी इच्छाओं का है, बाकी जिंदगी बिल्कुल हल्की फुल्की है। इच्छाओं को कम कर दीजिए, जिंदगी वैसे ही हल्की है। इच्छा ही तो इंसान को अच्छा नहीं बनने देता। और ही चाहिए, और ही चाहिए, और ही चाहिए। अरे चुपचाप बैठ जाइए ना, भगवान जौन दिया उसमें संतुष्ट रहिए, अपने आप जीवन में शांति रहेगी। अहम से ऊंचा कोई आसमान नहीं, किसी की बुराई करने जैसा आसान कोई काम नहीं, स्वयं को पहचानने से अधिक कोई ज्ञान नहीं और क्षमा करने से बड़ा कोई दान नहीं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, देखिएगा भाई अपने आप आपकी ज़िंदगी में हर कुछ वैसा ही घटित होगा जैसे आप चाहते हैं। लेकिन उसके लिए फिर जो कहा कि इन बातों को जरूर याद रखिएगा। छोटी छोटी बात कहते हैं लेकिन आप सब तो समझते हैं ना इन छोटी बातों में कितना गहरा अर्थ होता है। और जो इस बात को समझ ले तो उसने सब कुछ समझ लिया, और जिसने सब कुछ समझ लिया तो अपने आप जीवन उसका तो बेहतर हुई भी करेगा ना। और यही तो पर्व पंडितान आप सबके लिए दुआएं करती है। तो देखिए भाई, जब भी कोई समस्या आए तो ये तीन काम करें। समस्या का सामना करें, उससे लड़ो और समस्या को समाप्त करो। आत्मशक्ति पर विश्वास करें और आप ये कर सकते हैं। मन कमजोर तो परिस्थिति समस्या, मन कमजोर तो परिस्थिति समस्या, मन स्थिर तो परिस्थिति चुनौती, और मन मजबूत तो परिस्थिति अवसर। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोनो बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। इस तरह मुस्कुराने की आदत डालिए कि परिस्थिति भी आपको परेशान कर करके थक जाए और जाते जाते जिंदगी भी मुस्कुराकर बोले आपसे मिलकर खुशी हुई, है कि नहीं? यदि फूल को भगवान के गले की माला बनना है तो उसे अपने पेट में सुई की नोक से छेद करवाना ही पड़ेगा। सोने के टुकड़े को यदि भगवान के गले का हार बनना है तो उसे भट्टी में गलना ही पड़ेगा, और चंदन को भगवान के माथे पर लगना है तो उसे पत्थर पर घिसना ही पड़ेगा। उसी प्रकार यदि मनुष्य को धर्म पर चलना है तो उसे कठिनाइयां सहते हुए त्याग के मार्ग पर चलना ही पड़ेगा। अर्थात हमें कुछ पाना है तो कुछ खोना या सहन भी करना पड़ेगा। ईश्वर को पाना चाहते हैं तो हर पल उनको याद करें, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ये वही कमाई है बंदे जो काम तेरे आएगी, जन्म जन्म की भटकन से तुमको मुक्त कराएगी। मुश्किल हो हालात तो याद तुम आते हो, मुश्किल हो हालात तो याद तुम आते हो, मन हो उदास तो याद तुम आते हो। यूं तो जिंदगी में अपनों की बहुत भीड़ है बाबा, पर जब जरूरत पड़ती है तो साथ तुम ही निभाते हो। ऐसा परमात्मा जी को बोलिए मन की बात, जब कहीं अब ऐसी बात आए तो, भावना आए तो प्रकट करिए, परमात्मा को अच्छा लगता है। खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है ऐसा हम समझते हैं, किंतु हकीकत में खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है ऐसा अनुभव कहता है। अच्छे जीवन का आकलन ना ही अंग्रेजी बोलने से, ना ही अच्छे कपड़े पहनने से, और ना ही ठाट बाट वाली जीवन शैली से होता है, बल्कि अच्छे जीवन का आकलन तो ये है कि कितने लोगों के चेहरे खिलते हैं जब वो आपका नाम सुनते हैं। तो देखिए, छोटी छोटी बात है लेकिन ही जीवन को हमारे श्रेष्ठ बनाती है। त्याग और नाश ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। स्वयं की इच्छा से किसी वस्तु अथवा पदार्थ को छोड़ना त्याग, तथा स्वयं की इच्छा ना होते हुए किसी वस्तु अथवा पदार्थ का छूट जाना नाश कहलाता है। प्रकृति का अपना एक शाश्वत नियम है, और वो यही कि मान पद प्रतिष्ठा वैभव कुछ भी और कहीं भी यहाँ शाश्वत नहीं रहता। ये दुनिया प्रकृति का नियम है, हर चीज परिवर्तन होती है। सूर्य सुबह अपने पूर्ण प्रकाश के साथ उदय होता है और शाम होते होते उसका प्रकाश क्षीण होने लगता है, और दिन में प्रचंड प्रकाश फैलाने वाला वही सूर्य अस्तांचल में कहीं अपनी रश्मियों को छुपा लेता है। रात्रि को चंद्रमा अपनी शीतलता बिखेरता है, मगर वो भी सुबह होते होते कहीं प्रकृति के उस विराट आंचल में छुप सा जाता है, सदा कुछ भी नहीं रहने वाला। इसलिए बांटना सीखिए, चाहे प्रेम हो, सम्मान हो, समय हो, खुशी हो, धन हो, अथवा कोई अन्य वस्तु। जिन फलों को वृक्ष मारा बांटा नहीं जाता, जिन फलों को वृक्ष द्वारा बांटा नहीं जाता, एक समय उन फलों में अपने आप सड़न आने लगती है, और उस सड़कर वृक्ष को भी दुर्गंध युक्त कर देते हैं। यही प्रकार समय आने पर प्रकृति द्वारा सब कुछ स्वतः ले लिया जाएगा। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप बांटकर अपने यश और कीर्ति की सुगंधि को बिखेरना चाहते हैं, या संभाल कर संग्रह और आसक्ति की दुर्गंध को रखना चाहता है। आपकी अपनी इच्छा है, आप जैसा चाहे। दो हाथ से हम 10 लोगों को भी नहीं हरा सकते, परंतु दो हाथ जोड़कर करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। शांति एवं स्थिर दिमाग जीवन की प्रत्येक लड़ाई का ब्रह्मास्त्र है। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा है दिल। अगर उस साफ नहीं तो चमकता चेहरा कौन काम का। होड़ करनी है तो संस्कारों की करो। फैशन का कहा है, वो तो आती है जाती है। जो स्नेह हमें दूसरों से मिलता है वो हमारे चरित्र का ही एक तोहफा है। ज्ञान का मनन, चिंतन और ईश्वरीय सेवाएं ही हमारे पुण्य का खाता बढ़ाती हैं, जिससे संस्कारों में परिवर्तन के लिए हमें हिम्मत और उल्लास मिल जाता है और परिवर्तन संभव हो जाता है। कहते हैं कि जीवन में जो कुछ करो, जितना मर्जी धन खर्च करो, सबसे सहयोग लो वो, पर जीवन से मुसीबतें तब तक समाप्त नहीं होती जब तक हमारा स्वयं का अंदर व्यवस्थित नहीं है। काहे कि ध्यान रहे कि हमारे अंदर का अस्त व्यस्त होना ही इस जीवन की हर समस्या का मूल कारण है। इसलिए हमें सर्वप्रथम स्वयं को ही भीतर से व्यवस्थित करने के हर संभव प्रयास करने चाहिए। पीड़ा सारी मिट गई, लिया जो प्रभु का नाम, गजब कृपा है आपकी परम परमेश्वर भगवान। हर नई सुबह नए जीवन के समान होती है, इसलिए बच्चा बनकर हर सुबह का मजा ले। दिन में एक ईमानदार नौजवान की तरह पूरी मेहनत से काम करें, और सायंकाल में एक समझदार बुजुर्ग और शांत चित्त संत की भांति पूरे दिन में किए कर्मों का मनन करें। कहते हैं कि जन्म के समय मात्र सांसें होती हैं, नाम नहीं, और मृत्यु के समय केवल नाम।

0: होता है सांसें नहीं, इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ध्यान रहे कि अपनी सोच को ऊंचा करने मात्र से ही हर बड़ी चीज छोटी दिखने लग जाती है। काहे कि ऊंचाई से हर चीज छोटी लगती है। तो आइए हम अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाएं। यही बात पर चलिए गीत सुन लेते हैं, फिर और समय बचा तो बतियाएंगे।
1: धर्म का मूल पाप मूल है अभिमान,

कितना मजबूत होगा वो इंसान जो अंदर से टूटकर भी दुनिया के सामने हंसता है ना बात। फिर से कहते हैं, मेहनत उसकी लाठी है, मजबूत उसकी काठी है। मेहनत उसकी लाठी है, मजबूती उसकी काठी है, विकास की वो नींव है, उसका जीवन सीख है। जिनकी गैर मौजूदगी में हर मंजिल दूर है, जो आपके ख्वाबों को पूरा करता वो मजदूर है। क्यों ना आज से हम भी कड़ी मेहनत कर अपने और दूसरों के ख्वाबों को पूरा करें। भाषा मानव का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देता है। त्याग और प्रेम के पथ पर चलकर मूल न कोई हारी, हिम्मत से पतवार संभालो फिर कैसे रहेगा दूर किनारा। कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसा, हम रोए ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे जग रोए। कहते हैं कि हर कोशिश में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन ये भी सत्य है कि हर सफलता का कारण भी निर्विघ्न कोशिश ही होती है। ध्यान रहे कि दूसरों पर भरोसा करते समय होशियार रहिएगा, क्योंकि देखने में फिटकरी और मिश्री दोनों एक जैसे ही नजर आते हैं। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसको महत्व आप दे रहे हैं उसकी नजरों में आपका कोनो महत्व ही ना हो। कैसा है जिंदगी का तेरा ये फलसफा, एक इंसान के इस दुनिया में आने की खबर तो सबको पहले से ही हो जाती है, मगर जाने की खबर उसके चले जाने के बाद ही पता चलती है। इसलिए धन्यवाद करें उस सृष्टि रूपी रचनाकार परमात्मा का, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना ऐसे अद्भुत तरीके से की है कि हर इंसान अंतिम समय तक जीने की राह पर अग्रसर रहता है। कहते हैं कि एक इंसान के आने की खबर 9 महीने पहले ही आ जाती है, पर जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं आती। ध्यान रहे कि बंद लिफाफे में रखी चिट्ठी सी है ये जिंदगी भी पता नहीं अगले ही पल कौन सा पैगाम ले आए। इसलिए हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। चिंता संत के जीवन में भी होती है और चिंता संसारी के जीवन में भी होती है, मगर दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क भी होता है, और वो ये कि संत परमार्थ के लिए चिंतित रहता है और संसारी स्वार्थ के लिए। संसारी स्वयं के लिए चिंतित रहता है तो संत समष्टि के लिए चिंतित रहता है। संत और संसारी के बीच का जो भेद होता है वो कर्मगत नहीं अपितु भावगत होता है। दोनों में बाह्य स्थिति का नहीं अपितु अंतः स्थिति का भेद होता है। संसारी भी क्रोध करता है और संत भी क्रोध करता है। संसारी लोभ करता है और संत में भी लोभ देखने को मिल जाता है। संसारी भी अर्जन करता है और संत भी अर्जन करता है, और तो और संसारी अगर संग्रह करता है तो संत भी संग्रह करता है, मगर दोनों में क्रिया भेद शून्य होने के बावजूद भी भावों में जमीन और आसमान जैसा अंतर निहित होता है। प्रकृति का नियम है कि खाना जो हम खाते हैं एक आध दिन के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। पानी जो हम पीते हैं 2-4 घंटे के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। हवा जो हम सांस लेते हैं कुछ सेकंड में ही बाहर वापस निकल जानी चाहिए, वरना हम मर ही जाएंगे। लेकिन कुछ नकारात्मक बातें जैसे कि घृणा, गुस्सा, ईर्ष्या आदि आदि, जिनको हम अपने अंदर दिनों, हफ्तों, महीने और सालों तक रखे रहते हैं, यदि इन नकारात्मक विचारों को समय समय पर अपने अंदर से नहीं निकालेंगे एक दिन निश्चित ही हम मानसिक रोगी बन जाएंगे। मनमानियां तो बचपन में होती थी जनाब, अब तो हर बात पर मन को ही मारना पड़ता है कि नहीं। अब अंत में यही कहेंगे, मीठा झूठ बोलने से लाख गुना बेहतर है कि कड़वा सच बोल दिया जाए। ऐसा करने पर हमें सच्चे दुश्मन भले ही मिल जाएंगे, परंतु झूठे दोस्तों से मुक्ति मिल जाएगी। पुरानी कहावत है कि जाहिल के साथ तख्त पर बैठने से बेहतर है किसी ज्ञानी के साथ फर्श पर बैठ जाना। ध्यान रहे कि क्रोध, पछतावे, चिंता और कुरन में अपना समय बर्बाद ना करें। ये जीवन दुखी होने के लिए बहुत छोटा है, परंतु यदि
खुश और मस्त रहें तो इस जीवन में सुख भी अपार मिलते हैं। ये कड़वा सत्य है लेकिन सही भी है, जीवन में आजमा कर देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जीवन की यात्रा आरामदायक हो तो अपेक्षाओं के सामान को कम करें, संतुष्ट मनी बन संतुष्टता का अनुभव करें। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। अच्छे और सच्चे रिश्ते न तो खरीदे जा सकते हैं न ही उधार लिए जा सकते हैं, इसलिए उन लोगों को जरूर महत्व दे जो आपको महत्व देते हैं। इतनी इस बात याद रख लीजिए, बाकी तो सब कुछ ठीक है। रिश्ता चाहे कोई हो, एक बात पक्की है, जिनसे हम आशा करते हैं वही जिंदगी का तमाशा करते हैं। और जब ये बात समझ आ जाएगी तो आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई चाहकर भी आपको आपके लक्ष्य से दूर ना कर पाए। दवा सिर्फ दवा की बोतलों और गोलियों में नहीं होती। व्यायाम दवा है, सुबह की सैर दवा है, उपवास दवा है, चिकित्सा दवा है, परिवार के साथ भोजन करना दवा है, हंसी और हास्य भी दवा है, गहरी नींद भी एक दवा है, एक दोस्त का

0: नमस्कार, आप सुन रहे ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत है। संगीत एक ऐसी सर्व इंद्रिय सुखानुभूति है जो मानव मन के अंदर में धीरे धीरे प्रस्फुटित होता है। जैसे सागर की गहराई में जितना जितना जाएंगे तो ढेर रत्नों का खजाना मिलता है, वैसे ही संगीत के सागर में जितनी गहराई में हम जाते रहेंगे तो सुर के रत्न भी मिलते हैं जो कभी भी कम नहीं होता है। संगीत रहस्यपूर्ण भी होता है। एक संगीत पिपासु की कभी भी कितना भी सुनने के बाद न दिल भरता है और प्यास भी बढ़ती रहती है। कितना भी सुनने और उसको सीखने की आश बनी रहती है। तो आइए, इसका रहस्य क्या है ये जानने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ मौजूद है श्यामली जी, उनसे ही आज जानते हैं इसका रहस्य। तो हम पहले उनका स्वागत करते हैं। श्यामली जी, संगीत की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: मैं भी दिल से सबको नमस्कार करती हूँ।
0: श्यामली जी, हमने कहा कि एक संगीत पिपासु जो संगीत सीखता है और उसको अपनाता है, उसके बाद भी उसकी हमेशा ही प्यास बनी रहती है और सीखे और उसको अपनाए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
1: हाँ जी, ये जैसे इंसान की प्रेम होता है
0: जी,
1: जब आपस में प्रेम होता है कभी वो प्रेम कभी बुझते नहीं, प्यास बढ़ती जाता है। तो संगीत भी ऐसी चीज है, संगीत बिना जिंदगी एकदम सुना सुनापन
0: जी।
1: अब देखिए, जब नींद नहीं आते हैं, संगीत सुनो नींद आ जाते हैं। कभी बच्चा रोते है उसको थोड़ा संगीत सुनाओ, वो एकदम हंसते रहे। तो इसमें जो प्रेम है, जो संगीत को जो प्रेम करते हैं, उसको तो प्यास बढ़ते जाता है। मैं भी एक संगीत प्रेमिनी, इसलिए मैं अनुभव से बता सकती हूँ। संगीत ऐसा चीज है कि वो सीखते सीखते भी मैं सोचती हूँ और भी सीखना चाहिए,
0: मैंने इससे दिल कभी भरता नहीं,
1: दिल कभी भर नहीं आता। जो सेटिस्फाइड हो जाते सोचो वो खत्म हो गया।
0: अच्छा,
1: मतलब कुछ भी शिक्षा लेने के बाद अगर सेटिस्फाइड हो जाता मतलब और आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
0: जी,
1: लेकिन
0: जी।
1: जब तक प्यास बुझ जाए तो आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन प्यास जब तक रहेंगे तब तो सीखते रहेंगे और भी जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं।
0: सीखने के लिए हमको पूरा नहीं होना चाहिए, जो उसमें
1: हम जान सकते हैं लेकिन तब भी आ जाना
0: जी।
1: हम जान सकते उसको जैसे है ना, तो अभी भी रहस्य है उसके अंदर और क्या है। कोई नए राग या रागिनी हम सीखते हैं, हम सोचते हैं इसमें क्या नया कुछ है
0: जी,
1: ये तो रहस्य है। कोई भी फिल्म देखो, आपको तो मालूम नहीं हो फिल्म क्या है, रहस्य है। अगर उसके बाद पता लगे, जानने के बाद, सुनने के बाद, देखने के बाद पता लगता है कि ये फिल्म ऐसी है। तो संगीत भी ऐसी चीज है कि वो भी रहस्यपूर्ण है,
0: जानकर अनजान बनकर उसको सीखते रहो।
1: हाँ जी
0: जी। श्यामली जी, आज आप कौन सा राग लेकर आए हो?
1: आज जो राग है बहुत सुंदर राग है, नाम है तिलक कामोद।
0: तिलक कामोद।
1: अच्छा, जैसे कि हमने पहले एपिसोड में देश राग सिखाया था
0: जी।
1: हाँ, देश राग जैसे है इसके साथ बहुत कुछ मिलता जुलता है।
0: ओके।
1: खाली इसको चैलेंज जो है अलग है। जैसे देश राग भी खंबा स्टार्ट की है, तिलक कामुद भी खंबा स्टार्ट की है। इसको वादी स्वर जो रे है, समवादी पा है। तिलक कामुद में भी वादी स्वर रे है, पा समवादी है। केवल जो कभी कभी इसको सा भी वादी स्वर कह सकते हैं।
0: अच्छा।
1: इसका जो चलन है जाने का, जैसे देश राग की औरफ संपूर्ण जाति का है और ये है सारफ संपूर्ण या संपूर्ण संपूर्ण।
0: ओके।
1: हम बताएंगे कैसे होता है तब जाके पता लगता है, क्योंकि जाने के टाइम सारफ संपूर्ण, इसलिए जाने का टाइम नी नी यूज होता है, नी। अच्छा, इसमें सब सर शुद्ध है, कोमल नी नहीं है, लेकिन देश राग में तो कोमल नी है ना। अच्छा। तो उसमें सौंदर्य जड़ता था वो कमल नी में, जाने के टाइम शुद्ध नी, आने के टाइम कोमल नी, जैसे खंबा स्टार्ट किया है। लेकिन तिलक कामद में भी ऐसे नहीं है। तो लेकिन इसका जो चलन है, गा जो है वक्र। हाँ, तो मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कि इसका समय जो है एक ही है, रात्रि दूसरा पहर है, रात की दूसरा पहर 9 से 12, देश राग की भी 9 से 12 है। तो इसलिए ज्यादा से आप सुनोगे तो सोचोगे कि ये देश राग के जैसे मिलते जुलते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका प्रकृति भी चंचल प्रकृति का है, आरोहण अवरोहण पकड़ करके सुनाते हैं
0: जी।

इसलिए इसमें जो चलन है सानी हमने किया है, मतलब मा पानी सानी दा पा, हमने ऐसे नहीं बोलकर, अगर ऐसे बोलता है सा

0: इसमें भी सर ज्यादा से ज्यादा मंद्र सर या मध्य सर में ज्यादा होता है, ज्यादा तार स्वर में नहीं होता है, जैसे देश की तार स्वर में ज्यादा होता है, लेकिन इसमें ज्यादा नहीं यूज होता है।
1: ये डिफरेंस है,
0: डिफरेंस है, थोड़ा चलन के अलग है।
2: अच्छा,
0: तो ये है, हमने आरोहण अवरोहण पकड़ किया है, समझाया। तो आप ही क्या करते हैं, थोड़ा स्वरलिपि देते हैं
1: जी,
0: अगर लिसनर जो है किताब पेन से लिख लेते हैं तो अच्छा है। ठीक है, तो ये जो ताल जो है तीन ताल की है, फाग से शुरू होता है। रे गा रे पा मा गा रे नी सा, ये जो नी है नीचे नी मंद्र सर की है, फिर से नी पा नी सा सब मंद्र सर की है, रे गा नी सा ये मंद्र सर की है, रे गा रे पा मा गा रे नी सा नी पा नी सा रे गा नी सा। नेक्स्ट लाइन, रे मा पा धा मा पा सा सा, ये जो सा है तार स्वर की है, पा धा मा मा गा रे गा रे नी सा, ये जो नी है मंद्र सर की है। फिर से बोलती हूँ, रे गा रे पा मा गा रे नी सा नी पा नी सा रे गा नी सा, रे मा पा धा मा पा सा सा पा धा मा मा गा रे गा रे नी सा। तो हम ये करके सुनाते हैं
1: स्वरलिपि।
0: हाँ, स्वरलिपि स्थायिका।
1: श्यामली जी, स्वरलिपि की बातें हम ब्रेक के बाद करेंगे, उसके पहले ले लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक और हमारे श्रोता मित्रों को सुनाते हैं एक सुंदर सा तिलक कमोद के संबंधित एक मीठा सा गाना। आप सभी श्रोता मित्रों इसका आनंद लीजिए और हम फिर लौटते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन।

0: पुनः आप सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने तिलक कमोद राग के बारे में श्यामली जी से सुना, उसकी स्वर लिपि, और आगे हम बढ़ रहे थे कि हमने आपको एक प्यारा सा गीत भी सुनाया। श्यामली जी, आपका भी संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। आगे आप क्या सुनाना चाहेंगे?
1: हाँ, अभी स्वर लिपि तो आपने दे दिया है
0: जी।
1: तो वो करके सुनाते हैं।

0: ही हमने स्थाई का दे दिया। अभी अंतरा जो होता है, अंतरा में थोड़ा थोड़ा अलग से है कि इसलिए कि सोम से शुरू होता है।
1: अच्छा,
0: बंदिश का जो चलन है इसमें सोम से सुता है। जैसे रेगा रेपा हमने फाक से शुरू किया है, तो उसके बाद क्या करेंगे, रेगा रेपा मा गाड़ी नी सा तक करेंगे, उसके बाद हम अंतरा शुरू करेंगे। ठीक है, तो लिसनर स्वर पे लिख लेते हैं तो अच्छा है। मामा मामा पापा नीनी सा सा नीनी सा सा नी सा, ये जो सा है तार स्वर की है और नी जो है मध्य स्वर की है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन रे रे सारे जो है सब ऊपर की है, तार स्वर की है। रे रे सारे गा नी सा सा, गा जो है ऊपर की है। पानी सारे ऊपर की है। नी सा आ पा पा धा मामा गरे गरे नी सा, फिर से बताती हूँ। मामा मामा पापा नीनी सा सा नीनी सा सा नी सा, रे रे सारे गा नी सा सा, पानी सारे नी सा आ पा पा धा मामा गरे गा नी सा। ठीक है
1: जी,
0: मैं करके सुनाती हूँ।

0: ये बंदिश थोड़ी सी लंबी थी ऐसा हाँ, लग रहा है।
1: नहीं ऐसे लंबी नहीं है, खाली 8 मात्रा ज्यादा है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि हमने क्या किया, वो जो 8 मात्रा मुखड़ा किया है उसके बाद अंतरा थोड़ा 8 मात्रा ज्यादा किया है। इधर 8 मात्रा ले लिया, उधर 8 मात्रा और भी दे दिया, मतलब कि 16 मात्रा कंप्लीट हो गया। हमारा जो करना है 3 ताल के अंदर करना है, 16 मात्रा के अंदर करना है। अगर ऐसे करते तो 16 मात्रा के अंदर आ जाते हैं। 8 मात्रा अगर स्थाई का मुखड़ा करते हैं, स्थाई का कर लेते, उसके बाद 8 मात्रा जोड़ देते हैं
0: जी,
1: अंतरा की 8 मात्रा एक्स्ट्रा है जोड़ देते हैं। फिर हम जाके वो जैसे सागर में नदियां मिलते हैं, ऐसे अंतरा की लास्ट लाइन में जाके फिर स्थाई से मिलते
0: मिल जाते हैं।
1: हाँ, जी, मिल जाते हैं। तो इसमें अगर आ सहयोग में करेंगे, पहले तो नया राग है ना, थोड़ा चलन भी अलग है, बहुत सुंदर राग है, तो थोड़ा इसमें ना ज्यादा शास्त्रीय संगीत नहीं बनती है।
0: अच्छा।
1: ज्यादा ज्यादा भजन गीत मॉडर्न सॉन्ग या कुछ होता है, तिलंगा मध में ठुंगरी भी हो सकता है, बहुत सुंदर राग है। मॉडर्न सॉन्ग भी ज्यादा होता है, भजन भी होता है, बहुत सुंदर भजन भी है।
0: आपने कहा ना कि ये तो चंचल प्रकृति का राग है,
1: चंचल प्रकृति का है, बहुत सुंदर राग है,
0: इसीलिए मॉडर्न सॉन्ग हो सकता है।
1: नेक्स्ट एपिसोड में हम बंदिश करेंगे, तब जान जाओगे कितना सुंदर है राग।
0: जाते जाते श्यामली जी, आज आप हमको क्या सुनाने वाले हैं?
1: आज हमने बहुत सुंदर एक गीत है, उस्ताद रशीद खान साहब की है।
0: अच्छा।
1: बहुत सुंदर उनका जो कंपोजिशन था, गीत गाए हुए थे। मैं कोशिश कर सकती हूँ। आओगे जब तुम ओ सजना, बहुत सुंदर है। ये तिलक कामत के ऊपर राग आधारित है, उन्होंने बहुत अच्छा से पेश किए हैं
0: जी।
1: तो हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है
0: जी।

0: वाह, सच में प्रकृति में भी फूल खिल गए, कुदरत का नजारा बदल गया।
1: उस्ताद जी, जैसे पेश किया मैं तो कोशिश किए हैं, शायद कुछ गलती हो जाए तो ऑडियंस सुनते हैं ना, ये हमने जो गीत हमने कोशिश किया है हम पंडित जी को अर्पण किया है
0: जी, जी।
1: क्योंकि हमने बहुत बार सुने हैं, उसके प्रोग्राम भी अटेंड किए थे।
0: अच्छा,
1: हम नहीं सीख पाए उनके पास, लेकिन इतना अच्छा उन्होंने निभाया है ये गीत, मैं तो सोचती हूँ मैं एक अंश कर सकती हूँ।
0: क्यों, ये कलाकार सारे सच में उन्होंने इतनी मेहनत और अपनी लगन से
1: इतना, उसको भाईस में मिठास ना
0: जी,
1: आप सुनने के बाद आपको नींद आ जाएंगे। अब तो गीत ये सुन लिया ना
0: जी।
1: कितना सुंदर गीत का जो भाव जो है, भावना
0: बहुत सुंदर। श्यामली जी, इसी के साथ समय देता है हमको इजाजत, हम पुनः मिलेंगे अगले हफ्ते संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। श्रोता मित्रों, आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कुछ पूछना चाहते हो संगीत से संबंधित, तो आप हमें तुरंत कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 94-14-15-14-15। फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा नंबर है 9414151415। फिर मिलेंगे, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4।

0: आसमान में छाए हैं काले बादल, सूरज आंख में चोली खेल रहा है और हवा ऐसी चल रही है मानो अपने साथ उड़ाकर ही ले जाएगी। ओह, आप सोच रहे होंगे कि खिड़की के बाहर तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, आखिर ये मौसम के गलत सलत हाल क्यों बताए जा रहे हैं हमें? तो जी, मैं आपको बता दूं कि ये मौसम की जानकारी नहीं बल्कि एक घर का हाल है। जी हाँ, ऐसे घर का जहाँ लोगों का स्वभाव ऐसा है जैसे सर्दी गर्मी बरसात पतझड़ एक साथ रहते हों, और जज्बात ऐसे कि सूरज को पश्चिम से उगा दे और तारों को दिन में दिखा दे। यहाँ रोज होते हैं नए नए किस्से, गुस्सा, प्यार, हंसी मजाक, सब कुछ भरपूर है। यहाँ बातें होती हैं हवा में, इसलिए ये घर है ऑन एयर। मिलिए राजस्थान के राठौड़ परिवार से। आज जब सब न्यूक्लियर परिवार के ढांचे में ढल चुके हैं, वहीं राठौड़ परिवार में रहते हैं 16 सदस्य साथ साथ, यानी 16 अलग अलग स्वभाव, 16 अलग अलग अनूठे कैरेक्टर और 16 अलग अलग कहानियां। आइए मिलते हैं राठौड़ परिवार के पहले सदस्य, घर के सबसे बड़े भाई यानी बच्चों के ताऊजी श्री गजेंद्र सिंह राठौड़ से। ये आदर्शवादी, आशावादी, बात सभ्यता से करते हैं, स्कूल टीचर हैं, संस्कारों से इनके दिन रात चलते हैं। अरे अरे, रुकी रुकी है, और भाई इनके बिना गजेंद्र सिंह जी कहां पूरे होते हैं। साथ में मिलिए गजेंद्र सिंह जी की धर्म पत्नी श्रीमती चंद्रावती राठौड़ से, जो बात बात पे नाक चढ़ाती हैं, खबर ये सब की रखती हैं, पल में तोला, पल में माशा, पल पल में रंग बदलती हैं।
1: ठीक है, लगाता हूँ।
2: अरे मैंने बोला ना यार, उसमें नहीं लगाने पैसे, इसमें लगा।
3: पैसे लगाना मतलब सट्टा। आजकल के बच्चे ना शर्म है ना संस्कार, क्या कर रहे हो तुम लोग ये हैं जी? ये सट्टा वट्टा इस देश को बर्बाद कर रहा है
2: अंकल। हम
3: देखो, तुम युवा पीढ़ी हो, तुम्हारे ऊपर अपने देश की जिम्मेवारी है।
1: अंकल हम
3: आदर्श ये कहते हैं कि मानव को सदा सच्चा धन ही कमाना चाहिए, झूठा धन समृद्धि नहीं लाता है।
4: ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं अंकल जी?
1: अरे ताऊ जी हैं ये राठौड़ परिवार के, एक बार को प्लेन को भी ब्रेक लग सकता है लेकिन इनका ब्रेक।
5: अजी सुनते हैं, जल्दी आइए, आपके कॉन्स्टिपेशन की दवा आ गई।
3: अरे आ रहा हूँ, क्या तुम सबके सामने बोले जा रही हो?
5: झूठ बोलूं तो मिर्ची खाऊं, मैं तो इनकी चिंता कर रही थी। अब मेरे अलावा इस घर में है ही कौन जो इतना ध्यान रखे किसी का। ये बहू को देखो, बाप समान जेब की कोई फिक्र ही नहीं है, लगी हुई है टीवी देखने।
0: अगर कोई आपसे कहे कि चलता फिरता रेडियो देखा है तो आप उसे एक बार ताई जी से जरूर मिलवा दीजिएगा। कभी ताने कभी गम, इनका तो बस यही नारा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं राठौड़ परिवार की दो बहनों से। बड़ी बहन है रागिनी, ये फेमिनिज्म के राग अलापती है। छोटी बहन है शांति, लेकिन असल में जिनसे शांति कोसों दूर भागती है।
6: आज तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं, मुंह काला करके गधे पे घुमाएंगे। अरे पत्नी पे हाथ उठाना ये कोई आम बात नहीं है। जिस दिन सारी पत्नियां जाग गई ना, देखना इन मर्दों की तो खैर नहीं। चलो कल सुबह अनशन पर मिलती हूँ।
7: फिर से सुबह सुबह शुरू हो गई। दीदी थोड़ा चिल करो, हिंसा तो आप मेरी नींद पर कर रही हो। थोड़ा सोने दो ना, मेरे डार्क सर्कल्स हो जाएंगे, मुझे आज पार्टी में भी जाना है।
8: शांति शांति शांति शांति।
7: क्या हुआ माँ, सुबह सुबह मुझे क्यों बुला रही हो?
8: अरे मैं भगवान को बुला रही हूँ, तुझे नहीं। और आंखें खोल, 8 बज गए हैं, क्या कुंभकर्ण की तरह सोई हुई है। ओ राम राम राम राम, माफ करना प्रभु, माफ करना, मैंने आपको याद करते करते अपने मुख से राक्षस का नाम ले लिया। माफ करना भगवान, माफ करना। आज ही मंदिर जाके पूरे 2 नारियल चढ़ाऊंगी प्रभु।
0: चलिए बढ़ते हैं अब आगे और मिलवाते हैं आपको राठौड़ परिवार के सबसे छोटे भाई किशन राठौड़ जी से। बच्चों के साथ ये बच्चे बन जाते हैं, छोटे हैं पर बड़ा शायराना मिजाज रखते हैं। मनमौजी हैं थोड़े थोड़े से हैं जिम्मेदार, जिंदगी के पेचीदा मसले इनकी कलम से सुलझते हैं।
9: अंधेरे बाहर हो तो मंजर, अंदर तलक आए तो गम है, जिंदगी की तस्वीर में मुश्किलों के भी अपने रंग हैं।
10: चाचू, लिखा तो बहुत अच्छा है आपने, लेकिन
9: लेकिन क्या?
10: लेकिन बात कुछ समझ नहीं आई।
9: कोई बात नहीं बेटा, जीवन है, जीवन में सब कुछ समझ नहीं आता। ये बताओ, कल जो टेबल याद कराई थी वो तो भूल नहीं गया ना?
10: नहीं चाचू, आपने गाने में गा के सिखाई थी ना, कैसे भूलूंगी। लेकिन एक बात बोलूं प्लीज?
9: बोल बेटा बोल।
10: ये कविताएं आप किसी अपने उम्र वालों को क्यों नहीं सुनाते हो? हम बच्चों को क्यों सताते हो?
9: अच्छा बेटा रुक, अभी बताता हूँ।
10: अरे चाचू, मैं जा रही हूँ।
0: बचपन किसी पौधे की तरह होता है, अगर शिक्षा की खाद और स्नेह का पानी न मिले तो ये पनप नहीं पाता। जहाँ इतने बड़ों का हाथ सर पर हो वहां तो ये हंसी खुशी लहराएंगी ना। अब मेरी बात पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि बा मुलायजा होशियार पधार रही हैं राठौड़ परिवार की राजकुमारी, मतलब राठौड़ परिवार की मंजली बहुरानी राजकुमारी जी, जो भोली भाली हैं दिल की पर रहती हैं थोड़ी अस्त व्यस्त, किचन के बर्तन भी डरते हैं इनसे, देती हैं उन्हें इतना कष्ट। और साथ में आपको मिलवाते हैं घर की सासू माँ यानी अंबिका देवी राठौड़ से, जो सबका रखती हैं ख्याल पर इनके ख्याल कभी कभी करते हैं सबको हैरान।
11: ये बर्तन किसने बनाए? अब कटोरी इतनी गोल कि हाथ से सरक जाए और थाली इतनी चपटी कि हाथ पकड़ ही ना पाए। किसी का बुरा ना बोलू। चल राजकुमारी, फिर से सारा काम कर।
12: राजकुमारी क्या कर रही है, आराम से कर।
11: हाँ ठीक है माँ साहब, बस खाना तैयार है, लेके आई बस।
12: बेटा राजकुमारी, दाल में इस बार नमक ही डाला है ना?
11: हाँ माँ, इस बार तो चीनी का डब्बा ही खाली हो गया ना, तो पक्का नमक ही डाला है।
0: आई नो आप लोग यही आशा कर रहे होंगे कि खाने में नमक ही पड़ा हो, वरना खाने वालों का तो भगवान ही मालिक है। चलिए अब आपको मिलवाता हूँ घर के सबसे बड़े व्यक्ति यानी राठौड़ परिवार के पिताजी श्री भगवत सिंह राठौड़ जी से, जो हैं ज्ञानी, धैर्य हैं इनकी निशानी, दुनिया के किसी भी मुद्दे पर सुना सकते हैं ये एक न एक कहानी। और साथ में मिलिए इनके मंझले बेटे यानी वीरेंद्र सिंह राठौड़ जी से, जो वक्त के हैं पक्के, करते हैं सबका सम्मान, नई टेक्नोलॉजी से जूझते हैं, इनके जोक्स को तो करता हूँ मैं भी सलाम।
13: श्री ये बताओ कि मौसम का हाल कैसा है? अरे बोलो श्री। अब क्या तुमको श्री श्री महाराज बोलूं तब जवाब दोगे?
14: डैड व्हाट हैपेंड?
13: अरे ये श्री जवाब ही नहीं दे रही।
14: ये श्री कौन है डैड?
13: अरे ये फोन में होती है, हमारे ऑफिस में आज हमने देखा था, वो सौरभ अपने फोन से बात कर रहा था कि श्री ये बताओ वो बताओ, तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करूं।
14: अरे डैड, वो श्री नहीं सीरी है, और वो महंगे वाले फोन में होता है, आपके वाले बजट फोन में नहीं।
13: ठीक है पढ़ाई करो जाकर, वरना बड़े होकर ये बजट वाला फोन भी नहीं खरीद पाओगी।
15: अरे ये फोन क्यों खरीदेगी, मैं दिलाऊंगा ना इसको मेरी प्यारी पोती को।
13: पिताजी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, इसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाऊंगा मैं।
15: हाँ भाई बिल्कुल बने, आखिर भगवत सिंह राठौड़ की पोती जो है, बच्चों को प्यार और शिक्षा के बैलेंस से बड़ा करो तो वो जीवन में सफल भी होंगे और अच्छा इंसान भी बनेंगे।
13: जी पिताजी, बच्चों के सर पर माँ बाप के साथ साथ दादी दादा और बड़ों का साया है तो फिर मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। चलो आ जाओ बच्चों, आज दादाजी तुम सब के लिए मालपुआ लाए हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
0: देखिए भाई, सारे परिवार के सदस्यों से तो मैंने आपको मिलवा दिया, अब ये कौन आया है गेट पर, आइए चलिए देखते हैं।
16: मैडम 50 पिज्जा की डिलीवरी है आपके घर।
2: 50 पिज्जा किसने मंगाए?
17: राजकुमारी।
18: अरे मैंने कुछ नहीं किया।
6: हाँ हाँ, इल्जाम हमेशा एक औरत पर ही आता है।
18: वाओ पिज्जा, मजा आ गया।
3: ये विदेशी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हो तुम लोग, दाल बाटी चूरमा खाओ, ये क्या लगा रखा है पिज्जा?
17: बच्चों रुको, लाओ इधर लाओ पिज्जा, ये हमने नहीं मंगवाया भाई साहब।
3: कौन मंगवाते रहे?
17: अरे फिर मंगवाया किसने?
18: मुझे तो चाहिए।
17: वापस कर दो उसको।
18: नहीं नहीं नहीं, मेरा वाला पिज्जा तो वापस नहीं जाएगा।
3: नहीं नहीं, कोई पिज्जा नहीं रहेगा यहाँ पर।
0: अब इतने सारे पिज्जा का क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात जरूर पता है कि इस परिवार से मिलके आपको बहुत मजा आने वाला है। खुशी, नोकझोंक, प्यार की मिठास और अनबन का तड़का भी है। राठौड़ परिवार में सब कुछ मिलेगा आपको। अब जिस घर में इतनी वैरायटी है लोगों की, सोचिए किस्सों की कितनी होगी। जीवन के हर रंग को लेकर अगले एपिसोड में फिर लौटेगा कार्यक्रम घर ऑन एयर, सिर्फ रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, 107.8 की फ्रीक्वेंसी पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
19: घर ऑन एयर, पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौड़, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौड़, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौड़, आरजे श्रीनिधि। ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौड़, आरजे रोहित। ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौड़, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौड़, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौड़, आरजे विशाल।

बच्चन, राजकुमारी राठौर, आरजे आरुषि, बच्चे रूहानी अमीक्षा, नैरेटर आरजे अमित। आशा करते हैं घर ऑन एयर का पहला एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा। इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का, क्योंकि राठौर परिवार की कहानी तो अभी बस शुरू ही हुई है। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, मैं हूं सिंगर साइराम अय्यर और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप और रेडियो मधुबन के सभी सुनने वाले श्रोताओं को फिर से स्वागत है कार्यक्रम सलामी जिंदगी में। दोस्तों, जब हम बात करते हैं सलामी जिंदगी में तो हम बात करते हैं अनुभव की, हम बात करते हैं वो सम्मान की जो हमारे बुजुर्गों ने अपने जीवन के माध्यम से अपने देश को दिया है, अपने परिवार को दिया है और अपने आसपास के समाज को दिया है। आज हमारे साथ मौजूद है जगदीश कुमार वर्मा जी, जो हिमाचल प्रदेश से हैं, हमीरपुर से, और आज के इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, जहां पर हम आगे की यात्रा उनकी जानी की वर्तमान जीवन, एक बुजुर्ग का जो जीवन होता है, एक हमारे सीनियर सिटीजन का जो जीवन होता है वो बहुत ही सम्मान का पात्र होता है, क्योंकि इस समय तक वो कम से कम 60-70-80 साल अपने जीवन के, अपने देश को, परिवार को, अपने समाज को दे चुके होते हैं। और आज जो हमारे साथ व्यक्तित्व मौजूद हैं वो तो शिक्षक है, और शिक्षक आप जानते हैं कि कितने सारे जीवनों को गढ़ने का काम करते हैं, क्योंकि माता पिता बच्चों को 4-5 साल तक अपनी निगरानी में रखते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं, लेकिन उसके बाद की जो शिक्षा है कि संसार में कैसे आगे बढ़ना है, अपना जीवन को कैसे साधारण से असाधारण बनाना है, यह जिम्मेदारी शिक्षक के ऊपर आ जाती है। तो आइए फिर से स्वागत करते हैं जगदीश जी, आपका फिर से स्वागत है। और अभी मैं वर्तमान जीवन के बारे में जानना चाहूँगा कि जो हमारे बुजुर्ग साथी भी सुन रहे होंगे रेडियो मधुबन पर आपको, तो आप अपने दिनचर्या के बारे में जरूर कुछ बताएं ताकि हम उसमें से कुछ समझने का प्रयास करें। वर्तमान समय आपकी उम्र 80 वर्ष है और आप उतने ही युवा हैं, और आपने इतना खूबसूरत गीत जो आपने खुद लिखा है और खुद गाया है, आपकी आवाज़ से लोगों ने अनुभव किया होगा कि कैसे उसमें जोश है, उसमें मिठास है, सब कुछ है, उसमें भावना है
1: जी।
0: तो अभी वर्तमान समय आपका रूटीन कैसे रहता है ताकि आप अपने को तन से, मन से, सामाजिक रूप से स्वस्थ रख सकें?
1: अब मेरा जीवन जो है ये रिटायरमेंट के बाद हमने ये सोचा कि अभी बुढ़ापे को किस ढंग से बताया जाए
0: जी,
1: ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। इसके लिए हमने शुरू से ही थोड़ा सा मन को भी ठीक रखने का प्रयास किया है और तन को भी। तन के लिए तो हम थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह, योगासन वगैरह करते रहते हैं
0: जी,
1: और मन की शुद्धि के लिए, मन की शक्ति के लिए हम मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं,
0: ओके,
1: क्योंकि हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है।
0: तो जैसे अभी देखते हैं बहुत सारे युवा लोग भी थोड़ा सा इस बारे में कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं
1: जी।
0: एक कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और इन सबकी दुनिया ने उन्हें एक अलग प्रकार से बिजी कर दिया है, उसमें उनको सुख अनुभव

0: होता है और उसमें लगे रहते हैं और कई बार फिजिकल एक्टिविटी से भी दूर हो जाते हैं। तो आप जो है आपका बचपन सभी तक की यात्रा में फिजिकल एक्टिविटी का क्या स्थान रहा, कब आपको उसका महत्व समझ में आया, कब से आप इसको प्रैक्टिस में रखे?
1: मेरे स्टूडेंट लाइफ से ही थोड़ा हम गेम्स के अंदर भी पार्टिसिपेट करते थे और उसके वजह से हमारा इंटरेस्ट भी था गेम्स में
0: जी,
1: और उससे हमारी फिटनेस बनी रही। और अब भी हम देखते हैं तो अब भी हमें जब कि मौका मिले तो आज हम वही गेम जो है एक इस उम्र में भी खेलने को दिल करता है कि हम खेलें और कुछ करके दिखाएं
0: जी।
1: और इसमें भी रुचि होने के कारण ही अभी शरीर जो है वो मेंटेन कर रखा है, उसमें कोई अभी तक कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ठाक चल रहा है।
0: तो कई बार हम बातचीत करते हैं जब हमारे बुजुर्गों भाई बहनों से रेडियो मधुबन के सलामे ज़िंदगी कार्यक्रम में, तो कई बार कई लोग अनुभव सुनाते हैं कि अगर मैंने ये नहीं किया होता तो अच्छा रहता, मेरा स्वास्थ्य के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा, या कुछ ऐसा आपको लगता है कि जो आपने आपको लगता है कि आपने अपने जीवन से सीखा है जो दूसरे को नहीं करना चाहिए?
1: ऐसा नहीं आया, क्योंकि हमने पहले से ही अपने को भारतीय संस्कृति के आधार पर डाल रखा था
0: जी,
1: और अपने नियमों को मेंटेन कर रखा था, और जो जितनी बुराइयां थी इनसे हम बचे रहे। बुराइयों से बचने के कारण ही आज हम देख रहे हैं कि आज हम स्वस्थ हैं। अगर हम किसी बुराइयों में फंसे होते
0: जी
1: तो शायद उसमें फिर छोड़ना मुश्किल हो जाता है। आज हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो इस चीज में ज्यादातर फंसते जा रहे हैं, छोटी सी आदत बन जाती है और उसमें वो फंसते फंसते जीवन भर के लिए वो बनाते हैं, फिर अंत में वो छोड़ना चाहते हैं तो नहीं छूट पाती है। तभी तो किसी ने सच कहा है कि 6 फुट का जवान और 3 इंच बीड़ी का गुलाम। फिर कहता क्या अपने आपको
0: जी
1: कि मैं स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ, लेकिन व्यक्ति एक बीड़ी को ऊपर कंट्रोल नहीं कर सका, उसको भी अपने अधीन नहीं कर सका, वो अपने आप को स्वतंत्र कैसे कह सकता है?
0: सही है, स्वतंत्र भारत का अभियान चलाना पड़ा था, अभी जो नशा मुक्त भारत का भी अभियान चलाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अलग अलग प्रकार के नशे में जो नई टेक्नोलॉजी आके उसके भी नशे में है और जो नशे हैं जो कंज्यूम किए जाते हैं उसके भी नशे में है।
1: और एक बहुत ही जो चल रही है प्रथा बच्चों के अंदर, ये बच्चों को बहुत ही डाउनफॉल कर रही है, बच्चे इस अवस्था में गिरते जा रहे हैं और वो आगे क्या बनने वाले हैं वो तो फिर भविष्य जाने, लेकिन यहाँ ये दिखने में आ रहा है कि हर बच्चे को सरकार तो कोशिश कर रही है लेकिन साथ में पेरेंट्स भी कहते रहते हैं, लेकिन जो बच्चे आदि बन जाते हैं तो उनको छोड़ने के लिए भी उनको दिक्कत हो रही है। तो ये आदत मानव के लिए बड़ी घातक सिद्ध होती जा रही है,
0: नशा जो है जीवन को गिराने का काम करता है,
1: बहुत जरूरी।
0: तो नशे की लत से बचाना सबको। दोस्तों जो आप रेडियो मधुबन सुन रहे हैं और अगर आपके आसपास कोई नशा करता है तो मैं समझता हूँ एक प्रेरणा आप भी बन सकते हैं, एक दीपक जलाने का काम आप भी कर सकते हैं, उनसे साथ बैठें, उनसे प्यार से पेश आएं और उन्हें समझने के लिए सहायता करें कि कैसे नशा जो है आवश्यक नहीं है और इस नशे के बिना उनका जीवन और बेहतर हो सकता है, और नशे से उनका तन मन धन सब नुकसान होता है और जो हमारा संबंध है लोगों के साथ में वो भी बिगड़ जाता है, तो इस पर अवश्य प्रयास करें। आइए चलते हैं जगदीश जी के, और जगदीश जी जैसे हम बात कर रहे थे आपके जीवन शैली के बारे में, तो आपने बताया कि आप योग का अभ्यास करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं
1: जी,
0: और एक्सरसाइज का भी करते हैं और भोजन और इन सब चीज़ों का भी संयम रखते हैं। तो हमारे जो आपके जैसे उम्र के जो साथी हैं जो रेडियो मधुबन सुन रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार से अगर उन्होंने अवसर प्राप्त कर लिया है अपने कार्यमय जीवन से या नहीं भी किया है तो अपने तन मन को स्वस्थ रखने के लिए क्या विशेष प्रयास वो कर सकते हैं?
1: तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि एक मानव के नाते ये हमारा परम कर्तव्य बनता है कि वास्तव में हम अपना भविष्य देखें और हमारे जीवन के आधार पर हमारे बच्चे जो आगे सीख पाते जाते हैं उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। अगर हम पहले से ही नशे के चक्कर में नहीं होंगे तो बच्चे भी इन बातों को देखते हुए वो भी कोशिश के बचे रहेंगे, तो ये देखा देखी की बात होती है, देखने देखते ही बच्चे बेकार बुराइयों में फंसते हैं और फंसते फंसते ही वो इतने फंस जाते हैं कि उनको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो अब यही कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स तो अपने आप को संभालें और उसके बाद बच्चों की तरफ भी पूरा पूरा ध्यान दें।
0: तो कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं हम, हमारे सभी श्रोताओं को कुछ मैसेज भी दीजिए और एक गीत से कार्यक्रम का जो पूरा करेंगे हम।
1: जी, तो मैसेज तो यही है कि हम भारतवासी होने के नाते अपने आप को भारतीय संस्कृति के अनुसार ढालें। भारत हमारा महान था, जिसका गायन था कि वो कितना ऊंच था, वहाँ पर जिस देश के लिए हमारे नेताओं ने हमारे वीर जवानों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, और इसलिए तो नहीं दी थी कि वो हमारा भारत जो है इस अवस्था में पहुंच जाए कि गली गली में ही उसको वो नशे की चीजें मिलने लग पड़े और वो उनका इस्तेमाल करके फिर भारत को दुर्दशा की ओर धकेल दे। तो ये तो हमारे बहुत ध्यान देना है कि वीरों के कुर्बानियों को हमने व्यर्थ नहीं जाने देना है। जिस काम के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी हैं वो इसीलिए दी हैं कि हमारा भारत जो है वो महानता की ओर जाए, ना कि गिरावट की ओर जाए।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद इस मैसेज के लिए। कार्यक्रम सलामी ज़िंदगी में आप रेडियो मधुबन पर पधारे, हमारे श्रोताओं को प्रेरणाएं दी, अपने जीवन के बारे में बताया, समाज के बारे में आपके जो विचार हैं उनको भी हमारे श्रोताओं के समक्ष रखा। तो चलिए आगे चलते हैं और कार्यक्रम से हमारे श्रोताओं से विदा लेंगे, लेकिन इससे पहले सुनना चाहेंगे आपसे एक और प्रेरणा संपन्न गीत।
1: तो मैं एक छोटा सा गीत और गाने जा रहा हूँ, उसके बोल हैं, मत जाओ जाने वाले मत जा, पाप के घड़े की ओर मत जा। मत जाओ जाने वाले मत जा, पाप के घड़े की ओर मत जा, पाप के घड़े की ओर मत जा। जीवन तेरा अनमोल है, पाप के घड़े की ओर मत जा, पाप के घड़े की ओर मत जा।

0: कर ईश्वर को याद प्राणी, कर ईश्वर को याद प्राणी, पोही पार लगाएगा। मत जा, मत जा हो जाने वाले मत जा, पाप के घड़े की ओर मत जा, पाप के घड़े की ओर मत जा। ये भाई बंधु तेरे किसी काम ना आएंगे, ये भाई बंधु तेरे किसी काम ना आएंगे, तेरे ही कर्म तुझको, तेरे ही कर्म तुझको यम से छुड़ाएंगे। मत जा हो जाने वाले मत जा, पाप के घड़े की ओर मत जा, पाप के घड़े की ओर मत जा। चाहता है तू मंदिर में परमट कटवाने को, जाता है तू मंदिर में परमट कटवाने को, रख करके नया पैसा, रख करके नया पैसा भब से तर जाने को। मांगता है दिल की सफाई वो, भूखा नहीं तेरे दिए दान का, भूखा नहीं तेरे दिए दान का। मत जा हो जाने वाले मत जा, पाप के घड़े की ओर मत जा, पाप के घड़े की ओर मत जा। जीवन तेरा अनमोल है, पाप के घड़े की ओर मत जा, पाप के घड़े की ओर मत जा। धन्यवाद।
1: नमस्कार, मैं हाकम खान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, माने आवे पिया जीरी हिचकी, मारो वादी लो चितारे माने आवे हिचकी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए संपर्क करावे हमारे टेलीफोन नंबर है 9001313752, 9001313752, ये हमारे टेलीफोन नंबर है। मधुबन रेडियो की तरफ से प्रसारण किया जा रहा है राजस्थानी लोकगीत आवे माने हिचकी। हमारा संगीत कला केंद्र है जहां हमारे संगीत बच्चे सिखलाई लेते हैं। बच्चों को संगीत सिखलाई के लिए हमारे को कमायचा, खड़ताल, ढोलक, हारमोनियम सिखाया जाता है। तो संगीत सिखलाई के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम में जरूर हमारे संपर्क करें। संगीत निर्देशक हाकम खान

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। रेडियो मधुबन पर सलामी जिंदगी कार्यक्रम का श्रोताओं समय हो गया है। आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हमारे आसपास के समुदाय और भी दूर दराज के क्षेत्र से जो हमारे स्टूडियो पर पधारते हैं महानुभाव, जो 60 साल से ज्यादा अपने जीवन के वसंत देख चुके हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और उनके जीवन में झांकने का प्रयास करते हैं, ताकि हमें हमारे समाज में मौजूद हमारे बुजुर्गों का जीवन के बारे में समझने का मौका मिले और उस अनुसार हम अपने जीवन को हमारे आसपास रहने वाले बुजुर्गों का सम्मान करें, उनको समझें, उनको केयर करें। तो आइए, आज के इस एपिसोड में हम स्वागत करते हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं जगदीश कुमार वर्मा जी। जगदीश कुमार वर्मा जी का जन्म 1944 में हुआ था, 1944 में, और आप वर्तमान समय हिमाचल प्रदेश हमीरपुर में रहते हैं। पेशे से आप एक शिक्षक रह चुके हैं। करीब 22 साल पहले उन्होंने अवसर प्राप्त किया था इस प्रोफेशन से, और वर्तमान समय एक हॉबी के रूप में उन्होंने गीत लिखना, गीत सुनाना, इसको हॉबी के रूप में अपना रखा है और बहुत ही खुशमिजाज हैं। दोस्तों, जब आप बातचीत सुनेंगे हमारी तो आपको ये अनुभव होगा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जगदीश जी।
1: धन्यवाद जी।
0: कैसा महसूस कर रहे हैं?
1: बहुत अच्छे।
0: तो जगदीश जी, जैसा हम इस कार्यक्रम सलामी जिंदगी में आपका स्वागत करते हुए जानना चाहते हैं हमारे श्रोताओं की ओर से, इस पहली कड़ी में हम बातचीत करेंगे आपके बचपन के बारे में।
1: जी।
0: कोई भी प्रयास हम आरंभ करते हैं दुनिया में तो हर चीज की एक नींव होती है। ऐसे ही इंसान के जीवन की जो नींव है वो है बचपन। बचपन में जहाँ हमारा जन्म होता है, जो हमारे माता पिता होते हैं, जहाँ हम पढ़ने जाते हैं, जैसे हमारे दोस्त होते हैं, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं हमारा जीवन आगे बढ़ता जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जो श्रेष्ठ संग है वो तो हमें तार देता है, और जो अच्छा संग नहीं मिले तो जीवन खराब हो जाता है।
1: जी।
0: जानना चाहेंगे कि आपका कहाँ जन्म हुआ, और आपके माता पिता के बारे में भी कुछ सुनना चाहेंगे कि किस प्रकार से आपने उनकी पालना प्राप्त की, और आज जब उनको आप याद करते हैं तो कौन सी वो वैल्यूज आप उनके जीवन की देखते हैं जो आपके अंदर भी है?
1: हमारी फैमिली में हमारे माता पिता के 9 बच्चे थे।
0: ओके।
1: और मैं 2 से छोटा हूँ, तीसरे नंबर मेरा था। और जब मेरी इतनी बड़ी फैमिली थी तो हमारे पिताजी एक गोल्ड स्मिथ का काम करते थे।
0: ओके।
1: और उस हिसाब से वो इस फैमिली का वाहन करते थे।
0: हमीरपुर में ही थे?
1: हमीरपुर में ही।
0: जी।
1: तो वहाँ पर पिताजी की तबीयत कभी ठीक भी नहीं रहती थी, कभी ठीक रहती थी, इस उलझन में भी रहते थे, लेकिन फिर भी पिताजी बच्चों की पालना के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी।
0: जी। कौन सी वो वैल्यूज आप सबसे ज्यादा उनसे अनुभव करते हैं कि जिसको देख करके आपने सीखा?
1: पिताजी के मैंने देखा कि उनके अंदर एक भारतीय संस्कृति के अनुसार जो उनके अंदर धार्मिक विचार थे, और वो रामायण महाभारत को यहाँ तक कि उन्होंने जवानी याद कर रखा था हारमोनियम के द्वारा, वो हफ्ता हफ्ता यानी कि 7 दिन तक ये बगैर देखे किताब देखे भी वो कर लिया करते थे। उनके अंदर धार्मिक बहुत रुचि थी, उसके कारण ही हमारे अंदर भी तो वो संस्कार था थोड़ा थोड़ा बढ़ते गए, और हमारे अंदर भी ये भावना भगवान के प्रति और भक्ति भाव के प्रति जागृत होती रही।
0: अरे वाह। तो आस्था का जो है जीवन में क्या स्थान होता है, आस्था से क्या हमारे जीवन में बदलाव आता है?
1: आस्था मानव को बड़े आगे ले जाती है, आस्था के ऊपर ही तो सारा कुछ निर्भर है। जब तक आस्था नहीं है तब तक हम उलझे रहेंगे। जब एक आस्था बन जाती है तो उसके ऊपर चलना मानव के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, वो आगे बढ़ता रहता है,
0: आगे बढ़ता रहता है। चलिए, और माता जी के बारे में क्या याद करते हैं?
1: माता जी हमारे बहुत ही श्रेष्ठ भावना वाले थे, श्रेष्ठ विचारों वाले थे। हमारे पिताजी 84 साल की उम्र में गुजर गए थे, और माता जी 93 साल के गुजरे हैं। तो उनके भी बहुत अच्छे विचार थे, उन्होंने हमें बहुत अच्छी पालना दी है, और अब भी हमें जब उनकी याद आती है तो हम सोचते हैं कि हम उनके लिए इतना कुछ नहीं कर पाए जो हमें करना चाहिए था।
0: जी बिल्कुल। माता पिता का जो ऋण है संतानों के ऊपर, वो तो ऐसा कहा जाता है कि उसको नहीं दिया जा सकता है पूरा।
1: जी हाँ।
0: और हमेशा हम उतना उपकृत फील करते हैं, हमें इतना ऑनर्ड फील होता है कि हमें इन्हें ये माता पिता प्राप्त हुए, और इन्होंने अपना जीवन को पीछे रख करके हमारे जीवन को सामने रखा और त्याग किया, तपस्या की।
1: जी,
0: और हमें आगे बढ़ने में मददगार बने, भले वो उनके जीवन में बहुत सारी चीजें जो उन्होंने त्याग की होंगी।
1: जी हाँ।
0: तो बहुत अच्छा लगा जैसे आपने पिताजी के बारे में बताया कि उनके जो आस्था थी, धार्मिक विचार थे, वो उनके जीवन को बहुत अच्छा गाइड करते थे। और माता जी के बारे में आपने कहा कि उन्होंने जो एक समर्पण भाव त्याग रखा आप लोगों के लिए।
1: जी जी।
0: क्या नाम था हम दोनों का?
1: पिताजी का नाम था गौरीशंकर, श्री गौरीशंकर जी।
0: जी।
1: और माता जी का नाम था श्रीमती लाजवंती।
0: जी। तो आज हम रेडियो मधुबन के इस मंच से उन्हें सलाम करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा पालना उन्होंने दी आपको, जिससे आपका जीवन भी श्रेष्ठ और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सका। थोड़ा आगे चलेंगे और चलेंगे स्कूल की ओर। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो माता पिता प्रयास करते हैं कि उसे कुछ शिक्षा प्राप्त हो
1: जी।
0: तो आपकी शिक्षा की जो यात्रा है वो कैसी रही? बचपन, बचपन के दोस्त, उस समय के शिक्षक और स्कूल, कुछ बताइए।
1: बचपन में शिक्षा ठीक चलती रही, पर पिताजी हमारे गोड्स में का काम करते थे तो बीच में कुछ उनको अपना स्थान बदलना पड़ा। स्थान बदलने के कारण फिर हम भी साथ, पूरी फैमिली साथ रही उनकी, तो उससे थोड़ा हमारी पढ़ाई जो था वो भी थोड़ा सा
0: प्रभावित
1: डिस्टर्ब रही।
0: तो कोई दूसरे स्थान पे गए आप?
1: दूसरे स्थान पे गए
0: जी।
1: वहाँ भी देखा कि अपना जो पेशा था उसी तरह से काम वो ठीक नहीं चल पाया, और हमें भी स्कूल की तरफ से भी कुछ अड़चन आती रही कि ये बच्चे अभी इतना टाइम हो गया है तो इसको यहाँ एडमिशन नहीं मिलेगी। फिर हार फार के फिर हमको फिर वहीं जाना पड़ा जहाँ पहले पढ़ते थे वहीं।
0: कहाँ तक, कौन सी क्लास तक आपने पढ़ाई की?
1: मैं प्लस प्री यूनिवर्सिटी की है, बीए प्रभाकर की है मैंने।
0: बीए प्रभाकर किया। तो जैसे कि हम अभी वर्तमान समय देखते हैं कि तरह तरह के स्कूल, बोर्डिंग स्कूल, अंग्रेजी स्कूल और बहुत ही अलग अलग प्रकार के शिक्षा की व्यवस्थाएं उपलब्ध है। कहीं पर बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, कहीं पर सरकार के दौर से बनाए गए हैं जहाँ पर आसानी से सारी सुविधाएं भी प्राप्त हो जाती हैं। पर मैं ये समझता हूँ कि आप जब पढ़ाई कर रहे होंगे उस समय तो काफी चुनौती रही होगी। कैसा था स्कूल उस समय?
1: उसमें स्कूलों की व्यवस्था अच्छी थी, स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी हुआ करती थी, स्टाफ भी पूरा हुआ करता।
0: कौन से साल में?
1: इस साल 60 के बाद,
0: 1960
1: के बाद
0: जी,
1: जब हम पढ़ाई शुरू की तो उन दिनों स्कूल जो थे वो क्लासें फुल हुआ करती थी और बच्चे भी उसमें ज्यादा हुआ करते थे।
0: ओके।
1: और स्टाफ भी पूरा हुआ करता था। स्कूल दूर हुआ करते थे
0: जी,
1: लेकिन यह कि वहाँ पर बच्चों की स्ट्रेंथ भी पूरी होती थी और स्टाफ भी पूरा होता था, यानी कि एक एक क्लास के लिए एक टीचर तो पक्का होता ही था
0: जी।
1: और इसलिए पढ़ाई ठीक ही चलती,
0: अच्छी चलती थी। आप जो है स्कूल कैसे जाते थे?
1: बचपन में तो हम नजदीक स्कूल था हमारा, तो हम पैदल ही जाते थे
0: जी। और उस समय क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे?
1: उस टाइम बस ये सब्जेक्ट थे, हिंदी, मैथ, और हमारे वहाँ उस टाइम पंजाबी भी थी, पंजाबी भी पढ़ा करते थे।
0: नाइस। करीब हम आज से 60-65 साल पहले की बात कर रहे हैं दोस्तों।
1: मैं उन दिनों पंजाबी मेरे साथ ही था, ये हिमाचल
0: अलग नहीं था,
1: एरिया था अलग नहीं था, ये हमारे अलावा एरिया पंजाब के साथ था
0: जी जी,
1: मीरपुर डिस्ट्रिक्ट का
0: जी जी
1: जी।
0: बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों बात कर रहे हैं हम। हमारे साथ मौजूद हैं जगदीश कुमार वर्मा जी, और जगदीश जी के बचपन, माता पिता, स्कूल और वहाँ की सुविधाओं के बारे में बातचीत कर रहे थे। बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया कि शिक्षक जो है उस समय सफिशिएंट हुआ करते थे और जो उपस्थिति है कक्षा में वो भी काफ़ी भरपूर हुआ करती थी। तो अभी और भी आगे की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक जहाँ पर हम सुनेंगे खूबसूरत सा गीत और फिर लौट कर आएंगे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर और बातचीत करेंगे जगदीश जी से। तो सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: तेरा।
1: 107.8 रेडियो मधुबन सुन रहे हैं आप और रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम चल रहा है सलाम है जिंदगी। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं जगदीश कुमार वर्मा जी हिमाचल प्रदेश हमीरपुर से। वर्मा जी, जैसे हम बातचीत कर रहे थे आपके शिक्षक जीवन के बारे में, अब अगले पड़ाव की ओर चलते हैं और जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है जो हम परिवार के साथ बिताते हैं
2: जी।
1: तो जैसे एक युवा काल, फिर आपकी नौकरी लगी होगी, फिर कभी ना कभी आपका जो विवाह हुआ होगा
2: जी,
1: और बच्चे, बच्चों को पालना, बड़ा करना
2: जी,
1: और परिवार की गाड़ी को बेहतर तरीके से चलाना। कई बार हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे जो युगल हैं, कपल हैं, उनको अपने जीवन की गाड़ी को चलाने में संघर्ष तो होता ही है, लेकिन आपसी मनमुटाव भी हो जाता है कभी कभी
2: जी जी।
1: तो आपसे समझना चाहेंगे आपकी जीवन की गाड़ी कब शुरू हुई, जो आपकी विवाह का जो ये विवाह के बाद की जो यात्रा है वो कब शुरू हुई और कैसे रहा आपका सफर। आपके जीवन साथी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे, आपके बच्चों के बारे में भी सुनना चाहेंगे।
2: 32 साल की उम्र में मेरी शादी हुई
1: जी,
2: और उसमें हमारी जो वेतन था वो 3 फिगर में होता था, सैकड़ों में होता था और हमें गुजारा करना पड़ता था, लेकिन कठिनाई से ही होता था।
1: ओके,
2: फिर भी हम बड़े खुश थे उस टाइम और अच्छे जीवन बीतता रहा, खुशी में रहे
1: जी। आपकी धर्मपत्नी का नाम क्या?
2: गायत्री देवी।
1: और वो कहाँ से हैं?
2: वो साथ ही है, 20-25 किलोमीटर दूर, महल नाम जगह का नाम है।
1: अच्छा, हिमाचल प्रदेश में।
2: जी। और उसके बाद 3 बच्चे हैं हमारे, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है।
1: क्या नाम है उनका?
2: बड़े लड़के का मनोज कुमार वर्मा, वो भी बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे हैं।
1: ओके,
2: नेशनल लेवल पर वो लगभग 7-8 बार खेल चुके हैं, हॉकी के प्लेयर रहे हैं।
1: ओके,
2: फिर उन्होंने मिलिट्री ज्वाइन की इसी स्पोर्ट पर, अपने आप ले गए मिलिट्री वाले
1: जी,
2: कि हॉकी चाहिए हमको, लड़का तो ले गए। उस टाइम में कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा कि बच्चे अभी पढ़ लो, तो उन्होंने कहा कि बच्चा डैडी अभी नौकरी मिल रही है, फिर ओवरेज हो जाएंगे, तो चला जाता हूँ।
1: अच्छा,
2: तो फिर वहाँ मिलिट्री में गए, वहाँ बड़ा अच्छा उनकी ट्रेनिंग हुई और 3-4 साल लगाए उन्होंने, तो वहाँ पर वो गेम्स में नंबर 1 ही रहे।
1: अरे वाह,
2: हॉकी में तो थे ही थे, बास्केटबॉल और फुटबॉल में भी वो नंबर 1 रहे। फिर वहाँ पे उन्होंने नई ट्रेनिंग की हैंडबॉल की, हैंडबॉल में तो उन्होंने बहुत ही अप्रिशिएट किया और कहने लगे कि आप यहाँ इस सेंटर में रहेंगे, आप हैंडबॉल में यही रहो स्पोर्ट्स के रूप में
1: जी।
2: फिर उसने कहा कि मेरी गेम तो हॉकी है, तो मैं हॉकी में जाऊंगा स्पोर्ट सेंटर। फिर वो और जगह चले गए
1: जी,
2: और जगह जाने से फिर वो उनको जब लिया गया था, उनको कहा गया था कि आप डायरेक्टर हवालदार लेंगे आपको स्पोर्ट्स के बेस पर। फिर उसके तरह जब ऐसी बात हुई तो फिर 3-4 साल बीते गए, तो वो पाई के सिपाही थे, फिर वहाँ पर ट्रेनिंग दी उन्होंने, एक नई पोस्ट निकाली कि जो बच्चे पीटीआई की ट्रेनिंग में जाने वाले थे उनका टेस्ट हुआ, तो उसमें फर्स्ट आया वो
1: जी।
2: जब फर्स्ट आया पीटीआई की ट्रेनिंग के लिए, तो भेजा किसी और को गया, फिर उसने मना कर दिया, मैंने नौकरी नहीं करनी
1: जी,
2: छोड़ी। फिर हमने कहा कि डैडी आओ और मैं नौकरी नहीं करनी, फिर हम कहते रहे, जोर लगाते रहे कि टेंशन नहीं तक तो कर लो, लेकिन वो कर नहीं कर, आ गया
1: जी।
2: उसके बाद वो यहाँ मार्केट कंपनी जॉब करते रहे, प्राइवेट ही नेटवर्किंग वगैरह करते हैं। अब ये छोटे वाला है वो गवर्नमेंट जॉब में है
1: जी,
2: ITI में इंस्ट्रक्टर है, और बेटे वो भी MBA है, पर वो जॉब नहीं है।
1: बढ़िया, तो जो इन बच्चों को बड़ा किया, अच्छे लेवल तक पढ़ाया, आगे अप्रिशिएट किया, तो इसमें माता पिता का जो रोल होता है उसके बारे में कुछ बताइए।
2: हाँ, उसमें हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहा, क्योंकि मैं पता था कि बिगर एजुकेशन के कुछ भी नहीं है, जितने बच्चे ज्यादा पढ़ सकते हैं हम पढ़ाने के लिए तैयार थे
1: जी,
2: और वो पढ़ाया भी हमको। हम सोचा था कि मैं एक टीचर हूँ, तो मैं चाहता था कि बच्चे भी मेरे तीनों ही टीचर बने, तो बड़े को मैंने वो फिजिकल एजुकेशन की तरफ ध्यान ज्यादा था उसका, तो मैं उसको PTA की ट्रेनिंग करवा दी जब मिलिट्री से आ गया उसके बाद। और जो छोटा लड़का था
1: जी,
2: वो ITI में इंस्ट्रक्टर है, और लड़की को भी मैं MBA करा दिया था कि वो भी टीचर बन सके
1: जी।
2: इस तरह से
1: इसमें जो वैल्यूज हैं परिवार के अंदर, जैसे आजकल आप देखते भी होंगे आसपास में, कई बार जनरेशन गैप की बात आती है, माता पिता कुछ और कह रहे होते हैं, बच्चे कुछ और करना चाहते हैं, और अनुशासन में भी थोड़ा फर्क आया है
2: जी,
1: सोचने के तरीके में, रहने के तरीके में। तो क्या आपको लगता है, आप एक शिक्षक भी हैं, एक पिता भी हैं, क्या कहना चाहेंगे?
2: तो इसमें तो हमने हमारा बच्चों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति तो यही था कि बच्चे बुरी आदतों से बचे रहना है
1: जी,
2: जितना हो सके, लेकिन फिर भी मैंने देखने में आया कि उनमें थोड़ी कमी रही
1: जी।
2: जो बाहर जाते हैं वो अपने हिसाब से रहते हैं तो वहाँ कुछ कमी आ जाती है। और जहाँ तक हमारे स्टूडेंट्स की बात है जो हमने पढ़ाए हैं बच्चे, वो अभी मिलते हैं तो अभी वो रिगार्ड देते हैं कि जो बातें आपने सिखाई हैं हमको, अच्छी बातें सिखाई हैं, वो आज तक भी हमको याद है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं।
1: बहुत बढ़िया। तो जो माता पिता सुन रहे हैं और जिनके भी छोटे बच्चे होंगे तो उन्हें क्या आप मैसेज देना चाहेंगे?
2: मैसेज यही देना चाहिए कि माता पिता का तो फर्ज बनता ही है कि बच्चे को जैसे कैसे भी है वो इस तरह से संभाल करें कि बच्चे को कोई बुरी आदतें ना पड़ जाए, क्योंकि आज का जो माहौल है वो थोड़ा सा ये इतना दूषित होता जा रहा है कि हर माँ बाप को ये चिंता लगी रहती है कि कुछ ऐसा ना हो जाए। तो इसलिए कोशिश तो ये करनी चाहिए क्योंकि आज इस माहौल में रहते हुए अपने आप को सेफ रखना जो है वो बच्चों को तो सदा ही इस बात ध्यान देना चाहिए। बाकी पेरेंट्स तो चाहते ही है कि हमारे बच्चे बुराइयों से बचे रहें।
1: तो बच्चों के अंदर कौन सी वैल्यूज, हम जैसे आप आध्यात्मिकता का भी अपने जीवन में धारणा करते हैं
2: जी,
1: तो बच्चों को क्या हम ऐसे परवरिश में ऐसे क्या करें जिससे वो अच्छे मार्ग पर चलते रहें, उनकी निष्ठा और उनके जो अनुशासन है बना रहे?
2: बच्चों के लिए तो वैसे क्योंकि बात की थी मैंने कि ये बचपन जो होता है एक बड़ी तपस्वी जीवन निभाना पड़ता है, बहुत सी बातों का इग्नोर करना पड़ता है, अर्थात बुराइयां को छोड़ने के लिए हमें बहुत अपने आप को सेफ रखना पड़ता है। तो इसलिए पूरा पूरा प्रयास तो करना चाहिए हमको ना कि आखिरकार हम जितने इस बुराइयों के जंगल से बच सकें उतना हमारा भविष्य जो है वो उज्ज्वल रहेगा
1: जी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए और जो अपने पारिवारिक जीवन, परिवार की जो वैल्यूज हैं और बच्चों के बारे में, उनकी परवरिश, इन सब चीज़ों के बारे में आपने प्रकाश डाला। और भी बातचीत करेंगे आपकी जो वर्तमान जीवन के बारे में, जहाँ पर एक शरीर से थोड़ा सा जो आयु हो जाती है हमारी, तो उस समय की क्या चैलेंजेस होती हैं, क्या सावधानियाँ रखनी होती हैं, तन का और मन का ख्याल कैसे रखना होता है, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगले पड़ाव में जाने से पहले कोई और गीत सुनाना चाहेंगे?
2: हाँ सुना देते हैं, मैं एक छोटा सा गीत गाने जा रहा हूँ जिसमें थोड़ा सा ये बताया गया है। इसमें मैं भारतवासियों को संबोधित करने जा रहा हूँ कि ऐ मेरे भारतवासियों, हमें क्या करना है वो बताया गया है। भारत के ऐ इंसानों, परमपिता के ऐ संतानों, तुम देश के कोने कोने में पहुंचा दो ये पैगाम। कौन सा पैगाम पहुंचाना है? आराम है हराम, आराम है हराम। भारत के ऐ इंसानों, परमपिता की ऐ संतानों, तुम देश के कोने कोने में पहुंचा दो ये पैगाम। आराम है हराम, आराम है हराम। देखो अब तक काम पड़े हैं कितने आज अधूरे, देखो अब तक काम पड़े हैं कितने आज अधूरे, मिलकर हाथ बटाओ तभी ये हो सकते हैं पूरे, मिलकर हाथ बटाओ तभी ये हो सकते हैं पूरे। आओ एक हो जाओ, आओ एक हो जाओ, इस देश को स्वर्ग बनाओ। भारत का हो इस दुनिया में सबसे ऊंचा नाम, आराम है हराम, आराम है हराम। बुराइयों से तुम बंधन तोड़ो, व्यसनों को अब छोड़ो, बुराइयों से तुम बंधन तोड़ो, व्यसनों को अब छोड़ो। नए सिरे से नए जगत में अपना नाता जोड़ो, नए सिरे से नए जगत में अपना नाता जोड़ो। बदलो ढंग पुराना, बदलो ये ढंग पुराना, आया है नया जमाना, आया है नया जमाना। ऐसी करो सुबह कि जिसकी कभी न आए शाम, आराम है हराम, आराम है हराम। भारत के ऐ इंसानों, परमपिता की ऐ संतानों, तुम देश के कोने कोने में पहुंचा दो ये पैगाम। आराम है हराम, आराम है हराम। कभी किसी के आगे अपनी झोली ना फैलाना, कभी किसी के आगे अपनी झोली ना फैलाना। रूखी सूखी जो भी मिले हाथों से कमा के खाना, रूखी सूखी जो भी मिले हाथों से कमा के खाना। यही है आन हमारी, यही है शान हमारी, यही है आन हमारी, यही है शान हमारी। जिससे अपना सर झुकता हो करो नया सा काम। आराम है हराम, आराम है हराम, भारत के आए इंसानों, परमपिता की है संतानों, तुम विश्व के कोने कोने में पहुंचा दो ये पैगाम। आराम है हराम, आराम है हराम, आराम है हराम।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप और रेडियो मधुबन के सभी सुनने वाले श्रोताओं को फिर से स्वागत है कार्यक्रम सलामी जिंदगी में। दोस्तों, जब हम बात करते हैं सलामी जिंदगी में तो हम बात करते हैं अनुभव की, हम बात करते हैं वो सम्मान की जो हमारे बुजुर्गों ने अपने जीवन के माध्यम से अपने देश को दिया है, अपने परिवार को दिया है और अपने आसपास के समाज को दिया है। आज हमारे साथ मौजूद है जगदीश कुमार वर्मा जी, जो हिमाचल प्रदेश से हैं, हमीरपुर से, और आज के इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, जहां पर हम आगे की यात्रा उनकी जानी की वर्तमान जीवन, एक बुजुर्ग का जो जीवन होता है, एक हमारे सीनियर सिटीजन का जो जीवन होता है वो बहुत ही सम्मान का पात्र होता है, क्योंकि इस समय तक वो कम से कम 60-70-80 साल अपने जीवन के, अपने देश को, परिवार को, अपने समाज को दे चुके होते हैं। और आज जो हमारे साथ व्यक्तित्व मौजूद है वो तो शिक्षक है, और शिक्षक आप जानते हैं कि कितने सारे जीवनों को गढ़ने का काम करते हैं, क्योंकि माता पिता बच्चों को 4-5 साल तक अपनी निगरानी में रखते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं, लेकिन उसके बाद की जो शिक्षा है कि संसार में कैसे आगे बढ़ना है, अपना जीवन को कैसे साधारण से असाधारण बनाना है, यह जिम्मेदारी शिक्षक के ऊपर आ जाती है। तो आइए फिर से स्वागत करते हैं जगदीश जी, आपका फिर से स्वागत है। और अभी मैं वर्तमान जीवन के बारे में जानना चाहूँगा कि जो हमारे बुजुर्ग साथी भी सुन रहे होंगे रेडियो मधुबन पर आपको, तो आप अपने दिनचर्या के बारे में जरूर कुछ बताएं, ताकि हम उसमें से कुछ समझने का प्रयास करें। वर्तमान समय आपकी उम्र 80 वर्ष है और आप उतने ही युवा हैं, और आपने इतना खूबसूरत गीत जो आपने खुद लिखा है और खुद गाया है, आपकी आवाज से लोगों ने अनुभव किया होगा कि कैसे उसमें जोश है, उसमें मिठास है, सब कुछ है, उसमें भावना है
1: जी।
0: तो अभी वर्तमान समय आपका रूटीन कैसे रहता है, ताकि आप अपने को तन से

0: से सामाजिक रूप से स्वस्थ रख सके।
1: अब मेरा जीवन जो है ये रिटायरमेंट के बाद हमने ये सोचा कि अभी बुढ़ापे को किस ढंग से बताया जाए
0: जी,
1: ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। इसके लिए हमने शुरू से ही थोड़ा सा मन को भी ठीक रखने का प्रयास किया है और तन को भी। तन के लिए तो हम थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह योगासन वगैरह करते रहते हैं
0: जी,
1: और मन की शुद्धि के लिए, मन की शक्ति के लिए हम मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं क्योंकि हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है।
0: तो जैसे अभी देखते हैं बहुत सारे युवा लोग भी थोड़ा सा इस बारे में कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं। एक कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और इन सब की दुनिया ने उन्हें एक अलग प्रकार से बिजी कर दिया है। उसमें उनको सुख अनुभव होता है और उसमें लगे रहते हैं और कई बार फिजिकल एक्टिविटी से भी दूर हो जाते हैं। तो आप जो आपका बचपन से अभी तक की यात्रा में फिजिकल एक्टिविटी का क्या स्थान रहा, कब आपको उसका महत्व समझ में आया, कब से आप इसको प्रैक्टिस में रखे?
1: मेरे स्टूडेंट लाइफ से ही थोड़ा हम गेम्स के अंदर भी पार्टिसिपेट करते थे और उसके वजह से हमारा इंटरेस्ट भी था गेम्स में
0: जी,
1: और उससे हमारी फिटनेस बनी रही। और अब भी हम देखते हैं तो अब भी हमें जब कि मौका मिले तो आज हम वही गेम जो है एक इस उम्र में भी खेलने को दिल करता है कि हम खेलें और कुछ करके दिखाएं
0: जी।
1: और इसमें भी रुचि होने के कारण ही अभी शरीर जो है वो मेंटेन कर रखा है, उसमें कोई अभी तक कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ठाक चल रहा है।
0: तो कई बार हम बातचीत करते हैं जब हमारे बुजुर्गों भाई बहनों से रेडियो मधुबन के सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में, तो कई बार कई लोग अनुभव सुनाते हैं कि अगर मैंने ये नहीं किया होता तो अच्छा रहता, मेरा स्वास्थ्य के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा। या कुछ ऐसा आपको लगता है कि जो आपने, आपको लगता है कि आपने अपने जीवन से सीखा है जो दूसरों को नहीं करना चाहिए?
1: ऐसा नहीं आया क्योंकि हमने पहले से ही अपने को भारतीय संस्कृति के आधार पर डाल रखा था
0: जी,
1: और अपने नियमों को मेंटेन कर रखा था और जो जितनी बुराइयां थी इनसे हम बचे रहे। बुराइयों से बचने के कारण ही आज हम देख रहे हैं कि आज हम स्वस्थ हैं। अगर हम किसी बुराइयों में फंसे होते
0: जी
1: तो शायद उसमें फिर छोड़ना मुश्किल हो जाता है। आज हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो इस चीज में ज्यादातर फंसते जा रहे हैं, छोटी सी आदत बन जाती है और उसमें वो फंसते फंसते जीवन भर के लिए वो बनाते हैं, फिर अंत में वो छोड़ना चाहते हैं तो नहीं छोड़ पाती है। तभी तो किसी ने सच कहा है कि 6 फुट का जवान और 3 इंच बीड़ी का गुलाम। फिर कहता है क्या अपने आप को
0: जी
1: कि मैं स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ, लेकिन व्यक्ति एक बीड़ी को ऊपर ही कंट्रोल नहीं कर सका, उसको भी अपने अधीन नहीं कर सका, वो अपने आप को स्वतंत्र कैसे कह सकता है?
0: सही, स्वतंत्र भारत का अभियान चलाना पड़ा था, अभी जो नशा मुक्त भारत का भी अभियान चलाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अलग अलग प्रकार के नशे में जो नई टेक्नोलॉजी आके उसके भी नशे में है और जो नशे हैं जो कंज्यूम किए जाते हैं उसके भी नशे में है।
1: और एक बहुत ही जो चल रही है प्रथा बच्चों के अंदर, ये बच्चों को बहुत ही डाउनफॉल कर रही है, बच्चे इस अवस्था में गिरते जा रहे हैं और वो आगे क्या बनने वाले हैं वो तो फिर भविष्य जाने। लेकिन यहाँ ये दिखने में आ रहा है ये हर बच्चे को सरकार तो कोशिश कर रही है लेकिन साथ में पेरेंट्स भी कहते रहते हैं, लेकिन जो बच्चे आदि बन जाते हैं तो उनको छोड़ने के लिए वो उनको दिक्कत हो रही है। तो ये आदत मानव के लिए बड़ी घातक सिद्ध होती जा रही है,
0: नशा जो है जीवन को गिराने का काम करता है।
1: बताना जो बहुत जरूरी
0: तो
1: है।
0: नशे की लत से बचाना सबको। दोस्तों जो आप रेडियो मधुबन सुन रहे हैं और अगर आपके आसपास कोई नशा करता है तो मैं समझता हूँ एक प्रेरणा आप भी बन सकते हैं, एक दीपक जलाने का काम आप भी कर सकते हैं। उनसे साथ बैठे, उनसे प्यार से पेश आए और उन्हें समझने के लिए सहायता करें कि कैसे नशा जो है आवश्यक नहीं है और इस नशे के बिना उनका जीवन और बेहतर हो सकता है और नशे से उनका तन, मन, धन सब नुकसान होता है और जो हमारा संबंध है लोगों के साथ में वो भी बिगड़ जाता है। तो इस पर अवश्य प्रयास करें। आइए चलते हैं जगदीश जी की ओर। जगदीश जी, जैसे हम बात कर रहे थे आपके जीवन शैली के बारे में, तो आपने बताया कि आप योग का अभ्यास करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं और एक्सरसाइज का भी करते हैं और भोजन और इन सब चीज़ों का भी संयम रखते हैं। तो हमारे जो आपके जैसे उम्र के जो साथी हैं जो रेडियो मधुबन सुन रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार से अगर उन्होंने अवसर प्राप्त कर लिया है अपने कार्यमय जीवन से या नहीं भी किया है तो अपने तन मन को स्वस्थ रखने के लिए क्या विशेष प्रयास वो कर सकते हैं?
1: तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि एक मानव के नाते ये हमारा परम कर्तव्य बनता है कि वास्तव में हम अपना भविष्य देखें और हमारे जीवन के आधार पर हमारे बच्चे जो आगे सीख पाते जाते हैं उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। अगर हम पहले से ही नशे के चक्कर में नहीं होंगे तो बच्चे भी इन बातों को देखते हुए वो भी कोशिश बचे रहेंगे। ये देखा देखी की बात होती है, देखने देखते ये बच्चे बेकार बुराइयों में फंसते हैं और फंसते फंसते ही वो इतने फंस जाते हैं कि उनको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो आप यही कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स तो अपने आप को संभालें और उसके बाद बच्चों की तरफ भी पूरा पूरा ध्यान दें।
0: तो कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं हम, हमारे सभी श्रोताओं को कुछ मैसेज भी दीजिए और एक गीत से कार्यक्रम का जो पूरा करेंगे हम।
1: जी जी, तो मैसेज तो यही है कि हम भारतवासी होने के नाते अपने आप को भारतीय संस्कृति के अनुसार ढालें। भारत हमारा महान था, जिसका गायन था कि वो कितना ऊंच था, वहाँ पर जिस देश के लिए हमारे नेताओं ने, हमारे वीर जवानों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, और इसलिए तो नहीं दी थी कि वो हमारा भारत जो है इस अवस्था में पहुंच जाए कि गली गली में ही उसको वो नशे की चीज़ें मिलने लग पड़े और वो उनका इस्तेमाल करके फिर भारत को दुर्दशा की ओर धकेल दे। तो ये तो हमें बहुत ध्यान देना है कि वीरों के कुर्बानियों को हमने व्यर्थ नहीं जाने देना है। जिस काम के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं वो इसीलिए दी हैं कि हमारा भारत जो है वो महान तक की ओर जाए, ना कि गिरावट की ओर जाए।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद इस मैसेज के लिए। कार्यक्रम सलामी ज़िंदगी में आप रेडियो मधुबन पर पधारे, हमारे श्रोताओं को प्रेरणाएं दी, अपने जीवन के बारे में बताया, समाज के बारे में आपके जो विचार हैं उनको भी हमारे श्रोताओं के समक्ष रखा। तो चलिए आगे चलते हैं और कार्यक्रम से हमारे श्रोताओं से विदा लेंगे, लेकिन इससे पहले सुनना चाहेंगे आपसे एक और प्रेरणा संपन्न गीत।
1: तो मैं एक छोटा सा गीत और गाने जा रहा हूँ, उसके बोल हैं, मत जाओ जाने वाले मत जा, पाप के घड़े की ओर मत जा। मत जाओ जाने वाले मत जा, पाप के घड़े की ओर मत जा, पाप के घड़े की ओर मत जा। जीवन तेरा अनमोल है, पाप के घड़े की ओर मत जा, पाप के घड़े की ओर मत जा। धन दौलत माल तेरा कोई साथ न जाएगा, धन दौलत माल तेरा कोई साथ न जाएगा। कर ईश्वर को याद प्राणी, कर ईश्वर को याद प्राणी, वो ही पार लगाएगा। मत जा, मत जा हो जाने वाले मत जा, पाप के घड़े की ओर मत जा, पाप के घड़े की ओर मत जा। ये भाई बंधु तेरे किसी काम न आएंगे, ये भाई बंधु तेरे किसी काम न आएंगे। तेरे ही कर्म तुझको, तेरे ही कर्म तुझको यम से छुड़ाएंगे। मत जाओ जाने वाले मत जा, पाप के घड़े की ओर मत जा, पाप के घड़े की ओर मत जा। जाता है तू मंदिर में पर मट कटवाने को, जाता है तू मंदिर में पर मट कटवाने को। रख करके नया पैसा, रख करके नया पैसा भब से तर जाने को। मांगता है दिल की सफाई वो, भूखा नहीं तेरे दिए दान का, भूखा नहीं तेरे दिए दान का। मत जाओ जाने वाले मत जा, पाप के घड़े की ओर मत जा, पाप के घड़े की ओर मत जा। जीवन तेरा अनमोल है, पाप के घड़े की ओर मत जा, पाप के घड़े की ओर मत जा। धन्यवाद।

0: क्या आपके पास भी कोई ऐसा हुनर है जो रातों की नींद उड़ा दे?
1: क्या आपका दिल भी किसी पैशन के लिए धड़कता है?
0: वो पैशन जो आपको भीड़ से अलग करता है, वो जुनून जो आपको हर मुश्किल पार करने में ताकत देता है।
1: चाहे वो गिटार के सुर हों, कठपुतलियों से कहानी हो या फिर रूढ़ीवादी परंपरा को तोड़ा हो,
2: हम ला रहे हैं एक ऐसा शो जहां हम बात करेंगे उन जोशीले युवाओं से जिन्होंने अपने पैशन को ही अपना रास्ता बना लिया
3: और ये जुनून जबरदस्त था हम में। तो आज हम चाहे गुणंतर 70 साल के हो गए तो आज भी श्रमदान होता है और हमने हर गांव में 3-3 तालाब बना दिए आज भी।
4: तो सेवा को सर, ये वास्तव में आपने इस कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर नाम मधुबन रेडियो ने दिया है जुनून। ये वास्तव में जुनून है, ये चस्का है।
5: सुनिए उनकी कहानी, जानिए उनका सफर और महसूस कीजिए उस जुनून की आग को उन्हीं की जुबानी। पेश है रेडियो मधुबन पर एक अनोखा कार्यक्रम जुनून, जुनून हर शनिवार शाम 6 बजे सिर्फ आपके अपने रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मेरे साथी श्रोताओं, और हम लोग हर बार एक नई आवाज और एक नए व्यक्तित्व के साथ आपके पास होते हैं, आपके कानों के पास होते हैं, आपके दिल के पास होते हैं, और हमारा एक शानदार, बेहतरीन और दूर दूर तक सुने जाने वाला कार्यक्रम जुनून। और जुनून में इस बार की शख्सियत हैं जिनको पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरा भारत जानता है। हमारे साथ है कमलेश मीणा जी। आप वैसे तो सरकार की सेवाओं में हैं, एक देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में सहायक क्षेत्रीय निदेशक के पद पर कार्यरत हैं, और देश की दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक पहचान और अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। आप एक सक्रिय अकेडमिशियंस हैं, एक शैक्षणिक प्रशासक हैं, और के साथ साथ एक कम्युनिकेटर हैं। और तो और क्या कहूँ इनकी तारीफ में, मैं एक लंबी लिस्ट अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स की नहीं पढ़ना चाहता। सिर्फ इतनी सी बात है कि आप जान लें उनकी आवाज़ को, कुछ क्षणों में हमारे बीच में होंगे, और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन मधुबन रेडियो 107.8 FM, और आप इसको सुन सकते हैं हमारे रेडियो मधुबन के एप्लीकेशन के माध्यम से भी। तो कमलेश जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम जुनून में।
1: बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो मधुबन, और आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आपके प्रति, विशेषकर रेडियो मधुबन, ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के प्रति बहुत आभार कि आज आपने इस जुनून कार्यक्रम के तहत मुझे जोड़ा है, और जो आज आपके साथ रूबरू होंगे हम, जो बातचीत होगी, निश्चित रूप से हमारे मुआशरे के लिए, हमारी आवाम के लिए, विशेषकर हमारे यूथ के लिए। जो आप लगातार, मैं आपके कार्यक्रमों को सुनता हूँ, और इस बात के लिए मैं आपकी बड़ी तारीफ करूँगा, बड़ी प्रशंसा कि आप लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस पहल के माध्यम से जिसका नाम आपने जुनून दिया है, उस जुनून के माध्यम से लोग हमारे यूथ के अंदर वो स्पार्क, वो मोटिवेशन, वो इंस्पिरेशन भरने का काम कर रहे हैं, और विशेषकर उन शख्सियतों को आप हमारे समाज से, हमारे मुआशरे से रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने मुश्किल हालातों का सामना करते हुए आज का जो मुकाम हासिल किया, और समाज को ये आईना दिखाया कि व्यक्ति के अंदर अगर समानता के आधार पर, बिना भेदभाव के आधार पर, या यूं कहूं कि रंग भेद जात और मजहब जो भी हो, आदमी से कमतर है
0: जी।
1: रंग भेद जात और मजहब जो भी हो, आदमी से कमतर है। इस हकीकत को तुम भी मेरी तरफ मान जाओ तो कोई बात बने, इस हकीकत को तुम भी मेरी तरफ मान जाओ तो कोई बात बने। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। अपना हक संग दिल, दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने। तो ये कार्यक्रम निश्चित रूप से हम सबके लिए, हमारे यूथ के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत इंस्पिरेशन वाला रहेगा। मैं पुनः प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के रेडियो मधुबन के प्रति बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बढ़िया कमलेश जी। कमलेश जी, हमारा पहला सवाल और हमारा एक रूटीन का सवाल जो हम अपने गेस्ट से हर बार जानना चाहते हैं, और हम खोद के जानते हैं इस सवाल को, वो सवाल है कि आपका जुनून क्या है? क्या जुनून है ऐसा जिसने आपको इतना जिंदा दिल बनाया है? क्या जुनून है ऐसा कि जिसने आपको देश के दूरस्थ इलाकों में पहुंचाया? और क्या जुनून है वो जिसने आपको इतना खुश और दुनिया के प्रति इतना बड़ा दिल रखने वाला बनाया?
1: सरद भाई, सबसे पहले तो जुनून केवल मेरे अंदर ही नहीं है, जुनून हर शख्स के अंदर होना चाहिए। जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो, जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो, तो बिना जुनून के भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। इस बात से हमको सबसे पहले परिचित होना चाहिए। जुनून का होना बहुत जरूरी है किसी भी मुकाम तक हासिल, उसको पहुंच को बरकरार करने के लिए। और आपने सवाल किया कि मेरा जुनून क्या है। मेरा जुनून आज भी बरकरार है, और इस जुनून की वजह से हम जिंदा है। इस जुनून ने हमको बनाए हुए हैं, और ये जुनून है जिंदगी में कुछ हासिल करने का। ये जुनून है जिंदगी में वो मुकाम हासिल करने का जो समाज में हर व्यक्ति का अधिकार होता है। व्यक्ति चाहे किसी भी मजहब का हो, जात का हो, पात का हो, क्षेत्र का हो, भाषा को जानने वाला हो, लेकिन भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां पर हर व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार, अपने जुनून अनुसार, अपनी इच्छाओं अनुसार मुकाम हासिल करने की आजादी है। और मुझे इस बात का सौभाग्य है कि जब आपने इस प्रोग्राम में बुलाया, जुनून जिसका नाम आपने दिया है, तो मैं अपने आप को रिव्यू करता हूँ कि मेरे अंदर कौन सा जुनून है जिसकी बदौलत मैं आज भी तरल ताजा रहता हूँ, जिसकी बदौलत आज भी मैं लगातार काम करता हूँ। ये जुनून है समाज को सर्व करने का, ये जुनून है उन तमाम वंचित वर्ग के बच्चों को अपलिफ्ट करने का, ये जुनून है उस व्यक्ति को राहत दिखाने का जिसका कोई धनी धोरी नहीं है, जिसका कोई गाइडेंस नहीं है, जिसका कोई मेंटोर नहीं है, जिसका कोई टीचर्स नहीं है। तो ये तमाम चीजें आज भी मुझे इस काम के लिए प्रेरणा देती है, इस बात के लिए प्रेरित करती है कि आज भी हमारे भारत में ऐसे देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बच्चियां हैं जिनको टाइमली गाइडेंस नहीं मिल पाती है और उस लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उनका जुनून, उनका पैशन, उनकी जो इच्छाएं हैं कुछ हासिल करने की वो खत्म हो जाती है। तो मुझे इस बात का सौभाग्य मिला कि दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय के साथ मैं काम कर रहा हूँ और हायर एजुकेशन देने का जिम्मा मुझे मिला हुआ है। और दूसरा सौभाग्य मुझे सबसे बड़ा विश्वविद्यालय के साथ मैं काम कर रहा हूँ, रोजी रोटी कमा रहा हूँ, देश की सेवा कर रहा हूँ, आध्यात्मिक रूप से भी मैं दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक विश्वविद्यालय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से भी मैं लगभग 20-22 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ये दोनों चीजें मेरे जीवन में मेरे जुनून को बरकरार रखने में बड़ी मददगार है और इस माध्यम से कम मुझे इस बात का सुकून मिलता है, इस बात की तसल्ली रहती है कि मैं समाज को सर्व कर रहा हूँ बहुत ईमानदारी के साथ, थ्रू एजुकेशन, थ्रू राजयोग, योगा, मेडिटेशन के बाद।
0: जी बहुत बढ़िया कमलेश जी, आपकी बात सुन के तो मुझे यह याद आता है कि यह बंदे कुछ ऐसे जा गुजर कि जब तू निकले तो आवाम कहे कि कौन गया गुजर। तो ये बात है और बात जो है कि आप भी कुछ कर गुजरना चाहते हैं। आपने अपने जुनून में बताया कि आपका जुनून है कि उन बच्चों तक, उन युवाओं तक शिक्षा को पहुंचाना और उस शिक्षा के माध्यम से वो अपने मुकाम या उस पद सोपानों पे आगे बढ़ सके जो जिंदगी में सफलता के लिए आवश्यक है। और इसके साथ साथ आपने जुनून में बात की कि आप हक और अधिकार की भी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो ऐसा बगीचा जिसमें हर फूल अपनी खुशबू देता हो अपने रंग के साथ भी। वो बात है ना कि वो शेर है कि चमन में गुलेबू से बात बनती है, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो क्या तुम हो
1: क्या तुम हो।
0: तो नहीं, तो कुछ ऐसी बात आपने कह दी है और वो सारी बातें आज हमारे बीच में हो रही हैं। तो बताए ना थोड़ा आपके इस जुनून के माध्यम से जो मंजर होगा वो क्या होगा, वो थोड़ा सा उसका विवेचन करें हमारे श्रोताओं के सामने।
1: वर्तमान में जैसे कि आपने मेरे इंट्रो में कहा कि मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा हूँ और मुझे अभी तक 14-15 साल की मेरी इस करियर में देश के अलग अलग कोने में काम करने का मौका मिला, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे बिहार हो, चाहे असम हो, चाहे राजस्थान हो, और मैंने हर जगह अपनी प्रेजेंस को बहुत ईमानदारी से साबित किया है कि व्यक्ति के अंदर डेडिकेशन है, जुनून है, कमिटमेंट है तो एक अच्छा काम किया जा सकता है और एक अच्छे मुआशरे का निर्माण हम कर सकते हैं थ्रू हायर एजुकेशन, थ्रू एजुकेशन, थ्रू मॉरल वैल्यू एजुकेशन, थ्रू करेक्टर बिल्डिंग के माध्यम से। तो एक ये लोग हम काम कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में ये शरद भाई मुझे देखने को मिलता है कि हमारे यूथ में विशेषकर वो मोटिवेशन नहीं है, वो जुनून नहीं है, कहीं ना कहीं लैक ऑफ पैशन की वजह से हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पाती है। तो हमारे जैसे व्यक्ति जब इस मुकाम तक पहुँचते हैं, आप हम सब समाज के लिए बहुत प्रेरणादायक है, हमने एक छाप छोड़ी है हमारे कार्य के माध्यम से, हमारी शिक्षा के माध्यम से, हमारे कार्य क्षेत्र के माध्यम से। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हौसला ना छोड़ कर सामना जहाँ का, हौसला ना छोड़ कर सामना जहाँ का, वो बदल रहा है देख रंग आसमान का। हौसला ना छोड़ कर सामना जहाँ का, वो बदल रहा है देख रंग आसमान का। ये शिकस्त का नहीं ये फतेह का रंग है, ये शिकस्त का नहीं ये फतेह का रंग है मेरे दोस्तों। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है।
0: यस,
1: जिंदगी हर कदम एक नई जंग है,
0: नई जंग है।
1: और हमेशा आपके लिए मैं कहूंगा कि रोज कहाँ ढूंढोगे सूरज चांद सितारों को, रोज कहाँ ढूंढोगे सूरज चांद सितारों को, आग लगाकर हम रोशन कर लेंगे हंधियारों को। ये हम उस तरह के शख्सियत हैं और उस हालात से गुजरे हैं, लेकिन उन हालातों को कभी हमने जिम्मेदार नहीं ठहराया, उन हालातों के ऊपर कभी दोष नहीं मना, और हमने जो भी जिम्मेदारी मिली उस जिम्मेदारी को बहुत ईमानदारी से, मजबूती के साथ निर्वहन किया है। और आज आप हमारी जो पहचान बनी है, वो जो हमारे अंदर जुनून था समाज के प्रति कुछ देने का, समाज का ऋण उतारने का, इस राष्ट्र के प्रति हमारी जो दायित्व थी, एक राष्ट्र को बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का योगदान होना चाहिए, और ये तब मुमकिन होगा जब व्यक्ति के अंदर राष्ट्र, समाज और देश के प्रति उसकी जिम्मेदारियों से, उसकी जवाबदेहिता से, या उसके प्रति उसकी कर्तव्य क्या है उनसे वो वाकिफ हो। और आप हम वो शख्स जिसको लेगेसी विरासत में कोई बड़ी दौलत या बड़ा मुकाम, बड़ा नाम नहीं मिला, हमने बिना विरासत के हमारा जो आज का मुकाम है वो हासिल किया है। और एक कहते हैं कहावत हमारे यहाँ कि विरासत से मंच तो मिल सकता है, याद रखिए विरासत से मंच तो मिल सकता है लेकिन तालियां खुद बटोरनी पड़ती है।
0: क्या बात है, क्या बात,
1: तालियां खुद बटोरनी पड़ती है। तो ये गलत फहमी में ना रहे कि हर चीज विरासत से हासिल की जा सकती है। विरासत को सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए आपको कर्म मेहनत करनी पड़ेगी। और हम तो बिना विरासत के चले थे, कोई ऐसी लेगेसी हमारे पास नहीं थी, लेकिन हमारे अंदर एक जुनून था समाज के लिए, देश के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन देना। और हमने जो शिक्षा हासिल की, जो तालीम हासिल की, जिसके लिए हमको हमारे वालिद वालिदानों के प्रति, हमारे माँ बापों के प्रति, हमारे पेरेंट्स के प्रति बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमको इस लायक बनाया। और आज जो शिक्षा हमको मिली है उस शिक्षा के मार्फत हम समाज को बदलने का काम कर रहे हैं। और शिक्षा भी ऐसी मिली है जहाँ नफरतों के जहाँ में हमको प्यार की बस्तियां बसानी है, नफरतों के जहाँ में हमको प्यार की बस्तियां बसानी है। मोह पहुँच कर अश्क अपने आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, पहुँच कर अश्क अपने आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, इस तरह का कंसेप्ट हम लोग लेके चलते हैं। और सबके सब सबको उठाने का काम, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी देने का काम हम लोग करते हैं। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जो आप भी वाकिफ है, लोग भी वाकिफ है कि हमारा रोल बहुत बेहतरीन आज की तारीख में हमारे मुआशरे के लिए, हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में उन बच्चियों तक तालीम पहुंचाने का जिम्मा, उन युवाओं तक, उन व्यक्तियों तक जो क्षेत्र के दूर तलक इलाकों में रहते हैं, इस सोसाइटी के वासिंदे हैं, डेमोक्रेसी का हिस्सा है, लेकिन उन तक वो आज भी कई सारे कारणों की वजह से शिक्षा से महरूम है, शिक्षा का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। और डेमोक्रेसी होने के नाते विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का जब हम दावा करते हैं, तो उस लोकतांत्रिक देश के नाते ये हम सब की जिम्मेदारी है कि व्यक्ति विशेष, चाहे किसी भी मजहब का हो, कहीं भी रहता हो, उसको वो मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए जिसके लिए हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने का दावा करते हैं। और उन मूलभूत सुविधाओं में शिक्षा सबसे अहम मसला है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने उस वर्ग तक, उस व्यक्ति तक, उस समाज तक शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित किया है जो कहीं कहीं आपकी पारंपरिक शिक्षा पद्धति से महरूम थे, वहां तक वो पहुंच नहीं पाए। और 10+2 के बाद विशेषकर हायर एजुकेशन में आज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने लाखों व्यक्तियों का जीवन को बदला है।
0: बेहतरीन कमलेश जी, आपकी बात सुन के तो वो बात समझ में आई है कि आपका जुनून का रास्ता है ओपन डिस्टेंस लर्निंग, और अब इसके बारे में बात करना जरूरी है क्योंकि आप ODL के क्षेत्र में, आप वहाँ पर एक प्रशासक हैं, एक क्षेत्रीय निदेशक हैं, और मैं वहाँ का विद्यार्थी रहा हूँ। तो ODL के माध्यम एक बहुत ही बेहतरीन और एक शानदार माध्यम है अपनी सफलता के रास्ते को, अपनी सफलता की कुंजी को पकड़ने का। और आप जुनून में लगे हैं कि ODL कैसे देश में अपना काम, जो लक्ष्य है हमारे ODL के, वो तय कर सकें। तो वो क्या लक्ष्य है, थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: सबसे पहले तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का कंसेप्ट जानना समझना बहुत जरूरी है कि हमारे देश में दो तरह की शिक्षा पद्धति आज की तारीख में मौजूद है, एक पारंपरिक शिक्षा पद्धति और दूसरा दूरस्थ और मुक्त शिक्षा पद्धति। पारंपरिक शिक्षा पद्धति की अपनी लिमिटेशन है, अपने तौर तरीके हैं, अपने कायदे कानून है, वहाँ पर इंटेक का भी अब लिमिटेड इंटेक होती है, एक सर्टेन लेवल पर एडमिशन होता है। लेकिन अभी तो सौभाग्य से देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो गया है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस देश का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए महत्वपूर्ण नीति है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि 21वीं सदी का भारत जो बनने जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शिक्षा नीति इस देश के लिए बनाई है, जिनकी लीडरशिप में ये शिक्षा नीति तैयार हुई है, जिसका लक्ष्य है व्यक्ति का निर्माण करना चारित्रिक रूप से, राष्ट्रीयता की भावना क्या है उसके अंदर, देश के प्रति उसकी जिम्मेदारी क्या है, मान मूल्य मर्यादा क्या है, हमारी नॉलेज इन भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, इसको वापस रिस्टोर किया जा रहा है, और उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से बहुत सारे बदलाव जो हमारे हायर एजुकेशन से लेकर प्री प्राइमरी सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल पे देखने को मिल रहे हैं। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय भी देश के एक चुनिंदा विश्वविद्यालयों में दुनिया का नंबर वन का विश्वविद्यालय है जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग यानी कि मुक्त दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हायर एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं, विशेषकर उन बच्चों को, उन महिलाओं को, उन व्यक्तियों को जो 10+2 के बाद में किसी भी कारणवश उच्च शिक्षा का हिस्सा नहीं बन पाए। कारण चाहे वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो आर्थिक कारण हो, सामाजिक कारण हो, भौगोलिक कारण हो, और चाहे किसी भी तरह की परिस्थितियों की वजह से वो शिक्षा से महरूम रहे हैं, लेकिन पढ़ने की ख्वाहिश उनके अंदर है, पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों को, ऐसी महिलाओं को, ऐसी बच्चियों को हम इस उच्च शिक्षा के माध्यम से जोड़ते हैं। और आज आप पूरी दुनिया में, देश में देखेंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की जो कंट्रीब्यूशन है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन में, आप देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और ऐसे ऐसे बच्चों को हमने तालीम के लिए अच्छे प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाए हैं जो किसी भी कारणवश से, चाहे कारण कोई सा भी हो सकता है, मैं कारणों में नहीं जाना चाहता, लेकिन प्रजातांत्रिक देश होने के नाते ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति, हर महिला, हर बच्ची और बच्चियों तक शिक्षा की सुविधाएं सुलभ तरीके से मिले, आसानी से, इजीली एक्सेसिबल टू ऑल वाला कंसेप्ट होना चाहिए। इसको सार्थक किया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने। मैं राजस्थान में, अभी वापस राजस्थान की मैं बात करूं, मैं इससे पहले पंजाब में था, बिहार में था, कश्मीर में मैं अपनी सेवाएं दी। आप देखेंगे राजस्थान में हमारे यहाँ तकरीबन अभी जनवरी 2026 सेशन के में आप देखेंगे तो 82,000 से ज्यादा एडमिशन हो चुका है। इनमें 80% महिलाएं हैं। वो महिलाएं वो है जो 10+2 के बाद में पढ़ नहीं पा रही है, उन लेकिन पढ़ना चाहती है, बहुत सारे मसाइल उनकी लाइफ में है, उनके जीवन में है, लेकिन ऐसी मुश्किल हालातों में उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो किसी कंटेम्पररी कन्वेंशनल एजुकेशन का हिस्सा बन पाए या कॉलेज रेगुलर एजुकेशन ले पाए। तो उन सब के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सबसे अहम विश्वविद्यालय के रूप में उभरा है। आज हमारा विश्वविद्यालय, जिनकी हमारी वर्तमान वाइस चांसलर मैडम

0: प्रोफेसर उमा कांजीलाल जी के नेतृत्व में पूरे देश में पूरे मुल्क में बहुत एक्टिवनेस के साथ, बहुत मजबूती के साथ, बहुत प्रभावशाली तरीके से काम कर रहा है। और हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि शिक्षा हर उस बच्चे, हर उस बच्ची, हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो इस देश का वासिंदा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहता हो, किसी भी भाषा को जानने वाला हो, किसी भी इलाके से, किसी भी धर्म को मानने वाला हो। तो सारी चीजों को तोड़ते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने सबके लिए शिक्षा की पहुंच आसान बनाई है और उसका फायदा आज लाखों बच्चों को, बच्चियों को मिल रहा है। दूसरा कंसेप्ट, इन सर्विस कैटेगरी वाले आप, हम जैसे व्यक्ति जो सर्विस में आ गए हैं लेकिन पढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं, अपनी हायर एजुकेशन और बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सबसे अहम विश्वविद्यालय है, सबसे अहम प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको कोई एंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, जहां पर आपको रेगुलर क्लास लेने की जरूरत नहीं है, जहां पर सीट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनलिमिटेड इंटेक हमारे यहाँ होते हैं। और आज की तारीख में आप देखेंगे 333 यूजी, पीजी, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय उपलब्ध करवा रहा है। साल में दो बार एडमिशन देता है, साल में दो बार एग्जाम करवाता है। ये तमाम तरह की फैसिलिटी आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इस देश के वासिंदों को, इस देश के युवाओं को, इस देश की महिलाओं को, बच्चियों को हम लोग दे रहे हैं, जिसका फायदा हमारे माशरे को। और सरकार चाहती है कि हमारा जीआर 2030 तक 50% बढ़े, उसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम आपसे बात करना चाहेंगे आपके उस ख्वाहिश की, उस जुनून की, जिसमें आप समाज को एक बराबरी का समाज देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, जो हमारे संविधान में निहित है। तो उसके निमित्त आप क्या कर रहे हैं और क्या सोचते हैं, थोड़ा बताएं, जिससे कि, और चूंकि समय की सीमा भी हमारे सामने, हमारे कार्यक्रम के सामने रहती है, तो हम बहुत थोड़े से शब्दों में चाहेंगे कि कैसे आप अपने दूसरे जुनून के बारे में, जो जुनून आपका ओडीएल का जुनून तो है ही, और शिक्षा के इस टूल के माध्यम से आप उस जुनून को हासिल करना चाहते हैं, हालांकि दूसरा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन शिक्षा वो टूल है जो आपके उस जुनून के लिए एक माध्यम बनती है, तो वो जुनून क्या है?
0: चलिए भाई, मैंने आपके इस जुनून कार्यक्रम के माध्यम से मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप हम जिस जंजावतों को पार करते हुए यहाँ इस मुकाम तक पहुंचे हैं, वो कहना बहुत आसान है, उसको फील करना बड़ा मुश्किल है। और मैं कहूंगा कि तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। तमाशा करने वालों को क्या खबर कि हमने कितने तूफानों को पार कर ये दिया जलाया है। तो हमारी ख्वाहिश है कि जो दीपक हमने जलाया है ज्ञान का, शिक्षा का, हमारी जिम्मेदारियों के माध्यम से, उसका बेनिफिट, उसका लाभ, उसका फायदा हमारे समाज को, हमारे माशरे को, हमारे आवाम को, हमारे एक एक बच्चे को मिले। और इसी नाते में हम लोग लगातार, मैं लगातार लगा रहता हूँ। और मेरा जुनून आपने जानना चाहा कि निश्चित रूप से मैं चाहता हूँ कि हमारे जैसे व्यक्तियों को इस राष्ट्र की सेवा करने का मौका मिले किसी भी जिम्मेदारी के माध्यम से, ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाए और उस समाज के माध्यम से जिस हमारे बच्चों के अंदर चारित्रिक मूल्य, राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी, राष्ट्रवाद क्या है, हमारी ड्यूटी संविधान के प्रति क्या है, ऐसी भावना का निर्माण करते हुए ऐसे मुआसरे का निर्माण करें जहां पर किसी भी जात मजहब जाति पाति के बिना सबको बराबरी का हक मिले, जहां पर आप हम लोग जैसे व्यक्तियों को जो जिस मुकाम मिल पाया है, ऐसे ख्वाहिशमंद हजारों बच्चे हैं जो आज भी अपनी ख्वाहिशों को दबाए बैठे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चों, ऐसी बच्चियों, ऐसे लोगों को मौका मिले बहुत मजबूती के साथ, ताकि उनका रोल हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे आवाम के लिए मजबूती से उभर कर सामने आए। मैं आप सबके प्रति, विशेषकर आपके पैशन, जो अपने जुनून कार्यक्रम आपके ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मधुबन चैनल के माध्यम से जो रखते हो, जो डिस्कशन रखते हो, निश्चित रूप से हमारे यूथ के लिए, हमारे सोसाइटी में ये इनसे प्रेरणा मिलती है, बच्चों को एक ताकत मिलती है, हौसला मिलती है। इस हौसला अफजाई के लिए मैं आपके प्रति, आपके मधुबन चैनल के प्रति, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के प्रति और तमाम आपकी टीम मेम्बरान के प्रति बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि आप उन समाज के पसमंदा व्यक्तियों को निकाल निकाल कर ला रहे हो, उन चुनिंदा व्यक्तियों को, चुनिंदा शख्सियतों को समाज से रूबरू करवा रहे हो, जिन्होंने बहुत मुश्किल हालातों का सामना किया अपने जीवन में, लेकिन वो रुके नहीं, थके नहीं, डरे नहीं, और बिना किसी रुकावट के अपने जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। आज मुझे आपने मौका दिया, मैं आपके प्रति दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरे जैसे नाचीज को आज समाज से रूबरू करवाया इस जुनून कार्यक्रम के माध्यम से। तो मैं पुनः शरद भाई आपके प्रति, आपके मधुबन चैनल के प्रति, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय जिनका एक विशेष मोटो है इस चैनल के माध्यम से, मुझे इस विश्वविद्यालय से जुड़ने का मौका मिला है। 20-22 साल से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आपने जिस तरह से समाज को बदलने की जो जिम्मेदारी ले रखी है और अलग अलग इनिशिएटिव, अलग अलग बहुत महत्वपूर्ण पहलों के माध्यम से, चाहे नशा मुक्त भारत अभियान हो, स्वच्छता अभियान हो, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव है जो राज योगा एजुकेशन और मेडिटेशन के माध्यम से आप इस समाज का निर्माण करने में लगे हुए हैं। और मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार हूँ, आप साधुवाद हूँ कि आप जैसे व्यक्तियों की बदौलत हम जैसे व्यक्तियों को मौका मिला और हमने कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारियों के प्रति, हमारे कर्तव्यों के प्रति, इस देश के प्रति, समाज के प्रति अपने आप को बनाए रखा, खड़ा रखे और जो आज जिस जो भी मुकाम हम हासिल कर पाए उसमें कहीं कहीं आप जैसी शख्सियत, आप जैसी संस्थान का बड़ा अहम किरदार है, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार आपके।
1: बहुत बढ़िया। तो श्रोताओं, आपने देखा और सुना कि एक जबरदस्त और बुलंद आवाज आज आप हमारे शो में थी। कार्यक्रम का नाम है जुनून और आप सुन रहे हैं इसको अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन पर और आपकी फ्रीक्वेंसी है 107.8 FM। तो फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी शख्सियत के साथ। कमलेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, उसके लिए आप
0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।

नमस्कार, मैं हूं बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

ओम शांति। मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुराते।

पिछले कई दिनों से मेरा व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा था। मेरी माली हालत बिगड़ चुकी थी। मैंने पिताजी की जमा पूंजी भी अपने कारोबार में झोंक दी थी और ऐसे में पिताजी की दी गई हर सलाह मुझे चुभने लगी और मैंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। देर रात घर छोड़ के निकल ही रहा था कि सामने के दो वृक्षों पर मेरी नजर पड़ी। एक वृक्ष के पत्ते पीले हो जर्जर अवस्था में थे, हवा के झोंकों से लड़ने की क्षमता भी वो खो चुके थे, फिर भी उनके जन्मदाता वृक्ष ने उन्हें थामे रखा था। उसके संरक्षण में वे पत्ते उस विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुराते से लगे। वहीं दूसरे वृक्ष पर एक अमर बेल उगाई थी। उसने अपने नुकीले पंजे उस वृक्ष के सीने में गाड़ रखे थे। वो अपने अन्नदाता को ही समूल खाए जा रही थी। उसे एहसास ही कहां था कि जिस पर वो फल फूल रही है उसके सूखते ही वो स्वयं भी जीवित नहीं रह पाएगी। एकाएक रात के अंधेरे में भी मुझे सब कुछ साफ साफ दिखने लगा और मैं अपना बैग उठा पिताजी के पास लौट चला।

मैं हमेशा निराशा को अंधेरे से कंपेयर करता हूँ और निराशा के अंधेरे में हमारा मन कुछ इस तरह से हो जाता है कि उसमें विचारों की आंधी और तूफान चलने लगते हैं। नकारात्मक विचार हमेशा एक बाढ़ की तरह से आते हैं और वो हमको बहा करके ले जाते हैं, जबकि इसके विपरीत सकारात्मक विचार ठहराव वाले होते हैं। एक, दो या बहुत से बहुत तीन विचारों से ही मन शक्तिशाली हो उठता है, मन में शक्तियां समा जाती हैं। पर इस कहानी में प्रकृति के उदाहरण का ही सहारा लिया गया और रात के अंधेरे में प्रकृति ने ऐसी आशा की किरण जगाई कि जीवन में जो भी घटनाक्रम चल रहा है वो कहानी के पात्र को साफ साफ दिखने लगा और एक ठहराव के साथ वो पात्र वापस अपनी मंजिल की ओर, अपनी जड़ों की ओर लौट चला। और ये सब हुआ रात के अंधेरे में, और ये संभव भी है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी अमावस की रात, जिस दिन भारतवासी जश्न मनाते हैं दीपावली के रूप में, वो उसी नकारात्मकता, उसी नेगेटिविटी से लड़ने का ही तो प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जितना अंधेरा, जितनी निराशा गहरी होगी उतने ही हम दीप जगाएंगे। पर बात बाहर की नहीं, अंदर की है दोस्तों। बाहर कितने भी दीप जगा लें, अंदर में अंधेरा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कहानी अंदर में एक दीप प्रज्वलित करती है, आशा का। खुशी मुझे इसलिए भी हो रही है कि आज के समय में चारों ओर जब नेगेटिविटी है, ऐसी नेगेटिविटी के समय पर ऐसी कम शब्दों में कहानी लिख करके किसी के जीवन में परिवर्तन लाने की शक्ति, वाह, परमात्मा ने अनखा जोग लेकर जी को दी है। बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी और संदेश ने अंदर में एक दीपक भी अवश्य जगाया होगा। आपका जगा है तो ज्योत से ज्योत जगाते चलिए, पहुंचाइए और भी लोगों तक, और अपनी पसंद की लाइक बटन दबाकर जाहिर कीजिएगा। अगले पड़ाव पर एक नई कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट है। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज़ किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूँ ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम यू वर्ड भी ये यूज़ करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: बस सरिता, मैंने कहा ना एक बार, तुम दोनों हमारे साथ चल रहे हो, बस बात खत्म।
3: हाँ हाँ, आप सही कह रहे हो, यहाँ अब ना कोई सहारा है ना कोई सिक्योरिटी। एक तो जमाना ऐसा है, ये रोज अखबार में क्या क्या सुनते हैं।
2: और नहीं तो क्या, अभी पति गया है और ये अकेली औरत शहर में, उधर गांव के लोग क्या कह रहे हैं बात मत पूछो।

0: रोहन का कॉल आया है, आपसे अभी बात करनी है उसे।
1: अच्छा, हाँ रोहन बेटा, सब ठीक है?
2: दीदी, मामा और दादी घर पे सारा सामान पैक कर रहे हैं।
1: क्या, ऐसा क्यों?
2: वो कह रहे हैं कि अब पापा ही नहीं रहे तो हम उनके बिना अकेले यहाँ कैसे रहेंगे, इसीलिए दादी के साथ गांव जा रहे हैं। मेरा एडमिशन भी गांव के स्कूल में ही करवा रहे हैं।
1: अरे, हम है ना आपके साथ।
2: हाँ, लेकिन दादी तो मानती ही नहीं है और मम्मी भी कुछ नहीं बोल रही हैं।
1: ठीक है रोहन, तू चिंता मत कर, मैं अभी आ रही हूँ।

0: ऐसे अचानक सब कुछ छोड़कर छोड़ना ही पड़ेगा। ना आदमी रहा ना सहारा, अब यहाँ किसके सहारे रुकेंगे? गांव चलो, घर किराए पे दे देंगे, दुकान भी आगे चल के बेचेंगे।
1: हाँ, वहाँ सब जान पहचान वाले हैं और रोहन का भी देखभाल अच्छे से हो जाएगा।
0: सरिता, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ।
2: ओम शांति। किस बात की तैयारी चल रही है?
0: बहन जी, अब ये दोनों यहाँ नहीं रहेंगे, हम इन्हें अपने साथ लेके जा रहे हैं। अब बहू अकेली क्या करेगी यहाँ?
2: अकेली क्यों, भगवान है ना साथ में।
0: हाँ हाँ, भगवान साथ होता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज के जमाने में घर का राशन पानी, रोहन का पढ़ाई का खर्चा, ये सब अकेली कैसे संभल पाएगी? ये
2: इसका मतलब आप भगवान से अभी भी नाराज हैं। लेकिन विश्वास रखिए, परमात्मा की याद में ही जीवन के हर समस्या का समाधान है।
0: हाँ तो बोल दो आपके भगवान को, ला दे मेरे बेटे को वापस।
2: माता जी शांत हो जाइए, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। जो चला गया उन्हें तो अब हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन समस्या से भागकर उसका हल भी तो नहीं मिलता ना।
1: हम कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहते, साथ में रहेंगे तो हमें भी चिंता नहीं रहेगी।
0: यहाँ ये अकेली एक औरत मतलब कर भी क्या सकती है?
1: हम गांव चले जाएंगे और दुकान किराए पे दे देंगे, इससे इनका भी खर्चा निकल आएगा।
2: आपका कहना है कि क्या सिर्फ पुरुष ही सहारा है? आज के समय में महिलाएं भी हर क्षेत्र में आगे हैं, अपना जॉब भी कर रही है, घर भी संभाल रही है।
3: वही तो, मेरे फ्रेंड की मम्मी भी तो दुकान चलाती हैं।
1: लेकिन सरिता को तो इतना अनुभव नहीं है ना।
2: जब जिम्मेवारियां आती है तो इंसान खुद ही सब कुछ सीख जाता है, और सरिता जी तो फिर भी पढ़ी लिखी है, वो गाँव में जाकर करेगी भी क्या, यहाँ रहेगी तो अपना साड़ी का दुकान चलाएगी।
0: हाँ, बात तो आपकी सही है, हम भी भला कब तक साथ दे पाएंगे, लेकिन ये हिम्मत रखे तब ना।
2: क्या आपने महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी की जीवन कहानी सुनी है?
3: जो हमारे प्रेसिडेंट है उनकी कहानी?
2: हाँ, उनकी जीवन कहानी।
1: हाँ, मैंने न्यूज में देखा था, वो उड़ीसा के एक छोटे से गांव की आदिवासी समाज की साधारण सी महिला है, लेकिन आज देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है।
2: हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, वो आज जिस पद पर है वहाँ वो ऐसे ही नहीं पहुँचे हैं। उनका जीवन भी बहुत संघर्ष वाला रहा है, उन्होंने भी जैसे अपना सब कुछ खो दिया था, पहले अपने दो जवान बेटे और फिर अपना पति, क्या गुजरी होंगी उनके ऊपर। लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और आज वो हमारे देश के सबसे बड़े पद को संभाल रहे हैं। तो एक घर परिवार संभालना क्या बड़ी बात है।
0: आपकी बातें सब ठीक है, लेकिन इसमें उतनी हिम्मत होनी चाहिए।
4: हाँ दीदी, मेरे अंदर अब बात ही नहीं रही।
2: हाँ जी बिल्कुल, उनका भी कुछ ऐसा हुआ था, वो भी अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। लेकिन उन्होंने कई बार अपने अनुभव में सुनाया है कैसे परमात्मा से योग लगाकर उन्होंने खुद को अबला से सबला, शक्ति से शिव शक्ति संपन्न बनाया।
3: क्या ये राजयोग मैं और मम्मी भी सीख सकते हैं? पापा भी तो यही चाहते थे ना।
2: जी जी क्यों नहीं, ये तो हर किसी को सीखना चाहिए। राजयोग माना ईश्वर से अपना मन और बुद्धि को जोड़ना, जिससे जीवन के हर कठिन परिस्थिति में फिर से खड़ा होने के लिए शक्ति मिलती है।
4: दीदी हम जरूर सीखेंगे उसे, मैं भी अब हार नहीं मानूंगी। वैसे भी रोहन के पापा के साथ कई बार दुकान जाती थी, अब मैं भी धीरे धीरे सब संभाल लूंगी।
0: लेकिन लोग क्या कहेंगे, अभी अभी पति मरा है और ये औरत दुकान चला रही है।
2: ऐसा क्यों, स्त्री हो या पुरुष, ये शरीर तो सिर्फ वस्त्र मात्र है, हम तो सब एक शक्ति स्वरूप आत्माएं हैं और पिता परमात्मा हमारे साथ है, तो डरने की क्या बात है।
4: हाँ जी दीदी मैं समझ गई, अब मैं डर कर नहीं हिम्मत के साथ जीऊंगी, दुकान संभालूंगी और रोहन को यही पढ़ाऊंगी।
0: क्या आप गारंटी लेती है कि ये अकेली सब कर लेंगी?
2: सिर्फ मेरी गारंटी नहीं माता जी, स्वयं भगवान की गारंटी है, जिसके साथ ही है भगवान उसे क्या रोकेगा आंधी और तूफान।
3: ये हुई ना बात, दीदी आपने तो सबकी सोच ही बदल दी।
1: दीदी अब बहुत अच्छा बोलती हैं, लेकिन हमारे गांव में ऐसा कोई सेंटर ही नहीं है। क्या आप वहां पे आकर के ये बातें सिखा सकते हैं क्या? बहुतों की सोच बदल जाएगी।
2: क्यों नहीं, आपके गांव में भी हम 7 दिन का राजयोग कोर्स शुरू करेंगे। हमारी सोच बदलती है तभी तो हमारी जिंदगी बदल जाती है।
1: मैं जाकर सब तैयारी करता हूँ। पहले सिर्फ सरिता के लिए सोचता था, अब समझ गया पूरा गांव बदल सकता है।
5: बहन जी, आपका कैसे शुक्रिया करे समझ नहीं आ रहा है। न कोई रिश्ता, न कोई नाता, न कोई स्वार्थ, फिर भी आपने इतना प्यार से समझाया। अब तो मैंने भी ठान लिया है, अब कुछ दिन यही रहूंगी और आपसे ये राजयोग सीख कर ही गाँव जाऊंगी।
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी कुछ दिन आपका साथ मिलेगा।
6: आज की नारी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं निभा रही, वो अपने जीवन की दिशा भी खुद तय कर रही है। लेकिन याद रखिए, नारी या पुरुष होना सिर्फ शरीर रूपी वेश है। हम सभी पहले आत्मा हैं, न कि सिर्फ शरीर। आत्मा जो शक्तिशाली है, अजर है, अमर है। आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता, और ये आत्मा उस परमात्मा की संतान है जो स्वयं शक्तियों का सागर है। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तब हम इस आत्मबल को फिर से जागृत कर सकते हैं। यही आत्मबल आज की हर स्त्री को सीमाओं से ऊपर उठने की ताकत देता है। यही राजयोग है। राजयोग कोई कर्मकांड नहीं, ये एक आत्मा परमात्मा मिलन की शुद्ध अनुभूति है। ये एक जीवन जीने की सच्ची कला है।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

0: से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महाकाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के तटवर्ती नगर रत्नागिरी में हुआ था। सन 1857 के विप्लव के बाद हताश भारत को एक ऐसे नायक की जरूरत थी जो लोकमान्य हो, और तिलक परतंत्र भारत के पहले महान लोकनायक बन गए। तिलक के कार्यों के फलक की विशालता उनके व्यक्तित्व को अनायास ही विराट बना देती है। वे यदि प्रखर चिंतक थे तो ओजस्वी वक्ता भी। वे विचारवंत लेखक भी थे और दार्शनिक भी। वे समाज सेवी भी थे और समाज सुधारक भी। वे शिक्षा शास्त्री थे और पत्रकार भी, और उनका मूल मंत्र था किसी भी कीमत पर आजादी। वे ऐसे कर्मयोगी थे जिसने अपनी वाणी और कलम से एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया। बापू के शब्दों में कहें तो तिलक का एक एक शब्द लोगों के लिए कानून था। उन्होंने जनजागरण के लिए शिक्षा के प्रसार को जरूरी बताया। उनकी नजर में व्यक्ति के विकास के माने बौद्धिक के साथ साथ शारीरिक विकास भी था। जनजागृति की अपार व्यग्रता ने उन्हें पत्रकार बना दिया। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन करके वे भारतीयों के सशक्त प्रवक्ता बन गए। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उन्होंने सिंह गर्जना करते हुए कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। सूरत अधिवेशन के बाद उन्हें 6 साल के निर्वासन का दंड देकर मांडले जेल भेज दिया गया। मांडले जेल में साहित्य की अनमोल धरोहर गीता रहस्य अपने रचनाकार का इंतजार कर रही थी। जीते जी तिलक का स्वराज का सपना भले ही सच ना हुआ हो, लेकिन वे एक ऐसी मशाल जला गए

0: जिसने हमेशा के लिए आजादी का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
1: हाँ भाई, ये आ गया काका का ढाबा।
2: हाँ, पर तुम्हारा दोस्त तो शायद अब तक यहाँ नहीं पहुँचा।
1: आता ही होगा रमेश भाई, काका की चाय पिए बगैर हम लोगों को चैन कहाँ पड़ता है। लो, वो आ गया।
3: क्या बात है भाई, किस बात पर हंस रहे हो?
1: बस यूं ही, वो कहते हैं ना, आने वाले का स्वागत हंसते मुस्कुराते करना चाहिए।
3: शुक्रिया शुक्रिया। और रमेश भाई, लगता है आपको हमारा शहर रास आ गया।
2: वो तो है भाई, पर जाना तो पड़ेगा ही, इसलिए सोचा कि एक बार और काका की चाय और कहानी का लुत्फ ले लिया जाए। क्यों नवीन भाई?
4: हाँ भाई, क्यों नहीं क्यों नहीं। आपकी पहली फरमाइश तो अभी पूरी किए देता हूँ। अरे छोटू बेटा, चार चाय लाना जरा।
2: और दूसरी?
4: अब भाई, दूसरी फरमाइश पूरी करने के लिए तो सोचना पड़ेगा, अब कुछ सूझ ही नहीं रहा किसके बारे में बताऊं। हाँ भाई छोटू, ला चाय दे सबको, लीजिए चाय।
1: यार छोटू, ये बता, तेरा कद तो अच्छा खासा है, फिर ये नाम छोटू कैसे पड़ा?
4: अरे भाई मैं बताता हूँ, असल में ये अपने सब भाई बहनों में सबसे छोटा है।
3: अच्छा अच्छा, मतलब परिवार में सबसे छोटा है इसलिए ही नाम पड़ा।
4: हाँ लो, इसी बात पे मुझे रमेश की दूसरी फरमाइश पूरी करने का भी मौका मिल गया। असल में देश के ओजस्वी पुरुष लोकमान्य गंगाधर तिलक को यदि बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है तो उसके पीछे भी यही कारण है।
2: अरे वाह, मतलब तिलक जी भी भाई बहनों में सबसे छोटे थे?
4: हाँ, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिखल गांव के तिलक परिवार में जन्मे गंगाधर जी को घर में बाल और केशव कहकर बुलाया जाता था। घर में शिक्षण अध्यापन का माहौल होने के कारण उन्हें स्कूल जाने के पहले ही संस्कृत और गणित में महारत हासिल हो गई थी।
5: सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
6: बाल
5: जी, पिताजी
6: देखो, अब तुम्हें गणित और संस्कृत का ठीक ज्ञान हो गया है, मेरी दृष्टि से अब तुम पाठशाला में पढ़ने के लिए तैयार हो, इसलिए तुम कल से पाठशाला जाओगे। जाओगे ना?
5: जी पिताजी।
7: बच्चों, आज हम सुभाषित श्लोकों का अभ्यास करेंगे। माधव, तुम एक श्लोक सुनाओ।
8: गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्
7: एक श्लोक भी ठीक से याद नहीं है। ठीक ठीक ठीक, चलो चलो बैठ जाओ। अब कौन सुनाएगा?
5: मैं सुनाऊं मास्टर जी।
7: बाल तुम? बेटा तुम्हारा प्रवेश तो अभी हुआ है, क्या तुम्हें श्लोक आते हैं?
5: जी।
7: अच्छा तो फिर सुनाओ।
5: लेकिन कौन सा?
7: अब कोई भी सुनाओ जो याद हो।
5: लेकिन मुझे तो पूरी पुस्तक याद है।
7: हैं? चुप चुप चुप, सब चुप हो जाओ। हाँ बेटा बाल, तुम श्लोक सुनाओ।
5: गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे

0: ये मेरे ऊपर क्यों फेंकता है? अरे कैसा यहाँ मत फैलाओ, अरे
1: ये क्या कक्षा में किसने कूड़ा फैलाया है? कहते क्यों नहीं किसने फेंके ये छिलके? बताते हो या लगाओ सबको दो दो? अच्छा तो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, सब हाथ आगे करो, कक्षा में मूंगफली खाओगे, ये लो। तुम हाँ हाँ तुम इधर आओ, ये लो। अब तुम इधर आओ, ये लो। अब बाल तुम आओ, अपना हाथ आगे करो।
2: नहीं मैंने मूंगफली नहीं खाई, इसलिए मैं बेद की मार भी नहीं खाऊंगा।
1: अच्छा तो फिर सच सच बताओ कि किसने मूंगफली खाई थी?
2: नहीं।
1: क्या?
2: मैं किसी का नाम भी नहीं बताऊंगा और बेद की मार भी नहीं खाऊंगा।
1: ये हिम्मत, निकल जाओ कक्षा से।
3: बाल मैंने जो सुना वो ठीक है?
2: जी पिताजी।
3: लेकिन क्यों?
2: क्योंकि मैंने जो अपराध किया ही नहीं था उसका दंड मैं क्यों भोगूं? और फिर अपने साथियों के साथ मैं गद्दारी भी नहीं करना चाहता था। पिताजी मैं बड़े होकर अंग्रेजों की बात भी नहीं मानूंगा, उनकी गलत बातों का भी विरोध करूंगा।
4: वाह इतनी सी उम्र में सच के लिए इतना साहस।
5: हाँ तिलक जी के विचारों में यह दृढ़ता उम्र और हालात के चलते और भी दृढ़ होती गई। बचपन से ही उन्हें माँ के गुजर जाने का दुख सहन करना पड़ा और फिर जब थोड़े बड़े हुए तो परंपरा अनुसार 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह कर दिया गया। तिलक जी जब कॉलेज में गए तो अक्सर अपने दुबले पतले शरीर और पत्नी सत्यभामा के चलते हंसी का पात्र बन जाते थे।
6: भाई बाल तुम बड़े तो हो गए पर रहे वही बाल गोपाल।
7: हाँ देखो ना कहाँ बाल का बाल जैसा शरीर और कहाँ हमारी भाभी सत्यभामा।
6: सत्य वचन सत्य वचन।
5: अब देखना तुम लोग ये बाल अपने शरीर को कैसे ढाल बनाता है।
8: एक सौ एक, एक सौ दो, एक सौ तीन, ये 115।
6: अरे बाल ये तो तुम्हारा कायाकल्प ही हो गया। ये सब ये चौड़ा सीना ये भरी हुई भुजाएं, वाह मित्र तुमने तो कमाल ही कर दिया। कोई निश्चय करना तो तुमसे सीखे, सच में तुम तो बिल्कुल मिस्टर ब्लंट हो।
7: कौन? बाल एक बुरी खबर है मित्र।
3: क्या हुआ?
7: तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया।

0: मित्र, मुझे दुख हुआ सुनकर कि यदि मैं तुम्हारे कोई काम आ सकूं तो कहने में संकोच ना करना।
1: अगर कर, जो नियति में था वो हुआ। वैसे नियति में तो ये भी लिखा है कि यहाँ पुणे के डेक्कन कॉलेज में तुम्हारे जैसे मित्र मिलेंगे, तभी तो यहाँ चला आया। खैर बताओ, आगे क्या करना चाहते हो?
0: तिलक, मैं तो यहीं से LLB करना चाहता हूँ।
1: अरे वाह, मैंने भी कुछ ऐसा ही सोच रखा है। लेकिन हाँ, वकालत करने के बाद देश को शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृत संकल्पित हूँ।
0: अरे वाह, अब जब तुमने ये सोच रखा है मिस्टर ब्लंट, तो तुम इस काम को पूरा करके ही रहोगे, और इस काम में भी मैं तुम्हारी मदद के लिए पूरी तरह तैयार हूँ।

0: मित्र, हमारी वकालत की पढ़ाई तो यहाँ समाप्त हुई और अब हमें जल्द से जल्द अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करना शुरू कर देना चाहिए।
1: तो कोई योजना है या यूं ही हमें बस रास्ते ढूंढते चलना है?
0: योजना भी है और उसके क्रियान्वयन का मार्ग भी।
1: वो क्या?
0: देखो, हमें यदि अंग्रेजों की नीतियों से आम जनता को अवगत कराना है तो हमें समाज का शिक्षा स्तर बढ़ाना ही होगा और इसके लिए हमें सरकारी नौकरी ना करके एक स्कूल की स्थापना करनी होगी।
1: स्कूल की?
0: हाँ मित्र, ये एक अंग्रेजी का स्कूल होगा जिसका नाम हम रखेंगे न्यू इंग्लिश स्कूल। अपने नाम के मुताबिक हमारे स्कूल के विद्यार्थी न केवल नई पद्धति से बेहतर शिक्षा ग्रहण करेंगे बल्कि उसका इस्तेमाल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में भी कर सकेंगे।
1: वाह, बहुत खूब मित्र। लेकिन हमें इस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए देश के बड़े बड़े शिक्षाविद और कुछ अध्यापकों की आवश्यकता भी होगी।
0: ठीक कहते हो, लेकिन इतना समर्पित शिक्षाविद हमें मिलेगा कहाँ?
1: दरअसल मैं महान शिक्षाविद श्री विष्णु शास्त्री चिपलूणकर को जानता हूँ। उन्होंने हाल ही में सरकारी नौकरी भी तज दी है।
0: अरे वाह, तो भाई देर किस बात की, चलिए।

0: तो क्या नवीन भाई, चिपलूणकर जी उनकी मदद को तैयार हो गए?
1: हाँ हाँ बिल्कुल, तिलक जी और चिपलूणकर जी दोनों ही एक दूसरे के विचारों से प्रभावित हुए बिना रह ना सके, और अब तो महादेव जोशी और शिवराम आपटे जैसे शिक्षकों के साथ ही स्कूल का शुभारंभ भी हो गया।

0: और अब श्री बाल गंगाधर तिलक हम सभी को संबोधित करेंगे।
1: आज हमारा देश गुलाम है, अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं, हम पर अत्याचार कर रहे हैं और हम उसे चुपचाप सहन कर रहे हैं। यह हमारी कायरता है। आज हमें देश की दुर्दशा को समझना होगा, उसे दूर करने का प्रयास करना होगा। इसका मुख्य कारण है शिक्षा का अभाव। शिक्षा के क्षेत्र में भारत एक पिछड़ा हुआ देश है, इसीलिए इस स्कूल की स्थापना की गई है, जहां पर सभी लोगों को भारत की आधुनिक शिक्षा की जानकारी दी जाएगी। इससे सबका विकास होगा। अतः आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग हमारे स्कूल में आकर शिक्षा प्राप्त करें। नमस्कार।

0: बधाई हो मित्र, हम सबकी और खास तौर पर आपकी मेहनत रंग लाई।
1: और मैट्रिक के परीक्षा परिणाम में तो हम औरों से बहुत आगे हैं।
0: तो आप तक ये खबर पहुंच ही गई?
1: हाँ अगर कर, लेकिन शिक्षा के साथ हमें सदैव दूसरे संदेशों को समाज में पहुंचाना होगा।
0: बिल्कुल ठीक, तो क्यों ना इस खुशी के मौके का ही लाभ लिया जाए।
1: ये भी ठीक है, चलिए
0: चलिए।

नमस्कार। सर्वप्रथम तो विद्यालय की सफलता के लिए श्री चिपलूणकर जी का, आगरकर जी का, समस्त शिक्षक गण एवं छात्रों को बहुत बहुत बधाई। इस खुशी के मौके पर मैं आप सभी को कुछ सामाजिक कर्तव्यों की याद दिलाना चाहता हूं। आप सब जानते ही हैं कि इस समय देश का क्या हाल है। एक तो अंग्रेजों का राज और ऊपर से हमारी पुरातन कुरीतियां, हमें बाल विवाह, छुआछूत, अशिक्षा, विधवा शोषण जैसी कुरीतियों के खिलाफ लगाम कसनी होगी। जब तक हम स्वयं इन बुराइयों की गुलामी में जकड़े रहेंगे, तब तक अंग्रेजी शासन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इन सामाजिक बुराइयों से समाज को छुटकारा दिलाने के लिए आप सबको हमारी आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना होगा। हमारे स्कूल का मूल उद्देश्य है देश की स्वतंत्रता, जिसे हम सामाजिक सुधार के साथ पाकर रहेंगे।

0: वाह, सचमुच तिलक जी कितने महान उद्देश्य को लेकर चल रहे थे।
1: हाँ, उन्होंने अपना ज्यादातर जीवन स्कूल के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन एक समय ऐसा आया जब स्कूल कार्यकारिणी और तिलक के बीच मतभेद हो गए।
2: वो कैसे?
1: दरअसल तिलक जी तब राजनीतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेने लगे थे, और ये बात न्यू इंग्लिश स्कूल के कार्यकारिणी के कुछ सदस्यों को नागवार गुजरी। इस मसले पर जब सदस्यों के दो समूह बन गए तो तिलक जी ने स्कूल सोसाइटी से इस्तीफा देना ही ठीक समझा।
0: तिलक जी, अब आगे आपकी क्या योजना है?
3: भाई, मैंने सिर्फ स्कूल से त्याग पत्र दिया है, अपने उद्देश्यों को नहीं तजा है।
0: मतलब?
3: मतलब ये कि अब शिक्षा के विस्तार का सबसे व्यापक तरीका अपनाऊंगा।
0: कौन सा तरीका?
3: पत्रकारिता। मैं अब समाचार पत्रों के जरिए शिक्षा का प्रचार करूंगा।
0: लेकिन इसमें तो बहुत खर्च है, आप ये सब कैसे करेंगे?
3: हौसला हो तो सब संभव है मित्र। मैं दफ्तर के नाम पर टूटी फूटी कुर्सी और मेज से ही काम चला लूंगा। कंधे पे टाइप के केस छापे खाने तक ले जाऊंगा और पत्र भी घर घर जाकर स्वयं ही बांटूंगा।
0: वाह तिलक जी, देखिएगा, एक दिन आप इस देश के ललाट की शोभा तिलक बनकर बढ़ोगे।

0: वाह, बाल गंगाधर तिलक ने तो कमाल ही कर दिया। इतने कम समय में इतना बढ़िया अंग्रेजी और मराठी पत्रों का प्रकाशन कर दिया।
1: What an excellent article in Kayseri. Beautiful.
2: वाह, क्या संपादकीय लिखी है तिलक जी ने।
3: वाह वाह वाह, तिलक जी ने कहा है छान लेके लाए।

0: song. English newspaper Kesri mein British agent ke khilaf likha gaya hai.
1: What?
0: Yes, sir. लिखा है कि रियासत के शासक राजा शिवाजी राव पर अत्याचार करते हैं.
1: Rubbish. पता करो, who's the editor?
0: सर, ये आर्टिकल खुद एडिटर लोकमान बार घांगड़ ठीलक ने लिखा है.
1: ओह, ठीलक पर मानहानि का मुकदमा दायर करो.

0: पेपर के एडिटर और संरक्षक को 4 महीने की सजा सुनाई जाती है।
1: लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक
2: जिंदाबाद जिंदाबाद।
1: लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक
2: जिंदाबाद जिंदाबाद।
1: तिलक जी संघर्ष करो
2: हम तुम्हारे साथ हैं।
1: तिलक जी संघर्ष करो
2: हम तुम्हारे साथ हैं।
1: लोकमान्य

0: फिर क्या हुआ नवीन भाई?
1: अब होना क्या था दोस्त, अपनी पहली जेल यात्रा के बाद भी तिलक जी ने अपना काम जारी रखा।
2: तिलक जी, अब तो आपके लेखों का व्यापक असर हो रहा है। आपके आह्वान पर न जाने कितने लोग मातृभूमि की रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ।
1: संकोच पूछिए।
2: ये मराठी तो ठीक है, लेकिन आपने हिंदुस्तानियों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अंग्रेजी भाषा का चुनाव क्यों किया?
1: देखिए, व्यक्तिगत तौर पे कहूं तो मुझे अंग्रेजी भाषा से गहरा लगाव है, लेकिन मैं अंग्रेजों को भारत में कतई देखना नहीं चाहता। केसरी की भाषा मैंने अंग्रेजी इसलिए चुनी ताकि उसमें लिखी सामग्री से ब्रिटिश शासन भली भांति परिचित होता रहे और हमारे अटल इरादों को अच्छी तरह जान ले।
2: वैसे राजनीतिक चेतना को लेकर तो कांग्रेस भी अच्छा काम कर रही है, आप क्या कहते हैं?
1: मेरा भी कुछ ऐसा ही विचार है, इसीलिए मैं कांग्रेस में शामिल हो रहा हूँ और इसके अधिवेशनों के लिए मेरे पास और योजनाएं भी हैं।
3: नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में पधारे सभी कांग्रेसी जन लोकमान बाल गंगाधर तिलक से तो परिचित हैं ही। लीजिए, अब वो अपना आर्म्स एक्ट सबके सामने रखेंगे।
1: आदरणीय वरिष्ठ जन एवं साथियों, सरकार सेना में जवानों की भर्ती करना चाहती है, लेकिन वो जवानों को ढूंढने में असमर्थ है। यदि उसने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया तो उसे और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार रणभूमि में लड़ने वाले नौजवानों को नपुंसक बना रही है। यही कारण है कि जनता की निगाह से उसका विश्वास हटता जा रहा है, इसीलिए सरकार हमको संदेह की दृष्टि से देखती है। अतः हमने आर्म्स एक्ट का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसका उद्देश्य सेना में भर्ती होने की कठिनाइयों को दूर करना होगा ताकि हमारे नौजवानों की दुर्दशा ना हो सके।
0: तो नवीन जी, क्या अधिवेशन में आर्म्स एक्ट पास हो गया?
4: हाँ बिल्कुल,
0: सचमुच तिलक जी ने तो कमाल ही कर दिया।
4: अरे, आज जो पूरे देश में और खास तौर पर महाराष्ट्र में जो सार्वजनिक गणेश उत्सव मनाया जाता है ना, वो भी तिलक जी का ही कमाल है।
0: तिलक जी का?
4: हाँ, उन्होंने ही अपनी संस्कृति को हमेशा अक्षुण बनाए रखने के लिए सार्वजनिक गणपति और शिवाजी समारोह की शुरुआत की थी।
5: अच्छा नवीन भाई, उस अधिवेशन के बाद तो तिलक जी की भूमिका काफी बढ़ गई होगी।
4: हाँ, उसके बाद तो उन्होंने देश के लिए कई काम किए, जेल यात्राएं की, अकाल पीड़ितों की मदद जैसे न जाने कितने सामाजिक कार्य किए, जिन्हें ना तो गिनाया जा सकता है और ना ही भूला जा सकता है। उन्होंने अपने उद्देश्यों को कभी नहीं छोड़ा। इस दौरान उन्हें 52 वर्ष की उम्र में काला पानी तक की सजा भुगतनी पड़ी। कुल मिलाकर अपनी आखिरी सांस तक देश के लिए लड़े वो, और बीमारी के चलते 1 अगस्त 1920 को हमेशा हमेशा के लिए चले गए।
0: सच में नवीन जी, तिलक जी हमेशा भारत के ललाट पर तिलक की तरह चमकते रहेंगे, भारतीय संस्कृति के प्रतीक पुरुष रहेंगे, और उनकी रोशनी से हरदम रोशन रहेगा हिंदुस्तान हमारा।
4: हाँ भाई, बिल्कुल सच कहते हो तुम। ऐसे ही न जाने कितने लोग हैं जिनके बलिदानों के कारण आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं।
0: अच्छा रवीन जी, मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन का समय हो रहा है।
4: हाँ हाँ, भगवान आपकी यात्रा सफल करे।
5: अच्छा नवीन जी, नमस्कार।
4: नमस्कार
0: नमस्कार।
6: निर्देशन मॉरिस लाजरस, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
7: हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण मंगल, शूद्र का चरना, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
8: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत है जागृति इस कार्यक्रम में। जागृति ये कार्यक्रम महिलाओं के लिए और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए डेडिकेट किया हुआ कार्यक्रम है और हम अभी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और पिछले कड़ी में हमने मानसिक स्वास्थ्य किसे कहा जाता है और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इन विषयों के ऊपर हमने चर्चा की है और हमें मदद किया है इन चीज़ों को समझने के लिए हमारे विशेषज्ञ हर्षिता जी और वीरेंद्र जी। आप दोनों साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट हैं, लेकिन आज जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं वो है अनिद्रा के बारे में। यानी कि कई बार हम ये महिलाओं के अंदर देखते हैं कि दिन भर की मेहनत करने के बावजूद, थकान होने के बावजूद रात को चैन से सो नहीं पाते हैं या नींद नहीं आती है। वो कारण कुछ भी हो सकता है, हो सकता है वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ है या फिर वो किसी बात की चिंता में पड़ी हुई है या मानसिक रूप से अस्वस्थ है, कारण कुछ भी है, लेकिन उसका जो रूप है उनके जीवन में वो अनिद्रा के रूप में दिखता है। तो कई बार वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्या है जो अनिद्रा का कारण बनता है और हम एक चैन की नींद सोना क्यों जरूरी है और नींद अच्छी होने से हमारी मानसिक स्वास्थ्य पे कैसे प्रभाव पड़ता है, आज इन विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ, जैसे हमने कहा कि पिछली कड़ी में हमें जिस तरीके से हर्षिता जी और वीरेंद्र जी ने मदद किया है आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस से, आप हैदराबादी जनरल हॉस्पिटल में अब अपनी सेवाएं दे रहे हैं हरियाणा में और आज रेडियो मधुबन पे बने हुए हैं अपने अनुभवों से आप सभी को मदद करने के लिए। तो हर्षिता जी और वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस दूसरी एपिसोड में।
9: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद
8: जी। तो हम आज आपसे ये सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि एक जो कॉमन बीमारी है, या शायद इसको बीमारी कहे या ना कहे आप बता सकते हैं, अनिद्रा होना या सो नहीं पाना। महिलाएं दिन भर काम करती हैं बावजूद उनको ये कहते हैं कि तुमने किया ही क्या है, घर पे ही तो बैठी हुई थी। मगर उसका एक रिजल्ट, एंड रिजल्ट में ये देखने को मिलता है कि वो सो नहीं पाती है। तो उसका क्या कारण हो सकते हैं और नींद ना होने से उनके जीवन पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है?
2: नींद मानसिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा इंडिकेटर या सबसे बड़ा इशारा है। एक अच्छी नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। अब वो नींद कितनी उचित है वो पर्सन से पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग शॉर्ट स्लीपर होते हैं जो 4-5 घंटे सोकर एकदम फ्रेश हो जाते हैं और उन्हें कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होती। कुछ लोग लॉन्ग स्लीपर्स होते हैं जिनको 10-11 घंटे का नींद चाहिए, बट उन्हें एवरेज अगर देखा जाए तो 7-9 घंटे का नींद जो है वो एक नॉर्मल मनुष्य को चाहिए होता है अपने अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए। अगर कभी भी नींद में कुछ दिक्कत आ रही है, अनिद्रा आ रही है, अनिद्रा हो रही है, तो हमें समझना होगा कि वह क्यों आ रही है, उसके कारण हमें ढूंढकर निकालने होंगे। अब अनिद्रा की जो बीमारी है वो या तो प्राइमरी इंसोमनिया हो सकता है जिसको हम बोलते हैं, जो अपने आप आ रही है, जिसके पीछे और कोई कारण नहीं है, सिर्फ नींद कम हो रही है। वो या तो सिर्फ नींद कम हो रही है या फिर उम्र के साथ साथ नींद कम होती जा रही है। इंसान की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है उसके नींद का समय कम होने लग पड़ता है। हम सब जानते हैं कि जो छोटे बच्चे जब पैदा होते थे वो 16 घंटे 17 घंटे 20-20 घंटे सोते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है नींद की ड्यूरेशन कम होती रहती है। अडल्ट लाइफ आने के बाद में आपकी नींद 7-8 घंटे की सेट हो जाती है, वो फिर काफ़ी लंबे समय तक रहती है। और जब उम्र ढलने लगती है या जेरेट्रिक एज ग्रुप आने लगती है, जब आप 50-55 साल के ऊपर के हो जाते हैं, तब आप नींद आपकी धीरे धीरे कम होकर 5-4 घंटे की रह जाती है। अगर आप उतनी नींद लेकर भी खुद को फ्रेश महसूस कर पा रहे हैं, जब आप सुबह उठे तो आपका दिमाग एकदम स्वस्थ है, फ्रेश महसूस कर पा रहे हैं, आपको काम करने में कोई थकान महसूस नहीं हो रही, तो मतलब आपकी नींद बिल्कुल ठीक ठाक है। पर जब ऐसा नहीं हो रहा तो वो अनिद्रा है। अब अनिद्रा के अगर कारणों में जाएंगे, जिसको हम सेकेंडरी इंसोमनिया बोलते हैं, तो वो बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी लिस्ट है। अब उसके कारण कुछ शारीरिक हो सकते हैं, आपको बुखार है, आपके शरीर में कुछ दर्दें हैं,
7: आपको कोई और शारीरिक परेशानी है, डायबिटीज के अंदर में भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, हाइपरटेंशन में भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसकी वजह से निद्रा हो सकती है। या फिर कोई मानसिक बीमारियां जैसे डिप्रेशन, डिप्रेशन में नींद ज्यादा भी होती है कम भी होती है, एंग्जाइटी की दिक्कत, बेचैनी की दिक्कत जिसे बोलते हैं, उसमें भी नींद की दिक्कत आती है, या और कुछ गंभीर मानसिक बीमारियां लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, डिल्यूजन डिसऑर्डर, जो ऐसी बड़ी मानसिक बीमारियां, उनमें भी नींद कम या ज्यादा होती रहती है।
8: जी सर, ये आपने बात तो सही कहा कि बीमारियां हो तो फिर नींद नहीं आती है, वो समझ में आता है कि ये इस कारण से हो रहा है। लेकिन एक आम तौर पे महिलाओं का अगर हम टेंडेंसी देखते हैं, ऐसी बड़ी बीमारियों के आइडेंटिफिकेशन तो उनके अंदर नहीं होता है, लेकिन वो सो नहीं पाती है, चाहे वो उनको आने वाली कल की चिंता हो या पूरे दिन में जिस प्रकार की बातें या फिर जिस तरीके के व्यवहार उसने सामना किया है वो उसको दिमाग में खा रहा है या जो भी है, मन को शांत नहीं कर पा रही है, अगर हम सरल भाषा में कहें तो। उस कारण से भी जब सो नहीं पाती हैं तो ऐसे में वो क्या प्रैक्टिस करे ऐसे दिन भर में, या फिर रात को सोने से पहले वो ऐसा क्या खुद के लिए ऐसा करे जिससे वो मन को शांत कर सके और वो सो सके।
7: अच्छी नींद के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है उसे स्लीप हाइजीन बोलते हैं, जैसे हमारी डेंटल हाइजीन है, फिजिकल हाइजीन है, वैसे ही नींद, अच्छी नींद के लिए स्लीप हाइजीन होती है। उसके अंदर में कुछ प्रमुख चीज़ें होती हैं, अगर आप उसको करेंगे तो आपकी नींद लगभग ठीक हो जाएगी, अन्यथा वो किसी बड़ी बीमारी का संकेत नहीं है। अगर सिर्फ कुछ चिंता या कुछ कारणों की वजह से आपको नींद नहीं आ रही तो वो उससे ठीक हो जाएगी। उसमें सबसे जो ज़रूरी है वो है आपको अपनी नींद का समय फिक्स रखना पड़ेगा कि मुझे हर रोज इस समय सोने के लिए जाना है और इस समय उठना है, हफ्ते के सातों दिन, रविवार को लेकर। अधिकतर हम देखते हैं कि लोग शनिवार रात को लेट नाइट तक जागते हैं, पर उसका इम्पैक्ट, उसका असर अगले दिन भी रहता है, अगली नींद भी आपकी खराब होगी। तो रोजाना एक समय पर सोना शुरू करें, रात को 9 बजे के बाद में किसी भी ब्राइट लाइट का एक्सपोजर कम से कम रखें, लाइक मोबाइल फोन का इस्तेमाल रात को 9 बजे के बाद, टीवी का इस्तेमाल रात को 9 बजे के बाद ना करें, क्योंकि जब हम सोने के लिए जाते हैं तो हमारा ब्रेन रिलैक्स स्टेट में चला जाना चाहता है। अगर वो एक्टिवेटिंग स्टेट में है तो हमें कभी भी अच्छी नींद नहीं आएगी। जब हम बहुत देर तक फोन या टीवी का इस्तेमाल कर रहे हैं, रात को 10, 11, 12 बजे तक फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद जब हम सोने के लिए जा रहे हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो इमीडिएटली रेस्ट स्टेट में नहीं जाएगा, वो बहुत देर तक उन्हीं वीडियोस को सबकॉन्शियस लेवल पे घुमाता रहेगा और चलाता रहेगा। इसलिए जब हम सुबह उठेंगे तो हम सो भी गए हैं, साथ वाला आदमी बोलेगा कि तू तो अच्छा खासा सो रहा था, खराटे ले रहा था और ये कर रहा था, बट आप जब सुबह उठेंगे तो आपको फ्रेश फील नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो नींद की क्वालिटी है, सिर्फ क्वांटिटी नहीं क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है, आपकी नींद की क्वालिटी भी खराब हो गई। तो उसको ठीक करने के लिए आपको रात को 9 बजे के बाद ब्राइट लाइट एक्सपोजर और मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम करना है। तीसरी चीज़ जो होती है वो शाम को 5 बजे के बाद कैफीन इनटेक को कम कर दीजिए, जैसे चाय, कॉफ़ी, रेडबुल, जो ऐसी चीज़ें जो एक्टिवेटिंग या जगाने वाली चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल शाम को 5 बजे के बाद बिल्कुल बंद कर दिए, ताकि ब्रेन को कूल डाउन होने के लिए 3-4 घंटे मिले। अपने बिस्तर का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए करें, किसी अन्य कार्य के लिए नहीं। बिस्तर पर बैठ के अगर टीवी देख रहे हैं, बिस्तर पर बैठ के अगर खाना खा रहे हैं तो उस चीज़ का अवॉइड करें, क्योंकि बिस्तर का आविष्कार सिर्फ सोने के लिए हुआ था। तो जब बिस्तर पर सिर्फ सोने के लिए जाएंगे तो ब्रेन को ये ऑटोमेटिक सिग्नल जाएंगे कि यहाँ पर मैंने सिर्फ सोना है। सोते समय कोशिश करें कि एब्सोल्यूट डार्क रहे कमरा, बिल्कुल अंधेरा रहे, रोशनी ना रहे बिल्कुल भी, टेम्परेचर हमेशा ठीक ठाक हो कि आपकी बॉडी को कंफर्टेबल लगे, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा हो। और सोने से पहले कभी भी भारी काम मत करें, मतलब बहुत ज़्यादा थकाने वाला काम मत करें कि शरीर में कोई पीड़ा रह जाए, तो उस वजह से भी नींद गड़बड़ होने लग पड़ती है। तो शाम के समय अगर एक्सरसाइज करनी है तो एकदम हल्की फुल्की एक्सरसाइज करी, 10-15 मिनट का सैर कर लिया हल्का, बिना शरीर को ज़्यादा कष्ट दिए हुए। और आई थिंक ये अगर चीज़ें करेंगे तो स्लीप हाइजीन बहुत अच्छी रहेगी और आपको नींद अच्छी आएगी। डॉक्टर हर्षिता, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं?
9: जब हम सोने जा रहे हैं सर ने बहुत अच्छी स्लीप हाइजीन एक हमारे लिए 6-7 पॉइंट्स बहुत ही अच्छे अच्छे ऐड ऑन करे हैं। इसमें बस मैं 2-3 पॉइंट्स और है जो ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि जब आप सोने के लिए जा रहे हैं तो जो आपका पिलो है उसका मेजर ध्यान रखें कि वो तीन से चार इंच का पिलो है जो आपके नेक के लिए, और बिना पिलो लिए नहीं सोना है, या तो आप बेडशीट को फोल्ड करके सोएं, क्योंकि आपकी जो गर्दन की शेप है वो उस हिसाब से डिजाइन है, जो पिलो का साइज है वो कम से कम 3 से 4 इंच का होना चाहिए, आप उतना पिलो लगाकर ही सोएं, आपकी गर्दन के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। और रात को सोते हुए एक एक्सरसाइज है जो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, जिसको हम जेकॉब्सन रिलैक्सेशन मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो JPMR आप ये लिख सकते हैं। ये एक्सरसाइज अगर आप करके सोते हैं, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जो आपको सोने में बहुत ही ज्यादा मदद करती है। ये एक्सरसाइज आप एक ऐसे नाइट रूटीन बना लें कि ये तो मुझे करके ही सोनी है, इसके बिना मुझे सोना ही नहीं है। आप फील करेंगे कि अगर ये पूरी स्लीप हाइजीन आप मेंटेन कर रहे हैं, नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली आपका जो दिन है वो बहुत अच्छा और फ्रेश होगा। लास्ट चीज जो मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि जब भी हम स्टिल कह रहे हैं कि नींद नहीं आ रही है, सब कुछ तो कर लिया, एक बुक उठाएं, पढ़ने लग जाएं, नींद आने लग जाएगी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बोरिंग काम हमें लगता है। बोरिंग काम करते हुए हम कैसे बच्चों को नींद आने लग जाती है पढ़ाई के नाम पे, बोरिंग से बुक उठाएं या फिर कुछ ऐसी जो कुछ शिक्षादायक हो, कुछ पॉजिटिव हो, कुछ भी नेगेटिव, कोई नोवेल, वो चीजें पढ़ने की जगह आप कुछ पॉजिटिव उठाएं, वो पढ़ें, पढ़ते पढ़ते आपको जरूर नींद आ जाएगी। एक प्रॉपर 10-12 पॉइंट्स जो हमने मिलके बताए हैं, ये आप अगर करेंगे बहुत ही अच्छी आपको नींद आएगी।
10: जी ये बहुत सारी अपने टिप्स दी हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें मैं एक और बात जानना चाहती हूँ। वो महिलाएं जो शाम को निकल नहीं पाती हैं या जो भी हैं, ये सारी चीज़ें अपने बाहरी तौर पे एक फिज़िकल कंफर्ट दे सकें और एक कॉन्शियस लेवल पे हमको अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए कि मुझे अभी सोना है तो सोने के लिए मुझे ये चीज़ें नहीं करना है, मतलब शाम से ही अपने आप को प्रिपेयर कर रहे, रात को मुझे ये सोना है तो ये चीज़ें करनी है। उसके साथ साथ जो सुबह से हमारे दिमाग में जो लोड है, सुबह से जो कैरी किया है हमने चीज़ें, वो भी कई बार सताते हैं। और जैसे आपने कहा कि लाइट होने से भी नींद नहीं आती है, तो वो भी एक फिज़िकल एड ऑन वर्क है, लाइट्स बंद कर दिया, सब कुछ बंद किया, लेकिन जो दिमाग में जो चल रहा है, जो पीड़ा वो पकड़े हुए हैं या वो पीड़ा जो सता रही है, अगले दिन की चिंता हो या फिर जो सुबह से बातें हुई है, वो खुद को जवाब नहीं दे पा रहे हैं या फिर उसको स्विच ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे मोमेंट में उन चीज़ों को हम कैसे कंट्रोल करें?
9: इसका बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि जब सुबह से हम उठे, ऐसा तो नहीं है जीवन में चीज़ें होनी बंद हो गई, रिश्तेदारों ने कुछ कहना बंद कर दिया, या फिर परिवार वालों से टोन नहीं मिले, या फिर बच्चों ने कुछ गलत नहीं बोला, नॉर्मल है। सुबह उठते हैं, उनके लिए काम करना शुरू करते हैं, रात तक जब तक वो सोते हैं उनके लिए काम करते ही रहते हैं, और उनके अगले दिन उठने से पहले महिलाएं उठ जाती हैं। तो सुबह से लेकर रात तक आप जिनके लिए काम करते हैं उन्हीं से आपको चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। हमें प्यार तो है अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, अपने आसपास के लोगों से, लेकिन जब हम चीज़ें सुनते हैं तो हमें बुरा लगता है, फिर हम कहते हैं कि हम हर्ट होते हैं, हमें ये जो फीलिंग्स हैं वो अच्छी नहीं लग, क्योंकि वो हमें एट द एंड कर तो हर्ट ही रहे हैं, अपनी बातों से करते हैं, अपने एक्शन से करते हैं। अब आते हैं कि चीज़ें हम नहीं बदल सकते, हम लोग नहीं बदल सकते, हम परिवार नहीं बदल सकते, लेकिन इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो हमें निकालना है। तो इसका जो सोल्यूशन है, बेस्ट सोल्यूशन है कि हमें कुछ अपने मेंटल हेल्थ में चेंज करना है, वो ये है कि आपको वेंट आउट करना है, अपनी चीज़ों को बाहर निकालना है। अगर आप बाहर निकालते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, आप अच्छा फील करते हैं, आपको हल्का फील होता है। अब वेंट आउट करने के 3 से 4 तरीके मैं आज आपको बता सकती हूँ। एक जो लोग या महिलाएं लिख सकती हैं, वो एक डायरी राइटिंग करना शुरू करें, सुबह से लेकर रात तक जो भी आपको कुछ भी ऐसा फील हुआ, जो आपको नेगेटिव फील होता है, किसी की कोई बातें फील होती हैं, वो आप लिखना शुरू करें। बेस्ट सोल्यूशन है अपनी फीलिंग्स को ओवरकम करने के लिए। दूसरा, जिनको आलस आता है कि मुझे लिखना नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं तो नहीं लिख पाऊंगी इतना ज्यादा,
10: कई बार हो सकता है वो महिला को लिखना भी नहीं आता हो।
9: हाँ एग्जैक्टली, उसी के लिए मैंने बताया। तो दूसरा सोल्यूशन ये है कि अगर आपके पास व्हाट्सएप है, आप उसमें रिकॉर्ड करना शुरू कर दें, वहाँ पे ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, आपके अंदर जो भी चीजें हैं, आपको किसी को बुरा भी लग रहा है किसी को कुछ कहना, लेकिन आप उसके फेस पे नहीं कह पा रहे, लेकिन अगर अंदर रखेंगे तो राई का पहाड़ तो बनेगा ही बनेगा। इसलिए आपको उसको पहाड़ को नहीं बनने देना है, उसको वहीं के वहीं खत्म करना है। उसको खत्म करने के लिए आप बोलिए, आप बात करिए, ठीक है। तीसरा है कि अगर जिनको लिखना आता है वो उस इंसान के लिए डायरी राइटिंग कर सकते, जैसे हमने बोला वैसे ही लेटर राइटिंग कर सकते हैं। ये तीन सॉल्यूशंस हैं जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो आपके वो जो विचारों का एक लूप चल रहा है, जो टर्न ऑन की जगह ऑफ नहीं हो पा रहा, वो स्विच आप ऑफ कर सकते हैं।
10: जी, तो कुल मिला के यही है कि हम उसको स्विच ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ भी हुआ है, जो चीज़ बीत गया है, उसको पकड़ के बैठे तो फिर उसका समाधान नहीं है। या तो हम उसके लिए सोल्यूशन खुद से ढूंढें, अगर नहीं ढूंढ पाता है तो किसी और से सोल्यूशन ले, लेकिन उसको वहाँ पे उसको ख़त्म कर दें।
9: नहीं, अंदर ना रखें, उसको बाहर निकालें। उसको जितना अंदर रखेंगे आप अपने आप को ही खराब कर रहे हैं, उसको बाहर निकालें। जैसे मैंने चार तरीके बताए, चारों में से ये उनके लिए भी है जो लिख सकते हैं, उनके लिए भी है जो नहीं भी लिख सकते, नहीं भी पढ़ सकते। चारों में से जो आपको सेट बैठता है आप वैसे वेंट आउट करें, बट करें ज़रूर। किसी को अपना फ्रेंड बनाएं या कुछ कैसे भी, बट आप वेंट आउट ज़रूर करें।
10: जी, मैं आप दोनों से एक और सवाल करना चाहती हूँ। हम कैसे ये आइडेंटिफाई करें हमारी लाइफस्टाइल में कि ये मेरी नींद की डिसऑर्डर या इंसोमनिया या निद्रा, जिस भी कारण से जो नींद डिस्टर्ब हुआ है, उस कारण से ये मेरी लाइफस्टाइल में चीज़ें आ रही है या फिर मेरी लाइफ में डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं। तो कई बार जैसे हेडेक है, क्रॉनिक हो जाता है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, इरिटेशन है, ऐसी चीज़ें बढ़ती जाती हैं। तो कई बार ये हम नहीं समझ पाते हैं कि ये मैंने नींद पूरा नहीं किया या फिर टाइम पे खाना नहीं खाया। बहुत सारी चीज़ें ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ऐड ऑन होकर के उसका रिफ्लेक्शन दूसरी तरीके से होता है। तो फिर ये अनिद्रा से किस प्रकार की हमारी लाइफस्टाइल में डिस्टर्बेंसेस होते हैं या फिर हमारे जीवन शैली में क्या ऐसे नुकसान दिखते हैं जिसे हम आइडेंटिफाई करें कि हाँ, मुझे ये नींद ना करने के कारण मेरे अंदर ये दिख रहा है, मुझे सामने वाले व्यक्ति को या किसी को ब्लेम करने की जगह मुझे खुद को ठीक करना है।
2: देखिए, सबसे पहले एक अच्छी नींद का इंडिकेटर जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, वो है अगली सुबह आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जब आप सुबह उठे तो आप अपने आप को कितना फ्रेश महसूस कर रहे हैं अगले दिन के चैलेंजेस को लेने के लिए। तो ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि आपकी नींद अच्छी हुई है या नहीं हुई है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नींद का समय से उतना लेना देना नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो 5 घंटे सोकर भी अगले दिन सुबह एकदम फ्रेश होते हैं और कुछ लोग 12 घंटे सोने के बाद में अगले दिन सुबह फ्रेश फील करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप सुबह उठे तो आपका मन कितना शांत है, आपका मन कितना संतुलित है चीज़ों को हैंडल करने के लिए, अगले दिन के काम करने के लिए। सिर्फ मन ही नहीं, शारीरिक भी। अगर आपकी नींद ठीक नहीं होगी तो अगले दिन आपको शारीरिक रूप से भी थका थका लगेगा, आपको काम करने में एनर्जी महसूस नहीं होगी, जिस तेजी से आप भाग सकते हैं आप उस तेजी से नहीं भाग रहे होंगे। तो ये सबसे बड़ा साइन है अच्छी नींद होने का। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं कि आप बिना बात के बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं, बातचीत में सबके साथ में थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी बात पर झगड़ा हो रहा है, किसी की छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत बुरी लग रही हैं जो कि पहले नहीं लगती थी, तो आपको सबसे पहले अपनी नींद के ऊपर ध्यान देना होगा कि मेरी नींद ठीक हो रही है या नहीं, मैं अच्छे से सो पा रही हूँ या नहीं सो पा रही। उसके अलावा अगर आपकी शारीरिक कुछ बीमारियाँ, अगर आपका हाइपरटेंशन अचानक से बीपी बढ़ने लग पड़ा है, आपकी शुगर ठीक नहीं रह रही है, आप खाना ठीक ठाक परहेज कर रही हैं फिर भी, दवाई भी ले रही हैं फिर भी शुगर ठीक नहीं रह रही, तो तब भी आपको उसी समय आप ध्यान कीजिए कि आपकी नींद 90% चांस है कि आपकी नींद ठीक नहीं हो रही, क्योंकि नींद से फिजिकल और मेंटल दोनों इश्यूज आते हैं। तो आपके जो बीमारियां आपको चल रही हैं, थायराइड की, शुगर की, बीपी की, उसमें गड़बड़ आएगी, आपका मन शांत नहीं रहेगा, आप एनर्जी, आपके काम के लिए प्रोडक्टिविटी कम होने लग पड़ेगी और आपके बिहेवियर में लोग देख पाएंगे और आपको बोल पाएंगे कि पहले तो तू इतना चिड़चिड़ी नहीं हुआ करती थी, अब तू क्यों छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा कर रही है, क्यों हर बात को इतना दिल से लगा रही है, और आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि मैं चीज़ों को ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हूँ।
10: जी, सो हमारी जीवन में जब अनयूजुअल बिहेवियर को हम खुद नोटिस करते हैं तो उसमें हम अपनी नींद को चेक करना बहुत जरूरी है।
2: जी,
10: इसके अलावा कोई और मेथड्स या कोई और पैरामीटर्स जो आपको लगता है कि इन चीज़ों पे नींद के लिए अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है, खास करके एज वाइज स्लीपिंग ऑर्डर्स में? जैसे आपने कहा कि एज के अनुसार स्लीप की जो रिक्वायरमेंट्स है वो कम होते जाते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। आजकल हम यंग एज गर्ल्स को देखते हैं, वो नौकरी के कारण है या जैसे भी, लेट नाइट सोना, और फिर वो लेट नाइट सोने से कई बार हम ये भी डॉक्टर्स के साथ या किसी से सुनने को मिलता है कि मोटापा बढ़ने में भी नींद का बहुत
2: बिल्कुल मोटापा बढ़ने में, हार्मोन्स चेंज होने में, पीसीओडी जैसी दिक्कत आती है लड़कियों के अंदर में, मोटापा बढ़ता है, पीसीओडी जैसी दिक्कत आती है, हार्मोनल चेंज होने लग पड़ते हैं लड़कियों के अंदर में, उस सब का नींद के साथ में रिलेशन है। तो एक अच्छी नींद जो है वो आपकी बहुत सारी बीमारियों को इधर पूरा कंट्रोल कर देती है या फिर एक बहुत बड़ा हिस्सा उनका कंट्रोल करने में मदद करती है, और दवाइयों का असर भी ज़्यादा बेटर होता है अगर आपकी नींद ठीक ठाक है।
10: जी ये तो यंग एज गर्ल्स के लिए आपने कहा कि इस प्रकार की बीमारियों से वो बच सकती हैं अगर वो अपनी स्लीप साइकिल को मेंटेन करती हैं। तो ये जो 12 बजे 2 बजे 3 बजे के बाद जो सोते हैं उससे क्या असर पड़ता है लाइफ में?
2: जब आप लगातार 12 बजे 2 बजे 3 बजे ऐसा करके, देखिए सबसे पहले हमें चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब भगवान ने चीज़ों को बनाया तो दिन और रात जब बने तो रात नींद के लिए दी गई, तो इसलिए समय को उसी तरह से बनाया गया कि हमारे शरीर के अंदर में क्लॉक होती है जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक या सिकार्डियन रिदम, वो डिसाइड करती है कि हमें कब सोना है। जैसे जैसे दिन ढलता है तो हमारी बॉडी के अंदर में कुछ केमिकल चेंज होने लग पड़ते हैं अपने आप से, और वो भगवान ने वैसे ही बना के दिए। जब वो केमिकल चेंज आने लगते हैं तो हमें अपने आप से नींद आने लग पड़ती है और हम एक समय के बाद सो जाते हैं, और जैसे ही सूरज निकलता है तो उसके बाद फिर से हमारी बॉडी में केमिकल चेंज होने लगते हैं और हम दोबारा से जाग जाते हैं, जो कि नॉर्मल रूटीन है, जो कि हम बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो कर रहे हैं जो भगवान ने बनाकर भेजी है। पर जब हम उस क्लॉक के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं किसी भी चीज़ से, जो किसी भी भगवान की बनाई हुई चीज़ से जब हम खिलवाड़ कर रहे हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंस या उसके रिजल्ट तो आएंगे। तो जब हम बहुत देर तक रात को 2 बजे तक 3 बजे तक लगातार काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं पर सोने को अवॉइड कर रहे हैं, और उसकी जगह हम लोग उसको दिन में सोने को शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे केस आते हैं कि वो सोने का समय उन्होंने चेंज कर दिया और रात को 3-4 बजे सोते हैं फिर सुबह 12-1 बजे तक सो रहे हैं, तो उसके शरीर को अपने नुकसान होते हैं, उसके शरीर को नुकसान होते हैं, मानसिक नुकसान होते हैं उसके, क्योंकि हम नेचर की बनाई हुई चीज़ के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं।
10: तो ऐसे में क्या डिस्टर्बेंसेस देखते हैं साइकोलॉजिकली या फिजिकली?
2: लोग बहुत चिड़चिड़े रहने लग पड़ते हैं, बिहेवियरल इशू आने लग पड़ते हैं, जब आप सुबह नहीं उठ रहे, जब आप लेट उठ रहे हैं तो आपका दिन काम करने का बहुत छोटा हो जाता है, आपका लोगों से मिलने का समय बहुत छोटा हो जाता है। देखिए अगर आप 4 बजे तक जाग रहे हैं रात को तो रात के समय तो कोई आपसे नहीं मिल रहा, तो जो आपका ह्यूमन टच का जो काम है जिसमें आप लोगों से मिल रहे हैं वो आपका समय अपने आप से छोटा हो जाएगा अगर आप 2 बजे सोकर उठ रहे हैं, 2 से लेकर शाम को 6 बजे तक 3-4 घंटे ही आप अपने काम कर पाएंगे, बाकी सब काम ऐसे हैं जो आप अकेले कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके बिहेवियर में चेंजेस आने लग पड़ते हैं। आप देखेंगे कि इस तरह के लोग बिना वजह गुस्सा रहते हैं, काम करने में उनका जो ध्यान है वो कम होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी कम होने लग पड़ती है, और उनको जो शारीरिक नुकसान है वो भी होने लग पड़ते हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए कि आपकी बीपी शुगर की समस्याएं और ये सब प्रॉब्लम भी आने लग पड़ती हैं।
10: लेकिन कई युवा महिलाएं जो इस तरीके से नाइट शिफ्ट में काम करती है या ऐसा, उनका ये कहना होता है कि दिन में हमारा काम नहीं होता है, वो क्रिएटिव प्रोडक्टिविटी जो है वो रात को ही होती है।
2: ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो लोगों को लगता है कि सिर्फ क्रिएटिव काम में सिर्फ रात को कर सकती हैं या दिन में नहीं कर सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपने मन पे कंट्रोल करना है, अगर आपका मन आपके कंट्रोल में है तो आप दिन में भी सभी प्रोडक्टिव और सभी क्रिएटिव काम कर सकती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ रात में बैठकर ही क्रिएटिव काम कर पाएंगी और सुबह नहीं कर पाएंगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और हम तो बचपन से मतलब सिखाया गया है कि सुबह का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त जिसको हम बोलते हैं, सुबह अगर आप 4-5 बजे उठ रहे हैं और कुछ काम कर रहे हैं तो आई थिंक उससे ज़्यादा प्रोडक्टिव समय आपको कोई नहीं मिलेगा।
10: जी सो लास्ट में व्हाट इज़ द आइडियल टाइम कि यही लास्ट आवर है, इसके बाद जागना नहीं चाहिए, इस समय सोना है एंड दिस इज़ द लास्ट आवर, इसके बाद सोना नहीं है?
2: देखिए बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से तो हमें बहुत जल्दी सो जाना चाहिए, हमारा जो नींद का समय है वो 8-8:30 बजे बनता है,
11: और सुबह जल्दी उठना, उसके साथ में लगभग 4-4:30 बजे उठ जाना। तो 8 घंटे की नींद भी हो रही है और हम बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से चल रहे हैं, बट फिर भी आज के मॉडर्न जनरेशन के हिसाब से अगर आप 10 बजे के आसपास भी सो रहे हैं और सुबह 6 बजे भी उठ रहे हैं तो आई थिंक वो समय आपके लिए बहुत ठीक है।
10: जी, लेकिन 10 के बाद फिर जागना कोई फायदेमंद नहीं है।
11: नहीं।
10: थैंक यू सो मच आप दोनों को, वीरेंद्र जी और हर्षिता जी। हमारी जो ये स्लीप हाइजीन, आज एक नया शब्द हमको सीखने को मिला है, और आइडियल टाइम क्या है सोने का और नहीं सोने के कारण समय पे हम और सही तरीके से उससे क्या नुकसान होता है और उसको कैसे ठीक करना है। सबसे बड़ी बात है कि सॉल्यूशन, कि हम उसको कैसे ठीक करें, आज आप दोनों ने हमें उपलब्ध कराया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
11: धन्यवाद।
10: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम। अनिद्रा के बारे में, खास करके महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जागरूकता इस कार्यक्रम में। हम फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: मधुबन 107.8 FM सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर अभी वक्त है जीवन रोशनी कार्यक्रम का। तो आज जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो बहुत ही जरूरी है लाइफ में, क्योंकि अगर सब चीजें सही चल रहे हैं लाइफ में और कई बार कुछ निर्णय लेना होता है, कई बार कुछ परिस्थितियां अचानक सामने आ जाती है, हम कहते हैं अपने आप को टेक इट इजी, लेकिन वो इजीनेस को प्रैक्टिकल में लाने में थोड़ा सा समय लगता है। तभी कैसे हम कर सकते हैं इसको, इजीनेस को अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइफ में, तभी कर सकते हैं जब हमें इसे प्रैक्टिस करना आएगा और हम समझेंगे कि इजीनेस है क्या। हम अपने मन से बात करेंगे, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे, अपने आप से बात करेंगे कि इजीनेस क्या है, लेकिन इसे बताने के लिए हमें चाहिए हमारे एक्सपर्ट्स। तो आज हमारे मध्य हैं आरजे हर्षा और आरजे मनीषा, जिनको आप सुनते हैं हमेशा कौन से प्रोग्राम में,
1: सपनों की सैर कार्यक्रम में।
0: जी हाँ, तो आज हमारे साथ परी और दीदी दोनों जुड़ चुकी हैं और दोनों अपने अपने जो सेवा है बहुत बखूबी से निभाते हैं। यहाँ पर एक सीनियर सिटीजन होम है, वहाँ पर आप बुजुर्गों के लिए सेवा करते हैं, और आरजे हर्षा वैसे MBA किया है उन्होंने और PR के रूप में कार्यरत है शिवमणि होम में, और आरजे मनीषा फिजियोथेरापिस्ट है, तो वो बुजुर्गों को हेल्प करते हैं एक्सरसाइजेस में और बहुत सारे चीजों में वो हेल्प करते हैं, उन्हें कोई भी पेन योगा हो तो इस प्रकार से वो उन्हें हेल्प करता है। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, पहली बार आप जीवन रोशनी कार्यक्रम में आए हैं तो इसीलिए खूब खूब स्वागत है।
1: थैंक यू आरजे शुभा।
2: थैंक यू,
0: धन्यवाद। तो आप दोनों से जानना चाहेंगे इजीनेस के बारे में, क्योंकि इतनी सारी सेवाएं आप करते हैं, फिर भी आप रेडियो पे शो करते हैं, ऑनलाइन आपको एडिटिंग करते हैं, फिर यहाँ भेजते हैं और रेगुलर कर पाते हैं, तो मुझे लगता है इसके लिए लाइफ इजी होना बहुत जरूरी है, या फिर हमें इजीली उसे एक्सेप्ट करना शायद जरूरी है। तो सबसे पहले मैं हर्षा जी से पूछना चाहूंगी कि इजीनेस आपके लिए क्या है।
2: मेरे ख्याल में इजीनेस माना हम परिस्थिति को एज इट इज एक्सेप्ट करें, तो इससे जो हमारा मेंटल रेसिस्टेंस है वो कम होगा
0: जी,
2: और ज्यादा चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि सभी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है
0: जी।
2: जो चीजें हैं हमारे कंट्रोल में बेशक उसको हम कंट्रोल में रखें, ताकि हम उस परिस्थिति को इजीली टैकल कर पाएं, और इससे हमारा जो मन है वो थोड़ा स्टेबल रहता है परिस्थितियों में भी
0: जी।
2: तो एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है।
0: एक्सेप्ट करना, आपने बोला रेजिस्टेंट की बात, मतलब कुछ एग्जांपल शेयर कर सकते हैं कि हम कहाँ पे ज्यादा रेजिस्ट हो जाते हैं?
2: जैसे वर्कलोड अगर ज्यादा हो गया तो हम हड़बड़ी में आ जाते हैं, तो हरी करी इससे थोड़े फ्री रहें, उसके लिए मुझे लगता है कि हम बीच बीच में पॉज करें।
0: ओके जी,
2: पॉज बहुत जरूरी है
0: जी।
2: तो इससे हम कुछ भी अगर अलग से हो गया, रिएक्ट हम नहीं करेंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे
0: जी। आगे आपसे जानते जाएंगे कि कैसे पॉज करें। अभी मनीषा जी से पूछना चाहूंगी कि क्या सहजता जन्मजात होती है या फिर ये अभ्यास से आती है?
1: वैसे देखा जाए तो सहजता मीन्स हम इजीनेस, जैसा हर्षा बहन ने बताया, और ये भी कह सकते हैं नेचुरलनेस या इफर्टलेसनेस हम सहजता से समझ सकते हैं, तो ये जन्मजात भी होती है और अभ्यास से भी आती है। जन्मजात क्यों कहेंगे, क्योंकि यदि हम देखें तो आत्मा के जो ओरिजिनल क्वालिटीज है वो शुद्ध है, शांत है, पवित्र है, तो ये सहजता उसका नेचुरल है ही उसके अंदर। और फिर क्या होता है कि जैसे धीरे धीरे हम बड़े, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा, तो वो नेचर वाइज बहुत इजी होता है, वो चीजों को कन्वर्ट नहीं करता, वो एज इट इज लेता है, लाइट रहता है। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, उसके ऊपर संस्कार आते जाते हैं, उसके ऊपर अपेक्षाएं मीन्स उसके ऊपर हावी होने लगती हैं, तो फिर वो जो सहजता है वो चेंज हो जाती है, उसको फिर बाद में उसको विकसित करने के लिए फिर से उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर करना कहना चाहूंगी कि हाँ, इसको हमें विकसित भी करना पड़ता है, लेकिन यदि हम अपने अंदर के बच्चे को यदि हम हमेशा जगा के रखें कहें, तो फिर हमें इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये एक जन्मजात भी है और हम इसे और अच्छे से भी डेवलप

0: सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम चलना जो है वो जन्म जाते हैं, मीन्स हर कोई चल सकता है, लेकिन अच्छे तरीके से चलना, बैलेंसिंग के साथ में चलना, तो वो एक कला हो जाती है, एक विकसित करने पे ये डिपेंड करता है.
1: जी बिल्कुल, आपसे पूछना चाहूंगी कि आप अपने अंदर के जो बच्चे हैं उसको जगा के कैसे रखते हैं?
0: हाँ जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. और हम जो अपने अंदर के बच्चे को जगा के रखने के लिए हम कभी कभी डांस कर लेते हैं, हम कभी गाना गा लेते हैं, कभी पेंटिंग, कभी सिंगिंग, बहुत सारे जो ऐसे क्वालिटीज है, मीन्स हम एंजॉय करते हैं लाइफ को जैसे बच्चे करते हैं, कभी गेम्स भी खेल लेते हैं.
1: जी हर्षा जी, आप कैसे एंजॉय करते हैं?
2: हाँ, जैसे मनीषा बहन ने कहा, क्योंकि हम बुजुर्गों के साथ रहते हैं तो बुजुर्गों को भी, हाँ, उनके ये भी एक यूं कहे बच्चे की ही अब उम्र हो जाती है, बुजुर्ग और बच्चा सेम हो जाते हैं, तो इसीलिए हम उनके साथ वैसे बन जाते हैं तो बहुत इजी हो जाता है.
1: जी क्या बात है, तो लोग लाइफ को खुद कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना लेते हैं? हर्षा जी से जानना चाहूंगी.
2: मुझे लगता है लाइफ कॉम्प्लिकेटेड ओवरथिंकिंग से बनती है, जो कि आजकल के जमाने में खासकर यूथ्स को बहुत ज्यादा ये बीमारी होने लगी है, ये देखने में आता है, ओवरथिंकिंग और कंपैरिजन. कंपैरिजन के कारण भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, और फ्यूचर का फियर है, इसी के कारण कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा है, ऐसा मुझे लगता है.
1: तो मनीषा जी कुछ ऐड करना चाहेंगे?
0: जैसा हर्षा बहन ने कहा कि कॉम्प्लिकेटेड का रीज़न करेक्ट है कि ओवरथिंकिंग है, कंपेयर और इच्छाएं हो जाती है, कई बार एक्सपेक्टेशंस हम ज़्यादा करने लगते हैं अपने से भी और दूसरों से भी, और जब दूसरों से एक्सपेक्टेशन हमारी ज़्यादा होती है तो फिर वहाँ पर हम अपने आप को मीन्स एक रिजिट कर लेते हैं, रेजिस्ट कर लेते हैं, दूसरे को हम अपने अंदर मीन्स जगह नहीं दे पाते हैं. तो इसके लिए आई थिंक, मुझे लगता है कि सबको वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे वे हैं, ना कि हमें उनको बदलने की कोशिश करना चाहिए.
1: जी बिल्कुल, तभी हम लाइफ को इजी बना सकते हैं. और क्या प्रकृति में हमें सहज जीवन के उदाहरण मिलते हैं?
0: हाँ, प्रकृति देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छी जीवंत पाठशाला कहेंगे हम, क्योंकि प्रकृति से हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, कदम कदम पे मिलते हैं. जैसे कि यदि हम एक फूल को ही देख लें, तो फूल है वो सोचता नहीं है कि मुझे खुशबू फैलाना है या नहीं फैलाना है, वो उसका इजी, उसका नेचर ही है खुशबू फैलाना, इजी है वो. ऐसे ही देखें नदी को देखें, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो भी अपने नेचर के अकॉर्डिंग वो चल रही है, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है. और जैसे पेड़ है, उसका छाया देना उसको काम है, फल लगते हैं तो और वो झुक जाता है, तो जो उसका नेचर है, जो सहज, वो उसको उन्होंने अपना के रखा हुआ है. जैसे आकाश को देखें तो वो खुलापन है उसके अंदर, विशालता है. तो ऐसे हम जो प्रकृति से हम ऐसे सीख ले सकते हैं जो इजीनेस है उसके लिए.
1: जी, फाइव एलिमेंट्स जो हैं हमारे,
0: जी
1: उनमें से फेवरेट एलिमेंट आपके
0: हाँ, फाइव एलिमेंट्स में देखा जाए तो मुझे लगता है, वैसे तो पांचों ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऐसा मुझे ऐसे लगता है वाटर ज्यादा अच्छा लगता है. क्यों? क्योंकि वो अपने को एडजस्ट कर लेता है, चाहे कटोरी हो, चाहे ग्लास हो, चाहे लोटा हो या बॉटल हो, मटका हो, नदी हो, सागर हो, तो वो अपने आप को बहुत, मीन्स उसमें एडजस्टमेंट की पावर जो है वो बहुत मीन्स ज्यादा है, तो मुझे ऐसा लगता है.
1: आपको हर्षा जी
2: सेम वाटर पसंद है, क्योंकि फ्लो होता रहता है और हर चीज में ढल जाता है, तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी सिखाता है हमें पानी.
1: जी, नेक्स्ट मैं हर्षा जी से पूछना चाहूंगी कि आप यूथ के बारे में बोल रहे थे और ओवरथिंकिंग के बारे में बोल रहे थे, तो यूथ में जो एंजाइटी और कंपैरिजन जो आजकल है देखने को मिल रहा है, तो ये इजीनेस को कैसे प्रभावित करता है? और जो ओवरथिंकिंग के बारे में आप कह रहे थे, तो ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं आपको लगता है?
2: हाँ बिल्कुल, ओवरथिंकिंग तो बहुत बड़ा शत्रु है, क्योंकि इससे हमारी क्लैरिटी खत्म होने लगती है, हमारा फोकस चला जाता है, और साथ में हम मैग्नीट्यूड को बढ़ा देते हैं चीजों की.
1: जी
2: अगर परिस्थिति 10% है, सोच सोच करके हम उस 10% परिस्थिति को हम 80% 90% तक ले जाते हैं, जिसको कहते हैं राई का पहाड़ बना दिया.
1: जी
2: तो परिस्थिति बहुत छोटी है, लेकिन अपने पर्सपेक्टिव व्यू से देखा जाए तो वो बहुत हमको बड़ी लग जाती है, क्योंकि हमने उसको सोच सोच के कर दिया है. तो इसके कारण ओवरथिंकिंग बहुत हानिकारक है.
1: जी ओके, तो मनीषा जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इच्छाओं के बाद जो हम करते हैं तो एक्सपेक्टेशंस जो है उसके अधिकतर जीवन को असहज बनाती है, कैसे कुछ एग्जाम्पल्स?
0: जैसे कि इच्छाओं की अधिकता जीवन को असहज बना देती, तो कई बार क्या होता है हमारी जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं तो जरूरी भी है क्योंकि कहा भी जाता है इच्छा आवश्यकता की जननी है, वो होनी चाहिए, मगर जब जो इच्छा जो लेवल है वो उससे ऊपर चली जाती है तो फिर वो बैलेंस जो है हमारे जीवन में, जो संतुलित जीवन है उसको वो मेंटेन नहीं कर पाती। तो जब इच्छाओं की अधिकता होती है तो शुरू होता है चाहिए चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। और अगर चाहिए तो ठीक है, ओके, ये थोड़ा कहें कि ह्यूमन नेचर है, चाहिए, ओके। बट अगर नहीं मिला, जब वो जो चाहिए मुझे वो नहीं मिला, तब भी हमारा जो थॉट्स है वो बैलेंस में रहे, हमारा इफेक्ट ना करे हमारी लाइफ पे, वो इम्पोर्टेंट है। तो इच्छाओं की जो अधिकता है तो ये कि हम उसी के पीछे भागने लगते हैं, टू मच भागने लगते हैं, तो फिर हमारा जो जीवन है वो असहज हो जाता है। अब असहज क्यों होता है, इसमें सबसे पहले आता है तुलना आती है, इसी समय हम कंपेरिजन करते हैं, उसके पास है मेरे पास नहीं है, स्पर्धा करते हैं हम, कॉम्पिटिशन की भावना आ जाती है। फिर ये कहें कि एक साइकिल शुरू हो जाता है, जैसे वो 99 का साइकिल है कि एक कम रह गया, तो वो उसको एक को पूरा करने का वो चक्र शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से जो इच्छाओं की अधिकता है तो वो जीवन में हमारे असहजता लाती है, फिर भय होता है अंदर में, डर क्रिएट होता है, दूसरों को हम कंट्रोल में रखना चाहते हैं कि वो मेरे अकॉर्डिंग चले, सब मेरे अकॉर्डिंग हो, तो ये फिर रॉन्ग हो जाता है, फिर असहज हो जाता है।
1: जी, तो हर्षा जी, जैसे कंपैरिजन की बात मनीषा जी ने कही और आप भी कह रहे थे कि कंपैरिजन जो है वो बहुत डेंजरस है, लाइफ को इजी करने नहीं होता, तो इसमें शायद यूथ को, सबको ही एंजाइटी फील होती है, तो ये कैसे प्रभावित करते हैं अपने लाइफ को और अपनी सिंप्लिसिटी को?
2: कंपैरिजन जो है ये एंजाइटी पैदा करता है, और आजकल के जमाने में आई थिंक सोशल मीडिया ये ज्यादा कंपैरिजन में लेकर आ रहा है यूथ्स को, और जहाँ कंपैरिजन है वहाँ कंपटीशन होगी
1: जी,
2: और कंपटीशन शुरू हुई तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी होगी
1: जी,
2: तो इसलिए ये जो तीन सीज हैं वो बहुत थोड़े डेंजर वाले हैं
1: जी जी जी,
2: और इसके कारण मुझे लगता है कि उनका जो सेल्फ एस्टीम है वो लो हो रहा है, क्योंकि देखा, कंपेयर किया, ये मेरे से बेटर है, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, तो और अच्छा करने की कोशिश करते उसमें उनको एंजाइटी आ जाती है, लो सेल्फ एस्टीम हो जाता, और इसका जो नतीजा है वो जो इंटरनल ईज होना चाहिए कि एक सरलता अंदर में, जो संतुष्टता होनी चाहिए, लेटिंग गो की भावना होनी चाहिए, वो सब खत्म हो रही है इसके कारण, कंपैरिजन के कारण।
1: कंपैरिजन के कारण, तो जैसे माँ बाप कंपेयर करते हैं या कंपटीशन के लिए कहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे जाए, थोड़ा सा कंपटीशन कंपैरिजन के भाव देने से शायद उसको लगे वो कर सकते हैं तो मैं क्यों हूँ, है ना, तो इसको क्या कहना,
2: मतलब हेल्दी कंपटीशन हो,
1: हेल्दी कंपटीशन हो
2: तो वो अच्छा है, लेकिन मेरी रील से उसकी रील्स अच्छी है,
1: हाँ,
2: तो फिर वहाँ गड़बड़ हो जाती है,
1: वो उधर घूमने गए, अपने फोटोज शेयर किए, जी इस प्रकार से
2: कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए,
1: ओके,
2: और माँ बाप को उसमें मोटिवेशन देना चाहिए बच्चों को, ताकि बच्चे एंजाइटी में ना चले जाए, उनको प्रेशर ना दे माँ बाप,
1: ओके जी, ओके। तो जब इजी फील करने लगते हैं हम हर चीज, आपने कहा कि संतुष्ट रहना चाहिए, है ना, और सिंपल होना चाहिए लाइफ, तो बोरिंग या फिर हम वो तो नहीं कर देंगे, स्टॉप तो नहीं कर देंगे अपने आप को कहीं पे, हम आगे तो बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे?
2: नहीं, संतुष्टता बोरिंग नहीं है, संतुष्टता का मतलब ये नहीं है कि हमारी प्रगति रुक गई, बस हम इतने में ही सेटिस्फाइड, ऐसा नहीं है, लेकिन संतुष्टता कब है, जब रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट ओके, हमने एफर्ट्स लिए, हमने काम किया, फिर जो रिजल्ट आया उसमें ठीक है, या तो उसे एक्सेप्ट करें, सेटिस्फाइड रहें और लर्न कर लें कि आगे के लिए इसमें क्या हम बेटर कर सकते थे, उसको सीख करके फिर और आगे बढ़े, लोगों से भी अगर कंपटीशन हेल्दी है तो आप उनसे सीखेंगे, लर्न करेंगे और वो चीज अपने में अपना करके आप आगे बढ़ेंगे, तो सेटिस्फेक्शन आगे बढ़ना रोकती नहीं है और आगे बढ़ाती है, इसीलिए आध्यात्मिक भाषा में कहेंगे कि we don't need to prove, we have to improve.
1: Okay. प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इम्प्रूव करने की जरूरत।
2: आपको इम्प्रूव
1: जी, कुछ ऐड करना चाहेंगे?
0: बहुत अच्छे से हर्षा बहन ने बताया है कि हमको प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है खुद को, बस अपने आप को इम्प्रूव करना है। कई बार यही होता है ना कि हम प्रूव करने के चक्कर में कईयों को उंगली दिखाते हैं, तो एक उंगली तो उसकी ओर होती है मगर चार हमारी तरफ होती है। तो फिर यही है कि चार तो हमारी तरफ है तो हमको ही इम्प्रूव करना है, दूसरे के सामने प्रूव करने का तो कोई मतलब ही नहीं है।
1: जी जी बिल्कुल। तो देखिए कितने सुंदर तरीके से, कितने इजी तरीके से ये टॉपिक हमें समझ में अभी आ रहा है। आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो दोस्तों आप हमें कॉल कर सकते हैं 9414151415 पर, 9414151415 किस नंबर पर। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम जीवन रोशनी, यहाँ पर हम एक अल्पविराम ले लेते हैं और फिर मिलते हैं गाने के उस पार। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
3: अरे क्या बात है मैडम, आज तो आपकी चाल ही बदल गई है।
4: क्यों ना हो, त्रिशूल हवाई चप्पल जो पहन रखी है आप भी पहनिए त्रिशूल हवाई चप्पल और फर्क महसूस कीजिए।
3: त्रिशूल हवाई चप्पल मजबूत, आरामदायक और रंग बिरंगी डिजाइन में आपके नजदीकी स्टोर्स में उपलब्ध।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें
3: 9414152250
4: या लॉग ऑन करें www.trishulfootwear.in। त्रिशूल हवाई चप्पल, पैरों में मखमल।

0: पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम जीवन रोशनी और आज हमारे साथ आरजे मनीषा और आरजे हर्षा जी हैं। तो वो बात कर रहे हैं इजीनेस के बारे में। बहुत ही सहज तरीके से हम सुन रहे थे ब्रेक से पहले कि कैसे इजीनेस को अप्लाई कर सकते हैं हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। तो आइए आगे भी जानते हैं उनसे। आप दोनों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया
0: जी। तो अभी आपसे जानना चाहेंगे आरजे हर्षा जी कि अगर कोई व्यक्ति रोज स्ट्रेस में रहता है, मान लीजिए हम ऑफिस जाते हैं या कहीं पे इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं या घर पे भी काम कर रहे हैं, तो स्ट्रेस तो रहता ही है कि सुबह ये बनाना है या ये काम पेंडिंग है, तो वो सुबह की शुरुआत कैसे सिंपल करे, कैसे सहज करे?
2: मुझे लगता है कि सुबह उठते ही आँख खुलते ही फोन हाथ में ना आए
0: जी,
2: क्योंकि हम फोन को जैसे चार्ज करते हैं तो एक ये लक्ष्य बनाए कि खुद को चार्ज करना है
0: जी।
2: तो एटलीस्ट हम 10 मिनट्स 15 मिनट्स जब हम डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें, मन को थोड़ा रिलैक्स करने की प्रैक्टिस, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें, तो हम अपने आप को चार्ज कर लेते हैं, जो पूरा दिन फिर उसी फ्लुएंसी में हम रहते हैं
0: जी।
2: और मॉर्निंग में ही अपने टारगेट्स गोल्स सेट कर लें कि आज ये काम मुझे करने हैं और इस तरह से मुझे किस तरह से करना है। मेंटली आप अपनी एक बना लें, यूं कहें प्रोग्रामिंग कर लें
0: जी,
2: तो आप बाकी जो परिस्थितियां या जो भी काम है उसमें आप एंजाइटी में नहीं आएंगे, स्ट्रेस में नहीं आएंगे,
0: तो मन से बात
2: वैसे स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे।
0: तो मन से बात करनी है, प्रोग्रामिंग मतलब कि आज अगर कोई भी परिस्थिति आए तो मैं स्ट्रेस नहीं फील करूंगा,
2: मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, रिएक्ट नहीं करूंगा
0: जी। बिल्कुल। तो मनीषा जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या डेली अगर हम प्रकृति के साथ जुड़ेंगे 5-10 मिनट तो ये लाइफ को सहज कर सकता है?
1: जी, प्रकृति के साथ जब हम जुड़ते हैं तो हमारी लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है, क्योंकि जब हम प्रकृति में जाते हैं, प्रकृति के 5 तत्व जो देखे हम, आसमान, नदी, पेड़ पौधे, सब कुछ, पक्षी, फूल, पौधे, जो भी हम देखते हैं, तो उन सब से हमको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है एक तो, और दूसरा क्या है, उनकी क्वालिटीज़ हमें नज़र आती है। जैसे कि पहले बताया कि जो फूल होता है वो पूछकर खुशबू नहीं फैलाता है, उसका नेचर है। तो जब हम प्रकृति के बीच जाते हैं तो हम उनसे ये सीख सकते हैं, हम लर्न कर सकते हैं। और खासकर जब भी देखा जाए बहुत स्ट्रेस में होते हैं, आपका जब स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी जो ब्रीदिंग है थोड़ी फास्ट हो जाती है, लेकिन जब हम प्रकृति के बीच में जाते हैं तो ऑटोमेटिक वो रिलैक्स होने लगता है। खुली हवा हम लेते हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं, तो वो भी हमारे मन की जो गति है जो बहुत फास्ट हो गई वो स्लो डाउन करती है। फिर उसके बाद में जब ब्रीदिंग कंट्रोल होती है, फिर धीरे धीरे जो हमारे थॉट थे वो धीरे धीरे थोड़े क्लियर होने लगते हैं। फिर धीरे धीरे हमें अपनी जो प्राथमिकताएं हैं, जो हमें प्रायोरिटीज देना है जिन चीज़ों को, वो चीज़ें धीरे धीरे ध्यान में आती हैं और उनसे पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है, तो मन बहुत मीन्स कहीं रिलैक्स हो जाता है। तो एक स्ट्रेस जब भी है, स्ट्रेस जो है, तो भी हम यदि प्रकृति के बीच में जाते हैं तो भी एक बहुत अच्छा ये मैनेजमेंट है स्ट्रेस का, कह सकती हूँ, जिसमें शांति में जाकर यदि कोई पेड़ है तो उसके नीचे ही बैठ जाएं और गहरी सांस लें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, तो मन जो है वो थोड़ा शांत हो जाता है। तो ये बहुत सहज करने में मददगार है
0: जी। बिल्कुल। और हर्षा जी, जब हम कई बार डिसीजंस लेने पड़ते हैं लाइफ में, तो क्या उसको आसान बनाने के लिए प्रैक्टिकल टेक्निक्स आपके पास है, क्या बताएंगे?
2: बिल्कुल, प्रैक्टिकल टेक्निक्स तो आज बहुत हमें मिलती है। इसमें यूं कहें कि हम अपनी मेंटल फाइलिंग सिस्टम जो है वो एक बना दें सवेरे उठते ही, और उसमें चेक करें, जैसे फाइल्स होती है तो ऐसे हम अपनी फाइल्स को मेंटली चेक करें कि कौन सी फाइल इम्पोर्टेंट है। कुछ फाइलें अर्जेंट होती है, कुछ इम्पोर्टेंट होती है, कुछ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती लेकिन अर्जेंट होती है
0: जी,
2: कुछ इम्पोर्टेंट भी होती है, अर्जेंट भी होती है
0: जी।
2: तो वो हमें डिसाइड करना है कि पहला काम मेरा कौन सा है जो मुझे करना है, अर्जेंट भी हो, इम्पोर्टेंट भी हो। तो इस तरह जब मेंटल फाइलिंग सिस्टम हम कर लेते हैं तो हमें डिसीजन लेना बहुत ईजी हो जाता है, और उसके लिए फिर हमारे मन के विचारों को रिलैक्स होना बहुत जरूरी, क्योंकि मन तो विचार करता है लेकिन डिसाइड हमारा इंटेलेक्ट करता है। तो इंटेलेक्ट हमारा मतलब बुद्धि जो है जज है, मन तो वकील है। अब वकील बोलता ही रहेगा, बोलता ही रहेगा, तो जज अपना निर्णय कैसे सुनाएगा? डिसाइड कब करेंगे,
1: मन को शांत करें।
2: तो इसीलिए मन का रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, तो सही टाइम पर हम सही डिसीजन जो है वो हम ले सकते हैं। और उसके लिए जो मैं एक अफर्मेशन का प्रैक्टिस करती हूँ डेली जिनका, खासकर सवेरे, वो ये है कि आई एम एट अ राइट प्लेस डूइंग राइट वर्क टेकिंग राइट डिसीजन एट अ राइट टाइम। ये अफर्म रोज सवेरे अपने लिए करना, ये बहुत प्रैक्टिकली आपको मदद करता है और सही मायने में आप सही समय पर डिसीजन जो है वो ले सकते
0: हैं। ओके जी, तो ये अफर्मेशंस प्रैक्टिस करनी है, मन को शांत रखना है और फिर हाँ। हम सही तरीके से निर्णय ले सकते हैं अपने बुद्धि के द्वारा।
2: हाँ जी बिल्कुल,
0: तो मन को साफ रखना भी जरूरी है,
2: मन को शांत रखना भी जरूरी है, साफ रखना भी जरूरी है,
0: दोनों जरूरी है, तब हम इजीली डिसीजन ले सकते हैं जी। तो मनीषा जी से जानना चाहेंगे, क्या जो चीजें हम यूज करते हैं आसपास में है, तो मिनिमलिज्म अपनाना जरूरी है इजीनेस के लिए?
1: बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मिनिमलिज्म मीन्स यदि अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कम सामान रखना, जबकि इसका अर्थ हम ऐसे ले सकते हैं कि जितना है उतना पर्याप्त है, मीन्स एक संतुष्टता का एक गुण है इसके अंदर में। और आज देखा जाए तो हमारी जो लाइफ है, हमारे जीवन में भी देखा जाए तो बहुत सारे कहें कि चाहिए चाहिए, इच्छाएं इच्छाएं की वजह से साधन संसाधन बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं। यहाँ पर मुझे गांधी जी का याद आ रहा है, उनका कोट था बहुत फेमस है कि सादा जीवन उच्च विचार। तो जीवन सादगी से भरा हो लेकिन जो विचार है वो अच्छे इम्पोर्टेंट हो, और मीन्स अंदर की सादगी जो है वो बाहर हमारी क्लैरिटी लाती है, हमारे में सहजता लाती है। तो इसलिए सामान पे तो डिपेंड नहीं होता भले, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए कि संग्रह वृत्ति भी नहीं होनी चाहिए, जैसे जैन धर्म में भी कहा गया, महावीर जी ने भी कहा है कि अपरिग्रह यानी कि संग्रह नहीं करना। तो उसी प्रकार हमें ज्यादा चीजों को जमा नहीं करना है, क्योंकि एक ज्यादा जितनी ज्यादा चीजें होती है उतना जो हमारा एनर्जी का लेवल है वो लो होता है। तो जितनी आवश्यक है उतना रखना है लेकिन सहज रहना। और कई बार क्या होता है कि इसको भी हम एक जबरदस्ती नियम जैसा बना लेते हैं तो ये भी फिर कई बार ही स्ट्रेस का कारण बन जाता है। तो ये रहे लेकिन पॉजिटिव वे में रहे।
0: जी बिल्कुल, तो मिनिमलिज्म अपनाते हैं तो जैसे मनीषा जी ने कहा कि हम अपरिग्रह, महावीर स्वामी जी ने ये बात कही थी, मतलब ग्रीड नहीं बट नीड जितनी।
1: हाँ जी करेक्ट,
0: रखें आप अपने पास। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे हर्षा जी इसमें?
2: हाँ, इसमें अगर कुछ हम, चलो चीजें हमें, इसमें भी कंपैरिजन कई बार आता है, उसके पास है तो मेरे पास भी होनी चाहिए या इससे बेटर मेरे पास होनी चाहिए।
0: कोई चीजें हमें मतलब अट्रैक्ट करती है, अच्छे लगने लगते हैं तो हम
2: तभी हम
1: खरीद लेते हैं,
2: खरीद लेते हैं।
1: और सबसे ज्यादा जो है इसका तो ऑनलाइन शॉपिंग है, सभी जान ही रहे हैं। अननेसेसरी हम चीजें देखते हैं, ये अच्छी है भले जरूरत हो ना हो, हम परचेस कर लेते हैं भले वो पड़े रहे लेकिन अच्छी लगी, तो ये सभी थोड़ी सी हमारे जीवन को असहज करने में यूज कर देता है ये।
0: जी बिल्कुल जी, तो 5 मिनट मेंटल रिसेट एक्सरसाइज अगर आपके पास है तो आप हमारे श्रोताओं से शेयर करें।
2: श्योर, इसमें सुबह उठते ही 3 बार डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करें और एक ग्रेटिट्यूड की भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं।
0: ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज है?
2: हाँ, मेंटल एक्सरसाइज कह सकते हैं कि रोज उठते ही ग्रेटिट्यूड फील करें, इससे आपको बहुत एनर्जी फील होगी।
0: ओके जी,
2: और ये एक मैजिक का काम करता है ग्रेटिट्यूड
0: जी।
2: इसकी जो प्रैक्टिस है वो आप खुद करके देखेंगे, भले एक दो दिन आपको लगे कुछ नहीं हो रहा है लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस और उस फीलिंग के साथ जब करते हैं तो जरूर आप जो चाहें आप वो हासिल कर सकते हैं, अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। और साथ में फोकस्ड रहें, मैं कहूंगी सिंगल फोकस।
0: सिंगल फोकस मतलब?
2: मना आपके लिए जो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे मुझे इस डिग्री को लेना है जो यूथ्स के लिए कहे कि मुझे ये बनना है, उनका जो सपना है, तो फिर डाइवर्जन ना हो कि ये भी करूं, एक में ही फोकस रहे। और उसी को अगर आपकी कोई ऐसी हॉबी है जैसे आप सिंगर बनना चाहते हैं, म्यूजिशियन या पेंटर बनना चाहते हैं, तो उसी को आप अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं
0: जी।
2: अपने हैबिट्स को, हैबिट्स तो नहीं लेकिन हॉबीज को
0: जी
2: प्रोफेशन में बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए फोकस्ड जरूर।
0: सिंगल फोकस्ड एक नया शब्द है जो जरूर से याद रखेंगे, क्योंकि हम आजकल सोचते हैं कि मल्टीपल चीजें एक साथ कर लें।
2: हाँ,
0: मल्टीटास्किंग समझ लेते हैं इसको,
2: लेकिन
0: एक बार में एक ही चीज के ऊपर हम फोकस रहे। ये बात कही जी। तो मनीषा जी आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल घर के अंदर बहुत सारे केओस जैसा माहौल होता है, बच्चों को कुछ और चाहिए, पेरेंट्स को कुछ और चाहिए, अगर सास ससुर है तो उनको कुछ और चाहिए, और सभी के ओपिनियन भी अलग अलग है और लाइफ को देखने की नजरिया भी अलग अलग है। तो घर पे घर में रहते हुए घर के माहौल को कैसे सिंपल और पीसफुल बनाया जा सकता
1: है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन भी है, क्योंकि घर का माहौल बदलना है तो कहें कि एक एक पर्सन की, एक एक व्यक्ति की जिम्मेवारी होती है। जैसे कि एक जो घर होता है वो ईंट से तो बना होता ही है, लेकिन कितनी सारी ईंटें होती है, सब जब जुड़ते हैं तो जब सब साथ में होते हैं तो फिर वो एक घर कहीं मजबूती आती है उसमें। तो घर के माहौल को यदि सिंपल और पीसफुल बनाना है तो इसमें सभी जो मेंबर्स हैं हम घर के कहेंगे तो वो सभी इन्वॉल्व होने चाहिए उसमें। तो इसमें हम कुछ रूटीन्स कर सकते हैं, जैसे कि कुछ दिनचर्या हम ऐसी करें, जैसे बच्चे हैं तो बच्चों को भी उस अच्छी शांत दिनचर्या में शामिल किया जाए। घर में जैसे गांधी जी ने भी कहा सादा जीवन उच्च विचार, तो सिंपली सिटी रहे घर में भी, अनावश्यक चीजें ना हो, तो उसे कह के बच्चों को भी कुछ लेसन मिलेगा, सीखने को मिलेगा, वाइब्रेशंस अच्छे होंगे। और सिंपल और पीसफुल बनाने के लिए बहुत अच्छा है कि मेडिटेशन भी किया जाए, है ना। जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम ध्यान करते हैं, तो एक शांति का वाइब्रेशन क्रिएट होता है, तो ऑटोमेटिक वो शांतिमय वातावरण क्रिएट होता है, अच्छे वाइब्रेशंस आते हैं, और जितना अच्छा मीन्स हमारी सादगी पूर्ण जीवन रहेगा, अंदर भी सादगी है तो वो बाहर भी सादगी को वो रिफ्लेक्ट करेगा। मन हमारा यदि शांत है तो घर में ऑटोमेटिक व्यवहार में कहें परिवार में शांति इजीली आ सकती है। तो घर के माहौल को सिंपल और पीसफुल बनाना है तो कहूंगी कि प्रकृति के बीच में भी जाएं, जो भी सारे हमारे मेंबर्स हैं सब थोड़ा टाइम निकाले, प्रॉपर एक रूटीन रहे जिसमें एक दूसरे के साथ में एंजॉय करें, यहाँ पर मैं की भावना को छोड़ के एक हम की भावना को क्रिएट करें, तो सिंपल और पीसफुल हमारा जो वातावरण है घर का वो बन सकता है
0: जी। अर्षा जी आपसे जानना चाहूंगी इसी में ही कि महिलाओं को खास करके क्या ध्यान में रखना चाहिए जब घर में वो कार्यरत है पीसफुल और उसको सहज बनाने के लिए।
2: मुझे लगता है कि महिलाओं में इमोशनल बहुत वो होता है, तुरंत इमोशनल ये हो जाते हैं कि जब कुछ भी होता है तो
0: जी,
2: तो इसलिए वैसे उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि वो सब शेयर कर लेती है, हल्के हो जाते हैं किसी को सुना करके, लेकिन उनको भी डेली मेडिटेशन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है
0: अपने घर के माहौल
2: को, क्योंकि महिलाएं भोजन बनाती हैं तो वो किस भावना से भोजन बनाती है, अगर ये भावना रखे कि ये प्रभु प्रसाद है और वो मुझे सबको खिलाना है, तो कितनी मन की जो वाइब्रेशंस हैं वो उस भोजन में जाएंगे, और जब सब वो खाएंगे शांति से बनाए, अच्छे गाने सुन करके बना सकते हैं, अच्छे आजकल तो पॉडकास्ट और बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें आती है सोशल मीडिया में, वो सुनते हुए बनाए तो भी घर का वाइब्रेशन बहुत ही अच्छा रह सकता है।
0: ओके, मतलब अगर किसी का फोन आ गया तो बातें करते करते खाना ना बनाए,
2: व्यर्थ बातों
1: में। कई बार होता है ना टीवी चालू है सीरियल देखते हुए, कई बार आता है मैंने भोजन बनाते हैं,
2: आधा ध्यान देखते हुए,
1: आधा उधर मींस चल रहा है लाउड में और इधर काम चल रहा है उधर, उस तरीके से ना हो,
0: क्योंकि अपने फेवरेट सीरियल आए तो देखने को मन करेगा।
2: बिल्कुल,
1: लेकिन खासकर भोजन बनाते समय थोड़ा
2: खाते और बनाते वक्त ना वो सब चीजें देखे, उसको अवॉइड करे, उससे मिक्स होता है और उससे भी सीखते हैं उन सीरियल से और बच्चे भी सीखते हैं।
0: बच्चे भी सीखते हैं, इसलिए आप अपने घर के माहौल को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं, सिंपल रहने देना चाहते हैं, तो इस टेक्निक्स को यूज आप कर सकते हैं जी। हर्षित जी, जैसे आप कह रहे थे कि हमें 3-4 बार डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, तो जो मेडिटेशन या ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में बता रहे थे, अभी भी आप मेडिटेशन के बारे में बता रहे हैं, तो ये कैसे सिंप्लिसिटी ला सकता है लाइफ में, कुछ एग्जांपल्स आप शेयर कर सकते हैं सर?
2: इसमें सुबह तो करना ही है, रात को सोते वक्त भी करना ही है
0: जी,
2: लेकिन जब हम कार्य व्यवहार में हैं, आप ऑफिस में हैं या कहीं भी हैं, तो बीच बीच में माइक ब्रेक्स जब लेते हैं तभी भी ये काम में आता है, लाइफ को सिंपल करता है।
0: ओके जी,
2: बहुत फायदा होता है इससे, क्योंकि मन बहुत ईज रहता है और हमको एक बहुत अच्छा सीख मिलती है कि चलो चीजों को लेट गो करें तो भी हम अपने आप को सरल बना सकते हैं कि ओके फाइन, जो हुआ लेट गो, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, वी हैव टू मूव ऑन
0: जी। मनीषा जी कुछ ऐड करना चाहेंगे?
1: ये मेडिटेशन कहें या ब्रीदिंग टेक्निक है, सिंप्लिसिटी तो लाती है क्योंकि हमारे जो विचार हैं उस समय हमारे शांत होते हैं, एकरस होते हैं थोड़ा। और खासकर टेक्निक ब्रीदिंग की बताना चाहूँगी, एक बॉक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है जिसमें हमें डीप इनहेल करना है, 4 सेकेंड्स हमको होल्ड करना है उसे, अंदर सांस लेते हुए 4 सेकेंड, फिर अंदर हम होल्ड करेंगे 4 सेकेंड, फिर 4 सेकेंड में हम उसको छोड़ेंगे 1 2 3 4 करके, और छोड़ने के बाद में भी फिर से 4 सेकेंड हमको होल्ड करना है। तो इस तरीके से 4 का ये बॉक्स, एक कहें कि 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसा एक बॉक्स बनता है। तो एक बॉक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसे हम करें, और खासकर तब जब बहुत टेंशन में हो या कोई स्ट्रेस हो, कोई भय हो या कुछ ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जब इस तरीके की प्रॉब्लम हो तो कुछ सेकेंड रुक करके जब हम अपनी सांसों पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं तो बहुत अच्छा पॉज लग जाता है उस चीज पे जो थॉट चल रहा है उस पे, प्रोसेस पे, तो ये कर सकते हैं हम
0: जी। हर्षा जी, जब ब्लड प्रेशर के बीच में इमोशनली स्टेबल हम कैसे रहे?
2: हाँ, वही माइक्रो ब्रेक्स जरूरी है, पॉज जरूरी है, बीच बीच में आप स्ट्रेच कर सकते हैं अपने बॉडी को, वो भी रिलैक्स देता है। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस ना करें उसमें, जैसे जैसे ऑफिस का जो भी स्ट्रेस है वो घर ना ले जाए, घर का स्ट्रेस ऑफिस में ना ले जाए, उसको वहीं छोड़कर आए
0: जी।
2: एक व्यक्ति था, वो जब ऑफिस से घर आता था तो उसके बाहर एक उसने रखा पेड़ था, अपने सारे जो ऑफिस के स्ट्रेस है वो उस पर लिख के उस पेड़ पर चिपका देता था
0: जी।
2: उसको दे देता था, फिर घर में एंटर होता था।
0: Okay.
2: तो ये एक ये प्रैक्टिकल किया है उस व्यक्ति ने, तो इसीलिए घर का जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि कई बार हम बॉस को तो सामने गुस्सा कर नहीं सकते, वहां तो हमको पी जाना है, तो वो जो अंदर भरा है प्रेशर वो फिर घर के लोगों के आगे निकलता है
0: जी,
2: है ना, जैसे प्रेशर कुकर फटता है। तो इसीलिए वहां ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मुझे नहीं करना
0: जी।
2: ये थोड़ा हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है
0: जी।
2: तभी हम अपने वर्क प्लेस पे और घर पे जो कार्य कर रहे हैं उसमें फोकस्ड रह सकते हैं।
0: ओके जी, यहाँ पर एक क्विक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के तुरंत बाद वापस आएंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत। जीवन रोशनी यहाँ है।
3: महिलाओं के लिए एक नई उम्मीद, अब एनीमिया के उपचार के लिए FCM का एक ही इंजेक्शन लगवाएं और निश्चिंत हो जाएं। गर्भावस्था के दौरान दूसरी और तीसरी तिमाही में खून की कमी से होने वाले दुष्परिणामों जैसे थकान, कमजोरी, भूख में कमी और अन्य जटिलताओं तथा कम वजन वाले नवजात शिशुओं की समस्या से निपटने के लिए अब FCM इंजेक्शन की एक ही खुराक काफी है।
4: FCM यानी फेरस कार्बोक्सी माल्टोस खून की कमी को दूर करने का एक सुरक्षित और प्रभावी तरीका है, तो बिना देर किए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर आज ही FCM का इंजेक्शन लगवाएं और स्वस्थ रहे।
3: हर रोग का मिटे नामो निशान, ये है संकल्प, स्वस्थ रहे राजस्थान। NHMIEC राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम जीवन रोशनी और आज हम बात कर रहे हैं इजीनेस के बारे में। तो मैं बिना देर के फिर से लौटती हूँ हमारे एक्सपर्ट्स के पास और आइए जानते हैं कि हमारे लाइफ को और इजी बनाने के लिए, रिलेशनशिप्स को और बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हर्षा जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स जो है उसको सिंपल तरीके से रिजॉल्व कैसे करें।
2: सबसे पहले तो हमें सबका सुनना जरूरी है
0: जी।
2: हम ही सुनाते रहेंगे ऐसा नहीं है, उनकी भी सुने
0: जी।
2: और इसमें रिलेशनशिप्स में 3 L's है, लिसन, लुक और लर्न।
0: ओके,
2: लुक, लिसन और लर्न
0: जी।
2: तो हमें सबसे सीखना भी है, उनसे सुनना भी है और देखना भी है कि देखना माना वो क्या चाहते हैं, उनकी इच्छाएं क्या है। सिर्फ हम अपना ही एक्सपेक्टेशन रखें, एक्सपेक्टेशन रखना माना कि हम जो वो नहीं है वो हम सोच रहे हैं कि ये मेरी तरीके से ही चले, तो ये ना हो, इससे भी कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा तरीके से कम हो सके और आपका जो घर है वो स्वर्ग बन सकता है। टॉक्सिक एनवायरनमेंट जो है वो एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट जो है वो बन सकता है। और हम ये भी सोच सकते हैं कि जैसे ऑर्केस्ट्रा में कोई फ्लूट पे है, कोई तबले पे है, कोई पियानो पे है, लेकिन सब एक ही सुर लय में बजाएं तो एक अच्छा म्यूजिक क्रिएट हो सकता है। सब अपना ही बजाएंगे
0: जी
2: तो एक मेस क्रिएट होगा जो कोई भी सुनना पसंद नहीं करेगा। तो इसीलिए ये सोचे कि हर एक का अपना म्यूजिक है,
1: जी,
2: हर एक अपने उस पर है, संस्कार अपने हैं, तो हमें उनसे मिला करके चलना है। तो घर का जो वातावरण है वो बहुत, रिलेशनशिप्स जो है वो बहुत हमारी अच्छी हो सकती है।
0: जी, तो मनीषा जी से जानना चाहूंगी कि रिलेशनशिप में फॉरगिवनेस का क्या महत्व है।
1: देखा जाए तो रिलेशनशिप में फॉरगिवनेस बहुत बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्षमा मीन्स माफ़ करना, ये किसी भी संबंध को बहुत गहरा बनाता है। जैसे कि अगर बाई चांस समझ लीजिए हस्बैंड वाइफ हैं, माता पिता के बीच, बच्चों के बीच में कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो यदि माता पिता उस बच्चे को क्षमा कर देते हैं तो वो उससे कतराएगा नहीं अपने मम्मी पापा से कुछ भी शेयर करने को। तो एक तरीके से देखा जाए तो रिलेशनशिप में बहुत ही उसका इम्पोर्टेंस है। और जो फॉरगिवनेस है, जो हम क्षमा करते हैं, तो वो क्षमा हम दूसरों को नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम अपने आप को ही कर रहे हैं, अपने आप को ही आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि यदि हम किसी के लिए हम नेगेटिव रख रहे हैं, हम उसे माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमने खुद को ही एक जेल में बंद कर लिया। लेकिन जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो वो समझ लीजिए कि हम उसको तो किया वो तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमने अपने को आज़ाद किया, हम आसमान के खुले पंछी बने ना कि पिंजरे के पंछी। तो लाइट जीवन को हल्का बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए क्षमा बहुत इम्पोर्टेंट है। और महावीर स्वामी ने भी कहा है क्षमा वीरस्य भूषणम्, यानी कि क्षमा जो है वो वीरों का गहना है। जो इगोइस्टिक होगा वो क्षमा नहीं कर पाएगा, तो लेकिन जो जितना नम्र होगा वो क्षमा करेगा। और फॉरगिवनेस से तो क्या होता है, हम एक्सेप्ट कर पाते हैं इजीली दूसरों को, जो जो है वैसे उसी तरीके से, हम उनको चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे। हमने उनको भले एक बार बता दिया कि भाई, और कई बार होता है ना कि क्षमा का भी मतलब ये नहीं होता कि बार बार माफ़ी करते जा रहे उसमें, लेकिन एक तरीके से एक गुण बन जाता है ये कि हमें यहाँ पे हर बार सहना ही नहीं है, लेकिन एक एबिलिटी हमारे अंदर डेवलप होती है, एक शीलता मीन्स सहनशीलता डेवलप होती है हमारे अंदर में। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हम ही माफ़ कर रहे हैं, वो तो सुधर नहीं रहा है, वो बार बार वही गलती दोहरा रहे हैं। लेकिन यदि देखा जाए तो वहाँ पर हम सहन नहीं कर रहे होते, हम दमन कर रहे होते हैं, सप्रेस कर रहे होते हैं। लेकिन यदि हम उसको फॉरगिव करके हम आगे बढ़ते हैं तो हम सहनशीलता, ये एक वैल्यू अपने जीवन में हम धारण करते हैं। तो क्षमाशीलता, सहनशीलता जैसे कि एक वैल्यू होता है, वो अपने साथ पूरी चेन लेकर आता है और वैल्यूज की। तो एक क्षमा इतना इम्पोर्टेंट मीन्स कहें कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वैल्यू है, इसके पीछे समझ लीजिए पूरे गुणों की जो है वो लाइन लगी होती है। तो और ये अभ्यास तो हमें डेली ही करना चाहिए, सोने से पहले क्षमा मांगना, जिसको भी हमने जाने अनजाने यदि हमने किसी को दुख दिया है, तकलीफ दी है, चाहे अपने विचारों से भी किसी के लिए अगर गलत सोचा है तो भी एक तरीके से हम इनडायरेक्टली उसको तकलीफ दे रहे हैं, हम उसको दुख पहुंचा रहे हैं। तो उस गलती के लिए भी हमें अपने को माफ़ करना चाहिए और दूसरे को भी माफ़ करना चाहिए, क्योंकि क्षमा जो है खुद के लिए, दूसरे के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम बहुत गिल्ट कॉन्शियस में रह जाते हैं, वहां पर हम स्वयं को माफ ही नहीं कर पाते। दूसरों को तो माफ करने की सोचते हैं लेकिन अपने लिए हम फिर बहुत रिजिड हो जाते हैं, नहीं मुझसे ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, मैंने ऐसे कैसे कर दिया, ये गलती मेरे से कैसे हो गई। तो यहाँ पर हम खुद के लिए भी बहुत रिजिड हो जाते हैं, तो वहां पर खुद के लिए भी थोड़ी करुणा रहे, क्षमा रहे कि भाई गलती हो गई तो हो गई, लेट गो करें, खुद को क्षमा करें। और ये ध्यान रखें कि नेक्स्ट टाइम फिर ये गलती दोबारा ना हो, ये हम लेसन लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जब खुद को भी क्षमा करते हैं तो भी हम हल्के होते हैं, जब दूसरों को भी क्षमा करते हैं तो भी हम हल्के होते हैं। तो जो फॉरगिवनेस है वो जीवन को इस तरीके से बहुत हल्का बना देता है।
0: जी, क्या बात है। तो क्षमा करना खुद को बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी चीज़ के लिए आपने अपने आप को अभी तक क्षमा नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, ताकि आपकी लाइफ जो है आगे ईजी हो सके। तो हर्षा जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि रिलेशनशिप्स में एक्सपेक्टेशंस की भी आपने पहले बात कही है, तो उसको कम करने के क्या प्रैक्टिकल टिप्स आप देना चाहेंगे?
2: उसके लिए खुद की बाउंड्रीज को हमें सेट करना पड़ेगा।
0: ओके,
2: कि मुझे पहले अपने आप को ही देखना है। उनसे एक्सपेक्ट करके हम अपने आप को यूं कहें कि एक बेचैनी सी फील होती है अंदर से, क्योंकि उसने, मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा उसने किया नहीं, और इनडायरेक्टली हम अपना कंट्रोल उस पर डाल रहे हैं। तो इसीलिए, और फिर जैसा करेंगे वैसा ही रिटर्न एक्शन का रिएक्शन तो होगा, हमसे भी कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, वो भी हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो हम उनका फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो इससे फिर रिलेशनशिप्स में कन्फ्लिक्ट्स या टॉक्सिक वातावरण बनना शुरू हो जाता है।
0: जी,
2: तो इसीलिए जितना हो सके भले आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ठीक है, या तो आप उनको ठीक से बता दो भाई मेरी आपसे ये एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उनको क्लियर हो जाए कि जैसे माँ बाप को बच्चों में एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो उन्हें बताएं, फ्री रहें, बच्चे अपनी बातें उनको बताएं, एक अच्छा हेल्दी वातावरण रहे तो घर का जो माहौल है वो भी अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप्स भी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी।
0: जी, तो कई बार हम सोचते हैं कि हमारे माँ बाप है, हमारे लव्ड वंस है, हाँ, वो ना बिन कहे हमें समझ जाए।
2: हाँ, कई बार ऐसा होता है, लेकिन आपको क्लियर रहना है,
0: क्लियर,
2: क्लैरिटी बहुत जरूरी है इसमें।
0: तो जैसे हम बात कर रहे थे परिवार के बारे में, अभी बात ही चल रही है, तो ईगो कम करके हारमोनी को लाना कितना जरूरी है और कैसे ला सकते?
1: वैसे देखा जाए तो परिवार में ईगो कम करना यानी कि खुद को छोटा करना नहीं है बल्कि रिश्ते को बड़ा करना है। मीन्स आप अपने ईगो से ज्यादा आप उस रिश्ते को, आप रिलेशन को आप अहमियत दे रहे हैं, तो परिवार में ईगो तो होना ही नहीं चाहिए कहना चाहूंगी मैं। और यहाँ पर हारमोनी, जैसे कि ये शब्द है तो इसमें ही हमारी आदरणीय जो जानकी दादी थी वो समझाते थे, हारमोनी में ही दो शब्द है, हार मानी। तो जब हम परिवार में कोई एक हार मान ले तो बातें बढ़ेगी नहीं, तो बहुत सामंजस्य कहें परिवार में बना रहता है। तो परिवार में तो सबसे पहले ईगो मीन्स को गो कर देना चाहिए और हारमोनी को अपनाना चाहिए। मीन्स छोटी भले छोटी मोटी बातें हैं, होती रहती हैं, बट कभी आप झुक जाएं, कभी सामने वाला झुक जाए, तो इस तरीके से कहें कि ये दो चक्के जो होते हैं पहिए, तो वो दोनों बैलेंस के साथ में चलते हैं। तो इस तरीके से हमें एक दूसरे को समझ करके आगे बढ़ना चाहिए, और इसमें कोई सामने झुक जाना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी के सामने झुक जाना ऐसा नहीं है कि आप एकदम ही नीचे हो गए या आपने बिल्कुल गिर गए, इस तरीके से फीलिंग नहीं होती है। ये आप झुक गए तो समझ लीजिए आप और ऊंचे उड़ गए, तो वहां पर झुकना नहीं होता है, वो सीखना होता है और आगे बढ़ना होता है। तो इस तरीके से परिवार में यदि हम ईगो कम करते हैं और ईगो की जगह हम कहें कि सेल्फ रिस्पेक्ट हम डेवलप करें खुद के लिए भी और परिवार में भी सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करें, तो भी हारमोनी आ जाती है। दूसरों को भी हम रिस्पेक्ट दें, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सबको क्या चाहिए, प्यार चाहिए और रिस्पेक्ट चाहिए। जब ये नहीं दे पाते हैं तभी हमारा जो ईगो है वो जागता है। और क्या होता है, ईगो का कारण ये भी होता है कि हम रिस्पेक्ट चाहते हैं, देते नहीं है, चाहते हैं कि वो मुझे रिस्पेक्ट दे, और अगर बाय चांस वो नहीं मिल पा रहा है तो वहां पर ईगो हर्ट हो जाता है। तो वहां पर हमें भले रिस्पेक्ट दे ना दे, वहां पर तो हमको लाइट रहना ही चाहिए, क्यों, एक्सपेक्टेशन तो हमें करनी नहीं है, परिवार में तो चलता है। तो इस तरीके से यदि हम ईगो कम करें, झुके, नम्र बने, तो बहुत इजीली हम हारमोनी ला सकते हैं, परिवार में सामंजस्य बना के रख सकते हैं।
0: जी, तो इसका मतलब जिंदगी को सहज करने के लिए हमें बहुत सारे मूल्यों को अपनाना है।
1: जी,
0: वैल्यूज की चेंज के बारे में बात कर रहे हैं,
1: और एक वैल्यू अपनाएंगे तो सभी उसके फ्रेंड हैं, सभी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, बिना बुलाए आ जाएंगे।
0: जी, तो दोस्तों जरूर कोशिश करें, आप कोशिश कर भी रहे होंगे, आपके अंदर भी बहुत सारी अच्छाइयां हैं जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई भी परिस्थिति आपके सामने अगर आ जाए अचानक, तो आप कैसे उसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे आप उस परिस्थिति को सामना करते हैं। तो हर्षा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बाहर बहुत सारे टॉक्सिक माहौल है, कई बार हम मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारी चीजें देखते हैं, और वैसे भी हमारे लाइफ में कुछ चीजें चल रही होती है उससे भी हमें लगता है कि बहुत टॉक्सिक है लाइफ, तो खुद को इंटरनली कैसे इजी रखें, चले बाहर तो माहौल है ही,
2: उसके लिए ही हमें बाउंड्रीज को सेट करना जरूरी है, वरना क्या देखना है क्या नहीं देखना है। और कुछ समय के बाद जो जो चीजें आपने पहले देखी हैं उसको हिस्ट्री पूरी वाइप आउट कर दें और एक फ्रेश स्टार्ट करें।
0: जी,
2: तो आपको फिर नई चॉइसेस मिलेगी कि अब ये सारी बातें जो है वो मुझे सीखनी है, कि हफ्ता है या 10 दिन के बाद मुझे दूसरी नई चीजें देखनी है या सीखनी है।
0: जी,
2: सीखने की भावना से देखेंगे तो आप व्यर्थ में या टॉक्सिक में नहीं जाएंगे, तो इससे आप अपने बाउंड्रीज के अंदर ही रहेंगे और आप सेफ रहेंगे और फोकस्ड रहेंगे।
0: जी, इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि नो कहना सीखना इजी नहीं होता है, तो नो कहना सीखना इजीनेस से कैसे जुड़ा है?
2: बिल्कुल, नो कहना थोड़े कई बार बहुत मुश्किल होता है, खासकर अपने बॉस को या बड़ों को।
0: जी,
2: लेकिन नो कहना जरूरी भी है और ये अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो भले आप एकदम से नो ना कहें, नहीं कह पा रहे तो
0: जी,
2: लेकिन तरीके से कहें,
0: लेकिन अपनी बात
2: अपनी बात तरीके से समय देख करके, वातावरण देख करके फिर आप अपनी बात रखें, तो फिर आगे देखें कि अब बड़े क्या डिसीजन आपके लिए ले रहे हैं, लेकिन बताएं अवश्य, वरना नहीं बोलना, बोलने की जो ताकत अगर नहीं रहेगी तो अंदर ही अंदर आप फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे। तो इसीलिए जरूरी है नो कहना, भले उसके लिए थोड़ा आपको टाइम भी चाहिए, तो आप टाइम लें अपने लिए, निकालें, दे अपने आप को टाइम, ताकत भरें, मोटिवेट करें, लेकिन बात को तरीके से रखें जरूर।
0: जी, कोई बात मनवाना होता है तो हम बहुत तरीके ट्राई करते हैं उसको मनवाने के लिए, लेकिन नो कहने के टाइम में थोड़ा बहुत, जैसे आपने कहा कि समय दे,
2: पॉज
0: लेना।

0: निशा जी, अभी तो समय हो चुका है, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूंगी। जैसे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अफर्मेशन से आजकल मैनिफेस्टेशन कहते हैं, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो कहते हैं, अब दोनों से जानना चाहेंगे कि क्या ये प्रैक्टिकल में काम करता है?
1: ये कहें ग्रेटिट्यूड मीन्स उसका मीन्स थैंकफुल फील करना कि जो आपके पास है, ना कि उसके लिए फील करना कि जो मेरे पास नहीं है। जैसे कि ग्लास है, आधा भरा है आधा खाली है, जो देखेगा वो कहेगा आधा खाली है, और एक व्यक्ति जो है वो कहेगा आधा भरा है। तो यहाँ पर यही बात है कि हमारे पास क्या है वो हम देखने की बजाय क्या नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वहाँ पर दिक्कत होती है। लेकिन ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में जो हमारे पास है हम उसको देखते हैं, हम उसकी वैल्यू करते हैं, और उसके लिए हम धन्यवाद कहें, आभार हम फील करते हैं खुद के लिए, भगवान के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए ना। तो ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस जितना करते हैं तो हमारा जो माइंड है वो ओपन होता जाता है, और थैंक कहने से कहें कि और मीन्स उसमें वृद्धि होती जाती है, प्रचुरता बढ़ती जाती है कह सकते हैं।
2: और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से हमारी एनर्जी भी और बढ़ती है और एनर्जी शिफ्ट होती है हमारी, तो इसलिए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना तो बहुत बहुत ही जरूरी है मुझे लगता है।
0: जी बिल्कुल। तो दोस्तों, ये हफ्ते आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें और हमें अपना जो फीडबैक है 94-14-15-14-15 पर आप बता सकते हैं, कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके। तो अभी जाने से पहले कुछ रैपिड फायर राउंड है, ये आप दोनों से जानना चाहेंगे। तो मनीषा जी, इजीनेस एक शब्द में?
1: सरलता। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, बच्चे।
0: एंड हर्षा जी, इजीनेस?
2: लेट गो।
0: लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाने वाली एक आदत?
1: ओवरथिंकिंग।
2: सेम ओवरथिंकिंग।
0: सिंपल लिविंग का सबसे बड़ा लाभ?
1: क्लैरिटी आती है थॉट में।
0: क्लैरिटी आती है, आप क्या कहना चाहते हैं?
2: ईज फील होता है,
0: इनर ईज। लाइटनेस के लिए एक होमवर्क?
1: एक 1-1-1 का होमवर्क देना चाहूंगी। 1 मिनट पॉज एवरी आवर, 1 मिनट साइलेंस में फील करेंगे, और किसी एक को थैंक करना, धन्यवाद, पॉज या साइलेंस की प्रैक्टिस और
0: धन्यवाद करना।
1: हाँ जी, धन्यवाद।
0: हर्षा जी, आप क्या कहना चाहेंगे लाइटनेस के लिए एक होमवर्क?
2: रोज सुबह उठते ही खुद को चार्ज करना, और इससे हम अपने खुद के इंचार्ज बन जाएंगे।
0: क्या बात है,
2: अर्थात खुद पर कंट्रोलिंग पावर आती जाएगी, और अपने लाइफ का जो रिमोट कंट्रोल है वो अपने हाथ में रखें।
0: क्या बात, थैंक यू सो मच आप दोनों का। और मुझे लगता है इजीनेस वाला जो टॉपिक है ना, इसको आप दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से इजी कर दिया, सरल कर दिया हमारे लिए।
1: थैंक यू।
2: थैंक यू
0: जी। उम्मीद है कि आप सिर्फ सपनों के शहर में नहीं आएंगे, लेकिन बीच बीच में ऐसे हमारे साथ अपनी बातें भी शेयर करते रहेंगे।
1: जरूर।
0: तो दोस्तों, यहीं पर रुकते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली कड़ी में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: और हमारा प्रयास रहेगा कि हम अच्छी अच्छी कहानियों को, प्रेरणादायक कहानियों को और प्रभावित करने वाली हस्तियों को आप सबके बीच में लाएं, क्योंकि हमरा ही एक ऐसा कार्यक्रम है जो हम जिसके माध्यम से समाज में एक सकारात्मक संदेश देना चाहते हैं। खासकर हमारे जितने भी दिव्यांग साथी हैं उनको जॉब अच्छी मिल जाती है थोड़ा बहुत संघर्ष करने के बाद, लेकिन ज्यादा संघर्ष अपने जीवन साथी की तलाश में करना पड़ता है। तो ये संघर्ष कुछ कम हो सके, और बल्कि ये संघर्ष हो ही नहीं, समाज सभी को एक समान समझे, यही उद्देश्य लेकर के हम चल रहे हैं। और आप सबके सहयोग से उम्मीद है कि एक न एक दिन इस उद्देश्य में जरूर सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ ये निवेदन भी दोस्तों, कोई भी दिव्यांग साथी जो विवाहित है हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। खैर, तो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज मैं इनवाइट कर रहा हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम में देश की राजधानी दिल्ली से श्रीमान आर के शुक्ला सर और उनकी श्रीमती जी हेमा मैम को। तो शुक्ला सर और मैम, आप दोनों का हमारे इस हमराही कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
1: धन्यवाद संदीप जी।
0: जी शुक्ला सर, तो हेमा मैम आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद संदीप जी।
0: जी तो आर के शुक्ला सर, आप पहले हमारे सुनने वालों को जरा अपने बारे में बताएं कि मूल रूप से आप कहां से हैं और क्या कर रहे हैं आजकल, कौन सी डिसेबिलिटी है आपको?
1: संदीप भाई, मैं मूलतः तो यूपी में कानपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं।
0: जी।
1: और विगत तकरीबन 40 साल से दिल्ली में ही हूं। और बाय बर्थ ब्लाइंड हूं मैं।
0: जी सर।
1: मतलब जो मेरी डिसेबिलिटी है वो
0: जी
1: बाय बर्थ है।
0: अच्छा, और वर्तमान में क्या कर रहे हैं?
1: हाँ, वर्तमान में मैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में सेक्शन ऑफिसर।
0: अच्छा, तो ये आरके का पूरा नाम क्या सर आपका? मतलब
1: राकेश कुमार शुक्ला।
0: ओके ओके ओके। अच्छा, तो मतलब इसका मतलब ये कि आपकी एजुकेशन और सब कुछ जो है वो दिल्ली से ही हुई है?
1: हाँ, मेरी दरअसल प्रारंभिक शिक्षा जो है वो तो उत्तर प्रदेश में एक जिला है बांदा
0: जी,
1: चित्रकूट के पास ही पड़ता है
0: जी,
1: तो वो स्टार्ट हुई थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ दिल्ली आ गया
0: जी,
1: तो दिल्ली से ही जो है मैं 10+2 और उसके बाद फिर बीए एमए सारा सब कुछ दिल्ली से ही हुआ। 1988 में मैंने 12th पास कर लिया था, जिसी दौरान एसएससी के टेस्ट चालू हुए थे। पहला टेस्ट जो है 1987 में हुआ था, दूसरा 88 में हुआ था। तो 88 वाले टेस्ट में मैंने भी अप्लाई कर दिया
0: जी,
1: तो उसमें ही मेरा सिलेक्शन हो गया।
0: अच्छा।
1: तो उसके बाद 90 के लास्ट में रिजल्ट आया, और फिर प्रक्रिया मतलब पूरी करते करते जो है उन्होंने 6 महीने लगा दिए। जुलाई 91 में मेरी पोस्टिंग हो गई
0: जी,
1: तो जुलाई 91 में मैं सर्विस में आ गया।
0: क्या बात है।
1: और 92 में ये मेरे जिंदगी में आ गए, मतलब मेरा इनसे मिलना जुलना हो गया।
0: ये भी बड़ा अच्छा संयोग है कि जॉब पहले और फिर उसके बाद में आपके जी, जीवन जी, साथी का, आपके हमराही का आना हुआ आपकी जिंदगी में।
1: जी जी जी।
0: क्या
1: दरअसल क्या है कि एक हमारे मित्र हैं, वो बहुत ही मतलब एक तरीके से वो बड़े भाई की तरह ही है हमारे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ज्वाइंट डायरेक्टर थे, अब तो रिटायर हो गए, आपने शायद नाम भी सुना हो, डॉक्टर राम मिलन व्यास का।
0: जी सर।
1: तो उनके पास मतलब ये आती जाती थी, मतलब ये हंसराज से थी, वो भी हंसराज के ही पढ़े हुए थे
0: जी।
1: तो दरअसल क्या कि उस टाइम पे उनकी पीएचडी चल रही थी
0: जी,
1: तो थीसिस वगैरह लिखने के लिए उन्होंने कहा होगा अपने लेक्चरर्स को
0: जी।
1: तो वहाँ उस दौरान एक श्रीवास्तवा जी थे, तो उन्होंने इनको उनके पास भेजा।
0: अच्छा।
1: कि भैया आप सर के पास चले जाओ, उनके थीसिस वगैरह में थोड़ा सा मदद।

0: कर दो
1: जी।
0: तो ये रीडिंग के लिए वहां जाती थी उनके पास
1: जी।
0: वो वहीं पर हमारी इनसे मुलाकात की।
1: क्या बात है सर, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। तो हम चाहेंगे कि सर कार्यक्रम में आगे बढ़े, उससे पहले हेमा मैम भी जरा अपने बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं। और श्रोताओं मैं आपको बता दूं कि हेमा मैम जो है वो दृष्टिवान है, उनको किसी भी तरह की डिसेबिलिटी नहीं है। जी हेमा मैम।
2: नमस्कार संदीप जी।
1: जी
2: दिल्ली से बिलोंग करती हूँ
1: जी,
2: और एजुकेशन मेरी दिल्ली में ही हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन किया
1: जी,
2: और उसके बाद इनसे फिर मुलाकात हो गई
1: जी।
2: वहाँ के हंसराज कॉलेज के प्रोफेसर थे डॉक्टर तनेजा
1: जी
2: और डॉक्टर श्रीवास्तव
1: जी, जी,
2: उनके थ्रू मुझे डॉक्टर रामलन व्यास से मुलाकात हुआ। उनकी पीएचडी हिंदी साहित्य में पीएचडी कर रहे थे
1: जी,
2: तो मैं उनके साथ उनकी मतलब थीसिस कंप्लीट करवाने में उनकी हेल्प करती थी। वहाँ इधर एक इनकी संस्था थी मोबाइल,
1: अच्छा,
2: तो उन्होंने मुझे उसमें भी शामिल किया।
1: तो
2: शामिल
1: आप...
2: होने के बाद
1: जी, जी। आप भी कोई जॉब कर रहे हैं मैम?
2: नो मैं हाउसवाइफ।
1: ओके ओके।
2: मैंने इनकी मतलब जॉब तो उनके ऑफिस में जब इनकी मेरी मुलाकात हुई आना जाना हुआ
1: जी,
2: तो इनके ऑफिस में तो कह रहे थे कि हम कहीं ज्वाइन कर लो, मगर मेरे को नहीं करना था जॉब।
1: क्या बात, बहुत खूब जी।
2: मैंने कहा नहीं, पहले इनकी हेल्प है बाद में जॉब।
1: पूरी तरह से मतलब आपने घर परिवार को संभाला।
2: हाँ सर।
1: क्या बात,
2: जॉब यही
1: जी जी जी। हाँ तो शुक्ला सर
0: जी,
1: अब बताएं सर, आप जो मिलने की कहानी जो बता रहे थे जिसमें बीच में मैंने आपको रोका जी, जी जी जी, बड़ा अच्छा लग रहा था सुनने में, अब बताएं।
0: तो मतलब वहां पर हमारी मुलाकात हुई इनसे
1: जी,
0: और फिर जो उनकी वाइफ थी डॉक्टर व्यास जी की
1: जी,
0: तो उन्होंने भी इनको मोटिवेट किया, इनको मतलब कहा कि भाई देखो ये लड़का बहुत अच्छा है, और मेरी राय ये है कि तुम भी जो है ना
1: जी,
0: मतलब लाइन से ही शादी करो
1: जी,
0: और भाई इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मैं मेरी ये राय है कि भाई मतलब अगर तुम्हें सब कुछ ठीक ठाक लगता है तो तुम जो है मतलब चयन कर लो
1: जी।
0: तो फिर मतलब हमारी बात आगे बढ़ गई, फिर मिलना जुलना शुरू हो गया
1: जी।
0: दरअसल मैं रामजस में था, ये हंसराज में थी, तो रामजस और हंसराज की कोई ज्यादा दूरी भी नहीं है।
1: अच्छा।
0: फिर हाँ, फिर मतलब हमारी मुलाकातें बढ़ती गई, और बस मतलब तकरीबन 6 महीने हम मतलब रहे होंगे, उसके बाद फिर अपना विवाह सूत्र में बंध गए।
1: क्या बात है सर, बहुत खूब, बड़ा मतलब
0: मतलब 6 महीने एक दूसरे को मतलब जानने में, जानने
1: कहते हैं ना वो महानगर में जिंदगी बड़ी फास्ट होती है, तो आपका भी जो कार्रवाई है सारी बहुत फास्ट हो गई मतलब।
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और तो, देखिए देखते देखते 28 साल निकल गए।
1: 28 साल निकल गए, क्या बात। तो 1993 में आपका विवाह हुआ मतलब।
0: जी जी जी
1: जी, बहुत खूब, बहुत खूब। तो सर मैम से पहले भी कहीं कोई बात बात चली है आपकी या नहीं चली?
0: नहीं, कहीं नहीं।
1: तो ये तो मतलब बहुत भाग्यशाली है आपकी, जीवन में जो आए पहले ही उनसे ही बात बन गई
0: जी।
1: इस बीच में सर मतलब चूंकि आपका घर परिवार यूपी में था
0: जी,
1: तो वहां भी तो कुछ प्रयास चल रहे होंगे ना फैमिली में?
0: हाँ, प्रयास तो किए मतलब, लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिली। और दूसरी बात यह कि वहाँ क्या है कि मतलब वो आमतौर पे मानना ही है लोगों का कि ये भाई ये हैंडीकैप है, तो हैंडीकैप ही मतलब कोई ऐसा साथी मिले तो वो ज्यादा मतलब इनके लिए बेनिफिट होगा।
1: ऐसा आपसे किसी ने मतलब डायरेक्टली भी कहा या बस ये सुनी सुनाई बातें या इधर उधर जो फैमिली मेंबर्स जी?
0: कहा तो नहीं, लेकिन जो बातें मतलब लोगों के बीच में मैंने सुनी
1: जी जी जी,
0: वो आपके सामने में।
1: हाँ बिल्कुल, क्योंकि आम तौर पर सोच यही रहती है लोगों की जी।
0: हाँ, और हालांकि मदर मेरी जो है ना वो इस मायने में बहुत जागरूक कहें या मतलब मोटिवेट करने वाली
1: जी।
0: मतलब वो मेरे फादर को मतलब हर तरह से, जब मैं छोटा था मतलब स्कूल के लिए भी उन्होंने ही मतलब मेरे फादर को प्रेरित किया कि भाई ऐसे जीवन कैसे इसका व्यतीत होगा, भाई हम लोग कितने दिन तक रहेंगे, और भाई कहीं इसको डाल दो कहीं मतलब पढ़ाई लिखाई कर लेगा तो कुछ बन जाएगा, और वास्तव में उनके आशीर्वाद से ही मैं आज जो कुछ भी हूँ। मैं तो ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी माँ सभी को मिले।
1: बहुत खूब सर। तो आपके फैमिली में कोई और को किसी को ये प्रॉब्लम थी किसी तरह की? सर
0: अच्छा, किसी को भी नहीं, किसी को भी।
1: और आप शहर से थे या गांव से थे?
0: नहीं, मैं शहर से ही, मेरी जो कानपुर सिटी में ही पैदाइश हुई थी।
1: कानपुर सिटी में। तो शहर में आमतौर पर थोड़ा सा माहौल अपेक्षाकृत थोड़ा सा ठीक होता है, मतलब है
0: उस टाइम पे? ऐसी बात नहीं, मतलब मेरे फादर ने प्रयास भी बहुत किया
1: जी,
0: जब मेरा जन्म हुआ तो उस टाइम पे सीतापुर एक जगह है यूपी में
1: जी,
0: वहाँ का हॉस्पिटल सबसे बढ़िया माना जाता था, वहाँ पे डॉक्टर ले करके गए। मेरी सिस्टर मतलब शादीशुदा, तो वो और मेरे फादर मेरे को लेकर के गए, तो उस टाइम पे डॉक्टर ने ये बोला कि भाई अभी तो ये छोटा है और जब एक आध साल का हो जाए तब लेकर के आना
1: जी।
0: बाद में फिर जब लेकर के गए तो बोला कि भाई ये तो इसके आंखों में तो कुछ है ही नहीं, नसें इसकी सूखी पड़ी हुई हैं। और अलीगढ़ में भी एक हॉस्पिटल होता था उस टाइम पे, वहां पर भी लेकर गए, जहां जिसने बताया मतलब वहां दिखाया, लेकिन कहीं से कोई सक्सेस नहीं मिली।
1: लेकिन सक्सेस मतलब आंखों के मामले में भी नहीं मिली, और जो वहां पर जीवन साथी की तलाश में भी आपको पहले ही समझ में आ गया था कि भाई कोई फायदा नहीं है यहाँ पे ज्यादा तलाश करने से।
0: हाँ हाँ, जीवन साथी के रूप में तो यूं कहें ना के बराबर ही, मतलब तलाश जो भी हुई वो ना के बराबर ही रही।
1: तो थोड़ा सा सर आपके समय में बताइए ना कि मतलब क्या होता था, जैसे आप कभी गांव जाते होंगे, मतलब शहर जाते होंगे, अपने घर जाते होंगे, तो फैमिली वाले आपके साथ बैठ करके पूछते थे, बात करते थे, भाई क्या चाहते हैं आप, क्या अब जॉब भी लग गई है, क्या इरादा है?
0: मतलब वैसे तो हर तरीके से बातचीत करते थे और तारीफ भी करते थे, और मतलब लोगों के सामने लोग, लेकिन इस विषय में कि भाई अब नौकरी लग गई तो शादी विवाह मतलब हो जाए इसका, वो कोई बातचीत नहीं।
1: अच्छा, इस बारे में कोई बातचीत नहीं होती थी। तो जब सर आपका मैम से जब ये तय हो गया, आपने बताया तो होगा ही घर वालों को?
0: हाँ हाँ
1: बिल्कुल। उसके बाद क्या प्रतिक्रियाएं थी सर घर वालों की?
0: अरे उसके बाद तो जब पता लगा तो जो है ना
1: जी
0: भाई, अब मतलब इनके घर वालों को तो फिर होना ही था नाराज, तो लेकिन मेरे घर वाले भी कि भाई अपने आप कर लिया और बताया नहीं, और भाई थोड़ा सा वहाँ के सामाजिक तौर तरीकों के मुताबिक भी जो है
1: जी जी जी, जी जाति वाति के बारे में जो आमतौर पर सोच होती है जी।
0: हाँ हाँ
1: जी,
0: तो मेरी सिस्टर ने और मेरे बहन भाई ने समझाया कि देखो
1: जी
0: अब इसकी पोजीशन भी तो देखो, और मतलब अगर अपने आप कर लिया तो कौन सा पहाड़
1: टूट पड़ा, बिल्कुल सही है।
0: हाँ, कौन सा गुनाह कर दिया
1: जी,
0: और भाई ये प्रयास तो हम लोगों का था,
1: बिल्कुल सही है,
0: हम लोग उसमें सफल नहीं हो पाए
1: जी,
0: या हम लोगों ने कुछ नहीं किया तभी तो उसने ये ऐसे कदम उठाए।
1: क्या बात है, बहुत खूब जी।
0: तो फिर मेरे फादर राजी हो गए और यहाँ से मेरे को और मेरी वाइफ को दोनों को ले गए।
1: अच्छा।
0: फिर वहां जा करके मतलब हमने रिसेप्शन वगैरह भी दिया, वहाँ छोटी मोटी पार्टी जो होती है, तो मतलब नाते रिश्तेदारों को सबको बुला करके
1: जी।
0: फिर उनके घर वाले भी 6 महीने में मान गए,
1: विवाह के बाद 6 महीने तक नहीं माने मतलब वो भी।
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी
1: जी। तो अब बात करते हैं जरा हेमा मैम से। तो हेमा मैम आप तो मतलब अच्छा खासा आपका मतलब पढ़ाई चल रही थी, और जब सर का प्रस्ताव आपके सामने आया तो मतलब आपको कुछ कठिनाई नहीं हुई निर्णय तक पहुंचने में, या पहले से ही आप?
2: कठिनाई तो नहीं हुई, बस मुझे जो व्यास जी की मिसेज थी ना
1: जी,
2: बिमला भाभी
1: जी,
2: उनका व्यास जी जो मिसेज उनका बिमला व्यास नाम था।
1: अच्छा।
2: तो उन्होंने मुझे हाँ मतलब इतना वो कर दिया, तो मैं कहा ठीक है देखा जाएगा।
1: तो वो दृष्टिवान थी या दृष्टिबाधित थी?
2: वो
1: दृष्टिबाधित थी। अच्छा, तो वहाँ मतलब उस फैमिली को देख करके जी,
2: क्या कह रहे हैं सर,
1: उस फैमिली को देख करके मतलब कहीं ना कहीं आप पहले ही प्रभावित थे मतलब?
2: जी जी जी जी जी
1: जी जी जो कर, आपको एक तरह
2: से अपनी संदीप जी,
1: जी
2: मैंने अपनी लाइफ में कॉलेज टाइम पे मैंने मैं हकीकत बताती हूँ मैंने ब्लाइंड को नहीं देखा।
1: अच्छा जी।
2: मैंने जब फर्स्ट टाइम मैं उनके घर गई डॉक्टर त्रिनेत्र जी भेजा
1: जी
2: तो उनको देख के मैं हैरान रह
1: जी
2: तो मुझे तो पता नहीं था कि वो ब्लाइंड है ना। उन्होंने मुझे कहा सर ने बोला कि मैं तुमको एड्रेस दे रहा हूँ वहाँ चले जाइएगा
1: जी
2: और वहाँ आपको पता चल जाएगा। मैंने कहा ठीक है सर मैं चले जाती हूँ। मैं गई बेल बजाई कि उन्होंने दरवाजा खोला और सर ने दरवाजा खोला
1: जी
2: तो मैं देख के हैरान एकदम डॉक्टर व्यास जी से मिलना था।
1: अच्छा
2: तो, हाँ कही कही नहीं व्यास मैंने गुड आफ्टरनून सर मुझे डॉक्टर तनेजा सर ने भेजा है तो कहा हाँ आइए आइए आइए बस उन्होंने मतलब उनकी मतलब उन्होंने अपना काम बताया कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ हिंदी साहित्य से मेरे साथ ये प्रॉब्लम है ये आपको करना है। मैं कहा ठीक है सर कोई बात नहीं मैं कर। उनकी दो बेटियां थी छोटी छोटी
1: जी
2: उनकी वाइफ आई उन्होंने मिलवाया मैं उनको भी देख के हैरान तब मुझे कहलाया कि एक ब्लाइंड मतलब हो करके इतना सब कुछ कर सकते हैं तो हम किसी का क्यों नहीं बन सकते।
1: क्या बात है बहुत खूब है।
2: तो भाभी जी बोली कि हेमा तुम अगर मेरी सलाह मानो तो किसी के साथ ऐसे करना तो उसकी जिंदगी भी संवर जाएगी तुम्हारा भी आगे भविष्य बन जाएगा
1: जी।
2: मैंने कहा ठीक है भाभी जी तो मैंने भी ठान लिया मैंने कहा करना है तो ठीक है अब भाभी के मुताबिक ही चलना
1: जी।
2: अब तक हमारा भाभी का और हम मतलब वो तो चले गए बेचारे डॉक्टर व्यास जी अब अकेले हैं तो अब तक उनकी तीन बेटियां हैं काफी अच्छा चल रहा है।
1: तो फिर
3: मतलब ये है कि अभी भी अगर कोई फंक्शन होता है चाहे छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा
1: जी जी।
3: तो हमारे बिना वो फंक्शन अधूरा रहता है।
1: क्या बात है अच्छा
3: हाँ
1: बहुत जबरदस्त जी। तो हेमा मैम मतलब आपके फैमिली में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कौन कौन है।
2: हाँ मैं बता देती हूँ मेरी मदर नहीं थी।
1: अच्छा
2: हम दो ब्रदर दो सिस्टर थी
1: जी।
2: मैं बड़ी सिस्टर मतलब और मेरी छोटी थी।
1: अच्छा और आपके फादर
2: और बड़ा ब्रदर थे वो घर जमाई एक तरह से।
1: अच्छा और आपके
2: छोटा ब्रदर था वो हमारे पास ही था हमारी छोटी सी फैमिली।
1: और आपके पिताजी
2: मेरे फादर पहले गवर्नमेंट जॉब थे
1: जी।
2: वो जॉब बंद हो गया था तो अपना बिजनेस था उनका।
1: अच्छा अच्छा
2: हाँ
1: तो जब ये सर से मुलाकात हुई आपकी
2: जी जी
1: तो उस समय भी मतलब आप बस व्यास सर को देख करके ही प्रभावित थे या धीरे धीरे आपने अपना मन बनाने के लिए भी मतलब शुक्ला सर का भी मतलब अध्ययन एक तरह से किया कि
2: हाँ, गया मेरा
1: ये बताएं जरा मैं।
2: हाँ,
1: जी
2: मैं बताती हूँ
1: जी
2: व्यास की तरफ से तो था ही था
1: जी, जी,
2: जब मैं इनसे मिली ना तो मुझे इनका नेचर स्वभाव बहुत अच्छा लगा
1: जी।
2: मैं ये बताऊं
1: जी
2: मैं मतलब बहुत लोगों से मिली बहुत लोग मेरी मतलब उसमें आए मोबाइल संस्था थी ना तो वहाँ हम लोग फंक्शन वगैरह करते थे डीयू में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर तो बहुत लोग मिलते थे तो कहते ना उंगली पकड़ के पोछा पकड़
1: बिल्कुल
2: बहुत लोग आए मगर मुझे इनके जैसा स्वभाव किसी का नहीं मुझे इनका स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगा
1: जी।
2: तो इनसे मतलब मेरा दिल लग
1: ब्लाइंडनेस कभी आपके लिए मतलब कोई परेशानी नहीं रही ब्लाइंडनेस की
2: ये तो नहीं मेरे लिए तो नहीं रही ये तो ये बता सकते हैं कि मेरे से आपको इनको कोई परेशानी हुई हो
1: नहीं नहीं नहीं वो तो खैर हम जानेंगे ही।
2: हाँ।
1: जी जी जी
2: मुझसे नहीं मुझे कभी कोई नहीं हुई।
1: आम तौर से होता है ना मैं महिलाओं के मन में
2: आप मेरे को नींद से कुछ छोड़िए और भी शायद आपकी ना आपके सद उसमें आए होंगे मेरे को सब जानते हैं दिल्ली में।
1: जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल
2: दिल्ली का कोई ऐसा मतलब लाइन सॉरी भाई नहीं है मैं उसके लिए माफी चाहूंगी मैं जो वर्ड यूज कर रही हूँ ना मतलब है ना जो डिस्टर्बेंस है
1: जी
2: जो मैं कह रही हूँ तो सब लोग मुझे जानते हैं मेरे नेचर के बारे में सब जानते हैं
1: बहुत बहुत
2: मगर एक बात तो बुरा मत मानिएगा
1: जी जी
2: मैं दिल्ली जैसा आदमी कोई नहीं
1: जी क्या बात बहुत बहुत बढ़िया
2: कोई भी नहीं है
1: जी जी जी जी
2: मैं नहीं तो सब लोग एक क्या कहते हैं सेल्फीज को क्या बोलेंगे।
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल
2: मैंने उस
1: सब अपने मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि लोग अपने अपने बारे में सोचते हैं जी
2: जी जी जी जी
1: तो जब आप
2: हमेशा अभी भी देखो एजुकेशन में होकर के ना दूसरों की हेल्प पूरी करते हैं
1: जी
2: ठीक है और लोग जो और उनके दोस्त वगैरह उनसे फायदा उठाते हैं।
1: अच्छा
2: जब काम होता है ना तब शुक्ला जी याद आते हैं कभी शुक्ला जी नहीं याद आते
1: ये मैम ज्यादातर पत्नी की शिकायत रहती है लेकिन खैर शुक्ला सर है ही इतने विनम्र की सबकी हेल्प कर दिया करते हैं। अच्छा मैम बताएं जब आपने घर वालों को बताया आपने
2: जी
1: फिर क्या कहा आपके फैमिली में सबसे पहले जब इस बारे में सुना
2: पहली बात मैं बताऊं
1: जी
2: मैं हकीर भट्ट में झूठ नहीं बोलूंगी
1: जी
2: मेरी फैमिली एग्री नहीं
1: बिल्कुल वही हम जानना चाह रहे हैं कि उनके मन में क्या चल रहा था क्यों मना कर रहे थे
2: जी उनके मन में नहीं क्योंकि उनको मैंने बताया नहीं मुझे पता था कि नहीं मानेंगे
1: जी
2: कितना भी मैं कोशिश करूं मनाने की नहीं मानेंगे मगर एक मेरे मौसा जी थे और मेरे नाना जी मेरे नाना जी बहुत वो थे तो वो कहते थे ठीक है कोई बात नहीं हम तेरे साथ हैं मगर उस बीच क्या हुआ उनका वो एक्सपायर मेरी शादी होने से पहले
1: अच्छा,
2: एक्सपायर हो गए
1: अच्छा
2: और जो मेरे मौसा जी थे ना वो भी मेरी शादी से एक दिन पहले एक्सपायर मेरा 21 का शादी था
1: जी
2: और उनका 20 उनको उनको मतलब जो 20 तारीख को वो एक्सपायर
1: अच्छा
2: हाँ
1: जो सपोर्ट कर रहे थे आप, जो आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे
2: जी जी जी
1: जब तक आप
3: एक इनकी भाभी थी एक इनकी भाभी थी ना उनको भी पता था लेकिन जो है ना वो उन्होंने मतलब डर की वजह से किसी को
2: नहीं बताया
3: नहीं बताया इनको सारी जानकारी थी
1: लेकिन शुक्ला सर यहाँ पर एक प्रश्न मेरा आपसे है कि कभी आपके मन में नहीं आएगी यार जब फैमिली में पता नहीं है लोगों को ज्यादातर को बताया नहीं है मैं कैसे एकदम कदम उठा लूं कल को बाद में
3: दरअसल क्या है कि मुझे इनके ऊपर पूरा भरोसा था और इन्होंने भी मतलब मुझे पूरा भरोसा दिया था तो इस वजह से हम दोनों मतलब बिल्कुल
2: संदीप जी यहाँ पे मैं इनकी बात काटती हूँ
1: जी
2: आपको बताती हूँ
1: जी
2: कि हम लोगों ने डिसाइड किया था हम वेल एजुकेटेड तो थे
1: जी जी जी
2: है ना हमने ठान लिया तो करना है
1: बिल्कुल
2: देखा जाएगा जो होगा
1: जी
2: तो हमने कर लिया
1: यानी एक तरह से सर को वो सर जो कह रहे हैं ना कि आप पर भरोसा था कि घरवाले अगर कुछ भी घरवाले कितने ही विरोध में हो जाए कुछ भी कर लें लेकिन आप पीछे नहीं हटने वाले थे तो आपके फ्रेंड सर्कल वगैरह में बताया आपने किसी को उनका क्या रिएक्शन था अगर बताया हो तो
2: मेरे फ्रेंड सर्कल में हाँ उनके मतलब पेरेंट्स तैयार नहीं
1: अच्छा।
2: मेरी फ्रेंड तो तैयार थी मगर उनके पेरेंट्स तैयार नहीं
1: आपने अपने बारे में जब बताया खुद के बारे में आपने
2: हाँ
1: अच्छा
2: वो भी मतलब वो मना कर रहे थे कि नहीं तुम ऐसा क्यों कर रही हो
1: तो जब मैम शुक्ला सर से आपकी मुलाकात हुई तब आप क्या कर रहे थे पढ़ाई कौन सी कर रहे थे उस समय
2: मेरा बीए ही था
1: बीए चल रहा था आपका ना
3: बीए फाइनल ईयर था
1: बीए फाइनल ईयर था
2: जी
1: तो आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे थे हेमा मैम और जाहिर सी बात है कि मतलब जिस कॉलेज में आप थे वो कॉलेज भी अपने आप में बहुत प्रतिष्ठित तो कभी मतलब आपकी नजर में कोई और व्यक्ति आया हो या आप पर किसी की नजर रही
2: जी नहीं
1: ऐसा कुछ नहीं हुआ
2: नहीं कुछ नहीं हुआ ये तो मेरे कॉलेज में आप जाके पूछ लीजिए
1: जी
2: हाँ ऐसा कुछ नहीं था
1: क्या बात बहुत कुछ है तो कुल मिलाकर के आपके लिए भी यही कहा जा सकता है कि शुक्ला सर ही एक तरह से पहली बार जिंदगी में आए और बस आप दोनों आज साथ साथ हैं बहुत अच्छे बहुत अच्छे उसके बाद में फिर जब फैमिली को पता तो चला ही होगा ना एक ना एक दिन
2: जी
1: फिर क्या हुआ
2: उन्होंने तो कुछ नहीं बोला कि उन्होंने किया है तो जैसा कि अच्छा किया होगा उन्होंने
1: पता कैसे चला फैमिली को आपने खुद ही बताया किसी दूसरों से पता लगा
2: नहीं जो बताया ना मेरे मौसा जी तो जो एक्सपायर हुए थे मेरी शादी से एक दिन पहले मेरे मौसा जी एक्सपायर हुए थे ना उनकी वाइफ ने उनको बताया
1: अच्छा
2: उनको तो पता था उन्होंने बताया तब थोड़ा नाराज हुए
1: वही ब्लाइंडनेस को लेकर के
2: जी जी जी
1: की आंखों में दिखाई नहीं देता है और जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी यही सब बातें जो हमेशा दोहराई जाती है
2: जी।
1: दिल्ली में भी यही सब चलता है
3: एक्चुअली संदीप भाई क्या है हमारे देश में अजीब विडंबना है
1: जी सर
3: एक रिक्शे वाले को दे देंगे
1: हाँ ये जी
3: दृष्टिबाधित चाहे वो कितना भी काबिल क्यों ना हो उसको ये सोचेंगे यार इसको मतलब हमारी लड़की कैसे रहेगी कैसे जीवन यापन करेगी
1: ये बड़ा ये सर कम ये मतलब बड़ी गंभीर समस्या है देखा जाए तो ये समाज दिव्यांगता को पता नहीं क्यों स्वीकार नहीं कर पाता
3: हाँ जबकि समय बदल रहा है
1: जी।
3: तो समय के अनुसार चेंजेस आने चाहिए
1: जी
3: लेकिन अभी भी हम लोगों के मामले में लोगों की वही पुरानी सोच
1: हाँ जबकि आज इतने सालों से आप लोग बहुत सक्सेसफुली मतलब अपना जीवन चला रहे हैं, उसके बावजूद यह हाल है बताइए
3: जी।
1: तो आपके सर शहर में कानपुर वगैरह में आपके फैमिली में जाना होता है या अभी संपर्क
3: नहीं? जाना होता है और अब तो मतलब हम लोग जब जाते हैं तो हमें मतलब अच्छी हवा भगत मिलती है।
1: अच्छा,
3: मतलब अच्छी तो
1: रिस्पेक्ट पूरा मिलता है मतलब?
3: जी पूरा रिस्पेक्ट मिलता है और मतलब अच्छे तरह से आदर भाव करते हैं और जब मिलवाते हैं मतलब हमारे भाई वगैरह भी जो है ना, मेरे एक बड़े भाई हैं, एक छोटा है, तो छोटा तो यहीं दिल्ली में ही रहता है।
1: अच्छा।
3: बड़े वाले वहां रहते हैं तो मतलब बहुत अच्छी तरह से बहुत मतलब गौरवान्वित महसूस करते हैं।
1: तो शुक्ला सर उस जमाने में मतलब तकनीक वकनीक का तो खैर कहीं नामो निशान ही नहीं था।
3: नहीं, नहीं, नहीं।
1: तो कभी कभी आपके मन में भी आता होगा ना कि यार मैं मतलब साइटेड व्यक्ति के साथ सामंजस्य कैसे बिठाऊं, मैं मतलब हमारा काम करने का तरीका थोड़ा अलग और इन लोगों की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी अलग, तो इस सब पर मतलब आपने कुछ सोचा या कभी जरूरत ही नहीं पड़ी ऐसे?
3: नहीं दरअसल मेरे ऑफिस में तो फिर अभी मुझे जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि पहले जो मेरा प्रोफाइल वर्क था वो टेलीफोन का था और अब जो है जब से मैं सेक्शन ऑफिसर बना तो अब फाइल वर्क आया मेरे पास, तो अब तो मेरे नीचे भी 10-12 आदमियों का स्टाफ है तो उनसे मुझे हेल्प मिल जाती है, तो ज्यादातर तो साइन ही करना होता है, बाकी वो पढ़ करके खुद सुनाते हैं
1: सर। ये मेरा मतलब था ये सर कि खासकर घरेलू मामलों में कि जैसे अच्छा कुछ एक्सपेक्टेशन रही होंगी मैम की भी, अगर नहीं रही तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी होता ही है ना कि मतलब उम्मीद तो होती है यार किसी वाइफ को अपने हस्बैंड से।
3: हाँ जी हाँ जी।
1: तो आपके मामले में कौन सी परिस्थितियां रही सर?
3: किस तरीके से?
1: कि भाई जो रोजमर्रा के जो कामकाज होते हैं हमारे जीवन से संबंधित।
3: देखिए ज्यादातर तो हम काम करते थे तो मतलब साथ ही जाते थे
1: जी
3: शुरुआत में
1: जी।
3: मतलब कोई भी सामान लाना है तो हम साथ ही जाते थे।
1: अच्छा।
3: और घर में हालांकि मदर वगैरह थी तो वो अपना घर का ही काम देखती थी, कोई ना कोई तो मेरे साथ मतलब हमेशा रहा ही।
1: अच्छा, हमेशा कोई ना कोई था ही जी।
3: हाँ हाँ,
1: बहुत बढ़िया जी सर।
3: अब तो फिर बच्चे हो गए, बच्चे बड़े बड़े हो गए, अब तो सारा काम बच्चे ही करते हैं, हमें कहीं आना जाना ही नहीं पड़ता।
1: तो कितने बच्चे हैं सर, थोड़ा सा यहाँ पर ये भी मैं पूछना चाहूंगा।
3: जी मेरे पास 3 बच्चे हैं, एक बेटी है
1: जी
3: और 2 बेटे हैं।
1: क्या कर रहे हैं सर तीनों, जरा बताएं प्लीज।
3: बेटी मेरी जो है सबसे बड़ी है, वो वैसे तो MA BEd है
1: जी,
3: लेकिन इस समय वो फॉरेन में है, USA में जॉब कर रही है।
1: क्या बात। और दोनों जो आपके पुत्र हैं वो?
3: हाँ, 3 साल से वो
1: USA में। बहुत खुश है। और दोनों आपके जो पुत्र हैं वो?
3: और बेटे मेरे बड़ा वाला जो है वो योगा ट्रेनर है, योगा की कोचिंग देता है।
1: योगा की? ओके।
3: हाँ जी।
1: और दूसरा बेटा जो है वो?
3: दूसरा बेटा उसका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, बीएड कर रहा है।
1: क्या बात। पूरी तरह से मतलब सब कुछ कहा जाए कि वेल सेटल्ड मामला है।
3: हाँ जी।
1: तो सर आपकी बिटिया जो US में है
3: जी,
1: कभी मतलब इस बारे में चर्चा होती है उनसे कि वहाँ पर जो हमारे VI साथी हैं, ब्लाइंड साथी हैं?
3: नहीं, उसको जो है ना वहाँ के बारे में
1: ज्यादा अभी नॉलेज नहीं।
3: ओके। हाँ, नॉलेज नहीं, जानकारी नहीं है
1: जी। जी
3: मैंने एक आध बार जिक्र भी किया उसे
1: जी,
3: तो उसने कहा पापा मेरे को पता नहीं।
1: अच्छा।
3: बाकी मतलब बातचीत तो डेली ही होती है
1: जी।
3: और उदयपुर जो हम लोग गए थे तो बेटी थी।
1: अच्छा, आई थी क्या वो उदयपुर? आई थी। क्या बात। अच्छा अच्छा, वही मैंने कहा ना कि
3: याद नहीं करती अभी तक जो है ना।
1: अच्छा।
3: तो भूल नहीं पाई हूँ।
1: अच्छा।
3: बहुत एंजॉय किया दोनों। एक हमारे साथ थे ना नेगी जी।
1: जी जी जी,
3: त्रिपन सिंह नेगी।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
3: तो उनकी बिटिया भी थी और मेरी बिटिया भी थी, तो दोनों की अच्छी कंपनी
1: जी जी
3: हो गई थी, तो उन लम्हों को जो है वो अभी तक भूल नहीं पाई। जो क्या है, कौन सा था पटकल लेक
1: है?
3: अरे कौन सा लेक था वो, पिचोला लेक या कौन सा लेक?
1: हाँ, हाँ, वो फतेह सागर। फतेह सागर पिचोला। जी जी जी।
3: हाँ, वहाँ पर बहुत एंजॉय किया दोनों बच्चों ने। वोटिंग वोटिंग जब करी ना वोटिंग में बहुत एंजॉय किया।
1: क्या बात क्या बात।
3: हाँ और डेली तो मॉल जब तीन चार दिन जब तक रहे डेली मॉल।
1: हाँ वो मॉल सामने ही था वो सेलिब्रेशन मॉल जो था वो सामने ही था। तो श्रोताओं ये पुरानी थोड़ी सी यादें हैं जो ताजा हो गई सर के माध्यम से। तो हेमा मैम
2: जी
1: उस समय मतलब आपने क्या एक्सपेक्टेशंस की थी सर से आपकी क्या
2: जी? ऐसा कुछ नहीं मुझे बस शादी करना था मैंने कर लिया।
1: नहीं लेकिन आपको मन में कभी कि यार कभी कभार चाय बना लें तो ठीक हो ये छोटी छोटी बातें होती है कभी आपने सोचा जी जी। अच्छा क्या बात मतलब आपको अपने आप पर तो पूरा भरोसा था ही था कुल मिलाकर के हर मामले
2: जी।
1: और बगैर भरोसे के मुझे लगता है कि इस तरह के निर्णय लेना आसान भी नहीं होता है। क्यों क्या मानना है
2: जी?
1: क्योंकि जो लड़कियां हिचकिचाती हैं या डिसीजन नहीं ले पाती है खासकर किसी दृष्टिबाधित व्यक्ति के बारे में तो उसके पीछे क्या कारण देखती हैं
2: आप? संदीप जी अपनी सोच समझ है
1: जी।
2: मैं बस अपने बारे में तो कह सकती मैं दूसरे बारे में नहीं कह सकती।
1: नहीं बिल्कुल
2: उनकी सोच कैसी है
1: बिल्कुल
2: मतलब मैं नहीं मैं अपने बारे में जरूर कह सकती हूँ कि हाँ मैं पूरी हेल्प करती हूँ ऐसा मैं।
1: लेकिन मैम आप तो हेल्प करती हैं वो अच्छी बात है लेकिन मतलब जो समाज की जो सोच है उसमें भी तो परिवर्तन होना चाहिए ना कि
2: होना चाहिए। हाँ,
1: जो जिनको नहीं दिखाई देता है वो भी सब कुछ कर सकते हैं वो पूरी तरह से कैपेबल हैं हर मामले में तो कमी कहाँ रह जाती है?
3: दरअसल क्या है संदीप भाई मैं आपको बोलता हूँ जब तक हमारे से कोई मिलता नहीं है ना तब तक वो हमारे बारे में नहीं जान पाता और जब जब वो हमारे से मिल जाता है ना वो उसके बाद फिर वो हमारे बारे में जान करके फिर वो पीछे नहीं हटना चाहता मतलब फिर वो ये सोचता है यार ना कि भाई ये लोग वाकई में कैपेबल हैं ये सब कुछ कर सकते हैं अगर इनको थोड़ा सा सहारे की जरूरत है अगर इनको थोड़ा सा सहारा मिले साथ मिले तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं।
1: कहीं ना कहीं सर आपका इशारा इस बात की ओर है कि हम लोगों को दिव्यांग साथियों को जो विवाहित है उनको हर तरह की गैदरिंग में हर तरह के फंक्शन में जितना संभव हो उतना जाना चाहिए या मुख्य धारा के लोगों के बीच में ज्यादातर जाना चाहिए।
3: जी जी जी
1: कहीं आपका ये कहना तो नहीं?
3: नहीं मैं यही मैं कहना चाहता हूँ कि भाई हम लोग जो झिझकते हैं ना तो हमें झिझकना नहीं चाहिए हमें बराबर पार्टिसिपेट करना चाहिए और एक बार कोई साथ नहीं देगा दो बार साथ नहीं देगा तीसरी बार जब वो हमें देखेगा तो जरूर उसके मन में भी आएगा कि भाई इनको भी साथ में लेना चाहिए। अच्छा ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ आपको क्योंकि मैं पिछले 30 साल से सर्विस में हूँ
1: जी।
3: जो लोग कभी हमारे जैसों को या हमें दरकिनार किया करते थे
1: जी
3: आज वो हमारे से जब जुड़ गए हमारे बीच आ गए तो वो और 10 लोगों को ये बताते हैं कि यार हम हमारी जो सोच इनके प्रति थी ना वो गलत थी
1: जी
3: ये लोग हमारे से ज्यादा अच्छे हैं ज्यादा कैपेबल हैं
1: जी
3: और जो काम हम नहीं कर सकते वो ये कर सकते हैं। कई कई चीजें ऐसी हैं जो कि वो मतलब हमारे से ज्यादा इनके पास है
1: जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर बड़े शहर में रहते हैं राजधानी में रहते हैं
3: जी
1: आमतौर से देश के हर कोने से
3: हाँ जी
1: मतलब वैवाहिक संबंधों को लेकर के कई तरह के जो केस हैं कई तरह की घटनाएं जो हैं वो सुनने को मिलती हैं पढ़ने
3: हाँ जी।
1: लेकिन पिछले कुछ समय से सर ऐसा हो रहा है कि ये जो बड़े शहर हैं जितने भी चाहे दिल्ली हो या मुंबई हो और भी मतलब आजकल जो उप महानगर है या महानगर जो है तो हमारे क्षेत्र में भी दिव्यांगों के मामले में भी वैवाहिक संबंधों को लेकर के कई सारे अपराध कई सारी समस्याएं कई सारे इस तरह के केस सामने आ रहे हैं सर तो आपको क्या लगता है कि ये सब मतलब जो है कहीं ना कहीं और हमारी जो छवि है उसको थोड़ा सा कहीं कुछ मतलब उस पर खतरा नहीं उत्पन्न हो जाए आप क्या मानते हैं?
3: देखिए आप तो हर वर्ग में ही होते हैं
1: जी
3: लेकिन अब ये कि जो हमारे कैटेगरी के लोग हैं उसमें अगर ऐसी कोई दिक्कत हो जाती है तो वो थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट हो जाती है।
1: बिल्कुल सर, जो समाज थोड़ा छोटा होगा उसकी समस्याएं जल्दी लोगों की निगाह में आ जाती है, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
3: लेकिन ये अपराध तो हर जगह ही होते हैं।
1: जी जी जी
3: हाँ, तो, क्या कहना चाह रहे थे?
1: जी मैं वही कह रहा था कि ये अपवाद तो है, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन आम तौर पर जितना हो सके इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए।
3: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनको नजरअंदाज किया जाना चाहिए।
1: जी तो हिमा मैम।
2: जी सर।
1: अब तक तो आप बहुत लोगों से मिले होंगे, कई फैमिलीज को देखा होगा आपने।
2: जी सर।
1: उस जमाने में यानी आज के 30 साल पहले और अब में आपको परिवर्तन नजर आता है कि नहीं अपने साथियों के बीच में या दृष्टिबाधित फैमिलीज में?
2: नहीं, कोई ऐसा तो नहीं लगता सीधा।
1: अच्छा, कोई खास बदलाव आपको
2: नहीं
1: नजर? नहीं, आज मतलब तकनीकी रूप से काफी कैपेबल हो गए हैं हमारे साथी, दिव्यांग साथी, ऐसा नहीं लगता?
2: मैं सर कहीं जाती नहीं हूँ।
1: अच्छा।
2: मैं अपने तक सीमित।
1: आप तो घर परिवार में खुश है मतलब?
2: जी जी जी।
1: बाहर कार्यक्रमों में कभी कभार जाना हो जाए तो हो जाए?
2: हाँ कभी कभी, साल में एक बार दो बार बस।
1: जी तो बच्चों का खासकर क्या रवैया रहता है मैम, जैसे सर के प्रति, आपके प्रति, आपको कभी ऐसा महसूस हो? जी
2: ये तो यही बताते ना सर, मैं क्या बताऊं?
1: जी नहीं, आप जैसे आंखों, बहुत सारी चीजें क्या होता है ना मैम कि इंसान आंखों से देख करके महसूस कर लेता है।
2: जी
1: तो उस लिहाज से हम पूछ रहे हैं आपसे, क्योंकि आई कॉन्टेक्ट जो आप लोगों का होता है वो मतलब काफी चीजें बयां कर देता है। जी
2: इनका पता है, इनका चुप रहना ही पता चल जाता है कि गुस्से में।
1: मतलब सर को गुस्सा आता है?
2: हाँ, तो चुप रहना ही इनका बेटर होता है, पता चल जाता है गुस्से में।
1: जी
2: बस यही है और कुछ नहीं।
1: अच्छा तो इतने सालों में मैम ऐसे भी पल आए होंगे कि जब आप दोनों के बीच में भी थोड़ा कभी कुछ खटपट हो जाती होगी?
2: संदीप जी वो तो होता है हर जगह, हर घर में,
1: हर जगह होता है।
2: देखिए चाहे हमारा घर हो चाहे नॉर्मल सेटल लोग जो है उनके घर में भी होता है, इतना छोटा में तो चलता है।
1: जी
2: मगर इतना हम लोग ज्यादा नहीं हो होता,
1: लंबा नहीं खींचते
2: के लिए बस
1: बहुत। तो आमतौर पर मैम जो शुरू शुरू में जब विवाह हुआ तो लोग जो देखते रहे होंगे आस पड़ोस के,
2: जी
1: उनका क्या रवैया रहता था आप लोगों को देख करके? मतलब
2: बहुत लोग हैरान होते थे कि भाई उन, अच्छा कुछ लोगों को पता नहीं था कि दिल्ली की लड़की है। अब जैसे मैं तिमारपुर में हूँ तो कुछ लोग थे आस पड़ोस में, तो जो पता चला कि मैं यहीं की हूँ और सब कुछ यही है दिल्ली का, तो सब हैरान हो गए। तुमने कैसे कर लिया? अरे ये भी तो इंसान है ना।
1: बिल्कुल सही है मैम,
2: फिर से करती है, मैंने फिर से कर दिया तो क्या होगी?
1: क्या हो गया? बिल्कुल सही है,
2: मैंने गलत तो ना किया। मेरे मायके में भी सब कहते थे
1: अच्छा
2: तुमने इसे क्यों किया, मैंने कहा मैंने किया, मेरा मर्जी।
1: बहुत सही जी, मतलब ये सारे प्रश्न जो आमतौर पर आपको भी सामना करना पड़ा इन सारे प्रश्नों का।
2: हाँ।
1: लेकिन आपने सबको मतलब समय के अनुसार जवाब दे दिया, और आज तो शायद ही कोई होगा जो कोई ऐसी बात करता होगा।
2: नहीं कोई नहीं करता, आज तो अब तो सब मतलब मेरे तरफ वाले जो घर वाले हैं सब इनकी मतलब बहुत इज्जत करते हैं। जो मेरे चाचा जी थे मेरी शादी के 9 साल बाद मुझे एक्सेप्ट किया था, 9 साल बाद किया
1: जी,
2: तो वो भी मरते दम तक इनको इतना पूछते थे मुझे बिना पूछे कोई काम नहीं करना
1: जी,
2: जब तक मैं पहुंच ना जाऊं या ये ना पहुंच जाता कोई काम नहीं करना, इतना वो हो गया था।
1: तो शुक्ला सर
3: जी
1: आपने सीखा कभी कुछ कुकिंग वुकिंग या ऐसा कुछ?
3: नहीं।
1: कभी जरूरत ही नहीं पड़ी?
3: नहीं,
1: जैसे कई लोगों का शौक होता है ना एक्चुअली कि कुछ खटपट करते हैं। जी
3: आज की बात बताऊं
1: जी,
3: शादी से पहले
1: जी
3: मैं चाय बना लेता था।
1: अच्छा
3: हाँ, तो
2: वो भी हीटर पर।
1: अच्छा
2: वो भी हीटर में।
1: क्या बात,
3: चाय बना लेता था, कपड़े प्रेस कर लेता था।
1: जी,
3: और छड़ी से अपने आप इधर उधर आ जाता था
1: जी,
3: लेकिन शादी के बाद मेरी छड़ी खत्म हो गई
1: क्योंकि कभी गैस को छूने की जरूरत नहीं पड़ी,
3: गैस की छूने की जरूरत नहीं पड़ी
1: जी
3: और अब छड़ी खत्म हो गई क्योंकि जो है अब दूसरी छड़ी आ गई दो आंखों वाली
1: जी बिल्कुल सर।
3: और अब तो कहीं भी आना जाना हो अब तो घर पर मान लो बच्चे बड़े हो गए तो मैं मतलब कभी भी अकेले चलने का चांस ही नहीं मिलता, मतलब अगर कई जगह ऐसी होती है जहाँ की मान लो नहीं लाना ले जाना मुनासिब होता है तो वहां पर भी ये मेरे साथ तैयार रहती है कि भाई नहीं तुम्हें अकेले नहीं जाना, मैं साथ चलूंगी, बच्चे अगर नहीं जा सकते तो मैं साथ चलूंगी। मैंने कहा कोई बात वहां मतलब ऐसा कई जगह ऐसी होती जहाँ पर मान लो लेडीज को थोड़ा सा
1: जी जी जी असहज महसूस हो जी,
3: हाँ मतलब अब मान लो भाई कोई मीट वगैरह है तो वहां पर तो इनका कहना यह था कि भाई वहां नहीं जाऊं मैं अपना बाहर वेट कर लूंगी, लेकिन नहीं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना
1: जी जी जी जी जी।
3: तो अब मैं तो कभी इमरजेंसी में मान लो अकेले चलना भी हो तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती स्टिक उठाने की, मतलब स्टिक से चलने की।
1: तो आप सर अपनी जिंदगी से आपने क्या अनुभव लिया है अभी तक, आपको क्या महसूस हुआ आपकी अपनी जिंदगी को जब आप देखते हैं और आपके जैसे दूसरे दृष्टिबाधित साथियों की जिंदगी को जब आप देखते हैं?
3: देखिए अपनी अपनी जगह दोनों ही मतलब अलग पहलू हैं, और अगर मैं अपने मुताबिक कहूँ तो भाई मैं ये कहूँगा कि मेरे जैसा मतलब भाई सभी को साथ मतलब जैसे मुझे मिला हुआ है जैसे सभी को साथ मिले
1: जी।
3: लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना भी जरूरी है।
1: बिल्कुल सर
3: ना? आप भी इस बात से सहमत होंगे?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल जी। कुल मिला के आप ये मानते हैं कि भाई आज समय के अनुसार अपने अंदर हम लोग बदलाव लाएं और आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है?
3: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो बहुत ही शानदार सफर रहा आज के हमारे अमराही का आप दोनों के साथ में, और समय जो है वो इशारा कर रहा है कि अब
3: बातों में पता ही नहीं लगा
1: कार्यक्रम समाप्त करने का भी इशारा मिल रहा है। और ये बात सही है सर कि जब आपकी तरह अनुभवी साथियों से बातें होती हैं तो वक्त कब बीत जाता है पता ही नहीं लगता है, और मुझे लगता है कि दृष्टिबाधित साथियों को भी, दिव्यांग साथियों को भी और हमारे समाज को भी ऐसे ही अनुभवों की शायद आवश्यकता है। तो हेमा मैम पहले आपसे जानना चाहेंगे चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे सभी सुनने वालों? जी हेमा मैम।
2: मुझे बहुत अच्छा लगा आपने हमसे डिस्कस किया,
1: ऐसा लग रहा है काफी भावुक हो गई है मैम आप शायद कार्यक्रम करते करते बहुत वाकई में ये इंसान जो भावुक इंसान है वही शायद किसी की फीलिंग्स को समझ सकता है मुझे ऐसा लगता है। जी शुक्ला सर, तो मैम के दिल की बात और आपके दिल की बात आप ही कह दीजिए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सभी सुनने वालों के लिए। जी सर।
3: जी भाई मैं तो यही कहूंगा कि भाई जैसे लाइफ गुजर रही है
1: जी,
3: 28 साल हो गए पता ही भी नहीं लगा
1: जी
3: कैसे निकल गए
1: जी,
3: तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई आगे आने वाले साथियों को भी ऐसे ही अपने साथी का चुनाव करना चाहिए जो कि एक लाइफ पार्टनर, अच्छा लाइफ पार्टनर
1: जी,
3: बने
1: जी,
3: और भविष्य में किसी भी तरीके की कोई दिक्कतें ना आए
1: जी,
3: क्योंकि जो लव मैरिज होती हैं तो उनमें दिक्कतें तो आती ही आती हैं।
1: बिल्कुल सर।
3: लेकिन अगर हम और हमारा साथी
1: जी
3: अब उनमें अटूट विश्वास है
1: जी,
3: तो दुनिया की भी ताकत क्यों ना हो उससे भी हम मुकाबला करने में सक्षम हो जाएंगे।
1: जी जी जी क्या बात, बहुत खूब सर, निश्चित रूप से दोनों का एक दूसरे के लिए समर्पित और एक दूसरे के लिए खड़े होना बहुत जरूरी है, मुझे लगता है कि यही कहना चाह रहे हैं। तो
3: जो होती है अरेंज मैरिज में तो खैर इतनी दिक्कतें
1: नहीं आती हैं, ठीक कह रहे हैं सर जी,
3: लेकिन अरेंज मैरिज होती कहाँ है हम लोगों की, अरेंज मैरिज को करना ही नहीं जब हमारी जो सोच है ऐसी हमारे बीच में जो लोगों की बनी हुई है, तो उसमें अरेंज मैरिज होंगी नहीं, तो फिर जो है ये संभव ही नहीं।
1: बिल्कुल सही है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद हेमा मैम और शुक्ला सर आज।
3: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी, आप दोनों के साथ हमारा ये कार्यक्रम बड़ा अच्छा रहा। तो श्रोताओं, आपने सुना आज दिल्ली से हेमा शुक्ला मैम और राकेश शुक्ला सर को। उम्मीद है आप सबको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और आपकी प्रतिक्रियाएं जरूर मिलेंगी। कैसे प्रतिक्रियाएं देनी है वो मैं रिपीट कर देता हूँ, 94-14-15-14-15 पे कॉल करें, रेडियो मधुबन का यही नंबर है। यदि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो भी इसी नंबर पर ही आपको संपर्क करना है। इसके अलावा आप info@radiomadhuban.in पर ईमेल भी कर सकते हैं। रेडियो मधुबन का ऐप गूगल प्ले स्टोर से ले सकते हैं आप, एंड्रॉइड ऐप। और रेडियो मधुबन को आप सुनते रहें, मुस्कुराते रहें और हर किसी के जीवन में खुशियां लाते रहें। बस यही रेडियो मधुबन की गुजारिश है आप सभी से। तो श्रोताओं, आज तो दीजिए मुझे इजाजत, अगले रविवार हाजिर होऊंगा फिर किसी और हमराही को लेकर के। तब तक के लिए

रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। जिंदगी जीने का नाम है। जिंदगी क्या हर पल एंजॉय की जा सकती है? क्या जिंदगी को बोरिंग से इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है? कितने सारे सवाल आते हैं ना मन में, लेकिन उन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे धीरे धीरे अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे कार्यक्रम लव यू जिंदगी में। और आज

0: कभी कभी हमें लगता है हम बड़ा अच्छा छुपा ले रहे हैं, लेकिन वो किसी और तरीके से एक्सप्रेस होके बाहर आ जाती है। और हम लोग भावनाओं के बारे में ही, इमोशनल अवेयरनेस के बारे में पिछले कुछ एपिसोड से बातचीत कर रहे हैं, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक प्रश्न आया था मेरे सामने, वो मैं आपसे पूछती हूँ। उन्होंने ये बोला कि उनको जब एक्सप्रेस करने का वक्त आता है, वैसे उन्होंने कहा कि वो बहुत इंट्रोवर्ट है, लेकिन कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि मेरी भावनाएं अगर मैं किसी के भी सामने ले आऊंगी तो वो मुझे समझ नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं एक्सप्रेस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं किसी के सामने नहीं लाना चाहता क्योंकि मुझे मालूम है कि नोबडी विल अंडरस्टैंड। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे?
1: बिल्कुल सही समझा उन्होंने अपने आप को, कि एक तो होता है भावनाओं को समझना कि मेरी क्या फीलिंग है, मैं खुशी फील कर रही हूँ, मैं गुस्सा फील कर रही हूँ, मैं उदास फील कर रही हूँ, मैं जेलस फील कर रही हूँ, मैं कंपटीशन फील कर रही हूँ, दूसरे के साथ कंपैरिजन की फीलिंग मुझे है, मुझे क्या मेरी भावनाएं हैं, इसको पहचानना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब हम उन भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं, तब हमें एक अडल्ट होने के नाते फिल्टर लगाना होता है ना?
0: ओके।
1: हाँ, फिल्टर क्यों लगाना है कि अगर हम एज इट इज अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देंगे तो लोगों को वो शायद समझ में भी नहीं आए और शायद पसंद भी ना आए, ये भी हो सकता है ना?
0: जी।
1: सो मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक छोटा बच्चा 9 साल का मेरे पास आता है, उसके माँ बाप उसको लेकर आए इसलिए कि आप इसे थोड़ा सुधारिए। ये जब बड़ों से बात करता है, बड़े कुछ भी पूछते हैं, तो ब्लंटली जवाब देता है, जो उसकी फीलिंग है वैसी ही वो एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहन ने उससे पूछा कि कैसे हो आप, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए। सो अब उसको सवाल समझ में नहीं आया, तो उसने कहा क्यों नहीं दिखाई दिया, आप इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं आपकी, क्या आपको दिखाई? सो उसके जवाब बहुत ब्लंटली होते हैं, फिल्टर किए बिना वो किसी को भी जवाब दे देता है। तो उसके पेरेंट्स को ये चिंता है कि ये एज इट इज अपनी फीलिंग्स या अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर देता है, जो कभी कभी सामने वाले को
0: अनकंफर्टेबल होते हैं,
1: अनकंफर्टेबल। किसी बच्चे से हम इस तरह के जवाब की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं।
0: जी।
1: तो आजकल वो रोज बच्चा मेरे पास आ रहा है। सो मैंने जो ऑब्जर्व किया, ही इज वेरी ऑनेस्ट विद हिमसेल्फ, वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उसके साथ क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें वो समझता है, सोचता है, लेकिन छोटी छोटी व्यावहारिक बातें समझने में वो उसमें दिमाग नहीं लगाता है।
0: ओके।
1: वो जिस तरह से समझता है वैसे ही जवाब देता है, उसमें वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है। लेकिन अगर कोई किताब में से उसको कोई बहुत अच्छा पैराग्राफ पढ़ के सुनाओ, उसका वो एज इट इज एक्सप्लेनेशन देगा, उसके बारे में बताएगा, वो बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब करेगा। पढ़ाई में होशियार है, हर चीज में, लेकिन उसको छोटी सी बात समझ में नहीं आती है कि व्यवहार में कैसे जवाब देना है। सो हम सभी ने डिस्कस किया, उसके पेरेंट्स और हम सभी ने मिलके सोचा कि अभी इसकी उम्र छोटी है, ये बिना फिल्टर के अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है, तो हमें थोड़ा सा उसे टाइम देना चाहिए।
0: ओके।
1: जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा, लोगों के साथ मिलेगा जुलेगा, तो उसको समझ में आएगा कि जवाब कैसे देना है। सो वो समझ रहा है इस बात को, और उसके लिए हमें पेशेंट रहना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि एक कहानी मुझे याद आती है, किसी साइंटिस्ट की है। तो वो साइंटिस्ट बहुत बड़े रिसर्च करते थे, तो जिस कमरे में वो रिसर्च करते थे वहां एक बिल्ली थी और एक बिल्ली का बच्चा था, है ना? सो वो देखते थे कि बिल्ली और बिल्ली के बच्चे के लिए आने जाने का रास्ता उनको बनाना था। तो रिसर्च में इतना बिजी रहते थे कि इस छोटी सी बात को सोचने के लिए उन्होंने टाइम नहीं दिया। उन्होंने सोचा मेरे पास 2 बिल्लियां हैं, तो मुझे 2 होल्स बनाने हैं, एक बड़ा होल और एक छोटा होल।
0: ओके।
1: तो उन्होंने 2 होल बना दिए, एक बड़ा होल, एक छोटा होल। सब लोग आके पूछते थे ये आपने 2 होल क्यों बनाए हैं। कहा बड़ी बिल्ली के लिए बड़ा होल, छोटी बिल्ली के लिए
0: छोटा होल।

0: वो इतनी छोटी सी बात नहीं समझ सके कि अरे बड़े होल में से छोटी बिल्ली भी जा सकती है ना, उसके लिए अलग होल बनाने की जरूरत
1: नहीं है।
0: तो जब कई लोग एक अलग लेवल पर, एक जीनियस लेवल पर होते हैं, तो वो कभी कभी छोटी छोटी बातों को नहीं समझ पाते
1: क्योंकि ब्रेन कहीं और ज्यादा इन्वॉल्व होता है। तो जैसे आपने बताया वो बच्चा भी बहुत शार्प है, इंटेलिजेंट है, तो और बहुत ऑनेस्ट भी है, जैसा आपने कहा अपनी फीलिंग्स के साथ, उसे वही फील हो रहा था तो उसने वही कह दिया। यहाँ मेरे पास एक और सवाल आता है।
0: नहीं, आपका सवाल में से मुझे लगता है कि मैंने एक आधा जवाब दिया।
1: जी जी,
0: जो सवाल था आपका उसमें आपने कहा कि कोई मुझे समझेगा नहीं।
1: हाँ जी, इसलिए वो एक्सप्रेस नहीं करते।
0: नहीं करते हैं, तो एक्सप्रेस करो या नहीं करो, लेकिन एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी।
1: ओके, कैसे?
0: मेरी किस तरह की फीलिंग है, मैं क्या फील कर रही हूँ, मुझे कैसा लग रहा है, मेरी इस समय कौन सी भावना है, अगर मुझे अच्छी तरह से पता हो। और मैं किसी के सामने इसलिए नहीं व्यक्त करती हूँ कि वो मुझे नहीं समझेंगे, मुझे पता है, लेकिन मुझे किसी न किसी तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त जरूर करना है। वो कैसे हो सकता है? आप कोई चित्र बना दो।
1: ओके,
0: हो सकता है आप कहीं किसी डायरी में लिख डालो ना, लिखना सबसे अच्छी एक्सप्रेशन है। हो सकता है आप गार्डनिंग करते समय पेड़ पौधों को वो बात सुना दो, जैसी है वैसी, क्योंकि वो जज नहीं करेंगे आप, है ना। या फिर हम जो करते हैं मेडिटेशन में, हम जब ईश्वर से बात करते हैं, परमात्मा से बात करते हैं या यूनिवर्स से बात करते हैं, तो हम अपनी बात एज इट इज यूनिवर्स को सुना देते हैं।
1: ओके,
0: क्योंकि
1: इंटरेस्टिंग है।
0: हाँ, क्योंकि यूनिवर्स तो आपको पलट के जवाब नहीं देगा, केवल सुनेगा, है ना, और एक्सेप्ट भी करेगा। परमात्मा भी ऐसे ही है, जो आपको जज नहीं करते हैं, जो आपको रिमार्क नहीं देते आप ऐसे हो आप ऐसे हो, जो आपको गलत नहीं समझते हैं। तो जब हम अपनी फीलिंग्स को, जैसे कहा जाता है ना लेटर टू गॉड, हम ये प्रैक्टिस भी करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ कि राइट अ लेटर टू गॉड, गॉड इज योर फादर, सो राइट अ लेटर टू गॉड। उसमें शिकायत हो सकती है, उसमें अपने दिल की बात हो सकती है एज इट इज, एंड वो इतने उदार दिल है कि वो कभी भी आपकी भावनाओं को नजरअंदाज नहीं करेंगे, आपको अच्छी तरह से समझेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्रेस, हमको एक्सप्रेस करना जरूरी है।
1: ओके, तो ये मतलब जैसा आपने कहा कि भले हम लोगों से शेयर करने में अभी अनकंफर्टेबल हैं एट प्रेजेंट, तो हम ऐसे भी खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं।
0: कर सकते,
1: बट एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, भावनाओं को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है।
0: एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो उसका ऑपोजिट वर्ड है सप्रेस। तो क्या होता है, हमारी भारतीय संस्कृति में, भारतीय परिवेश में हम देखते हैं कि महिलाएं और गर्ल्स, फीमेल है, फीमेल्स है, उनको अक्सर कहा जाता है कि चुप रहो, बोलो मत। या कोई बहू है, बेटी है, या किसी भी रोल में है फीमेल्स, तो उनको दबाया जाता है, उनकी फीलिंग्स को शेयर करने का मौका नहीं मिलता है, तो वो सप्रेशन में चली जाती है। और सप्रेस की हुई फीलिंग्स, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि आप अगर एक छोटी सी स्प्रिंग है, अगर आप उसको दबा के रखेंगे प्रेशर दे, तो वो दबी रहेगी, लेकिन जैसे ही आप हाथ उठाएंगे
1: तो एकदम से बाहर आती है,
0: उछल कर कूद कर कहीं और चली जाएगी। तो वैसे ही जब हम अपनी भावनाओं को सप्रेस करते हैं, तो हम धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ बढ़ते। उसको वेंट आउट नहीं हुई ना हमारी फीलिंग्स, उसको कई बार कहते हैं आप बहुत अच्छा खाना खा लेते हो पर थोड़ा ज्यादा खा लेते हो, तो क्या होता है, उल्टी हो जाती है,
1: वॉमिटिंग हो जाती है,
0: या आपको वॉमिटिंग करनी पड़ती है, वो हजम भी नहीं हो रहा है और मैंने ओवर ईटिंग कर लिया है। तो वो उल्टी करना एक्सप्रेशंस के साथ भी ऐसा ही होता है, फीलिंग्स के साथ भी ऐसा ही होता है। दबा दबा दबा दबा के सप्रेस कर कर करके फिर एक टाइम आता है कि आपको उल्टी करना पड़ता है। तो वो अगर उल्टी ना हुई, निकला नहीं आपके दिमाग से वो बातें, तो फिर वो आपको ओवरथिंकिंग की तरफ ले जाए। क्योंकि आप अंदर ही अंदर अपनी भावनाओं के साथ रिपीट करते रहोगे उन थॉट्स को, उन विचारों को,
1: और वो बिल्कुल भी अच्छा दृश्य नहीं होगा। जैसा आपने कहा, इट इज लाइक सब कुछ एकदम से बाहर आना हैंडल भी नहीं कर पाएंगे उस वक्त, तो शायद इतना कुछ एक साथ डील भी नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, जो बहुत बार होता है सच में, हमें से बहुत लोगों के साथ होता है, एट एनी पॉइंट शायद हुआ है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मिलता जुलता ही था ये सवाल, लेकिन मैंने सोचा आपसे थोड़ा अलग से पूछती हूँ, क्योंकि एक डिफरेंट केस था। उन्होंने ये कहा कि वो एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन उनका जो फ्रेंड सर्कल है वो थोड़ा सा उनसे फाइनेंशियल स्टेटस में अलग है, एंड उसमें उनको कई बार ऐसा लगता है मैं अगर ओरिजिनली एक्सप्रेस करूंगा तो थोड़ा मजाक उड़ाया जाएगा या ऐसा कहा जाएगा, जो उनके साथ एक दो इंसिडेंट्स हुए भी हैं, एंड उन्होंने ये कहा आई एम ट्राइंग टू चेंज, तो मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूँ एंड आई विल वन डे, अभी मुझे थोड़ा सा हाइड करना पड़ता है अपनी पर्सनालिटी को या अपनी चीजों को, मैं अभी थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील करता हूँ, बट मैंने ये प्लान किया है कि मैं अपने आप को इतने समय में एक न्यू मी बना लूंगा, एक नया मैं बन जाऊंगा जो बाकी लड़कों की तरह है, जो कॉन्फिडेंट है, जो मस्ती मजाक करता है ज्यादा, अभी वो वैसे नहीं है, बट ही सेड कि वो उनका प्लान है, तो इस बारे में क्या लगता है आपको?
0: बिल्कुल आपने सही कहा, मैं भी इन चीजों से गुजरी हूँ। जब स्कूल कॉलेजेस में होते हैं तो अलग अलग बैकग्राउंड फाइनेंशियल स्टेटस से बच्चे आते हैं, तो हम तो मुंबई के स्कूल में थे तो हमने देखा हमारे स्कूल में गवर्नर के बच्चे भी थे, तो बड़े बड़े घरों से बच्चे थे, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनके पास पैसे होते थे, वो रिसेप्शन में जाकर कुछ खरीद कर खा लेते थे, परंतु उनके बीच में रह के हमारे पास उतनी सारी सुविधाएं नहीं होती थी, तो जो हमें उनके साथ रहते हुए भी गिल्टी फील नहीं कराता था या लो फील नहीं कराता था, वो चीज थी हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट।
1: ओके,
0: हाँ, सो वो कैसे बना, तो मैं आप एक उदाहरण देना चाहूंगी, मेरे ही बचपन का उदाहरण है। सो मेरे माता पिता बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु जीवन का काफी अनुभव था उन्हें, पुराने लोगों को था जीवन का अनुभव, तो एक घटना के माध्यम से उन्होंने मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाया। तो एक बार क्या हुआ, बहुत छोटी उम्र थी, 4-5 साल की, और सभी आसपास पड़ोस के दोस्तों ने कहा कि सब लोग अपने अपने घर से थोड़े थोड़े पैसे लेके आ जाओ, हम बहुत अच्छी चॉकलेट्स लेंगे, और हमारी वो छोटी सी चॉकलेट पार्टी होने वाली थी। दोपहर का समय था, मैं भी अपने घर में गई, देखा सब लोग सो रहे हैं, अब मुझे तो पैसे चाहिए थे, तो मैंने देखा कि टेबल पर कुछ चिल्लर पड़ी है, हमारे जमाने में 10-5 पैसे हुआ करते थे। और वो 25 पैसे का वो क्वाइन होता था
1: जी।
0: तो वो चिल्लर मैंने उठाई और मैं चॉकलेट खा के खत्म भी कर लिया, मतलब एंजॉय किया हमने वो दोपहर में। अब शाम हुई तो मम्मी पापा ने देखा कि इधर पैसे कुछ थे वो अभी दिखाई नहीं दे रहे, तो सबको अनाउंस किया गया है किसने लिए, क्या यहाँ कहाँ गए पैसे, तो मैंने आगे आके कहा कि मैंने लिए और मैंने चॉकलेट्स खाए। सो मम्मी पापा ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सब लोग इधर उधर हो गए, फिर उन्होंने बुलाया, उन्होंने मुझे पूछा आपने पूछा था किसी से पैसे उठाते समय, तो मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने पहली शिक्षा दी कि देखो चाहे आपके घर की चीज है, चाहे आप पड़ोस में खेलने जाते हो, उनके घर में कोई चीजें पड़ी है, छोटी है बड़ी है, पैसे है, चीज वस्तु है, कोई भी चीज आपको पूछे बिना हाथ नहीं लगाना है ना, किसी की भी परमिशन लिए, क्योंकि आपकी नहीं है ना, तो आपको परमिशन लिए बिना उसको यूज नहीं करना है। उसी का मौका लेकर उन्होंने दूसरी बात समझाई, देखो बच्चा हमारी जो हैसियत है उसके अनुसार हम आपको सब कुछ देना की कोशिश करते, तो आपको उस बात की खुशी होनी चाहिए जो हम देते हैं उसमें आपको खुश रहना है। जब आप पड़ोस में देखते हो कि उनके मम्मी पापा उनको अच्छी अच्छी गुड़िया देते हैं, अच्छे अच्छे खिलौने देते हैं, लेकिन आपके पास थोड़ी पुरानी है, थोड़ी छोटी है, आपको वही अच्छी लगनी चाहिए, आपकी नजर उनकी चीजों पर नहीं जानी चाहिए, और अपने आप को आपको कम नहीं समझना चाहिए, जो आपको मिला है वो भगवान का दिया हुआ एक बहुत सुंदर गिफ्ट है, उसके लिए आपको थैंकफुल रहना है, लेकिन दूसरों की चीजों को देखकर अपने आप को छोटा नहीं समझना है। ये जब उन्होंने कहा तो उन्होंने और एक बात कही कि इस समय हम आपको जो बता रहे हैं बातें वो शायद आपको समझ में ना आए, पर आप इसको याद रखना और इसी को यूज करना। सो उस छोटी सी उम्र में वो बात याद रह गई कि दूसरों के साथ मुझे कंपेयर नहीं करना, उनकी सोने की चैन होगी, स्टील की होगी, पीतल की होगी, मुझे उस पर नाज होना चाहिए, उनके कपड़े बहुत ब्रांडेड होंगे, बहुत फैशनेबल होगे, मेरे सिंपल होगे लेकिन स्वच्छ होगे, मुझे उस पर नाज होना चाहिए। सो वो चीज दिमाग में इतनी बैठी थी। तो इतने बड़े घरों के लोग होने के बावजूद भी हमें कभी अपने लिए गिल्टी फील नहीं हुआ या कम फील नहीं हुआ, हम उनके साथ उतना ही कॉन्फिडेंस से बात करते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि उनके साथ दोस्ती करना, उनके साथ रहना और अपनी ओरिजिनलिटी बना के रखना, वो बहुत पैसे खर्च करते थे लेकिन हमारे पास जो थोड़े होते थे उसमें से हम थोड़ी चीज लेते थे और हम शेयर करके खाते थे। मुझे तो आश्चर्य होता है कि जब मुझे ये पता चला कि वो बड़े घर के बच्चे मेरे टिफिन से खाना खाते थे और उनको मेरे घर का खाना अच्छा लगता था, तो मैंने पूछा ऐसी क्या बात है जो आपको मेरे घर का, तो वो कहते थे आप हमारा टिफिन ले लो, आपका हमें दे दो। तो मैं कह रही थी मेरा तो इतना सिंपल है, आपको मेरा क्यों अच्छा लगता है? कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता तुम्हें तुम्हारी मम्मी कितना प्यार से बना के दे रही, उसका टेस्ट हमें पता है, इसलिए तुम्हारा टिफिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो तब मुझे महसूस हुआ कि अपने छोटे से घर में उन्हें ले जाने में मुझे शर्म नहीं आई।
1: प्यार मतलब उससे भी ऊपर है। कई बार हम भावनाओं को कम रख लेते हैं, पैसों से कुछ और बनने की कोशिश करते हैं, पर जब ओरिजिनलिटी रहती है तो ओरिजिनली लोग पसंद करने लगते हैं। कितना ब्यूटीफुल एग्जांपल दिया दीदी आपने, और मुझे लगता है कि ना प्रैक्टिकल है ये।
0: लोग क्या करते हैं स्कूल कॉलेज में शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं, कपड़ों से, अपनी बातों से, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्यों? आप जो हो जैसे हो वैसे ही प्रेजेंट रहो, तो वो भी एक भावनाओं की सच्चाई जो है
1: जी,
0: वो सामने वाले के दिल को छू जाती है।
1: ये जो न्यू मी का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैंने ये वाला शब्द सुना उनके मुंह से न्यू मी, तो ये न्यू मी बनने के लिए क्या हम अपनी भावनाओं को फेक करना या फिर कुछ और बनने के लिए, अगर कहीं हमें जो चीज सही नहीं लग रही है वो भी फील करना, जैसे उन्होंने बताया ग्रुप में कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं किसी का, तो उनको इनिशियली वो नहीं होता था उनसे, क्योंकि शायद उनको गिल्टी लगता होगा, ये वर्ड तो नहीं बोला उन्होंने, लेकिन बाद में वो कोशिश करने लगे कि मैं भी उड़ाऊं मजाक थोड़ा, मैं भी उस प्रकार से करूं। तो ये अपनी भावनाओं को खुद ही हम कुछ और समझ रहे हैं क्या, क्या कंफ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है ऐसा लग रहा है?
0: देखिए, एक मजाक उड़ाने की जहां तक बात है
1: जी,
0: तो मुझे आप बताओ, उनको ही पूछना चाहिए हमें कि आपको किसी का मजाक उड़ाते हुए अच्छा लग रहा है क्या?
1: वो इनिशियली नहीं लग रहा था, बट उन्हें लगा कि ठीक है नहीं लगना चाहिए मुझे गिल्टी, बिकॉज ये ऐसा ही कूल होता है। या
0: ग्रुप में शामिल होने के लिए हम भी मजाक करना शुरू कर देते
1: जी,
0: है ना, कि मुझे उस ग्रुप में शामिल होना है। कई बार है ना पीयर प्रेशर इस तरह का होता है कि जैसे कुछ बच्चे गलत काम करते हैं, कहीं चोरी करना, कहीं कुछ सिगरेट पी लेना, कहीं शराब का घूंट लगाना, तो जो ऐसे लोग होते हैं जो ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या जिनको ये पसंद भी नहीं है, वो अपने आप को उस ग्रुप का हिस्सा बनाने के लिए उनकी जैसी आदतें डालने की कोशिश करते,
1: अपनी फीलिंग्स को ही नेगलेक्ट कर देते हैं।
0: यस, ये फेक मी है,
1: इसमें न्यू मी नहीं है।
0: ये न्यू मी नहीं है, ये फेक मी है, और ये फेक मी के साथ लंबा समय जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो असली मी को समझना, न्यू मी करो बट वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं। सो यहाँ हम नेगेटिव फीलिंग्स और पॉजिटिव फीलिंग्स, जब हम इमोशंस की बात कर रहे हैं तो आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। ये हमें कि नेगेटिव फीलिंग्स क्या है, कि किसी के बारे में मुझे ईर्ष्या होना, उसको देख के मुझे अपने आप में कमी महसूस होना, ये नेगेटिव फीलिंग्स है ना।
1: मुझे अच्छा फील नहीं किया, अच्छा बुरा लग रहा है, बुरा लो लग रहा है।
0: लोग बड़े बड़े शौक रखते हैं, मुझे भी ऐसे लगता है मैं क्यों नहीं रख सकती हूँ ऐसे, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, सो हमें लगता है कि मुझे भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, तो ये कंपैरिजन होता है। हाँ, कुछ लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, फिर हम सोचते हैं मैं क्यों नहीं हूँ। तो क्या होता है, हमारा सेंटर ऑफ फोकस जो है खुद से निकलकर दूसरों के अराउंड घूमता रहता है ना। तो अब अपने सेंटर ऑफ फोकस को जब मैं अपने पास वापस ले आती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि अरे उनमें अगर ये चीज अच्छी है तो मुझमें ये चीज अच्छी है, वो ये काम कर सकते हैं तो मैं ये काम अच्छा कर सकती हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो करते हैं वही मैं करूं।
1: सेम, जरूरी नहीं है।
0: नहीं है, मुझे जो आता है, मेरी जो फीलिंग्स है, मैं उसके साथ चलूं, उसके साथ जिंदा रहूं, वो है रियल एंड न्यू मी।
1: बहुत सुंदर डेफिनेशन है। और कई बार हम सब इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं पर फीलिंग्स डिपेंडेंट ही रहती हैं। सेम ही बनना चाहते हैं, वैसे यूनिक बनना चाहते हैं पर फीलिंग्स सेम करना चाहते हैं किसी ना किसी के साथ, ग्रुप के साथ, आइडेंटिफाई जिनके साथ हम करते हैं। बहुत सुंदर है। मेरे मन में और भी सवाल है, मुझे लगता है अभी तो हमें समय इजाजत नहीं देगा, लेकिन आने वाले एपिसोड में आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि और हम पॉजिटिव फीलिंग्स की तरफ कैसे जाएं, या फिर कई बार हमें रॉन्ग स्टिमुलस यानी मान लीजिए किसी को चिढ़ा कर या गिरा कर अगर स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है तो फीलिंग तो मुझे स्ट्रॉन्ग चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, बट उसके लिए मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ तो एक्शन और फीलिंग में क्या रिलेशन है, ये भी थोड़ा आपसे क्लियर करेंगे। लेकिन फिलहाल जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है दीदी कि कुछ अगर आप मेडिटेशन या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कराएं जो हम अपनी पॉजिटिव फीलिंग से और अटैच हो पाए और मी, जो हम न्यू मी या रियल मी की बात कर रहे हैं, उसको रियली रखें।
0: जी, सो मैं चाहूंगी अपने श्रोताओं से कि वो 2 मिनट के लिए अपने आप को कहीं सेटल कर ले, किसी एक शांत, स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर बैठ जाए, रिलैक्स करे अपने माइंड और बॉडी को, गहरी और लंबी सांस ले और उस सांसों को ध्यान लगाते हुए, सांसों पर ध्यान एकाग्र करते हुए इमेजिन करे कि आप अपने आप से अलग हो रहे हैं। आई एम डिटैचिंग माई सेल्फ फ्रॉम मी। मैं थोड़ा सा दूर जाकर दूर से अपने आप को देख रही। गहरी और लंबी सांस ले और देखिए कि मुझे एक जो शरीर मिला है, इस शरीर के साथ मैं हर जगह पर एक अलग अलग रोल प्ले कर रही हूं। घर में मेरा रोल बेटी का है, बेटे का है, भाई या बहन का है। सो देखिए अपने आप को उस रोल में प्ले करते हुए, एक्ट करते हुए, एक्सप्रेस करते हुए 10 सेकेंड्स के लिए देखिए अपने आप को वो रोल प्ले करते हुए। मैं अपने हर रोल में ओरिजिनल हूँ, रियल हूँ। मैं एक बेटा या बेटी के रूप में माता पिता के साथ अपने ट्रू रियल एक्सप्रेशन से प्रेजेंट हूं। माता पिता के प्रति मैं कृतज्ञ हूं, शुक्रगुजार हूं। गहरी और लंबी सांस ले। स्कूल कॉलेज में अपने रोल को देखें, दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, सबके साथ अपने रोल को दूर से ऑब्जर्व करें और उसमें रियलिटी डालें। आप जो हैं, जैसे हैं, वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करें। उस ओरिजिनलिटी के साथ लोग आपका रिस्पेक्ट करते हैं। देखिए अपने आप उस रियलिटी के साथ, लोग आपकी पहचान करते हैं। चाहे आप अमीर है, गरीब है, छोटे हैं, बड़े हैं, होशियार है, कम होशियार है, एवरेज है, आप जैसे हैं वैसे अपने आप को प्रेजेंट करें। लोग सच्चाई की, ईमानदारी की, रियलिटी की कद्र करते हैं। इसलिए गहरी और लंबी सांस ले, अपने आप से वादा करे, मैं जो हूं, जैसी हूं, वैसे अपने आप को बहुत लाइक करती हूं। अपनी अच्छाइयां और कमियों के साथ मैं खुद का स्वीकार करती हूं। मैं अपने आप को, मैं जो हूं, जैसी हूं, वैसे ही प्रेजेंट करती हूँ। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच दीदी। मुझे लगता है कि रियलिटी चेक है ये हमारे लिए, और अपने आप को वो करते देखना, जैसा मैं हूँ वैसे ही पेश करना, अगर अभी लोग स्वीकार नहीं करते हैं तो धीरे धीरे कर लेंगे, पर उसके लिए मैं ना बदलूं। बहुत सुंदर आपने एग्जाम्पल्स के साथ हमें प्रैक्टिकल एक हमारी वर्जन की ओर लेके गए। मैं आशा करती हूँ हमारे दोस्तों को बहुत फायदा हुआ होगा इससे। दोस्तों, अगर आप कभी भी थोड़ा भी लो महसूस कर रहे हैं या परेशान लग रहा है आपको कि मैं अलग हूँ, मुझे कोई नहीं समझता, तो दोस्तों हम बस ये कहना चाहेंगे कि आप अकेले रहिए और आप जुड़े रहिए हमारे साथ इस सफर में, इस कार्यक्रम में। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें गाइड करने के लिए।
0: धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों, फिलहाल वक्त हो गया इजाजत लेने का। मुलाकात होगी लव यू जिंदगी की अगली कड़ी में। तब तक आइए, दिल खोल के कहे लव यू जिंदगी। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: वंदे मातरम भारतीय क्रांतिकारियों का मुख्य नारा और प्रेरणा स्रोत था। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जैसे क्रांतिकारियों के लिए ये नारा मातृभूमि के प्रति समर्पण और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक था। जब उन्होंने 1 दिसंबर 1915 को अफगानिस्तान यानी काबुल में भारत की पहली अंतरिम सरकार बनाई थी, तब वंदे मातरम गीत बरकतुल्ला खान, ओबेदुल्ला सिंधी जैसे उनके साथियों के लिए भी राष्ट्रवाद की भावना का मूल मंत्र था। उन्होंने इस गीत की क्रांतिकारी भावना को न सिर्फ आत्मसात किया बल्कि इसे अपने सशस्त्र और कूटनीतिक संघर्षों में एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में उपयोग भी किया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत की पहली अस्थाई सरकार के राष्ट्रपति भी रहे। एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा के आज के एपिसोड में सुनेंगे इन्हीं वीर क्रांतिकारी राजा महेंद्र प्रताप सिंह की कहानी, जो काफी आध्यात्मिक भी थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक साहसिक स्वतंत्रता सेनानी और वैश्विक क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि एक ऐसे विचारक थे जिनकी सामाजिक और धार्मिक विचारधारा आज भी बहुत प्रासंगिक है। उनके विचारों में प्रगतिशील सोच झलकती थी। उसमें भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं का लोकतंत्र, शिक्षा, समानता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग जैसे आधुनिक आदर्शों का मेल था। उनके दुनिया को देखने का नजरिया आध्यात्मिक होने के बावजूद किसी भी तरह के कट्टर या रूढ़िवादी विचारों से मुक्त था।
1: बन्नो, क्या तुम भारत के उस आर्यन पेशवा की कहानी सुनना चाहोगी जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना घर, राजपाट, धन दौलत सब त्याग दिया?
2: हाँ दीदी, मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। वे आर्यन पेशवा कौन थे?
1: उनका नाम था राजा महेंद्र प्रताप सिंह। उन्होंने देश से हजारों मील दूर अफगानिस्तान की सरजमी पर भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाई थी। आओ चलते हैं साल 1915 के काबुल में।

0: राजा महेंद्र प्रताप जी, आप जर्मनी के कैसर विलियम से मिलकर यहां आए हैं। आपके इरादे बुलंद हैं, लेकिन आप ब्रिटिश हुकूमत से सीधे टक्कर लेने की बात कर रहे हैं। क्या आपको खौफ नहीं लगता?
1: अमीर साहब, खौफ तो उन्हें होना चाहिए जो दूसरों की जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं। मैं तो अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराना चाहता हूं। गुलाम होने से अच्छा है कि मैं देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दूं।
2: मैं राजा साहब की बात से मुत्तफिक हूं। हिंदुस्तान के कोने कोने में आजादी की तड़प दिलों में सुलग रही है। अमीर साहब, हमें बस इस चिंगारी को शोला बनने में मदद करना है।
0: आपके हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। आप अपने अगले कदम के बारे में बता सकते हैं? क्या सोचा है आगे का आपने?
1: हम आज ही यानी 1 दिसंबर 1915 को काबुल की सरजमीन से भारत की अंतरिम सरकार का ऐलान करते हैं। मैं इसका राष्ट्रपति हूं और मौलवी बरकतुल्ला इसके प्रधानमंत्री।
3: एक ओर काबुल में राजा महेंद्र भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने की रणनीति बनाने में जुटे थे, दूसरी ओर दिल्ली स्थित ब्रिटिश मुख्यालय में एक अलग ही गहमा गहमी चल रही थी।
4: जनाब, राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अपनी सरकार बनाने की घोषणा कर दी है। वे अब रूस और जर्मन से मदद मांग रहे हैं।
5: What rubbish! This is treason! राजद्रोह है ये।
4: जी जनाब, राजा साहब ने तुर्की के सुल्तान और रूस के जार को भी चिट्ठियां भेजी हैं। वे सिल्क के कपड़ों पर गुप्त संदेश भेज रहे हैं।
5: मुझे वो बागी जिंदा या मुर्दा चाहिए। चाहो उसको पकड़ो। हाथरस और वृंदावन में उसकी जितनी संपत्ति है उसे जब्त कर लो। उसके सिर पर इनाम रख दो। हमारी सरकार के लिए वो अब एक बड़ा खतरा बन गया है। उसे छोड़ना नहीं है।
3: राजा महेंद्र को एहसास था कि अंग्रेजों से लड़ाई आसान नहीं होगी, इसलिए वो जर्मनी और रूस से समर्थन हासिल करने का प्रयास कर रहे थे। मौलवी बरकतुल्ला के साथ राजा महेंद्र रूस लेनिन से मिलने भी गए। रूस की सीमा के पास एक कैंप में मौलवी बरकतुल्ला ने एक बार फिर से महेंद्र प्रताप से पूछा कि क्या वो सचमुच ब्रिटिश हुकूमत के साथ संघर्ष के लिए तैयार हैं, जबकि उनके परिवार वालों का जीवन खतरे में पड़ सकता है।
2: राजा साहब, अंग्रेजों ने आपकी तमाम जमीन जायदाद पर कब्जा कर लिया है। आपके खानदान पर सितम ढाए जा रहे हैं। क्या आप खामोश बैठे रहेंगे?
1: बरकतुल्ला साहब, देश गुलाम है। मैं अपने निजी जायदाद या अपने परिवार के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है। अगर भारत को आजाद करने के लिए मुझे पूरी जिंदगी यूं ही खाना बदोश बनकर रहना होगा तो मैं रहूंगा।
2: मुझे आप पर फख्र है, इसीलिए तो आप राजा हैं। आपको इत्तला देनी थी कि लेनिन से हमारी मुलाकात का वक्त तय हो चुका है। रूस से भी पूरी तवक्को है, वो हमारी मदद जरूर करेगा।
1: मौलवी साहब, मेरा सिर्फ ये कहना है कि क्रांति की मशाल किसी भी तरह बुझनी नहीं चाहिए। दुनिया के हर कोने में भारत की आजादी की गूंज पहुंचनी चाहिए।
3: लोकमान्य तिलक और राजा महेंद्र प्रताप को लेनिन का समर्थन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के पक्ष में उनका स्पष्ट रुख हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का एक दिलचस्प पहलू है। बोल्शेविक क्रांति के बाद जब वहां कम्युनिस्ट शासन स्थापित हुआ तो महेंद्र प्रताप व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में सोवियत शासन के मेहमान के तौर पर उस समय के सोवियत संघ गए। उन्होंने उनसे और लियोन ट्रॉटस्की जैसे दूसरे नेताओं से बातचीत की। यह साल 1918 की घटना होगी। तब लेनिन ने लोकमान्य तिलक को क्रांतिकारी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जनक बताया था। जब तिलक को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन की न सिर्फ निंदा की बल्कि उनकी रिहाई की मांग भी की।
6: बन्नो, अब तक तो तुम समझ ही गई होगी कि राजा महेंद्र प्रताप क्या थे, उनका उद्देश्य कितना स्पष्ट था। लेकिन गांधी जी को उनके तरीके पसंद नहीं थे।
7: ऐसा क्यों दीदी?
6: बन्नो, दोनों का लक्ष्य एक था लेकिन वहां तक पहुंचने का तरीका अलग अलग। भारत की आजादी की लड़ाई के लिए समर्थन जुटाने के मकसद से महेंद्र प्रताप ने कई देशों की यात्रा की और महात्मा गांधी के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा। लेकिन गांधी जी उनके तरीकों से सहमत नहीं थे। हाँ, वे देश के प्रति उनके प्रेम और उसे आजाद कराने की समर्पित कोशिशों की तारीफ करते थे। गांधी जी ने 4 जुलाई 1929 को यंग इंडिया में लिखा भी था,
8: राजा महेंद्र प्रताप एक महान देशभक्त है। देश के लिए इस नेक इंसान ने स्वेच्छा से निर्वासन का जीवन चुना है, लेकिन विजय अहिंसा से ही प्राप्त हो सकती है।
3: इस पत्र के जवाब में राजा महेंद्र प्रताप ने भी उन्हें चिट्ठी लिखी।
1: मेरी समझ से अहिंसा का मतलब है अपने विचारों, बातों या कामों से किसी को भी मन या शरीर से दुख न पहुंचाना। हालांकि इस सिद्धांत का पालन यहीं तक सीमित नहीं है। अहिंसा का पालन करने वालों को उन सभी हालात को बदलना होगा जिनमें हिंसा होती है या हिंसा की संभावना बनती है। मैं इसे सबसे बुरी तरह की हिंसा अहिंसा के ठीक उलट मानता हूं। जब कोई व्यक्ति दूसरों की हिंसा को सहन करता है या उसमें मदद करता है। आज भारत में बहुत से लोग अहिंसा की खूबियों पर बड़े अच्छे उपदेश देते हैं, लेकिन वो अंग्रेजों की हिंसा को खत्म करने के लिए बहुत कम काम करते हैं। अहिंसा की सच्ची भावना के तहत मैं अपनी इच्छा दूसरों पर थोप नहीं सकता। हर किसी को खुद तय करना चाहिए कि उसे क्या करना है। मैं बस उस शाश्वत सत्य की ओर इशारा कर सकता हूं कि सृष्टिकर्ता निश्चित रूप से अपनी सभी रचनाओं स्त्री पुरुष का भला चाहता है। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि हर कोई हर तरह की हिंसा को खत्म करने की पूरी कोशिश करे, यही अहिंसा है।
3: विदेश की धरती से अपने वतन को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए राजा महेंद्र प्रताप जो कर सकते थे वो कर रहे थे, लेकिन रह रह कर उन्हें अपने देश की याद भी सताती थी। आखिरकार वो समय भी आया। साल था 1946, जब राजा महेंद्र प्रताप वर्षों के निर्वासन के बाद भारत लौटे। जर्मनी, जापान और अमेरिका की खाक छानने और करीब 32 साल के लंबे निर्वासन के बाद वर्ष 1946 में जब राजा महेंद्र प्रताप भारत लौटे तो पूरा देश उनके स्वागत के लिए मानो उमड़ पड़ा। रेलवे स्टेशन पर पांव रखने की भी जगह नहीं थी। सब लोग राजा जी को सुनना चाहते थे और उन्होंने उन्हें संबोधित भी किया।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, 32 साल तक अपनी मिट्टी से दूर रहा, आज धन्य महसूस कर रहा हूं। मैंने अपना सब कुछ खोया, महल, संपत्ति और भी बहुत कुछ, लेकिन नहीं खोई तो उम्मीद कि एक दिन देश जरूर आजाद होगा, गुलामी की जंजीरों से मुक्त होगा। इतना ही नहीं, असल आजादी तब कही जाएगी जब देश अशिक्षा एवं नफरत से भी मुक्त होगा।
3: राजा महेंद्र प्रताप एक सच्चे समाज सुधारक, क्रांतिकारी और लेखक थे। उनकी सोच प्रगतिशील एवं दूरदर्शी थी। आजादी के बाद उन्होंने 1957 में मथुरा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और लोकसभा में पहुंचे। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को परास्त किया था। पश्चिमी यूपी की लोक कथाओं में इनके किस्से आज भी सुने जाते हैं। उन्होंने विश्व शांति के लिए एक विश्व संघ की बात की थी। इसी संदर्भ में 14 मई 1957 को उन्होंने लोकसभा में कहा था,
1: विश्व संघ की स्थापना के लिए सभी धर्मों का सहअस्तित्व और उनके बीच आपसी सद्भाव बहुत जरूरी होगा। ओम, देव, अल्लाह या होवा, आप चाहे जिसे भी मानते हो, सब एक ही ईश्वर का शरीर और आत्मा है जो एकमात्र और अद्वितीय है। अलग अलग धर्म एक ही ईश्वर को अलग अलग नाम देते हैं। मेरे लिए सभी धर्म एक ही परम सत्य तक ले जाने वाले सही रास्ते हैं।
3: राजा महेंद्र की धार्मिक सोच के केंद्र में एक ऐसे ईश्वर का विचार था जो सर्वव्यापी और निराकार है। उन्होंने कर्म कांड और संप्रदायवाद को नकारा और प्रेम के धर्म की वकालत की। एक समय था जब राजा महेंद्र ने अपना नाम पीटर पीर प्रताप रख लिया था, क्योंकि वो हिंदू, मुस्लिम, सिख एवं ईसाइयों के भाईचारे के पक्षधर थे। उन्होंने 1916 में काबुल के बागे बाबर में रिलीजन ऑफ लव नाम की किताब भी लिखी। नवंबर 1929 में अपने सर्कुलर वर्ल्ड फेडरेशन में अपनी धार्मिक मान्यताओं के बारे में वो लिखते हैं,
1: एक रचनात्मक शक्ति, प्रकृति या ईश्वर ने हमारे ब्रह्मांड, ग्रह और मानवता की रचना या विकास की शुरुआत की। प्रकृति के नियम रचना की प्रक्रिया में काम कर रहे हैं। हमारी पृथ्वी का घूमना और विकास की प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में मदद करते हैं। विचार लोगों को अपनी तत्कालिक इच्छाओं से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करते हैं। सभी धर्म उन विचारों का संग्रह है जो मानव जाति को मानवीय कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिए गए हैं। मेरा सुझाव है कि धर्म का उद्देश्य हमारे आध्यात्मिक कल्याण को बनाए रखना है। जो लोग धार्मिक मामलों पर विवाद करते हैं, वे शायद ही कभी सच्चे धार्मिक होते हैं। मेरा विश्वास सभी धर्मों की एकता को दर्शाता है। मेरा विश्वास प्रेम का धर्म है।
3: राजा महेंद्र प्रताप के पड़पोते चरत प्रताप सिंह कहते हैं,
9: वे राजनेता से ज्यादा एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया। देश का पहला टेक्निकल स्कूल खोलने के लिए उन्होंने अपना घर दे दिया था। इससे वृंदावन में प्रेम महाविद्यालय की स्थापना हो सकी। तब उनकी उम्र महज 23 साल की थी। महात्मा गांधी ने भी उनके बारे में 28 मार्च 1928 के यंग इंडिया के अंक में लिखा था।
6: जानती हो बन्नो, राजा महेंद्र को 8 भाषाओं का ज्ञान था। भले ही वे एक छोटे राजघराने से थे, लेकिन भारत की आजादी की लड़ाई में उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। उन्हें 1932 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी किया गया था।
7: सच कहूं दीदी, इनकी कहानी सुनकर अंदर से बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हमारा देश यूं ही महान नहीं कहलाता।
3: राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1886 को अलीगढ़ के मुरसान राजघराने में हुआ था। बाद में उत्तर प्रदेश के हाथरस के राजा हर नारायण सिंह ने उन्हें गोद ले लिया और अपना वारिस घोषित कर दिया। राजा महेंद्र को कम उम्र से ही राजनीति में दिलचस्पी थी। उन्होंने 1911 के एंग्लो बाल्कन युद्ध में भी हिस्सा लिया था। महेंद्र प्रताप के पिता और दादा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो उस समय मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जानी जाती थी, के संस्थापक और महान शिक्षाविद सर सैयद अहमद खान के बेहद करीबी माने जाते थे। कहा जाता है कि उनके परिवार ने इस यूनिवर्सिटी को कुछ जमीन दान में दी थी, जबकि कुछ जमीन लीज पर दी थी। राजा महेंद्र प्रताप खुद भी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के छात्र रहे थे। उनकी इसी विरासत को सम्मानित करते हुए भारत सरकार ने 1979 में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया था। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को याद रखते हुए साल 2021 में उत्तर प्रदेश में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। राजा महेंद्र प्रताप का मानना था कि परंपराओं का आंख बंद करके पालन करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हृदय का शुद्ध होना है। उन्होंने जो सिखाया उसे खुद अपने जीवन में करके भी दिखाया। वो कहते थे कि आध्यात्मिक प्रेम एक बड़ी जोड़ने वाली शक्ति बन सकता है।

एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा की आज की कड़ी में बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक और महान क्रांतिकारी की कहानी लेकर हाजिर होंगे। तब तक सुनते रहिए रेडियो मधुबन

मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे। रेडियो मधुबन

नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया और अपना लोक भाषा में कह सकते हैं मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर हम जहां भी जाते हैं, क्योंकि हमारा सेवा ही कम्युनिटी को सशक्त समृद्ध और विकसित करने के लिए, तो सरकार का जो मंशा है आसपास गांव और अंचल में जो गतिविधि हो रही, जो पर्यावरण है, जो स्वास्थ्य हो चाहे पेड़ पौधा हो, सभी को लेकर हम बात करते हैं। चाहे किसान हो, चाहे हमारा मनरेगा हो, चाहे हमारा शिक्षा जगत में जो शिक्षक और बच्चे उनसे भी बात करते हैं, आंगनबाड़ी में जाकर बात करते हैं, नरोगा से भी बात करते हैं, क्योंकि हमारा आसपास गांव और अंचल हरा भरा रहे। क्योंकि गांव का और अंचल का हरा भरा होगा तो हमें भी खुशी होगा और हम उसमें आगे बढ़ते हैं। तो इस कार्यक्रम को लेकर हम पहुंचे किवली में। बोली एक अच्छा

0: कहेंगे।
1: चलिए, इस कार्यक्रम को जब सजाएंगे, हमारे साथ जनप्रतिनिधि उपस्थित है, तो आज उनको वो हमें लेकर आए हैं और देखा रहे क्या क्या काम हो रही गांव के आसपास, जिसका चलते गांव का जो विकास उसमें एक हिस्सा बनता है। तो श्रीमान जी को स्वागत करते, अपना परिचय खुद देंगे तो अच्छे से दे पाएंगे, किन्तु हम देंगे तो थोड़ा बहुत जो जानते थे सुनते हैं उसका बारे में हम बताए, लेकिन वो खुद अपना परिचय देंगे, जिसमें यहाँ तक पहुँचने के लिए, जनप्रतिनिधि तक पहुँचने के लिए कैसे उनका प्रेरणा मिला और जन सेवा में गांव का विकास करने के लिए उनका मन में क्या प्रभाव पड़ा, तो वो अपना परिचय देंगे, कितना तक पढ़ाई किए। और सर, आपका स्वागत है, आपका रेडियो मधुबन में हार्टी वेलकम है, स्वागतम सुस्वागतम, बताए आपका परिचय।
2: सर, मेरा नाम शंकरलाल मेघवाल,
1: ओ
2: अपूर्व डेलीगेट भाजपा से 1985 से लगा
1: जी
2: अभी तक, ठीक है। मैंने 10वीं क्लास पास की है
1: जी सर।
2: अभी सर आए अपने कीवली गांव में, सुशांत वाटिका में।
1: ओहो,
2: कौन सा नाम है? सुशांत वाटिका।
1: सुशांत वाटिका, अच्छा
2: ठीक है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई
1: जी सर,
2: और आपने जो भी कहा कि सुशांत वाटिका में इतने पौधे लगाए, 5,000 लगाए हैं, अलग अलग किस्म के हैं, अमरूद है, जामुन है, आंवला है, नींबू है, मतलब बादाम है, कई तरह के पौधे लगाए
1: जी सर,
2: ठीक है। ये हमारा गांव का सहयोग से खूब ये काम अच्छा चल रहा है
1: जी जी।
2: डेली यहाँ महानरेगा से मजदूर आते हैं और पानी पिलाते हैं, और 15 दिन में लोग चेंज हो जाते हैं। इसमें थोड़ा और सुधार हो जाए आपकी तरफ से तो ठीक रहेगा।
1: रेडियो मधुबन से सहयोग चाहिए ना, ब्रह्मा कुमारी से?
2: बिल्कुल।
1: किससे सहयोग चाहिए?
2: ब्रह्मा कुमारी से और मधुबन से, दोनों से।
1: दोनों से
2: सहयोग
1: चाहिए?
2: सहयोग चाहिए।
1: जैसे क्या सहयोग आप चाहते हैं?
2: जैसे कि आप में
1: हमको पता होना चाहिए ना भाई, आप क्या,
2: जैसे कि आप स्पीकर की व्यवस्था लगी, छोटे छोटे स्पीकर, और मधुबन के वो कोई कार्यक्रम होता है वो सुने हम, शमशान के पास में शमशान घाट है
1: जी जी,
2: जो ऐसे लगाए तो मतलब ठीक रहेगा।
1: अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा बात बताए, क्योंकि एक जैसे वाटिका है, जैसे हम सुनते थे सीता को भी अशोक वाटिका में रखे थे, तो उनका कोई शोक नहीं था, अशोक जिसको शोक नहीं, यहाँ पर तो होकर आएंगे लेकिन अशोक जैसे वाटिका, जैसे सुशांत वाटिका नाम रखे,
2: सुशांत वाटिका,
1: सुशांत वाटिका। और यहाँ पर जब शरीर दाह करने के लिए शमशान को आते है, उसी में ही वो वाटिका में ही शमशान बनाया है
2: ना,
1: उसका एक पार्ट है ना, शमशान जो पार्ट है शमशान का, लेकिन इससे तो ज्यादा सुंदर बनाया उसको बनाए, तो उसमें जैसे कोई भी दुखी होकर आए तो यहाँ पर जो आए उनको सुख महसूस हो, क्योंकि हम स्वर्ग को लेकर जा रहे हैं, स्वर्ग यात्रा कर रहे हैं, तो स्वर्ग में सुखी होते हैं, तो भले वहाँ गांव में दुखी हो, लेकिन यहाँ पर जब आए तो वहाँ पर सुख महसूस, सुकून महसूस हो और शांत महसूस हो, क्योंकि नामकरण बहुत अच्छा नामकरण किया जाए, सुशांत वाटिका।
2: सुशांत वाटिका,
1: हम तो अशोक वाटिका सुनते थे, लेकिन सुशांत वाटिका है ना, सीता को कितना दुख है लेकिन अशोक वाटिका में रुकी है ना, रावण का अशोक वाटिका, कोई शोक नहीं, कोई दुख नहीं, कोई टेंशन
2: नहीं,
1: तो यहाँ पर जो आएंगे तो उनको ये महसूस होना चाहिए। तो आप जितना कि बहुत अच्छा किए और इतना डेवलप करने में सबका मदद मिला है आपको, ये कितना साल का ये प्रोजेक्ट, मतलब कितना साल हो गया इसको बनाने में? लगभग 5 साल 6 साल 10 साल?
2: बिल्कुल जंगल था।
1: नहीं, आपको इतना बनाने में कितना साल लगा?
2: शुरुआत
1: 3 साल का। वो बहुत अच्छा किए, तालियां, 3 साल में इतना डेवलप किए, कम समय में पूरा, तो हमारे मनुष्य से जितना हाइट है उससे ज्यादा हाइट हो गया, वो जितना पौधा है, और सही में कितना एकड़ होगा शायद लगभग, जो जगह में पौधा लगा है वाटिका, लगभग एरिया लगा, वो बताएंगे हमारा, और एक जो एक्सपर्ट जो देखभाल वो बताएंगे, लेकिन आपका जो एक्सपर्ट है, आप तो एक जनप्रतिनिधि है ना, अभी भी जनप्रतिनिधि, मैंने प्रतिनिधि मतलब आप वार्ड पंच,
2: वार्ड पंच में रह चुका हो और डेलीगेट भी रह चुका हो।
1: अच्छा,
2: नहीं है
1: पहले, पूर्व जैसे आपने सर बताया, पूर्व थे, लेकिन उस समय भी बहुत काम किए हैं, बहुत अच्छा काम किए, और जनप्रतिनिधि नहीं थे उस समय, जो थे उस समय भी आप आते थे, कुछ विकास किए होंगे, अभी भी नहीं है पोस्ट में तब भी आप विकास कर रहे हैं, जब पावर था तब तक किए, जब पावर नहीं रहकर भी इतना कर रहे, ये तो कम बात नहीं है ना।
2: और हमारे एमएलए साहब और प्रधान साहब का खूब सहयोग रहा, और हमारे भी पुल सब कुछ हुआ है, काम सेक्शन हुआ है, अभी चालू नहीं हुआ,
1: हो जाएगा,
2: ये हो जाएगा, फिर हमारे आने के लिए आबू और ब्रह्मा कुमारी में बहुत नेक्स्ट होगा,
1: नदी का पौधाल का रास्ता है, हमें भी खुशी होगा, रेडियो मधुबन तुरंत यहाँ पर आ जाएगा, और जो म्यूजिक का जो बात कर रहे हैं, जो रेडियो मधुबन का जो प्रसार होता है, तो यहाँ पर भी लोग सुने बटकर आकर, तो उनको भी सुकून मिलेगा, सिर्फ पौधा कराने के बाद उसका साथ बटने का जगह हो, और थोड़ा पानी का व्यवस्था हो, जैसे आपका पानी का व्यवस्था है, जिसको प्यास लगे तो पानी अपना पी सकते, आरो लगा दे ना, सोलर लगा दे, और खासकर म्यूजिक जैसे रेडियो मधुबन का यहाँ पर म्यूजिकल हो, कि ब्रह्मा कुमारी जो प्रसारण होता है गीत वाले यहाँ पर भी सुन सकते, तो उसके लिए आपका बहुत अच्छा सहयोग मिल सकता है, क्यों नहीं, किंतु आप लोग का प्रयास तो करेंगे तो मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर में अपना कार्यक्रम को सजाए, तो शंकर जी को धन्यवाद। शिव शंकर कहते, शंकर आप शिव, शंकर।

0: को ध्यान करते ना, शंकर का आंख खुल गया तो पूरा दुनिया को विनाश नहीं करेगा, पूरा अच्छा काम करेंगे। और विनाश होगा तब भी उसमें अच्छा काम करेगा, विनाश में सफाई होगा, सफाई होगा मतलब नया आएगा, कल युग समाप्ति होगा तब तक सत्य युग आएगा। घर तोड़ेंगे तो नया घर बनाएंगे, और घर तोड़ेंगे नहीं तो नया बनेगा कैसे। इसलिए शंकर का काम क्या है, अच्छा चीज को लाने के लिए इनका प्रयास। बहुत बहुत अच्छा लगा शंकर जी। और आप इतना कितना उम्र है?
1: मेरी 64 है सर।
0: क्या बात है, लग नहीं रहे तो पूरा जवान है, पूरा पूरा 64 है और पूरा हट्टा कट्टा है। इसका राज क्या है? खान पान और पर्यावरण को पैर लगाते हैं। पर्यावरण जो बाटी का मैं आप सही, पर्यावरण बहुत अच्छा है क्योंकि आप ऑक्सीजन तो भरपूर पाते हैं और पौधा तो आपको पूरा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलेंगे। और एक भाई साहब है जो की पूरे जमीन का जो जोड़े हुए और जन्मदाता कहेंगे, और पौधा जो इस बाटी का जन्मदाता शुरू से अभी तक खुशी से कर और मुस्कुरा रहे सूर्य के लेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन अल्प विराम का बस सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। शंकर जी जाते जाते आप एक मानव सेवा के लिए जितने तत्पर हुए हैं, ये प्रेरणा आपका बुद्धि में इसको कैसे टच हुआ, मैंने कैसे कैच किया ये करना चाहिए मानव सेवा, ये बाटिका बनाया इतने बार में बताया, तो आपका मन में कैसे आया, कब आया, कैसे आया मानव सेवा के लिए आपका बुद्धि में कैसे आया, कहाँ से आया,
1: क्या मालूम आया?
0: अंतर से ना, बाहर से? अंदर से,
1: अंदर से,
0: अंदर से। कोई नहीं बोला
1: नहीं
0: करने के लिए, लेकिन आप खुद कर पड़े तो बस चल पड़े। बहुत अच्छा, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: चले कार्यक्रम को आगे बढ़ा तो है। अगला कड़ी में हम केवल स्थित सुशांत वाटिका में बैठे हैं और यहाँ पर जो हरा भरा हम तपोवन ही सुन रहे थे पहले ब्रह्मा कुमारी का, लेकिन केवल उसका बाजू का पड़ोसी है केवल ग्राम पंचायत उमरिन ग्राम पंचायत और केवल ग्राम पंचायत नजदीक आमथला ग्राम पंचायत बीच में आता है। फिर भी एक जो कहते ना जहाँ पर एक बार बड़ा है तो पीछे आसपास कोई मिल जाता है, तो उसको देखकर यहाँ पर भी थोड़ा बहुत डेवलप किए है और ये भी उस तरह बाप समान बन जाएगा तपोवन जैसे। क्यों तपोवन जैसे? तपोवन भी ऐसे ही था, एक जमीन था बंजर
1: जमीन
0: पड़ता है। मानसरोवर आपका पंचायत केवल में बहुत आज केवल में मानसरोवर देखो आपका पंचायत मानसरोवर भी कितना सुंदर बने। मानसरोवर नाम कितना सुंदर
1: है,
0: जहाँ पर एक बार डुबकी लगाएगा ना वो परी बनकर निकलेगा, उसका गायन है। तो सही में जो भी जाते हैं ना, और आप लोग तो गए होंगे क्योंकि आपका ग्राम पंचायत में आता है कारुल, तो बहुत अच्छा लगा। तो चलिए इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ महान अनुभवी व्यक्तित्व है तो उनको भी स्वागत करेंगे, क्योंकि केवली तो ऐसे ही बहुत सुंदर गाँव और एजुकेटेड गाँव है और उसी में ही जो सुशांत वाटिका का जो हत्या करता है, जो देखभाल करते हैं, केयर टेकर जिसको कहते हैं, उनको स्वागत करते हैं। सर आपका परिचय दीजिए पहले।
2: सर मेरा नाम है सज्जन सिंह करण सिंह जी
0: राठौड़। उम्र कितना है?
2: उम्र है 56 साल।
0: सर जल्दी थोड़ा लग रहा है,
1: जोड़ी बोलो।
2: हाँ, जोड़ी 56 साल है उम्र।
0: बहुत अच्छा, हट्टा कट्टा है और 56 साल तो थोड़ा कम है, लेकिन थोड़ा और स्वास्थ्य को पतला दुबला हो जाइए, ठीक है। देखिए हम 63 का ले रहे हैं, आप 50 से, तो दोनों का जो शंकर का और आपका देखने से आपका मन ने सोचा था 80 साल होगा, क्योंकि आप ऐसे खाना पीना खाते होंगे, ज्यादा कम खाइए जितना आवश्यक उतना खाइए, है ना। अच्छा ये तो रही बात, मैंने मजाक से हम बात कर ले, लेकिन हमारा स्वास्थ्य रहेगा, स्वास्थ्य संपद कहते और आपने पूरा रखा है। तो ये जो सुशांत वाटिका का परिचय, जन्म कैसे हुआ और आज इतना बड़ा वटवृक्ष के बन गया, मैंने इतना साल हो गया, तो क्या क्या काम किए और क्या मेहनत किए, और पहले ये क्या था ये जमीन और कितना एकड़ जमीन में ये फैला हुआ है वाटिका?
2: पहले यहाँ पे सब बबूल थे
0: जी,
2: तो उनको सबको निकाला गया। उसके बाद में पौधारोपण का काम चालू हुआ पंचायत से
0: जी।
2: काम चालू करके एक बाद में पौधे लगाने चालू हो गए। चालू होने के बाद में धीरे धीरे धीरे धीरे पौधे बड़े हो गए
0: जी। और शुरू से आप देखे ये वाटिका?
2: शुरू से 10 बीघा में है ये पौधे
0: लगाए।
2: 5,000 पौधे है।
0: 3 साल पहले मतलब 2022 का बात, ये 2025 चल रहा है।
2: 2025
0: चल 2022 में शुरुआत किए और आज पूरा कितना 5,000 पौधा का जो बात कर रहे थे शंकर जी, है ना। और इतना सुंदर में बहुत बड़ा बड़ा पेड़ हो गया 3 साल में, पौधा कितना आप सब समझ सकते हैं कितना बड़ा होना चाहिए। और क्या क्या पेड़ लगाए
2: इसमें? सब नींबू है, आंवला है,
0: फल में नींबू और आंवला
2: है, बादाम बनाद है, बादाम है,
0: अमरूद
2: अमरूद भी है और जम्पर भी है, और क्या बोलते
0: फिर छायादार में सिर्फ छा देगा।
2: छायादार में तो गुलमोहर है, नीम है, शीशम है,
0: शीशम है। अच्छा बहुत सारा पौधा है उसका, फिर लगा देना, उसका नाम नहीं करना है, लेकिन अच्छा होगा उसका। कोई बड़ा व्यक्ति का आएगा ना, कोई आपका गांव में सरपंच से बड़े जो आते बीडीओ साहब आए तो आएंगे, तो उसको एक पौधा दे दीजिए, उसका लगाइए पौधा, उनके हाथ में पौधारोपण करें, उसका नाम लिख दीजिए, ये हमारा बीडीओ साहब का द्वारा हुआ था, उसमें एक नेम प्लेट हो जाए। जब भी आएंगे, कभी चले कोई भी आएगा तो उसका वीडियो, हमारे जैसे प्रधानमंत्री आते तो उनके हाथ में हम करा थे, प्रधानमंत्री नरसिंह राव आए थे तो उस समय पौधारोपण किया था। ऐसे पौधा 2-4 जगह में संसद है वहीं पर लगा दीजिए, तो जो भी आएगा उसका देखेगा, अरे यहाँ पर प्रधानमंत्री आए थे, यहाँ पर राष्ट्रपति आए थे, वहाँ पर नहीं हुआ था आपको वीडियो सा, तो उसका हाथ में एक पौधा लगाइए और पौधा रहेगा वो तो चला जाएंगे, उसका फल जैसे नेम प्लेट सर। तो ये भी एक सजेशन है, क्योंकि हम जैसे ज्ञान सरोवर में जहाँ जाते हैं तो उनका हाथ में एक पौधा कराते हैं और उसका नामकरण कर उस डेट ईयर कौन सा ईयर आए थे उस सब में लिख देंगे, तो वो भी और अच्छा प्लस पॉइंट हो जाएगा। लेकिन जो भी आएंगे ना, अरे आज हमारा ये आए थे मुख्यमंत्री आए थे यहाँ पर ऐसे, तो ये भी एक प्रोजेक्ट रखिए आगे के लिए, कभी काम आएगा तो उसको दिखाइए, उनके हाथ में एक पौधा रोपण करिए, तो हाँ लगाए तो उसका थोड़ा फलक बना देना, उसका एक नेम प्लेट सीमेंट अच्छा लगे कौन सा। ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और करते रहेंगे और सबका सहयोग मिलेगा, कोई दे चाहे नहीं दे, प्रकृति आपको देगा, प्रकृति को आप रक्षा करेंगे, प्रकृति आपको रक्षा करेगा, एनवायरमेंट आपको रक्षा करेगा, ये गारंटी है। वो कभी स्वार्थी नहीं है, मनुष्य स्वार्थी हो सकता है, लेकिन प्रकृति पेड़ पौधा आपको देने के लिए तैयार है। आपको उसके पास बैठकर उससे थोड़ा बात करेंगे तो हमारा भाषा, वो मौन का भाषा समझते हैं।
2: सही है,
0: उनके पास बैठकर उसको प्यार करिए, हाथ लगाइए उसको प्यार, जैसे बच्चों को प्यार से हाथ लगाते हैं, हम इसको वरदान देते हैं, तो उसको भी वरदान दीजिए, जितना फल आए उससे ज्यादा इसमें, जो गांव में सभी को हम बांटे, एक एक गाँव को एक एक फल, घर में एक फल दे, ऐसे फल बने जिसे अमृत को बोलिए, अमृत पेड़ में बोल दे, उसको पानी पिलाने, इतना अमृत दे हमारा केवल में जो जो लोग गांव में है, चाहे दे चाहे नहीं दे, हमें देना है। ऐसे संकल्प करिए, संकल्प में बहुत शक्ति है। जो सोचेंगे, हमारा सोच ठीक होना चाहिए, सकारात्मक,
2: सही
0: तो हो जाएगा सब। हुआ पड़ा है, हुआ था, हो जाएगा, ऐसे सोचना है।
2: सही है,
0: इससे मांगना नहीं,
2: सही होता है।
0: सोच आपका ठीक रहे,
2: ठीक
0: तो
2: रहे,
0: अच्छा रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सुंदर मेहनत करते तो उसका फल तो मिलेगा, तो आज नहीं तो कल मिलेगा ही, है ना? मिलना तो दिखाई दे रहा है, और इसका सभी का श्रेय जाता है गांववासियों को, ग्रामवासियों को और प्रशासन को, प्रशासन को जाता है। और प्रकृति तो है ही है, प्रकृति को आप दे रहे तो प्रकृति भी शांत हो, और आप जब चाहेंगे संकल्प करें बारिश हो तो बारिश होगा ही, लेकिन आप निस्वार्थ से करिए। देखिए आपका एरिया में पानी का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो खुश हो जाएगा। जैसे कोई बच्चा परिवार में माँ बाप को देने के लिए जब माँ बाप मांगेंगे तो नहीं मिलेगा, माँ बाप बोले नहीं बच्चों को पहले खिलाएंगे, तो बच्चे क्या करेगा, ना नहीं मुझे नहीं चाहिए, माँ बाप को खिलाएगा। तो हम भी ऐसे करेंगे तो हमें बहुत कुछ मिलेगा, है कि नहीं? आपको ऐसे लग रहा ना?
2: लग रहा
0: है। सज्जन नाम ही कितने सज्जन है, दैवी और सज्जन बोलते हैं हम, जब जाते आपका नाम लेते, कोई भी महान अनुभव भी दैवी और सज्जन, सज्जन माने श्रेष्ठ जन। आज जनहित में आप काम कर रहे हैं, गांव का हित में कर रहे, सिर्फ केवली का नहीं, कोई भी ग्राम पंचायत का लोग आए जाकर थोड़ा इसे डेवलप करें, मॉडल बनाए, ठीक है? तो हर ग्राम पंचायत में जगह बहुत बड़ा है राजस्थान में, हर ग्राम पंचायत बहुत सारा गोचर जमीन पड़ा है, तो उसको सुव्यवस्थित करना, वाटिका बनाए, है ना? कोई नाम रखे तो शांति की वाटिका, शक्ति का वाटिका,
2: कोई भी
0: पवित्रता का वाटिका, है ना, ज्ञान का वाटिका, ऐसे वाटिका बनाएंगे तो हम तो वाटिका में जाकर पूरा स्वर्ग तो ऐसे आ जाएगा। स्वर्ग में क्या है सर, वाटिका ही वाटिका,
2: वाटिका।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और जाते क्या कर, आपको अचानक आए और सर आपको लेकर आए, हम भी पहला बार आए, तो आप कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ऐसे होना चाहिए,
2: ऐसे
0: बीच बीच में मुलाकात होना चाहिए, ऐसे जो हम कर रहे सब जन जन तक पहुंचे। जैसे इतना पौधा को पानी पिलाए, उसके लिए कितना मेहनत करते हैं और कितना लेबर डे लगता है, मजदूर तो करना, इतना एकड़ जमीन को आप वाटिका को संचालन करने के लिए, देखभाल करने के लिए आप अकेला है, कितना स्टाफ है, कितना जन काम करते हैं?
2: 12 जने हैं अंदर शमशान घाट के अंदर, 12 जने बाहर, ऐसे करके 26 लेबर है।
0: इसका काम क्या देते आप?
2: पानी पिलाना है, खड्डे खुदवाना है, खाद दिलाना है, पानी बाबी सिंचाई करवाना है,
0: ये तो बहुत पुनित काम,
2: सफाई करवानी है,
0: पुनित काम है। श्मशान का आसपास वो हरा भरा कर दिए, स्वर्ग बना दिए, लेकिन गेट टू वे टू हेवन, स्वर्ग को जाने के लिए असली रास्ता इधर है, और नरक है ये स्वर्ग है, इसे उनको मस्त कारण नरक में थे भाई, जंजाल में बंधन, अभी बंधन मुक्त हो गए, मुक्ति धाम
2: अब सही हो गया,
0: हम इसे मुक्ति धाम लिखते हैं, मुक्त होगी शरीर से, अभी फरिश्ता होकर ये आसपास के ऊपर आकर ही देखेगा, जब जाएगा वो आ जाएगा, अभी शरीर से आ नहीं पाएगा, बूढ़ा हो जाने में, जब शरीर छूटेगा वो जब मन बुद्धि यहाँ आ जाएगा, जब चाहे वो आ जाएगा, और ये आसपास को पूरा हरा भरा वो सहज हो करेगा, आपको डर नहीं लगेगा?
2: डर नहीं लगता,
0: डर
2: तो मेरे को लगता ही
0: नहीं है,
2: इसमें सेवा
0: सज्जन भाई व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति कर सकता है। और नाम जैसे उनका माँ बाप को धन्यवाद, इतना सुंदर नाम रखे हैं, और अभी भी उनका माँ बाप है कि ना, चला गए माँ बाप है?
2: पिताजी आर्मी में थे।
0: ओके, इसका फल मिल रहा है, इसलिए आर्मी में है तो इसका पिताजी का असर रंग तो लगा होगा, गए हैं,
2: गए।
0: इसकी वाली का ही आप निवासी, तो आप कुछ नौकरी वगैरह नहीं मिला?
2: नौकरी नहीं मिला।
0: ये नौकरी तो मिल गया,
2: ये नौकरी मिल गई,
0: वृक्षारोपण का नौकरी मिला, नौकरी कोई भी छोटा भी काम करना सबसे बड़ी सेवा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, सज्जन जी को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति देने के लिए, और गांव जब भी और ऐसे प्रोग्राम कभी मौका मिलेगा तो आप देंगे, आएंगे तो
2: देंगे,
0: बहुत अच्छा। और कोई श्रोता मित्र आपका गांव को देखने के लिए आएगा, कोई भी किसान बॉय, कोई वाटिका अपना गांव में, कोई पंचायत तरफ से हो चाहे कोई ग्रामवासी, आप जैसे हमारा शंकर जी जैसे आएंगे तो उनको बता सकते हैं, और बुलाने से भी उनको कुछ बता सकते,
2: आदर भाव भी
0: दे सकते। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मैंने घोड़ा लियो।

अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर। डायल कीजिए 101 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, हम ब्रेक का पहले सुन रहे थे सज्जन जी को और शंकर जी को, जो कि इसी किवली ग्राम के समाज सेवी हैं, ऑलराउंडर हैं, जब भी जहां जरूरत पड़ता है सहयोग देते हैं। तो आज रेडियो मधुबन को भी सहयोग दे रहा है, और रेडियो मधुबन भी उनको सहयोग, उनका जो काम को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक मंच दिए, उन तक पहुंचाने के लिए, यहाँ तक पहुंचाने के लिए हमें जो प्रेरणा दी, हमको जो लेकर आए, हमारा जो भोपाल राम पुरोहित जी श्रीमान जी, तो उनको भी स्वागत करते इस कार्यक्रम में। पहले से परिचित है, लेकिन उनका गाँव में क्या गतिविधि हो रही है, तो हमें रेडियो मधुबन को अवगत कराने के लिए हमें यहाँ तक पहुँचाए, और सज्जन जी से और शंकर जी से मिलाए हैं, और विजिट करने के पश्चात सभी मिले, देखें क्या क्या जो बात आपको सुनाई होती है, हम प्रैक्टिकल देखें। और ऐसे हर ग्राम पंचायत में करते हैं, लेकिन कहीं ऐसे यहाँ पर करते हमको मालूम नहीं था, हो सकता हो कोई गांव में भी कोई ग्राम पंचायत में कर क्या होगा, लेकिन हमें सूचना दीजिए, बा हमें कॉल करिए, और आपका जो एक्टिविटीज, आपका जो कर्म, आपका जो काम जन जन तक हम भी पहुंचाएंगे रेडियो मधुबन। तो इस मंच का माध्यम से हम आपको निवेदन करता हूँ, आप भी भले भले अपना गांव को एक सशक्त बनाइए, जिसमें पर्यावरण भी हो, आदर्श गांव हो, आदर्श वाटिका हो, आदर्श व्यक्ति हो, आदर्श पशु हो, सभी आदर्श हो, रास्ता, स्वास्थ्य, शिक्षा सब में आदर्श हो, तब जाकर गोकुल गांव बनेगा। एक का खाली गोकुल गांव बनने लगे, एक का नहीं चाहिए, सभी का सहयोग चाहिए। तो इस कार्यक्रम को सजा निकला हमारा सेवा निवृत्त जो जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल राम पुरोहित जी है, तो केवल निवासी है, अभी सेवा निवृत्त का बाद वो जनहित में, जन सेवा में, पर्यावरण हो चाहे सभी में तत्पर रहते, तो वो अपना गाँव का जो कार्यक्रम को दिखाने के लिए हमें लाए, तो उनको भी स्वागत करते। सर आपको वेलकम, आप अपना परिचय फिर से।
1: बतौर परिचय के रेडियो मधुबन के माध्यम से जो पर्यावरण के संबंध में पवित्रा भाई के साथ में बातचीत करने का जो सिलसिला पिछले एपिसोड से जारी है, उसी क्रम में जब रेडियो मधुबन के पवित्रा भाई ने मुझे तपोवन का दर्शन कराया, तो वहाँ देखा कि किस तरह से व्यवस्थित बिना कीटनाशकों के खेती हो रही है, यौगिक खेती जिसको हम कहेंगे, और जो मल्टीलेयर खेती हो रही है वहाँ पर सब्जी वगैरह ये सारी, और किस तरह से बिना कीटनाशकों के उपयोग के उनका अच्छा उत्पादन वहाँ पर लिया जा रहा है। तो उस हरे भरे वातावरण को देख करके मेरे मन में इच्छा हुई कि रेडियो मधुबन को हमारे गांव तक ले जाया जाए, क्योंकि वहां भी एक वाटिका हमारे ग्रामवासियों के सहयोग से बनी है, जो शमशान घाट के अंदर ग्रामीणों के सहयोग से उसको विकसित किया गया है, और बाहर भी बहुत ही अच्छा वाटिका का कैंपस सरकार के सहयोग से भी तैयार किया गया है। इस वाटिका का नामकरण अभी सुशांत वाटिका किया गया है। पिछले 3 वर्षों से लगातार ये काम जारी है, और बहुत ही अच्छी स्थिति में ये वाटिका हमारे ग्रामवासियों के सहयोग से, ग्राम पंचायत के सहयोग से, जहाँ पर की नरेगा के लोग आकर के यहाँ पर नियमित काम करते हैं और उसको व्यवस्थित करते हैं, उसको सींचते हैं, एक एक पौधे के पास जाकर के उसको अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। सर इसकी शुरुआत यूं हुई कि हम शमशान पर एक बार 3-4 लोग इकट्ठे हुए और वहाँ बातचीत हुई, और उसकी जड़ में हम लोग ही हैं। एक भामाशाह को तैयार किया, उसने पूरा उसका बबूल निकाल करके उसको लेवल कर दिया। उसके बाद में हम 3-4 लोग इकट्ठे हुए तो यहाँ पर एक पानी का टैंक बनाया, जलदाय विकास विभाग से पानी की सुविधा ली, और फिर ड्रिप सिस्टम सर लगाया। पौधे हम लेने गए तो वहाँ नर्सरी है, शिव नर्सरी, वहाँ से पौधे परचेज करके इधर उधर घूमे तो थोड़ा सा दिक्कत हुई, लेकिन हम ले आए और ला करके यहाँ पर लगा दिए। और सर वो दिन है कि आज का दिन है, 2 लोगों ने शुरुआत की थी वास्तव में, और ला करके वो फिर पौधे लगा दिए, और फिर ज्यो ज्यो वो चीज बढ़ती गई तो फिर वो कारवां इसके अंदर गाँव वाले फिर इसमें जुड़ते गए। 4-5 बच्चों की एक कमेटी बना दी, जो प्रतिदिन यहाँ पर कभी टैंक बनाते, कभी जो है वाटर हार्वेस्टिंग का जो सिस्टम लगा है उसको लगाते, और वो करते करते धीरे धीरे करके उसको डेवलप किया। तो जो शमशान घाट के अंदर वाली वाटिका है वो इस तरह से ग्राम वालों के सहयोग से हमने तैयार कर ली। और उसके बाद जब मैं पद पर था तब सरकार के ध्यान में लाया तो ये बाहर की वाटिका है, इसके लिए भी प्रोजेक्ट तैयार हुआ, और ये पूरा सरकार के सहयोग से, वास्तव में हमारे गांव वालों ने बड़ा सहयोग किया, और उसको बहुत अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया जा रहा है। रही बात यहाँ पर पेड़ पौधों की, एकदम स्वस्थ है, और वास्तव में वातावरण बड़ा ही सुशांत है, बच्चे खेलते हैं, शाम को यहाँ पर आकर के बैठते भी हैं। अंदर कई भामाशाह के द्वारा बेंचेस बनाई गई है, जो जहाँ पर बैठ करके प्रकृति का जो भी चिंतन, अच्छा ईश्वरीय चिंतन करना है वो कर पाते हैं।
0: जी जी।
1: तो पवित्रा भाई ने जब इसको देखा तो आपने भी इसको संगीतमय बनाने के लिए सुझाव दिया है, तो हमारे ग्रामवासियों के साथ में मिल करके और ब्रह्मा कुमारी जी के सहयोग से एक संगीतमय वातावरण बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से ही ये जो सपना है वो आपका दिया हुआ सुझाव है वो यहाँ पर साकार हो जाएगा। यहाँ पर पक्षी भी खूब सारे हैं।
0: जी जी,
1: मोर है सर यहाँ पर,
0: उनका घर
1: पोपट
0: आएगा ना,
1: चिड़िया है
0: उनका घर है ये,
1: और इसके दरवाजे पर ही अभी वो निर्माणाधीन है अभी वो पक्षी घर, और भी एक आगे उससे जो जो जो जो पक्षियों के अलावा जो चौपाए जो जानवर है उनके लिए भी दाना दाने की व्यवस्था है। तो इस तरह से पशु पक्षियों के प्रति प्रेम और वातावरण के प्रति ये गांव की सजगता वास्तव में कहीं न कहीं एक मॉडल प्रस्तुत करती है। कहीं न कहीं ये प्रेरणा आप लोगों से ही हमको मिली है और इस प्रेरणा को लेकर के हर गांव में इस तरह का ये सिस्टम डेवलप किया जा सकता है। जहां पर मैं पर्यावरण से संबंधित बात करता हूं कि इस तरह की पर्यावरण वाटिका प्रत्येक गांव के अंदर होना आवश्यक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए होना है। और समुदाय वहां बैठेगा तो एक दूसरे के प्रति प्रेम भी तो बढ़ेगा। तो इस तरह से प्रत्येक गांव में प्रत्येक पंचायत में इस तरह की अगर वाटिका हो जाए जिसको समय समय पर हमारे क्षेत्र के उपखंड अधिकारी जिला कलेक्टर महोदय भी दौरा करते रहते हैं, मैं तो चाहूंगा कि इस मॉडल को कहीं और भी अन्य गांव में भी इस तरह के काम हुए हैं, जैसे अनादरा में है और कहीं हमने सुना है वहां काम तो हुए हैं लेकिन इस तरह से खड़ात में हुए ना सर, खड़ात में इस तरह
0: मोडू में भी मैंने गया था देखा है, मोडू भी चल रहा है थोड़ा सा,
1: मोडू में जैसे चल रहा है। तो सर हर गांव में होना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हर गांव में, और ये नरेगा वाले भाई बंधु करते
0: हैं उसी को सहज
1: सहज तरीका है। जैसे हमारे यहाँ पर एक भाई है ये सज्जन सिंह जी, ये दिन रात इसको देखते हैं भाई साहब, शाम को भी दिन अस्त होने के बाद मैं खुद भी आता हूँ, दिन अस्त होने के समय मैं एक चक्कर काट के जाता हूँ, भाई भी आते हैं। तो इस तरह से ये अगर हम देखेंगे तो हर एक गांव में इस तरह की वाटिका डेवलप होगी तो पर्यावरण का जो नुकसान हुआ है ये वापस हम उसकी भरपाई कर पाएंगे, तो प्रकृति हमको सहयोग देगी। तो हर एक गांव में ये होना चाहिए
0: जी जी।
1: तो इससे ऑक्सीजन भी मिलती है और भी तरह की सुविधा होती है। वही बात मैं बताता हूँ पर्यावरण पर हमेशा की एक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए भी मैं बात करता हूँ अक्सर कि यहाँ पर भी सर गांव का सूखा और गीला कचरा
0: कर सकते प्लांट
1: नहीं करते हैं सर, करते हैं ये ट्रैक्टर से आता है, अब जो भी है पंचायत इसमें सहयोग कर रही है लेकिन इसका छोटा प्लांट
0: चाहिए ना, खाद भी चाहिए तो खाद मिल जाएगा इधर,
1: खाद मिल सकता है
0: उसी प्लांट से,
1: बिल्कुल सर वो हाँ उसी प्लांट से, वो जो है ना उसका गीला कचरा अगर अपन ढंग से उसको
0: मिट्टी
1: में डाले तो वरना उसका खाद बन जाएगा, तो खाद बनेगा तो वो खाद यहाँ पर काम आ सकता है, तब ये इन पर भी एक अच्छा ग्रोथ में भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, फल वगैरह भी प्राप्त
0: हो सकता है। लेकिन हमारा जो अंदर में देने का भावना हो तब जाकर निस्वार्थ भाव से हो, मन बुद्धि उसमें लगा रहे तो अपना सोच कर, कोई दूसरा का नहीं, मेरा खुद का ये सोच,
1: हम सब यही सोचे तभी जाकर
0: एक व्यक्ति ये मेरा है जैसे
1: तब ही जाकर के
0: आप
1: ये
0: और हम सोचे ये हमारा है तो हम सभी लोग हमारा सोचेंगे मेरा सोचेंगे तो अपनापन आएगा, अपनापन आएगा तो जमीन के लिए 5 घंटा का देगा 7 घंटा देगा
1: जी हाँ जी हाँ। और ऐसा सोच करके इस गांव के लोग इस काम के लिए तत्पर
0: तो हुआ नहीं तो
1: कर भी रहे हैं,
0: दूसरे गांव में
1: कर भी रहे
0: क्यों कारण यही हुआ,
1: तो दूसरे गांव भी करे। मेरा तो यही संदेश है कि सभी गांवों में एक वाटिका होनी ही चाहिए और हर पंचायत उसको डेवलप करे,
0: में जमीन भी है,
1: जमीन भी है
0: ग्राम पंचायत जमीन है,
1: नरेगा के काम वाले लोग भी हैं, गांव के मामा साहब भी है सब गांव में जितना हो सके उतना
0: पेड़ पौधा भी सरकार दे रहा है,
1: उतना कीजिए जितना हो सके,
0: अपन जो सरकार कर रहा है तो कितना पौधा भी आपको दे रहे हैं,
1: सरकार दे रही है,
0: सरकार दे रहे हैं तो कोई भामा साहब भी देते हैं जैसे ब्रह्मा कुमारी 5,000-5,00,000 में 1,00,000 पौधा लगाने के लिए जब मुहिम चलाया
1: बिल्कुल
0: भी आपका गांव देंगे तो हम दे देंगे
1: बिल्कुल बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मिल सकता है सब चीज मिलता है, सहयोग मिलता है
0: सबसे, ब्रह्मा कुमारी
1: मिलता है
0: हर जगह में लगाए, लेकिन ये चीज नहीं हो पा रहा है इतना देने के बाद केयर टेकर नहीं करेंगे, उसको देखभाल नहीं करेंगे जाता है, इसलिए हर साल हम देते हैं,
1: ये केयर टेकिंग से ही हुआ है सर,
0: तो
1: केयर टेकिंग से ही हुआ है, ये देख रहे हैं इसलिए हुआ है,
0: वाटिका को बाउंड्री बनाइए आप यहाँ पर बड़े निश्चिंत, यहाँ पर बाउंड्री है
1: सर, सर निवेदन करो सर, ये तो बाड़ लगाई थी बाउंड्री तो बहुत बाद में बनी है
0: जो भी,
1: पर ये डेवलप होने के बाद बाउंड्री बनी है, बाकी यहाँ तो बाढ़ थी कांटों की बाढ़ से इसको संरक्षित किया, ये पूरा एरिया सर
0: ट्री गार्ड होना चाहिए, बाढ़ होना चाहिए, वो भी वो खाली रहेगा तो मेरा कहने का मतलब
1: नहीं
0: सही वो आवश्यकता है,
1: तो ये सर लोगों का विचार ही था जो
0: हाँ, इसलिए क्या करेंगे, इसलिए तो इसे पूरा बाउंड्री हो जाएगा, तो मैंने चाहे लकड़ी का हो झाड़ का भी
1: जैसा भी है जैसा
0: तो करेंगे तो थोड़ा सेफ्टी है इसका, बाद में तो उस पेड़ को उठाकर भी ले लेंगे अपना जगह में,
1: तो प्रभु हरेक गांव के अंदर ये होना चाहिए, हमारा तो ये सोचना है इस मॉडल को,
0: हर गाँव में
1: आवे और देखे,
0: जैसे भोपाल राम जैसा शंकर जैसे आदमी है ही है, ऐसे नहीं है,
1: सब जगह
0: लेकिन
1: सब,
0: है
1: सब जगह,
0: लेकिन उसको थोड़ा सा जैसे इस माध्यम से वो सुने और आगे बढ़े, और हम तो सबका सहयोग देंगे लेंगे और जरूर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, हुआ है पड़ा है, लेकिन आपको एक कदम निकलना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पर आकर देखिए आसपास आपका गांव किवली है, ये ब्रह्मा कुमारी संस्था है, मानसरोवर है, आनंद सरोवर है, यहाँ पर तपोवन है, और आगे जाएंगे तो आपको मेरा गुलजार पार्क कभी लेकर जाएंगे सर, इतना सुंदर खेती हुआ है इस नदी का किनारे में।
1: जी जी,
0: क्या प्लांटेशन किया, वेराइटी केला, केला का जो पेड़ लगा है आप देखना, अमृत वेराइटी, आम वेराइटी,
1: तो
0: सब जगह, मतलब यूं क्यों नहीं होगा, यही जमीन है,
1: यही जमीन है, क्यों नहीं होगा, यही पानी है और यही
0: तो हो जाएगा। लेकिन क्या है, थोड़ा सा निस्वार्थ भाव से और प्रकृति के साथ प्रेमी बनकर करेंगे तो
1: निश्चित रूप से होगा।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद, और जाते जाते सर को धन्यवाद, सभी को नाम का साथ, शंकर जी, सज्जन जी और भोपाल राम जी तो है ही, भोपाल राम जी जो कि हमारा स्थित है और
1: पर्यावरण
0: में करते हैं, और हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे कल और किसी बात को लेकर। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अच्छा, सभी को नाम का साथ
1: धन्यवाद, धन्यवाद सर,
0: आभार। कीमती समय निकाल कर हमारा कार्यक्रम को सुंदर में सजाए, ऐसे मौका हमें दीजिए और हम आपका गतिविधि को जन जन तक पहुंचाने के लिए तत्पर रहेंगे।

रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड। मधुबन अनप्लग्ड यानी कि संगीत का वो सफर, यानी कि शेर व शायरी, क्रिएटिविटी और पंक्तियों का सफर। जी हाँ, जब एक गाना बनता है तो शब्द मोतियों की तरह पिरोए जाते हैं, बातें वही होती हैं, लेकिन कहने का अंदाज इतना अलग होता है कि वो दिल में घर कर जाते हैं। और ऐसी ही कुछ बातें, ऐसी ही कुछ पंक्तियां, ऐसी ही कुछ लाइंस आज आपको मिलेंगी कार्यक्रम मधुबन अनप्लग्ड में। और इसको और खूबसूरत बनाने के लिए आज हमारे समक्ष है एक ऐसी अतिथि, एक ऐसी हस्ती जिन्होंने लेखन जगत में अपना नाम ही नहीं कमाया बल्कि ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया जो प्रेरणा का स्रोत है। जी हाँ, हमारे समक्ष है डॉक्टर अलका अग्रवाल सिकतिया जी, जिन्होंने बीएससी की, फिर अंग्रेजी में भी उन्होंने पढ़ाई करी, हिंदी साहित्य में गोल्ड मेडलिस्ट रही, पीएचडी की उपाधि भी उन्होंने प्राप्त की। उनका शोध रहा हरिशंकर परसाई पर, लघु शोध और प्रबंधन शोध उन्होंने किया। कई प्रकाशन उनके नाम है, वैसे तो हम कुछ के नाम आपको जरूर लेकर सुनाते हैं, मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, अदृश्य, मेरी तेरी, सबकी, मीरा कोल, व्यंग संग्रह है ये। कई पत्र पत्रिकाएं भी उनकी प्रकाशित हुई और इसके साथ साथ उन्होंने लेखन क्षेत्र में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है, उनको कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, चाहे वो गोदरेज कंज्यूमर फिल्म फेस्टिवल सम्मान हो, दुष्यंत सम्मान हो, रचनाकार आयोग द्वारा बिस्मिल्ला खां पुरस्कार हो।

0: तो बहुत सी जिज्ञासाएं थी, तो मैं लगातार प्रश्न पूछती जा रही थी, क्योंकि उस समय छोटी भी थी थोड़ी सी। तो वो जो दीदी थे, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि आपके भीतर इतनी जिज्ञासा है, आप कहाँ रहती। मैंने बताया मुंबई, बॉम्बे, तब तो बॉम्बे था
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा कि हमारे सेंटर पर जाइएगा, और कुछ ऐसा होता है ना कि हम छोटी छोटी सी बातों को लेकर कई बार परेशान भी हो जाते हैं, तो वो कुछ कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि जिज्ञासा और परेशानी दोनों थी, और मुझे पता नहीं क्यों मैं, मेरे कदम उठ गए आपके जो मलाड में सेंटर है वहां उठ गए।
1: ओके।
0: और वहां पर फिर मुझे बहुत से प्रश्नों का उत्तर भी मिला और मेरे मन की परेशानियों का समाधान भी हुआ था। तो मैं लगातार कई बार गई, लेकिन फिर बहुत सी बातें होती कि अगर आपने परिवार चुना है तो कुछ प्रायोरिटीज हो जाती हैं कि वी कांट गो अगेंस्ट दैट। तो ठीक है, मतलब फिर मैं गई नहीं, लेकिन हाँ, मैं जो आपके सिस्टर बीके शिवानी जी हैं, उनको तो सुनना किसको अच्छा नहीं लगता
1: जी, जी।
0: तो बहुत बार जब हम कहीं अटकते हैं ना, तो हम जब उन सुनने लगते हैं तो हमको बहुत से प्रश्नों का समाधान मिल जाता है
1: जी।
0: और अभी शिव बाबा ने, पता नहीं उनकी क्या मंशा है, मुझे नहीं मालूम है, फिर से उन्होंने बुलाया, और यहाँ पर भी जो आपका आर्ट एंड कल्चर का ये जो 3 दिन का पूरा कॉन्फ्रेंस होता है, राष्ट्रीय सम्मेलन, तो उसमें क्योंकि विषय इतना अच्छा था, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको समाज को बचाना है, देश को बचाना है और विश्व को बचाना है, तो परिवार को बचाना सबसे अधिक आवश्यक है।
1: बिल्कुल।
0: तो जो विषय था, और मेरा विषय था संस्कृति, संस्कार और परिवार के मूल्यों के संवर्धन की कला, तो ये बहुत आवश्यक है कि जैसे मुझे ये लगता है कि हम अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं और जो दूसरे देश के लोग हैं वो हमारी संस्कृति की ओर आ रहे हैं। तो खैर, ये तो मैंने बताया कि स्पीकर यहाँ आई थी, लेकिन आज आप सबसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है और मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है, तो उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ।
1: वैसे तो बहुत सारे प्रश्न है मेरे मन में, लेकिन मैंने आपकी बहुत सुंदर प्रोफाइल जो पढ़ी, उसमें आप ये भी लिखा था कि आप फाउंडर हैं क्रिएटिव राइटिंग की।
0: सॉरी,
1: आप फाउंडर हैं क्रिएटिव राइटिंग।
0: जी जी,
1: हाँ। जी, तो अगर उसके बारे में कुछ बताएं।
0: जी, जरूर। क्रिएटिव राइटिंग, देखिए क्या होता है, जो लेखक होता है ना, नजर और नजरिए का फर्क होता है। अब सामने ये पेड़ दिख रहा है मुझे, है ना, मैं भी देख रही हूँ, कोई और भी देख रहा है, किसी को सिर्फ लगेगा कि उसमें पत्तियां हैं, लेकिन एक जो लेखक होता है उसमें एक अलग दृष्टिकोण से देखता है, एक अलग पर्सपेक्टिव से देखता है। तो बहुत से लोग कोविड में, खास तौर पर बहुत, क्योंकि कोविड में लोग अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे थे, अंतर यात्रा कर रहे थे, और कई लोग जब बहुत परेशान थे तो कई लोगों ने हमसे संपर्क किया
1: जी।
0: मेरे साथ में दिनेश शाकुल जी हैं, जो चंद्रगुप्त बनते थे चाणक्य सीरियल में, और काफी बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत नॉलेजेबल हैं
1: जी।
0: तो कई लोगों ने हमसे कहा कि लिखा कैसे जाता है, हम लिख तो रहे हैं। तो फिर हमने क्रिएटिव राइटिंग का जो है वो शुरुआत करी।
1: ओके।
0: और उसमें हमने कहा कि जो कविता क्या होती है, कविता में अलग अलग भाव होते हैं, नाद होता है, और उसमें किस तरह से आप उसको लिखते हैं। तो फिर हमने ये काफी सारी पूरा सिलेबस बनाया था, 5 मॉड्यूल्स थे उसके, 5 मॉड्यूल्स में हमने वो सिलेबस बनाया था।
1: अच्छा।
0: और उसमें हम उनको वो पूरी क्लासेस लेते थे और उसके बाद उनको हम होमवर्क देते थे। तो कई लोगों ने उसमें बहुत अच्छी कविताएं लिखना सीखा। और क्योंकि मैं, महिला काव्य मंच है, अंतर्राष्ट्रीय है, जिसके फाउंडर है नरेश नाथ जी, तो उन्होंने मुझे महाराष्ट्र मकाम का अध्यक्ष बनाया, तो उसमें बहुत सी महिलाएं जुड़ी। और उसमें आरुषि जी, क्या है कि मन से मंच तक,
1: अच्छा,
0: है ना
1: जी।
0: तो ये जो आपने कहा क्रिएटिव राइटिंग और मन से मंच तक, तो मन में बहुत से लोगों के भाव होते हैं ना, आप अनुभूति को जब अभिव्यक्ति में ढाल देते हैं, उसको उतार देते हैं कागज के कैनवास पर, तो वो कविता, कहानी, गजल कुछ भी बन जाती है
1: जी।
0: तो इसी तरीके से जब बहुत सी महिलाएं आई जिनको लिखना नहीं आता था और वो केवल कुछ कुछ भी या तो किसी की पढ़ देती थी, फिर हमने उनको थोड़ा सा और गाइड किया। तो इस तरह से एक जो क्रिएशन, क्योंकि देखिए कलाकार तो क्रिएशन करता है।
1: बिल्कुल।
0: और यहाँ पर एक चीज मैंने बड़ी अच्छी सुनी कि कलाकार यानी जो कल को आकार देता है।
1: क्या बात है।
0: तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम ये नहीं कहते कि हम सचमुच पूरा कल को आकार दे सकते हैं, एक चेतना जरूर पैदा कर सकते हैं। तो एक क्रिएटिव राइटिंग के क्रिएशन कैसे था, राइटिंग तो है लेकिन क्रिएशन, क्रिएटिव कैसी हो, रचनात्मकता कैसे आए उसमें, तो ये जो है हमने पूरा मॉड्यूल बनाए हैं और उसको लेकर के हमने पूरी कविता के ऊपर क्रिएटिव राइटिंग की। इसी तरह से कहानी पर भी हम मॉड्यूल बना रहे थे, लेकिन किसी कारण से छूट गया, क्योंकि मैं कहती हूँ कहानी एक घटना से नहीं होती। जैसे जब हम छोटे थे, मैं बहुत छोटी उम्र से लिख रही, पहले तो मैं बता दूं 6-7 साल के लिए जब से मैंने कुछ कुछ लिखना शुरू कर दिया था। उसके रीजंस भी हैं, अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगी।
1: बिल्कुल।
0: खैर,
1: जाना

0: कहेंगे
1: तो क्या होता है ना कि जैसे मैंने एक घटना कहीं देखी, दूसरी घटना कहीं देखी, तीसरी घटना कहीं देखी, तो हम जब सबको सिंक्रोनाइज करते हैं, क्योंकि जो रचनात्मकता होती है, रचनात्मक लेखन, क्रिएटिव राइटिंग होती है, वो रिपोर्टिंग नहीं होती है। उसमें आप यथार्थ के साथ में कल्पना का भी उसमें सम्मिश्रण रहता है।
0: बिल्कुल।
1: तो ये जो होता है, ये तो क्रिएटिव राइटिंग इज अ वेरी वास्ट फील्ड, और उसमें ये वाली बात है। और एक बात बहुत आवश्यक है कि क्रिएटिव राइटिंग कोई मशीनी तो वो होती नहीं, उसमें आपको भावनाओं में जब तक पगी नहीं हो ना, तो उसमें वो बात नहीं आ पाती है। तो मुझे लगता है कि हर जो रचनाकार है उसके अंदर भावनाएं तो होनी चाहिए, और वो अपने दुख के साथ दूसरे के दुख को भी उसी तरह से अनुभव कर सके,
0: संवेदनशील
1: कर सके। बिल्कुल। तो क्योंकि दुनिया तो बहुत बड़ी है और जिंदगी हमारे आसपास बिखरी पड़ी है, तो उस जिंदगी को जब आप रचनात्मकता में ढालते हैं, वो क्रिएटिव राइटिंग।
0: क्या बात है, कितनी सुंदर डेफिनेशन दी है आपने।
1: थैंक यू।
0: आपने फिल्मों के लिए लिखा है, आप रेडियो की बात करें या फिर कविताओं की बात करें, आर्टिकल्स की बात करें, कहानी, मतलब बहुत बहुत कुछ लिखा है आपने। आपके कई पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। कुछ एक किसी प्रकाशन के बारे में आप जरूर बताएं। जैसे मान लीजिए, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग टाइटल लगा, मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, तो इसके पीछे का क्या कहानी है, ये कैसे लिखा या क्या, उसके बारे में कुछ
1: मैं बताती हूँ। एक तो आपने रेडियो की बात की, उस पर फिर मैं मुर्दे पे आऊंगी। तो रेडियो लेखन के लिए मैं आपको बताऊं कि क्योंकि जैसे मैं बॉम्बे से हूँ, तो एक बार किसी ने कहा कि बम्बई के में संयुक्त परिवारों पर आप कुछ एक लिखो।
0: अच्छा।
1: तो मुझे किसी ने चैलेंज किया कि आपको बॉम्बे में संयुक्त परिवार मिलने वाले ही नहीं है। लेकिन बोलते हैं ना, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, और मुझे तो करना था। आप मानेंगे नहीं आरुषि, जब मैं जब ढूंढने लग गई, 13 परिवार की जगह मुझे इतने परिवार मिलते चले गए, और वो मैं आज भी गूज़बम्स आते हैं मुझे जब मैं वो अनुभव शेयर करती हूँ। तो जिनके भी परिवार में गई, तो क्या होता है ना कि जैसे एक जगह अगर जब इकट्ठा होता जाता है पानी, तो सड़ने लगता है। इसी तरह से ना परिवारों में भी कई कई बार कुछ कुछ भावनाओं में एक दूसरे से क्लैशेस होने लगते हैं। तो लेकिन जब मैं उनसे मिली, और एक परिवार अंधेरी का मैं आपको बताती हूँ, दुबे परिवार था, तो वहाँ बड़े भाई भाभी ने ही उनके पूरे मतलब छोटे भाई बहनों को बड़ा किया था, और बहुत अच्छे से सारा कुछ उनका किया था। तो जब हमने ये किया, तो वो लोग लिटरली रोने लग गए और मुझे गले लगा लिया, और उनने कहा कि जैसे एक विरेचन होता है ना, जिसको कैथासिस कहते हैं, एरिस्टोटल ने जो दिया था, कि उन्हें कहा हमारे अंदर की सारी जो गलत भावनाएं आने लगी थी वो सब खत्म हो गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके से एक हमने जो काम किया, तो रेडियो लेखन में ये एक अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा। और ये रापा सीरियल अवार्ड होता है, रापा यानी जो टेलीविजन और दूरदर्शन में जो बेस्ट होता है, तो उसको बेस्ट रापा सीरियल अवार्ड भी मिला था।
0: क्या बात है
1: जी।
0: क्या बात।
1: अब आपने मुझसे मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, तो आपको जैसे शीर्षक बहुत अच्छा लगा, तो दरअसल ये एक मेरे एक दोस्त हैं, तो वो पहले फिल्मों में एक्टिंग करते थे, अब वो बिहार में कहीं रहते हैं। तो क्या हुआ था कि मेरी एक कहानी पढ़ के उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया, कि मुझे बहुत अपनी अपनी सी वो कहानी लगी, बहुत मैं कनेक्ट हुआ हूँ उससे। तो फिर उनसे बातचीत होने लग गई, तो जो क्योंकि बॉम्बे में तो बॉलीवुड और बॉम्बे की लाइफ, तो बॉम्बे या तो मतलब ऐसे कहते गरीब से गरीब को भी भूखा नहीं सुलाता, अमीर से अमीर को भी। तो बॉम्बे एक ऐसी मिस्ट्री है कि जिसको हर कोई हल करना भी चाहता है, जिसमें जाकर फंस भी जाता है। तो ये हुआ कि वो रवि नाम है उनका, तो उनसे मेरी फिर अच्छी बातचीत होने लग गई, और वो फिल्मों में सीरियल्स में सब स्ट्रगल कर रहे थे, फिल्मों में स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, बन गए तो बन गए, नहीं तो बहुत खत्म भी हो जाते। खैर, तो वो जो बताते थे, फिर उनकी कविता थी मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, और तो इस तरीके से, तो वो फिर बाद में उनसे ही, क्योंकि उनकी लाइफ थी, तो वो स्ट्रगल करते हुए दो दोस्तों की कहानी है। फिर अंत में ये होता है कि जो दो दोस्त हैं, मतलब एक दोस्त दूसरे दोस्त को संभालता है, और फिर दूसरा दोस्त जब परेशान होता है तो ये संभालता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि वो कुछ ऐसा समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है और रूम से चला जाता है। उस समय पेजर हुआ करते थे, जब मैंने ये कहानी लिखी थी, तो पेजर पर ये कबीर जो है पहला वाला दोस्त, वो आदित्य को मैसेज करता है कि मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, इतिहास वो लिखते हैं जो धारा के विरुद्ध चलकर अपना रास्ता खुद बनाते हैं। तो अब मैं ये शीर्षक कैसे है, देखिए कई लोग कहते हैं मुर्दे, मतलब तुम्हारे शीर्षक मुझे समझ नहीं आए, जो समझ सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगा। अब आप मुझे बताइए कि जो जीते जी मर जाएगा वो तो मुर्दा हो गया ना, और जीते जी जिसके अंदर जिजीविषा है, एक संघर्ष की कामना है, तो वो कभी मुर्दा नहीं हो सकता।
0: बिल्कुल,
1: इतिहास उनका ही लिखा जा सकता है, और
0: हार नहीं मानता
1: है ना, उसका इतिहास तो कभी नहीं लिखा जाएगा। तो ये बात है, और यही मैं अपने जिंदगी में भी कहती हूँ कि हार कभी मत मानो, है ना, जैसे वो है ना कि हार के आगे जीत है, तो यही वाली बात है कि अपने आप को हारने नहीं दो, और खास करके यहाँ आने के बाद इस डिवाइन में कि मतलब जब हम अपने आप से संवाद करते हैं, परमात्मा से खुद को जोड़ते हैं और अपने असत्य को पहचानते हैं, तो हमको लगता है कि नहीं हार तो कहीं है ही नहीं। तो कुछ इसी तरीके से कि इतिहास आप लिख सकते हैं, आप अपने जीवन में अपने आप को एक हमेशा कर्मठ बना के रखिए।
0: जी बिल्कुल, ये जब कभी कभी बहुत बड़ी मुश्किलें आती हैं तो उसको जीवित रखना बहुत जरूरी होता है, जो हमारे अंदर की आग है, जो हमारे अंदर की भावनाएं हैं। मैं एक और प्रश्न आपसे जरूर पूछना चाहूंगी यहाँ पे, क्योंकि आपने उपन्यास भी लिखे, कई कहानी संग्रह हैं, तो कहानियां लिखने के लिए अगर मान लीजिए कोई इंटरेस्टेड है, कोई युवा है जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो अगर आप कुछ टिप्स दें, कुछ ऐसी बातें जो मदद करें, जैसा आपने कहा ना अनुभूति को अभिव्यक्ति मिलाने के लिए, आपकी ओर से कुछ ऐसे,
1: मतलब आपका प्रश्न है कि कौन सी बातें कहानी लिखने में मदद कर।
0: जी जी जी,
1: हमारा जो मैका है वो कटनी एमपी में है और वहाँ एक फार्म हाउस है हमारा, तो मेरे पापा जो थे उन्होंने पूरी अपना सारा एकदम रात से लाइफ छोड़ के, उनको फार्मिंग बहुत पसंद आई, तो वो हम मतलब 400 एकड़ जमीन थी, बंगला था, तो हम लोग वहाँ रहते थे, तो वहाँ जो गांव की लड़कियाँ आया करती थी उनसे हमारी दोस्ती हो जाती थी, और वो लड़कियों को देख करके ना मेरे जहन मतलब वो अंकित होती चली गई। उस समय तो मैं बहुत छोटी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे क्योंकि मैंने छोटी उम्र में कहानी भी लिखनी शुरू कर दी थी, तो वो कहीं ना कहीं मतलब जैसे एक शिवरात्रि नाम की लड़की थी, हाँ उसका नाम ही शिवरात्रि था, और आज भी मुझे वो वैसे की वैसे याद है, एकदम लंबी छरहरी सांवली रंग की, बड़ी बड़ी आंखें, तो वो कहीं ना कहीं मेरे जहन में अंकित हो गई, है ना। इसी तरह से हमारे यहाँ पर एक गाल बाबा थे, तो उनकी बेटी का नाम था अमसा, था अमसा। अब आप बोलेंगे अमसा कोई नाम होता है ना, है ना। अब वो उसका रीजन क्या था कि मेरी दीदी ने उनकी बेटी का नाम रखा था अंशा।
0: अच्छा।
1: अब अंशा तो वो नहीं बोल सकते थे तो अमसा बोलते थे, तो एक करेक्टर मेरी अमसा बनी, एक करेक्टर मेरी शिवरतिया बनी, और फिर उनकी कहानी दूसरों कहीं से आए, जैसे मैंने बताया आपको कि कटनी की हूँ मैं, तो कटनी में ना चूने के भट्टे बहुत होते हैं, तो चूने के भट्टों में जो लोग काम करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ उनको टीबी बहुत हो जाती है, तो वो जो सारी जो चीजें थी वो, उसके बाद में रेलवे लाइन पर जैसे गरीब लोग हैं वो कोयले बिन रहे, कोयले के जो वैन निकलती ना कोयले गिरते हैं, तो वो कोयले बिनते बिनते ट्रेन से कट जाते हैं, कई बार उनको नहीं पता चलता था, तो ये जो मेरा जो एकदम मासूम सा मन था ये बहुत मुझे परेशान करती थी ये चीजें, और वो फिर सब मेरी कहानी में ना मतलब एक चीज वहां में जैसे बताया ना एक घटना ये एक घटना वो, तो ये जैसे कि जो मतलब मेरी कहानी में अमसा जो है वो गांव से शहर आती है, फिर वो इस तरह से उसकी और वो अमसा से मिलती है ये जो राइटर है, और वो चूने भट्टे के वहां जाती है, तो वो बोलती है कि दीदी हम ना कक्का भाई, क्योंकि मैं वहां की तो मुझे भाषा भी आती, दीदी हम कब ना चूने के भट्टे में काम करीबे, तो वो फिर वो बोलती है, लेकिन जब दूसरी बार जाती तो देखती है कि वो अमसा खांस रही है बुरी तरीके से, तो वो बोलती है कि तुमको क्या हो गया, तब वो कहती कि दीदी हम कहे थे ना कि हम अम्मा वाला काम कभी ना करेंगे, लेकिन हमारे घर में खाने को नहीं बचा, दद्दा भूखे मर रहे हैं, दीदी भूखी मर रही, तो क्या करें, काम तो करवे को पड़ा था, तो वो सारी जो चीजें थी, तो वो मतलब वो मैंने वो भाषा वहां की, क्योंकि बचपन में उनके बीच में जाते थे, तो ये ना जो लेखक होता है ना वो बहुत ज्यादा ग्रहणशील होता है और उसका ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प होता है और संवेदनाएं कहीं, और उस पर जो संवेदनाएं होती है ना, तो कहते ना जैसे कि हीरे पॉलिश कर दिया है, तराशती है संवेदनाएं, इस तरह से कहानियां हमारी बनती हैं। जैसे आपसे ही मैं बात कर रही हूँ, अब आपकी स्माइल पर ही मैं कुछ कविता लिख दूंगी तो ये तो देखिए क्या होता है कि नजर की बात है,
0: नजर नजरिया जो आपने कहा,
1: बिल्कुल हाँ।
0: जैसा आपने कहा था कि आपने बहुत कम उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया था, तो क्या ऐसी कहानियां थी जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, या फिर क्या कोई ऐसा क्षण था जिसने आपको इंस्पायर किया, या कहां से लिखने की शुरुआत इतनी कम उम्र में कैसे
1: हुई? क्या हुआ था आरुषि जी कि बचपन में मतलब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था, अक्सर मैं साक्षात्कार में ये बात तो आती कि लोग पूछते हैं कि लिखना कैसे शुरू किया, क्या किसी ने, जैसे आपने पूछा क्या किसी ने इंस्पायर किया या कोई ऐसा क्षण आया, तो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घट गई थी, तो मतलब हम लोग पांच बहन थे और मैंने अपना बहुत दीदी लोगों ने मेरा नाम जल्दी लिखा दिया था, तो मैं मम्मी पापा फार्म हाउस में रहते थे तो मैं दीदी लोग के साथ यहाँ रहती थी और मैं बहुत छोटी सी थी। तो मेरी दीदी जो थी सबसे बड़ी वो खुद 18 साल की थी जब उनकी शादी हुई थी और वो मेरे लिए माँ समान थी कि मम्मी फार्म हाउस पे रहते थे मम्मी पापा। तो उसके बाद मतलब उन्होंने ही मुझे डांस वगैरह, हम लोग का पिक्चर हॉल हुआ करता था तो डांस वगैरह करती थी, तो उनने कहा कि इसको डांस सिखाया जाएगा। तब तो लिखने जैसा कुछ सोचा भी नहीं था, मैंने नहीं सोचा ही नहीं था, मतलब 5-6 साल की बच्ची क्या सोचेगी ना उस वक्त। तो मैं क्या करती थी, पिक्चर हॉल से आती थी फिर वो लाइट लगा के फिर गा के अंदर, तो बोली करती क्या अंदर ये, तो दीदी लोग ने देखा तो इसको डांस सिखाया जाएगा और वो ही गा के सिखाते थे मुझे क्योंकि क्लासेस नहीं थी, कथक बेस है लेकिन मेरे डांस का। तो खैर फिर वो दीदी की शादी बहुत जल्दी हो गई, 19वें साल के पहले ही, मतलब कहते हैं डाउरी डेथ थी उनकी। तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, मतलब आज भी कई बार आंसू आ जाते हैं उनकी बात करते हुए मेरे आंखों में। तो उनसे जो छोटी दीदी थी उन्होंने कहा कि तुम्हारे मन में जो आता है ना याद करके लिखा करो। और डांस शशि दीदी नाम था शशि, तो उनने कहा कि शशि को मतलब उनका मन था कि तुम डांस करो, तो मेरी जो प्रभा दीदी वगैरह थी उन्होंने मुझे लगातार डांस, तो मतलब मैंने कई सारे डांस में भी अवार्ड सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार बहुत सारे जीते हुए हैं। फिर सरस्वती माँ की कृपा जो उन्होंने मुझे कला दे करके भेजा, और मैं कहती हूँ लिखना मेरे लिए सांस लेने जैसा अब बोलती हूँ क्योंकि तब तो मालूम नहीं था मुझे। तो मैं जो भी मन में कुछ भी आता था पेंसिल से लिखती जाती थी उसको, फिर धीरे धीरे टीन एज की जब हुई तब तक मैं कहानियाँ लिखने लगी थी जी। तो उस टाइम्स ऑफ इंडिया का एक पब्लिकेशन था सारिका, धर्मयुग अगर आपने सुना होगा सारिका, ये दोनों टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन हुआ करते थे। तो सारिका में मेरी पहली कहानी छपी नवांकुर विशेषांक में। उसके बाद तमाम जगहों से पत्र आने लग गए और मंगाई जाने लग गई कहानियां, और मतलब उस समय मुझे अब तो सेलिब्रिटी बन गई, इतने सारे लेटर्स के बीच में छोटी सी अलका बैठी हुई पत्र पढ़ रही है सारे। खैर फिर वो एक सिलसिला शुरू हो गया आकाशवाणी जबलपुर और फिर तमाम जगह। फिर बॉम्बे भी गई तो मेरे साथ में अच्छा ये हुआ क्योंकि मेरे पति वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं लेकिन वो मेरे लेखन को बहुत पसंद करते रहे हमेशा से। तो उन्होंने कहा कि तुम लिखना बंद मत करो, और मुझे कुछ वहां पर जनसत्ता में सब रंग उनका आता था। तो शादी के बाद भी मेरा लेखन कभी ना रुका नहीं। तो यही वाली बात है कि आप दुख से या तो अपने आप को बना लीजिए या दुख में अपने आप को खत्म कर दीजिए। तो दुख ने मुझे बनाया है जी, इस तरह में लिखने लग गई, शब्दों में ढाल दिया अपने दुख को मैंने।
2: ये जो सेंटेंस है जी, दुख से या तो अपने आप को बना लीजिए या खत्म कर दीजिए, यही से वो जो आपका जो पहला टाइटल है शायद वो सिद्ध हो जाता है कि मुर्दे इतिहास नहीं लिखते। इतिहास वो लिखते हैं जैसे आप जैसे लोग जो जिन्होंने दुख से अपने आप को बना लिया। मुझे लगता है लाखों लोगों को दुख से निकालने के निमित्त बन गए
1: जी।
2: क्या इसके लिए फिर आपको ऐसा कुछ लगा कि हाँ मुझे और ट्रेनिंग करनी है या और कहानियों को समझना है? किसको मतलब आप पढ़ते किनको थे या कौन आपको बहुत पसंद, कौन किसका लेखन आपको बहुत पसंद था?
1: जैसे चित्रा मुद्गल जी का बहुत अच्छा लगता है मुझे। मधु काकड़िया इस समय जो है हमारे समय की, मतलब हम हमारे से बड़ी पीढ़ी की है लेकिन मधु काकड़िया जी बहुत अच्छा लिखती है। उसके अलावा जैसे कि हरिशंकर परसाई जी को तो मैं खैर एक तरह से उनके लेखन को जीती हूँ। ज्ञानरंजन जी भी मुझे बेटी जैसे ही मानते थे और मेरा एक सौभाग्य रहा है कि मुझे इन सब से मिलने का मौका मिला है। मुक्तिबोध को मैंने पढ़ा है, अज्ञेय को मैंने पढ़ा है। तो कई बार जैसे बाबा नागार्जुन की कुछ कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं। इसी तरह से अमरकांत मुझे बहुत पसंद थे, उनकी जिंदगी और जो क्या बहुत सारी। तो मतलब मैं ये नहीं बोल सकती कि मुझे एक कोई साहित्यकार पसंद है। कभी किसी की कुछ चीज अच्छी लगती है, कभी किसी की कोई चीज बहुत अच्छी लगती है। तो और आपको ना वो रास्ता जैसे बशीर बद्र उनकी आप शायरी सुनेंगे कि आप सुने कि हम बचपन में थे ना तो वो रखते थे उजाले अपनी यादों के, हमारी साथ रहने दो न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और बहुत सारे है कि मतलब उनकी मतलब बार बार हम उनके बहुत सारे शेर हमें याद आते हैं। तो जो भी अच्छा मिलता है, और कई बार ये भी होता है आरुषि जी की बहुत नाम नहीं होता है किसी का लेकिन अचानक आप उठा के पढ़ते हैं तो अरे इतने ये लिख दिया, ये मैंने क्यों नहीं लिखा। तो ये होता है। और जैसे कि कई बार ये होता है कि जैसे ना जैसे अगर आप बोलेंगी तो मैं अपनी एक आध आपको रचना भी सुना दूंगी।
2: जी मैं एक्चुअली वो पूछने ही वाली थी कि कुछ पंक्तियां अगर आप सुनाएं अपने लेखन की हमें भी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा।
1: तो पहले तो मैं बताती हूँ कि ना बता जैसे मतलब हमेशा मुझे मेरे हस्बैंड कहते हैं और मैं ना मतलब मुझे लगता है कि आपका भी मुझे लग रहा है आपके अंदर का भी बच्चा हमेशा जिंदा रखती है आप तो अपने भीतर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। तो मेरा पति हमेशा कहते हैं मम्मी पापा ने तुमको बड़ा करके नहीं भेजा तो मैं कहती थी कि कहते हैं वो कि हम बड़े नहीं हुए, कहते हैं वो कि हम बड़े नहीं हुए, बड़े हो ना मतलब झूठ बोलो शान से मक्कार हो जाओ, क्या करें इस परिभाषा पे हम खरे नहीं हुए तो कहते हैं वो कि हम बड़े नहीं हुए।
2: वाह वाह वाह।
1: तो क्या हुआ कि मेरी बेटी अब तो बड़ी हो गई है तो जब वो 5 साल की थी ना तो एक बार मेरे साथ जा रही थी। अच्छा वो वैसे मम्मा बोलती है लेकिन जब वो बहुत उसमें प्यार में होती है तो माँ बोलती है मुझे और मुझे बहुत मतलब तो मैं लगती हूँ कि ना और सचमुच मुझे लगता है कि जो रिश्ते आपको जो खुशी देते हैं ना वो कहीं नहीं मिलती है। और मैं आपको 2 कविताएं इसलिए सुनाऊंगी कि आपने अगर परिवार चुना है तो पहले मैं वो सुनाती हूँ फिर मैं अपनी बेटी पे।
2: प्लीज प्लीज जरूर जरूर
1: जी। तो क्या सपने बन गए बोनसाई, कहते हैं कुछ लोग कि स्त्री जब बनती है माँ करती जाती है अपने सपनों को छोटा छोटा बहुत छोटा, मारती जाती है अपने सपनों को खुद बेमौत या हो जाते हैं उसके सपने बौने, बन जाते हैं क्या बोनसाई, बन जाते हैं बोनसाई। सोच का बवंडर उठा अभी तर उसके, क्या ये सच उसका भी है, क्या ये सच उसका भी है, हो जाने दिया है उसने अपने सपनों को बौना, बना दिया हरे भरे वृक्ष से बोनसाई। विचार मंथन चल पड़ा अंतस में, अगर ऐसा होता तो मिट चुका होता कब का वजूद उसका, उसने टटोला खुद के वजूद को महसूस किया, अरे वो तो वहाँ है मतलब उसका वजूद तो वहाँ है, बड़ा अजीब है व्यक्तित्व उसका, एक कोस्त्री विमर्श की बातें तमाम पर झेलती है यातनाएं भी तो क्या छद्म है उसकी बौद्धिकता, लेखन में विरोध के स्वर है मात्र दिखावा, तर्कों की मथानी से फिर मंथन वो करती है तब सांसारिक सच की सोच नवनीत से उतरती है, पत्नीत्व और मातृत्व का चुनाव उसका ही तो है, तो फिर शायद जायज है समझौते भी, यातना सहते हुए भी खुद को खुश रख पाती है, अपने वजूद से पहचानी जाती है, यानी नहीं होने दिया उसने अपने सपनों को बौना, जिजीविषा के पानी महत्वाकांक्षा की खाद और आत्मसम्मान की धूप से बचाया है उसने अपने सपनों को बोनसाई बनने से। तो अब मेरी बेटी मेरे साथ जा रही थी, एक बार 5 साल की थी तब, वो तो ऐसे आंख बंद करके एकदम बैठी थी, मैं उसको देख रही थी, अचानक उसने मुझे जो बोला तब ये कविता निकली, क्या बोला था इसमें आएगा। सुबह की सुहानी बयाज सी है वो, अल सुबह की सी शीतल ओस सी है वो, उसे देखकर लगता है ऐसे भर ली हो भोर की भीनी खुशबू भीतर जैसे, उसका मीठा बोसा लगता है यूं सहला गया ठंडी हवा का झोंका जूं, चूमती जब मासूमियत से आंखों को मेरी कितना नाजुक पिघलता सा है वो एहसास, उस रोज सुबह सुबह संग मेरे वो निकली नन्ही परी ने आंखें बंद कर ली अपनी, खो गई एक प्यारी सी दुनिया में, एंजल सी चमकती चेहरे पे उसके, अपनी छोटी छोटी बाहों का घेरा मेरे गले में डाल, आंखों में सितारे भर कर कहा उसने, माँ माँ माँ मुझे सुबह बहुत अच्छी लगती है, अनहद नाच सा बज उठा अंतस में मेरे मंदिर में, बज गई हूँ घंटियां जैसे, कैसे महसूस कर पाती है मेरी नन्ही सी कली सुबह की पावन खूबसूरती, कितनी मधुर है ये अनुभूति, बड़े प्यार से फिर वो मुझसे सटी सीप सी पलकें बंद कर अपनी, झर झर झर झर झर झर झरते झरने सी आवाज में कहा उसने, सुबह कितनी अच्छी लगती है ना माँ, है ना माँ सुबह कितनी अच्छी लगती है ना, खिल उठी भीतर मेरे खुशियों की बीथियां, कितनी प्यारी होती हैं बेटियां, आगोश में अपने भर कर पेशानी उसकी चूम कर कहा मैंने, बेटी मेरी मुझे तो तू खुद सुबह सी लगती है, तू खुद सुबह सी लगती है।
2: क्या बात है मतलब सच में ये जो आपने पंक्तियां कही हैं हर माँ सुनेगी तो अपनी बेटी को, अगर वो उनसे थोड़ा सा भी दूर है तो मुझे लगता है वो उनके करीबी पल वो उनकी आंखों के सामने वैसे तो रहते ही हैं लेकिन वो आंखों में आंसू बन के बह जाएंगे, इतने खूबसूरत हैं ये पंक्तियां। आपकी बेटी क्या कहती है जब वो आपकी कविता सुनती है?
1: मेरी बेटी अभी मतलब बेटा भी है मेरा, अभी जॉब कर रहा है और बेटी अभी लॉ कर रही है और 4th ईयर में है। और अभी मैं आपको बताऊं कि पता नहीं मतलब कई बार हमको लगता है कि शायद पता नहीं वो उतना प्यार करती है, लेकिन अभी इधर मैं भोपाल में किसी कार्यक्रम से गई थी, यहाँ पर हूँ मैं 26 तारीख से, तो वो मुझे बहुत मिस कर रही है तो रोज फोन करती है, तो मुझे लग रहा है कि काश मैं जल्दी चली जाती, खैर तो वो ना लॉ कर रही है. अच्छा एक बात अच्छी है कि वो इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखती है, मुझसे अच्छा, बेहतर लिखती है, और वो बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी बात कर लेती है. तो मैं कहती हूँ कि उसका नाम, वैसे हम लोग घर में मिष्टी बोलते हैं, वैसे उसका नाम शरण्या है.
0: अच्छा,
1: तो कई बार ना वो जब छोटी भी थी ना, तो जैसे मैं उसको लोरी सुनाया करती थी, तो वो मुझे अपनी गोद में सुला करके वैसे लोरी गाती थी. तो मैं कहती थी कि बेटी माँ बन जाती है, तो मतलब ये होता है. तो अभी भी ना कई बार मम्मा ऐसे नहीं करना, मम्मा वैसे करना है. तो मैं कई बार, मुझे लगता है, और मैं भी उसको बोलने देती हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि हाँ वो मेरी माँ बन करके मुझे उस तरीके से वो कर रही है. तो बड़ी प्यारी सी, नाजुक सी है, और अच्छा लिखती है, और लॉ कर रही है. और उसका शुरू से ना बहुत ये मन था कि मैं इसमें रहूँ, मतलब जो जासूसी जो सीरियल होते थे, हाँ, इस तरह के जो होते थे, वो देखा करती थी, तो उसको उसमें मतलब बहुत इंटरेस्ट आता था. तो उस तरीके से वो अब वो लॉ कर रही है.
0: क्या बात है. अच्छा, इसीलिए उन्होंने वो प्रोफेशन बनाया उसको, और समाज की मदद के लिए, जैसे वो एक उसको इंटरेस्ट को भी उन्होंने उसको इस्तेमाल किया. क्या बात है. तो वो क्या करते हैं, तो जब आपके घर वाले आपकी कविताएं सुनते हैं, तो क्या आपको फीडबैक देते हैं, कैसा लिखा है ये कहते हैं, या क्या महसूस हुआ, कैसा, मतलब पहले, सबसे पहले जब आप लिखते हैं तो किसको सुनाते हैं आप?
1: आपको बताऊं, मैं सबसे पहले अपने पति को सुनाती हूँ.
0: अच्छा,
1: ठीक है
0: जी.
1: वो मेरे सबसे बड़े क्रिटिक हैं, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन मैंने देखा कि साहित्य की समझ उनके बहुत अच्छी है. और मैं ना बहुत जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी अभी जैसे बोल के बता रही हूँ आपको, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोला कर
0: जी.
1: तो मुझे कहते हैं कि थोड़ा ना थम थम के
0: आराम
1: से, है ना. तो उन्होंने मुझे एक तो ये सिखाया, दूसरा वो कहते थे कि तुम्हारा जो फोर्टे है वो तुम्हारी भावनाएं, संवेदनाएं हैं, तो तुम अपने किसी के बोलने से ना उसको बदलो नहीं. और वो कई बार मुझे कहते नहीं ये चीज ऐसे अच्छी नहीं लग रही है, तो वो मैं उनको बताती हूँ. अच्छा, कई बार ये भी होता था कि मैं अपने कुछ दोस्तों को भी बता देती थी, तो पता चलता था थोड़े दिन में मेरी चीज उनके नाम से आने लग गई. ये बहुत होता है आरुषि जी. मेरी तो आपको बताऊँ, ये कविता है जो बहुत ज्यादा फेमस हुई है, द्रौपदी तुम्हें उठाने होंगे शस्त्र, तुम्हें ही बनना होगा सशक्त, नहीं आएंगे अब कोई कृष्ण, उसको चुरा के लोगों ने कर लिया, सुनो द्रौपदी श्रेष्ठ उठा लो अपना आएंगे गोविंद. ये मैंने लिखी थी कविता.
0: अच्छा, उसमें एक दो शब्द बदल के किसी
1: ने, और ये मतलब एक मिनिस्टर है, नाम नहीं ले रही हूँ मैं यहाँ रेडियो पे, एक मिनिस्टर है उन्होंने, फिर एक और, तो तमाम उसको बहुत सारे राजनेताओं ने उसको कोट किया. तो मेरा बेटा मुझे बोलता है कि मम्मा आप लिखते हो, आप इतना अच्छा लिखते हो, आप उसके लिए, तो मेरे पास में मेल है वो, जब मैंने पहले लिखी थी, भेजी थी, पेपर में छपी भी थी. अच्छा, मैं एक और काम किया करती थी, उस कविता को हम जो जाते थे, हम मार्शल आर्ट वालों को लेकर के जाते थे, तो मार्शल आर्ट वाले जो थे वो वहां पे मार्शल आर्ट सिखाते थे लड़कियों को. एक मेरे साथ वकील जाते थे मेरे दोस्त, और मैं एक कविता गाती थी, बोलती थी. तो हम पूरी लड़कियों को, मैं कहती थी कि आप लड़कियों को इतना ट्रेन कर दो कि दो चार लोगों को से अपने आप को सेफ तो कर सके वो.
0: बिल्कुल.
1: तो ये मैं, मेरा ये पूरा का पूरा मोटो था. लेकिन खैर, उसके बाद मेरे एक सीरियल को मेरा, मैंने लिखी थी कहानी, तपस्या वाला था वो, क्या था, तपस्या थी उस सीरियल में. अब मैं सीरियल का नाम पता नहीं कैसे अचानक से अभी बात करते, तो उस पर सीरियल बन गया, और वो मेरी कहानी की चोरी थी. तो खैर, मुझे फिल्म राइटर एसोसिएशन में, मुझे मेरे फेवर में डिसीजन भी आया, पर बहुत कुछ ऐसा हुआ, पर ठीक है, क्या किया जा सकता है, तो बहुत कुछ होता है. लेकिन और भी, जैसे कि मैं, अगर आप बोलेंगी तो आपको मैं एक दो चार शेर सुना दूं, अगर आप बोले तो.
0: जरूर जरूर, और शेर भी सुनना चाहेंगे, और साथ में जो आपने कहा ना कि लड़कियों को इतनी तैयार हो जाए, इतना मोटिवेट हो जाए कि वो खुद की रक्षा स्वयं कर सके. हाँ. तो अगर कोई ऐसी भी कविता हो तो भी हम जरूर सुनना चाहेंगे, अगर आप को याद.
1: जैसे कि मैंने वो जो द्रौपदी वाली थी ना, कि मतलब सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, कि मतलब द्रौपदी अब जगह जगह पुकार रही है, लेकिन मतलब उसको खुद को ही सशक्त बनना होगा. तो ये तो है, लेकिन अभी फिलहाल ये है कि जैसे दूसरों को भी, कि मतलब हम कहते हैं कि अपने दिल और जान में रखना, नाम मेरा भी ध्यान में रखना, मुफलिसों को ना दो चांद तारे भले पाके उनके ध्यान में रखना. कि भाई आपके मन में एक दया भाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अपने किरदार, ये देखिए, जैसे कि अपने किरदार को बहुत मजबूत इस बदलते जहान में रखना. ऐसे नहीं कि आप बह गए धारा के साथ में. तो मेरा शीर्षक भी मुर्दे इतिहास में लिखते, आपका अगर किरदार मजबूत है तो फिर आपको कोई बदल नहीं सकता है, कि इस बदलते जहान में रखना. तेरे कपड़ों पे जो है गर्दे सफर, कामयाबी की शान में रखना. कई लोग कहते होता है ना कि जब बड़े बन गए तो भूल जाते हैं. आप अपनी जमीन से हमेशा जुड़े रहे, तो ये मैं कहती हूँ कि तेरे कपड़े पे जो है गर्दे सफर, कामयाबी के शान में रखना. हमेशा याद रखो कि हम कहाँ से उठे, कहाँ पहुँचे हैं, और तुमको आकाश है छूना अगर, तुमको आकाश है छूना अगर, पंख अपनी उड़ान में रखना, अपने दिल और ध्यान में रखना। और ये जो आपने कहा कि मुझे कई लोग कहते हैं कि तुम इतना मीठा बोलती हो कि मतलब हम तो बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं, मैंने कहा नहीं वो ऊपर वाले ने दे के भेजा है। तो ये शायद इस तरह है कि सुन के हो जाए जो फिदा तुम पर, सुन के हो जाए जो फिदा तुम पर, लुत्फ ऐसा जुबान में रखना, अपने दिल और ध्यान में रखना, अपने दिल और ध्यान में रखना। और कभी कभी होता है ना कि हम बहुत दुखी हैं तो हम बोल नहीं पाते हैं, तो अब जैसे अब तो बाबा है वो कोना, हमको कभी लगेगा तो हम बाबा को स्मरण करेंगे, तो कि रो सको जहाँ पे छुप छुप कर, रो सको जहाँ पर छुप छुप कर, ऐसा गोशा मकान में रखना, ऐसा कोना मतलब गोशा, ऐसा गोशा मकान में रखना। और वो गोशा आध्यात्मिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये के कम नहीं है, हालांकि मैंने अलका अपना इसमें तलफ्फुज जो होता है मक्ता जो कहते हैं, लेकिन मैं इसको भी बदल देती फिलहाल यहाँ की, कम नहीं है किसी से कोई, कम नहीं है किसी से कोई, दोस्तों ये गुमान में रखना, दोस्तों ये गुमान में रखना। तो आपने जैसे कहा तो मेरी कहानी थी बेटी
2: जी,
1: तो उसमें माँ अपनी बेटी के बारे में सोचती है, और वो पहले सोचती नहीं शादी, तो दूसरे कहते हैं भाई बेटी बड़ी हो रही शादी करा, तो बेटी को फिर बताने लगती है देखो तुम जाओगी एक राजकुमार जैसा लड़का होगा, तुम्हारा ध्यान रखेगा। और लड़की वो बेटी सपने पाल लेती है, शादी होती है, शादी होती है जब, तो वो जब आती है घर तो वो खुश नहीं है, मैके जब आती तब माँ को समझ में आता है कि उसको जो सपने बेटी को दे दिए हैं वो उसको हाथ में हाथ लेकर घुमाने नहीं लेकर जाता है, बहुत सारी जो चीजें,
2: राजकुमार आएगा,
1: राजकुमार आएगा, तो वो तो नहीं मिला उसको कि भाई नमक कम है तो भी बोलेगा है वो है, तब उसको समझ में आता है कि मैंने इसे गलत सपने दे दिए हैं। फिर वो उसको दूसरी तरह से कि एक एक कविता है कि हो जाती वो पयस्विनी, जब वो माँ खुद बनती है तो महिला, तो बेटी को फिर अलग तरीके से समझाती है।
2: अच्छा।
1: आपकी और वो प्रेग्नेंट है जब बेटी आती तभी भी खुश नहीं, तो फिर उसको अलग तरह से समझा के भेजती है, और कि मतलब आपकी बार अगर दुखी हो जाएगी तो मैं इसे नहीं भेजूंगी, लेकिन उसको मालूम है कि मैंने इसे ऐसा समझा दिया है क्योंकि मैंने उसे गलत ट्रेन किया था। तो ये जो हम संस्कार देते हैं ना तो वो हमारे भीतर कहीं ना कहीं पनप जाते हैं। तो माँ जो बच्चे को सिखाती है वो बहुत सोच समझ के बताना चाहिए कि उसको आगे जा करके भी एक घर संभालना है, तो वो उस तरह से ट्रेन करे कि वो समझ पे आए कि हाँ मेरे ऊपर जिम्मेदारियां आ रही, अब मैं वो बच्ची नहीं रह गई हूँ, बहुत बहुत बदलना पड़ता है। तो मुझे जो मेरी टाइप करते थे उनने कहा कि एक दिन मुझे कहा कि क्या लड़कियां सब सोचती कि शादी के बाद ऐसा होगा, मैंने कहा अमूमन तो सभी सोचती,
2: अमूमन सभी सोचते,
1: तो मैंने भी सोचा था। बोले अच्छा, तो मुझे एक दिन फोन किया, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैंने कहा कि क्यों? बोले कि आपकी कहानी से मैं अपनी पत्नी की भावनाओं को समझने लग गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर एक दिन मैंने बोला कि मेरे कुछ कहानियां टाइप कर दीजिए। बोले आज आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों? बोले मैं आज अपनी पत्नी को डेट पर लेकर जा रहा हूँ और ये आपकी कहानी का असर है,
2: और इससे पहले शायद वो,
1: हाँ तो वो
2: रियलाइजेशन उनको हुआ उससे।
1: एक्चुअली मतलब क्या होता है ना, कई बार ना जो दूसरे घर से लड़की आती है ना, पति समझ ही नहीं पाता है कि ये कितनी अंदर अपनी भावनाएं लेकर आई है,
2: उनके सपने क्या है,
1: सपने लेकर आई है ना। और आप जब तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आप कायम कर पाते हैं, तो जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और हम एक दूसरे के साथ में साथ साथ कदम बढ़ा के चल रहे हैं ना, ये कोई नहीं सोचे कि मैं ये तो आई है मैं ही, क्योंकि एक शोविनिस्टिक मेंटालिटी
2: सोचते हैं इनको एडजस्ट करना है, ये आई है यहाँ से, मगर वो सोच उनके मन में क्या चल रही है वो सोच समझ ही नहीं पा
1: रही, वही वाली बात। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि उसके बाद उनको लगा कि अच्छा ये भी सपने लेके आई है, उसको समझना चालू कर दिया। तो मुझे लगता है कि मेरा लिखना सार्थक हो गया। और इससे मुझे बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे कई लोगों ने मुझे कहा कि आपको देख के हमने डांस करना सीखा, आपको देख कर, मतलब कटनी में, पहले मैं मारवाड़ी हूँ, हमारे दादाजी नगर सेठ हुआ करते थे, तो लड़कियों को डांस वगैरह, इवन मेरे बाबा जी ने वैसे बहुत हमको फ्रीडम दे रखे थे, हमको कभी पता, आप आरुषि जी मैं बिल्कुल खुले दिल से बोलती हूँ कि मुझे कभी वो डिस्क्रिमिनेशन हमारे घर में नहीं हुआ,
2: लड़का और लड़की वाला,
1: हाँ लड़का अच्छा। लड़की वाला कभी नहीं हुआ, हम लोग पांच बहने थे पर कभी नहीं, ना बाबा जी ने, दादाजी ने, ना पापा ने, मम्मी किसी ने नहीं। तो फिर लेकिन वो लोग आए तो बोले डांस, तो उनने बोला भाई नगर सेठ की बेटी ने लोकचंद फुलचंद की पोती डांस करेगी, तो बोले अगर आपकी बेटी डांस करेगी पोती तो बहुत सी बच्चियों, तो उन्होंने हाँ कह दिया।
2: अच्छा, कि हाँ, बाकी लोगों को भी और इंस्पिरेशन मिली।
1: हाँ, तो उन्होंने हाँ कहा, और मैंने पहला डांस जो किया था वो था होठों पे ऐसी बात, और उसके बाद में कारी कारी कारी अंधी आ रही थी रात नवरंग की, तो उसमें भी मुझे दूसरी बार किसी ने डरा दिया, अरे तुमसे तो बहुत बड़ी डांसर आ रही, तुम क्या जीतोगी, छोड़ दो। मैं रोई तो मम्मी ने कहा अब तो तेरी असली परीक्षा है बेटा, अब तो तेरे को जीतना ही, दीदी लोगों ने भी। तो वो मैं फिर जीती, फिर मैं सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार बनी। तो ये मतलब हमेशा मुझे मतलब ये कि मुझे लोग फॉलो करते, अच्छा अलका ने किया, उनकी पोती ने किया, अब हमारी बेटियों को भी,
0: हमारी बेटियों को भी करना चाहिए ना, करना एक चाहिए। क्या बात है। मुझे आपकी बातों से ना एक चीज और बहुत समझ में आई कि साहित्य कैसे जीवन को आसान बनाने में मदद करता है, कैसे एक दूसरे को समझने में मदद करता है। तो हम ऐसे बहुत लोग हैं जो पढ़ते नहीं है, मोबाइल में ही चले गए हैं जिंदगियां, तो अगर साहित्य के और नजदीक जाएंगे तो अपने आसपास वालों को भी और बेहतर समझ पाएंगे।
1: बिल्कुल सही बात है जी,
0: ये पढ़ना चाहिए। और
1: बिल्कुल देखिए क्या होता है ना, आपने आप भी बचपन से पुस्तकें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। और मैं दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में गई थी तो आज तक वालों ने एक इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि क्या आपको लगता है कि आजकल पुस्तकों का अस्तित्व खत्म हो रहा है। मैंने अगर ऐसा होता तो आप पुस्तक मेले में मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं और तमाम स्टॉल है और लोग खरीद रहे हैं किताबें और स्पेशली जाते हैं, और खास करके बच्चों के माता पिता जाते। मेरी बेटी भी बहुत पढ़ती, ठीक है वो अंग्रेजी में पढ़ती लेकिन बहुत किताबें पढ़ती है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे जब हम मोबाइल पे आजकल जो हम रील बोलते हैं ना, रील लाइफ में के कारण हम रियल लाइफ से दूर होते जा रहे हैं। और व्हाट्सएप, हम फेसबुक पे, अच्छा अभी हम परिचित हो गए, अच्छा आप में से कनेक्टेड है, अरे अलका जी आपकी तबीयत, ओ प्लीज गेट वेल सून, अपना ध्यान रखिएगा, ऐसे लगेगा आरुषि से ज्यादा तो मेरा कोई अपना है ही नहीं। लेकिन अभी मेरे घर में अगर कोई है और मैं आपको तो पूछ रही हूँ, आप मुझे पूछ रहे, लेकिन आपके घर में तो मतलब लोग लीस्ट वरीड होते हैं या सोचते भी नहीं कि घर में भी हमको वही चीजें करनी है। तो लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो साहित्य हमें एक एक, एक भावना देता है। जैसे मेरी जिंदगी में बहुत सी चीजें हुई कि मैंने कहानियां पढ़ रही हूँ, आलेख जैसे मैंने परसाई जी को, उनको पढ़ करके मेरी चीजें बहुत भीतर बदला है। जो आप उसको उस तरह से जब पढ़ेंगे ना, आपको बहुत एक प्रेरणा मिलती है, कई बार
0: पर्सपेक्टिव भी मिलता है, एक नया पर्सपेक्टिव भी मिलता है,
1: पर्सपेक्टिव मिलता है, नया पर्सपेक्टिव मिलता है जिंदगी को समझने का। अच्छा कि हम तो अभी तक हम कूप में डूब बने रहते हैं, बट जब आप पुस्तकों को पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए बहुत से लेखक जैसे वो क्या होता है कि उन्होंने पूरी राजनीति पढ़ी होती है, तमाम माइथोलॉजी पढ़ी होती है, तमाम वेद पढ़े होते हैं, या नहीं भी तो और जिंदगी को पढ़ा होता है, और वो उसको उसका सार उसमें लिखते हैं। तो आपको तो सार पूरा मिल गया ना एक जगह, तो जब आपको सार मिल रहा है तो आपको साहित्य बहुत कुछ देता है। साहित्य का अर्थ होता है सहित, जिसमें हित हो, सबका हित,
0: सबका हित हो,
1: तो साहित्य तो हित ही करेगा, तो साहित्य पढ़ना ही चाहिए।
0: अलका जी मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी, जो युवा हमें सुन रहे हैं, अगर आप कुछ किताबें सजेस्ट करें कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, कुछ कुछ किताबें।
1: देखिए आजकल एक तो सेल्फ हेल्प की बुक्स बहुत आ रही, रॉबिन समथिंग उनका ध्यान एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, और रोंडा बर्न की भी जैसे द मैजिक, और आप लोगों का भी साहित्य शायद जैसे अभी जीवन पलटने की कला है, तो ये तो एक अलग चीज है। लेकिन उसके अलावा जैसे कि बहुत सी अच्छी कविताएं आती हैं, हाँ नेगेटिव बहुत ज्यादा मत पढ़िए। और उसके अलावा जैसे कि हमारे जो बहुत सारे पहले के साहित्यकार हैं, जैसे मैंने इंग्लिश में भी एमए किया है, तो आप वर्ड्सवर्थ को पढ़ते हैं या शैली को पढ़ते हैं, बहुत बहुत सारी चीजें हैं ऐसे, तो मुझे लगता है कि उनको पढ़ना चाहिए। और आजकल के भी जैसे अब देवदत्त पटनायक जो आपके यहाँ शायद आ भी चुके होंगे, वो तो उन्होंने माइथोलॉजी को ना बहुत ही खूबसूरती से डिपिक्ट किया है। उनके एक हनुमान की रामायण है, पता है आपको? अच्छा, उन्होंने लिखी है, हाँ, कि हनुमान जी ने एक रामायण लिखी, तो वाल्मीकि जी को पता चला कि नारायण ने उनको बोला, नारद मुनि ने कहा कि आप जाइए एक बार हनुमान की रामायण देखिए। तो हनुमान जी की रामायण पता कहाँ लिखी थी? एक गार्डन में, एक बागीचे में, और केले के पत्तों में, इसमें उसमें उसमें, और वो वाल्मीकि जी पढ़ते जा रहे, रोते जा रहे, रोते जा रहे, तो हनुमान जी बोले क्यों रो रहे हैं आप ऐसे? तो बोले नहीं, आपने जो लिख दिया मेरी रामायण कौन पढ़ेगा? आपने, हनुमान जी ने क्या किया, उसको सारे को खा लिया पत्तों को। बोले क्या किया आपने, इतना सब लिखा? बोले मेरे राम मेरे अंदर हैं, अब आपको हमेशा सब याद रखेंगे। तो इस तरह की जो आपको एक जगाने वाली अवेयरनेस जहाँ है वो सारी चीजें। और आजकल तो देखिए ये डिजिटल जमाना है, आप AI दे देता है, गूगल को पूछ
0: आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे नॉवेल्स भी, उपन्यास भी।
1: हम बॉम्बे में रहते हैं, मैं सोचती हूँ मैं अपनी लाइब्रेरी बहुत बना लूँ, बड़ी बन, तो कहाँ रखूंगी मैं सारी चीजें, 3 BHK के फ्लैट में. आप ऑनलाइन करते जाए, किंडल पे पढ़ लीजिए और उसमें देखिए कि सेल्फ हेल्प बुक्स मुझे, जैसे जिस समय मुझे जो पढ़ने का मन है कि आई एम फीलिंग लो, नहीं मुझे कुछ पढ़ना है, मुझे आध्यात्मिक कुछ पढ़ना है, तो सब कुछ तो आपके क्लिक में अवेलेबल है.
0: बिल्कुल.
1: क्योंकि मैं बोल दूंगी ये पढ़ो तो नहीं, क्या होता है जो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है,
0: उनको क्या इंटरेस्ट है,
1: उनको क्या पढ़ना है, उनका क्या इंटरेस्ट है. तो जिसमें खुद की रुचि हो, बस आप ये मत पढ़िए कि आप दूसरों का बुरा करने का सोचें. अपने आप को आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे इवॉल्व हो सकते
0: ऐसा
1: हैं,
0: कुछ पढ़िए.
1: कहते बेहतर इंसान बन सकते हैं, जो कल से उससे बेहतर बनना है हमें, और बेहतर करते करते दूसरों को भी साथ में लेके चलना है, ऐसा कुछ पढ़िए.
0: बहुत सुंदर बात है. और चाहे कहानियां पढ़ें, चाहे कविताएं पढ़ें, लेकिन और मुझे लगता है और संवेदनशील भी बनाती है हमें ये.
1: बिल्कुल. मैं एक छोटी सी लघु कथा आपको बता देती
0: हूँ.
1: अभी हाल ही में जैसे क्या होता है, और ये सचमुच में जब होता है ना, क्योंकि कहानियां हमें जिंदगी से मिलती हैं आरुषि जी, तो आजकल कैंसर बहुत कॉमन हो गया है. तो एक हस्बैंड वाइफ है, और वो जो वाइफ है वो सोच रही कि आज वो अक्षत, और लड़की का नाम है रंगोली, अक्षत आज कहाँ रह गया, अभी तक आया क्यों नहीं, आज उसने मुझे वीट जूस भी बना के नहीं दिया है. वो अपने कमरे में जाती है, तमाम वो सारी देखती, जहाँ उन दोनों की फोटोज हैं, यहाँ गए थे वहां गए थे, अच्छा वो देखती डेकोर पूरा उसके मन से, तो अक्षत ने कराया पूरा पर्ल कलर का. फिर वो देखती है कि कहीं पर्दे का हवा का झोंका आता है और उसके बाल उड़ते हैं, तो उसको याद आता है कि अक्षत कहता कि रंगोली तुम्हारे बाल कितने सुंदर है ना, एकदम मतलब मुलायम और ये रेशमी और ब्राउन कलर के वैसे सब. तो वो अपने आंखों पे उसके बाल भी छा लेता, तो कहती अक्षत बाल तुम्हारे भी तो कितने सुंदर, तुम रोमन गॉड जैसे दिखते. और अचानक वो सोचते सोचते दर्पण के सामने चली जाती है और देखती कि उसके सिर पे बाल नहीं है, क्योंकि केमोथेरेपी से बाल चले गए, तो 6 महीने पहले उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ था. और इससे तो वो मतलब रोते रोते सो जाती, थोड़ी देर में उसको स्पर्श महसूस होता है, तो देखती अक्षत तुम कहाँ, अक्षत तुम्हारे बाल कहाँ गए. तो वो बोलता है नहीं, वो चलो सॉरी आज चलो खाना भी लगा है और तुम्हारा वीट जूस भी बना हुआ है. तो तब वो देखती तो बोलता है कि बस वो मतलब उसको मतलब बहुत प्यार से सताता है, तो वो सोचती कि आज जो रंगोली है वो अक्षत के प्यार से सज गई है. मतलब ये कि पति जो है उसके लिए उसने अपने बाल भी, कि जब तक उसकी पत्नी के बाल नहीं आएंगे वो भी बाल ऐसे ही रखेगा. तो ये जो चीजें होती है ना, कि मतलब एक पॉजिटिव संदेश मैं देना चाहती हूँ. आजकल मैं लघु कथाओं, मतलब मैं लघु कथा शोध केंद्र बॉम्बे की अध्यक्ष बनी हूँ हाल ही में, तो हम लघु कथाओं पे बहुत काम कर रहे हैं. और आजकल की लघु कथाएं जो एक संदेश देना चाह रही है वो बहुत पॉजिटिव संदेश देती हैं, कि अब उसमें नेगेटिविटी नहीं हो. एक पॉजिटिव संदेश के साथ में अपनी लघु कथा को खत्म करिए, तो आजकल हम लोग वो कर रहे हैं.
0: कई बार हम सोशल मीडिया पे भी और अपने आसपास जिंदगी में बहुत चीजें देखते हैं, लेकिन उन्हें भूल जाते हैं. कहते हैं ना आजकल की रात गई बात गई जैसे हो जाता है, एक न्यूज आई दूसरी न्यूज चली गई. लेकिन जब लघु कथा के रूप में हम उन्हें सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है वो छाप छूट जाती है, वो चीज फिर वो हमारे अंदर, वो हमारा हिस्सा बन जाती है कहीं ना कहीं. तो बहुत प्रेरणादायक कहानियां हैं.
1: आपने जैसे बात की, आपको याद है ना बचपन में हम सब ने कहानी सुनी ना, कि एक पिताजी थे, उन्होंने अपने बच्चों को बोला एक लकड़ी का गट्ठर दिया कि तोड़ो, है ना.
0: बिल्कुल.
1: तो वो कोई नहीं तोड़ पाए, जब अलग अलग करके तोड़ा तो तोड़ दिया. तो उन्होंने कहा यही चीज सिखा. तो कथा के माध्यम से वो बात हमेशा आपके जहन में, जैसे आपने कहा बिल्कुल वही बात है, कि हमारे जहन में अंकित हो जाती है, हमारे अंदर अंकित हो जाती है, हमें याद आती है. मैं अपनी बेटी को ना बचपन में, और बेटे को भी, एक कहानी सुनाती थी. हम लोग मारवाड़ी हैं, हल्दी हल्दी मल्दी सटवा सूट. अच्छा. कि सटवा सूट जो है वो थोड़ी सी बिटर है, दो बहनें हैं, तो हल्दी मल्दी सबका भला करती है. तो जब हल्दी मल्दी अपनी नानी के घर जाती, सबको मिलती, सबका भला करती जाती, तो जब वो लौटती तो उसको बहुत सारे गिफ्ट मिलते. सटवा सूट भी कहती कि मैं जाऊंगी और सबको, तो जो भी बोलता क्यों मैं, क्यों वो तो थी हल्दी मल्दी, मैं हूँ सटवा सूट, मैं नहीं करती तुम्हारा काम. अब वो आती तो उसको कोई कुछ नहीं देता. तो मेरी बेटी आज भी, मम्मा मैं आपकी हल्दी मल्दी हूँ ना. तो ये हमें ना इस तरह की संस्कार कहानियों के माध्यम से हम अपने बच्चों को दे सकते हैं. और बिल्कुल आपने सही बात बोली कि आप भाषण देंगे ना, कोई नहीं सुनेगा. उसको इंटरेस्टिंग वे में बता के कहिए, तो आपको लोग जरूर सुनेंगे.
0: जरूर सुनेंगे. तो कहानियां और पढ़िए और सुनिए और सुनाइए, है ना. भारत की तो मतलब मुझे लगता है भारत में तो कहानियां बसती हैं हर कोने में.
1: बिल्कुल.
0: हर भाषा में, हर लोकगीत लोक कथा में बहुत कुछ है सच में. तो आपने आज हमें वापस, मुझे लगता है, जोड़ दिया जहाँ से हम थोड़ा दूर भी निकल आए थे. तो वापस उन कहानियों की ओर अब बढ़ जाएंगे. अलका जी, क्या कोई और आपकी ऐसी कविता या कोई एक ऐसा हमारे श्रोताओं के लिए अगर आप शेयर करें?
1: बिल्कुल सुना दूंगी आपको. वैसे लता दीदी पर भी एक, जब लता दीदी तो गजल तो मैं गा के तरन्नुम में तो अभी नहीं सुनाऊंगी
0: जी,
1: पर एक है ना, ये आजकल हम पर्यावरण के लिए बहुत परेशान मतलब हैं. देखिए तो मैं सुना देती हूँ कि क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं सुनाऊंगी कि जहाँ पर कहीं पर नेगेटिविटी हो.
2: okay.
1: एक ये बॉम्बे में आतंकी हमला हुआ था है ना, तो उस समय अच्छा मैं एक चीज और बताती हूँ कि मैं जब बहुत दुखी होती हूँ ना और गुस्से में होती हूँ तो मेरे भीतर से कविता निकलती है, सिलसिलेवार जिंदगी कहानी बनती है और मैं व्यंग भी लिखती हूँ. मेरे जैसे आपने व्यंग संग्रहों के नाम भी लिए तो विसंगतियां व्यंग बन जाती. तो जब ये आतंकी हमले हो रहे थे लगातार और हमारे भी बहुत परिचित लोग थे जो उसमें मारे गए थे, तो उस समय मैंने एक सिम्बॉलिक कविता लिखी थी कि मैं उसको कुछ तरन्नुम में भी गा के थोड़ा सा वैसे बता देती हूँ. एक चिड़िया दरख्त पर

बीच हरियाली छाई थी, खिले थे सुंदर फूल, तितलियां रंग बिरंगी उड़ रही थी उड़ रही थी। माँ तोती ने दरख्त पे बनाया एक घरौंदा, सुरक्षित रख कर बच्चे उसमें निकल गई लेने दाना। पर अचानक कहीं से आया एक कठफोड़वा, ये कठफोड़वा वो आतंकवादी है, चोंच

बच्चे चीखे डर डर के, तितली के पंख गिरे कट कट के, हरियाली बदली पतझड़ में, फैल गया आतंक, मिठू न जाने कहाँ गुम हो गया, तितलियों ने उड़ना छोड़ा, हो गए फूलों के रंग सभी बदरंग।

में आस जगाई, मिलकर सबने कसम ये खाई। अब कोई कठफोड़वा जो दरख्त तोड़ने आए, तितली

0: सच में वो उस इंसिडेंट ने, उस घटना ने हम सबको हिला दिया था, अंदर से झंझोर दिया था.
1: मुंबई का जो आतंकी हमला था
0: वो भूल नहीं सकते. और ये जो आपने कविता ये सिंबलाइज करके उसको जो वो हम भावनाओं को प्रकट किया, ये एक लेखक ही कर सकते हैं कि उस प्रकार से भी उस बात को कहा जाता है, हम सोच नहीं सकते. आपका बहुत बहुत धन्यवाद है अलका जी. मुझे लगता है आपकी इतनी कहानियां, इतनी सारी बातें हैं, अभी संभव नहीं है सब कुछ इन एक घंटे में समेट पाना, लेकिन फिर भी जो आपने जो आज सुनाया है वो हमारे सिर्फ आज तक नहीं, मुझे लगता है आगे तक वो प्रेरणा बन के हमारे साथ रहने वाला है.
1: मैं अगर एक मिनट होगा तो खाली आदर्श, एक हमने फिल्म लिखी थी और आदर्श पे फिल्म के ऊपर हमने नॉवेल लिखी थी.
0: अच्छा.
1: तो उसमें मैंने क्यों इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पर उसमें एक न्यूक्लियर फैमिली जो एकल परिवार होते हैं ना, एकल परिवार का बच्चा कैसे अपने आप को, कई बार तो हम बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती है, तो वो कुछ ऐसा होता है, तो ये जो है परिवारों को बचाना कैसे जरूरी. तो आदर्श फिल्म जो है उस तरह से वो मैंने लिखी थी और वो बहुत ही खूबसूरत फिल्म है. बल्कि मैं तो चाहूंगी मैं आपको लिंक भेज दूंगी अपनी,
0: जरूर जरूर,
1: तो आप वो देखिएगा. तो मुझे लगता है कि ना हम लेखकों का एक दायित्व ये भी है कि सिर्फ लिखने के लिए ना लिखें, है ना, एक कुछ ना कुछ बदलाव और जो कृतित्व और व्यक्तित्व है ना लेखक का वो एक हो, ये मैं चाहती हूँ कि आप लिख कुछ रहे हैं कुछ वो मत करिए, जो आप हैं वो लिखिए और समाज में बदलाव की चेतना के लिए जरूर लिखें. आप समाज सुधारक नहीं है हम, पर कोशिश करें कि कुछ तो बदले, कुछ तो अच्छा लिखें हम. तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज आपके रेडियो मधुबन में, और क्योंकि यहाँ बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स हम लेकर जा रहे हैं और कोशिश करेंगे हम कि प्रयास हमारा ये रहेगा कि हम आगे भी जुड़े रहें और अपने घरों में भी उसी शांति के प्रकाश को फैला सकें. आपकी मुस्कान बहुत प्यारी है, आपकी मुस्कान के लिए मैं आपको बाद में कविता भेज दूंगी. बहुत बहुत आभार आपका.
0: अलका जी मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, इतना समय आपने निकाला हमारे.
1: बहुत बहुत आभार, धन्यवाद
0: सो मच. तो दोस्तों फिलहाल तो वक्त हो गया इजाजत लेने का, लेकिन मैं यकीनन ये कह सकती हूँ कि आज कुछ आप अपने साथ जरूर लेकर जा रहे होंगे, कुछ ऐसा जो आपको जीवन के सफर में मददगार साबित होगा. फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, मुलाकात होगी अगले एपिसोड में. रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

0: दोस्तों, अक्सर जब हम घूमने जाते हैं, हम कौन सी जगहों का सिलेक्शन करते हैं अपने लिस्ट में घूमने के लिए? या तो समुन्दर के किनारे जाना पसंद करते हैं, या जंगलों आदि में जाना पसंद करते हैं, या किसी ऐसे तीर्थ स्थान पर जाना पसंद करते हैं जहां पर मन की शांति मिले। ऐसे ही कई स्थानों में से एक होता है पहाड़ों पर जाना। मैं आपको क्या समझाऊं पहाड़ों पर जाने का सुख क्या होता है, क्योंकि आप तो स्वयं ही पहाड़ों की गोद में रहते हैं, माउंट आबू में रहते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पहाड़ की जो पूरा विश्व में बहुत प्रसिद्ध है, हिमालय की पहाड़ियों की। और उन पहाड़ियों की गोद में बसा हिमाचल, हिमाचल के एक बहुत सुंदर से प्रांत में आज हम आपको लेके जाने वाले हैं, जिसका नाम है सिरमौर। जैसा कि नाम है, सिरमौर अर्थात सिर का जो मुकुट है, ऐसे ही संस्कृति के ताज में आज हम आपको लेकर के जाना चाहेंगे। ये सिरमौर जो है, ये भारत की संस्कृति का सिरमौर आज एक विशेष व्यक्ति की वजह से बना है। आज हम मिलने जा रहे हैं श्री विद्यानंद सरेख जी से, जो कि राजगढ़ के सिरमौर जिले से हैं, जो लोक संस्कृति, लोक साहित्य, लोक नृत्य और लोकगीत को लेकर के अपने जीवन को उन्होंने ऐसा संजोया है कि आज उनका जीवन हमारे लिए एक मार्गदर्शक बन चुका है और यशस्वी भारत कार्यक्रम का हिस्सा। आइए मिलते हैं विद्यानंद सरेख जी से, जिन्हें भारत सरकार ने 2022 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है। तो विद्यानंद सरेख जी, आपका रेडियो मधुबन के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार जी, धन्यवाद जी, ओम शांति।
0: ओम शांति, कैसे हैं आप?
1: ठीक हूँ जी, ठीक हूँ। 85 साल पूरे होने को जा रहे हैं। ठीक है, अभी वक्त ना हो आपसे बात करने का।
0: जी, हमें भी आपसे बात करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपके जैसा एक विद्या का पुजारी और पहाड़ों से आने वाला, जिनका हृदय बहुत साफ, कोमल और शुद्ध होता है, उनसे हमें बात करने का मौका मिल रहा है। और आपको ये जानकर के खुशी होगी कि रेडियो मधुबन भी पहाड़ों में ही बसता है, क्योंकि शांतिवन, जहाँ पर रेडियो मधुबन का केंद्र है, वहाँ और आसपास के माउंट आबू के जितने भी हमारे श्रोता साथी हैं, वो भी अपने साथ एक पहाड़ी दिल लेकर के चलते हैं, जो कि हम सब जानते हैं। दुनिया भर में हर कोई कहता है कि पहाड़ लोग बहुत अच्छे होते हैं। और तो आज एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक आवाज पहुंच रही है, ये देख करके बड़ा मजा भी आ रहा है। और आपसे

0: कैसे उन कहानियों ने प्रेरित किया, आपका बचपन कैसा रहा, हम सुनना चाहेंगे आपकी कहानी, आपकी जुबानी। कैसे शुरुआत हुई आपके सफर की?
1: असल में कहानी तो बड़ी लंबी है, और लेकिन ये जरूर है कि ये सांस्कृतिक परिवेश और परंपराओं से जुड़ा मेरा जीवन रहा है। 4 वर्ष से लेकर के मन संभाला है, और उसके बाद निरंतर शिक्षा काल में भी, और जब शिक्षा के बाद मुझे सरकारी नौकरी में अध्यापन का कार्य मिला उस वक्त भी, फिर जब सामाजिक कार्य में मैं 40 वर्षों से निरंतर रहा, उसमें भी निरंतर मेरा प्रयास रहा है, जिसमें मैंने कम से कम 35 पुस्तकें हिमाचल प्रदेश के, जो गिरी नदी बहती है, बड़ी पवित्र धारा है, इसके पीछे एक बड़ा लॉजिक है, और सतयुग की ये नदी है, सतयुग में, और ये गाथा गीतों में है हमारी है। सतयुग में एक साधु स्वर्ग से गंगा जल लाया था, और वो यहाँ पर कोट खाई और युबल है, दो शिमला क्षेत्र के तहसीलें हैं, उनके मध्य एक ऊपर धार है। आज भी वहां पर गिरी गंगा का मंदिर है। मैं तो गिरी गंगा पर भी काम कर रहा हूँ, तो ये वहां पर उसका कमंडल गिर गया, और उस बड़ी आवाज आई कि गिरी गंगा, और ये गिरी गंगा नाम थी, गिरी गंगा गिरी थी। और वो अब वो कहानी तो ये है, ये फिर वो बहती हुई यमुना में डाक पत्थर में मिलती है, और इसके दोनों ओर हमारा सिरमौर जनपद है, सिरमौर का एरिया भी है, और आज शिमला, सोलन, और कुछ ये आपका ठियोग का एरिया, ये सारा दूसरी तरफ ही है, गिरिवार और गिरिपार में ये दोनों ओर का क्षेत्र है, और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है। क्योंकि मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश की को हम प्राकृतिक दृष्टि से 3 भागों में विभक्त करते हैं। एक है ये गिरी गंगा का या महासुवी क्षेत्र, और दूसरा है डोगरी बोली का क्षेत्र, जो कांगड़ा, हमीरपुर एक क्षेत्र है, चंबा के क्षेत्र है, मंडी के क्षेत्र है, और तीसरा है वहां पर डोगरी का प्रभाव है, और तीसरा है भूटी बोली का प्रभाव, जो लामाओं का है, वो है जनजातीय क्षेत्र किन्नर, और क्या कहते हैं लाहौल स्पीति। तो इन 3 प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिवेश में हिमाचल प्रदेश की अमूल्य धरोहर है। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ अपने क्षेत्र की, वो जहाँ पर मैं हूँ, और जहाँ मैंने लोक साहित्य पे, लोक गीतों पे, लोक नृत्य पे, लोक नाट्य पे, और साहित्य पे के विभिन्न पहलुओं पे, उपन्यासों पे काम किया है, तो वो क्या कहते हैं एक धरोहर है, और शायद, और फिर अनुवाद भी किए हैं, गीता का अनुवाद किया है, भर्तृहरि त्रिशतक का अनुवाद किया है, रविंद्रनाथ टैगोर की 51 कविताओं का गीतांजलि का अनुवाद किया है, और वो क्या कहते हैं अब मैं 4 वेदों का सिरमौरी में अनुवाद कर रहा हूँ। ये तो छोटे छोटे ऐसे काम है जो मेरे निरंतर चल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मेरे साथ एक संस्था जुड़ी है, जो निरंतर हम जो कुछ सोचते हैं, लोक संस्कृति की खोज करते हैं, उसको प्रैक्टिकल रूप देते हैं वो, और वो भी 22 साल से है, और वहां पर भी गुरु शिष्य परंपरा चली हुई है। उस गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन भी मैं भली प्रकार भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से कर रहा हूँ, और इसी दौरान मुझे माउंट आबू आने का भी मौका मिला, और मैंने वहाँ हमें वहाँ पर मेरा बहुत सा जो सम्मान है वो यहाँ है, और मैं अत्यंत प्रभावित हुआ कि ऐसी संस्था है ये, जो धार्मिक मतभेदों से, आपसी जिस तरीके से आज कष्ट चली हुई है विभिन्न समुदायों में, धर्मों में, और क्या कहते हैं, और कुछ उसका प्रचार का गलत वो व्यवस्था हो रही है, उसके लिए सही मूल्यांकित रूप से संदेश आज ये संस्था विश्व को पहुंचा रही है, ब्रह्म कुमारी है, एक एक दूसरा सौभाग्य हमारा। तो ये छोटी छोटी बातें तो ये है, लेकिन जहाँ तक लोक संस्कृति के माध्यम में, लोक संस्कृति की, इसलिए इस गिरी नदी के किनारे ही क्या कहते हैं, ये तो ये सौभाग्य हमारा कि इसी के किनारे महाराज बलि को, बलि सौवा यज्ञ, एक ही राजा बलि था जो धर्म के रास्ते से स्वर्ग पर विजय पाना चाहता था, तो वो जब सौवा यज्ञ यहाँ मेरे गांव के नजदीक बलग गांव है, बलग बलि गया था जहाँ, तो वहां पर त्रिवेणी बनती है, उस वक्त की वास्तविक त्रिवेणी वो है, वो गिरी गंगा ऊपर से निकलती थी, पाताल नदी टूरेश्वर है यहाँ पर सबसे ऊंचा, 12-13 हजार फुट की ऊंचाई का, वहां से पाताल नदी निकलती थी, और साथ में उसके साथ ही पारबलक के साथ ताप

0: और सात पानी, ये नेचुरल बात कह रहा हूँ, सात पानी निकलते हैं, वहाँ स्कूल भी है एक तुंगेश जगह में, वहाँ से 700 निकलते हैं और वो वहाँ बलग में मिलते हैं, और वहाँ ये बलग में उसने सौवा यज्ञ करना चाहा, लेकिन देवताओं ने कहा भी अगर ये राक्षस के हाथ में दिए, ऐसा है किंवदंती है, हम तो ये कह रहे हैं, लेकिन जो भी हो, लेकिन कहते हैं बामन अवतार, वहां पर बामन बन के वहां आए और उन्होंने राजा बलि को पाताल का राज्य बलग में दिया है, और वहीं पर ये इसी गिरी गंगा के किनारे त्रेता युग में परशुराम जी का अवतार हुआ, हमारे क्या कहते हैं 24 अवतारों में, तो वो मां रेणुका और जमदग्नि की तपस्या के फलस्वरूप गिरी गंगा के पास ही एक बड़ा तालाब है जो मां रेणुका का एक तपस्थली है और बिल्कुल मनुष्य के आकार का है उस समय, और वहीं ऊपर वो जामुन का टीमा है, जमदग्नि वहां पर तपस्या करती थी, वहीं परशुराम जी ने एक शिला पर तपस्या करके त्रेता जीवन और संदेश दिए है, ये त्रेता युग की घटना भी इसके किनारे है। द्वापर में इसी गिरी गंगा के राह से, यमुना की राह से, कुरुक्षेत्र के मैदान से ये कौरव समर्थक सैनिक और पांडव समर्थक जो है सैनिक थे, शाठड़ और पाषण नाम थे, वो इधर आए और यहाँ की मूल जातियों पर अपना अधिक वो क्या कहते हैं अधिपत्य जमा करके यहाँ पर वर्षों तक उन पर आपस में भी लड़ते रहते, पहने तीरते, और उस काल की द्वापर काल के बाद की असंख्य गाथाएं गीते हैं, उनमें ये सारी ये गिरी गंगा का भी, देवताओं की उन लड़ाई की, हारूल बार साका पुआरा पडवायन रामायण, ये सारी ये मैंने संकलन किया है, और तो क्या कहते हैं ये सारी लोक शैली की जो लोक परंपराएं थी हैं, और फिर नेचुरल इस गिरी गंगा के दोनों ओर असंख्य देवी देवता, शिरगुल हो, महातु देवता हो, गुग्गा पीर हो, ब्रजेश्वर हो, क्या कहते हैं डोम देवता हो, मतलब ये सारे सैकड़ों देवी देवता आज भी असंख्य मंदिर है और उनके मंदिर है, और फिर प्राचीन वास्तुकला से आज भी यथापत विरासत में है। तो इस क्षेत्र में मुझे काम करने का मौका मिला, खैर मैं तो अभी और भी काम कर रहा हूँ, और लेकिन मैं इसके जो परम शांति के लिए जो एकाग्रता की पहल जो ये ब्रह्म कुमारियों ने की है, वहाँ मुझ पर मेरे तो अपने एक बैठक में लगा हुआ, मैं नित्य रोज उसके सामने दो मिनट के लिए शांति, क्योंकि हमारी एकाग्रता नहीं होगी तो कोई हम न ईश्वर के की आराधना कर सकेंगे, और क्योंकि हम भटके हुए हैं सभी लोग, तो ये छोटा सा ये जीवन है। अब इसमें मेरी पुस्तकें में कुछ तो छपी भी है लेकिन कुछ छपी नहीं है, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, कोई ऐसा है नहीं अमीर नहीं हूँ, लेकिन मेरा प्रयास है कि शायद आने वाली पीढ़ी मेरी बैठक में बैठे हैं, ये पद्मश्री वगैरह ये यहाँ लगा है जो कुछ, वो कई पुरस्कार मेरे बैठक में लगे हैं, तो डॉक्टर वाईएस परमार भी इस बैठक में कई बार बैठे, अब क्या कहते हैं, तो कहने का तात्पर्य ये है कि उन सब का प्रभाव मेरा निरंतर प्रयास, मुझे नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन मुझे मंजिल की ओर रास्ता लेते जाते हुए आपके क्या कहते हैं मार्गदर्शन ऐसा मिला कि हमें क्या कहते हैं माउंट आबू में भी जाने का मौका मिला, और आज आप दोबारा मुझे माउंट आबू पहुंचा रहे, मैं आपका आभारी
1: हूं। आभारी तो हम हैं आपके विद्यानंद जी कि आपने हमें अपने जीवन कहानी के बीच में आपने उस पूरे प्रांत की कहानी सुना दी, और साथ ही साथ हमें इतिहास और हमारे उन सांस्कृतिक धरोहरों की ओर हमारा रुझान आपने कराया, जहाँ जरूरी है कि आज के जमाने में जो लोग इतनी दौड़ भाग की जिंदगी जीते हैं, कभी बैठ कर के इत्मीनान से जब ये कहानियां वो सुनते हैं तो जैसे सुकून मुझे महसूस हो रहा है, मैं समझता हूँ उन्हें भी ये सुकून महसूस होगा। लेकिन जब आप कहानियां कह रहे थे कि कैसे कमंडल गिरा और उसकी वजह से गिरी गंगा नाम आया, और कैसे राजा बलि की कहानी भी आपने इसमें जोड़ी, और भी कई सारी बातें, लेकिन मुझे जानना है विद्यानंद सरे की कहानी, जब वो बचपन में पैदा हुआ या जिस परिवार में पैदा हुआ, कैसा परिवेश था, क्या संस्कार थे, किन चीजों ने आज के विद्यानंद सरे को प्रेरित किया कि वो इस रास्ते पे निकले।
0: जी, मैं एक गरीब परिवार में, मेरे माँ बाप, एक माँ थी बाप है, पिताजी, मैं नौवीं कक्षा में, मैं पहला यहाँ 3-4-5-6 पंचायतों का एक युवक था जिसने पहली बार यहाँ मैट्रिक पास किया, फिर आगे ग्रेजुएशन भी चलो वो तो एक बड़ी लंबी कहानी है, यहाँ पढ़ाई नहीं होती थी, उसकी नहान जाना पड़ता था, 200 किलोमीटर या शिमला जाना पड़ता था, 100-150 किलोमीटर थी उस वक्त, ऐसी हालात थी। पिताजी जो थे मामूली सी सीने का काम करते थे, जमीन थी हमारे पास, जमीन पे काम करते थे, लेकिन मुझे वो पढ़ाना चाहते थे और डॉक्टर बनाना चाहते थे। लेकिन वो बीच में मेरी शादी का उन्होंने नियत कर दी, मैं 9th में पढ़ता था जब, और उन्हीं दिनों 10 प्रविष्टि क्या कहते हैं चैत्र में उनकी, मैं वो 26 की शादी थी, 10 प्रविष्टि चैत्र में वो उनका स्वर्गवास हो गया। मेरा सारा सारी व्यवस्था जो उनकी शादी थी होगा, वो क्यों अड़े रहे, क्योंकि शायद उन्होंने जाना था। फिर माता जी ने जैसे तैसे मुझे पढ़ाया, हम दो ही रहे माँ बेटा, और फिर किस तरीके से शिक्षा हासिल की बलसन में जा करके, तिहा बलसन में जा करके, तो फिर आकर के 59 में सीधा जैसे ही मैट्रिक किया मुझे नौकरी मिल गई थी, 62-63 में मैं प्राइवेट पढ़ना शुरू किया ट्रेनिंग। ये तो बड़ी फिर लंबी कहानी है, लेकिन इस परिवेश में रह करके मेरा बचपन से ही नृत्य के लिए, माँ बाप के को भी रुचि थी संगीत से, और उनका प्रभाव उनका आशीर्वाद भी मिला। और पहले तो अपने मनोरंजन के लिए क्या कहते हैं अपनी इसके लिए कि भाई उनको रिझाता था मैं नाच करके गा करके, जो जो फूटे फूटे गीत थे। लेकिन बाद में फिर मंच मिल गया गांव का करियाला, हमारा लोक नाट्य है, और वहां से वहां पर भी क्या कहते हैं सैकड़ों लोगों में मुझे वाहवाही मिलने लगी, और मेरा और इसी तरह से मैं 57-58 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से मुझे गाने का मौका मिला। आवाज सुरीली थी, अब तो खैर आवाज भी खो चुका हूँ, लेकिन वहाँ पर सुप्रू हाउस में डॉक्टर केसकर ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, और परमार यहाँ से MP बन करके गए थे, क्योंकि 55 में यहाँ विधानसभा खत्म हो गई थी और उन्हें पार्लियामेंट में भेजा गया था। वो सुप्रू हाउस में मुझे उनके सामने शिमला से ऑल इंडिया रेडियो से एक बड़ी टीम गई थी, तो वहाँ पर तो उन्होंने डॉक्टर परमार ने मुझे हाथ पकड़ करके केसकर हाथ में दे, कहते मिस्टर केसकर विद्यानंद जो है हमारी कल की स्वीकृति की धरोहर है। खैर यही तो बड़ी लंबी कहानी है, मुझे तो मुसीबतें झेलनी पड़ी, और लेकिन क्या कहते हैं जैसे तैसे आगे बढ़ते, फिर 17-18 साल की नौकरी भी छोड़ गया, क्योंकि राजनीति वालों ने मुझे उकसा दिया, उससे भी सारा किया कराया खत्म, बच्चे थे 4-5 आदि दर्जन, वो कैसे पले, खैर जमीन है भगवान की कृपा से। ये सारी कठिनाइयां झेलते हुए मैं निरंतर लिखने का काम करता रहा, और मेरे लिखने का कई बार पहाड़ी में मजाक भी होता था, ये विद्यानंद तो नाटियां लिखता है वो, और किसको पता था भी ये नाटियां भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री मुझे यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करे, मुझे नहीं भी कैसे, मेरे मैंने ना अप्लाई किया ना मैंने कोई लॉबिंग की, तो ये लंबी कहानी। इसके अलावा भी यहाँ दर्जनों प्रदेश के जिला के इसके, और फिर विदेश में भी जाने का मौका मिला, हमने विदेश में भी अपने साथ जो हमारी टीम थी उनकी वो किया है। तो ये तो ये कहानी, लेकिन उसके साथ साथ हम साथ साहित्य को, लोक साहित्य को उभारते रहे, और हिंदी में भी बहुत सारे लोक साहित्य, बहुत से विलुप्त हो रहे हमारे नृत्य, उनको हमने कोशिश की है कि हम उसको लिपिबद्ध किया, क्योंकि यहाँ यहाँ जो है ये जो हमारा गिरी पार्क कहते हैं, हमारे ट्रांस गिरी एरिया ऑफ द गिरी गंगा, ये आज जनजातीय बन गया है, भारत सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार हाटी समुदाय है। ये सारा अनादि काल से घुमंतु था, और क्या आज भी गडरिये गर्मियों में टूरधार के जंगल में जाते हैं, और सर्दियों में गर्म इलाकों में नोएडा बोलते उधर को जाते हैं। तो उनके उनके कृतित्व को, देवी देवताओं की विभिन्न परंपराओं को, उसको भी सजोना, फिर जो वास्तुकला है यहाँ की, घरों की, मकान की, देवताओं के मंदिरों की, उसका भी संकलन मैंने किया है और सुरक्षित रखा है, ताकि वो परंपरा निहित रहे। कोशिश ये की है हमने कि उस परंपरा को, उस वास्तुकला को, मूर्तिकला को यहाँ पर जो इलाके के लोग हैं मुझे बड़ा सम्मान देते हैं, ताकि बने, क्यों कि हमारे हमारा जो जीवन है माँ बाप के संस्कारों से, वहाँ घर के परिवेश से, संस्कार से संस्कृति की ओर जाता है, संस्कृति सभ्यता को पैदा करती है, और सभ्यता से हमारा आज का परिवेश बनता है, लेकिन जब उस सांस्कृतिक परिवेश में छाया पड़ती है पाश्चात्य, वो क्या कहती है, जैसा आज पढ़ रही है धर्म पर पढ़ रही है, आज धर्म में साधु महात्मा लोग क्या कर रहे हैं, कोई झिंगुड़ बाबा है, कोई कर रहा है, देश को जब सही रास्ते में ले जाना है वो नहीं, लेकिन हमारे लोग अभी भी आस्था रखते हैं। जब मंदिर के जो बात होगी उसको आदेश समझ करके हम उसका पालन करते हैं, वो चाहे शिव का मंदिर है, चाहे शक्ति का मंदिर है, चाहे काली का मंदिर है, लेकिन श्रद्धा से उसका पालन किया जाता है। ये ट्रांसगिरी एरिया जो है ना, क्योंकि सिरमौर जो मैं आपको बताऊं, ये कालसिया से लेकर के आके तरोज तक, उस गिरिगंगा के क्षेत्र से आगे तक, ये सिरमौर जो था ना, सिरमौर एक साम्राज्य था और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका नाम सिरमौर, सिर का मौर्य, सिर का ताज रखा था, कुलिंदों ने उनका साथ दिया था पाटलिपुत्र विजय पर, तो तब से लेकर ये राज्य था। ये कोई छोटी छोटी रियासतें तो मुसलमानों के टाइम, हुनों के टाइम लेना देना, जब रियासतें आई और कंपनी के समय में, अंग्रेजों के समय में, लेकिन उस समय ये साम्राज्य सिरमौर था। और आज भी सिरमौर जो है ना, एक जिला जनपद के रूप में प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को यथावत रखा है।
1: और आपने सिरमौर को सिरमौर बना के रखा है, क्योंकि सिरमौर का सिरमौर बने रहने के पीछे आपका बहुत बड़ा योगदान है। अगर इन कहानियों को, इन धरोहरों को कोई सामने ही ना लाए, तो जनमानस तक इन बातों को जानना, इनके बारे में रुचि रखना, इनको अपने जीवन में धारण करने की बात ये हो ही नहीं सकती। इसलिए जो आपका योगदान है, आपने बार बार कहा कि मैं बहुत छोटा सा काम कर रहा हूँ, बहुत छोटा सा काम कर रहा हूँ, बट हमारा दिल और आपका दिल जानता है कि कितना महत्वपूर्ण कार्य है। मेरे को एक सवाल ये था कि जब आपने कहा कि बचपन में ही आपको नृत्य का और कला के प्रति रुझान था, अक्सर ये देखा जाता है कि माँ बाप या जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, या स्कूल में जो टीचर्स होते हैं, या जो दोस्त आदि होते हैं, वो सब कुछ और प्रकार की विधाओं को ज्यादा सम्मान या ज्यादा प्रेरणा देते हैं। अगर कोई कहे कि भाई मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं। कोई कहे मैं टीचर बनूंगा, तो बोलते हैं हाँ ये भी अच्छी बात है। अगर कोई कहे मैं किसानी करूंगा, तो बोलते हैं अच्छा ठीक है भले कर लो। लेकिन जब कोई कहता है कि मैं कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हूँ, सब कहते हैं अरे बिल्कुल मत करना, वहां तो कुछ भी नहीं रखा है, तुम्हारा तो घर ही नहीं चलेगा, आदि आदि बहुत सारी बातें होती हैं। आपको भी ऐसी बातों का सामना करना पड़ा होगा, या कैसा था आपका वो समय जब आप इस विधा की तरफ झुक रहे थे, या लोक संस्कृति, लोक गीत, इनको आप अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाना चाहते थे, तो वो कैसा था आपका सफर?
0: मैं आपको एक बात बता दूंगी, मैं प्रैक्टिकल आदमी, मैं तो खुद गाता हूँ, अगर लिखता हूँ तो खुद लिखता हूँ, किसी की चोरी नहीं करता, अगर नृत्य करता हूँ तो खुद नृत्य और अभिनय की जो ट्रेडिशन है हमारी, मैं ये आपको ऐसे नहीं बता रहा कि मैं तो क्या कहते हैं मतलब साहित्यिक तौर सिद्धांतिक तौर पे, मैं तालों के बारे में मैं जो हमारे लोक ताल है उस पर भी मैंने काल और ताल एक पुस्तक लिखी है और छपी तो है नहीं, लेकिन उन तालों को बजाना भी जानता हूँ और उनकी प्रस्तुति भी करना जानता हूँ, और उसके पीछे क्या लॉजिक है हमारा वो भी, क्योंकि मैंने हर काम के डेप्थ पर जाकर के काम किया है। फिर अलग अलग विधाएं खोजी है, गायन की भी अलग अलग विधा, नाटी के भी चार रूप हमने खोजे है, 8 मात्रा, 12 मात्रा, 16 मात्रा और 6 मात्रा, ये हमारी यहाँ की परंपरा है। उसमें असंख्य गीतों को, असंख्य तर्जों को किया और उसका संकलन किया है। तो कहने का तात्पर्य, फिर नाट्य की बात है तो नाट्य में अभिनय भी, नाट्य में अभिनय की निर्देशन भी और लिखना भी, तो बाल नाटक भी वो भी लिखे हैं, और कुछ मेरा एक जो यहाँ झांको अजबा का पवाड़ा है, आपके राजस्थान में भी पवाड़ा जो है ना, तो पवाड़ा नाम से है, हमारे यहाँ झांको अजबा का पवाड़ा ऐसा ढांचा था जो सदियों पुरानी वैमनस्य था, 1866 राजपूतों 1818 उनमें युद्ध था, वो भी यही सिरमौर में गिरी गंगा के किनारे क्या कहते कोटला में एक सती झांको ने अपना बलिदान दे करके इसको खत्म किया। और इस गिरी गंगा के ही किनारे त्रिविधा नृत्य, नृत्य नाट्य क्रीड़ा, एक छोटा नृत्य वो तीर कमान का, वो पैना तीर उन्होंने काट दिया, उन्होंने हार जीत खत्म कर दी, वो क्या कहते हैं उसने बोलो जी मेरा बलिदान जो है बराबरी के लिए होगा, और अपने आप वो अपने पति के साथ जल गई। ये बड़ी लंबी कहानी है, और तो ये ऐसे ऐसे गाथा गीत इनका संकलन किया है और इस पर मैंने मेरा टेलीकास्ट रेडियो से भी क्या कहते दूरदर्शन से भी जालंधर से दिल्ली से समाधान नाम से वो क्या कहते नाटक वो हुआ है। तो मतलब ये थोड़ी थोड़ी बातें ऐसी कह रहा हूँ मैं कि मैंने अगर थड़े की बात कही एक युद्ध का होता था इनका तो उन वहाँ जा करके उसको देखा है उसमें क्या है हर गांव में जा करके वो तो सौभाग्य ऐसा भी मेरी पोती पीएचडी कर गई सिरमौर जनपद के गीतों में मौसमों के अनुसार लोक नृत्य लोक संगीत का विश्लेषणात्मक अध्ययन अभी उसका पीएचडी पूरा हो गया तो इस वजह से मुझे उसके वजह से भी जाना पड़ा। तो क्या कहते हैं बहुत से स्कॉलर आते हैं यहाँ पर मैं इस प्राचीन संस्कृति को उभारने के लिए निरंतर हूँ लेकिन इसके साथ साथ जो ये धर्मांधता है हमारे कट्टरवादिता है ये अब ब्राह्मणवाद तो कहेंगे नहीं इससे और ये जो साधुवाद है इससे तरह थोड़ी सी परहेज करके मुझे आपकी जो ये संस्था है इससे लगाव हुआ है कि कम से कम कोई संस्था तो ऐसी है जो निर्लेप है और कोई संस्था तो ऐसी है जो समग्र सबके कल्याण के लिए बिना किसी कशमकश और रस्सा कसी से क्योंकि अगर आप ईसाई धर्म को लोग भी वहाँ भी प्रोटेस्टेंट और ब्लडी मेरी जैसे हालात हुए हैं दुनिया के सभी धर्मों ने किया है यहूदियों का वही हाल रहा है तो कहने का तात्पर्य है भी लॉटरी होती रही है वो लेकिन एक ऐसी संस्था जो शांति और परम श्रद्धा के साथ लोगों को इकट्ठा करे और फिर ये सोचे कि हमारा जन कल्याण हो ये हमारी सनातन धर्म की परिपाटता का सही रूप।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस अनूठे प्रयास को पहचाना है और इसका आप सम्मान करते हैं लेकिन साथ ही साथ इस चीज का भी मैं आपको धन्यवाद कहूंगा कि आपने शरीर की आयु होते हुए भी आप अपना कार्य निरंतर करते रहते हैं आप रिसर्च करते हैं शोध करते हैं युवाओं के साथ गाँव गाँव जा करके उस गाँव के इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं ये करने के लिए बहुत जज्बा चाहिए बहुत हिम्मत चाहिए और बहुत धैर्य चाहिए इतना धैर्य आप अपने अंदर कैसे लाते हैं।
0: मैंने आपसे पहले कह दिया था कि मैं प्रैक्टिकल आदमी मैंने बचपन से लेकर के मेरे साथ बड़ी गंदी सोसाइटी होती थी नाच गाने वालों मैंने कभी शराब का स्वाद नहीं लिया ना मीट खाता हूँ और पूरा परिवार मेरा ऐसा है कि ना मीट खाता है ना शराब पीता है और कम से कम 30-35 आदमी का 3 बेटे हैं उनके भी आगे पोते भी हैं परपोते भी कहने का तात्पर्य ईश्वर की कृपा है लेकिन कहने का ये तात्पर्य ये है कि मैंने पहले अपने आप अपने चरित्र को मैं सुबह 4 बजे उठ करके योगा करता हूँ तभी लोगों को बोलता हूँ 20 मिनट योगा करके और मैं तभी इस तरीके से जिंदा हूँ मेरे साथ ही सब चूर की हड्डियाँ कीर्तन बोल रही है मैं भागता हूँ दूर जाता हूँ आजकल तो मेरे परसों हम भीगे एक जगह में चीफ गेस्ट था तो वहाँ भीगे तब से मैं थोड़ा सा अस्वस्थ हो गया था लेकिन आज सौभाग्य आपसे मिला और ऐसे स्थान से मिला कि हम जहाँ देख करके भी आया है और आप विश्व में जो ऐसा काम कर रहे हैं ये वास्तव में हमारे राष्ट्रीय धर्म की सही एक विश्लेषणात्मक बोलो या अध्ययन पूर्ण बात बोलो या ये बोलो कि सही दृष्टिकोण है और जिससे जो लोगों को भी कुछ ना कुछ पता चलेगा कि हम किस तरीके से अपना जीवन यापन।
1: जो आपने ये बात कही कि आपने जीवन में संयम नियम और अनुशासन को बहुत गहराई से जीवन में अपनाया है और जो आपने बात कही कि केवल आज का नहीं एक लंबे समय का आपने अभ्यास किया है इन तीनों गुणों का जिसकी वजह से आज आप इतने स्वस्थ हैं और आज आप इतने सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं थकान नहीं आपके शक्ल में इतनी रौनक है तो मैं ये समझता हूँ कि हमें सीखना चाहिए आपसे सभी श्रोता साथियों को भी मैं ये कहूँगा कि जैसा कि इन्होंने कहा जीवन का एक नियम होना चाहिए एक अनुशासन होना चाहिए और उसमें सततता होनी चाहिए कि हम रेगुलरली उस चीज को कर रहे हैं आज किया कल नहीं किया ऐसे उतार चढ़ाव में क्या हो जाता है कि हम खुद भी नहीं समझ पाते कि उससे कुछ परिवर्तन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है लेकिन जब हम सतत करते हैं किसी चीज को तो उसका प्रभाव जीवन पे दिखता है जैसे कि विद्यानंद सरेख जी के जीवन से दिखता है उन्होंने न केवल साहित्य के साथ कला संस्कृति के साथ जुड़े रहने को अपने जीवन का ध्येय बनाया लेकिन उसको करते हुए उन्होंने कईयों के जीवन में उस संस्कृति का अलग जगाया है क्योंकि मैं और आप दोस्तों जब शहर में जीने लगते हैं और शहर के दौड़ धूप में अपने को एकदम मच देते हैं तब हमारे पास यही संस्कृति होती है जो हमें एक ठंडी छांव और एक ठंडी हवा का महसूसता कराती है विद्यानंद सरक जी, आपने बोला कि अब आप बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, इसलिए आपकी आवाज भी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कभी ना कभी आप गुनगुनाते तो जरूर होंगे खुद के लिए। क्या आज आप हमारे लिए कुछ गुनगुनाना चाहेंगे?
0: है
1: कुछ आप गाना
0: क्या बोला
1: चाहेंगे,
0: जी?
1: कुछ गुनगुनाना चाहेंगे?
0: तो बोलो कि तो मैं गा लूंगा, एक एक भजन गा लेता
1: बिल्कुल,
0: हूँ।
1: हम चाहेंगे, हम चाहेंगे

0: ये
1: आप
0: अपनी अपनी
1: कोई
0: जगह
1: भी
0: है।
1: ऐसा भजन गाएं जो कि उस उन पहाड़ों से निकल के आता हो।
0: वो दुखोरा ताना बना तो ए इशरा लाया रे, घड़ी पले माया ममते दा जीवना मन छोरा सजाया रे। दुखो दुखो रा तान रुबान हरी बांदर ये धरती है ऊंची गायनी दे तारे पे। हरी बांदर ये धरती है ऊंची गायनी दे तारे बे। नाचो तारो दे सात समुंदरो, नाचो तारो दे सात समुंदरो, नदी खाड़ो रे फवारे बे। पापी जी उठा दियो गवाए तेरे बद के माया रे। दुखो दुखो रा ताना रुबाना तो ए इशरा लाया रे। दुखो दुखो रा ताना रुबाना चंदो सूरजो चौधू रखे जोड़ू दुई ने हाथों बे। तेरी साइया कुण जी बोलिए लाऊ बुनोरी बातों बे। आखे देखो तेरे मुर तो कहीं मने ना समाया बे। दुखो दुखो रा ताना रुबाना ये तो धार्मिक मैं आपको श्रृंगार श्रृंगार की
1: जी,
0: एक
1: इस
0: वीडियो
1: गीत का थोड़ा सार भी अगर आप समझाएं, मैं तो समझ रहा हूं, लेकिन हमारे श्रोताओं को अगर आप सार में समझाएं तो भी बड़ा अच्छा होगा इस गीत का सार।
0: तो मतलब ये सुख दुख का ताना ही भगवान तेने लगा रखा है। और ये सारी संसारी सुख दुख के ताने और बाने में जो हमारा जैसा क्या नाम कपड़ा बुनने के लिए ताना बाना लगाते हैं ना जी, तो उसमें उलझी हुई है। लेकिन और उसके साथ माया ममता के साथ ऐसा उलझा रहा है रखा है कि इंसान जो है ना अपने आप को भी भूल जाता है, कई बार घर को घर गृहस्थ को भी भूल जाता है और बहक जाता है दूसरी ओर भाग रहे। और यही कारण है कि पाश्चात्य की ओर नजर लगा करके हम अपने आप को बर्बाद कर रहे। थोड़ी थोड़ी बातें है ना जी ऐसी, बहुत पहले लिखा ऐसे मैंने धार्मिक भी लिखे श्रृंगारिक भी लिखे हास्य के भी लिखे और लिखे हैं और वो अलग अलग वो पहलू है उन पुस्तकों का। तो लेकिन मैंने छपे इसलिए नहीं सके मेरे पास साधन नहीं था और कोशिश करता हूँ गाए रेडियो से। मेरे बहुत से लोगों ने भी गाए, मैंने भी बहुत से रेडियो से गाए। मैं भी हाई था रेडियो का, ऑल इंडिया रेडियो शिमला का। तो क्या कहते बहुत अरसे तक जब गला बंद हो गया तब क्या करना, तो पर अब यही एक उस वक्त
1: लेकिन
0: मीडियम था।
1: आज भी आपके आवाज में वो क्या कहेंगे, एक ओरिजिनलिटी है आपकी आवाज में, वो एक अनोखापन है जो कि सुनते साथ ही मैं खुद को ऐसे अनुभव कर रहा था कि मैं हिमाचल की या हिमालय की किसी छोटे से गांव में बैठ करके चाय पी रहा हूँ, खिड़कियों से देखते हुए झरने नदी, मैं जैसे आपके वहां पहुंच गया था। आपकी आवाज में वो जादू है।
0: ये यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है ये हमें प्रेरणा देता है इसको अध्ययन करके। यहाँ ये देवी देवताओं का तभी पास है और हजारों वर्ष के यहाँ प्राचीन मंदिर है। मेरे गांव में हजारों वर्ष पुराने मंदिर है और मूर्ति कला का एक अनूठा वो है। अब उन्होंने किस आस्था से किस तरह से बनाया ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हमें हमारे लिए ये प्रेरणा है कि हम आस्था से वहां बैठ करके श्रद्धा से अब एक एकाग्रता वहां पर अपनी जता करके और ये सोच करके चलते हैं कि हम उस प्रभु जो क्या कहते हैं जिस जो निराकार है निर्विकार है निराधार है उसकी आराधना किस तरीके से हम करें। चलो ये तो बहुत लंबा वो है, लेकिन आज मैं मुझे मुझे तो पेंशन भी कोई नहीं मिली और ना मैंने कभी भगवान ने चला रखा है जैसा काम घर का चला रखा है, मेरा भी चला रखा है, सारे परिवार का भी चलता है, बाग बगीचे लगे हुए। अब तो खैर भगवान सब कुछ ठीक है, लेकिन मैंने आर्थिक दृष्टिकोण को देखा नहीं। तब तो मैं अच्छी खासी नौकरी ना, मैं भी डिप्टी डायरेक्टर तो रिटायर हो ही जाता इतना मुझे पता था। लेकिन 17-18 साल की नौकरी छोड़ करके मुझे ना पेंशन मिली ना कुछ मिला और भटक भटक पर ये 40-40 साल मुझे पड़ाव पर लाए। आज मैं प्रसन्न हूँ, मुझे बेशक नहीं मिला लेकिन मैं आनंद आप जैसे लोगों का सहयोग आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ और मुझे प्रेरणा मिले।
1: तो विद्यानंद जी, जैसे आपको प्रेरणा मिल रही है, मैं समझता हूँ पूरे देश भर में भी जब आप जाते हैं अलग अलग जगहों पे जाकर के आप अपनी कहानियों को आगे रखते हैं, अपने कला संस्कृति के अनुभव को आगे रखते हैं, तो कई युवा भी आपसे प्रेरणा लेते होंगे। युवाओं के लिए आप क्या समझते हैं, अभी क्या जरूरी है उनके लिए, आपका कोई संदेश है उनके लिए, या आप क्या देखते हैं उनमें, उनकी क्या जरूरतें हैं आज?
0: जी, युवा पीढ़ी आज भटक चुकी है, लेकिन फिर भी ये मेरा अपना ये संदेश है युवाओं को कि वो माँ बाप पिता गुरु अपने अपनी जो प्राचीन हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, धरोहर है, उस पर आस्था रखते हुए आगे बढ़े। इस पाश्चात्य जो प्रभाव हम पर पड़ता रहा उसकी नकल छोड़ करके सीधे अपने जो अपना सनातन धर्म है, जो हमारी परंपरा है, रीति रिवाज है, उनका अनुसरण करे, उस पर चले, और तो अपना भविष्य उनका सुधर सकता है, और क्या कहते हैं यही नहीं पूरा परिवार खुशहाल हो सकता है। तो ये मेरा छोटा सा परिवार है कि भाई 30-35 आदमी के परिवार में कोई किसी किस्म का पूरे व्यसन में नहीं है, तो मेरे लिए तो गौरव की बात है कि हमसे उसकी भी है, मैं इतना तो करता हूँ। लेकिन जो इर्द गिर्द के लोग वो मेरे से चुप करके जो करते भी है, चुप चोरी छुपे की नहीं गुरु जी आ रहे हैं, जरा हम बोतल को दबा करके रखें तो खैर इतना भी एक बहुत बड़ा है। तो युवा अगर भटक गए हैं उनके लिए भी मेरे निरंतर प्रयास है, मैं किसी भी मंच से, किसी भी पत्रिका में, किसी भी इस तरीके से जो जो जहाँ पर भी बातचीत होती है वहाँ पर यही संदेश देता हूँ कि आइए पहले तो खुद को अपने आप को सुधारिए, क्योंकि गांधी जी पूरे खाते थे और उनके दांत में दर्द तो होती थी, पर एक औरत आई कि मेरा बेटा जो है ना उसके दांत में दर्द हो रही है, कि 8 दिन बाद आना, कि वो 8 दिन बाद ही, कि तो आज अब बता दो क्या है कि आपका बेटा गुड़ तो नहीं खाता, बोलो हाँ, तुम अब गुड़ नहीं खा रहे लेना, तो 8 दिन पहले बता दो, बोलो उस वक्त मैं खुद गुड़ खाता था, मैंने भी गुड़ छोड़ दिया। तो असल में ये छोटी सी बात है, लेकिन आदर्शों को पहले खुद आपके आपको अपने व्यक्तित्व को हमको अपने व्यक्तित्व को इतना सबल बनाना है, तभी हम जो है दूसरों को के लिए आदर्श बन सकते हैं। नहीं तो आज सर्वनाश हो रहा है, धर्म का विनाश हो रहा है और कर्म का विनाश हो रहा है, आर्थिक राजनीति खत्म हो चुकी है, लोग भटक चुके हैं और हम पश्चिम की ओर इस तरीके से दौड़ रहे हैं, भाई पैसा ही कमाना है, वो कह रहे हैं। हमने देखा, मैं आपको एक बात बता दूं, बुल्गारिया में हम एक जब आ रहे थे तो वहाँ की जो डायरेक्टर थी किसी विभाग की, वो हमें छोड़ने सी ऑफ करने, फिर हमने वहाँ से मैसेडोनिया जाना था, तो हमारे लड़कों ने कहा कि गुरु जी ने एक गीत लिखा है पहाड़ी का, यहाँ वो क्या कहते हैं, हमारे साथ बुल्गारिया की एक नौजवान लड़की थी बड़ी खूबसूरत, उसके ये इनके हमारे शाबरे बाल बोलते हैं, इसके जो इनके पेड़ पेड़ बाल होते हैं ना अंग्रेजों के, तो मैंने लिखा है था उसमें, उनको सुना दिया मैंने, क्या बोलो मुर्गा जो रिये बुलगार किए तेरे शाबरे बाल हो रहे, ताई देखे हो दाढ़ी ये जियो दे चोटी ये बाल हो रहे, तेरे को देख करके मन उबल गया अब क्या करने, तो वो हंसने लगे सभी, बोलो आप लिखते भी है, उसने हिंदी में बोला उस लेडी ने, मैंने कहा आप हिंदी आ? और हमारे बीच वो साड़ी पहन करके आती थी, कहते आपको मैं बता दूं, मैंने सूरदास पर गोकुल वृंदावन में PhD की है, और क्या कहते 2 साल लगा करके वहां पर अध्ययन करके मुझे डॉक्टरेट की डिग्री मिली है, और मुझे भारतीय संस्कृति से प्यार है, इसीलिए ये आपके बीच ये साड़ी पहन करके ये लड़कियां आपकी शालीन है, पर्दे में हया है, इनको शर्म है, हमारे तो नग्नता है। तो कुछ आदर्श भी होते जीवन के और उनको अपनाना जरूरी है, और ये हमारी नकल से सीख रहे हैं बाहर के लोग और हम अपने आप को भटक रहे हैं। मैं नौजवानों की बोलता आइए अपनापन, अपना अस्तित्व, अपनी खुददारी और देश की क्या कहते हैं ताकत देते अपने आप को सुधार करके आप अपनी बात को दुनिया के सामने मनवाने की कोशिश, जो विवेकानंद ने की, जो भी आप लोग जो कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं, और वो उन लोगों को भी पता लगता जा रहा है कि भाई हाँ वाकई वास्तव में ये जीवन का सही रास्ता।
1: ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि युवाओं को जरूरत है अपनी संस्कृति पर निश्चय होने की, कि इस संस्कृति पे जब मेरा निश्चय होगा तो ही मैं एक खुददार नागरिक कहलाऊंगा देश का। अगर मैं अपनी संस्कृति पे निश्चय नहीं रखता हूँ, उसको अपने जीवन में अवलंबन नहीं करता हूँ, तो मेरी खुददारी भी कम हो जाती है, और फिर ऐसा नागरिक देश को कैसे यशस्वी बना सकता है। मेरा एक आखिरी प्रश्न आपसे ये रहेगा कि जब आप भारत के अलग अलग विभिन्न प्रांतों में जाते हैं, तो या फिर देश के बाहर भी आप जब जाते हैं, तो आपको ऐसा कौन सा चीज देखने को मिलता है जो आपको केवल भारत में ही देखने को मिलता है, बाकी और कहीं देखने को नहीं मिलता?
0: हमें तो जब भी गए, हम जब वो क्या कहते हैं बुल्गारिया में एक कॉन्सुलेट के यहाँ एट होम थे ना जी, तो उसने मुझसे पूछा हिंदुस्तान ने दुनिया को क्या दिया है, मैंने कहा गीता रामायण, बड़े बड़ी गाड़ी के आपको नहीं पता जो विश्व को दिया जिस पर विश्व आज खड़ा, तो मैंने कहा आप बोलो, कहते जीरो किसने दिया, क्योंकि वो लोग अध्ययन करते कि जीरो का वो कहते रिसर्च करने वाला भारत है और आज सारा इंटरनेट लेना देना जीरो पर, वो अध्ययन करते हैं और हम जो है ना हम उनके पीछे लगे हुए, उन्होंने सारी हमसे सीखा है। और आज आप लोग जो पहुंचा रहे हैं ये परम शांति और मोक्ष की बात कहते हैं वहां जाकर के, तो उनके दिमाग में सही रास्ता निकलता नहीं तो वो लोग भटक चुके हैं अपने।
1: तो ये जो आपने बताया कि भारत की विशेषता रही है कि हमेशा दुनिया को दिशा दिखाने की, ऐसे भारत में भी जब आप अलग अलग प्रांतों में जाते हैं हर प्रांत की अपनी एक विशेषता है और हर प्रांत अपने को दूसरे से ज्यादा बेहतर मानता है। शिमला वाले कहेंगे हम ज्यादा अच्छे हैं और हिमाचल में कोई और शहर वाला कहेगा नहीं हम ज्यादा अच्छे हैं। हर एक को अपना देश अपना प्रांत ज्यादा प्रिय होता है, लेकिन जब आप पूरे देश में घूमते हैं या पूरे देश में जाते हैं कोई एक बात ऐसी जरूर आपने देखी होगी जो पूरे देश को एक बना देता है जोड़ देता है, वो कौन सी एक बात है आपके हिसाब से?
0: मुझे तो ऐसा लगा कि पूरे देश को मुझे आपकी ये जो परंपरा है ये ब्रह्म कुमारियों का संदेश है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि सब धर्मों में कहीं ना कहीं विसंगतियां उसका धर्म का नाम लेकर के वो, लेकिन ये कुछ जोड़ने का ऐसा प्रयास किया जा रहा है जिसमें ना ऊंच है ना नीच है, जिसमें ना जाति है ना धर्म है, जिसमें ना हिंदू है ना मुसलमान है, जिसमें एक कट्टरवादिता है ना वो क्या कहते हैं किसी किस्म का एक ऐसा गिरोह है कि मैं नाम नहीं लेना चाहता जो तलवार लेकर के एक दूसरे के पीछे पड़ा है कि ये मानो धर्म नहीं तो हम ये तुम धर्म नहीं है तुम तो शांति का एक ऐसा परम शांति का एक रास्ता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपके मंच से बात कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं प्रभावित हुआ हूँ और बहुत सा समय भी देखा है हमारे सामने। हमने 1947 में जब यहाँ लोग गुज्जर लोग आए लोगों ने उनको खत्म किया हमारे गांव में भी ऐसे ने उनकी हालात देखी, उनको यहाँ लोगों ने कपड़े वगैरह दिए तब उनकी वो दिन में आज भी बड़ी दर्दें भी इस तरीके से हुआ है, उनको बचाया यहाँ खाना दिया लोगों ने, यहाँ के लोगों में श्रद्धा और प्रेम रही है ऐसी बात नहीं, वो बरकरार रहे तो ठीक है। धर्म का झंडा लेकर के ही इंसान किसी देश को नहीं बचा सकता, लेकिन अगर उसकी कृतत्व अच्छे है उसका समर्पण अच्छा है श्रद्धा अच्छी है और वो सेवा भाव है और सबसे मिलकर के काम करके अपने साथ जोड़ने की व्यवस्था है तो शायद हम बच सकते हैं, तभी इसलिए कह सकते ज्यादा कह को।
1: ये आपने बहुत सुंदर बात कही कि धर्म का झंडा या व्यापार का झंडा या किसी एक विधा का झंडा पकड़ के व्यक्ति आगे बढ़े तो उससे देश आगे नहीं बढ़ता है। देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने अंदर सत्यता होनी चाहिए, धर्म होना चाहिए, अपना मानवीय जो धर्म होता है वो बहुत जरूरी है। और जो आपने एक और बात कही कि पूरे देश में जो आपने एक चीज देखी जो पूरे देश को जोड़ता है वो है शांति के प्रति लोगों की आस्था या शांति के प्रति लोगों का जो लगाव है, रुचि है, हर कोई शांति पसंद करता है। तो इन बातों को सुनते हुए मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक भारत देश में आपके जैसे बेटे और बेटियां होंगे तो भारत देश यशस्वी तो बना ही रहेगा। आपके हिसाब से भारत को यशस्वी बनाने वाला कौन सा एक बात है? ये भी आपने बताया कि भारत ने विश्व को दिया है हमेशा से, शून्य से लेकर के संस्कृति तक हर चीज का ज्ञान भारत ने विश्व को दिया है, तो ये जो देने की कला है ये मैं समझता हूँ भारत को यशस्वी बनाता है, जो कि मैं आज के एपिसोड से आपसे सीख रहा हूँ कि हमें हमेशा देने का अभिप्राय रखना चाहिए। कभी भी लेने वाली अगर भावना होती है तो शायद कहीं ना कहीं हम छोटे हो जाते हैं, और अगर हमारे अंदर देने की भावना हो तो हम अपने आप ही बड़े हो जाते हैं। तो विद्यानंद जी, आपसे बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत कुछ जानने सीखने को मिला और हमारे सभी श्रोता साथियों को एक लगभग दशक कई दशकों का जो ज्ञान है संचित ज्ञान वो आपने कुछ ही मिनटों में हमारे सामने रखा, और ये दशकें जो थी वो आपके आयु से जुड़ी हुई थी लेकिन आपने उससे भी आगे चल करके पुरातन काल और सनातन काल की कहानियों को भी आपने आज हमारे साथ इस एपिसोड में जोड़ा, जिससे मैं समझता हूँ केवल माउंट आबू में सुनने वाले श्रोता नहीं लेकिन कहीं भी देश के किसी भी कोने में सुनने वाले श्रोताओं को सिरमौर से जुड़ने का जरूर अवसर मिलेगा, उनके अंदर रुचि जागेगी कि सिरमौर के बारे में थोड़ा हमें और जानना चाहिए कि सिरमौर को चंद्रगुप्त मौर्य ने सिरमौर कहा था लेकिन उस सिरमौर को सिरमौर बनाए रखने में कैसे लोगों का हाथ है, विद्यानंद सरक जी जैसे लोगों का हाथ है। जाते जाते अगर विद्यानंद जी आप अपनी आवाज में फिर से कुछ गुनगुना दे हम सबके लिए और उसका थोड़ा सार भी बता दे तो बड़ा अच्छा होगा।
0: पहाड़ी की सुनना चाहेंगे हिंदी की, क्या करूं?
1: पहाड़ी पहाड़ी पहाड़ी ऐसा कोई गीत जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आपका सबसे प्रिय गीत है?
0: मैं एक श्रृंगार का एक गीत सुनाता हूँ। आकुटी मलाई जा, भाव टलाई जा, अपने पे वो करी बात बताई जा। आकुटी बता आकुटी मलाई जा, भाव टलाई जा, अपने पे वो करी बात बताई जा। कोसरी ध्यान कोसरी जाए, ठाणी बाणी रा तू मुंदरे आए, इने नखरे तू हमो न खाए। आकुटी मलाई जा, भाव टलाई जा, अपने पे वो कहरी बात बताई जाए। कि युवक को युवती खूबसूरत मिलती है, वो उसको ये बोलता है कि तू आंखें तो मिला ले, तू तिरछी नजर से देख रही है, तू तू दौड़ रही है, मैं तेरे पीछे दौड़ रहा हूँ, तू ये तो बता किसकी ध्यान है, किसकी बेटी है, और किस तेरा माता पिता कौन है, ताकि मैं समझ सकूँ, और क्या क्या कहते हैं, और मेरे तेरा पीछा करने का मुझे भी फल मिले। मतलब ये तो श्रृंगार का मैंने आपको धार्मिक का भी था। इसी तरह से नाटी के कई रूप हमने यहाँ पर उभारे हैं, और एक शीर्षक से चारों विधाओं को पेश किया है। एक एक शीर्षक से उसका जैसे ढाटू है ना, सिर में स्कार्फ पहनती है ना हमारे, तो ढाटू को लेकर के आठ मात्रा की घी गाल्टी नाटी है, उसको घी कहते हैं हमारे, और मुंजरा बोलते हैं हमारे घरों में अंदर, नाटी का एक सबसे छोटा रूप है वो, उसको आपको बता रहा हूँ। निखाए घाले पिंवड़े ढाटुए, बोलो तो ही जो माटुए, जवानी दूरी जणू ढोबो कुण नीरी जा माइए, शावणो भी जणू ढोबो कुण नी भी जा माइए। हो निखाए घाले पिंवड़े ढाटुए, कहते इस पीले ढाटू ने तेरे हमारे को तबाह कर दिया है, तू ये बता जवानी में कौन नहीं रीझा, कौन ठंड बढ़कर नहीं चलता, और जवान वो ऐसा कौन आदमी है जो बरसात में नहीं भीगता, तो ये जवानी के बाद बरसात आती है, इसमें भी जो भीगा नहीं है वो भी इंसान, उसने वर्ष के मौसम को समझा नहीं है। कहते निखाए घाले पी, लेकिन तेरे काले तेरे जो पीले ढाटू ने मुझे तबाह कर। निखाए घाले माटू को था बोला बांका जवानो, माटू माटू तो बड़ा बांका जवान था वो, माटकू था बोलो बांका जवानो, लाल होठड़ू पांदे गूंज रे छानो, गूंज समझ रहे मूंछों की, लाल होठ थे उसके, उसकी खूबसूरती का वर्णन किया है। एक ही दिन से भी मुजरे आया, पिंवड़े ढाटुए हाड़ो दा पाया, एक दिन वो मुजरे में आया, महफिल में आया, और पिंवड़ा ढाटू जो उसका खूबसूरत लड़के देखा हाड़, मतलब जैसे सैलाब हो पानी का, ऐसा वो उसके सिर पर उसके जीवन पर ढल गया, और वो बेसुद होकर। ये तो आठ मात्रा की गीत है। इसी इसी क्रम में हमारी दूसरी विधा है, वो है बारह मात्रा की। ये थेवड़ा ताल पर रौद्र ताल पर है, और रौद्र ताल पर हमारे ठोडा जो है ना तीर कमान खेलते हैं, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। और ढाटू है ढाटू, तेरे मुंडो दा पिंवड़ा ढाटू, मेरे मुंडो दा टोपा, तेरे मुंडो दा पिंवड़ा ढाटू, मेरे मुंडो दा टोपा, टूटी तलना समझ रो आया जमाना कोटा। कह युवती जरूर तेरे सिर पर पीला ढाटू बड़ा सज रहा है, और मेरे सिर पर भी ये जो है ना हिमाचली टोपी है बड़ी अच्छी लगी, लेकिन उसके बावजूद ही जरा सोच समझ करके कदम देना है, आजकल जमाना पार गंवारी है ध्याने आया जमाना कोटा। ये बारह मात्रा की बंदी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, एक ये बड़े धमाके से और दिल खोल जाता है नृत्य करने वाला का जब इसको इसको गाते। ये बारह, अब सोलह मात्रा की बंदिश बताऊंगा, लेकिन ढाटू याद रखना है। मैंने ढाटू ऐसे ढाटू पर गले पर आंखों पर ओठों पर पलकों पर पतली कमर पे बहुत से वो मैंने कोई साठ सत्तर अस्सी गीतों का संकलन अलग कर रखा है, अलग अलग लेकिन अलग अलग तर्जों में। अब ये सोलह मात्रा की बंदिश है, ढीली नाटी है हमारे, ये बड़ी मशहूर है। ढाटू बिस राणा, ढाटू रखना याद, ये ढाटू जो है ना हमारे सिर की में औरतें लगाती है। ढाटू बिस राणा किसकी चाली दाढ़ी ये बोला मस तुए, तेने ढाटू बिस लिया, वो अब तू तो नंगे सिर से जा रही है, ढाटू बिसरा टलटा घिसरा, टलटा हमारे दुपट्टे को बोलते, कहते दुपट्टा भी भूल दिया, ढाटू तो भूला ही था, वो भी भूल दिया, माथे चमको टीका बिरे, माथे में तेरा टीका जो है ना, जो चमकदार बिंदी है वो चमक रही है, गोरा तेरा बोलो मुटा दाड़िए, आए पड़ो सूरजो फीका बिरे, ढाटू बिस, कहते गोरा तेरा मुंह देख करके अब वो ढाटू भी निकल गया, दुपट्टा भी निकल गया, टीका सामने नजर आ रहा है, तेरे तेरे चेहरे को देख करके क्या कहते हैं सूरज भी फीका पड़ता जा रहा है, तो पूरा वर्णन इसमें है, चलो कह रहे सुंदरता का, तो क्या कहते हैं ये 16 मात्रा की बंदिश है, ये नृत्य करना का भी इसका, मैं इस नृत्य भी करता हूँ, और इसका एक बड़ा अंदाज है ढीली नाटी का, बहुत सी नाटियां हैं लेकिन मैंने अपनी संकलन की है, यहाँ ट्रेडिशन में भी बहुत सी नाटियां गाई है कई लोगों ने, तो अब ये 16 मात्रा की, अब 6 मात्रा की बंदिश आपको बता रहा हूँ, भाभी ये तेरा ढटकू, भाभी ये तेरा ढटकू काला सो मेरे जियो रर बाला, तू भी टंग बेरा ताला दाड़ी मेरे जियो रर बाला, ए भाभी तेरा ढटकू जो है मेरे मन को बहलाने वाला है, मेरे मन के लिए बहलावा है, क्या और तू तो अनोखी औरत है, आकर्षक है, सजीली है, सुंदर है, क्या कहते हैं इसलिए मैं तेरा वर्णन कर, तो ये 6 मात्रा की 4 किस्म की नाटियां मैंने आपको बता दी, ये हमारी यहाँ की सिरमौर की जो नाटी है और जिसका उदय ही सिरमौर में हुआ है, और ये नाटी आपको ये भी बता दूं, ये नाटी जो है मेरी टीम ने विश्व बुक ऑफ रिकॉर्ड में 11 बार फर्स्ट आने पर विश्व बुक ऑफ रिकॉर्ड में डाली है, जोगिंदर हाफी मेरे शिष्य है, तो उन्होंने 11 बार ये नाटी कंपटीशन में फर्स्ट आने पर विश्व में, और इसका जो नाटी का उदय है वो सिरमौर से, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है, हमने सारा कोशिश की है कि हर चीज के डेप्थ पे जा करके हम काम करें और लोगों को बताएं कि हमारे संस्कारों से जुड़े ये पहलू क्या है और हम उनको क्यों झुठला रहे हैं, क्यों भूल रहे हैं, लेकिन हमारा जब आदर्श और हमारा जब चिंतन, जब हमारा जब सामने आप जैसे लोगों का प्रदर्शन हो तो मन में सुकून मिलता है और आगे बढ़ने का रास्ता।
1: मैंने कहा विद्यानंद जी आपकी आवाज में आज भी वो जादू है कि सुनने वाला खुद ब खुद नाचना शुरू कर देगा, जैसे कि आप खुद नृत्य करते हैं सामने वाला सुनते हुए नृत्य करना शुरू कर देगा, लेकिन आपका जो भाव है या जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया वो मैं समझता हूँ बहुत ही सिंबॉलिक है, बहुत ही प्रतीकात्मक है, क्योंकि अगर मैं सोचूं तो वो हिमाचल की या हिमालय के एरिया की प्रकृति को भी दर्शा सकता है, जो सूर्य की बात हो रही है, जो लालिमा की बात हो रही है, जो सनराइज सनसेट हम हिमालय में देख सकते हैं वो कहीं और नहीं देखा जा सकता, तो कहीं ना कहीं ये सांस्कृतिक जो भी नाटी आपने सुना है उनमें वहां की प्रकृति का सौंदर्य भी झलकता है
0: कि हर गीतों में कथा और कथानक होना चाहिए, हमारे यहाँ गीतों में भी आड़ सगाड़ गारे हैं जिसका कोई मतलब नहीं, लेकिन चाहे वो धार्मिक बात हो, चाहे श्रृंगार की हो, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण की हो, या कोई संदेश हो जन जागरण का, या और पहलू हो सामाजिक एकता का, ऐसे असंख्य गीत है जो मैंने उसी हिसाब से कथा और कथानक को लेकर के सस्वर लिपिबद्ध किए हैं, और कोशिश करो जब कभी भगवान समय देगा तो तभी तो है, तो ऐसा है।
1: जी बिल्कुल, आपके पास जो भी समय है और जितना भी समय है उसको आपने सफल किया है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि पूरा भारत देश आप पर नाज करता है, आज आप भारत के एक ऐसे यशस्वी रतन है जो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हुए हैं क्योंकि आपने भारत की संस्कृति को अपने जीवन का ध्येय बनाया है। आपसे मिलकर के न केवल मैं लेकिन हमारा पूरा रेडियो मधुबन का परिवार, जिसमें कि हमारे प्यारे श्रोता साथी भी आते हैं, आज बहुत खुश हो रहे हैं कि आज रेडियो के माध्यम से, रेडियो मधुबन के माध्यम से और यशस्वी भारत कार्यक्रम के माध्यम से हम पहुंच गए सीधा सिरमौर, और आपने अपने घर में अपने बैठक में हमें स्थान दिया, आपने हमारे साथ बातचीत की, अपने जीवन की कई सारे पन्नों को आपने खोला हमारे सामने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम शुभकामना करेंगे कि आप
0: एक जी सिरमौर, सिरमौर एक है जिसके सिर पर चूड़धार की 12,000 फुट की ऊंचाई है, और आगोश में गिरी गंगा बहती है, असंख्य नदियां बहती है, खूबसूरत वादियां हैं बीच में, और इन वादियों में असंख्य देवी देवताओं के मंदिर है, और मन में सुकून मिलता है जब वहां जाकर के कुछ बचा हुआ है तब लगता है कि है ये यहाँ कुछ। तो ये अंत में आपको कहना चाहूंगा इन्हीं के धन्यवाद।
1: जी विद्यानंद जी ने इतने सुंदर तरीके से कहा कि सिरमौर में अध्यात्म का सिरमौर है, और यहाँ पर जो बस्तियां हैं, जो देवताओं की श्रृंखलाएं हैं, जो मंदिर हैं, जो प्राकृतिक धरोहर है, इसके बीच में कभी अगर आने का मौका मिले तो जरूर लोगों को प्रयास करना चाहिए कि आकर के अपना समय जरूर यहाँ गुजारें। रेडियो मधुबन के समस्त परिवार की ओर से, जिसमें कि हमारे प्यारे श्रोता भी आते हैं, उन सभी की ओर से विद्यानंद सरेख जी आपका और आपके परिवार का हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे कि आज आपने हम सबके लिए इतना समय निकाला और अपने बातों के जरिए, अपने सुरों के जरिए आपने हमें सीधा सिरमौर पहुंचा दिया। आपका दोबारा हम धन्यवाद करना चाहेंगे और ईश्वर के आगे हम ये अनुरोध करना चाहेंगे कि आपके जीवन के जरिए कई जीवन को अलग संस्कृति की अलग जगाने में जरूर मदद करते रहें आपको, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आपका फिर से रेडियो मधुबन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता साथियों, अब तक आप सुन रहे थे यशस्वी भारत कार्यक्रम के आज के हमारे एपिसोड के मेहमान। मेहमान क्या कहेंगे, घर वाले ही कहेंगे, क्योंकि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की ओर आवाज जा रही थी। हम माउंट आबू से सुन रहे थे और सुनाने वाले थे विद्यानंद सरेख जी, जो कि सिरमौर हिमालय के पर्वत श्रृंखलाओं में हिमाचल प्रदेश से आते हैं। विद्यानंद सरेख जी भारत सरकार द्वारा 2022 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। इसके पूर्व उन्हें राज्य सम्मान और राष्ट्रपति सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। कारण कि उन्होंने अपने प्रांत की जो पहाड़ी सभ्यता है, सिरमौर जिस जगह से वो आते हैं, उस जगह की सभ्यता में उन्होंने न केवल उस जगह की लोक संस्कृति को उजागर किया, लेकिन जो मूल धारा है, जो प्रमुख सांस्कृतिक धरोहर, जैसे कि हमारे शास्त्र हैं, हमारी गीता, भागवत, पुराण, रामायण आदि, इनका भी उन्होंने अनुवाद किया सिरमौरी में। साथ ही साथ उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी के भी 51 कविताओं का अनुवाद किया। ऐसे कई चीजों का उन्होंने अनुवाद किया ताकि जनमानस, जो उनके आसपास के लोग हैं, मूल सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ सके, और जो मूल धारा के लोग हैं वो किसी भारत के किसी एक कोने की आवाज से जुड़ सके। उन्होंने एक ब्रिज का काम किया दोस्तों, जहां पर उन्होंने अपने प्रांत की आवाज पूरे देश तक पहुंचाई और पूरे देश की आवाज को अपने प्रांत तक लाया। मैं और आप भी ऐसे एक ब्रिज का काम कर सकते, एक सेतु का काम कर सकते हैं। मेरे आसपास जो हो रहा है उसमें अगर मैं अपने अंदर की जो भावनाएं हैं उनको जोड़ सकूं तो उस चीजों को मैं निखार सकता हूं और पूरे देश को यशस्वी बनाने में अपना एक अहम भूमिका निभा सकता हूं। उम्मीद करेंगे कि आप भी ये अहम भूमिका जरूर निभाएंगे और निभा भी रहे हैं। आगे चल करके आपसे मुलाकात होगी एक और एपिसोड में। यशस्वी भारत कार्यक्रम में हम लाएंगे एक और नए मेहमान को, जिनसे जानेंगे हम उनके जीवन की कहानी उनकी जुबानी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, सुनते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ा देते हैं। और आज हमारे साथ विशेष मानदीप जी है, डॉक्टर मानदीप, जिनसे बातें करने वाले हैं। मानदीप जी हमारे साथ है और आप एक डेंटिस्ट है, नेचुरोपैथ है और विशेष अभी जो है ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, तो एक अच्छा राजयोगा प्रैक्टिशनर के साथ साथ काउंसलर भी हैं। तो निश्चित तौर पे हमें जो है बहुत सारी चीज़ें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो आज के समय में प्रॉब्लम है वो है गैस्ट्रिक के बारे में। पेट में गैसेस बहुत होते हैं, या थोड़ा भी खा लेते हैं तो पेट जो है गुड़गुड़ करने लगता है, या कॉन्स्टिपेशन, या फिर हमें बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पूरे टाइम जो है दिन में दो बार जेलोसिल टैबलेट या डाइजिन वगैरह यूज़ करते हैं। कई लोग एंटासिड सिरप भी लेते हैं, किसको ज़्यादा तकलीफ़ होते हैं, या फिर कई एजड वाले होते हैं उनको तो लेना ही पड़ता है ऐसा भी लगता है। तो उनके लिए एक बड़ा सा बॉटल, पहले 100 ml का आता था, आजकल 400 ml का भी बॉटल मिल जाता है, तो वो बॉटल घर पर रखी रहती है तो वो पीते रहते हैं। तो क्या इन सभी चीज़ों को यूज़ करने से या नेचुरल तरीके से गैस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, या कौन सी दवाइयाँ अच्छी हैं जो बाद में प्रॉब्लम नहीं करे? कई बार ओलोपैथिक मेडिसिन लंबा लेते हैं तो आदत हो जाता है, फिर अगर हम नहीं खाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि अरे आज दवाई नहीं खाया तो नहीं गैस बनेगा, ये ऐसा लगता है। तो ये जो सिम्टम्स या जो दिमाग में असर भी करता है, तो इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और नेचुरली हमें गैस रिलेटेड जो बातें हैं वो कैसे बनता है, क्यों बनता है, अगर हम उन चीज़ों को नहीं खाएंगे तो नहीं बनेगा, ऐसा कुछ है, या अगर हम कुछ ऐसे ज़्यादा मसाले वाला चीज़ खा लेते हैं तो फिर उसको कैसे हम लोग मैनेज करें, तो ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर मानदीप जी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया
0: जी। जी जी जी। और हमारे सभी श्रोताएं आपको पहली बार सुन रहे हैं रेडियो के माध्यम से, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, आप क्या करते हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं। जी,
1: अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई एम डॉक्टर मनदीप, BDS, अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन, एंड आई डिड माय BDS फ्रॉम सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। In 2008, I passed my BDS, and ever since I have been in private practice. And last year, I shifted to Abu Road, Shantivan, and यहाँ पर मैं मानसरोवर एक कंप्लेक्स है, वहाँ पर फर्स्ट एड में अपनी सेवाएँ दे रही हूँ as a general physician. So वो मेरी सेवाएँ basically एक holistic approach से ही रहती हैं, just helping people to know their body well.

0: क्या बला है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे ये क्रिएट होता है और कैसे इसको समझे हम लोग।
1: जी,
2: गैस्ट्रिक इशू विच जो आज एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम सबकी बन चुकी है और लेमैन टर्म में इंसान उसको गैस कह देता है और गैस कहकर उसको बहुत ही हल्का समझ लेता है। बट हमें एक चीज़ बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करनी है कि हमारी बॉडी इंटरनली अल्कलाइन नेचर की है, माना कि उसका पीएच 7 से ज्यादा होना चाहिए। एंड हम सबको पता है कि हमारी बॉडी 80% वाटर है, ठीक है। वाटर का पीएच तो अल्कलाइन ही होता है। अगर एक अल्कलाइन बॉडी को अल्कलाइन एनवायरनमेंट में कंटिन्यूसली एसिड बनता जाए तो वी कैन अंडरस्टैंड कि वो कितना हार्मफुल होगा हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उसके लिए। अल्कलाइन नेचर ही सूटेबल है और वहाँ पर जब कंटिन्यूसली एसिड क्रिएट हो रहा है तो वो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को हार्म तो डेफिनेटली पहुँचा रहा है। अब हमें जो चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, हम क्या करते हैं जब भी हम कोई भी मेडिकेशन लेते हैं, हम कहते हैं गैस हो गई दवाई दे दो। दिस इज व्हाट कॉमनली आई एम हैंडलिंग ओवर देयर। एवरी सेकेंड पर्सन कम्स एंड सेज थोड़ी सी गैस है कोई दवाई दे दो। अब हमें लगता है कि दवाई खाने से मेरी गैस ठीक हो जाती है और ठीक क्या होता है वो भी हम अंडरस्टैंड करते हैं। जब एसिडिटी हुई, माना एसिड स्टमक में फॉर्म हुआ तो बॉडी में उसके सिम्टम्स आए, किसी को जलन के रूप में, किसी को हेड हैवी हो गया, किसी को पेट में दर्द हुआ, ये सिम्टम्स मेरे सामने आए और इन सिम्टम्स को हमने रिलेट किया है कि गैस बन गई अंदर। तो हम मेडिसिन जब खा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, ये सिम्टम्स सप्रेस हो गए। जो आपको जलन हो रही थी वो न्यूट्रल हो गई, पेन सबसाइड हो गई और मैंने सोचा कि एसिड बनना बंद हो गया। बट आप खुद सोच कर देखिए कि एसिड जिस वजह से बन रहा है वो वजह अगर कंटिन्यूसली हम कर रहे हैं तो एसिड बनना बंद कैसे होगा। अगर मेडिसिन ने आपको ट्रीट किया होता तो उसके बाद एसिड बनना नहीं चाहिए। सो ट्रीटमेंट इज फाइनली गेट रिड ऑफ दैट थिंग। बट जब कंटिन्यूसली एवरी डे आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ रहा है तो इससे सिद्ध होता है कि कॉज खत्म ही नहीं हुआ। So if you actually want to treat your acidity, you have to get rid of the cause. And एक चीज और क्लियर होनी चाहिए कि acidity is the root cause for all our diseases. Acid क्या चीज है, जो भी food हम खा रहे हैं और हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही तो वो उसको फर्मेंट कर देती है और उससे एसिड फॉर्म हो जाता है। अब इसके लिए कोई जनरलाइज्ड हम एक लिस्ट नहीं बना सकते कि ये चीजें एसिड क्रिएट करती हैं, क्योंकि हर बॉडी डिफरेंट है।
1: बिल्कुल,
2: जो चीज मुझे डाइजेस्ट हो रही है वो किसी दूसरे को नहीं डाइजेस्ट हो सकती। बट अगर हमने कहीं पर पढ़ लिया या सुन लिया कि दिस फूड आइटम इज वेरी गुड, इट हैज सो मच प्रोटीन्स, इसको जरूर खाना चाहिए, बट लिसन टू योर बॉडी ऑल्सो ना। ठीक है, आपने कुछ अच्छा पढ़ा, आप ट्राई करो, बट आपका बॉडी इमिजिएटली आपको इन्फॉर्म करेगा वेदर इट इज सूटिंग यू और नॉट। वो एसिडिटी के फॉर्म में, अगर आपको उसको खाकर प्लेजेंट फीलिंग नहीं आई, मतलब पेट में जलन हुई, अनइजीनेस हुआ, बर्ब्स आने शुरू हो गए, मतलब वो आपके लिए अच्छा नहीं है। एंड टू बी frankly, अगर मैं शार्प वर्ड भी यूज करूँ, वो फूड आपके लिए पॉइजन है जो आपके बॉडी में एसिड क्रिएट कर रहा है। आपको उसको अवॉइड नहीं, उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी वो एसिड बनना बंद होगा। एंड दिस इज द ओनली एंड ओनली ट्रीटमेंट फॉर एसिडिटी। मेडिसिन्स आपको सिर्फ उस टाइम का जो एसिड फॉर्म हुआ, उससे जो सिम्टम्स क्रिएट हुए, उसको सप्रेस कर देगा, बट आपको ट्रीट नहीं कर सकता। एंड धीरे धीरे यही एसिड जो हमारी बॉडी में फॉर्म होता है, ये हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट करने लग जाता है। ये जो सब कहते हैं जोड़ों में दर्द है, पेन है, कभी कोई कह रहा है कि मेरे शोल्डर्स में पेन रहता है, हेड हैवी रहता है, ये सारी प्रॉब्लम्स का रीज़न ही एसिडिटी है। वो एसिड जिस बॉडी के ऑर्गन्स पे अक्यूमुलेट होने शुरू हो जाता है, उसको हार्म करना, उसको खराब करना शुरू करता है और वहाँ की डिजीज हमारे सामने आ जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं, वो घुटने

0: में दर्द है उसके लिए कितने ऑइंटमेंट्स, कितनी मेडिकेशन लेते जा रहे हैं एंड रूट कॉज को पकड़ ही नहीं पा रहे. द रूट कॉज इज द फूड विच इज नॉट एबल टू बी डाइजेस्टेड इन योर बॉडी एंड वो कंटिन्यूसली एसिड फॉर्म करता जा रहा है. आप मेडिसिन खाकर सिम्टम्स को सप्रेस करते जा रहे हैं एंड दोज मेडिसिन इन एडिशन विद सम मोर साइड इफेक्ट्स इज गोइंग टू हार्म अनदर बॉडी ऑर्गन. सो आउट ऑफ lack of knowledge, we are not able to, you know, guide ourselves properly or apni body ka hum proper care nahi le pa rahe. So we should not ignore acidity by giving it a simple word ki gas ho gayi, hume kuch kha rahe. No, we have to take it seriously.
1: Bilkul, bilkul. डॉक्टर मंदीप जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि गैस होना ये अपने आप में, जो हम लोग खाना खाते हैं अगर उसके सिम्टम्स ही हमें गैस होता है तो हम दवाई ले लेते हैं. दवाई लेने के बाद जो है हमें थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि अब वो जो चीज़ें हो रही थी, जलन हो रही थी या फिर डकारी आ रही थी या फिर कुछ हो रहा था, वो सारे सिम्टम्स बंद हो जाते हैं. तो बंद होने के बाद हम सोचते हैं कि ठीक हो गया. अब अगर ठीक हो गया तो फिर आपने कहा कि अगर ठीक हो गया तो फिर वापस दवाई लेने की ज़रूरत नहीं, वापस गैस बनने की ज़रूरत नहीं. इसका मतलब फिर से दूसरे दिन वापस जो चीज़ें आप खा लेते हो वापस शुरू हो जाता है. इसका मतलब दवाइयाँ थोड़ी देर के लिए आपको टेम्प्रेरी रिलीफ दिया है, परमानेंटली इलाज नहीं हुआ. तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, इसमें हमें सोचना चाहिए. अगर हम ऐसे करते रहेंगे तो गैस बनना तो शुरू ही है, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बॉडी पार्ट में जाकर वो बॉडी पार्ट को इफेक्ट करेगा, जिसके वजह से हमें फिर बहुत सारे अलग अलग नए डिजीज़ भी आ जाते हैं. तो आइए इसको और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, कैसे हम इस चीज़ों को समझें और इसके ऊपर काम कैसे करें और किस तरह का हमें परिवर्तन लाना है, इस पर बात करेंगे कुछ ही देर में. लेकिन अभी आपको मैं ले चलता हूँ एक बहुत ही प्यारा सा गीत की तरफ. आप सुनाए हैं रेडियो माधवन पर आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस कार्यक्रम में. अगर आप भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो फ़ोन कर सकते हैं 94-1415-1415 इस नंबर पर, और गैसेस से रिलेटेड जो भी सवाल होगा वो ज़रूर आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं. डॉक्टर मंदीप जी हमारे साथ हैं, आप डायरेक्टली उनसे किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो हेल्थ रिलेटेड ज़रूर पूछ सकते हैं. तो आइए एक और सुंदर गीत आपके लेके चलते हैं उस तरफ और उसके बाद फिर बातें करेंगे. आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM. सुनते रहो, मुस्कुराते रहो.

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ, इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और एस बलबीर का गाया हुआ ये खूबसूरत गीत विशेष अब दिल्ली दूर नहीं, इस एल्बम से आप सुन रहे हैं। निश्चित तौर पर आपको पुराने गाने पसंद आते होंगे तो ये गाना भी पसंद आया हुआ। दत्ताराम वालकर जी ने इसे संगीत से सजाया था और इसे लिखा था हसरत जयपुरी ने। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग आपका आपके हाथ इस कार्यक्रम को रविवार को सुनते हैं 9 से 10 बजे के बीच में और अभी हम लोग डॉक्टर मनदीप जी से बातें हो रही हैं, गैस्ट्रिक को लेकर हम लोग बातें कर रहे हैं। तो आप भी अपने सवाल या आपके मन में कोई हेल्थ से रिलेटेड कुछ बातें होगी तो आप 94 14 15 14 15 इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं तो या फिर आप व्हाट्सएप से मैसेज भी कर सकते हैं। तो आइए बात कर रहे थे हम लोग गैसेस के बारे में, तो गैस फॉर्म किस तरह से होता है और इसका कारण क्या है वो बताइए जी। जी डॉक्टर मनदीप जी,
1: गैस क्या चीज है बेसिकली? जैसे हमने पहले भी बात की, हाँ पीएच होता है राइट, एक अल्कलाइन होता है, एक एसिडिक होता है और एक न्यूट्रल होता है। तो जब पीएच हमारा 1.7 से नीचे चले जाता है, मतलब 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, दैट इज एसिडिक इन नेचर। 7 पर है तो वो न्यूट्रल है और 7 से जब ऊपर है तो वो अल्कलाइन है। एंड हम जैसे पहले भी बात कर रहे थे, हमारी बॉडी अल्कलाइन इन नेचर है। तो अल्कलाइन नेचर, जब वो एनवायरनमेंट हमारी बॉडी का रहता है तो हमारे सारे ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं। एंड जब हमारे बॉडी का पीएच एसिडिक हो जाता है तो एसिड क्रिएट होने की वजह से हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया होता है, देखो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हम सबकी बॉडी में हमेशा रहता है,
0: बिल्कुल,
1: पर जितनी देर तक पीएच अल्कलाइन नेचर का है तो उस बैक्टीरिया को ग्रो करने का एनवायरनमेंट अवेलेबल नहीं होता तो वो नहीं ग्रो करते, वो एज इट इज थोड़े से अमाउंट में पड़े रहते हैं, विच इज ऑफ नो हार्म टू अस। बट द मोमेंट वी आर क्रिएटिंग अ एसिडिक एनवायरनमेंट इन आवर बॉडी, दैट बैक्टीरिया गेट्स अ सूटेबल एनवायरनमेंट टू ग्रो। तो इस तरीके से वो बैक्टीरिया की ग्रोथ होने की वजह से हमारे बॉडी के ऑर्गन्स अफेक्ट होना शुरू करते हैं और हम सबकी बॉडी में कोई ना कोई ऐसा हमारा वीक ऑर्गन होता है जो विक्टिम बन जाता है। तो उसकी डिजीज हमारे सामने आ जाती है। एंड देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर क्रिएटिंग दिस एसिड इन आवर बॉडी। एक तो जैसे हमने बात की कि वो फूड आइटम्स जो हमारी बॉडी को सूट नहीं कर रहे बट इन स्पाइट ऑफ दैट हम उसको खा रहे हैं। एंड इसके लिए देखो हम सबको खुद का फिजिशियन बनना पड़ेगा। कोई भी डॉक्टर आपको नहीं बता सकता कि आपको ये चीज सूट नहीं कर रही। आई हैव टू नोटिस कि जब भी मेरे को एसिडिक फीलिंग आई तो मैंने क्या क्या खाया।
0: अच्छा, मुझे पीछे देखना पड़ेगा कि मैंने क्या क्या किया।
1: Exactly. आपको उसका एक दिन प्रायर भी चेक करना पड़ेगा, रात को मैंने क्या क्या खाया था, आज सुबह मैंने क्या क्या लिया जिससे मुझे ये गैस्ट्रिक इशू आ रहा है। एंड जब मल्टीपल टाइम्स आप रियलाइज करेंगे तो उससे आपको खुद फील होगा कि यस, एवरी टाइम आई एम फेसिंग दिस गैस्ट्रिक इशू, ये फूड आइटम मेरे उसमें मील में था। तो इस तरीके से जब आप खुद की स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिस पर्टिकुलर फूड आइटम। और जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है ना तो हम उनको ये बताते हैं ऐसे, वो कहते हैं हाँ मुझे लगता है जब मैं दही खाता हूँ या दूध पीता हूँ तभी मुझे प्रॉब्लम होती है। मतलब हम सबको अवेयरनेस है बट आउट ऑफ टेस्ट या वॉट एवर रीजन वी आर स्टिल कंज्यूमिंग दैट, कंसिडरिंग दिस थिंग टू बी वेरी लाइट कि ठीक है बन जाएगा, हम दवाई खा लेंगे ठीक हो जाएगा। ये हमारा मिसकंसेप्शन है। बस मैं यही क्लियर करना चाहती हूँ कि दवाई से वो चीज़ ठीक नहीं हो रही। आप चलो एक बार ठीक कर दिया, फिर से एसिड फॉर्म हुआ तो आप उसके अंदर का प्रोसेस तो देखो क्या कैरी ऑन हो रहा है। जितनी देर तक वो एसिडिक एनवायरनमेंट है, बैक्टीरिया को तो एक मील मिल गई अच्छी सी, उसके लिए तो एक अच्छा भोजन फीस्ट है, वो जल्दी जल्दी से ग्रो करेंगे और आपके उस ऑर्गन को धीरे धीरे वो अफेक्ट करते जा रहे हैं, आप अनअवेयर हो। बिकॉज हमारी बॉडी इस स्किन से कवर्ड है, हमें पता ही नहीं चल रहा कि अंदर क्या हो रहा है. और वो जिस दिन एक बड़ी सी बीमारी हमारे सामने आती है, हमें लगता है कि अचानक ये क्या हुआ, अचानक नहीं हुआ. ये हमारी मिस्टेक्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसका रिजल्ट है कि वो डिजीज हमारे सामने आई है. सो इसलिए वी नीड टू हैव गुड नॉलेज of what we are eating. हम अपनी बॉडी को सुनो. योर बॉडी इज अ वेरी इंटेलिजेंट मशीन विच गिव्स यू सिग्नल्स. वो सिग्नल्स कोई दुख की बात या उसको ऐसे मत समझो कि ये क्या हो गया, ये मुझे अनईज हो रहा है. अरे उस सिग्नल को अंडरस्टैंड करो. द बॉडी इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग दैट यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. एंड हमारा अटेम्प्ट क्या रहता है करंट टाइम में, सप्रेस द सिग्नल. बिकॉज वो थोड़ा अनइजीनेस कॉज कर रहा है, तो हमारी सोच उस तरफ जा ही नहीं रही कि सिग्नल मुझे क्या इशारा दे रहा है, कि मैंने ऐसा क्या गलत किया अपनी बॉडी के साथ. तो अगर उस चीज को अंडरस्टैंड कर लेंगे, अपनी मिस्टेक को रियलाइज कर लेंगे, तो उसी को जब इम्प्रूव करेंगे, वी नेवर बिकम अ विक्टिम ऑफ एनी डिजीज एंड वी कैन ऑलवेज हैंडल अ बॉडी वेरी नाइसली. एंड जब एसिड फॉर्म हो ही गया, तो रादर दैन मेडिकेशन, उससे तो सिग्नल बंद हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा. उससे अच्छा ये है कि नेचुरल वे से उसको हम न्यूट्रलाइज करें, कंज्यूम मोर वाटर दैट डे, एंड अनलेस एंड अंटिल आपका वो गैस्ट्रिक इशू सेटल नहीं हो रहा, डोंट टेक अनदर मील. इफ यू फील हंग्री इन बिटवीन, टेक एनी फ्रूट. Why do I say take fruit? Because it will never cause acid. See, fruits will never create acid. हमारा ये वहम है, हम कहते हैं जब मैंने ये फ्रूट खाया, फ्रूट से नहीं हुआ. उसके पहले जो भोजन गया था, जो खाना खाया था, उसमें से कोई आइटम था जो आपको डाइजेस्ट नहीं हुआ, फ्रूट का कॉम्बिनेशन उसके साथ ठीक नहीं बैठा. ठीक है, तो एक तो फूड आइटम होता है, एक होता है कि जब हम मल्टीपल थिंग्स एक टाइम पर खाते हैं, हमारे बॉडी में कुछ गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं डाइजेस्ट करने के लिए खाने को. बट बॉडी, स्टमक एक ही टाइम पर बहुत सारे जूसेस सिक्रीट नहीं कर सकता. तो अगर हम मल्टीपल चीज़ें अपनी मील में इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ तो स्टमक जूसेस रिलीज कर डाइजेस्ट कर देगा, पर जो रिमेनिंग रह गया, तो वो क्या होता है, लेमैन टर्म में कहें वो सड़ता जाएगा. सड़ने का मतलब फर्मेंट होगा, फर्मेंटेशन मतलब एसिड फॉर्म हो जाएगा, तो वो हमारा वेस्ट है. हमने सब कुछ सोच कर, चलो इसमें प्रोटीन है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसमें ये फलाना विटामिन है. नो, वी डोंट हैव टू टेक मल्टीपल ग्रेन्स और मल्टीपल आइटम्स एट वन टाइम. देयर आर सर्टेन कॉम्बिनेशंस जिसका हमें नॉलेज होना चाहिए, व्हाट टू थिंग्स कैन बी टेकन टुगेदर. एंड उस तरीके से अगर हम अपनी मील को डिसाइड करेंगे एंड लेंगे, वी कैन ऑलवेज लीड अ वेरी हेल्दी लाइफ. एंड जब कभी हम ओकेजनली बाहर जाते हैं, सो वी आर सर्व्ड विद मल्टीपल डिशेज. So I have to be very wise there, respecting my body, that I don't have to fill my plate with all the items that are served. Chahe hum kehte hain thoda thoda taste karo, nahi. Life mein multiple opportunities milengi in sab cheezon ko taste karne ke liye, but ek time par do ya teen cheeze hi apni plate mein serve kare aur usi ko le ek meal mein multiple dishes ko avoid kare. ठीक है. एंड ये भी होता है कि जब आपने एक मील ले ली एंड फ्रूट्स एंड आपके खाने का कॉम्बिनेशन, उसको भी ध्यान में रखना है. फ्रूट्स आर वेरी क्विक टू डाइजेस्ट, सो इसलिए इमिजिएटली फ्रूट खाकर हमें मील नहीं लेनी. या कई बार हम सोचते हैं हमने खाना खा लिया, चलो बाद में एक फ्रूट खा लेते हैं. नो, दैट इज़ ऑल्सो नॉट द राइट कॉम्बिनेशन, बिकॉज फ्रूट्स बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, खाने को बहुत टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में. सो अगर पहले मील के पहले आपने फ्रूट लिया है, तो एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स का गैप जरूर दीजिए बिफोर यू टेक योर मील. एंड मील के बाद फ्रूट नहीं लेना, बिकॉज मील को तो 8 आवर्स लगेंगे अभी डाइजेस्ट होने में. तो वो जो फ्रूट आपने उसके बाद लिया, वो तो पड़ा हुआ सड़ जाएगा, उसका भी एसिड बन जाएगा. सो वो आपको कोई हेल्थ उसने बेनिफिट नहीं दिया, बिकॉज टाइम को मेंटेन ध्यान में नहीं रखकर उसको खाया. सो हर खाने का हमें अगर बेनिफिट लेना है, तो उसको प्रॉपर टाइम पर प्रॉपर कॉम्बिनेशन में खाएंगे, तो वी कैन टेक द फुल बेनिफिट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आर इन दैट फूड आइटम. सो फर्दर एनी क्वेश्चंस यू ऑल कैन डेफिनेटली आस्क.
0: चलिए डॉक्टर मनदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया। और मुझे लगता है कि गैस फॉर्म होने का कारण है कि हमारा खाना, किस तरह का हमने खाना खाया है, और खाने के तुरंत बाद ही हमें पता चल जाता है कि हमें गैसेस हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है, जलन हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है, तो ऐसे में आप समझ जाना जो खाना आपने खाया था उसको एक बार याद कीजिए और फिर से वो खाना ना खाकर आप अगर शाम को फिर से खाना है तो वही खाना खाएंगे तो वो बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप शाम को फिर फ्रूट्स खाएं, जिससे आपको जो है रिलीफ भी मिलेगा और चीज़ें थोड़ी सी मेंटेन हो जाएगी। तो हमें जो है हर दिन का, अगर आपको गैसेस का प्रॉब्लम रहता है, रेगुलर रहता है, तो खाने को एक बार आप देख लीजिए किस तरह के खाना आप खाते हैं, और कोई डॉक्टर के पास या कंसल्टेंसी या जो नेचुरोपैथी के जो डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ एक बार आपको कंसल्ट करना होगा। जब आप कंसल्ट करते हैं तो वो प्रॉपरली आपका डाइट लिख लेते हैं, फिर आपको जो है उसमें चेंजेस करने की सलाह देंगे। और जैसे जैसे आप थोड़ा सा अपने आप भी उस पर सोचिएगा, जैसे आपको खुद को मालूम पड़ेगा कि मैं कौन सा खाना मुझे सूट नहीं करता, क्योंकि डॉक्टर तो आपको एक जनरल आइडिया दे सकता है, लेकिन आपके पर्सनल बॉडी जो आपकी मशीन है वो आपको पता है कैसे काम करता है और कैसे वो रिजल्ट देता है। तो आप खुद थोड़ा सा ध्यान दें कि कौन कौन सी चीज़ें आप खा रहे हो जिसके कारण आपको एसिडिटी बढ़ रहा है, और उन उन चीज़ों को अगर आप कम कर देते हो तो निश्चित तौर पे आपको एसिडिटी आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा और आप परमानेंटली उससे मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अटेंशन देना होगा और खाने का जो सिस्टम है उसको समझना, कौन सी चीज़ें कितने टाइम में पच जाती हैं, तो उसको उसने अंतराल में आपको देने की लेने की ज़रूरत है। अगर आप खाना और फ्रूट्स खाना खाने के बाद फ्रूट खाते हैं तो वो आपके लिए मुश्किल या किसके लिए भी वो पचने में नहीं जाएगा, वो खाना सड़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप फ्रूट पहले खा लो, उसके बाद आपकी ज़रूरत हो तो फिर एक घंटे के बाद, आधा घंटे के बाद आप खाना ले लें, और हो सके उतना जो है आपके बॉडी वेट के अनुसार जो है आपको खाना लेना है। तो खाना टेस्टी बना तो ज़्यादा खा लेते हैं तो वो भी दिक्कतें करती है। तो ऐसे समय में आपको जो है प्रॉपर डाइट लेने की अपने आप को जो है ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। हाँ, ये एक दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो जी, नमस्कार।
2: हेलो जी, नमस्कार रमेश भाई। मैं सुरेश भाई दानेरा से आपको और डॉक्टर दीदी को मैं
0: जी नमस्कार नमस्कार
2: जी। तो मैंने मैं बात सुन रहा था आपकी, तो रमेश भाई उसमें ऐसा है कि हम बाजार से जो अभी फ्रूट लाते हैं तो पता नहीं कैसे कैसे केमिकल डाल के वो देते हैं, ये है तो पता कैसे करना चाहिए कि ये सही है या ये वो है, और चलो हमने ला भी लिए तो घर पे लाकर कैसे प्रोसेस के साथ हम जैसे कि किस तरह से सफाई या करके खाए वो भी बता दीजिए, क्या कि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम तो खा लेते हैं ऐसे ही लेकिन जो होता है ना तो फिर पेट में गड़बड़ हो ही जाती है, तो ये बताइए।
0: चलिए सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छी तरह से आपने कार्यक्रम सुन रहे हैं और आपने सवाल भी पूछा, थैंक यू सो मच। चलिए, यहाँ सुरेश जी धानेरा वाले पूछ रहे हैं कि भाई आपने कहा फ्रूट लेने का, तो फ्रूट भी हम किस तरह का ले, अगर लाने के बाद आजकल तो केमिकल या पता नहीं क्या क्या इंजेक्शन वगैरह डाल के उनको मीठा करते हैं ऐसा भी सुना है, तो हमें कैसे समझे कि ये फ्रूट सही है और इसको लाने के बाद क्या प्रोसेस करके खाना है।
1: ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी हम फ्रूट्स पर बात करते हैं तो देखिए इट इज़ नॉट ओनली विद द फ्रूट्स कि उसमें केमिकल पड़े, आज हम जो भी खाना ले रहे हैं, जो कुछ भी मार्केट में अवेलेबल है, सब में अडल्ट्रेशन तो है ही है, मिलावट है, केमिकल्स हैं, राइट। तो हमें अब हमारे पास चॉइस नहीं है, हमें इसी में से ही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब इसी में से ही लेना पड़ेगा। बट डेफिनेटली जब आप

0: हेल्दी खाते हैं ना तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहती है. तो ये जो केमिकल्स चले भी जाते हैं बॉडी हैज द स्ट्रेंथ टू फाइट विद देम, बॉडी उनसे फाइट कर लेती है. बट डेफिनेटली जैसे कोई भी चीज हम घर पे ला रहे हैं, फ्रूट्स भी ला रहे हैं, अब उसको हमें क्लीन तो करना पड़ेगा. कुछ फ्रूट्स हैं जिसको आप वाटर में डिप कर सकते हो थोड़ी देर तक तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है. कुछ फ्री फ्रूट्स हैं जैसे एप्पल्स वगैरह हैं, अगर हमें है कि उसमें केमिकल है, आपके लोकल एरिया का वो एप्पल नहीं है, इम्पोर्ट हुआ है, तो आप उसका पील उतार कर खाइए. राइट, अगर लोकल है तो फिर वो पता है कि उसमें इतनी अडल्ट्रेशन नहीं, वो आप ऐसे ही खा सकते हैं. तो हर फ्रूट के लिए जो पानी में डिप कर हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स डिप कर सकते हैं, उससे हम केमिकल्स को थोड़ा न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. बट कम्प्लीटली किसी भी चीज़ से हम लोग रिड नहीं कर, मतलब फ्री नहीं कर सकते उनको. तो बट अगर आप कंटिन्यूसली अच्छा हेल्दी भोजन लेते हैं तो आपकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ रहती है कि वो उन केमिकल्स को फाइट कर सकेगी. बट अगर हमारा हेल्दी ईटिंग नहीं है, एसिड क्रिएट हो रहा है बॉडी में, तो इम्यूनिटी डेफिनेटली लो जाती है, फिर इन केमिकल्स का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है.
1: जी जी, हेलो जी. तो हमें फ्रूट्स जो है देख कर ले लेना है आपको, और जितना हो सके आप सीजनेबल फ्रूट्स अगर लेते हैं.
0: डेफिनेटली जैसे रमेश भाई जी ने भी बहुत क्लियरली बताया कि सीजनल फ्रूट्स आर द बेस्ट फ्रूट्स, उसमें हमें ये केमिकल्स का रिस्क कम रहता है. जो आपके लोकल फ्रूट्स हैं आपकी पर्टिकुलर स्टेट के या सिटी के, उसमें भी केमिकल्स का रिस्क कम रहता है. सो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए आप फ्रूट्स परचेज कीजिए, और फिर भी उनको अच्छी तरह घर पे जिस तरीके से जो फ्रूट वॉश किया जा सकता है उसको कर सकते हैं.
1: बिल्कुल बिल्कुल. तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आपके यहाँ जो चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं, जो आपके गांव की पैदावार है या आपके आसपास के पैदावार हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा और सीजनेबल फ्रूट्स ही यूज़ करें, क्योंकि आपको और हमको जो है कई नॉन सीजनेबल फ्रूट्स होता है तो निश्चित तौर पे उसको प्रिजर्व करते हैं, तो प्रिजर्व करते हैं तो केमिकल डालेंगे ही, है ना. तो अब इन चीज़ों को बना तो नहीं कर सकते हैं. अगर आप बीमार हो रहे हैं तो आप फ्रूट को आपको तो कहना ही है, तो वो देखें कि सीजनल फ्रूट्स आप कितना खा सकते हैं, है ना. अच्छा, इसके बावजूद भी हम जो खाना खा रहे हैं उसमें भी तो सारी चीज़ें आती है. तो खाने को हमें जो है जिस तरह से हम खाना खाते हैं उसके ऊपर हमारा बॉडी का रिएक्शन क्या है, इसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. आप कौन सी चीज़ें खाते हो वो आपको कितना सुख देता है, उसके अनुसार आप उन चीज़ों को नोट करके रखिए. और जिनसे आपको एसिडिटी बन रहा है या कोई कुछ बन रहा है, एक हफ्ते का टाइम लगेगा आपको. एक हफ्ते में आप वो सारी चीज़ें लिखिए जो आप खाते हो, है ना, डेट वाइज लिख के रखिए, तो आपको सिंपल आइडिया आ जाएगा. और जब आपको समझो कल आपने कुछ खाया और आज उसका जो है असर होगा, एसिडिटी होगा, गैसेस होगा या जो भी होगा, तो वो आप लिख लीजिए कि पहले वाला देख लीजिए लिखा होगा तो, है ना, लिखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कल हमने ये चीज़ें खाई. तो दूसरे दिन आपको जो है चेंज अगर आप डाइट करते हैं, फिर चौथे दिन आपको पता चलेगा कि उसका असर कैसे हो रहा है. तो ऐसे करके आपको सेल्फ स्टडी करने की ज़रूरत है थोड़ा एक हफ्ते के लिए. उसके बाद आप उन चीज़ों को जो आपका बॉडी को सूटेबल है और जो आपको हेल्थ और सुकून दे रहा है, उन चीज़ों को आप फिर यूज़ करना, कंटिन्यू करना शुरू कर सकते हैं. तो फ्रूट्स भी सीजनल खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा. आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक. और किन्हें भी कुछ पूछना है या आपको समझना है कि मुझे कुछ पूछना है या कुछ बात करनी है हेल्थ रिलेटेड, किसी भी तरह का सेहत से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम. आप अपना जो है बात रख सकते हैं 94-1415-1415 इस नंबर पर. तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आपको ले चलता हूँ एक और सुंदर गीत की तरफ. सुनते रहो, मुस्कुराते रहो.

0: नमस्कार, आप सुन रहे मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सन ऑफ इंडिया 1962 का इस एल्बम से ये गीत सुन रहे थे। शांति माथुर की आवाज में ये गाना था जो एक छोटे बच्चे पर पिक्चराइज किया गया, ये फिल्म सन ऑफ इंडिया। और आज की ताजा खबर, ये गाना आप सुन रहे थे, नौशाद साहब ने इसे संगीत से सजाया था और इसे विशेष रूप से शकील बदाई जी ने लिखा था। हेलो जी, नमस्कार।
1: हेलो, नमस्कार,
0: जी कंचन भाई, बोलिए, कैसे हैं आप?
1: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
2: नमस्कार,
1: गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग,
0: जी जी जी,
1: मैं सुन रहा हूँ।
0: अरे वाह,
1: प्रोग्राम सुबह से सुन रहा हूँ।
0: अच्छा,
1: अच्छी बातें चल रही है हमारे डाइट के बारे में। और
0: जी जी जी,
1: अभी अभी जो सुनील भाई ने कॉल किया था, मेरे फ्रूट के बारे में बताया, तो ये तो है सर, लेकिन जो अनाज है ना, हम खेती ही करते हैं, हमारी खेती ही करते हैं। सिलाई का काम करता हूँ, 68 मेरी उम्र से चल रही
0: जी।
1: डॉक्टर साहब का ये बताना है मेरे को कि भाई हम खेती करते हैं तो गेहूं है, मक्का है, कोई भी हम बीज बोते हैं तो भागीदार रखते हैं, भागीदार से वो ज्यादा। तो ऐसे ही जो खाद वगैरह हम डालते हैं, बोलता है कि ऐसी दवाइयाँ लाओ, ये जंतुनाशक दवाइयाँ का काम करना है, ये करना है, वरना उपज नहीं आएगी। तो ये करते हैं, हम जानते हैं कि ये हमारे लिए नुकसानकारक है, फिर भी हम अकेले तो कर नहीं सकते,
0: साझेदार
1: को रखना पड़ता है। ये तो सीधी लाइन में उत्पादन का ही सोचता है। तो ये हम खाते हैं, लेकिन हमारे भी नुकसान होता है, हम भी ऐसे अनाज ये करते हैं, सभी बीतते भी है, ये करते हैं, लेकिन ये दवाई का जो ये उपज होती है नहीं, तो ज्यादा नुकसान पाचन क्रिया को होता है। हम तो क्या करते हैं कि ये गेहूं का आटा, मक्का का थोड़ा आटा आटा, और ये बाजरा जुआर ये सब का मिक्स आटा करके रोटी बनाते बनाए करता बोलते करते, और कम खाना कम कर दिया है सब। एक बार के खाने से क्या होता है कि ये सब हमारे और हमारा धंधा भी ऐसा है कि सिलाई का काम है, ठीक है, जैसे भी ना तो ये काम चलता नहीं। हमारा ये रूटीन है हमारा जीवन का, क्या बताए, बहुत अच्छी बातें हो रही है
0: जी।
1: लेकिन जो हम जो खेती करते हैं तो ये पूरा हमको पता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: चलिए
0: कंचन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अपनी बातें बताने के लिए। आप खेती करते हैं, एज हो गया आपका, और क्योंकि कभी कभी केमिकल्स भी यूज़ करते हैं खेती में, तभी हम लोग को लगता है कि इससे ये चीज़ें आएगी, तो इससे भी अनाज में भी जो है हमें प्रॉपर अनाज मिलना आज के समय में मुश्किल है। तो ऐसे में हमें जो है अपना ध्यान रखना है चीज़ों को, जो है जो हमारा बॉडी को सूट होता है उन्हीं चीज़ों को हमें खाना है, तो हो सके इतना जिसमें केमिकल कम यूज़ हो रहा है ऐसी चीज़ों को अगर आप चयन कर लेते हैं तो भी अच्छा है, और जो कुछ अवेलेबल है उसे ऐसे। हमारे ब्रह्मा कुमारी इसमें एक कहावत है कि भाई आज कलयुग है, तो कलयुग में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि चीज़ें सही है या गलत है, जो भी मिला है प्रभु प्रसाद समझ के ईश्वर को याद करके आप खाइए, क्योंकि उनके भरोसे आप संसार चल रहा है ना। तो आप जो भी देखिए, जितना हो सके आप उन्हें अच्छी चीज़ खरीदें, बिना केमिकल के आपको अगर मिल जाता है तो उनका यूज़ करें, नहीं मिलता है तो प्रभु को याद करके आप प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कीजिए, जिससे आपका बॉडी जो है उसको ज़्यादा वो नहीं करेगी। और जितना हो सके आपके बॉडी वेट के हिसाब से एक डॉक्टर के साथ आप जो है कंसल्ट जरूर करें, जैसे डॉक्टर मानदीप जी हैं और भी बहुत सारे लोग आपके आसपास में होंगे, तो अच्छे डॉक्टर के पास कंसल्ट करके आपके बॉडी वेट के हिसाब से आप खाना खाइए। क्योंकि हम लोग कभी खाना ज़्यादा खाते हैं, कभी कम खाते हैं, कभी टेस्ट के अनुसार फिर वही चीज़ें तीन चार बार खा लेते हैं, तो वो चीज़ जो है आप अपने मन के हिसाब से चीज़ों को खाना शुरू कर देते हैं तो वहाँ गलत हो जाता है। लेकिन आप अगर एक थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, बॉडी आपका कितना वजन है, आपको खाना दिन में कितना चाहिए, ये अगर आप पता कर लेंगे तो उतना ही खाना खाइए जितना आपके बॉडी को ज़रूरत है। ज़्यादा भी ना खाएं, कम भी ना खाएं, तो आपका बॉडी जो है उससे अच्छी रिजल्ट्स देगी आपको, केमिकल हो या ना हो, लेकिन आपका बॉडी जो है उसको डाइजेस्ट करने में सक्षम होगा, है ना। जैसे आप मिक्सी का ही शायद उदाहरण दे सकते हैं, नहीं क्योंकि मिक्सी अगर आपने पावर हाई पावर का ले लिया तो वो ज़्यादा सब चीज़ें जो है पत्थर भी उसमें ग्राइंड हो जाएगा, लेकिन कम पावर के ले लिया तो वो थोड़ा स्लो चलेगा, काम कम करेगा, है ना। तो वैसे हमारे बॉडी को कितना उसका जो कैपेसिटी है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और हम बिना समझे ही हम क्या करते हैं, जीवन की टेस्ट के अनुसार अच्छी चीज़ें बनाई हैं और एक्स्ट्रा बच गया तब भी हमको ही खाना है कई बार ऐसा हो जाता है, आप ठीक है सब बैलेंस है, लेकिन कई बार ज़्यादा बन गया, आप ज़्यादा बन गया और मेहमान आने वाले थे वो भी नहीं आए, तो फिर वो भी खाना आपको खाना पड़ता है, तो वो भी गड़बड़ है। हेलो जी नमस्कार।
1: ओम शांति। गुड मॉर्निंग डॉक्टर दीदी।
2: गुड मॉर्निंग
1: और सभी श्रोता भाई बहनों, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है, चार से सुन रहा हूँ।
0: अच्छा, अच्छा,
1: हमारे श्रोता भाइयों के भी सवाल सुने।
0: जी, जी, जी, जी,
1: आपने दीदी ने बहुत अच्छा जवाब मिला। मेरा भी एक छोटा सवाल है वो गलत भी हो सकता है
0: जी, जी।
1: कि कई लोग बोलते हैं ये गैस प्रॉब्लम वडीलो बाधित होता है। और दूसरा सवाल, हम कायम चूर्ण लेते हैं, मेरा उम्र 75 है और रमेश जी अच्छी तरह से मुझे जानते हैं, तो कायम चूर्ण और ये गैस प्रॉब्लम वडीलो बाधित है क्या? थैंक यू, शुक्रिया। ओम शांति।
0: ओम शांति। ओम शांति। चलिए, थे 75 years old सुभाष जी जो रेडियो मजमन को सुनते हैं, और बीच में अभी काफ़ी बीमार थे लेकिन अभी धीरे धीरे अच्छे हो गए, लकवा हो गया था इन्हें, तो अब इनको जो है पेट का तकलीफ है हमेशा का, तो कायम चूर्ण लेते हैं, तो क्या इनको कंटिन्यू करना चाहिए या कुछ चेंजेस कर सकते हैं?
2: हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जो भी चीज़ें हम कर रहे थे अपनी एसिडिटी को ठीक करने के लिए, बट हमने जैसे पूरे प्रोग्राम में भी यही डिस्कस किया कि हम उसका जो कारण था उसको कभी ख़त्म नहीं कर पाए, क्योंकि हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि कारण क्या बन रहा है। तो भले आप जो चीज़ें ले रहे हैं उसको लीजिए, बट आपकी एसिडिटी का कारण आपके भोजन में वो चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी में पच नहीं रही, तो जब तक आप उनको खाना बंद नहीं करेंगे एसिडिटी बनती रहेगी और आप कायम चूर्ण खाते रहेंगे, तो मतलब प्रॉब्लम से तो हम कभी मुक्ति नहीं हो पाए। तो यहाँ पर ज़रूरी है उस प्रॉब्लम से मुक्त होना। आज आपने जो भी आपको फिजिकल एलिमेंट हुई है ना, कहीं ना कहीं वो रिलेटेड हमारे भोजन से ही रहती है। देखो, हमारा शरीर हमारे भोजन का ही आउटपुट है। जो इनपुट हम दे रहे हैं उसका आउटपुट हमें मिलता है। हम किसी भी चीज़ को कारण बना दें कि इसकी वजह से हुआ, हम बाहर के एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्सिबल रखें, अपने मेंटल स्ट्रेस को रिस्पॉन्सिबल रखें, पर जो मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो हमारा भोजन है। वो जो मेन हमारी बॉडी को बना रहा है। तो कोई भी चीज से आपने मुक्त होना है, कोई भी फिजिकल एलिमेंट से, तो मेन फोकस आपका भोजन के परिवर्तन पर ही होना चाहिए
0: जी। हेलो हेलो, हाँ ओम शांति। हाँ हाँ इधर इधर ही है प्रोग्राम में, आ जाओ। तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, आप अपने एज के अनुसार चीज़ें कर रहे हैं, तो अभी दूर भी है तो आपको डायरेक्टली मेडिसिन भी नहीं बता सकते, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, आपको जो हल्का भोजन हो, क्योंकि 75 में जो हार्ट कोई भी चीज़ खाने से आपको पचेगा नहीं, वो गैसेस करेगा, तो आप जितना हो सके एक बार जो है प्रयोग कर सकते हैं, लाइट चीज़ें खाइए या किसी फ्रूट्स पे।
2: और मतलब जब आपको एसिडिटी हो ही गई है उस टाइम बेस्ट रहता है कि आप पानी पूरा दिन ज़्यादा कंज्यूम कीजिए, और पानी पीने का सही तरीका होता है घूट घूट कर कर पानी पीते रहना। एंड दूसरी चीज़ है, तब तक कोई भी हैवी भोजन मत लीजिए जब तक आपका पेट बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता, मतलब आपको वो एसिडिटी वाली फीलिंग बंद नहीं हो गई। हम जो भी मेडिसिन लेकर, पता क्या गलती हो रही है, हम सोच रहे हम ठीक हो गए और नेक्स्ट हम अपना भोजन जल्दी से खा लेते हैं, बल्कि अगर नहीं लेंगे तो बॉडी सिग्नल देगी और जब बॉडी प्रिपेयर्ड हो जाएगी मील के लिए तो आपको अपने आप भूख लगेगी।
0: सही बात,
2: मेडिसिन आपको भूख आर्टिफिशियली लगवाएगी पर जो नेचुरल भूख है जब बॉडी रेडी हो गई, मतलब उसने उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया, तब आप इजी भी हो जाएंगे और वो जो भूख होगी फिर उसके अनुसार आप अपना नेक्स्ट मील ले सकते हैं। बट नेक्स्ट मील को लाइट रखिएगा, हैवी मत लीजिएगा। चलो कभी कभार हो जाता है, हमसे लिया गया, दैट इज ओके, बट हमें उसको मैनेज करना आना चाहिए। तो मैनेज कर कर चलते चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
0: जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। और जो लोग इस तरह के एज के हिसाब से और खाने को लेकर और गैसेस या एसिडिटी के इश्यूज हैं, कॉन्स्टिपेशन है, तो उन सभी लोगों को खुद ही काम करना होगा। आप एक बार जो है किसी अच्छे नेत्रोपैथी सेंटर्स में जाइए, वहाँ पर एक हफ्ते या 15 दिन का उनका ट्रीटमेंट होता है, वो आप ले लीजिए। उसके बाद आप जो है वहाँ से डाइट चार्ट बना के ले लीजिए, आपके बॉडी को 15 दिन में आप खुद समझ जाएंगे और ट्रीटमेंट लेके आपका बॉडी भी डिसॉल्व हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, एक नया जो है रीजनरेट हो जाएगा 15 दिन के बाद। तो उसके बाद फिर आप जो है तय करके आप अपना जो है एक सिस्टम बनाइए, आपको जो चीज़ें आपके बॉडी को सुटेबल होता है उन चीज़ों को आप लिख लें। आप ऐसे नहीं कि किसी ने बोल दिया या उन्होंने कहा, ऐसा मत करिए कभी भी, क्योंकि आपका एज हो गया तो आपको एक खुद की स्टडी बना के रखिए, आप खुद के ऊपर ध्यान रखें, और उसके बाद 15 दिन के बाद आप जो है क्या सुबह खाना है, क्या दोपहर में खाना है और रात को स्किप करना है या खाना ज़रूरी है। अगर एक बार आप स्किप करते हो तो बॉडी को एक टाइम मिल जाता है रिपेयरिंग का, बॉडी खुद अपने बॉर्डर सेट कर लेगी, तो वो भी एक अपने को देखना है। तो रात का किस टाइप से आप उसको स्किप करेंगे या रिप्लेस करेंगे वो आपको देखना है, या आप एक कप सूप पी के रात को अगर आप एडजस्ट कर लेते तो वो भी बॉडी के लिए अच्छा हो जाता है, तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो आपको खुद देखना है, किसी के आइडियाज़ पे नहीं जाना है, किसी ने बताया इसलिए नहीं करना है, आपको अपने बॉडी पे सेल्फ स्टडी करके काम करना है। लेकिन किसी अच्छे नेचुरोपैथी सेंटर या नेचुरोपैथ से या कोई अच्छे डॉक्टर या डाइटिशियन से मिलके आपको अपना स्टडी जारी रखना है, ठीक है। तो चलिए, मुझे लगता है कि हमने काफ़ी कुछ बता दिया आपको, और गैसेस होने वाली जो चीज़ें हैं सिर्फ खाना ही है या और भी कुछ हम लोग चटर पटर खाते हैं उससे भी हो जाता है?
2: नहीं, खाने में सब कुछ ही आ गया।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
2: मेन हमने जो बात आज की है वो यही की है कि जब हम गलत कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं, अनटाइमली अपना भोजन कर रहे हैं, देखो एक होती है ट्रू हंगर, एक फॉल्स हंगर, एक होती है मन की भूख, एक है पेट की भूख।
0: अच्छा, दो भूख है।
2: हाँ, तो अगर पेट की भूख हमारी ट्रू भूख है, अगर उसके अनुसार चलेंगे तो बॉडी आपको इसको ही रिसीव करना है ना, तो उसको कितना चाहिए कब चाहिए वो ट्रू सिग्नल्स होते हैं। वो जो भूख होती है वो ऐसी होती है कि तब लगता है मैं और कुछ नहीं कर सकता, पहले मुझे खाना
0: चाहिए, सूखी रोटी भी अच्छा लगने लगी उस टाइम पे,
2: और मन की भूख होती है
0: तो जब मैंने 36 प्रकार का भोजन भी होगा। हाँ, तो बोलेगा आज वो नहीं है क्या?
2: अभी मैंने खाया, कहीं कुछ बन रहा था, स्मेल आ गया
0: तो वो भी चाहिए,
2: किसी ने मेरे सामने कुछ रख दिया तो भी खा लिया। सो वो ट्रू हंगर नहीं है, वो मन की भूख है, और मन की भूख के अनुसार अगर मेजोरिटी टाइम चलेंगे तो फिर वो हमारे लिए सेफ नहीं है,
0: बीमार करेगा।
2: मतलब मेजर टाइम ऑफ योर लाइफ शुड बी ऑन ट्रू हंगर, ऑन हेल्दी ईटिंग, कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है तो उसको पोस्ट उसके उसको मैनेज कर लीजिए. थोड़ा फास्टिंग, फास्टिंग इन द सेंस कि बॉडी को सुन लीजिए, जब तक वो रेडी नहीं है फॉर द नेक्स्ट मील डोंट ईट.
0: चलिए डॉक्टर डॉक्टर मालदीप जी, बहुत ही सुंदर बातें आपने बताया और इस प्रोग्राम को समअप करते हैं. पेट की भूख और मन की भूख दोनों को समझ ले आप. अगर आप समझ लेंगे तो मन की भूख को अवॉइड करें और पेट की भूख जब लगेगी तो आपको कच्ची रोटी या सूखी रोटी भी बहुत बहुत अच्छा लगेगा. तो समझ जाना कि आपका बॉडी ठीक है और आप भी ठीक हैं और आप अपने मन को कंट्रोल कर रहे हैं.
2: एक छोटी सी टिप मैं ऐड करना चाहूंगी. इन सब के ऊपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जब आप भोजन कर रहे हैं तो आप किस मनोस्थिति से कर रहे हैं. खुश होकर खाएंगे तो सूखी रोटी भी खाएंगे, वो आपको बहुत हेल्दी फील कराएगी. बट अगर अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशियस फुल ऑफ प्लेट भी खा रहे हैं पर दुखी होकर खा रहे हैं
0: तो वो भी काम नहीं करेगा.
2: स्टेट ऑफ माइंड से खा रहे हैं तो डेफिनेटली, बिकॉज मन का बहुत इम्पैक्ट है ऑन द बॉडी. जैसे हम करंट टाइम में भी सुनते हैं कि 80% diseases are psychosomatic, mana effect of the mind on the body. So eating may be mind plays a very very important role.
0: चलिए डॉक्टर मालदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया. चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही. फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में अगले संडे. तब तक आप बने रहिए हमारे साथ. सलाम नमस्ते खमा गणिसा. जय हिंद जय भारत. ओम शांति.

नमस्कार, मधुमन रेडियो से मैं हाकम खान। हमने एक संगीत कला केंद्र खोल रखा है। हमारा भारत में वो राजस्थान में विवाह जन्मदिन में लोकगीतों का कार्यक्रम देते हैं। हम मांगणियार कलाकार रजवाड़ों में लोकगीतों का कार्यक्रम देते हैं। शादी विवाह जन्मदिन पर ढोल हारमोनियम बजाने का कार्यक्रम करते हैं। हमारे संगीत का वो गायकी जीवित रहे ताकि हमारे बच्चे संगीत सीख अपनी कला को देश विदेश में प्रोग्राम करवा सके, अपने आजीविका कमा कर परिवार का पालन पोषण कर सके। मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ केसरिया बालम पधारू मारे।

राग मांड साजन आहे हे सखी मैं कहीं मनवार करूं, थाल भरूं गज मोतिया ऊपर नैन धरूं। साजन आवत देख कर तोड़ दियो गलहार, लोक जाने मोती चुगे झुकझू करे नमन। तो ये केसरिया बालम जो मांड राग में गाया जाता है जब कोई मेहमान घर पे आती है या सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो उसमें केसरिया बालम पधारू मारे देश शुरुआत करने जा रहा हूँ। केसरिया बालम पधारू मारे देश।

0: बाबू की वादियों से आप सुनने जा रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम। आपकी अपनी उषा के साथ वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। देखिए, वंदे मातरम नाम से ही मन पुलकित हो जाता है कि वंदे मातरम मात्र शक्तियाँ किसी से कम नहीं है। किसी के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आता है, किसी के जीवन में क्या प्रेरणाएं हम ले सकते हैं, उनके जीवन से बहुत सारी बातें होती है जो घर की चार दीवारी में दबी रहती है, खुल करके बाहर नहीं आ पाती है। लेकिन रेडियो मधुबन में वंदे मातरम जो कार्यक्रम चलता है, इसके जरिए आप नारी शक्ति की विशेषताओं को आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और क्या आपने जीवन में किया है, बहुत सारी बातें ऐसी होती है, छोटी छोटी बातों में ही हम प्रेरणा लायक बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि हमने क्या किया और हमारे से कैसे लोग प्रेरणा ले रहे हैं। तो बहुत ही ये खूबसूरत कार्यक्रम वंदे मातरम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको मिलवाने वाली हूँ, देखिए इसमें दो जनरेशन है, एक 85 साल के है रतन माता जी जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान कपासन से पधारे हैं, और एक आज की युवा जनरेशन मयूरी शाह जो अहमदाबाद से आई है, 32 साल की उम्र है। तो जनरेशन गैप के अनुसार काफ़ी विचारों का मतभेद भी होता है, लेकिन दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा है। एक तो इतरा बहू है, एक नानी सास है। तो आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि ये क्या, कहाँ तालमेल बिठाया है दीदी ने, लेकिन इसी को कहते हैं जीवन। क्योंकि देखिए, उम्र के डिफरेंस के बावजूद भी कैसे रिश्तों में मधुरता आती है, कैसे प्यार से रहा जा सकता है घर परिवार में। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम वंदे मातरम आज आप सुनने वाले हैं, जिसमें अभी हम आपको मिलवाएंगे रतन माता जी से। रतन माता जी, राम राम।
1: राम राम।
0: और तबीयत अच्छी है?
1: अच्छी है।
0: अच्छा, आप भजन सुनाओगे? हाँ तो सुनाइए।
1: छोटे से है नाव अपरे जादू भर पाम, मुझे डर लगे राम, कैसे बेटा हूँ तो

0: खोया, पाप जनन जनन का खोया। तब हुआ परसन कर राम दर्शन, कर राम दर्शन संग सीता लक्ष्मण, संग सीता लक्ष्मण। ओहो आओ जी बेटा हूँ तुझे नाव में, नाव में मेरे छोटी सी है नाव। पर जादू भरे पाँव मुझे डर लग रहा, मैं कैसे बेटा तुझे नाव में, नाव में। धीरे धीरे तो नाव चलावे, धीरे धीरे तो नाव चलावे। एक जीते खुशी का गावे, एक जीते खुशी का गावे। यूं चेता मन में सूरज डूबे छन में, सूरज डूबे छन में नहीं जावे वन में, नहीं जावे वन में। ओहो बेटा रवे जी मेरे नाव में, नाव में मेरे छोटे सी है नाव। अपने जादू भरे पाँ मुझे डर लग रहा, कैसे बेटा तुझे नाव में, नाव में। तू ले ले रे मल्ला उतराई, तू ले ले रे मल्ला उतराई। मारे पास है कछु नहीं भाई, मेरे पास है कछु नहीं भाई। एक में के वट आप घुराई, एक में के वट आप घुराई। भाई भाई से लेना शरम है, भाई भाई से लेना शरम है। मैंने किया गंगा पार, मैंने किया गंगा पार, आप करना भव सागर पार, आप करना भव सागर पार। यही केवट की पुकार। ओहो बेटे आया जी तेरी नाव में, नाव में मेरे छोटे सी है नाव। अपने जादू भरे पाँव मुझे डर लग रहा, न कैसे बेटा तुझे नाव में, नाव में।
1: बहुत खूबसूरत गीत आप सभी ने सुना है। कितना सुंदर श्री राम जी और केवट के बीच संवाद चल रहा था। केवट कह रहा था कि मैं कैसे बिठाऊं आपको, आपने तो एक पत्थर की नारी को सजीव कर दिया और एक वास्तविक रूप में उसको नारी के रूप में बना दिया। कहीं मेरी एक जो नाव है, जो लकड़े की नाव है, उसको आपने कुछ कर दिया तो मेरे तो आजीविका ही चली जाएगी। तब श्री राम जी के चरण धो करके फिर इस तरह केवट ने उनको नाव में बिठाया। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर श्रेष्ठ भावना झलकती है इस भजन में। तो रतन माता जी बहुत ही सुंदर आपने गीत सुनाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप रेडियो के श्रोताओं को कुछ कहना चाहेंगे? आप 85 साल के हैं, आप अभी भी काम कर लेते हैं, क्या क्या काम करते हैं?
0: घर पे तब सभी काम करते हैं, झाड़ू पोछा बसन बसन चौकारा सब काम करते हैं। बाबा जी प्रतिज्ञा बोलो,
1: बोलो सुनो, भगवान की प्रतिज्ञा भी सुनाने के इच्छुक है तो सुन लेते हैं हम, सुनाओ।
0: बाबा कह रहे देखो अस्थि मारी मत्ती पे चालोगा तो थांगा अच्छा सुधार होगा। कम से कम मेरी याद, मेरा ज्ञान का मनन चिंतन करके तो देख, तुझ में ज्ञान के मोती न भर दूँ तो चेना। तो मेरे राजयोग के राहों पर चल कर तो देख, तुझे राजा का महाराजा न बना दूँ तो चेना। तो मेरे ज्ञान के मनन चिंतन के जन तो वरदाता विदाता को अपना बना के देख, तेरे भाग्य द्वार न खोल दूँ तो चेना। तो मेरे लिए लोगों से कड़वे वचन सुन के देख, उसे अमृत वचन न बना दूँ तो चेना। तुम गले देने वाले को गले लगा के देख, उसे विश्व शांति का दूत न बना दूँ तो चेना। तो मेरे लिए तन मन धन खर्च करके देख, तेरे कुबेर के भंडार न खोल दूँ तो चेना। तो कम से कम निर्बल को हिम्मत का सहारा दे के देख, तेरी डूबी नैया पार न लगा दूं तो चेना। तू प्राणी मात्र पे दया कर।

0: Quebec, puis de police, moi, les rannes, ben, n'a pas tout qu'il y a. Pour voir d'être vie d'être quoi, n'a pas dans Québec, puis le bac, quand tu vois, n'a pas tout qu'il y a. Pour des données, c'est un astromo, ben, Québec, puis de vie d'être pristin, n'a pas tout qu'il y a. Pour mon dicou d'abos, tout c'est bien la gadec, puis le bel qu'il y a d'un métal de tout qu'il y a. Om Santi Yogi Bano Pavitra Bano.
1: क्या बात है रतन माता जी, बहुत बहुत आभार आपका. रेडियो मधुबन के स्टूडियो में आप पधारे और आपने अपने जीवन के अनुभव सुनाए इसके लिए कार्यक्रम के. आपको अभी कार्यक्रम तो चल रहा है लेकिन रतन माता जी बस इतना ही बोलेंगे क्योंकि आप समझ सकते हैं 85 साल की उम्र है. इतना बोल लिया वो भी बहुत कुछ है. तो इस उम्र के तकाजे से आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोता बंधु को? चलिए पहले हम अपने श्रोता बंधु से बात करेंगे. हेलो,
2: नमस्कार दीदी. पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ. ओम शांति.
1: हाँ जी, ओम शांति. नमस्ते फिरोज भाई, कैसे हो आप?
2: बस एकदम अच्छे. और वो जो नाव वाला गीत भी अच्छा सुनाया दीदी ने.
1: जी रतन माता जी ने. जी
2: जी जी जी. और जो अभी भी जो बात सुनाया कि जो प्राणी मात्र पे जो भी इसके ये करेगा तो उसको भी मैं धनवान बनाऊंगी.
1: जी जी जी
2: जी जी
1: जी.
2: बहुत अच्छा सुना. इतनी उम्र है 85 की. बहुत अच्छा कहवा है.
1: जी बहुत बहुत आभार. शुक्रिया फिरोज भाई. बाकी बढ़िया?
2: जी जी जी एकदम बढ़िया.
1: हाँ जी, थैंक यू. तो चलिए रतन माता जी का आभार व्यक्त करते हुए एक गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः लौटेंगे. तो बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में. सुनते रहो, मुस्कुराते रहो. रेडियो मधुबन 107.8 FM.
3: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है.
4: जी आई माँ जी.
3: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है.
4: जी माँ जी आ गई. चलिए.
3: नमस्ते डॉक्टरनी जी.
5: नमस्ते नमस्ते, बैठिए. जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
3: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है.
5: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
3: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए. अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे.
5: मगर ऐसा करना तो गलत है. और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
4: जी वो ना.
3: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने.
5: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है. और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ.
6: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा. यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है.

0: नाजुक सी दिखती है वो हिम्मत में सबसे आगे है। नाजुक सी दिखती है जो वो हिम्मत में सबसे आगे है। बेटी जब ठान ले कुछ कर गुजरना तो दुनिया उसके पीछे पीछे है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में जैसा कि आप सभी ने रतन माता जी का सुना, 85 साल की उम्र, और इस उम्र में भी बहुत ही सुंदर आपने भजन भी सुनाया और भगवान की प्रतिज्ञा भी सुनाई। हमारे श्रोता बंधु जुड़े हुए हैं कंचन भाई मंडाली से। नमस्ते कंचन भाई।
1: नमस्कार बहन जी, सुप्रभात।
0: हाँ जी सुप्रभात, कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है, अच्छे है, दुकान पे बैठे हैं और माता जी के जो बात सुनी अभी राम की, जो पूरी सुनाया अभी, जो आदर्श जो बातें बताई तो सुन रहे थे तो बहुत अच्छा लगा
0: जी।
1: क्योंकि अनुभव से ये बात कर रहे हैं माता जी,
0: जी।
1: जो कही थे ना कि भाई कुआ माँ हो तो अवाड़ा माँ आवे।
0: हाँ ये साची बात है, बिल्कुल।
1: इसी तरह माता जी का काफी अनुभव है और आध्यात्मिकता में पूरे डूबे हुए हैं।
0: जी जी,
1: ये बातें आई है, जैसे हमने भी, हमको भी बहुत आनंद हुआ, खुशी हुई
0: जी।
1: और क्या बात करूँ, उम्र के हिसाब से ये सहारा की कोई जरूरत है
0: जी।
1: तो ये अपने रखना रहना पड़ता है
0: जी जी जी जी, बिल्कुल
1: पालना पड़ता है
0: जी जी। चले बहुत बहुत आभार जी।
1: काफी समय के बाद आप भी आए हैं, अब क्या की सभी संभालना पड़ता है
0: जी जी जी। अभी तो जैसा कि रतन माता जी का आपने सुना है, वो हमारी मम्मी है, लौकिक में माता जी है, तो उनके संभाल करना भी जरूरी है।
1: ना भी जरूरी है, अब उम्र हुई तो सहारा की जरूरत है
0: जी।
1: जब हम छोटे थे तो हमको संभाला था माता,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो अब हमारी बारी आई,
0: बिल्कुल। वो तो क्रिया की प्रतिक्रिया
1: करना पड़ेगा
0: जी। चलिए बहुत बहुत आभार कंचन भाई।
1: माता पिता ने जो संकल्प दिए हैं
0: जी,
1: कई तो क्या करते हैं कि भाई कोई नहीं ऐसा संभालते हैं पैर
0: जी,
1: माता पिता की ऐसा नहीं ये करते
0: जी,
1: लेकिन
0: जी,
1: संस्कारों की जो भरपूर संस्कार दिए हैं माता जी ने, पिताजी ने, तो ये आगे जरूर आएंगे और ये हमें ऐसी स्थिति में हमें भी ये करना पड़ेगा
0: जी जी जी, बिल्कुल।
1: बस और
0: जी बहुत बहुत आभार कंचन भाई।
1: हाँ जी
0: जी, तो ये थे कंचन भाई मंडाली से, बहुत ही सुंदर बात आपने कही है, माता पिता का तो सेवा करना अपना फर्ज नहीं बोल सकते, उसको अधिकार है। जैसे माता पिता बच्चों को बड़ा करते हैं तो वो फर्ज नहीं समझते, वो अधिकार से करते हैं। ऐसे ही जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनके ध्यान रखना ये बच्चों का अधिकार है, और इन अधिकारों को सभी ध्यान में रखे तो और भी अच्छा रहेगा। और चलिए वंदे मातरम कार्यक्रम की तरफ आइए, अभी रतन माता जी को सुन रहे थे, आइए। मैंने पहले ही आपको बताया था कि देखिए आज बहुत ही जनरेशन गैप है, कहाँ 32-33 साल की उम्र और कहाँ अपने 85 साल की उम्र के अनुभव सुने। तो अब मयूरी शाह हमारे सामने आ चुके हैं, आपके बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी आपका। आपने MBA किया हुआ है और आपको गरबा बहुत अच्छा आता है, हर स्टेप आपको आते हैं, बहुत ही सुंदर आप गरबा करते हैं, भजन कीर्तन में आपको शौक है, अध्यात्म में गहरी रुचि है और मिलनसार आपका व्यवहार है। तो चलिए और भी आपकी विशेषताएं आपके द्वारा ही सुनेंगे। मयूरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है वंदे मातरम कार्यक्रम में।
2: थैंक यू सो मच।
0: तो थोड़ा आपके बचपन की तरफ बढ़ते हैं।
2: नमस्ते सबको।
0: हाँ जी, तो आपका बचपन के बारे में थोड़ा बताएंगे, कैसे आपका बचपन बीता, कैसे आपने पढ़ाई की?
2: मेरा बचपन उस टाइम पे थोड़ा अपने पैसे मतलब सब अपने ये क्या
0: थोड़ा टिपिकल बीता था ऐसा.
2: हाँ मतलब उस टाइम पे हमारे पास मतलब हम क्या मिट्टी से जुड़े हुए रहते थे, बाहर खेलना कूदना फ्रेंड्स बनाना. अभी आजकल तो बच्चों को फोन दे दो टीवी दिखा दो तो अच्छा है, मजा आता है उनको.
0: मतलब आपके कहने का मतलब है कि स्वच्छ वातावरण में आपका बचपन बीता, क्योंकि जहाँ टीवी मोबाइल इन सभी से जब दूर है तो एक वातावरण स्वच्छ कह सकते हैं उसको.
2: सही बात है. तो हम घूमने भी जाते थे, मजे भी करते थे. हमारा बचपन बहुत अच्छे से बीता है. फिर पढ़ाई करी.
0: पढ़ाई में कैसे थे आप?
2: पढ़ाई में पहले तो मैं थोड़ी वीक थी, उसके बाद धीरे धीरे अच्छी हो गई और फिर नंबर भी आने लग गए, पेपर में फोटो भी आया.
0: और क्या बात है,
2: कॉलेज में भी मैं टॉपर रही थी.
0: तो बहुत बढ़िया.
2: इस और उसके बाद मुझे बस एक है कि मुझे मेरे माता पिता ने कभी बाहर नहीं भेजा पढ़ने के लिए कि ये ऐसे ही शादी करके.
0: तो आपको शिकायत है आज भी कि मुझे बाहर भेजते तो शायद मैं और भी आगे
2: और
0: जा
2: भी
0: सकती.
2: आगे जा सकती थी
0: जी. तो हमारे श्रोता बंधु पहले बात करना चाहेंगे, उनसे बात करेंगे. हेलो
3: जय
0: श्री हरि. नमस्कार, कैसे हैं सुरेश भाई आप?
3: हम अच्छे हैं
0: जी.
3: नाम नहीं बताना था.
0: अच्छा. आपकी आवाज सभी जानते हैं कि आप ही है, पहचानते हैं आपकी आवाज को?
3: सभी जानते हैं मगर हमारे गेस्ट हैं ना, उनको प्रश्न रखना चाहता
0: हूं. अच्छा.
2: नमस्कार.
0: नमस्कार.
3: पहचाना?
2: हाँ पहचान लिया ना आपको.
0: हाँ पहचान लिया. ऐसे बोल रहे पहचान लिया आपको?
3: पहचान लिया.
2: हाँ पहचान लिया आपको.
3: नहीं पहचाना.
2: सुरेश भाई जी. ओम शांति. ओम शांति.
3: कैसे हो?
2: अच्छे हैं. आप कैसे हो?
3: बस हम अच्छे हैं. और सब बच्चे वगैरह सब अच्छे हैं?
2: हाँ सब अच्छे हैं, सब बढ़िया है.
3: और आप रेडियो मधुबन में आए तो बाहर आ गए.
2: थैंक यू थैंक यू.
3: चार चांद लग गए ना, दो चार.
2: ये सब उषा माता जी की मेहरबानी है.
0: ऊपर वाले की.
3: आपको लेके आए है ना?
2: हाँ ये हमको लेके आए, हमको मौका दिया.
3: तो बोल रहा हूँ दो और दो चार जान लग गए ना. नहीं हाँ, तो दो ही लगते थे.
2: हाँ, सही बात है.
3: और बस बहुत अच्छी बातें भी हो रही है तो हमें भी बहुत अच्छा लगा सुन के.
2: अच्छा.
3: और बस आप यू कभी कभी आते रहिए.
2: पक्का पक्का आएंगे. हम आते ही रहते हैं इधर और माता जी मौका भी देते रहते हैं हमको.
3: हाँ माता जी तो माता जी है.
2: सही बात है.
3: ये इनसे माता जी को मौका देती है.
2: हाँ
3: आपको भी तो आपके माता जी.
2: सही बात है.
3: सही है ना?
2: हाँ सही बात है. सही है.
3: और माता पिता का तो बच्चों के हाथ हो तो बच्चों को और कोई जरूरत.
2: सही है सही है. ये तो सही बात है. उनके आशीर्वाद से ही सब है. उनके आशीर्वाद से ही, माता पिता के आशीर्वाद से ही हम इतना कर पा रहे हैं सब.
3: वो लोग जो मूर्ख होते हैं जो अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम छोड़ के आते हैं या तकलीफ देते हैं.
2: सही बात है सही बात है.
3: क्योंकि वही दिन कल अपने भी आने वाला.
2: हाँ वो तो है ही है.
3: हाँ, क्योंकि सुई के पीछे ही धागा तो निकलने वाला है.
2: हाँ सही बात है. वो तो है ही है.
3: इतना सोच के चले तो जिंदगी है.
2: अच्छा. हाँ वही. आज अब जब अपन को जरूरत थी तब वो खड़े थे, तो जब उनको जरूरत होती है तो अपन को भी खड़ा रहना है.
3: हाँ बस वही तो बोलो, इतना सोचे तो जिंदगी है, वरना तो गंदगी तो है ही है.
2: हाँ सही है सही बात.
3: हेलो दीदी, आप आए बहुत खुशी हुई.
2: धन्यवाद
3: धन्यवाद. जी बाकी सब ठीक है?
0: हाँ जी बिल्कुल. आप सभी की दुआएं.
3: दुआएं ऊपर वाला जी, बाबा जी.
0: बिल्कुल, कहते हैं ना कि ऊपर वाले की मेहरबानी और परिवार की दुआएं मिल जाए, बस इससे बढ़कर और कुछ चाहिए ही नहीं।
3: नहीं, बाबा का सर से हाथ हो ना, तो बस बाकी तो सब अपने पीछे पीछे आएंगे
0: जी।
3: बस उनका साथ चाहिए, बाकी उनके लिए तो पूरी जिंदगी से लड़ सकते हैं, कभी परिवार से लड़ सकते हैं, बाकी उनका उनका अगर साथ नहीं मिलेगा ना तो साथ काम का नहीं है।
0: जी जी जी जी बिल्कुल,
3: चलो ठीक है।
0: हाँ जी, चलिए, बहुत बहुत आभार। तो मयूरी जी, आप अपने बचपन की बातें बता रहे थे कि पढ़ाई में आपको थोड़ा सा अपने पेरेंट्स से शिकायत है कि उन्होंने आपको बाहर नहीं भेजा।
2: बाहर नहीं,
0: अगर बाहर भेजते तो आप क्या करते?
2: मेरे को इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स करना था।
0: अच्छा,
2: तो वो मैं नहीं कर पाई क्योंकि उसमें क्या है कि उस टाइम उन्होंने, उनका भी रीज़न सही लगा मुझे कि थोड़ा इमोशनल भी हो गए थे कि फिर तो वैसे भी शादी करके तू चली जाएगी, तो फिर अभी हमारे साथ रह ले, तुझे यहाँ से जो करना है तू कर ले। उसके बाद मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया।
0: अच्छा,
2: और शादी के बाद तो मैंने थोड़ा बहुत मेरे चेंजेस आए, जैसे मुझे ये
0: शादी की बात तो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी आपके बचपन की बातें चल रही है, तो कभी ऐसी कोई बात आज भी आपको याद आती हो कि बेटे बेटे हंसी आ जाती? क्योंकि बचपन हमारा इतना इनोसेंट होता है कि कभी हम कुछ ऐसी बात कर बैठते हैं उसका मीनिंग बाद में पता चलता है जब हम मैच्योर होते हैं।
2: हाँ,
0: तो अपने आप हंसी आती है कि ये क्या हो गया।
2: ये ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं, पर एक जो है वो मेरा फेवरेट है, वो ये है कि जब मेरा मैं मेरे और मेरे भाई के बीच में 5 साल का गैप है,

0: तो जब मेरा भाई हुआ तब मुझे खुशी हुई कि चलो मेरा भाई हुआ, मेरे घर में एक मतलब बच्चे आए हैं, छोटा सा ये वो। फिर दो दिन मैंने देखा, उसके होने के बाद दो दिन मैंने देखा सब उसको ही ले रहे, पैम्पर कर रहे, ये कर, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो मैंने फिर मेरी बुआ को बोला, तू इसको ले जा, हमको नहीं चाहिए ये, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता है, सब उससे ही प्यार करते हैं, सब उसी को पूछ रहे। मैं बहुत रोई उस टाइम पे।
1: अच्छा,
0: तो वो आज भी हमको हंसी आती है कि उस टाइम मैंने ऐसा रिएक्शन दिया था। तो वो एक बहुत, और
1: जी जी
0: होना भी जरूरी है। आज भाई बहन एक, आज पहले तो चलो इतने सारे होते थे, अभी एक ही भाई एक ही बहन है, तो आज सपोर्ट भी रहता है, तो वो थोड़ा फनी है पर जरूरी भी है।
1: जी जी
0: भाई
1: जी
0: बहन
1: तो इस तरह की नादानियां हो जाया करती है, क्योंकि छोटा बच्चा है तो स्वाभाविक है केयर उसके ज्यादा करेंगे, और हर कोई गोदी में लेंगे। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो गोदी में तो नहीं लेंगे, बोल
0: हाँ,
1: सकते हैं उसके साथ,
0: वही।
1: बात कर सकते हैं। तो ऐसा एक के साथ नहीं, बहुतों के साथ होता है, और अलग अलग विषय होते हैं, अलग अलग बातें होती है,
0: सही
1: है
0: है।
1: ना। लेकिन आज भी जब सोचते हैं तो अपने आप ही हंसी आती है कि कैसे हम मूर्ख थे। और
0: सही है। और मैं एक और किस्सा सुनाना चाहती हूँ
1: जी
0: कि मैं 10 महीने की थी, तो मेरी मम्मी मुझे खिड़की पे लेकर खड़ी थी, मतलब खिड़की के
1: बालकनी में।
0: पास। हाँ, वो क्या है कि उसकी तबीयत भी थोड़ी नरम थी, बहुत फीवर था उसको भी और वीकनेस भी थी। तो हम थर्ड फ्लोर पे रहते थे, तो मैं क्या एकदम उनसे, मतलब मैं क्या कूद रही थी उनकी गोद में ही, तो उनसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैं थर्ड फ्लोर से नीचे गिर गई।
1: ओहो,
0: तो और तब मैं 10 महीने की
1: दस
0: थी।
1: महीने के बच्चे जब थर्ड फ्लोर से नीचे गिरते हैं तो क्या हालत हो जाती है, बचना ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी ईश्वर ने आपको मतलब बचाया है। तो उस
0: हाँ,
1: समय फिर क्या कंडीशन रही, आप
0: उस
1: बेहोश
0: समय
1: हुए?
0: जैसे ही मैं गिरी तो मेरे मुंह से फीन निकल गए
1: जी,
0: और
1: झाग निकल
0: बाकी
1: गए।
0: बाकी कहीं कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद पूरे मतलब 2-3 दिन सुबह, मतलब मैं अगर दिन में गिरी थी तो मुझे रात को 12 बजे होश आया। उसके बाद मेरी 2-3 बार MRI करी, सब करा, पर सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आई।
1: क्या
0: तो
1: बात
0: ये
1: है,
0: बस भगवान की और बाबा की मेहरबानी है।
1: तो वो गुजराती में कहावत
0: हाँ,
1: है, राम राखे ने कौन चाखे, तो वो ईश्वर को बचाना था।
0: हाँ,
1: इसलिए आप सुरक्षित रहे, नहीं तो 10 महीने के बच्चा जब थर्ड फ्लोर से नीचे गिरता है तो आप सोचिए कि क्या हालत होती होगी, फर्स्ट फ्लोर से गिरने पर ही हड्डियां टूट जाती है।
0: और उस टाइम पे मेरी मम्मी की कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि बोलने वाले ये भी बोल रहे थे कि लड़की है तो उसको ऊपर से उन्होंने फेंक दिया। एक दो जने ने मम्मी को ये भी बोल दिया, तो वो मैं बच गई, तो उनका नसीब अच्छा है और मेरा भी अच्छा है कि मुझे इतना अच्छा जीने का मौका मिला, इतना अच्छा सब देखने का मौका मिला।
1: बिल्कुल, वो कहते हैं कि आप लिखा हुआ था, और चलिए अच्छा रहा कि आप बचे हैं तो आज रेडियो में भी बोल पा रहे हैं। बिल्कुल, तो कभी कभी इस तरह के हादसे हो जाते हैं, बड़े हादसे भी, वो कहते हैं ना कि पहाड़ सुई की तरह हो जाता है वो हिसाब किताब, और कभी कभी छोटी परिस्थितियों में भी बहुत बड़ी समस्याएं आ जाती है। जी, तो चलिए मयूरी जी, आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर समय हो चला एक ब्रेक लेने का, तो एक ब्रेक लेकर के पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं। मयूरी जी के अनुभव बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छे हैं और बहुत सुनने बाकी है, तो बने रहिएगा इस कार्यक्रम में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
2: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
3: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया, वो उन्होंने किया। मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है? अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
2: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: बेटी की हंसी में ईश्वर बसता है, बेटी की हंसी में ईश्वर बसता है, उसकी बातों में सच्चाई रहती है। जो बेटी का मान रखे, जो बेटी का मान रखे, उसकी हर राह उजली रहती है, उसकी हर राह उजली रहती है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में ऐसी ही बेटी, भाई कहते हैं ना कि किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की बहन है, तो किसी की बीवी है, तो किसी की माँ है, लेकिन नारी आखिर नारी ही है। और ऐसी नारी शक्ति हमारे साथ बनी हुई है मयूरी शाह, जो आप अहमदाबाद गुजरात से पधारे हैं और आपके अनुभव हमने सुने हैं बचपन के। पुनः स्वागत करते हैं मयूरी जी आपका वंदे मातरम कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद आपका
0: जी। तो आज आप मतलब हमेशा मुस्कुराहट के साथ ही रहते हैं या आज विशेष खुश है आप?
1: नहीं, ऐसे ही रहते हैं हम ज्यादातर।
0: जी जी जी। और यहाँ पर देखिए मयूरी जी का बेटा जो 6 साल का है, नन्ना मुन्ना बच्चा, तो वो भी उतावला हो रहा है बोलने के लिए। तो ये आप कहते हैं ना कि ये सब गॉडली गिफ्ट है, बोलने का भी हर किसी के अंदर नहीं होता है, लेकिन ये बच्चा कभी का कह रहा है हमें तो अवसर दीजिए, हमें तो अवसर दीजिए। तो चलिए पहले कहते हैं ना बच्चे फर्स्ट, आ जाइए। नमस्ते।
2: नमस्ते।
0: आपका शुभ नाम बताएंगे?
2: हाँ
0: बोलिए।
2: टैंगरी।
0: अभी पोयम नहीं, आपका नाम बताइए।
2: मेरा नाम है ध्रुवांश।
0: आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं?
2: सीनियर केजी ओल्ड।
0: ओके। और आपको रेडियो मधुबन में आकर के कैसा लग रहा है? आप पहले भी बोल चुके हैं यहाँ पर पोयम, कैसा लग रहा है आपको?
2: बहुत बढ़िया।
0: बहुत बढ़िया लग रहा है। और आप अपने मम्मी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके मम्मी आपसे प्यार करते हैं?
2: बहुत।
0: और क्या करते हैं, क्या सिखाते हैं आपको? होमवर्क कराते हैं?
2: हाँ।
0: और आप क्या करते हैं?
2: और ड्राइंग सिखाती है, ABCD भी सिखाई, सब मम्मी सिखाती है मुझे।
0: अच्छा, फिर आपके टीचर क्या करते हैं?
2: मुझे पढ़ाई करवाते हैं।
0: अच्छा, पढ़ाई करवाते हैं। और आपने पोयम कहाँ से सीखी?
2: मेरी मम्मा ने सिखाई, मेरे स्कूल में से नई राइम्स बुक आई थी ना, इसलिए मेरी मम्मी ने सिखाई राइम।
0: अच्छा, तो आप सुनाइए, कौन सी पोयम सुनाएंगे?
2: टेन ग्रीन बॉटल्स।
0: सुना दीजिए।
2: टेन ग्रीन बॉटल हैंगिंग ऑन द वॉल, वन ग्रीन बॉटल टू एक्सीडेंटली फॉल, नाइन ग्रीन बॉटल हैंगिंग ऑन द वॉल, वन ग्रीन बॉटल टू एक्सीडेंटली फॉल, एट ग्रीन बॉटल हैंगिंग ऑन द वॉल, वन ग्रीन बॉटल टू एक्सीडेंटली फॉल, सेवन ग्रीन बॉटल टू हैंगिंग ऑन द वॉल, वन ग्रीन बॉटल टू एक्सीडेंटली फॉल, सिक्स ग्रीन बॉटल हैंगिंग ऑन द वॉल, वन ग्रीन बॉटल टू एक्सीडेंटली फॉल, फाइव ग्रीन बॉटल टू हैंगिंग ऑन द वॉल, वन ग्रीन बॉटल टू एक्सीडेंटली फॉल, फोर ग्रीन बॉटल टू हैंगिंग ऑन द वॉल, वन ग्रीन बॉटल टू एक्सीडेंटली फॉल, थ्री ग्रीन बॉटल टू हैंगिंग ऑन द वॉल, वन ग्रीन बॉटल टू एक्सीडेंटली फॉल, टू ग्रीन बॉटल टू हैंगिंग ऑन द वॉल, वन ग्रीन बॉटल टू एक्सीडेंटली फॉल।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, ताली बजानी चाहिए आपके तो, बहुत सुंदर। इसका अर्थ बताएंगे, क्या अर्थ है? चलिए हमारे श्रोता बंधु पहले जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो
3: नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ। ओम शांति।
0: हाँ जी नमस्ते फिरोज भाई, ओम शांति।
3: बच्चे ने बहुत अच्छा सुनाया ये
0: पोयम। थैंक यू बोलिए।
3: ग्रीन बोल
2: सुनाया
0: जी।
3: और आवाज भी अच्छी थी बच्चे की
0: जी।
3: और माँ के लिए मेरे को एक गीत बोलने का है
0: जी। बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा सुनाइए।
3: नहीं छोटा सा, बस एक बोल थी।
0: हाँ जी हाँ जी सुनाइए।
3: माँ माँ मुझे अपने आंचल में छुपा लो, गले से लगा लो के आज मेरा कोई नहीं जी।
0: बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई, बहुत सुंदर आपने गीत सुनाया है। तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से, और ध्रुवांश हमारे समक्ष बैठा है। अच्छा ध्रुवांश, आप हमारे सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने अच्छी सी पोएम बोल के सुनाई है, आपके जैसे बच्चे बहुत सारे जुड़ते हैं, सुनते भी है कार्यक्रम, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनसे फ्रेंडशिप करोगे?
2: हाँ।
0: और उनको क्या कहना चाहोगे, जैसे बहुत सारे बच्चे बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, और आपने अच्छे से बोल के सुनाई, अभी फिरोज भाई भी बता रहे थे, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? वो उनको भी सीखना चाहिए ना। हेलो। हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हैं आप? ओम शांति। अच्छा जी जी, आप सफर में है ना?
4: हाँ नहीं सफर में नहीं, हम देख रहे हैं सभी, अभी हम पूरा किला देख के आए हैं, और अभी अच्छा
0: जी चलिए है, बहुत अच्छी बात तो है।
4: हाँ ये दुकान में हम खड़े हैं अभी, और सालिया है, सालिया है, या मैं वो देखे घर की चद्दर आती है
0: जी,
4: तो वहाँ है, और वहाँ सब ये जो चद्दर लेती आती है ये सब कुछ समझा रहे हैं, तो इस दुकान में हम खड़े हैं अभी
0: जी जी। तो
4: पूरा देख के आए, हल्दी घाटी भी देख के आए, वहाँ के लोग भी देख के आए।
0: अरे वाह क्या बात है, वहाँ की मिट्टी आपने ली हल्दी जैसा कलर की है?
4: हल्दी जैसा कलर की है दीदी
0: जी।
4: तो ये सब देख लिया, हमारे पास गाइड था तो गाइड ने पूरा समझा दिया हमको।
0: अच्छा
4: तो अभी चित्तौड़गढ़ में ही है, अभी हम पहली अभी खड़े रहे हैं दुकान पे।
0: अरे वाह क्या बात है, आप हमारे एरिया में पहुँच गए।
4: चित्तौड़गढ़ में तो बहुत सारे मशहूर देखने के लिए लायक है
0: जी,
4: महाराणा प्रताप का जो जगह थी वो भी देख ली
0: जी जी जी जी,
4: वहाँ भी देख लिया
0: जी जी जी।
4: तो अभी हम
0: चित्तौड़गढ़
4: में जी, और सुना देना चाहूँ
0: जी। चलिए बहुत बहुत आभार सुरेश भाई आपका। तो ये थे सुरेश भाई झोटाना से। हाँ आप क्या कहना चाहेंगे, जो नहीं बोल पाते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, उन बच्चों को? आपने कैसे सीखी कविताएं?
2: मेरी मम्मी ने सिखाए।
0: ऐसे हर एक की मम्मी को सिखाना चाहिए है ना?
2: हाँ।
0: और कहीं नहीं बोले तो रेडियो मधुबन में आना चाहिए। एक रेडियो मधुबन के मंच से शुरुआत करनी चाहिए, तो फिर वो बड़े मंच पर पहुंच सकते हैं, है ना?
2: हाँ।
0: आप भी बड़े मंच पर रेडियो मधुबन के जरिए पहुंचे हैं ना, स्कूल में बोलते हैं?
2: हाँ।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में आए और आपने बहुत ही सुंदर पोयम सबको सुनाई इसके लिए।
2: मुझे मिलने का मौका मिला।
0: क्या बात है, बोलने का मौका मिला तो बहुत खुशी हो रही है आपको?
2: हाँ।
0: तो ऐसे मौके मिलेंगे तो आप आएंगे बोलेंगे?
2: हाँ।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। और अब देखिए कार्यक्रम भी समाप्ति की तरफ है, मयूरी जी से हम जरूर बात करना चाहेंगे। मयूरी जी बता रहे थे कि शादी के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आए हैं, तो अब आप बता सकते हैं आपके जीवन में किस तरह के बदलाव आए।
1: पहले तो क्या है, शादी के बाद अपने जिम्मेदारियां बढ़ जाती है
0: जी।
1: पहले तो क्या है, निकल जाओ ऐसे ही, कोई टेंशन ही नहीं है पीछे का, अभी तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती है
0: जी।
1: तो फिर भी मैंने पहले तो एक साल जॉब करी
0: जी,
1: क्योंकि मैं अकेले जॉइंट फैमिली से आई थी, इधर अकेली हो गई थी, तो आते ही तो मैंने जॉब करी। उसके बाद लगा कि जॉब में इतना मज़ा है नहीं, इसीलिए फिर मैंने मेरा छोटा मोटा घर पे ही सब स्टार्ट कर दिया
0: जी।
1: जैसे मैं सेंटर कैंडल्स बनाने लग गई, छोटे छोटे हैम्पर्स बनाने लग गई
0: जी।
1: तो अब जैसे ऑर्डर्स आते हैं वैसे सब चीज़ें बना के
0: जी जी सेल करते हैं,
1: छोटा मोटा बिजनेस कर लेते हैं
0: जी।
1: पेंटिंग का भी बहुत शौक है, पेंटिंग्स भी करते हैं
0: जी जी। चलिए बहुत अच्छी बात है कि अपने आप को व्यस्त कर दिया थोड़ा।
1: हाँ,
0: इधर सिंगल फैमिली है तो जॉइंट फैमिली और सिंगल में तो बहुत फर्क पड़ता है। जॉइंट में तो चलिए बातचीत और काम में समय बीत जाता है, लेकिन सिंगल फैमिली में करे क्या, बातचीत किससे करे और काम भी इतना नहीं रहता है। तो अपने आप को व्यस्त करने के लिए जो आपके अंदर हॉबीज थी, जो आप बनाते हैं, उस पर फोकस डालना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा। और आपको गरबा बहुत अच्छा आता है, तो थोड़ा सा आप गरबा खैर सिखा तो नहीं सकते क्योंकि ये तो रेडियो मधुबन है, यहाँ से ऑडियो ही जाता है, लेकिन आप अपने पसंद के चंद लाइनें सुना सकते हैं कि कौन सा गरबा आपको सबसे ज्यादा पसंद है।
1: वैसे तो बहुत सारे पसंद है, पर ये मेरा फेवरेट वाला है। इसके इस पे गरबा करने का बहुत मजा आता है।

0: रे बहुत सुंदर ये गीत है। तो आजकल ये भजन भी गरबा के रूप में चलने लग गया।
1: हाँ,
0: तो इसमें दो ताल होती है या फिर एक ताल, क्या होता है इसमें?
1: इसमें तीन ताली खेलते हैं लोग।
0: तीन ताल होते हैं।
1: हाँ,
0: अच्छा, और आप गरबा सिखाते भी है, तो थोड़ा सा इसकी प्रोसेस बताएंगे कि हमारे कोई श्रोता बंधु अगर गरबा सीखना चाहे तो क्या प्रोसेस है इसमें?
1: पहले तो अपन पैर के स्टेप्स सीखते हैं,
0: जी
1: उसके बाद थोड़े हाथ के पैर के साथ हाथ के तालमेल बिठाने का होता है, तो वही पहले दो ताली, फिर तीन ताली, फिर डांडिया। तो और गरबा तो मेरा स्ट्रेस बस्टर है। अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे स्ट्रेस है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, तो मैं गरबा सुन लेती हूँ या एक राउंड खेल भी लेती हूँ।
0: हाँ हाँ जी, तो वो इससे स्ट्रेस दूर हो जाता है।
1: मैं मतलब स्कूल टाइम से ही मेरे हर बार मुझे गरबा में प्राइज मिलता है, अभी तक मिलता आया है, लास्ट ईयर तक।
0: जी
1: अब थोड़ा कम हो गया है क्योंकि दो बच्चे हो गए हैं तो
0: जी जी
1: शरीर में
0: तो
1: इतनी ताकत नहीं, पर फिर भी खेल लेते हैं,
0: जी
1: फेवरेट है गरबा
0: और
1: तो
0: खुद के
1: मेरा।
0: एंजॉय के लिए भी जरूरी है, चाहे हमें प्राइज मिले या ना मिले, खुद की खुशी के लिए भी करना बहुत जरूरी है। तो बहुत सुंदर। और कार्यक्रम के अंत में हमारी जो बहनें सुन रही हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारी बहनें, जैसे जैसे आप बता रहे कि दो बच्चे हो गए हैं, अब शरीर की ताकत भी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन फिर भी उमंग उत्साह वही है। और हमारी बहुत सारी बहनें क्या है कि बच्चे होने के बाद जिम्मेदारियों में इतनी उलझ जाती है कि फिर वो अपनी एंजॉय, जो अपने आनंद के लिए क्या करना है वो छोड़ देते हैं। परिवार के लिए भले वो दिन रात लगी रहेगी, लेकिन खुद के लिए नहीं। तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप?
1: चाहती हूँ कि खुद के लिए भी थोड़ा समय निकाल लेना चाहिए, क्योंकि अगर अपन अपन अपन खुद को इम्पोर्टेंस देंगे तो बच्चे भी देखेंगे और अपन से सीखेंगे कि अपन को भी खुद मतलब मम्मी की भी वैल्यू करनी चाहिए। नहीं तो आज जो होम मेकर है, जो घर पे बैठी रहती है, हाउसवाइफ है, बच्चों को

0: लगता है मेरी मम्मी करती क्या है। तो आज आप घर बैठे भी खुद के लिए अगर कुछ टाइम निकाल ले तो बच्चों को भी लगेगा कि हाँ मेरी मम्मी कुछ कर रही है। उनके लिए भी आप एक मोटिवेशन बन सकते हो कि इतनी जिम्मेदारियां है फिर भी मेरी मम्मी मेरे उसके लिए टाइम निकाल लेती है, कुछ क्रिएटिव कर रही है। जो आपको पसंद हो, जो आपकी हॉबी हो, वो आपको करना ही चाहिए, मेरा तो यही मानना है। तो मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि आप एक बार आप खुद के भी फोकस करो और जिम्मेदारियां भी निभाओ, उससे तो अपन
1: नहीं सकते,
0: छूट भी नहीं सकते और पीछे भी नहीं हट सकते, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
1: जी।
0: तो उनको भी मत छोड़ो और खुद को भी पकड़ के रखो, खुद की भी इतनी रिस्पेक्ट करो।
1: जी चलिए मयूरी जी, बहुत बहुत आभार, आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में पधारे और आपने अपने शॉर्ट रूप में अनुभव सुनाए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सभी का लिया, इसलिए हाँ। समय तो कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है,
0: सही
1: तो
0: है।
1: और भी आपके कोई इच्छा हो या कोई संकल्प हो या कोई बात हो तो आप रख सकते हो जाते जाते।
0: बस इतना ही के, और सभी श्रोताओं को थैंक यू सुनने के लिए, रिस्पॉन्स देने के लिए, और सबसे बड़ा थैंक यू उषा माता जी को जिन्होंने हमको मौका दिया बोलने का और हमारी बात रखने का, हमारे अनुभव सुनाने का।
1: जी हम तो सबसे बड़ा श्रेय ईश्वर को ही देंगे कि ये सब बना बनाया ड्रामा था, बस वो खाली रिपीट करना बाकी था जो हो गया। कहते हैं ना कि हम क्या सोचते और वो क्या सोचता है वो बात ही अलग है। खैर बहुत अच्छा लगा, हमारे श्रोता बंधु भी जुड़े, उन्होंने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और आपने भी अनुभव अच्छे सुनाए हैं, बच्चे ने भी बहुत ही सुंदर पोएम सुनाई है, आपने बहुत ही अच्छा सिखाया। तो इसी तरह हर माताएं अपने बच्चों को इस तरह एक्टिव रखे और आगे बढ़ाते रहे। और आइए अब मैं भी उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। और आज की नारी शक्ति मयूरी बहन आपको और रतन माता जी को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया, और अपना लोक भाषा में कह सकते हैं मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर हम जहां भी जाते हैं, क्योंकि हमारा सेवा ही कम्युनिटी को सशक्त समृद्ध और विकसित करने के लिए, तो सरकार का जो मंशा है आसपास गांव और अंचल में जो गतिविधि हो रही, जो पर्यावरण है, जो स्वास्थ्य हो चाहे पेड़ पौधा हो, सभी को लेकर हम बात करते हैं। चाहे किसान हो, चाहे हमारा मनरेगा हो, चाहे हमारा शिक्षा जगत में जो शिक्षक और बच्चे उनसे भी बात करते हैं, आंगनबाड़ी में जाकर बात करते हैं, नरोगा से भी बात करते हैं, क्योंकि हमारा आसपास गांव और अंचल हरा भरा रहे। क्योंकि गांव का और अंचल का हरा भरा होगा तो हमें भी खुशी होगा और हम उसमें आगे बढ़ते हैं। तो इस कार्यक्रम को लेकर हम पहुंचे किवली में। किवली एक अच्छा गांव है जो कि हमेशा स्कूल के आंगनबाड़ी का हम प्रसार प्रसार करते थे, ग्राम पंचायत का भी लेते थे, लेकिन आज हम थोड़ा सा पर्यावरण को लेकर बात, जहाँ पर प्लांटेशन हुआ है, चाहे बगीचा कर मैंने जंगल को मंगल बनाए, जंगल था और उसको मंगल बनाए, पूरा पेड़ पौधे में बनाए, उसका जानकारी देंगे। किवली तो ऐसे आपको पता है, किवली तो पानी के लिए फेमस है, पूरा भारत जा कहाँ कहाँ पानी यहाँ से जाता है, और इसे नदी का पास ही गाँव है किवली, और हर गाँव हर घर में एक शिक्षित एम्प्लॉय मिलेगा लगभग, नहीं तो एक घर छोड़ के दूसरा घर जाएंगे तो एक एम्प्लॉय मैंने सरकार नौकरी मिलता। तो यहाँ से पता चलता है गांव का कितना, मैंने सिरोही जिला में पूरा एक नंबर गांव, आदर्श गांव जिसको कहेंगे। चलिए इस कार्यक्रम को जब सजाएंगे, हमारे साथ का जनप्रतिनिधि उपस्थित है, तो आज उनको वो हमें लेकर आए हैं और देखा रहे क्या क्या काम हो रही गाँव के आसपास, जिसका चलते गाँव का जो विकास उसमें एक हिस्सा बनता है। तो श्रीमान जी को स्वागत करते, अपना परिचय खुद देंगे तो अच्छे से दे पाएंगे, किन्तु हम देंगे तो थोड़ा बहुत जो जानते थे सुनते हैं उसका बारे में हम बताए, लेकिन वो खुद अपना परिचय देंगे, जिसमें यहाँ तक पहुँचने के लिए, जनप्रतिनिधि तक पहुँचने के लिए कैसे उनका प्रेरणा मिला, और जन सेवा में व गांव का विकास करने के लिए उनका मन में क्या प्रभाव पड़ा, तो वो अपना परिचय देंगे, कितना तक पढ़ाई किए। और सर आपका स्वागत है, आपका रेडियो मधुबन में हार्टी वेलकम है, स्वागतम सुस्वागतम, बताए आपका परिचय।
1: सर मेरा नाम शंकरलाल मेघवाल,
0: ओ
1: अपूर्व डेलीगेट भाजपा से 1985 से लगा
0: जी
1: अभी तक, ठीक है। मैंने 10वीं क्लास पास की है
0: जी सर।
1: अभी सर आए अपने किवली गांव में, सुशांत वाटिका में।
0: ओहो,
1: कौन सा नाम है? सुशांत वाटिका।
0: सुशांत वाटिका, अच्छा
1: ठीक है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई
0: जी सर,
1: और आपने जो भी कहा कि सुशांत वाटिका में इतने पौधे लगाए, 5000 लगाए हैं, अलग अलग किस्म के हैं, अमरूद है, जामुन है, आंवला है, नींबू है, मतलब बादाम है, कई तरह के पौधे लगाए
0: जी सर,
1: ठीक है। ये हमारा गांव का सहयोग से खूब ये काम अच्छा चल रहा है
0: जी जी।
1: डेली यहाँ मानरेगा से मजदूर आते हैं और पानी पिलाते हैं, और 15 दिन में लोग चेंज हो जाते हैं। इसमें थोड़ा और सुधार हो जाए आपकी तरफ से तो ठीक रहेगा।
0: रेडियो मधुबन से सहयोग चाहिए ना, ब्रह्मा कुमारी से?
1: बिल्कुल।
0: किससे सहयोग चाहिए?
1: ब्रह्मा कुमारी से और मधुबन से, दोनों से।
0: दोनों से
1: हाँ
0: सहयोग चाहिए,
1: सहयोग चाहिए।
0: जैसे क्या सहयोग आप चाहते हैं?
1: जैसे कि आप में
0: कोई हमको पता होना चाहिए ना भाई, आप क्या,
1: जैसे कि आप स्पीकर की व्यवस्था लगी, छोटे छोटे स्पीकर, और मधुबन के वो कोई कार्यक्रम होता है वो सुने हम, शमशान के पास में शमशान घाट है
0: जी जी,
1: जो ऐसे लगाए तो मतलब ठीक रहेगा।
0: अच्छा वेरी गुड, बहुत अच्छा बात बताए, क्योंकि एक जैसे वाटिका है, जैसे हम सुनते थे सीता को भी अशोक वाटिका में रखे थे, तो उनका कोई शोक नहीं था, अशोक जिस कोई शोक नहीं, यहाँ पर शोक होकर आएंगे लेकिन अशोक जैसे वाटिका, जैसे सुशांत वाटिका नाम रखे, सुशांत वाटिका, और यहाँ पर जब शरीर दाह करने के लिए शमशान को आते है, उसी में वो वाटिका में ही शमशान बनाया है ना, उसका एक पार्ट है ना शमशान, जो पार्ट है शमशान का, लेकिन इससे तो ज्यादा सुंदर बनाया उसको
1: बनाए,
0: तो उसमें जैसे कोई भी दुखी होकर आए तो यहाँ पर जो आए उनको सुख महसूस हो, क्योंकि हम स्वर्ग को लेकर जा रहे हैं, स्वर्ग यात्रा कर रहे हैं, तो स्वर्ग अपने सुखी होते हैं, तो भले वहाँ गांव में दुखी हो लेकिन यहाँ पर जब आए तो वहाँ पर सुख महसूस
1: हो,
0: सुकून महसूस हो और शांत महसूस हो, क्योंकि नामकरण बहुत अच्छा नामकरण किया जाएगा, सुशांत वाटिका।
1: सुशांत वाटिका,
0: हम तो अशोक वाटिका सुनते थे लेकिन सुशांत वाटिका।

0: देखभाल वो बताएंगे, लेकिन आपका जो एक्सपर्ट है, आप तो एक जनप्रतिनिधि है ना, अभी भी जनप्रतिनिधि मैंने प्रतिनिधि मतलब आप वार्ड पंच
1: वार्ड पंच में रह चुका हो और डेलीगेट भी रह चुका हो।
0: अच्छा
2: नहीं है
0: पहले पूर्व जैसे आपने सर पूर्व थे, लेकिन उस समय भी बहुत काम किए, बहुत अच्छा काम किए और जनप्रतिनिधि नहीं थे उस समय, जो थे उस समय भी आप आते थे कुछ विकास किए होंगे, अभी भी नहीं है पोस्ट में तब भी आप विकास कर रहे हैं, जब पावर था तब तक किए, जब पावर नहीं रहकर भी इतना कर रहे ये तो कम बात नहीं है, है ना।
1: और हमारे एमएलए साहब और प्रधान साहब का खूब सहयोग रहा और हमारे भी पुल सर्विस हुआ है, काम सेक्शन हुआ है, अभी चालू नहीं हुआ,
0: हो जाएगा,
1: ये हो जाएगा फिर हमारे आने के लिए आबूरोड और ब्रह्माकुमार में बहुत नक्सी होगा,
0: नदी के पौधाल का रास्ता है, हमें भी खुशी होगा, रेडियो मधुबन तुरंत यहाँ पर आ जाएगा। और जो म्यूजिक का जो बात कर रहे हैं, जो रेडियो मधुबन का जो प्रसार होता है तो यहाँ पर भी लोग सुने बटकर आकर तो उनको भी सुकून मिलेगा, सिर्फ पौधा कराने के बाद उसका साथ जैसे बैठने का जगह हो और थोड़ा पानी का व्यवस्था हो, जैसे आपका पानी का व्यवस्था है, जिसको प्यास लगे तो पानी अपना पी सकते, आरो लगा दे और सोलर लगा दे, और खासकर म्यूजिक जैसे रेडियो मधुबन का यहाँ पर म्यूजिकल हो कि ब्रह्मा कुमारी जो प्रसारण होता है गीत वाले यहाँ पर भी सुन सकते, तो उसके लिए आपका बहुत अच्छा सहयोग मिल सकता है, मिल सकता है क्यों नहीं, क्यों आप लोग का प्रयास तो करेंगे तो मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर में अपना कार्यक्रम को सजाए तो शंकर जी को धन्यवाद, शिव शंकर कहते शंकर आप शिव सिंह शंकर जी को ध्यान करते ना, शंकर का आंख खुल गया तो पूरा दुनिया को विनाश नहीं करेंगे, पूरा अच्छा काम कराएंगे, और विनाश होगा तब भी उसमें अच्छा काम कराएगा, विनाश में सफाई होगा, सफाई होगा मतलब नया आएगा, कल जो समाप्ति होगा तब तक सत्य युग आएगा, घर तोड़ेंगे तो नया घर बनाएंगे, और घर तोड़ेंगे नहीं तो नया बनेगा कैसे, इसलिए शंकर का काम क्या है, अच्छा चीज को लाने के लिए इनका प्रयास बहुत बहुत अच्छा लगा शंकर जी। और आप इतना कितना उम्र है,
1: मेरी 64 है सर।
0: क्या बात है, लग नहीं रहे तो पूरा जवान है, पूरा पूरा 64 है और पूरा हट्टा कट्टा है, इसका राज क्या है, खान पान और पर्यावरण को पैर लगाते हैं, पर्यावरण जो बाटिका में आप सही पर्यावरण बहुत अच्छा है, क्योंकि आप ऑक्सीजन तो भरपूर पाते हैं और पौधा तो आपको पूरा देता है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलेंगे, और एक भाई साहब है जो कि पूरे जमीन का जो जुड़े हुए और जन्मदाता कहेंगे, पौधा जो इस बाटिया का जन्मदाता शुरू से अभी तक खुशी से करारो मुस्कुरा रहे सूर्य के लेंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। शंकर जी जाते जाते आप एक मानव सेवा के लिए जितने तत्पर हुए हैं, ये प्रेरणा बा आपका बुद्धि में इसको कैसे टच हुआ, मैंने कैसे कैच किया जी ये करना चाहिए मानव सेवा, ये बाटिका बना है इतने बार में पता है, तो आपका मन में कैसे आया, कब आया, कैसे आया मानव सेवा के लिए आपका बुद्धि में कैसे आया, कहाँ से आया,
1: क्या मालूम आया,
0: अंतर से ना बाहर से,
1: अंदर से
0: कोई नहीं बोला
1: नहीं
0: करने के लिए, लेकिन आप खुद कर पड़े तो बस चल पड़े, बहुत अच्छा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक,

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: चले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला कड़ी में हम केवल स्थित सुशांत वट्टिका में बैठे हैं और यहाँ पर जो हरा भरा तपोवन ही सुन रहे थे पहले ब्रह्मा कुमारी का, लेकिन केवली उसका बाजू का पड़ोसी है, केवली ग्राम पंचायत, उमरिन ग्राम पंचायत और केवली ग्राम पंचायत नजदीक आमथला ग्राम पंचायत बीच में आता है। फिर भी एक जो कहते ना जहाँ पर एक बार बड़ा है तो पीछे आसपास कोई मिल जाता है, तो उसको देखकर यहाँ पर भी थोड़ा बहुत डेवलप किए है और ये भी उस तरह बाप समान बन जाएगा तपोवन जैसे। क्यों तपोवन जैसे? तपोवन भी ऐसे ही था, एक जमीन था बंजर
1: जमीन
0: पड़ता है। मानसरोवर आपका पंचायत केवली में बहुत आज केवली में मानसरोवर देखो आपका पंचायत मानसरोवर भी कितना सुंदर बन गया। मानसरोवर नाम कितना सुंदर, जहाँ पर एक बार डुबकी लगाएगा ना वो परी बनकर निकलेगा, उसका गायन है। तो सही में जो भी जाते हैं ना, और आप लोग तो गए होंगे क्योंकि आपका ग्राम पंचायत में आता है कारुल, तो बहुत अच्छा लगा। तो चलिए इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ महान अनुभवी व्यक्तित्व है, तो उनको भी स्वागत करेंगे क्योंकि केवली तो ऐसे ही बहुत सुंदर गांव और एजुकेटेड गांव है, और उसी में ही जो सुशांत वाटिका का जो हत्या करता है, जो देखभाल करते हैं, केयर टेकर जिसको कहते हैं, उनको स्वागत करते हैं। सर आपका परिचय दीजिए पहले।
2: सर मेरा नाम है सज्जन सिंह करण सिंह जी राठौड़।
0: उम्र
2: केवली?
0: उम्र कितना है?
2: उम्र है 56 साल।
0: सर जल्दी थोड़ा लग रहा है,
1: जोड़ी बोलो।
0: हाँ जोड़ी
2: 56 साल है उम्र।
0: बहुत अच्छा, हट्टा कट्टा है और 56 साल तो थोड़ा कम है, लेकिन थोड़ा और स्वास्थ्य को पतला दुबला हो जाइए, ठीक है। देखिए हम 63 का ले रहे हैं आप 56, तो दोनों का जो शंकर का और आपका देखने से आपका मन ने सोचा था 80 साल होगा, क्योंकि आप ऐसे खाना पीना खाते होंगे, ज्यादा कम खाइए जितना आवश्यक उतना खाइए, है ना। अच्छा ये तो रही बात, मैंने मजाक से हम बात कर ले, लेकिन हमारा स्वास्थ्य रहेगा, स्वास्थ्य संपद कहते हैं और आपने पूरा रखा है। तो ये जो सुशांत वाटिका का परिचय, जन्म कैसे हुआ और आज इतना बड़ा वटवृक्ष बन गया, मैंने इतना साल हो गया, तो क्या क्या काम किए और क्या मेहनत किए, और पहले ये क्या था ये जमीन, और कितना एकड़ जमीन में ये फैला हुआ है वाटिका?
2: पहले यहाँ पे सब बबूल थे
0: जी,
2: तो उनको सबको निकाला गया, उसके बाद में पौधारोपण का काम चालू हुआ पंचायत से
0: जी।
2: काम चालू करके उसके बाद में पौधे लगाने चालू हो गए, चालू होने के बाद में धीरे धीरे धीरे धीरे पौधे बड़े हो गए
0: जी। और शुरू से आप देखे हैं ये वाटिका?
2: और शुरू से 10 बीघा में है ये पौधे लगाए, 5000 पौधे हैं।
0: 3 साल पहले मतलब 2022 का बात, ये 2025 चल रहा है,
2: 2025
0: चल 2022 में शुरुआत किए, और आज पूरा कितना 5000 पौधा का जो बात कर रहे थे शंकर जी, है ना, और इतना सुंदर में बहुत बड़ा बड़ा पेड़ हो गया 3 साल में पौधा, कितना आप सब समझ सकते हैं कितना बड़ा होना चाहिए। और क्या क्या पेड़ लगाए
2: इसमें? सब नींबू है, आंवला है,
0: फल में नींबू और आंवला
2: है, बादाम है, अमरूद भी है, और जम्पर भी है, और क्या बोलते हैं
0: फिर छायादार में, छायादार में सिर्फ छाया देगा,
2: छायादार में तो गुलमोहर है, नीम है, शीशम है,
0: अच्छा बहुत सारा पौधा है उसका, फिर लगा देने उसका नाम नहीं करना है, लेकिन अच्छा होगा उसका। कोई बड़ा व्यक्ति का आएगा ना, कोई आपका गांव में सरपंच से बड़े जो आते बीडीओ साहब आए, तो आएंगे तो उसको एक पौधा दे दीजिए, उसका लगाइए पौधा, उनके हाथ में पौधारोपण करिए, उसका नाम लिख दीजिए, ये हमारा बीडीओ साहब का द्वारा हुआ था, उसमें एक नेम प्लेट हो जाए, जब भी आएंगे कभी चले कोई भी आएगा तो उसका वीडियो, हमारे जैसे प्रधानमंत्री आते तो उनके हाथ में हम करा थे, प्रधानमंत्री नरसिंह राव आए थे तो उस समय पौधारोपण किया था, ऐसे पौधा 2-4 जगह में शमशान है वहीं पर लगा दीजिए, तो जो भी आएगा उसका देखेगा, अरे यहाँ पर प्रधानमंत्री आए थे, यहाँ पर राष्ट्रपति आए थे, वहाँ पर नहीं हुआ था आपको वीडियो, तो उसका हाथ में एक पौधा लगाइए और पौधा रहेगा वो तो चला जाएंगे, उसका फल जैसे नेम प्लेट सर, तो ये भी एक सजेशन है, क्योंकि हम जैसे ज्ञान सरोवर में जहाँ जाते हैं तो उनका हाथ में एक पौधा कराते हैं और उसका नामकरण कर उस डेट ईयर कौन सा ईयर आए थे वो सब में लिख देंगे, तो वो भी और अच्छा प्लस पॉइंट हो जाएगा। लेकिन जो भी आएंगे ना, अरे आज हमारा ये आए थे मुख्यमंत्री आए थे यहाँ पर ऐसे, तो ये भी एक प्रोजेक्ट रखिए, आगे के लिए कभी काम आएगा तो उसको दिखाइए, उनका हाथ में एक पौधा रोपण करिए, तो हाँ लगाए तो उसका थोड़ा फलक बना देना, उसका एक नेम प्लेट सीमेंट अच्छा लगे कौन सा, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, और सबका सहयोग मिलेगा, कोई दे चाहे नहीं दे, प्रकृति आपको देगा, प्रकृति को आप रक्षा करेंगे, प्रकृति आपको रक्षा करेगा, एनवायरमेंट आपको रक्षा करेगा, ये गारंटी है, वो कभी स्वार्थी नहीं है, मनुष्य स्वार्थी हो सकता है लेकिन प्रकृति पेड़ पौधा आपको देने के लिए तैयार है, आपको उसके पास बैठकर उससे थोड़ा बात करेंगे तो हमारा भाषा वो मौन का भाषा समझते हैं,
2: सही है,
0: उनके पास बैठकर उसको प्यार करिए, हाथ लगाइए उसको प्यार, जैसे बच्चों को प्यार से हाथ लगाते हैं, उसने इसको वरदान देते हैं तो उसको भी वरदान दीजिए, जितना फल है उससे ज्यादा इसमें जो गांव में सभी को हम बांटे, एक एक गांव को एक एक फल घर में एक फल दे, ऐसे फल बने जिस अमृत को बोलिए, अमृत पेड़ में बढ़ दे उसको पानी पिलाने, इतना अमृत दे महाराज केवल में जो जो लोग गांव में है चाहे दे चाहे नहीं दे हमें देना है। ऐसे संकल्प करिए, संकल्प में बहुत शक्ति है। जो सोचेंगे हमारा सोच ठीक होना चाहिए, सकारात्मक तो हो जाएगा सब। हुआ पड़ा है, हुआ था, हो जाएगा, ऐसे सोचना है।
2: सही है
0: इससे मांगना नहीं,
2: सही होता है।
0: सोच आपका ठीक रहे,
2: ठीक
0: तो अच्छा रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सुंदर मेहनत करते हैं तो उसका फल तो मिलेगा, तो आज नहीं तो कल मिलेगा ही, है ना? मिलना तो दिखाई दे रहा है, और इसका सभी का श्रेय जाता है
2: गांव वासियों को
0: और प्रशासन को, प्रशासन को जाता है, और प्रकृति तो है ही है। प्रकृति को आप दे रहे हैं तो प्रकृति भी शांत हो रहा है। आप जब चाहेंगे संकल्प करें बारिश हो तो बारिश होगा ही, लेकिन आप निस्वार्थ से करिए। देखिए आपका एरिया में पानी का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो खुश हो जाएगा। जैसे कोई बच्चा परिवार में माँ बाप को देने के लिए जब माँ बाप मांगेंगे तो नहीं मिलेगा, माँ बाप बोले नहीं बच्चों को पहले खिलाएंगे, तो बच्चे क्या करेगा, ना नहीं मुझे नहीं चाहिए, माँ बाप को खिलाएगा। तो हम भी ऐसे करेंगे तो हमें बहुत कुछ मिलेगा, है कि नहीं? आपको ऐसे लग रहा है ना?
2: हाँ लग रहा है।
0: सज्जन नाम ही कितने सुंदर, सज्जन है ये, दैवी और सज्जन बोलते हैं हम जब जाते आपका नाम लेते, कोई भी महान अनुभव भी दैवी और सज्जन। सज्जन माने श्रेष्ठ जन, आज जनहित में आप काम कर रहे हैं, गांव का हित में कर रहे, सिर्फ केवल का नहीं, कोई भी ग्राम पंचायत का लोग आए जाकर थोड़ा इसे डेवलप करें, मॉडल बनाए, ठीक है? तो हर ग्राम पंचायत में जगह बहुत बड़ा है राजस्थान में, हर ग्राम पंचायत बहुत सारा गोचर जमीन पड़ा है, तो उसको सुव्यवस्थित करना, वाटिका बनाए, है ना? कोई नाम रखे तो शांति की वाटिका, शक्ति का वाटिका,
2: कोई भी
0: पवित्रता का वाटिका, है ना, ज्ञान का वाटिका, ऐसे वाटिका बनाएंगे तो हम तो वाटिका में जाकर पूरा स्वर्ग तो ऐसे आ जाएगा। स्वर्ग में क्या है सर, वाटिका ही वाटिका,
2: वाटिका।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और जाते क्या करना, आपको अचानक आए और सर आपको लेकर आए, हम भी पहला बार आए, तो आप कैसे लग रहा है?
2: अच्छा लग रहा है,
0: अच्छा लग रहा है, ऐसे होना चाहिए,
2: ऐसे
0: बीच बीच में मुलाकात होना चाहिए, ऐसे जो हम कर रहे सब जन जन तक पहुंचे। जैसे इतना पौधा को पानी पिलाए उसके लिए कितना मेहनत करते हैं और कितना लेबर डेली लगता है, मजदूर तो करना, इतना एकड़ जमीन को आप वाटिका को संचालन करने के लिए, देखभाल करने के लिए आप अकेला है, कितना स्टाफ है, कितना जन काम करते हैं?
2: 12 जने हैं अंदर शमशान घाट के अंदर, 12 जने बाहर, जैसे करके 26 लेबर है।
0: इसका काम क्या देते आप?
2: पानी पिलाना है, खड्डे खुदवाना है, खाद पिलाना है, पानी बाबी सिंचाई करवाना है,
0: ये तो बहुत पुनित काम,
2: सफाई करवानी है,
0: पुनित काम है। शमशान का आसपास वो हरा भरा कर दिए, स्वर्ग बना दिए, लेकिन गेट टू वे टू हेवन, स्वर्ग जाने के लिए असली रास्ता इधर है और नर्क है, ये स्वर्ग है। इसे उनको मस्त नर्क में थे भाई, जंजाल में बंधन, अभी बंधन मुक्त हो गए, मुक्ति धाम
2: अब सही हो गया,
0: हम इसे मुक्ति धाम लिखते हैं, मुक्त होगी शरीर से। अभी फरिश्ता होकर ये आसपास के ऊपर आकर ही देखेगा, जब जाएगा वो आ जाएगा, अभी शरीर से आ नहीं पाएगा, बूढ़ा हो जाने में जब शरीर छूटेगा, जब मन बुद्धि यहाँ आ जाएगा, जब चाहे वो आ
2: जाएगा,
0: और ये आसपास को पूरा हरा भरा हो सहयोग करेगा, आपको डर नहीं लगेगा?
2: डर नहीं लगता, डर तो मेरे को लगता ही
0: नहीं है।
2: इसमें सेवा
0: सज्जन भाई व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति कर सकता है, और नाम जैसे उनका माँ बाप को धन्यवाद, इतना सुंदर नाम रखे हैं। और अभी भी उनका माँ बाप है कि ना, चला गए माँ बाप है?
2: पिताजी आर्मी में थे।
0: ओके, इसका फल मिल रहा है, इसलिए आर्मी में है तो इसका पिताजी का असर तो रंग तो लगा होगा। गए हैं,
2: गए।
0: इसकी वाली का ही अपनी राशि, तो आप कुछ नौकरी वगैरह नहीं मिला?
2: नौकरी नहीं मिला।
0: ये नौकरी तो मिल गया,
2: ये नौकरी मिल गई,
0: वृक्षारोपण का नौकरी मिला। नौकरी कोई भी छोटा भी काम करना सबसे बड़ी भी सेवा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, सज्जन जी को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति देने के लिए। और गांव जब भी और ऐसे प्रोग्राम कभी मौका मिलेगा तो आप देंगे, आएंगे तो
2: देंगे,
0: बहुत अच्छा। और कोई श्रोता मित्र आपका गांव को देखने के लिए आएगा, कोई भी किसान बॉय, कोई वाटिका अपना गांव में, कोई पंचायत तरफ से हो चाहे कोई ग्राम वासी, आप जैसे हमारा शंकर जी जैसे आएंगे तो उनको बता सकते हैं, और बुलाने से भी उनको कुछ बता सकते,
2: आदर भाव भी
0: दे सकते। बहुत बहुत धन्यवाद।

अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर। डायल कीजिए 101 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, हम ब्रेक का पहले सुन रहे थे सज्जन जी को और शंकर जी को, जो कि इसी किवली ग्राम के समाज से भी हैं, ऑलराउंडर हैं, जब भी जहां जरूरत पड़ता है सहयोग देते हैं। तो आज रेडियो मधुबन को भी सहयोग दे रहा है और रेडियो मधुबन भी उनको सहयोग, उनका जो काम को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक मंच दिए, उन तक पहुंचाने के लिए, यहां तक पहुंचाने के लिए हमें जो प्रेरणा दी, हमको जो लेकर आए हमारा जो भोपाल राम पुरोहित जी श्रीमान जी, तो उनको भी स्वागत करते इस कार्यक्रम में। पहले से परिचित है लेकिन उनका गाँव में क्या गतिविधि हो रही है तो हमें रेडियो मधुबन को अवगत कराने के लिए हमें यहाँ तक पहुँचाए और सज्जन जी से और शंकर जी से मिलाए हैं और विजिट करने के पश्चात सभी मिले, देखें क्या क्या जो बात आपको सुनाई होती है, हम प्रैक्टिकल देखें। और ऐसे हर ग्राम पंचायत में करते हुए लेकिन कहीं ऐसे यहाँ पर करते हमको मालूम नहीं था, हो सकता हो कोई गांव में भी कोई ग्राम पंचायत में कर क्या होगा, लेकिन हमें सूचना दीजिए बा हमें कॉल करिए और आपका जो एक्टिविटीज, आपका जो कर्म, आपका जो काम जन जन तक हम भी पहुंचाएंगे रेडियो मधुबन। तो इस मंच का माध्यम से हम आपको निवेदन करता हूँ, आप भी भले भले अपना गांव को एक सशक्त बनाइए जिसमें पर्यावरण भी हो, आदर्श गाँव हो, आदर्श वाटिका हो, आदर्श व्यक्ति हो, आदर्श पशु हो, सभी आदर्श हो, रास्ता स्वास्थ्य शिक्षा सब में आदर्श हो, तब जाकर गोकुल गाँव बनेगा। एक का खाली गोकुल गांव बनने के लिए एक का नहीं चाहिए, सभी का सहयोग चाहिए। तो इस कार्यक्रम को सजा निकला हमारा सेवा निवृत्त जो जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल राम पुरोहित जी है, तो किवली निवासी है, अभी सेवा निवृत्त का बाद जनहित में, जन सेवा में, पर्यावरण हो चाहे सभी में तत्पर रहते, तो वो अपना गाँव का जो कार्यक्रम को देखाने के लिए हमें लाए, तो उनको भी स्वागत करते।

0: पानी का टैंक बनाया, जलदाय विकास विभाग से पानी की सुविधा ली और फिर ड्रिप सिस्टम सर लगाया। पौधे हम लेने गए तो वहाँ नर्सरी है, शिव नर्सरी, वहाँ से पौधे परचेज करके इधर उधर घूमे तो थोड़ा सा दिक्कत हुई, लेकिन हम ले आए और ला करके यहाँ पर लगा दिए। और सर वो दिन है कि आज का दिन है, दो लोगों ने शुरुआत की थी वास्तव में, और ला करके वो फिर पौधे लगा दिए, और फिर ज्यों ज्यों वो चीज बढ़ती गई तो फिर वो कारवां इसके अंदर गांव वाले फिर इसमें जुड़ते गए। चार पांच बच्चों की एक कमेटी बना दी जो प्रतिदिन यहाँ पर कभी टैंक बनाते, कभी जो है वाटर हार्वेस्टिंग का जो सिस्टम लगा है उसको लगाते, और वो करते करते धीरे धीरे करके उसको डेवलप किया। तो जो शमशान घाट के अंदर वाली वाटिका है वो इस तरह से गांव वालों के सहयोग से हमने तैयार कर ली। और उसके बाद जब मैं पद पर था तब सरकार के ध्यान में लाया तो ये बाहर की वाटिका है, इसके लिए भी प्रोजेक्ट तैयार हुआ, और ये पूरा सरकार के सहयोग से वास्तव में हमारे गांव वालों ने बड़ा सहयोग किया और उसको बहुत अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया जा रहा है। रही बात यहाँ पर पेड़ पौधों की, एकदम स्वस्थ है और वास्तव में वातावरण बड़ा ही सुशांत है। बच्चे खेलते हैं, शाम को यहाँ पर आकर के बैठते भी हैं। अंदर कई भामाशाह के द्वारा बेंचेस बनाई गई है जो जहाँ पर बैठ करके प्रकृति का जो भी चिंतन, अच्छा ईश्वरीय चिंतन करना है वो कर पाते हैं।
1: जी जी।
0: तो पवित्रा भाई ने जब इसको देखा तो आपने भी इसको संगीतमय बनाने के लिए सुझाव दिया है, तो हमारे ग्रामवासियों के साथ में मिलकर के और ब्रह्मा कुमारी के सहयोग से एक संगीतमय वातावरण बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे, और निश्चित रूप से ही ये जो सपना है वो आपका दिया हुआ सुझाव है वो यहाँ पर साकार हो जाएगा। यहाँ पर पक्षी भी खूब सारे हैं।
1: जी जी।
0: मोर है सर यहाँ पर,
2: उनका घर पोपट आएगा ना,
0: चिड़ियाएं हैं,
2: उनका घर है ये,
0: और इसके दरवाजे पर ही अभी वो निर्माणाधीन है अभी वो पक्षी घर, और भी एक आगे उससे जो जो जो जो पक्षियों के अलावा जो चौपाए जो जानवर है उनके लिए भी दाना दाने की व्यवस्था है। तो इस तरह से पशु पक्षियों के प्रति प्रेम और वातावरण के प्रति ये गांव की सजगता वास्तव में कहीं न कहीं एक मॉडल प्रस्तुत करती है। कहीं न कहीं ये प्रेरणा आप लोगों से ही हमको मिली है, और इस प्रेरणा को लेकर के हर गांव में इस तरह का ये सिस्टम डेवलप किया जा सकता है। जहां पर मैं पर्यावरण से संबंधित बात करता हूं कि इस तरह की पर्यावरण वाटिका प्रत्येक गांव के अंदर होना आवश्यक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए होना है। और समुदाय वहां बैठेगा तो एक दूसरे के प्रति प्रेम भी तो बढ़ेगा। तो इस तरह से प्रत्येक गांव में, प्रत्येक पंचायत में इस तरह की अगर वाटिका हो जाए, जिसको समय समय पर हमारे क्षेत्र के उपखंड अधिकारी, जिला कलेक्टर महोदय भी दौरा करते रहते हैं, मैं तो चाहूंगा कि इस मॉडल को कहीं और भी, अन्य गांव में भी इस तरह के काम हुए हैं, जैसे अनादरा में है और कहीं हमने सुना है वहाँ काम तो हुए है, लेकिन इस तरह से खड़ात में हुए ना सर, खड़ात में इस तरह
2: मोडू में भी मैंने गया था, देखा है मोडू भी चल रहा है, थोड़ा सा
0: मोडू में जैसे चल रहा है। तो सर हर गांव में होना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हर गांव में, और ये नरेगा वाले भाई बंधु करते
2: हैं, उसको सहज
0: सहज तरीका है। जैसे हमारे यहाँ पर एक भाई है ये सज्जन सिंह जी, ये दिन रात इसको देखते हैं भाई साहब, शाम को भी, दिन अस्त होने के बाद मैं खुद भी आता हूँ, दिन अस्त होने के समय मैं एक चक्कर काट के जाता हूँ, भाई भी आते हैं। तो इस तरह से ये अगर हम देखेंगे तो हर एक गांव में इस तरह की वाटिका डेवलप होगी तो पर्यावरण का जो नुकसान हुआ है ये वापस हम उसकी भरपाई कर पाएंगे, तो प्रकृति हमको सहयोग देगी। तो हर एक गांव में ये होना चाहिए।
1: जी जी।
0: तो इससे ऑक्सीजन भी मिलती है और भी तरह की सुविधा होती है। वही बात मैं बताता हूँ पर्यावरण पर हमेशा की, एक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए भी मैं बात करता हूँ अक्सर की, यहाँ पर भी सर गांव का सूखा और गीला कचरा
2: कर सकते प्लांट
0: नहीं करते हैं सर, करते हैं ये ट्रैक्टर से आता है, अब जो भी है पंचायत इसमें सहयोग कर रही है, लेकिन इसका छोटा प्लांट
2: चाहिए ना, खाद भी चाहिए, तो खाद तो मिल जाएगा इधर,
0: खाद मिल सकता
2: उसी
0: है
2: उसी प्लांट से,
0: बिल्कुल सर वो हाँ उसी प्लांट से, वो जो है ना उसका गीला कचरा अगर अपन ढंग से उसको मिट्टी में डाले तो वरना उसका खाद बन जाएगा, तो खाद बनेगा तो वो खाद यहाँ पर काम आ सकता है, तब ये इन पर भी एक अच्छा ग्रोथ में भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, फल वगैरह भी प्राप्त
2: सब हो सकता है, लेकिन हमारा जो अंदर में देने का भावना हो तब जाकर निस्वार्थ भाव से हो, मन बुद्धि उसमें लगा रहे तो अपना सोचकर, कोई दूसरे का नहीं, मेरा है खुद का ये सोच
0: के। हम सब यही सोचे तभी जाकर,
2: एक व्यक्ति ये मेरा है जैसे
0: तब ही जाकर के
2: आप और हम सोचे ये हमारा है, तो हम सभी लोग हमारा सोचेंगे, मेरा सोचेंगे तो अपनापन आएगा, अपनापन आएगा तो देने के लिए 5 घंटा देगा, 7 घंटा देगा।
0: जी हाँ जी हाँ, और ऐसा सोच करके इस गाँव के लोग काम के लिए तत्पर
2: तो हुआ नहीं, तो
0: कर भी रहे,
2: दूसरे काम
0: कर भी रहे,
2: क्यों कारण यही हुए,
0: तो दूसरे गाँव भी करे। मेरा तो यही संदेश है कि सभी गाँवों में एक वाटिका होनी ही चाहिए और हर पंचायत उसको डेवलप करे।

0: पंचायत में जमीन भी है,
1: जमीन भी है,
0: ग्राम पंचायत का जमीन है,
1: नरेगा के काम वाले लोग भी है, गांव के भामा साहब भी है, सब गांव में जितना हो सके उतना
0: पेड़ पौधा भी सरकार दे रहा है,
1: उतना कीजिए जितना हो सके।
0: अपन जो सरकार कर रहा है तो इतना पौधा भी आपको दे रहे हैं,
1: दे रही है सरकार, दे रही है
0: सरकार, दे रहे नहीं तो कोई भामा साहब भी देते हैं,
1: देते हैं, देते हैं।
0: जैसे ब्रह्मा कुमारी 5,000 5 लाख में 1 लाख पौधा लगाने के लिए जब मुहिम चलाया,
1: बिल्कुल
0: आपका गांव देंगे तो हम दे देंगे,
1: बिल्कुल बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मिल सकता है, सब चीजें सहयोग मिलता है,
0: सबसे ब्रह्मा कुमारी
1: मिलता
0: हर जगह में लगाए, लेकिन ये चीज नहीं हो पा रहा है। इतना देने के बाद केयर टेकर नहीं करेंगे, उसको देखभाल नहीं करेंगे तो मर जाता है, इसलिए हर साल हम देते हैं।
1: ये केयर टेकिंग से ही हुआ है सर,
0: नहीं तो
1: केयर टेकिंग से ही हुआ है, ये देख रहे हैं, देख रहे हैं, इसलिए हुआ है।
0: भट्टी का बाउंड्री बनाइए आप, यहाँ पर बड़े निश्चिंत, यहाँ पर बाउंड्री है
1: सर। सर निवेदन करो सर, ये तो बाढ़ लगाई थी, बाउंड्री तो बहुत बाद में बनी है,
0: जो
1: सर ये डेवलप होने के बाद बाउंड्री बनी है, बाकी यहाँ तो बाढ़ थी, कांटों की बाढ़ से इसको संरक्षित किया। ये पूरा एरिया सर
0: ट्री गार्ड होना चाहिए, बाढ़ होना चाहिए, वो भी वो खाली रहेगा तो मेरा कहने का मतलब
1: सही,
0: वो आवश्यकता है।
1: तो ये सर लोगों का विचार ही था जो ठीक है,
0: हाँ, हाँ, हाँ, इसलिए क्या करेंगे, इसलिए तो इसे पूरा बाउंड्री हो जाएगा, तो मैंने चाहे लकड़ी का हो, झाड़ का भी,
1: जैसा भी है जैसा
0: तो करेंगे तो थोड़ा सेफ्टी है, इसका बाद में तो उस पेड़ को उठा कर भी ले लेंगे अपने जगह में।
1: तो प्रभु हरेक गांव के अंदर ये होना चाहिए, हमारा तो ये सोचना है, इस मॉडल को
0: हर गाँव में
1: आवे और देखे,
0: जैसे भोपाल राम जैसा शंकर जैसा आदमी है ही, ऐसे नहीं है
1: सब जगह,
0: लेकिन है
1: सब जगह,
0: लेकिन उसको थोड़ा सा जैसे इस माध्यम से वो सुने और आगे बढ़े, और हम तो सबका सहयोग देंगे लेंगे और जरूर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, हुआ है पड़ा है, लेकिन आपको एक कदम निकलना पड़ेगा, और नहीं तो यहाँ पर आकर देखिए आसपास आपका गांव किवल्ली है, ये ब्रह्मा कुमारी संस्था है, मानसरोवर है, आनंद सरोवर है, यहाँ पर तपोवन है, और आगे जाएंगे तो आपको मेरा गुलजार पार्क कभी लेकर जाएंगे सर, इतना सुंदर खेती हुआ है इस नदी का किनारे में,
1: जी जी,
0: क्या प्लांटेशन किया, वेराइटी केला, केला का जो पेड़ लगाए हैं, आप देखना अमृत वेराइटी, आम वेराइटी,
1: तो
0: सब जगह मतलब यूं क्यों नहीं होगा, यही जमीन है,
1: यही जमीन है, क्यों नहीं होगा, यही पानी है और यही
0: हो जाएगा, लेकिन क्या है थोड़ा सा निस्वार्थ भाव से और प्रकृति के साथ प्रेमी बनकर करेंगे तो
1: निश्चित रूप से होगा।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद, और जाते जाते सर को धन्यवाद, सभी को नाम का साथ, शंकर जी, सज्जन जी और भोपाल राम जी तो है ही, भोपाल राम जी जो कि हमारा स्थित है और
1: पर्यावरण
0: में करते हैं, और हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे कल और किसी बात को लेकर, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अच्छा सभी को नाम का साथ
1: धन्यवाद, धन्यवाद सर,
0: आभार, कीमती समय निकाल कर हमारा कार्यक्रम को सुंदर में सजाए, ऐसे मौका हमें दीजिए और हम आपका गतिविधि को जन जन तक पहुंचाने के लिए तत्पर रहेंगे।

0: नमस्कार, आप सुन रहे ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत है। संगीत एक ऐसी सर्व इंद्रिय सुखानुभूति है जो मानव मन के अंदर में धीरे धीरे प्रस्फुटित होता है। जैसे सागर की गहराई में जितना जितना जाएंगे तो ढेर रत्नों का खजाना मिलता है, वैसे ही संगीत के सागर में जितनी गहराई में हम जाते रहेंगे तो सुर के रत्न भी मिलते हैं जो कभी भी कम नहीं होता है। संगीत रहस्यपूर्ण भी होता है। एक संगीत पिपासु की कभी भी कितना भी सुनने के बाद न दिल भरता है और प्यास भी बढ़ती रहती है, कितना भी सुनने और उसको सीखने की आश बनी रहती है। तो आइए, इसका रहस्य क्या है ये जानने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ मौजूद है श्यामली जी, उनसे ही आज जानते हैं इसका रहस्य। तो हम पहले उनका स्वागत करते हैं। श्यामली जी, संगीत की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: मैं भी दिल से सबको नमस्कार करती हूँ।
0: श्यामली जी, हमने कहा कि एक संगीत पिपासु जो संगीत सीखता है और उसको अपनाता है, उसके बाद भी उसकी हमेशा ही प्यास बनी रहती है और सीखे और उसको अपनाए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
1: हाँ जी, ये जैसे इंसान की प्रेम होता है
0: जी,
1: जब आपस में प्रेम होता है कभी वो प्रेम कभी बुझते नहीं, प्यास बढ़ती जाता है बढ़ती जाता है। तो संगीत भी ऐसी चीज है, संगीत बिना जिंदगी एकदम सुना सुनापन
0: जी।
1: अब देखिए, जब नींद नहीं आते हैं संगीत सुनो नींद आ जाते हैं, कभी बच्चा रोते है उसको थोड़ा संगीत सुनाओ वो एकदम हंसते रहे। तो इसमें जो प्रेम है, जो संगीत को जो प्रेम करते हैं उसको तो प्यास बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। मैं भी एक संगीत प्रेमी नहीं, इसलिए मैं अनुभव से बता सकती हूँ। संगीत ऐसा चीज है कि वो सीखते सीखते भी मैं सोचती हूँ और भी सीखना चाहिए,
0: मैंने इससे दिल कभी भरता नहीं,
1: दिल कभी भर नहीं होता। जो सेटिस्फाइड हो जाते सोचो वो खत्म हो गया।
0: अच्छा,
1: मतलब कुछ भी शिक्षा लेने के बाद अगर सेटिस्फाइड हो जाते मतलब और आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
0: जी,
1: लेकिन जब तक प्यास बुझ जाए तो आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन प्यास जब तक रहेंगे तब तो सीखते रहेंगे और भी जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं।
0: सीखने के लिए हमको पूरा नहीं होना चाहिए,
1: जो हम जान सकते हैं लेकिन तब भी आ जाना
0: जी।
1: हम जान सकते उसको जैसे है ना, तो अभी भी रहस्य है उसके अंदर और क्या है। कोई नए राग या रागिनी हम सीखते हैं, हम सोचते हैं इसमें क्या नया कुछ है
0: जी,
1: ये तो रहस्य है। कोई भी फिल्म देखो, आपको तो मालूम नहीं हो फिल्म क्या है, रहस्य है। अगर उसके बाद पता लगे, जानने के बाद सुनने के बाद देखने के बाद पता लगता है कि ये फिल्म ऐसी है। तो संगीत भी ऐसी चीज है कि वो भी रहस्यपूर्ण है,
0: जानकर अनजान बनकर उसको सीखते रहो।
1: हाँ जी
0: जी। श्यामली जी, आज आप कौन सा राग लेकर आए हो?
1: आज जो राग है बहुत सुंदर राग है, नाम है तिलक कामोद।
0: तिलक कामोद।
1: अच्छा, जैसे कि हमने पहले एपिसोड में देश राग सिखाया था
0: जी।
1: हाँ, देश राग जैसे है इसके साथ बहुत कुछ मिलता जुलता है।
0: ओके।
1: खाली इसको चलन जो है अलग है। जैसे देश राग भी खंबा स्टार्ट की है, तिलक कामुद भी खंबा स्टार्ट की है। इसको वादी स्वर जो रे है, समवादी पा है। तिलक कामुद में भी वादी स्वर रे है, पा समवादी है, केवल जो कभी कभी इसको सा भी वादी स्वर कह सकते हैं।
0: अच्छा।
1: इसका जो चलन है जाने का, जैसे देश राग की औरव संपूर्ण जाति का है और ये है सारव संपूर्ण या संपूर्ण संपूर्ण।
0: ओके।
1: हम बताएंगे कैसे होता है तब जाके पता लगता है, क्योंकि जाने के टाइम सारव संपूर्ण, इसलिए जाने का टाइम नी नी यूज होता है। नी, अच्छा, इसमें सब सर शुद्ध है, कोमल नी नहीं है, लेकिन देश राग में तो कोमल नी है ना। अच्छा। तो उसमें सौंदर्य जड़ता था वो कोमल नी में, जाने के टाइम शुद्ध नी, आने के टाइम कोमल नी, जैसे खंबा स्टार्ट किया है। लेकिन तिलक कामद में भी ऐसे नहीं है। तो लेकिन इसका जो चलन है गा जो है वक्र। हाँ, तो मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कि इसका समय जो है एक ही है, रात्रि दूसरा पहर है, रात की दूसरा पहर 9 से 12, देश राग की भी 9 से 12 है। तो इसलिए ज्यादा से आप सुनोगे तो सोचोगे कि ये देश राग के जैसे मिलते जुलते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका प्रकृति भी चंचल प्रकृति का है, आरोहण अवरोहण पकड़ करके सुनाते हैं
0: जी। ओके? जी।

0: इसमें भी स्तर ज़्यादा से ज़्यादा मंद्र स्वर या मध्य स्वर में ज़्यादा होता है, ज़्यादा तार स्वर में नहीं होता है। जैसे देश की तार स्वर में ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं होता है।
1: ये डिफरेंस है,
0: डिफरेंस है, थोड़ा चलन के अलग है।
2: अच्छा,
0: तो ये है, हमने आरोहण अवरोहण पकड़ किया है, समझाया। तो आप ही क्या करते हैं, थोड़ा स्वरलिपि देते हैं
1: जी,
0: अगर लिसनर जो है किताब पेन से लिख लेते हैं तो अच्छा है। ठीक है, तो ये जो ताल जो है तीन ताल की है, फाग से शुरू होता है। रे गा रे पा मा गा रे नी सा, ये जो नी है नीचे नी मंद्र सर की है, फिर से नी पा नी सा सब मंद्र सर की है, रे गा नी सा ये मंद्र सर की है, रे गा रे पा मा गा रे नी सा नी पा नी सा रे गा नी सा। नेक्स्ट लाइन, रे मा पा धा मा पा सा सा, ये जो सा है तार स्वर की है, पा धा मा मा गा रे गा रे नी सा, ये जो नी है मंद्र सर की है। फिर से बोलती हूँ, रे गा रे पा मा गा रे नी सा नी पा नी सा रे गा नी सा, रे मा पा धा मा पा सा सा पा धा मा मा गा रे गा रे नी सा। तो हम ये करके सुनाते हैं
1: स्वरलिपि।
0: हाँ, स्वरलिपि स्थायिका।
1: श्यामली जी, स्वरलिपि की बातें हम ब्रेक के बाद करेंगे, उसके पहले ले लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक और हमारे श्रोता मित्रों को सुनाते हैं एक सुंदर सा तिलक कमोद के संबंधित एक मीठा सा गाना। आप सभी श्रोता मित्रों इसका आनंद लीजिए और हम फिर लौटते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: पुनः आप सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने तिलक कमोद राग के बारे में श्यामली जी से सुना, उसकी स्वर लिपि, और आगे हम बढ़ रहे थे कि हमने आपको एक प्यारा सा गीत भी सुनाया। श्यामली जी, आपका भी संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। आगे आप क्या सुनाना चाहेंगे?
1: हाँ, अभी स्वर लिपि तो आपने दे दिया है, तो वो करके सुनाते हैं।

0: हमने स्थाई का दे दिया। अभी अंतरा जो होता है तो अंतरा में थोड़ा थोड़ा अलग से है कि इसलिए कि सोम से शुरू होता है।
1: अच्छा,
0: बंदिश का जो चलन है इसमें सोम से सुता है। जैसे रेगा रेपा हमने फाक से शुरू किया है तो उसके बाद क्या करेंगे, रेगा रेपा मा गाड़ी नीसा तक करेंगे, उसके बाद हम अंतरा शुरू करेंगे। ठीक है, तो लिसनर स्वर पे लिख लेते हैं तो अच्छा है। मामा मामा पापा नीनी सासा नीनी सासा नीसा, ये जो सा है तार स्वर की है और नी जो है मध्य स्वर की है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन रे रे सारे जो है सब ऊपर की है, तार स्वर की है। रे रे सारे गा नी सासा, गा जो है ऊपर की है। पानी सारे ऊपर की है। नीसा आपा पा धा मामा गरे गरे नीसा, फिर से बताती हूँ। मामा मामा पापा नीनी सासा नीनी सासा नीसा, रे रे सारे गा नी सासा, पानी सारे नीसा आपा पा धा मामा गरे गा नीसा। ठीक है
1: जी,
0: मैं करके सुनाती हूँ।

0: ये बंदिश थोड़ी सी लंबी थी ऐसा लग रहा है।
1: नहीं ऐसे लंबी नहीं है, खाली 8 मात्रा ज्यादा है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि हमने क्या किया, वो जो 8 मात्रा मुखड़ा किया है उसके बाद अंतरा थोड़ा 8 मात्रा ज्यादा किया है। इधर 8 मात्रा ले लिया, उधर 8 मात्रा और भी दे दिया, मतलब कि 16 मात्रा कंप्लीट हो गया। हमारा जो करना है 3 ताल के अंदर करना है, 16 मात्रा के अंदर करना है। अगर ऐसे करते तो 16 मात्रा के अंदर आ जाते हैं। 8 मात्रा अगर स्थाई का मुखड़ा करते हैं, स्थाई का कर लेते हैं, उसके बाद 8 मात्रा जोड़ देते हैं
0: जी,
1: अंतरा की 8 मात्रा एक्स्ट्रा है जोड़ देते हैं। फिर हम जाके वो जैसे सागर में नदियां मिलते हैं, इसे अंतरा की लास्ट लाइन में जाके फिर स्थाई से मिल जाते हैं। तो इसमें अगर आ सहयोग में करेंगे, पहले तो नया राग है ना, थोड़ा चलन भी अलग है, बहुत सुंदर राग है, तो थोड़ा इसमें ना ज्यादा शास्त्रीय संगीत नहीं बनती है।
0: अच्छा।
1: ज्यादा भजन गीत मॉडर्न सॉन्ग या कुछ होता है, तिलंगा मध में ठुंगरी भी हो सकता है, बहुत सुंदर राग है। मॉडर्न सॉन्ग भी ज्यादा होता है, भजन भी होता है, बहुत सुंदर भजन भी है।
0: आपने कहा ना कि ये तो चंचल प्रकृति का राग है,
1: प्रकृति का है, बहुत सुंदर राग है,
0: इसीलिए मॉडर्न सॉन्ग हो सकता है।
1: नेक्स्ट एपिसोड में हम बंदिश करेंगे, तब जान जाओगे कितना सुंदर है राग।
0: जाते जाते श्यामली जी, आज आप हमको क्या सुनाने वाले हैं?
1: आज हमने बहुत सुंदर एक गीत है, उस्ताद रशीद खान साहब की है।
0: अच्छा।
1: बहुत सुंदर उनका जो कंपोजिशन था, गीत गाए हुए थे, मैं कोशिश कर सकती हूँ। आओगे जब तुम ओ सजना, बहुत सुंदर है। ये तिलक कामत के ऊपर राग आधारित है, उन्होंने बहुत अच्छा से पेश किए हैं
0: जी,
1: तो हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है
0: जी।

0: वाह, सच में प्रकृति में भी फूल खिल गए, कुदरत का नजारा बदल गया।
1: अस्ता जी, जैसे पेश किया मैं तो कोशिश किए हैं, शायद कुछ गलती हो जाए तो ऑडियंस सुनते हैं ना, ये हमने जो गीत हमने कोशिश किया है हम पंडित जी को अर्पण किया है
0: जी, जी।
1: क्योंकि हमने बहुत बार सुने हैं, उसके प्रोग्राम भी अटेंड किए थे।
0: अच्छा,
1: हम नहीं सीख पाए उनके पास, लेकिन इतना अच्छा उन्होंने निभाया है ये गीत, मैं तो सोच रही हूँ मैं एक अंश कर सकती हूँ।
0: क्यों, ये कलाकार सारे सच में,
1: हाँ जी,
0: उन्होंने इतनी मेहनत और अपनी लगन से
1: इतना, उसको भैंस में मिठास ना
0: जी,
1: आप सुनने के बाद आपको नींद आ जाएंगे। तो गीत ये सुन लिया ना
0: जी,
1: कितना सुंदर गीत का जो भाव जो है, भावना
0: बहुत सुंदर। श्यामली जी, इसी के साथ समय देता है हमको इजाजत, हम पुनः मिलेंगे अगले हफ्ते संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। श्रोता मित्रों, आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कुछ पूछना चाहते हो संगीत से संबंधित, तो आप हमें तुरंत कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 94-1415-1415। फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा नंबर है 9414151415। फिर मिलेंगे, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4।

नमस्कार, मैं हूं बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

आसमान में छाए हैं काले बादल, सूरज आंख में चोली खेल रहा है और हवा ऐसी चल रही है मानो अपने साथ उड़ाकर ही ले जाएगी। ओह, आप सोच रहे होंगे कि खिड़की के बाहर तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, आखिर ये मौसम के गलत थलत हाल क्यों बताए जा रहे हैं हमें? तो जी, मैं आपको बता दूं कि ये मौसम की जानकारी नहीं बल्कि एक घर का हाल है। जी हाँ, ऐसे घर का जहाँ लोगों का स्वभाव ऐसा है जैसे सर्दी गर्मी बरसात पतझड़ एक साथ रहते हों, और जज्बात ऐसे कि सूरज को पश्चिम से उगा दे और तारों को दिन में दिखा दे। यहाँ रोज होते हैं नए नए किस्से, गुस्सा, प्यार, हंसी मजाक, सब कुछ भरपूर है। यहाँ बातें होती हैं हवा में, इसलिए ये घर है ऑन एयर। मिलिए राजस्थान के राठौड़ परिवार से। आज जब सब न्यूक्लियर परिवार के ढांचे में ढल चुके हैं, वहीं राठौड़ परिवार में रहते हैं 16 सदस्य साथ साथ।

0: चंद्रावती राठौड़ से, जो बात बात पे नाक चढ़ाती हैं, खबर ये सब की रखती हैं, पल में तोला पल में माशा पल पल में रंग बदलती हैं।
1: ठीक है लगाता हूँ।
2: अरे मैंने बोला ना यार, उसमें नहीं लगाने पैसे, इसमें लगा।
3: पैसे लगाना मतलब सट्टा। आजकल के बच्चे ना शर्म है ना संस्कार। क्या कर रहे हो तुम लोग ये हैं जी? ये सट्टा वट्टा इस देश को बर्बाद कर रहा है
2: अंकल। हम
3: देखो, तुम युवा पीढ़ी हो, तुम्हारे ऊपर अपने देश की जिम्मेवारी है।
1: अंकल हम
3: आदर्श ये कहते हैं कि मानव को सदा सच्चा धन ही कमाना चाहिए, झूठा धन समृद्धि नहीं लाता है।
2: ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं अंकल जी?
1: अरे ताऊ जी हैं ये राठौर परिवार के, एक बार को प्लेन को भी ब्रेक लग सकता है लेकिन इनका ब्रेक।
4: अजी सुनते हैं, जल्दी आइए, आपके कॉन्स्टिपेशन की दवा आ गई।
3: अरे आ रहा हूँ, क्या तुम सबके सामने बोले जा रही हो?
4: झूठ बोलूं तो मिर्ची खाऊं, मैं तो इनकी चिंता कर रही थी। अब मेरे अलावा इस घर में है ही कौन जो इतना ध्यान रखे किसी का। ये बहू को देखो, बाप समान जेब की कोई फिक्र ही नहीं है, लगी हुई है टीवी देखने।
0: अगर कोई आपसे कहे कि चलता फिरता रेडियो देखा है, तो आप उसे एक बार ताई जी से जरूर मिलवा दीजिएगा। कभी ताने कभी गम, इनका तो बस यही नारा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं राठौड़ परिवार की दो बहनों से। बड़ी बहन है रागिनी, ये फेमिनिज्म के राग अलापती है। छोटी बहन है शांति, लेकिन असल में जिनसे शांति कोसों दूर भागती है।
5: आज तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं, मुंह काला करके गधे पे घुमाएंगे। अरे पत्नी पे हाथ उठाना ये कोई आम बात नहीं है। जिस दिन सारी पत्नियां जाग गई ना, देखना इन मर्दों की तो खैर नहीं। चलो कल सुबह अनशन पर मिलती हूँ।
6: फिर से सुबह सुबह शुरू हो गई। दीदी थोड़ा चिल करो, हिंसा तो आप मेरी नींद पर कर रही हो। थोड़ा सोने दो ना, मेरे डार्क सर्कल्स हो जाएंगे। मुझे आज पार्टी में भी जाना है।
7: शांति शांति शांति शांति।
6: क्या हुआ माँ, सुबह सुबह मुझे क्यों बुला रही हो?
7: अरे मैं भगवान को बुला रही हूँ, तुझे नहीं। और आंखें खोल, 8 बज गए हैं। क्या कुंभकर्ण की तरह सोई हुई है? ओ राम राम राम राम, माफ करना प्रभु माफ करना, मैंने आपको याद करते करते अपने मुख से राक्षस का नाम ले लिया। माफ करना भगवान माफ करना, आज ही मंदिर जाके पूरे 2 नारियल चढ़ाऊंगी प्रभु।
0: चलिए बढ़ते हैं अब आगे और मिलवाते हैं आपको राठौड़ परिवार के सबसे छोटे भाई किशन राठौड़ जी से। बच्चों के साथ ये बच्चे बन जाते हैं, छोटे हैं पर बड़ा शायराना मिजाज रखते हैं। मनमौजी हैं थोड़े थोड़े से हैं जिम्मेदार, जिंदगी के पेचीदा मसले इनकी कलम से सुलझते हैं।
8: अंधेरे बाहर हो तो मंजर, अंदर तलक आए तो गम है। जिंदगी की तस्वीर में मुश्किलों के भी अपने रंग हैं।
9: चाचू लिखा तो बहुत अच्छा है आपने, लेकिन
8: लेकिन क्या?
9: लेकिन बात कुछ समझ नहीं आई।
8: कोई बात नहीं बेटा, जीवन है, जीवन में सब कुछ समझ नहीं आता। ये बताओ कल जो टेबल याद कराई थी वो तो भूल नहीं गया ना?
9: नहीं चाचू, आपने गाने में गा के सिखाई थी ना, कैसे भूलूंगी। लेकिन एक बात बोलूं प्लीज?
8: बोल बेटा बोल।
9: ये कविताएं आप किसी अपने उम्र वालों को क्यों नहीं सुनाते हो? हम बच्चों को क्यों सताते हो?
8: अच्छा बेटा रुक, अभी बताता हूँ।
9: अरे चाचू मैं जा रही हूँ।
0: बचपन किसी पौधे की तरह होता है, अगर शिक्षा की खाद और स्नेह का पानी न मिले

0: तो ये पनप नहीं पाता। जहां इतने बड़ों का हाथ सर पर हो, वहां तो ये हंसी खुशी लहराएंगी ना। अब मेरी बात पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बामुलायजा होशियार पधार रही हैं राठौड़ परिवार की राजकुमारी, मतलब राठौड़ परिवार की मंझली बहुरानी राजकुमारी जी, जो भोली भाली हैं दिल की पर रहती हैं थोड़ी अस्त व्यस्त, किचन के बर्तन भी डरते हैं इनसे, देती हैं उन्हें इतना कष्ट। और साथ में आपको मिलवाते हैं घर की सासू माँ यानी अंबिका देवी राठौड़ से, जो सबका रखती हैं ख्याल, पर इनके ख्याल कभी कभी करते हैं सबको हैरान।
1: ये बर्तन किसने बनाए? अब कटोरी इतनी गोल कि हाथ से सरक जाए और थाली इतनी चपटी कि हाथ पकड़ ही न पाए। किसी का बुरा ना बोलूं, चल राजकुमारी फिर से सारा काम कर।
2: राजकुमारी क्या कर रही है, आराम से कर।
1: हाँ ठीक है माँ साहब, बस खाना तैयार है, लेके आई बस।
2: बेटा राजकुमारी, दाल में इस बार नमक ही डाला है ना?
1: हाँ माँ, इस बार तो चीनी का डब्बा ही खाली हो गया ना, तो पक्का नमक ही डाला है।
0: आई नो आप लोग यही आशा कर रहे होंगे कि खाने में नमक ही पड़ा हो, वरना खाने वालों का तो भगवान ही मालिक है। चलिए अब आपको मिलवाता हूँ घर के सबसे बड़े व्यक्ति यानी राठौड़ परिवार के पिताजी श्री भगवत सिंह राठौड़ जी से, जो हैं ज्ञानी, धैर्य है इनकी निशानी, दुनिया के किसी भी मुद्दे पर सुना सकते हैं ये एक न एक कहानी। और साथ में मिलिए इनके मंझले बेटे यानी वीरेंद्र सिंह राठौड़ जी से, जो वक्त के हैं पक्के, करते हैं सबका सम्मान, नई टेक्नोलॉजी से जूझते हैं। इनके जोक्स को तो करता हूँ मैं भी सलाम।
3: श्री ये बताओ कि मौसम का हाल कैसा है? अरे बोलो श्री। अब क्या तुमको श्री श्री महाराज बोलूं तब जवाब दोगे?
4: डैड व्हाट हैपेंड?
3: अरे ये श्री जवाब ही नहीं दे रही।
4: ये श्री कौन है डैड?
3: अरे ये फोन में होती है, हमारे ऑफिस में आज हमने देखा था, वो सौरभ अपने फोन से बात कर रहा था कि श्री ये बताओ वो बताओ, तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करूं।
4: अरे डैड वो श्री नहीं सीरी है, और वो महंगे वाले फोन में होता है, आपके वाले बजट फोन में नहीं।
3: ठीक है पढ़ाई करो जाकर, वरना बड़े होकर ये बजट वाला फोन भी नहीं खरीद पाओगी।
5: अरे ये फोन क्यों खरीदेगी, मैं दिलाऊंगा ना इसको मेरी प्यारी पोती को।
3: पिताजी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, इसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाऊंगा मैं।
5: हाँ भाई बिल्कुल बने, आखिर भगवत सिंह राठौड़ की पोती जो है, बच्चों को प्यार और शिक्षा के बैलेंस से बड़ा करो तो वो जीवन में सफल भी होंगे और अच्छा इंसान भी बनेंगे।
3: जी पिताजी, बच्चों के सर पर माँ बाप के साथ साथ दादी दादा और बड़ों का साया है, तो फिर मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। चलो आ जाओ बच्चों, आज दादाजी तुम सब के लिए मालपुआ लाए हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
0: देखिए भाई, सारे परिवार के सदस्यों से तो मैंने आपको मिलवा दिया, अब ये कौन आया है गेट पर, आइए चलिए देखते हैं।
6: मैडम 50 पिज्जा की डिलीवरी है आपके घर।
3: 50 पिज्जा किसने मंगाए?
7: राजकुमारी।
3: राजकुमारी
8: राजकुमारी राजकुमारी।
1: अरे मैंने कुछ नहीं किया।
9: हाँ हाँ, इल्जाम हमेशा एक औरत पर ही आता है।
1: वाओ पिज्जा, मजा आ गया।
10: ये विदेशी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हो तुम लोग, दाल बाटी चूरमा खाओ, ये क्या लगा रखा है पिज्जा?
11: बच्चों रुको, लाओ इधर लाओ पिज्जा, ये हमने नहीं मंगवाए भाई साहब।
10: कौन मंगवाते रहे?
11: अरे फिर मंगवाया किसने?
12: मुझे
11: रहते हो
9: भाई,
11: नहीं वापस कर दो उसको।
12: नहीं नहीं नहीं नहीं, मेरा वाला पिज्जा तो वापस नहीं जाएगा।
10: नहीं नहीं, कोई पिज्जा नहीं रहेगा यहाँ पर।
0: अब इतने सारे पिज्जा का क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात जरूर पता है कि इस परिवार से मिलके आपको बहुत मजा आने वाला है, खुशी नोक झोंक प्यार की मिठास और अनबन का तड़का भी है। राठौड़ परिवार में सब कुछ मिलेगा आपको। अब जिस घर में इतनी वैरायटी है लोगों की, सोचिए किस्सों की कितनी होगी। जीवन के हर रंग को लेकर अगले एपिसोड में फिर लौटेगा कार्यक्रम घर ऑन एयर, सिर्फ रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, 107.8 की फ्रीक्वेंसी पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
13: घर ऑन एयर, पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौर, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौर, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौर, आरजे श्रीनिधि। ताऊजी गजेंद्र सिंह राठौर, आरजे रोहित। ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौर, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौर, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौर, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौर, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी, अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित। आशा करते हैं घर ऑन एयर का पहला एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा। इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का, क्योंकि राठौड़ परिवार की कहानी तो अभी बस शुरू ही हुई है। रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: करते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन 90.4।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।

ओम शांति। आज 20 जुलाई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहते, बच्चे पुकारते हैं कि हे पतित पावन, आओ आकर हमें पावन बनाओ। पतित पावन बाप इस संसार में साधारण मनुष्य तन में आते हैं। वही ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर और शांति का सागर है। ये बाप की महिमा है। तो बाबा कहते, बाबा आकर के हम बच्चों को ज्ञान सुना करके पवित्र बनाते हैं। साथ ही साथ बाबा कहते, बच्चे जितना तुम मुझे याद करोगे तो याद से ही आत्मा में जो खाद पड़ी है वो निकलती जाएगी। इसलिए याद की मेहनत बच्चों को करनी है। तो बाबा कहते, तुम बच्चों को पतित से पावन बनने के लिए ज्ञान और योग में मजबूत होना है। दूसरी बात बाबा कहे, बच्चे तुम ब्रह्मा मुखम शावली ब्राह्मण चोटी हो। सदा इसी नशे में रहना है कि हम ही सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण है और ब्राह्मण ही शिव बाबा के वर्षे के अधिकारी है, क्योंकि हम शिव बाबा के पोत्रे हैं। तो इसीलिए बाबा कहे, तुम्हें सदा ये नशा बना रहना चाहिए कि हम कौन है। एक तो ऊंचते ऊंच ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, दूसरे शिव बाबा के पोत्रे हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बेगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की राजाई मिलती है। आज की मुरली से प्रश्न है, इस पाठशाला का कौन सा पाठ तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता है? उत्तर है, तुम इस पाठशाला में रोज यही पाठ पढ़ते हो कि हम शरीर नहीं आत्मा है। आत्मा का पाठ रोज पढ़ते हैं। आत्म अभिमानी बनने से ही तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हो। इस समय सब मनुष्य मात्र पुजारी अर्थात पतित देह अभिमानी है, इसलिए पतित पावन बाप को पुकारते रहते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाओ रे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि यह ओम शांति किसने कहा? किसने कहा ओम शांति? कौन से बच्चे? आत्माएं जानती है कि ओम शांति किसकी आत्मा ने कहा? परम पिता परमात्मा ने कहा। बच्चे जानते हैं मनुष्य की आत्मा ने नहीं कहा, यह परम पिता परमात्मा शिव ने कहा। वह सभी का बाप ऊंचे ते ऊंचा है। अब गीत में सुना, भारत पर बहुत माया का परछाया पड़ा हुआ है, बहुत पतित बन गए हैं, इसलिए पुकारते हैं ये हे पतित पावन, फिर से आओ पावन बनाने। आत्मा ही बुलाती है। किसको बुलाती है? आत्मा ही बुलाती है अपने बाप को, जिसको भगवान कहते हैं। कहते हैं वही पतित पावन है। एक की ही महिमा होती है। वह है सभी आत्माओं का बेहद का बाप। यहां सब पतित बन गए हैं तब पुकारते हैं हे परम पिता परमात्मा। सभी मनुष्य आत्माएं पुकारती है हे पतित पावन, हे परम पिता परमात्मा। वही ज्ञान का सागर भी है, पतित पावन भी है, वह पिता भी है तो शिक्षक भी है, क्योंकि ज्ञान का सागर भी है, वर्ल्ड अथॉरिटी भी है। परमात्मा की ये महिमा है जो मनुष्य गाते हैं कि वह ज्ञान का सागर, वर्ल्ड अथॉरिटी, पतित पावन है,
सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों को जानने वाला भी है। उनको कहते ही है नॉलेजफुल। तो इस समय सब पारलौकिक बाप को पुकारते हैं क्योंकि सभी दुखी है, कहते हैं गॉड फादर। उनका नाम भी चाहिए ना, गॉड फादर कहते हैं तो नाम तो होना चाहिए। उनका नाम गाया हुआ है शिव बाबा। वही ऊंचते ऊंच ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है। यह मनुष्य की आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। ये जो भी महिमा है बाबा कहते आत्माएं करती है पिता परमात्मा की। ऊंचते ऊंच आत्मा किसकी है? परम पिता परमात्मा की। वह है परम। पतित मनुष्य उनको याद करते हैं। सतयुग में जब पावन भारत था, देवी देवताओं का राज्य था, तो कोई भी पतित नहीं थे। सतयुग के अंदर एक भी आत्मा पतित नहीं थी। यह है तमो प्रधान दुनिया, अर्थात दुनिया में जो मनुष्य रहते हैं सब पापात्माएं हैं। यही भारत पावन था, यही भारत पतित हो गया है। या कलयुग में सब पतित है। तुम जानते हो ज्ञान का सागर पतित पावन, परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। जरूर उनको शरीर तो चाहिए ना, ये बातें कोई शास्त्र में नहीं है। ज्ञान का सागर जो

शास्त्रों का सार समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वह रचयिता है। ब्रह्मा को व विष्णु को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, शंकर की तो बात ही छोड़ दो। न ब्रह्मा को न विष्णु को ज्ञान का सागर कहा जाता, तो बाबा कहते शंकर की तो बात ही छोड़ दो। अब ये ज्ञान का सागर कौन है? निराकार ऊंच ते ऊंच परमात्मा ही पतित पावन है। ये महिमा है उस परमपिता परमात्मा की। यहां भी आत्मा की ही महिमा होती है। बाबा कहते हैं जो महिमा है शरीर की तो है नहीं, आत्मा की ही महिमा होती है। आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं बैरिस्टर हूं, मैं फलाना मिनिस्टर हूं। आत्मा ही मर्तबा लेती है भले शरीर के आधार से। शरीर द्वारा आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं। इस समय जब बाप आते हैं कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो। बाबा बार बार ये स्मृति दिलाते हैं कि तुम ये देह नहीं हो, आत्मा हो। इसीलिए बाबा कहते बच्चे आत्म अभिमानी बनो, मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूं तुमको यही पाठ पढ़ाने। ये पाठशाला है। किस बात की पाठशाला है? मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। बाप को सभी आत्माएं बुलाती है कि हे परम पिता परमात्मा, अब निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आओ। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अर्थात निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आओ, रूप बदलो। तो निराकारी आत्माएं तो जब शरीर में आती हो तो गर्भ में आती हो, पुनर्जन्म लेती हो। बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म गर्भ से लिए हैं, एक शरीर छोड़ फिर गर्भ में जाते हो, ऐसे 84 जन्म लेते हो। बाबा कहते मैं तो गर्भ में नहीं आता। भारतवासी असल में देवी देवता धर्म के थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए क्षत्रिय वर्ण में, फिर वैश्य शूद्र वर्ण में कलाएं कम होती जाती है। भारत 16 कला संपूर्ण था, फिर 14 कला बना। भारतवासी अपने जन्मों को नहीं जानते, 84 जन्म भारतवासी ही लेते हैं और कोई धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते हैं। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, ये ज्ञान की बात है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से क्या बन जाते हैं? बाबा कहते स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती महाराजा बनते हो स्वर्ग का। तुम अच्छी रीति जानते हो हम यहां आए हैं इसलिए पतित से पावन बनने। यह है ही पतित दुनिया। पतित पावन सर्व का सदगति दाता तो एक ही बाप है, सब उनको ही पुकारते हैं। बाप को याद करते हैं श्री कृष्ण को नहीं। श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई, गीता है सर्व शास्त्रमय शिरोमणि। भारत की गीता किस धर्म का शास्त्र है? आदि सनातन देवी देवता धर्म का। किसने गीता गाई? बाबा कहते राजयोग किसने सिखाया? परम पिता परमात्मा पतित पावन बाप ने। तो तुम्हारी आत्मा जो निराकार थी उसने अभी यह साकार शरीर धारण किया। साकार मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहेंगे, बल सत्युग में लक्ष्मी नारायण है तो भी भगवान नहीं कहेंगे, ऊंचते ऊंच देवता है। यह तो करके उपाधि दी जाती है। बाबा कहते ये भगवान टाइटल भी उपाधि के रूप में दी जाती है। कायदे अनुसार भगवान एक ही है, क्रिएटर इज वन, बाकी वह है देवताएं। 5000 वर्ष की बात है, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इनको महाराजा महारानी कहा जाता था।

भगवान महाराजा नहीं बनते हैं, भगवान महाराजा भी नहीं बनते हैं, वह तो बाप ही है जो आकर भारतवासियों को ऐसा देवी देवता बनाते हैं, इतने ऊंच देवी देवता बनाते हैं। अभी तो देवी देवता धर्म का कोई भी है नहीं। इनको कहा जाता है रावण संप्रदाय, क्योंकि रावण राज्य है। रावण को वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं, क्योंकि यह पुराना दुश्मन है, परंतु इनको भारतवासी जानते नहीं। शास्त्रों में भी वर्णन नहीं है कि रावण कौन है। रावण को 10 शिष्य क्यों दिखाए हैं? इन बातों को अच्छी रीति समझना है। मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, पारस बुद्धि इन लक्ष्मी नारायण आदि को कहेंगे। पारसनाथ, पारसनाथिनी का राज्य था, यथा राजा रानी तथा प्रजा, भारत जैसा सुखधाम और कोई खंड होता नहीं। जब भारत में स्वर्ग था तो कोई बीमारी दुख रोग नहीं था, संपूर्ण सुख था। गाया जाता है ईश्वर की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की भी महिमा अपरंपार है। सारा मदार, ये महिमा का सारा मदार पवित्रता पर है। पुकारते भी ऐसे हैं, सब पतित है, पीस नहीं है, प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है, तो प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी तीनों ही नहीं है। अभी तुमने समझा है हम भारतवासी सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे पतित बन गए। जैसे ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी फिर नीचे उतरते गए, द्वापर के बाद धीरे धीरे पतित बने हैं। इनको कहा जाता है मृत्यु लोक। इसको आग लगनी है, अब इस मृत्यु लोक को आग लगनी है। यह है शिव ज्ञान यज्ञ। बाबा आकर के बहुत बड़ा यज्ञ की स्थापना करते हैं, जिसका नाम है शिव ज्ञान यज्ञ, रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। मनुष्य नाम तो बहुत रख देते हैं, जहां भी शिव की मूर्ति देखते हैं तो अनेक भिन्न भिन्न नाम रख देते हैं। भारत में जितने भी शिवालय हैं सबके नाम अलग अलग हैं, लेकिन कर्तव्यवाचक नाम रखे हैं, महिमा के आधार पर नाम रखे हैं। एक के ही अनेक नाम से मंदिर बनाते हैं, तो बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य। अभी भक्ति पूरी होती है, तुमको वैराग्य आता है। सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है, भक्ति से भी वैराग्य आता है, और इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तो भक्ति से वैराग्य, पुरानी दुनिया से वैराग्य। ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है। बच्चे पूछते हैं, बाबा हम पतित से पावन कैसे बने? कई नए आते हैं तो अलाउ नहीं किया जाता है। जैसे कॉलेज में कोई नया जाकर बैठे तो कुछ भी समझ न सके, और किसको पता ही नहीं है कि मनुष्य से देवता कैसे बन रहे हैं। मनुष्य जो पतित है वही पावन बनते हैं। इस समय भारत भी बेघर है। सतयुग में भारत प्रिंस था, श्री कृष्ण सतयुग का पहला नंबर प्रिंस था। उसमें सब गुण है, राज्य लक्ष्मी नारायण का कहेंगे, राज्य कृष्ण का नहीं कहेंगे, राज्य लक्ष्मी नारायण का कहेंगे। लेकिन प्रिंस उस दुनिया का श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण तो प्रिंस था, राधे प्रिंसेस थी। श्री कृष्ण प्रिंस की ही महिमा गाई जाती है। क्या महिमा गाई जाती है? सर्व गुण संपन्न, सोले कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। उसने कोई गीता नहीं सुनाई। वह तो सतयुग का प्रिंस था। वह पतित मनुष्य को पावन बनाने के लिए गीता पाठ सुनाए। ये हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं वो सतयुग का प्रिंस पतित मनुष्य को पावन बनाने के
के लिए गीता पाठ सुनाए ये फायदा ही नहीं है, हो नहीं सकता। ये सब शास्त्र है भक्ति मार्ग के। कितने शास्त्रों की महिमा है, सतयुग में कोई शास्त्र चित्र आदि भक्ति मार्ग के होते ही नहीं, वह स्वयं ही उस स्वरूप में है तो चित्र की क्या आवश्यकता। वहां तो ज्ञान की प्रालब्ध होती है 21 जन्मों के लिए, फिर से सतयुग का राज्य भाग्य ले रहे हैं। भारतवासी सतयुग में 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे और कोई भी पार्टीशन आदि नहीं था। 5000 वर्ष की बात है, अभी कलयुग का अंत है ना, विनाश सामने खड़ा है। भगवान ने यह ज्ञान यज्ञ रचा है पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाने, तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। सो अब शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करा रहे हैं, तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो। गाते भी है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, वह तो हुआ प्रजापिता। ब्रह्मा बाबा तो हुआ प्रजापिता, वो है परमपिता, वो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, उनकी सब औलाद है। बरोबर ब्रह्मा द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना हुई थी आज से 5000 वर्ष पहले भी। बाबा कहते मैं संगम पर आया था, शिव बाबा कहते आज से 5000 वर्ष पहले भी मैं संगम पर आया था तुमको यह राजयोग सिखाने। श्री कृष्ण ने मैं आया था, श्री कृष्ण पतित दुनिया में आ नहीं सकता है, उसकी परछाई भी इस दुनिया में नहीं पड़ सकती, बाप ही आते हैं, वही सर्व का सदगति दाता है। मनुष्य मनुष्य को सदगति दे नहीं सकते, याद भी सभी एक को ही करते हैं, परम पिता परमात्मा कहाँ रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो परम धाम में रहते हैं, वह है ब्रह्म महतत्व। परम धाम है ब्रह्म महतत्व, वहां आत्माएं पवित्र जैसे महात्माएं हैं, यहां भी महान आत्मा पतित आत्मा कहते हैं ना, तो वहां सब पवित्र आत्माएं जैसे महात्माओं के रूप में रहते हैं। वास्तव में यहां महान आत्मा एक भी नहीं है, आत्मा को ही पावन सतो प्रदान बनना है। कैसे बनेंगे? ज्ञान और योग से, न कि पानी से। बाबा कहते पावन बनना है, सतो प्रधान बनना है ज्ञान और योग की शक्ति से, न कि पानी से। आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा में ही खाद पड़ती है, आत्मा ही गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन बनती है। सभी आत्माएं जो पतित है उनको पावन कौन बनाए, सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई बना न सके। बाप ही बैठ समझाते हैं, क्या समझाते हैं, बच्चे माँ में कम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, जितना याद करेंगे उतना पतित से पावन बनेंगे। मेहनत इसमें है, ज्ञान तो सारा बुद्धि में है। ये चक्र कैसे फिरता है, हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, सतयुग में कितना समय राज्य चलता है, फिर रावण कैसे आता है, रावण है कौन यह भी किसको पता नहीं है। सारा ज्ञान बुद्धि में अभी स्पष्ट है, तब से रावण को जलाते आते हैं यह भी किसको पता नहीं है। हर वर्ष जलाते हैं, सतयुग में तो नहीं जलाएंगे, अभी है ही रावण राज्य, राम राज्य तो कोई स्थापन कर नहीं सकता, ये तो बाप का ही काम है। पतित मनुष्य तो कर नहीं सकते, वह तो सब विनाश हो जाएंगे, पतित दुनिया ही विनाश होनी है। सतयुग में एक भी ऐसे नहीं कहेंगे, बाबा कहते सतयुग में एक भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हे पतित पावन आओ,
वह तो पावन दुनिया है ना। तुम अभी जानते हो इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा स्वर्ग का मालिक किसने बनाया। फिर इन्होंने 84 जन्म कैसे लिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही 84 जन्म लिए हैं, वही इस समय शूद्र वंशी बने हैं। अब फिर ब्राह्मण वंशी बनते हो, अभी तुम हो ब्राह्मण चोटी। यह है ऊंच ते ऊंच चोटी, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण। अभी तुम शिव बाबा के बच्चे भी हो, तो पोतरे पोत्रियां भी हो, शिव वंशी फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, वर्षा मिलता है दादे से। बाप कहते मुझे निरंतर याद करो, पावन बनो तो तुम मेरे पास मुक्ति धाम में आ जाएंगे। इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है। वह तो हजारों है, कोई पूछते हैं कितने बीके हैं, बोलो हजारों के अंदाज में है। इस दैवी झाड़ की वृद्धि होती जाती है, अब फिर से सैपलिंग लग रहा है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का, क्योंकि देवता धर्म है नहीं, इसीलिए देवता धर्म की फिर से सैपलिंग लग रही है। सब अपने को हिंदू कहलाते रहते हैं और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर सब निकल आएंगे, आकर बाप से वर्षा लेंगे। तुम आए हो बेहद के बाप से, बेहद के सुख का वर्षा पाने, अर्थात मनुष्य से देवता बनने। बाबा कहते तुम आए हो बेहद के बाप से, बेहद सुख का वर्षा पाने, अर्थात मनुष्य से देवता बनने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, पतित से पावन बनने के लिए ज्ञान और योग में मजबूत होना है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे याद की मेहनत से निकालना है। दूसरी पॉइंट, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण चोटी है, इस नशे में रहना है। ब्राह्मण ही वर्षे के अधिकारी है क्योंकि शिव बाबा के पोतरे हैं। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावनी भव। अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावनी भव। कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को बदल सकती है। कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन वृत्ति में इतना पावर है जो उसको बदल सकते हैं। वायुमंडल विकारी हो, लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी हो, जो पतितों को पावन बनाने वाले हैं वो पतित वायुमंडल के वशीभूत नहीं हो सकते। मास्टर पतित पावनी बन स्वयं की पावरफुल वृत्ति से अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल मिटाओ, उसका वर्णन कर वायुमंडल नहीं बनाओ। कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन करना भी पाप है। इतनी बड़ी बात बाबा ने कही, कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन करना भी पाप है। आज का स्लोगन है, अब धरनी में परमात्मा पहचान का बीज डालो तो प्रत्यक्षता होगी। अब धरनी में परमात्मा पहचान का बीज डालो तो प्रत्यक्षता होगी। आज का व्यक्त इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। योग माना शांति की शक्ति।
ये शांति की शक्ति बहुत